0: कि हम इसको 1 घंटे में खत्म भी कर ले, ये सरल भाषा में भी हो, इसमें जो मोटे मोटे पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स, वो कवर हो जाएं। बहुत इस पे, पता है, लोगों ने बहुत रिसर्च करी है पब्लिक स्पीकिंग पे, इसके बहुत सारे टूल्स एंड टिप्स हैं। अगर हम इसी से एक फर्स्ट सेशन में ही वो सारी चीजें करेंगे ना, तो वो इफेक्टिव नहीं होगा। तो हमारे ऑडियंस कौन है जिसके लिए हम बात कर रहे हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो भी हमें हेल्प करता है हमारे टॉपिक पे प्रिपेयर करने के लिए। मेरी आदत है, जैसे कि अगर मैं ट्रेनिंग सेशन में हूँ तो मैं लोगों के बीच बीच में जाके भी क्वेश्चन पूछती हूँ। अगर आप कंफर्टेबल हैं, अगर आपके आसपास 10-15 लोग, 25 लोग बैठे हैं और आप कंफर्टेबल हैं लोगों के बीच में जाके बोलने का, तो वो भी एक सही तरीका है। अगर आप कंफर्टेबल हैं एक पोजीशन पे खड़े होके बोलने का, वो भी कंफर्टेबल है। इसमें कोई सही या गलत नहीं है, बट आप ये देखिए कि अगर आप ज्यादा मूव अराउंड कर रहे हैं तो कहीं वो डिस्ट्रैक्शन तो नहीं हो रहा। कभी हॉल इतना बड़ा होता है कि पीछे के लोग क्या सुन पा रहे हैं, नहीं सुन पा रहे हैं, या अगर आप स्टेज पे होते हैं तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो जैसे मैंने कहा, आप अपना एक तरीका अपना सकते हैं कि पब्लिक स्पीकिंग के टाइम आपको किस तरीके का तरीका अपनाना है। एक जगह पे खड़े होकर बोलना आपके लिए कंफर्टेबल है, अगर आप ट्रेनिंग सेशन में हैं तो एंगेज कर रहे हैं अपने ऑडियंसेस के साथ, तो आप थोड़ा बहुत चल के भी जा सकते हैं उनके पास, उनको माइक दे सकते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको एंगेज कर सकते हैं। जैसे कि अभी सीमा जी ने कहा कि उनको आई कांटेक्ट में प्रॉब्लम आया, कि उनके जो फैमिली मेंबर थे वो आए और उनसे वो आई कांटेक्ट करा जब उन्होंने, तो उन्हें लगा कि मैं सब कुछ भूल रही हूँ। अगर आई कांटेक्ट मतलब दूसरे की आंखों में डायरेक्टली देखने से आपको डर लगता है और आप शुरुआत में काम करना चाहते हैं पब्लिक स्पीकिंग में, तो ज्यादा देर तक किसी एक आई कांटेक्ट को अवॉइड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप किसी को लगातार देखते रहते हैं ना, थोड़ी घबराहट होने लगती है, आप ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, आप ये मेरे बारे में कुछ तो गलत ही सोच रहा है, वो इतना ब्लैंक फेस, कभी कोई कुछ बोल रहा होता है और हम लोग ऐसे देख रहे होते हैं, होता है ऐसा, तो हमें लगता है अब ये पता नहीं क्या सोच रहा है मेरे को। अगर ऐसा है तो आई कांटेक्ट मोर देन 5 सेकंड्स आप अवॉइड कर सकते हैं। आपके सामने अगर ऑडियंस है तो आप एक तरफ, दूसरी तरफ, तीसरी तरफ, चौथी तरफ, फिर आप अवॉइड करके, जब आप में कॉन्फिडेंस आ जाए तब आप आई कॉन्टेक्ट करिए, उनके साथ इंटरेक्ट करिए, ये धीरे धीरे ही बिल्ट हो सकता है। कभी कभी बहुत अच्छे स्पीकर्स जो होते हैं ना, वो कोई शेरो शायरी या कोई कोट, जैसे बड़े बड़े लोगों ने जो कोट बोला है, उससे या तो अपना टॉपिक शुरू करते हैं या अपने टॉपिक को एंड करते हैं। तो अगर आप में कॉन्फिडेंट है, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि पहले के 30 सेकेंड बहुत जरूरी है कि आप क्या बोलने वाले हैं, और आखिरी के जो 2 मिनट हैं वो बहुत जरूरी हैं कि आप किस तरीके से उसको एंड कर रहे हैं। बीच का भी जरूरी है, बट अगर आपने पहले के 30 सेकेंड या 1 मिनट में अपने ऑडियंसेस को अच्छे से इंगेज करा है, तो ज्यादातर आपका जो स्टेज फियर है वो कंट्रोल में रहेगा। खत्म तो नहीं होता, किसी का भी खत्म नहीं होता, कंट्रोल में होता है, उसको हम मैनेज करना सीख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं शेरो शायरी, लेकिन टॉपिक से हटके नहीं, कि टॉपिक तो कुछ और है और आप प्यार मोहब्बत पे शेरो शायरी करें, ऐसा भी मत करिएगा। एजुकेशन का टॉपिक है तो एजुकेशन पे बात करिए, स्किलिंग का टॉपिक है तो स्किलिंग पे बात, ये बात नहीं करेंगे कि वो आज ये हो गया था, आज वो हो गया, ऐसे कहानी नहीं डालेंगे, नहीं तो लगेगा कि हम बेफालतू में ऐसे ही बोल रहे हैं खाली बोलने के लिए। पता चल जाता है कि हमने फिर प्रैक्टिस नहीं करी है, खाली हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं बस ऐसे, तो वो भी मत करिएगा। बड़े बड़े महात्मा लोग हैं, जैसे महात्मा गांधी की कोट है, और नॉन मतलब पॉलिटिकल नहीं हो लेकिन मोटिवेशनल हो, ऐसे लोगों की कोट्स भी बोल सकते हैं, लेकिन वो कोट को सही तरीके से बोलना, एग्जैक्टली जैसे उन्होंने बोला है वैसे ही बोलना, अपने शब्द उसमें मिक्स ना करना, इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा। ओके, हाँ, ये बात हम पहले ही कर चुके हैं कि कई बार क्या होता है कि टेक्नोलॉजी हमें धोखा दे देती है। हमने पीपीटी पे बना लिया, सब कुछ हो गया, लेकिन टेक्नोलॉजी ने धोखा दे दिया, और जो हम कहने आए थे हमने पीछे पीपीटी देखी, पीपीटी तो चल ही नहीं रही और हम ब्लैंक, अब मैं क्या बोलूं। तो उसके लिए हम कुछ चीजें, कुछ चिट्स चिट्स होते हैं ना, उसी को क्यू कार्ड बोलते हैं, क्योंकि हमने लिख के रखा हुआ है। अगर टेक्नोलॉजी नहीं भी चली तो मेरे पास मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, कि मुझे इन पॉइंट्स पे बात करनी है. तो दिस वॉज द फर्स्ट सेशन ऑन स्टेज फियर पब्लिक स्पीकिंग. कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जो मैंने करीबन 2 दिन लगाए इसको क्रिएट करने में. आई होप दिस इज हेल्पफुल. ये प्रैक्टिस से ही जाएगा. और ये समझना कि सिर्फ मुझे स्टेज फियर है ऐसा गलत है. 75-80% लोगों को ये फियर रहता है और वो उस पर काम करते हैं और उसको अपने कॉन्फिडेंस में बदल के लाते हैं. तो डोंट थिंक दैट यू आर अलोन. ये सब में होता है, हर लेवल पे होता है. लेकिन हम जितना बात करते हैं दूसरे से ये फियर कम हो जाता है या मैनेज हो जाता है और हमें कॉन्फिडेंस आता है. आई होप दिस इज हेल्पफुल. मेरे पास कोई शेरोशायरी नहीं है और कोई कोट नहीं है ये बंद करने के लिए सेशन को. बट एनी क्वेश्चन, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, मोस्ट वेलकम. एंड प्लीज आप ये सेशन बच्चों के साथ करिए, बेनिफिशियरीज के साथ करिए. दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, आई होप सो.
1: नमस्ते मैम, फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली.
0: यस अंकल.
1: हाँ मैम, मुझे भी बहुत स्टेज फियर था मैम, अभी भी है, पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है. और आपका लाइफ स्किल्स के लिए पहले जो मैंने सेशन अटेंड किया था मैम, मुझे आई कॉन्टेक्ट बहुत प्रॉब्लम है मैम, ये आदत ही नहीं थी. अभी मैं थोड़ा बहुत कर रही हूँ, इम्प्रूव कर रही हूँ अपने आप को. रियली वेरी हेल्पफुल मैम, थैंक यू सो मच.
0: मोस्ट वेलकम संगीता जी. दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन, कि हम आपस में बातचीत करके हम ये महसूस कर सकें कि ये कॉमन इश्यूज हैं, कॉमन चैलेंजेस हैं. और ये इसलिए है कि कहीं हम जब बचपन में थे तो छोटे होते हुए हमें वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली उतनी अपनी बात को कहने के लिए, या हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हमें जजमेंटल बना दिया हमें कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, या हमें उस टॉपिक के बारे में पता ही नहीं है जिस टॉपिक पे बोलने को बोला गया है. इन 3 या 4 मोटे मोटे वजहों से ही हमें स्टेज फियर आता है हमारे दिमाग में. पर बहुत सारी ऐसी वजह हो सकती है, जरूरी नहीं है. बट दिस इज द मोस्ट कॉमनली स्टेटेड सिंड्रम्स और कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्टेज फियर. सुनीता जी कुछ कहना चाह रही हैं?
2: मैम, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ. मुझे याद आया अभी जब हमारे 2018 में आपके साथ ही इनोग्रेशन था हमारे स्कूल का. दैट वाज द फर्स्ट टाइम टू होल्ड द माइक इन माय हैंड एंड आई एम वेरी नर्वस एट दैट टाइम एंड यू आर विद मी एट दैट टाइम. आई रिमेम्बर दैट. सो दैट आई एम फेंट मैम, बट आई कैन से दैन यू हेल्प मी सो मच. Even speak your name, your family, about all that. And after that day, ma'am, I am very confident to handle a mic in any place.
0: कई बार ऐसा होता है कि ना माइक हमने पहली बार लाइफ में पकड़ा होता है. ऐसा होता है जो मैंने पहली बार माइक अपने हाथ में पकड़ा, मुझे लगा ये क्या है. और ऐसा बहुत बार होता है कि हम जो फर्स्ट टाइम माइक पकड़ते हैं तो हमें लगता है ये आवाज हमारी अपनी ही है, क्योंकि हमें आदत नहीं है सुनने की अपनी आवाज को. तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जो आपने फर्स्ट टाइम जब बोला तो वो एक फियर था, लेकिन वहां से आज आप इस स्टेज पे आ गई हैं कि खुद ही पेरेंट मीटिंग करती हैं, खुद ही बात करते हैं बच्चों की बात पेरेंट्स से. तो वो एक पब्लिक स्पीकिंग का पार्ट ही है. आप इतनी अच्छे बड़े फोरम पे बात कर रहे हैं. सो डेफिनेटली आपने काफी वर्क किया है. रेखा ने कुछ कमेंट दिया है. तो रेखा जी ने बताया कि है स्टेज फियर है, जैसे मैंने बताया सभी को ही होता है, तो उनको भी है. वो अपनी बात, हमने अभी कुछ सेमिनार किया था, वो कह रही कि वो अपनी बात रखना चाहती थी लेकिन वो इसी फियर की वजह से वो अपनी बात नहीं कह पाई. तो रेखा क्यों डर लगता है आपको माइक पकड़ने से या इस चीज से कि लोगों के सामने बोलना, क्यों डर लगता है?
3: मैम वैसे लोगों के सामने बोलने से डर नहीं लगता, क्योंकि जैसे मोबिलाइजेशन करने जाते हैं तो हम लोगों से बातें करते हैं. बट पता नहीं वो फर्स्ट टाइम था मेरा, तो बस थोड़ा सा नर्वस हो गई. मैंने जैसे आपने बोला अपने पॉइंट लिखो, तो मैंने अपने पॉइंट भी लिखे थे, बट मैं सामने जाके और बोल नहीं पाए.
0: मैं आपको एक मतलब पर्सनल टास्क दे सकती हूँ कि अब आप जाओगे ना, ये जो पॉइंट्स आपने लिखे थे प्लीज इसका वीडियो बनाओ या फिर मिरर के सामने जाके इसको प्रैक्टिस करो और देखो कि रेखा कैसी लगती है. क्योंकि मैंने आपको बोलते हुए देखा है रेखा, आप साफ बोलती हो, आप सरल शब्दों का इस्तेमाल करती हो और जितनी बात कहनी है उतनी ही बात कहती हूँ, तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं। सो यू ट्राई एंड नेक्स्ट टाइम वेन एवर हम कोई ऐसा सेशन कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर दैट यू आर देयर टू स्टॉप नाउ, डोंट बी वरीड, कोई वरी करने की जरूरत नहीं है। वहां सभी लोग अपने थे और वहां पे कोई भी आपको जज नहीं करने वाला था, और अगर जज कर भी रहा था तो वो उस इंसान के अंदर की भावनाएं हैं, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, बिकॉज वो आपके रिलेशन में नहीं है, उनकी जजमेंट का आपके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता, रेखा तो वैसे ही रहेगी, उसकी लाइफ वैसे ही चलेगी।
3: हाँ जी मैम, इस बात का डर लगता है पता नहीं मेरी बात कुछ वैल्यूएबल है भी कि नहीं,
0: एग्जैक्टली
3: exactly. मेरे पॉइंट पे वो हंसेंगे किसने क्या बोल दिया, बस थोड़ा सा ये माइंड में चीज आती है तो अपनी बातें नहीं रख पाती।
0: जो आप एक्सपीरियंस शेयर करेंगे ना वो दूसरे के पास नहीं है, जो आपके चैलेंजेस थे या जो पॉइंट्स आपके पास थे रेखा, वो आपके ग्राउंड चैलेंजेस थे, उसको शेयर करने के लिए दूसरा बंदा जज ही नहीं कर सकता सही से, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि जो आप कह रहे हो कि वो सही है कि गलत है। फॉर एग्जाम्पल जो और लोग थे जिन्होंने शेयर, जैसे फरा थी उन्होंने शेयर करा, सीमा जी ने शेयर करा था, उनकी जो बातें हैं वो उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में क्या चैलेंजेस हैं, तो आप जज भी कर लोगे तो क्या कर लोगे, सही और गलत तो है ही नहीं उसमें कुछ भी, है कि नहीं।
3: हाँ जी मैम,
0: तो वो कॉन्फिडेंस रखो कि जो आप कहना चाह रहे हो वो वैल्यूएबल है, लेकिन वो तभी हो सकता है अगर आप पहले से अपने पॉइंट्स लिख के रखोगे, और आपको उसमें वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो बात मैं कहना चाह रही हूँ, छोट दो ही लाइनें बोलो, जरूरी नहीं है कि 10 लाइनें बोलोगे तभी इफेक्टिव होगा, अपनी बात को 2 लाइनों में करो, देखना धीरे धीरे करके वो 2 लाइनें, 4 लाइनें, 6 लाइनें, और फिर बोलना पड़ेगा रेखा चुप कर जाओ बस करो और मत बोलो, ऐसा भी सिचुएशन आएगा। सो अभी आप बोले इतने सारे लोगों के बीच में बोले, कोई आपको झिझक नहीं थी, तो आई कॉन्टेक्ट से डरना नहीं है, आई कॉन्टेक्ट से अगर आपको डर लगता है तो अपनी आईज को आप 5-7 सेकंड के बाद मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-to-1 डिस्कशन हो रही है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है। ये बातें हमने इंटरव्यू स्किल्स में करी थी कि अगर इंटरव्यू स्किल्स चल रही हैं और सामने बैठ के कोई बात कर रहा है तो आई कॉन्टेक्ट बहुत जरूरी है, बट पब्लिक स्पीकिंग में क्या है ना, आप मूव आउट मूव इन कर सकते हो, अगर कोई कोई इंसान आपको लग रहा है कि अजीब से एक्सप्रेशन दे रहा है या बोरिंग उसको लग रहा है उसकी तरफ देखो ही मत, नहीं देखोगे ना तो वो कॉन्फिडेंस लूज नहीं होगा, उसकी तरफ देखो जो आपकी बात को समझ रहा है। कुछ लोग होते हैं करते हैं उनको देखिए कॉन्फिडेंस बढ़ता है ना, तो उनकी तरफ देखो, ये धीरे धीरे करके आप में आ जाएगा।
4: गुड इवनिंग मैम, मैं ही बोल लेती हूँ, कोई नहीं बोल रहा है तो।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग कला।
4: तो स्टेज पे जाते हुए तो मुझे भी बहुत डर लगता था, अब नहीं लगता है, फर्स्ट टाइम जब मैं गई थी स्टेज पे तो ऐसे दिल हो रहा था बहुत धक धक, और जो अपनी बात में कहना चाह रही थी वो भी नहीं कह पा रही थी कि मैं कुछ कहूंगी, मतलब इतना डर लगता था कि स्टेज पे जाके जो बात कहनी थी वो सब भूल जाया करती थी। बट अब जब मैं स्टेज पे जाती हूँ तो बहुत कॉन्फिडेंस होता है अपने आप में कि मैं वहां जाके अपनी बात भी रख लेती हूँ और बहुत अच्छे से लोगों को शायद समझा भी पाती हूँ।
0: एब्सोल्युटली फरा, तो आपने उसके ऊपर काम किया, ऐसा नहीं था कि एक ही दिन में वो हुआ, वही बात हमें अपने बेनिफिशियरी से भी बतानी कि घबराओ मत, दूसरे के जजमेंट से डरो मत, जो बात तुम कहना चाह रहे हो वो इम्पोर्टेंट है, कॉन्फिडेंस रखो और इधर उधर की बात ना, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा बोलने लग जाओगे और दूसरे टॉपिक को मिक्स कर दोगे तो नेचुरली यू नो इट विल बी नॉट अ गुड साइन ऑफ अ गुड स्पीकर। तो इसलिए क्योंकि आप पॉइंट्स लिख लेते हो, आपको क्या बातें करनी है आपके दिमाग में रहती है या नोट्स में रहती है, इससे आप अच्छा बोल पाते हैं। सेम
5: आई थिंक शायरी भी करती है
0: परा शायरी
5: अब तो परा शायरी की शायरी से बंद कर अपना टॉपिक क्लोज करती है।
0: क्योंकि उनको ये था कि उनको अपने ऑडियंसेस को एंगेज करना है
4: जी।
0: और उनकी जो
4: जो सुन भी नहीं रहा है ना मुझे, मेरी तरफ देख भी नहीं रहा है तो वो मेरी तरफ देखे कम से कम शायरी पसंद करके देखे।
0: Absolutely. किसी को अगर एक बात कहने में जो उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो हो सकता है शायरी में इंटरेस्ट हो, कई लोग गाना भी गाते हैं, मैंने ये देखा है कि शायरी के साथ वो स्टेज पे आएंगे तो मैं गाने के साथ शुरुआत करता हूँ।
4: ऐसे भी मिला था मैम हमें रमाडा में ही मिला था फर्स्ट अवार्ड मैम ने दिया था, तो वहां पर मैंने गाने से एंड किया था अपना, मैंने सोचा शायद लोग कहेंगे फरा हर बार स्टोरी ले आती है और वही स्टोरी सब कुछ, शायद कुछ लोगों को बुरा बोरिंग लगता हो, तो मैंने कहा क्यों नहीं थोड़ा सा कुछ हो जाए तो वहां मैंने एंडिंग जो की थी वो गाने पे की थी।
0: क्या आपने प्रिपेयर किया था उसके लिए पहले से?
4: हाँ मैम मैंने प्रिपेयर किया था।
0: क्या आपने पहले अपनी दोस्त के सामने या मामा के सामने या भाई के सामने कभी किसी या शीशे के सामने उसको कोशिश करी कि मैं कैसी लग रही हूँ?
4: मैम भाई के सामने तो नहीं, लेकिन एक दिन पहले जब हमारा दूसरे दिन को वो अवार्ड फंक्शन था तो एक दिन पहले स्वाति और ईशा मैम मेरे रूम में थी तो मैंने उनको गा गा के सुनाया था। मतलब पहले सर्च किया फिर मैंने उन्हें गा गा के सुनाया तो थोड़ा डर लगा, लेकिन धीरे धीरे जब मैंने उन्हें सुनाया तो उन्हें भी अच्छा लगा तो फिर वो मैंने जाकर।
0: अगर मुझे कोई बोल दे कि गाने के लिए स्टेज पे तो मैं तो भाग जाऊंगी वहां से। तो इट्स अ लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आप कितने कंफर्टेबल हैं, आप जिस चीज में कंफर्टेबल हैं उस पे प्रैक्टिस करिए और उस पे काम करिए तो जरूर अच्छे अच्छा स्पीकर बनेंगे और स्टेज फियर जो है उसको आप मैनेज कर पाएंगे, जैसे कि अभी हमने परा के एग्जाम्पल में देखा।
4: वही है ना कि एक बार गलत होगा, दो बार होगा, तीसरा आके हम लोग ठीक हो जाएगा। हमें नहीं देखना चाहिए लोग क्या सोचेंगे क्या कहेंगे, कहीं ना कहीं उनको इतना मतलब वो कर दो कि वो मजबूर हो जाए सुनने में कि हाँ भाई कोई बंदा बोल रहा है।
0: Absolutely, absolutely. I like that. दयाराम जी आपने भी बताया था कि आपको मुश्किल होती थी पहले बोलने में और अभी।
6: जी मैम, जैसे इंटरव्यू में कहा था वैसे कि जैसे प्रार्थना सत्र में जब हमारा नंबर आता था तो हम भाग जाया करते थे और घंटे लेट आया करते थे, बोलने में झिझक थी और लोगों के सामने जैसे स्कूल में तो बहुत सारे लड़के या लड़कियां होती थी तो कुछ फ्रेंड्स भी होते थे क्लास के तो वो के आवाज में मजाक उड़ाते थे तो ऐसे तो झिझक रहती थी। लेकिन जैसे काम किया है तो किया है, जैसे कम्युनिटी में जाते हैं और महिला पुरुष रहते हैं अक्सर शायद सभी बड़े रहते हैं तो जैसे हम करते गए तो हमारा कॉन्फिडेंस है वो भी जो इनका लेवल बढ़ता गया तो भी कोई भी जब मैं कंप्यूटर क्लास जाता तो उसमें 11th और 12th लड़कियां हैं।
0: अच्छा।
6: वो करीब 17 या 18 से ऊपर तो कभी कभी मुझे डर लगता है कि मैं कुछ गलत ना बताऊं, लेकिन नहीं मेरे ऊपर मुझे विश्वास रहता है कि जो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले क्या मैं यहाँ पे भी प्रिपेयर होता हूँ कि हाँ मुझे ये आप बताना है, इसलिए शायद वो ही कुछ बातें पे।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, प्रिपेयर अगर आप करके जा रहे हैं तो जरूर आप अपनी बात अच्छे से रख पाएंगे। तो मैंने भी बताया जैसे कि जरूर आप अपने टॉपिक पे काम करिए अगर आपको टॉपिक पहले से पता है। अगर एकदम से किसी टॉपिक पे बोलने के लिए बोला गया है तो घबराहट हो सकती है, लेकिन आप 2 मिनट लगा के अपना ख्याल तैयार कर सकते हैं कि आप क्या बोलना चाहते हैं और फिर आप अपनी बात कह। अगर किसी और को कोई शेयर नहीं करना तो वी कैन क्लोज दिस सेशन। आई होप इट इज ऑफ एनी यूज। अगर छोटा सा भी इसमें एक टिप भी अगर ऐसी थी जो आपके लिए हेल्पफुल थी सो इट्स माय वर्क डन। सो प्लीज मुझे शेयर करिएगा और अपनी कम्युनिटीज के साथ प्रैक्टिस करिएगा शीशे के सामने। मुझे वीडियोस भेज सकते हैं, मैम को भेज सकते हैं फीडबैक के लिए, शिवम सर को भेज सकते हैं कि हम कैसा बोल रहे हैं, अगर किसी को सपोर्ट चाहिए।

आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमने पहले स्लाइड्स में बात करी थी कि हम सबके गोल्स हम डिफाइन करते हैं, लीडर्स हमेशा अपने गोल्स डिफाइन करते हैं और उस पे

हो सकता, तो उन लोगों को डिसरिगार्ड ही कर देना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो क्या होगा, अगर 10 में से 5 लोग बोल रहे हैं नहीं हो सकता, तो आपकी 50% एनर्जी तो उन्होंने लाइक वैनिश कर दी, बिकॉज यू ऑल्सो गेट कंफ्यूज वेदर वी आर एबल टू डू और नॉट, राइट? तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी को अपनी लाइफ में सुनना नहीं चाहिए, और इसका यही मकसद है. डिसरिगार्ड मीन्स, मैं ये नहीं बोल रही कि बिल्कुल बायकॉट कर दो उनके साथ. डिसरिगार्ड मीन्स डोंट वेस्ट योर एनर्जीज, योर टाइम, योर पेशेंस टू लिसन टू देम, दोज हु आर सेइंग इट कैन नॉट बी डन, बिकॉज यू एज अ लीडर हैज सम मिशन, मीनिंगफुल काम करना है आपको. तो अगर आप मीनिंगफुल काम करने में कोई भी ऐसे बोल रहा है कि ये नहीं हो सकता, तो वो हमें नजरअंदाज कर देना, हमें सुनना ही नहीं है. टर्न अ डेफ ईयर टू क्रिटिक्स, राइट? बिकॉज क्रिटिसिज्म करना बहुत इजी है, पर साथ चल के काम करना बहुत टफ है. तो मैं ये भी हमेशा अपनी टीम को बोलती हूँ कि अगर कुछ नहीं हो रहा फील्ड पे, तो हमें एनालाइज करने की भी जरूरत है कि शायद वो कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और उनको हम कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस. कुछ एम्बिशन होगी लाइफ में कुछ करने के लिए, विदाउट एम्बिशन तो लाइफ ही नहीं है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है. तो जब हमें कुछ अपनी लाइफ में अचीव करना है, तो हमारे एम्बिशंस तो हैं ही है, राइट? और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स को कम करेंगे, तो हमारे एम्बिशंस भी लिमिटेड हो जाएंगे, और अगर हम अपनी अचीवमेंट्स के ऊपर, अपने गोल्स के ऊपर काम करते रहेंगे, और नेचुरली रिजल्ट आएगा. क्योंकि पिछली बार मैंने बोला था कि अगर पॉजिटिव रिस्पांस है, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिव सोच है, तो व्हेन वी लर्न हाउ टू गिव द रिटर्न विल बी डेफिनेटली देयर, राइट? तो ये वहां भी फिट इन होता है कि व्हाट यू अचीव इन लाइफ विल बी लिमिटेड ओनली बाय योर एम्बिशंस. गिव अप चेजिंग योर ड्रीम्स इज वेरी इजी, वेरी वेरी इजी, बट गेटिंग टू योर गोल्स एंटेल्स हार्ड वर्क, बहुत मेहनत करनी पड़ती है. और हमें अपने आप को ऐसे ट्यून करना है कि हम मेहनत करें. हम सब लोग मेहनत कर सकते हैं, और कर भी रहे हैं, और करेंगे भी, पर अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना है, अपने आप को टाइम देना है, अपने घर को टाइम देना है, अपने काम को टाइम देना है, और हम कैसे हार्ड वर्क करें, ये हमें हमेशा ध्यान में रखना है. मैनी गिव अप एट द थॉट लेवल, कि जब हम थॉट ही लेते हैं अपने माइंड में, हम सोचते ही हैं, तो हम कह देते हैं नहीं नहीं नहीं ये तो नहीं हो सकता, इसको तो सोचना ही बेकार है, राइट? होता है ना ऐसे हमारे साथ? और बहुत सारे लोग गिव अप कर देते हैं एक्शन लेवल पे. 3-4 दिन काम किया, 5 दिन किया, महीना किया, फिर वी गिव अप, नो आई एम नॉट फाइंडिंग एनी वैल्यू, एनी इंटरेस्ट, एनी थिंग इन इट, बिकॉज वी आर नॉट विजनरीज, राइट? दोज हु डिफाइन द गोल्स विद वर्ड्स, थॉट्स एंड एक्शन गो अहेड टू देयर लैडर अप. हम बोलते हैं, मतलब कि हम कमिट करते हैं, हम उसके ऊपर सोचना शुरू कर देते हैं, और अपनी सोच को एक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, और हम साथ साथ सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं अपनी प्रोग्रेस की तरफ. तो हम समहाउ वी आर एबल टू रियलाइज आर ड्रीम्स, समहाउ वी आर एबल टू यू नो एम्बिशियसली डू द थिंग्स वॉट वी वॉन्ट टू डू. डू यू ऑल एग्री विथ मी वॉट आई हैव सेड, चेजिंग योर गोल्स? बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल चीजें हैं, मैंने कोई थ्योरी नहीं लिखी है यहाँ पे, सारी ये प्रैक्टिकल डे टू डे हमारी लाइफ में हमारे साथ ऐसे ही होता है. तो हम एक स्टोरी छोटी सी मैंने लिखी नहीं है प्रेजेंटेशन में, आई विल जस्ट नरेट अ स्टोरी टू यू. सब लोगों को पता है फ्रॉग उछलता है, छोटे छोटे स्टेप लेके उछलता है बहुत. एक बार एक बहुत सारे फ्रॉग्स इकट्ठे जमीन पे थे, और अगर उन अपनी निगाहें ऊपर करके देख रहे थे कि बहुत बड़ा टीवी टॉवर है, एंड दे कलेक्टिवली

0: डिसाइडेड कि आज हम टीवी टॉवर पे क्लाइंब करके चले जाते हैं, राइट। तो चलना शुरू कर दिया उन्होंने ग्रुप में। थोड़े जो बहुत ज्यादा तेज छलांग मार सकते थे वो ज्यादा तेज आगे बढ़ गए, जो कम छलांग मार सकते थे वो पीछे पीछे थे। कुछ ने तो वहीं पे ग्राउंड पे ही छोड़ दिया और जोर जोर से आवाजें लगाने शुरू कर दी कि पागल हो, क्यों जा रहे हो, गिर जाओगे, इतनी ऊपर जा रहे हो, किसी के पैर के नीचे आ जाओगे, दब जाओगे, ऊपर पहुंच गए तो वापस कैसे आओगे, कोई आपको वहां से गिरा देगा। मतलब कि देवर शाउटिंग इन देयर ओन लैंग्वेज। तो तीन चार ऐसे फ्रॉग्स थे जो आगे बढ़ गए और टीवी टॉवर तक पहुंच गए, एंड दे वर वेरी हैप्पी रीचिंग द टीवी टॉवर, ऊपर टॉप में पहुंच गए, एंड दे सेड ओ गॉड इट्स अ ड्रीम फुलफिल्ड। और वहां से फिर नीचे आ गए क्योंकि उन्होंने अपनी यात्रा पूरी कर ली थी। वहां पे अपना झंडा लगा दिया उन्होंने कि हमने तो टीवी टॉवर के टॉप पे पहुंच गए। जब वापस आए तो नीचे जो फ्रॉग्स बैठे हुए थे उनकी वेट कर रहे थे, जो आधे रास्ते से वापस आ गए थे और जो गए ही नहीं थे, थॉट लेवल पे ही गिव अप कर दिया था, वो सारे बैठे। और उन्होंने वो दो तीन जो फ्रॉग्स थे उनसे एक एक करके पूछा कि तुम लोग कैसे चले गए वहां पे। और जो भी हमने तो इतना शाउट किया था, मत जाओ, डर रहे थे हम लोग, तो जिसने टॉप पे पहुंच गया था ना, वो फ्रॉग कहता है कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं आप क्या कह रहे थे मुझे, क्योंकि मैं तो बहरा था, वो फ्रॉग ही बहरा था, उसने कुछ सुना ही नहीं। लोग चिल्ला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसने आसपास परवाह ही नहीं करी कि क्या हो रहा है, क्या शोर आ रहा है, क्या नहीं आ रहा। बस उसके माइंड में तो एक ही था कि मुझे टीवी टॉवर पे जाना है। तो ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इसके टर्न ए डेफ ईयर टू क्रिटिक्स। तुम सुनो ही नहीं कि लोग क्या बोल रहे हैं, कि तुम्हारा मिशन इतना क्लियर है, तुम्हारा तुम्हारा गोल इतना क्लियर है कि आपको वो कंबाइन करना है। बाकी के दो से पूछा कि तुम्हारा क्या था, मतलब कि तुम कैसे चले गए ऊपर। तो उसने बोला कि हमने ये जो डेफ फ्रॉग था उसको फॉलो किया, बिकॉज हम यही सोच के चल रहे थे कि अगर ये हमारा लीडर है, हमें रास्ता दिखा रहा है, तो हम तो इसके पीछे पीछे चलेंगे, तो हम तो पहुंच ही जाएंगे ऊपर। तो हमने तो क्रिटिसिज्म को बॉदर ही नहीं किया, रास्ते में हमने किसी की परवाह नहीं करी और हम इसके पीछे पीछे पीछे पीछे चल के ऊपर पहुंच गए इसके साथ। तो ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे। और फ्रॉग बहुत टिमिड होता है, देखा जाए तो बहुत छोटा सा होता है, तो वो क्या टीवी टॉवर पे चढ़ने का, तो वो उसने तो अपनी लाइफ में इमेजिन ही नहीं किया होगा कि कभी टीवी टॉवर पे मैं चढ़ जाऊंगा। पर उसका गोल बहुत क्लियर था, उसका माइंड में बहुत ही पावर थी कि उसको चढ़ना है। और दो लोग जो उसके साथ चढ़े वो उसको ब्लाइंडली फॉलो कर रहे थे क्योंकि उनका ट्रस्ट फैक्टर था उसके ऊपर कि ये अगर चढ़ जाएगा तो हम भी चढ़ जाएंगे। तो ये इन नटशेल इस स्टोरी को आप प्लीज याद रखना, और अपने गोल्स को कैसे चेस करना है वो इस स्टोरी के माध्यम से, बहुत इजी स्टोरी है, और इस माध्यम से आप जरूर अपने गोल्स को चेस कर लोगे और पहुंच भी जाओगे। तो आई फाउंड दिस स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट लेट मी शेयर विद यू। बहुत लंबी स्टोरी थी, मैंने तो उसका जिस्ट बताया आपको। तो आई थिंक वी शुड लर्न फ्रॉम दीज स्मॉल स्मॉल स्टोरीज एंड अचीव आर बिग गोल्स। नेक्स्ट है प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व। हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर एक के काम में प्रॉब्लम्स है। वी ऑल फेस प्रॉब्लम्स इन लाइफ्स, वी एनकाउंटर हर्डल्स दैट सीम टू ब्लॉक आर प्रोग्रेस। बहुत सारे हर्डल्स आती हैं और हमारी जो अचीवमेंट है उसको वो ब्लॉक कर देती है। वी ऑलवेज डिस्कस एंड हाईलाइट द हर्डल्स एंड आर ऑब्सेस्ड बाय देम एंड फेल टू ऑब्जर्व द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी ओपनिंग अप इन फ्रंट ऑफ अस। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जब मैं पढ़ रही हूँ तो सुबह मैं जब अपनी टीम के साथ बात कर रही थी तो ये बहुत फिट बैठती है वहां पे, कि हम हाइलाइट्स करते हैं जो हर्डल्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, और हम उस इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं उसके साथ कि हम हमेशा फेलियर्स की ही बात करते हैं, पर उसमें से एक जो रे ऑफ होप है, जो एक सनशाइन की छोटी सी किरण है, हम उसको इग्नोर कर देते हैं, और उसमें से जो हमें अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं, जो हमारे सामने आने वाली हैं, हम उसको बिल्कुल ही उस ब्राइटनेस से नहीं देखते जैसे मैं एक सन की रे की ब्राइटनेस की बात कर रही हूँ। तो अल्टीमेटली वही है चीज जो मैंने पहली स्लाइड्स में बोला था कि हम हमेशा क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं, हम अपनी परेशानियों को ज्यादा लेके बैठ जाते हैं, हम अपने सॉल्यूशंस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं, और जो हमें अपॉर्चुनिटीज, कई बार ऐसे होता है कि हम 80% अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर जाते हैं और 20% में हम फिर नीचे डाउनफॉल आ जाता है। हम अपने आप को इतना स्ट्रांगली बना पाते कि हम 20% और मेहनत कर रहे हैं तो शायद हम आगे बढ़ जाएंगे। तो इस चीज का भी हर समय हमें ध्यान रखना चाहिए। मैं बहुत आई एम वेरी पॉजिटिव इन द सेंस कि आई एम वेरी आई नो एवरीथिंग कि चैलेंजेस क्या आते हैं, बट उन चैलेंजेस को लेके बैठे रहेंगे तो कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। पर अगर हम अपॉर्चुनिटीज को भी देखेंगे कि क्या है, तो तभी आपको पता है ट्रेनिंग्स में हम बहुत सारे साइंटिफिक टूल्स भी यूज करते हैं, स्वॉट एनालिसिस दिस दैट, पर द मेजर स्वॉट एनालिसिस इज योर थॉट प्रोसेस, विच इज द इनर वॉइस व्हाट इज टेलिंग यू, राइट? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। वी फोकस ऑन प्रॉब्लम्स रादर देन द सॉल्यूशंस। The psychologists have proved that what your mind focuses on that tends to grow. Scientists ये भी कहते हैं कि हमारे ब्रेन में 80% जो नेगेटिविटी है वो इतनी हावी हो जाती है कि हमें पॉजिटिव सोचने ही नहीं देती। पर हमें अपने आप को, अपने माइंड को, अपने ब्रेन को ऐसा ट्यून करना है कि हम हमेशा पॉजिटिव सोचें और अपॉर्चुनिटीज की तरफ बढ़ें। और अपॉर्चुनिटीज ऐसे डोर स्टेप पे तो बहुत ही कम आती हैं, अपॉर्चुनिटीज को भी चेस करना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटीज को चेस हम तभी कर सकते हैं जब हम 100% कमिटेड हैं अपने गोल की तरफ कि हमें ये करना ही करना है। अल्टरनेटिव्स आ जाते हैं, ये सारे जार्गन्स हैं, हम ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं ना कि हम एक अल्टरनेट स्ट्रैटेजी बना रहे हैं। व्हाट इज स्ट्रैटेजी? स्ट्रैटेजी इज लुकिंग फॉर अल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटीज। अगर एक रास्ता बंद है तो दूसरा रास्ता कहाँ खुल रहा है, तीसरा रास्ता हमें कहाँ लेके जाएगा, हम कैसे उस रास्ते पे चलें कि हम अपने जो पड़ाव है उनको पार कर लें। सो द प्रॉब्लम्स लुक बिगर, फोकस ऑन गैप्स एंड रिजॉल्व द प्रॉब्लम्स। द लास्ट पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अगर गैप्स को एनालाइज कर लें और हम उसके ऊपर बातचीत करें अपनी टीम के साथ कि हम इन गैप्स को कैसे रिजॉल्व करें, तो हमारे प्रॉब्लम्स के बहुत सारे सॉल्यूशंस हम खुद ही निकाल सकते हैं और हमें किसी से मदद लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट आई एम टॉकिंग अबाउट द बेस्ट क्वालिटीज ऑफ ए गुड लीडर्स आर विजन। ग्रेट लीडर्स हैव अ विजन, they can see into the future, they have a clear exciting idea of where they are going and what they are trying to accomplish and are excellent at strategic planning. maine bahut simple words mein pehli do slides mein bataya, ye definition hai ki great leaders vision hoti hai, hum bahut der se baat kar rahe hain iski, they can see the future, wo jo main ray of sunlight ki baat kar दे हैव अ वेरी क्लियर एक्साइटिंग आइडियाज, उनके आइडियाज बहुत क्लियर हैं, बहुत एक्साइटेड हैं, एंड दे आर गोइंग वेयर दे आर गोइंग एंड व्हाट दे आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश, वो उनको सब क्लियर है, एंड दे हैव वेरी एक्सलेंट वेरी गुड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग ऑल्सो। तो जो लीडर्स हैं उनमें ये सब हुनर है, और इन हुनर को शेप दे के वो कैसे आगे बढ़ सकते हैं वही विजनरी कहलाते हैं। दूसरा क्या है? करेज। वन ऑफ द मोर इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज ऑफ अ गुड लीडर इज करेज। अब वो फ्रॉग में तो करेज ही था जो नीचे से, जमीन से, खड्डे में से निकल के टीवी टॉवर पे क्लाइंब कर गया. हैविंग द क्वालिटी ऑफ करेज मीन्स दैट यू आर विलिंग टू टेक रिस्क इन द अचीवमेंट ऑफ योर गोल्स विथ नो एश्योरेंस ऑफ सक्सेस. अब आज अगर मैं कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती हूँ, मैं प्रपोजल लिखती है, स्मिता हम शुरू करते हैं प्रोजेक्ट, मुझे ये तो नहीं पता कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा. मैं बिल्कुल नहीं डिफाइन कर पाती हूँ. क्या मुझे पता था कोविड आ जाएगा जब हम प्रपोजल लिख रहे थे? पर हमने क्या किया, कोविड में हमने स्ट्रैटेजी चेंज कर दी. हम आईसीटी प्लेटफॉर्म पे आ गए और हम बेटर अचीव कर पाए क्योंकि हमने बहुत सारे लोगों को ऑनलाइन पे कनेक्ट कर लिया और हमारे कार्यक्रम कहीं पे भी रुके नहीं. तो करेज था कि हम कैसे करें. अभी बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं वो बंद पड़े हैं जो सितंबर 2020-21 में खुलेंगे. बट हम सेंटर्स भी खोल के बैठे हैं, हम ऑफिस भी खोल के बैठे हैं, हम ट्रैवल भी कर रहे हैं बिकॉज वी आर टेकिंग द रिस्क. वाई रिस्क? रिस्क इज नॉट ओनली फॉर माई ओन जॉब, रिस्क इज फॉर द वर्क द होल ऑल द सेंटर्स ऑफ रीड इंडिया इज डूइंग इन इंडिया. दे आर रीचिंग टू 400,000 प्लस पीपल. उनका क्या होगा, वो काम कहाँ जाएगा? वो गोल तो अचीव करना है हमें, तो वो कलेक्टिव गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हम रिस्क भी ले रहे हैं, राइट? और मुझे एश्योरेंस नहीं है सक्सेस की. मुझे आज नहीं पता कि रीड इंडिया का अगले साल एनुअल टर्नओवर क्या होगा बिकॉज बस हम मेहनत कर रहे हैं, हम प्रपोजल्स लिख रहे हैं, हम डोनर्स को कनेक्ट कर रहे हैं, हम एग्जिस्टिंग डोनर्स इफ बेनिफिशरीज हैं इस लाइन पे, मैं उनको भी एजुकेट करना चाह रही हूँ इस लेवल पे कि हमारे जो डोनर्स हैं हमारे साथ पिछले 6-6 साल से काम कर रहे हैं. क्या है? ट्रस्ट है. क्या देखते हैं? कि ग्राउंड पे हम अच्छा काम कर रहे हैं. क्यों हमारे साथ बातचीत करना चाहते हैं? क्योंकि हम उनको फुल रिस्पेक्ट और बहुत डिग्निटी से हम उनके सामने बात करते हैं. फोर्थ पॉइंट क्या है कि हम कभी भी झूठ नहीं बोलते हैं उनके सामने. जो रियलिटी है वही हम उनको बताते हैं कि ऐसे रियलिटीज हैं, ये चैलेंजेस हैं, हम इसको फेस कर रहे हैं. कोविड के दौरान हमने उनको बोला कि हम नहीं ट्रैवल कर पाएंगे. इट वॉज यूनिवर्सली नोन टू एवरीवन. बट हम आईटी प्लेटफॉर्म पे आ गए. आईटी प्लेटफॉर्म को कैसे यूज करना है? इमीडिएट नीड्स क्या है? कम्युनिटी की मास्क चाहिए, खाना चाहिए, सैनिटाइजर्स चाहिए. इमीडिएटली दे शिफ्टेड टू ऑल दीज थिंग्स. किसने उनको बोला करने के लिए? हम ही ने बोला. तो ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने हम पे विश्वास किया. और कोई ऐसा डोनर नहीं है एक्सेप्ट 1 or 2 अमॉन्ग 13-14 डोनर्स जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि किसी ने एक साल में ही हमारे साथ काम करके बंद कर दिया हो. दे ऑल आर कंटिन्यूइंग विद अस. सो बिकॉज देयर इज नो सर्टेनिटी इन लाइफ और बिजनेस, एवरी कमिटमेंट यू मेक एंड एवरी एक्शन यू टेक एंटेल्स अ रिस्क ऑफ सम काइंड. हम कुछ भी करते हैं उसमें रिस्क तो है ही है, पर हम रिस्क को सोच के बैठे रहेंगे तो हम नहीं कर पाएंगे. हम करके उस रिस्क को कैसे मिटिगेट करेंगे, वो हमारा एक्शन है, राइट? तो जब हम कहते हैं वर्ड्स थॉट्स एंड एक्शन, तो जब हम एक्शन लेते हैं तो हम रिस्क को साथ में लेके चलते हैं और रिस्क को मिटिगेट करना भी हमें सिचुएशंस सिखाती हैं, राइट? तो दिस इज वेरी गुड क्वालिटी ऑफ ए लीडर. आप लोग सब ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, आपका रोजमर्रा का ये काम है कि आप क्या रिस्क आपके सामने आ रहे हैं, क्या चैलेंजेस आ रहे हैं. और आपको नहीं पता, आपको पता था आपके स्कूल बंद हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं पता था. आपने जब स्कूल चलाए थे तो आपने हमें तो नहीं ये कमिटमेंट दी थी कि एक साल के बाद हम आपको इतना प्रॉफिट देंगे, क्योंकि हम बिजनेस की तो बात ही नहीं कर रहे थे. तो चैलेंजेस हमने भी समझे आपके, हमने कॉन्टिन्यूसली सपोर्ट दी, बट विजन हमारी एक थी कि हम पूरे भारत में स्कूल चलाएंगे, हम पूरे भारत में लाइब्रेरीज बनाएंगे, हम पूरे भारत में औरतों को सक्षम करेंगे, हम पूरे भारत में आत्मनिर्भरता का नारा लगाएंगे कि हमने औरतों को सक्षम बनाया, वो अब अपना पैसा कमा रही है, चाहे 2,000 कमाएं, चाहे 4,000 कमाएं, चाहे 6,000 कमाएं. राइट, और हमारी कोशिश हमेशा रहेगी उनको हम 2000 से 6000 तक लेके जाए, 6000 से 12000 तक लेके जाए, ये कोशिश हमने करनी करनी है। सेंटर्स को सेल्फ सस्टेन करना है, ये हमारा गोल है, हमारा मिशन है, हम कैसे करें उसको हमें करना है। जो मैं अभी ट्रूथफुलनेस की बात कर रही थी, इंटीग्रिटी में वही लिखा हुआ है, इंटीग्रिटी रिक्वायर्स दैट यू ऑलवेज टेल द ट्रूथ टू ऑल पीपल इन एवरी सिचुएशन। ट्रूथफुलनेस इज द फाउंडेशन क्वालिटी ऑफ द ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर द सक्सेस ऑफ एनी बिजनेस। कुछ भी हम कर रहे हैं तो हमारा ओपननेस ट्रस्ट फैक्टर इतना स्ट्रांग होना चाहिए हर एक सिचुएशन पे, क्योंकि हम मैं ये डेफिनेशंस क्यों शेयर कर रही हूँ आपके साथ, क्योंकि हम एक सोशल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो उसमें ट्रस्ट फैक्टर बहुत जरूरी है। इवन बिजनेस में भी बहुत जरूरी है। मैं ये नहीं कहूंगी कि बिजनेस में तुम झूठ बोल सकते हो, जितना तुम सच बोलोगे, जितने तुम ट्रांसपेरेंट रहोगे, उतना आपका बिजनेस फ्लरिश करेगा। द बेस्ट क्वालिटीज अगेन अनदर इज ह्यूमिलिटी। ह्यूमिलिटी डज नॉट मीन दैट यू आर वीक और अनश्योर ऑफ योर सेल्फ, राइट। इट मीन्स दैट यू हैव द सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ अवेयरनेस टू रिकग्नाइज द वैल्यू ऑफ अदर्स विदाउट फीलिंग थ्रेटन्ड। समझ में आया सबको? मतलब कि अगर मैं बहुत ही हलीमी से बात करती हूँ, बहुत रिस्पेक्टफुली बात करती हूँ, बहुत प्यार से बात करती हूँ, दैट डजेंट मीन कि मैं कमजोर पर्सनैलिटी हूँ या मुझे अपने के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है। इसका ये मतलब है कि मैं बहुत हलीमी से बात कर रही हूँ, पर मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत स्ट्रांग है, मैं सेल्फ अवेयर हूँ, और मैं जो लोग मुझे वैल्यू मेरे में वैल्यू देखते हैं वो तो मेरे लिए थ्रेट नहीं है, पर अगर मेरी वैल्यूज के ऊपर मतलब कि दे आर थ्रेटनिंग मी, तो आई एम नॉट टेकिंग दोस, राइट। तो ह्यूमिलिटी पर्सनालिटी में लाना बहुत जरूरी है। दिस इज वन ऑफ द रेयरर एट्रीब्यूट्स और ट्रेट्स ऑफ गुड लीडर्स बिकॉज इट रिक्वायर्स कंटेनमेंट ऑफ वन ईगो। अपनी ईगो को हम पैरों में लेके चलते हैं, क्योंकि हम ईगो को अगर सिर पे लेके चलेंगे तो हमें हर एक की बात बुरी लगेगी, हमें हर एक का कमेंट बुरा लगेगा, हम क्रिटिसिज्म में चले जाएंगे, हम पॉजिटिव सोच को नेगेटिव में बदल देंगे। पर अगर हम अपनी ईगो को अपने शूज में डाल के रखेंगे तो हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो माइंड है, जो हमारी सोच है, वो इतनी क्लियर होगी और वो हमारे गोल के ऊपर फोकस करेगी विदाउट एनी सेल्फिश इंटरेस्ट, राइट। इट मीन्स दैट यू आर विलिंग टू एडमिट यू कुड बी रॉन्ग, दैट यू रिकग्नाइज यू मे नॉट हैव द आंसर्स, बट इट मीन्स दैट यू गिव क्रेडिट वेयर क्रेडिट इज डू, विच मैनी पीपल स्ट्रगल टू डू। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि हम कहते हैं कि ये फ्लैग तो हमारे कंधे पे ही लगना चाहिए। हम कभी भी अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं होते और हम अपनी गलतियां दूसरों के ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं कि ये अगर गलत हुआ तो उसकी वजह से हुआ। मैं तो ठीक था, बिल्कुल, मैं तो टीवी टावर पे चढ़ रहा था, अगर वो डेफ नहीं होता तो वो किसको ब्लेम करता जो नीचे से शाउट कर रहे थे फ्रॉग्स, जो आधे रास्ते से उनको कह रहे थे वापस चलो वापस चलो, जो नीचे से कह रहे थे ये तो पागल है, इनका तो दिमाग खराब है, टीवी टावर पे चढ़ के क्या करेंगे। पर इसका ये मतलब नहीं था कि वो नहीं चढ़े, पर उसने क्रेडिट किसको दिया? जो दो लोग दूसरे थे, दो फ्रॉग्स दूसरे थे, उसने क्रेडिट किसको दिया? जो डेफ था उसने उसको दिया कि मैंने तो कुछ सुना ही नहीं शोर, और जो दो वो थे उसने बोला हमारा लीडर चढ़ रहा था तो हम भी चढ़ गए। लीडर एक दूसरे को क्रेडिट देना भी एक बहुत बड़ी कला है कि अगर हम कुछ अचीव करते हैं तो टीम की वजह से अचीव करते हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर पाते हैं, तो क्रेडिट भी देना बहुत जरूरी है। और ये अपनी पर्सनालिटी में आप इम्बाइब कर सकते हैं। ये जो तीन क्वालिटीज मैं ह्यूमिलिटी की बता रही हूँ, ये बहुत लाइफ में पे करती हैं इन द लॉन्ग रन, इतनी ज्यादा पे करती है ना कि इसका इम्पैक्ट आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, राइट। और ये ऐसी क्वालिटीज हैं तीनों की, वो कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली आपकी पर्सनालिटी के साथ इतनी इम्बाइब हो जाती हैं कि आपकी पर्सनालिटी ही वही बन जाती है। तो अगर एक लीडर बनना है तो इसके ऊपर आप जरूर फोकस करिए, और जो बाकी के तीन है ना, विजन, करेज और इंटेग्रिटी, ये अपने आप आ जाते हैं। बिकॉज इफ यू हैव दिस ह्यूमिलिटी एज योर पर्सनालिटी ट्रेट, देन द रिस्पॉन्स इज 100% श्योर, यू विल डेफिनेटली गेट द रिस्पॉन्स, उसमें कोई दो राय वाली बात ही नहीं है। द बेस्ट क्वालिटीज में तीसरा आ रहा है ये स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। लीडर्स हैव द एबिलिटी टू एंटिसिपेट ट्रेंड्स वेल इन एडवांस ऑफ देयर कॉम्पिटिटर्स। कॉम्पिटिटर्स तो हर एक जगह पे ही होते हैं, एनजीओस मशरूम कर रही हैं इतनी, पर हम उनको थ्रेट ना मान के अगर हम उनके ट्रेंड्स को समझ लें कि वो क्या कर रहे हैं और हम क्या करें, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें, तो ये बहुत अच्छी बात होती है। दे कॉन्टिन्यूअली आस्क बेस्ड ऑन वॉट इज हैपनिंग टूडे, वेयर इज द मार्केट गोइंग, वेयर इज इट लाइकली टू बी इन 3 months, 6 months और 1 year और 2 years। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, अब आप सब लोग प्रोडक्शन यूनिट्स भी चला रहे हैं और वोकेशनल सेंटर्स भी चला रहे हैं। अब आने वाले टाइम में जो एनजीओस पॉलिसी लेवल पे काम कर रही हैं, उनको फंडिंग नहीं मिल रही है, बिकॉज सरकार कहती है हमें तो अभी मतलब कि ग्रास रूट्स में काम चाहिए, राइट? तो हम लोग क्या है, अगर हम अपने कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो हम एक बेटर स्टेक पे हैं कि हमारे फंड्स क्यों नहीं बंद हो रहे हैं, क्योंकि हम उन लोगों के साथ काम कर रहे हैं जिनको जरूरत है, जिनके साथ हमें अभी काम करना है, उनको सक्षम बनाना है। तो दैट्स वाई द डोनर्स, जब मैं कह रही हूँ कि वो हमें पिछले 5 साल से 6 साल से सपोर्ट करें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम ग्राउंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, ग्राउंड पे काम कर रही है। और जब हम मैं बिजनेस की बात करती हूँ, तो ये सोच आपको बनानी है जब आप अपने सस्टेनेबल एंटरप्राइजेस की बात करें कि मार्केट क्या मांग रही है, अगले 3 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, अगले 6 महीने में मार्केट क्या मांगेगी, और अगले 2 साल में क्या ट्रेंड्स होंगे। दे डू दिस थ्रू थॉटफुल स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। और ये इतना बड़ा गैप है हमारे लीडर्स में जो हमारे सेंटर्स चला रहे हैं, कि हम इस पे सोच नहीं बना रहे हैं, राइट? हम आज के बारे में सोचते हैं और 1 महीने के बारे में सोचते हैं, पर उसके बियॉन्ड हम सोच ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हम इतने इंग्रॉस्ड हैं और सब चीजों में, हम ये सस्टेनिंग एंटरप्राइज को लेके फोकस नहीं हो पा रहे हैं। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग कॉम्पिटेटिवनेस, ओनली द लीडर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस दैट कैन एक्यूरेटली एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट्स कैन पॉसिबली सर्वाइव। ओनली लीडर्स विद फोरसाइट कैन गेन द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। फर्स्ट मूवर एडवांटेज क्या होती है, कि हम जितने लोग और भी काम कर रहे हैं उनसे हम आगे एलोन कैसे, सबसे आगे कैसे स्टैंड करें। तो ये जब हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, अब मैं बात रीड इंडिया की नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, अब मैं आपके इंडिविजुअल सेंटर्स की बात कर रही हूँ, उसको मैं नाम दे रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन। हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कैसे आगे लेके जा सकते हैं, क्या आप लोग मुझे एक पेज विजनरी नोट लिख के दे सकते हैं दैट यू रिफाइन एंड मेक एज योर गोल, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वेन वी आर टेकिंग लीडरशिप ट्रेनिंग्स। दिस इज द प्रैक्टिकल एक्शन विच यू कैन डू फॉर योर सेल्फ, राइट? तो मैंने पिछली बार जब वो उनकी ट्रेनिंग हुई थी स्टोरी टेलिंग की सैटरडे को, तो मैंने बोला था कि आप अपने सेंटर्स के बारे में अपनी अपनी स्टोरी, जब से शुरू हुआ, कैसे हुआ, आप क्या कर रहे हो, क्या करना चाहते हो, दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट, कि आप जहाँ बैठे हो आपको इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या विजनरी हो उसको कहाँ लेके जाना चाह सकते हो, क्या आप लिख के दे सकते हो मुझे? दैट विल बी अ ग्रेट ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल ऑफ यू, राइट? द फोकस ऑन द स्ट्रेंथ्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑन द थिंग्स दैट द कंपनी डज बेस्ट इन सेटिस्फाइंग डिमांडिंग कस्टमर्स इन ए कॉम्पिटेटिव मार्केट प्लेस. आप किस पे फोकस कर रहे हो? अपनी ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथ. आपकी स्ट्रेंथ क्या है? आप बच्चों को पढ़ा रहे हो, आपके पास बुक्स हैं, आपके पास कंप्यूटर्स हैं, आप डिजिटल लिटरेसी की बात कर रहे हो. जिनको कंप्यूटर्स नहीं आता, कभी आपने उनको बोला कि आगे आने वाले टाइम पे देखो कोविड ने ही हमें सिखा दिया कि हमें डिजिटल प्लेटफॉर्म आना चाहिए. जिनको नहीं आता, दे आर हाईली क्वालिफाइड बट दे आर अनएजुकेटेड. बिकॉज अगर कंप्यूटर यूज करना नहीं आता तो हम अपनी लाइफ को आगे कैसे चलाएंगे? मुझे पेटीएम नहीं आता था, मैंने पेटीएम सीखा. मुझे बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स ऑनलाइन नहीं आती थी, मैंने बैंकिंग ट्रांजेक्शन सीखी. बिकॉज बैंक कह रहे थे कि 60+ के लोगों को हम बैंक आना अलाउ नहीं करेंगे, हम नहीं एनकरेज करते. तो टाइम ने मुझे सब कुछ सिखाया. इसी तरह से अगर हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की स्ट्रेंथ को पहचानेंगे, हम एक पेपर पे लिखेंगे कि हम क्या कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं, कैसे हम, हमारे कस्टमर्स कौन है, हमारे बेनिफिशियरीज, राइट? और हम उनको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हैं अपनी सर्विसेज से, हम कैसे इसको सेल्फ सस्टेन बना सकते हैं, दैट यू पीपल हैव टू टॉक एंड डिसाइड, राइट? Your ability as a leader to call the shots and make sure that everyone is focused and concentrated on the most valuable use of their time is essential to the excellent performance of the enterprise. मैंने जान के ये business language लिखी है यहाँ पे, because हमारा 1/3 focus organization का enterprise ही है. तो इसका ये भी मतलब है कि क्या हम अपना टाइम जो 8 घंटे 10 घंटे हम लगा रहे हैं वो हम फ्रूटफुली यूज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. एवरी डे वेदर इट्स एडिंग वैल्यू टू माय ऑर्गेनाइजेशन और नॉट, ये बहुत जल्दी आपके ऊपर भार आने वाला है. ये बहुत जल्दी अभी आप अपनी संस्था को चलाने के लिए आगे बढ़ेंगे और ये सारे पॉइंट्स आपको उस समय याद आएंगे कि गीता मैम ने ये सारे पॉइंट्स हमें बताए थे, राइट? The last point is cooperation. Gain the cooperation of others by making a commitment to get along well with each key person every single day. रोज आप अपने connections, अपनी networking, अपने staff का teamwork को हमेशा ये सोचो कि हम कैसे refine करें इसको, हम कैसे इकट्ठे आगे बढ़ सकते हैं, किसमें क्या स्ट्रेंथ्स हैं. आपको मैं ये भी बोलूंगी कि आप ये एक एक्सरसाइज करो, मैं भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन में रीड में करूंगी कि हमारे जितना स्टाफ है 5, 6 हैं, हमारी स्ट्रेंथ्स क्या क्या हैं, हम क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम द जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच द ऑर्गेनाइजेशन हैज गिवन. सी दीज 5 जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैव बीन गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन. These 5 qualities I have the strength, I can contribute additionally. Do this exercise. This will really help you to do that, right? You always have a choice when it comes to a task. You can do it yourself or you can get someone else to do it for you. Which is it going to be? Ye exercise aapko bahut bahut help karegi. मैं दोबारा से ये पॉइंट्स पढ़ना चाहूंगी आपके सामने. बहुत इम्पोर्टेंट है विजन, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन. ठीक है, आप इनको सेल्फ एनालिसिस भी करें और ये 7 पॉइंट टीम में बैठ के डिस्कस भी करें. और जो एक्शन पॉइंट्स मैंने बताया, अगर आप उन पे फोकस करेंगे तो आई एम 100% श्योर यू कैन रीच द टीवी टावर, राइट? लीडरशिप स्टाइल, बहुत सारे लीडरशिप स्टाइल हैं, बहुत सारे, बट मैं जो हमारे को सूट करता है वो है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप. ट्रांसफॉर्मेशनल, हम कहते हैं ना ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज, हम ऐसे ही थोड़ा लिख रहे हैं उसको, अभी हम डायरी प्रिंट करा रहे हैं आप सब लोगों के लिए, उसके ऊपर लिखा है 14 years ऑफ सर्विस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग कम्युनिटीज। झूठ तो नहीं लिख सकते ना, हम कर रहे हैं तभी तो हम लिख रहे हैं ना। इज ऑफन डिफाइंड एज ए सिंगल मोस्ट इफेक्टिव स्टाइल। दिस स्टाइल वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड ड्यूरिंग द लेट 1970s एंड लेटर एक्सपेंडेड अपॉन बाय रिसर्चर बर्नार्ड एम बास। मैं क्यों ये बोलना चाह रही हूँ कि ये जो जार्गन्स हैं ये कहीं ना कहीं सच हुए हैं और तभी हम इनको आगे लेके चल रहे हैं और हम इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। दीज लीडर्स टेंड टू बी इमोशनली इंटेलिजेंट, एनर्जेटिक एंड पैशनेट। दे आर नॉट ओनली कमिटेड टू हेल्पिंग द ऑर्गेनाइजेशन अचीव इट्स गोल बट ऑल्सो टू हेल्पिंग ग्रुप मेंबर्स फुलफिल देयर पोटेंशियल। ये एक सेंटेंस में मैंने समराइज किया है जो लास्ट 7 points मैंने बताए हैं एक लीडर की क्वालिटीज के बारे में। अब लीडर की क्वालिटीज तो बता दी कि लीडर को करना क्या है। पहले तो हमने गोल्स भी चेज करे, फिर हमने अपने वो पॉइंट्स भी यहाँ पे हाईलाइट करे बेस्ट क्वालिटीज के। फिर अभी हम कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप बेस्ट है क्योंकि वो इमोशनली इंटेलिजेंट है। इमोशनली इंटेलिजेंट का मीन्स है कि मैं दूसरों के पर्सनालिटी की कदर करती हूँ, उनके थॉट्स की कदर करती हूँ, उनके जो वॉट एवर दे आर शेयरिंग और सेइंग और हेल्पिंग आई रिस्पेक्ट दैट। और ये एनर्जेटिक भी है और पैशनेट भी है, तो इन सबको कंबाइन करके हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को कैसे अचीव कर सकते हैं ये हमें बहुत ध्यान रखना है। रिसर्च शोज दैट दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप रिजल्ट्स इन हायर परफॉर्मेंस। अगर आप ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप हैं तो उसकी परफॉर्मेंस हमेशा हायर होगी एंड मोर इम्प्रूव्ड ग्रुप सेटिस्फेक्शन। आपको सेटिस्फेक्शन होगी कि जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपकी सोच के मुताबिक कर रहे हैं, हमारी सोच कॉमन है, हमारे हमारे थॉट्स कॉमन है और हमारे एक्शन भी कॉमन है। तो ये इस पे रिसर्च हो चुकी है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप स्टाइल है ये हमेशा संस्था को आगे लेके जाता है, कभी भी संस्था को पीछे नहीं करता है क्योंकि हम डिक्टेटर नहीं हैं। हम मींस रॉब से और दबाव से काम नहीं करा रहे हैं, हम लोगों को मोटिवेट करके काम करा रहे हैं, हम लोगों को इंस्पायर करके काम करा रहे हैं। तो यही एक ऑर्गेनाइजेशन को आगे लेके जाने का बेस्ट तरीका है। द लास्ट स्लाइड इज कि जब हम मोटिवेशन की बात कर रहे हैं, मैंने अभी मोटिवेशन वर्ड यूज करा था, तो मोटिवेशन है क्या चीज? हम बहुत वर्ड यूज करते हैं कि हम मोटिवेशन कर रहे हैं, हम मोटिवेट कर रहे हैं, पर उसको समझने की भी जरूरत है। मोटिवेशन इज द प्रोसेस दैट इनिशिएट्स, गाइड्स एंड मेंटेन्स गोल ओरिएंटेड बिहेवियर्स। इट इज व्हाट कॉजेस यू टू एक्ट। मोटिवेशन ये नहीं कि हमने दो बात कर दी तो मोटिवेट हो गए हम, हमें उसको एक्शन में कैसे लाना है, अपने बिहेवियर में कैसे लाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 3 points हैं इसके, एक्टिवेशन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। हम मोटिवेट तो करके हम अगर चुप करके बैठ जाएंगे तो कोई भी मोटिवेट नहीं होगा। उसके साथ हम बोलते हैं ना कि हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं। हैंड होल्डिंग का क्या मतलब है कि हम उनके साथ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन मतलब कि वी आर वॉकिंग विद देम, राइट, वी आर डूइंग वर्क विद देम। और परसिस्टेंस जो मैंने बोल रहा था, परसिवेरेंस, एक स्लाइड में पिछले 3-4 सेशन में मैंने बात की थी परसिस्टेंस की, हम कितना उसको कॉन्टिन्यूसली करते हैं चाहे फेलियर्स आए चाहे चैलेंजेस आए, और किस इंटेंसिटी के साथ करते हैं। अगर हम एक्टिवेशन, परसिस्टेंस और इंटेंसिटी को कंबाइन करके हम एक्शन ओरिएंटेड काम करते हैं तो तभी हम कह सकते हैं कि हम किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, राइट। हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड का पीछे मीनिंग होता है। बहुत सारे, मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। हम ट्रेडमिल पे चढ़ते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, राइट, हम बटन दबाते हैं तो ट्रेडमिल चलता है, तो हम क्या करते हैं, हम उसको एक्टिवेट कर देते हैं ट्रेडमिल को, हम चल रहे हैं, हम 2 मिनट करते हैं, हम थक जाते हैं, हमारी बॉडी हमें बोलती है कि नहीं अब हम नहीं और भाग सकते। वही मैं ब्रिगेडियर वाला एग्जाम्पल ले रही हूँ कि पहले तो तुम अपनी लेग से भाग रहे थे, अब अपने माइंड से भागो। तो हम परसिस्ट करते हैं, हम घड़ी देखते हैं, अच्छा 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। जब हम 10 मिनट ट्रेडमिल पे भाग लेते हैं इंटेंसिटी के साथ, तो क्या हुआ, हमारा जो हमारे पसीने भी छूटते हैं, हमारा वेट भी कम होता है, तो हम स्लोली अपने गोल पे पहुंच रहे हैं कि आज मुझे अगर 1 महीने में मुझे 10 किलो वेट कम करना है, तो मुझे ट्रेडमिल में 10 मिनट से कम नहीं भागना है। राइट, दैट इज मोटिवेशन, दैट इज सेल्फ मोटिवेशन। और जो जिम में कोच होता है वो आपको मोटिवेट कर रहा है, इंटेंसिटी आपकी वर्ड आ रहा है, आपको परसिस्टेंस की बात कर रहा है, आपको बोल रहे ट्रेडमिल पे भागो। बहुत सिंपल एग्जाम्पल से मैंने आपको ये चीज समझाई कि मोटिवेशन है क्या। हमारे यहाँ पे लड़कियां आती हैं सीखने के लिए और हम बीच में ही छोड़ देते हैं उनको, वो चली जाती हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं हम उनको मोटिवेट इन तीनों पॉइंट से नहीं कर पा रहे। राइट, तो ये बहुत जरूरी है। Help improve the efficiency of people as they work towards goal. Efficiency improve करने की जरूरत है. Help people take action. Encourage people to engage in health-oriented behaviors. Health-oriented behaviors मतलब कि अगर तबीयत ही खराब हो गई तो वो सेंटर में तो आएगी नहीं. Right? Help people avoid unhealthy and मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स। ये दूसरा रिस्क मैं बात कर रही हूँ कि जो अनहेल्दी प्रैक्टिसेस है उसको रोकने की जरूरत है। राइट, बहुत जरूरत है रोकने की, क्योंकि हम हमारा माइंड इतना नेगेटिव भागता है कि हम छोटी छोटी बात पे दूसरों के ऊपर डाउट करना शुरू कर देते हैं, हमें विश्वास ही नहीं बैठता। ये ह्यूमन टेंडेंसी है, पर इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, अगर हम ट्रांसपेरेंट हैं, है ना, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टवर्थी है, जो मैंने पीछे क्वालिटीज बताई हैं, अगर उसको हम मद्देनजर रखेंगे तो हम एक दूसरे पे डाउट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि सब कुछ ट्रांसपेरेंट चल रहा है यहाँ पे। हेल्प पीपल फील मोर इन कंट्रोल ऑफ देयर लाइव्स, बहुत इस पे हम बात कर चुके हैं, 10 स्केल फॉर्मूला ही इस पे है। इम्प्रूव ओवरऑल वेलबींग एंड हैप्पीनेस। तो ये मैं आप सबको समझाना चाह रही थी थोड़ा, क्योंकि मेरी 7 प्रेजेंटेशंस थोड़ी लाइट थी, ये थोड़ी सी मैंने टफ की है। बिकॉज किस लिए टफ की है, ये पॉइंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों को समझने के लिए, एक लीडरशिप को करना क्या है, एक लीडर में क्या क्या होना चाहिए। अगर मैं इसको रिट्रेट करूँ, आप प्रेजेंटेशन स्टाइल देखेंगे कि मैंने गोल्स की पहले बात की, फिर मैंने एक लाइट सी स्टोरी सुना दी, फिर उसके बाद मैंने बोला कि हम नेगेटिव ना सोचें, हम प्रॉब्लम्स को ना फोकस करें, हम उसमें जो एक सूर्य की किरण आ रही है उसकी तरफ देखें और आगे बढ़ें। फिर मैंने बेस्ट क्वालिटीज क्या है लीडरशिप की, उस पर मैंने 7 क्वालिटीज की बात की, विजनरी, करेज, इंटेग्रिटी, ह्यूमिलिटी, देन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, फोकस एंड कोऑपरेशन। ये एक संस्था के करेक्टरिस्टिक्स भी हैं। ये 7 करेक्टरिस्टिक्स इतने इम्पोर्टेंट है कि अगर हम इसको एक को भी इग्नोर कर देंगे तो ऑर्गेनाइजेशन नीचे चली जाएगी, वो ग्रो ही नहीं कर पाएगी। फिर उसके बाद मैंने लीडरशिप स्टाइल की बात करी कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या होता है, इमोशनली इंटेलिजेंट, वो वीक नहीं होता है, पर लोग उसको वीक समझते हैं, पर उसमें इतनी पावर होती है कि वो कैसे सबको अपने पैशन के साथ जोड़ के रखे। राइट, और लास्ट है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप की बात करें तो हम मोटिवेशन की बात करें, पर मोटिवेशन का मतलब क्या है। आप हमेशा कहते हो कि हम अपनी कम्युनिटी को बहुत मोटिवेट करते हैं, पर अब आप इन 3 पॉइंट्स के साथ मोटिवेट करके देखना रिजल्ट में क्या चेंज आता है। एक्शन, परसिस्टेंस एंड इंटेंसिटी। राइट, इन तीनों के अगर मीनिंग चाहिए, एक्शन मतलब कि हम काम करें, परसिस्टेंस मतलब कि हम अपना उसको लगातार करें, और इंटेंसिटी कि हम अपनी पूरी एनर्जी उस काम में लगा दें और उसको फेलियर नहीं होने दें। दैट इज द आउटकम ऑफ मोटिवेशन। दैट्स ऑल. आज मैंने बहुत बोला है, 4 बजने वाले हैं. तो किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, मैं एक्सप्लेन करने के लिए तैयार हूँ इसको. ठीक है, 5 मिनट है हमारे पास. हाँ, और ये स्लाइड्स रो हमेशा हर सेशन के बाद आपके पास आती हैं. मैं आप सबको एनकरेज करूंगी कि इस स्लाइड्स को पढ़ के आप अपनी एक डायरी लिखनी शुरू कर दें कि हर पॉइंट में आप कैसे अपनी लाइफ में उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, आप उसको कैसे इम्बाइब कर रहे हैं अपने एक्शन लेने के लिए, आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे चेंज कर रहे हैं इन पॉइंट्स के अलावा. अगर ये आप होमवर्क करेंगे तो इट विल हेल्प यू सो मच, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ. राइट, आप प्लीज ये करिए. आपका जरूर 10 मिनट रात को ज्यादा जाएगा इस पे, पर अगर 8 स्लाइड्स हैं, 8 स्लाइड्स के ऊपर आप हर पॉइंट पे एक एक लाइन भी लिख लेंगे या एक स्लाइड के ऊपर एक पॉइंट लिखेंगे तो आपकी डायरी में 10 पॉइंट आ जाएंगे लिखने के लिए. आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, आपकी सोच बढ़ेगी, आपका विजन स्ट्रांग होएगी और आप एनकरेज फील करेंगे और आप बहुत वेल डिफाइंड अपने अपने शार्प कर लेंगे अपने विजन को और एक्शन उसी तरीके से लेंगे. ये मैं गारंटी लेती हूँ इस चीज की, आप करके देखिए. ये सारे मैनेजमेंट के लेसन्स हैं जो मैं बहुत मेहनत करके इसको आपके मतलब कि लाइक आई ब्रिंग दैट इन टू ए डिस्कशन लेवल कि कहाँ मैं ये लीडरशिप आपको समझा सकती हूँ. ठीक है, थैंक यू वेरी मच. जस्ट 5 मिनट्स फॉर एनी क्वेश्चन आंसर्स, आई एम ओपन फॉर दैट.
1: ये आपने बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल दिया कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए। ब्लेम करके ही हम अपने अपने अच्छे अच्छे काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन कुछ फेलियर कहीं हो किसी बात में तो दूसरे को ब्लेम कर जाते हैं हम लोग।
0: हाँ
1: तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग यू टोल्ड अस कि ब्लेम गेम नहीं होना चाहिए, एंड हर चीज में वी शुड ऑलवेज टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस, पर्सनल लाइफ में भी अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी।
0: बिल्कुल,
1: हमेशा कोई चीज
0: पता
1: हो जाती है, घट
0: है
1: जाती है।
0: बहुत बहुत मायने रखता है ये पर्सनल लाइफ में, मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमें ना सुनने की क्षमता होनी चाहिए. हम ना
1: जी
0: सुनने
1: मैम,
0: की अपनी जो स्किल है ना उसको हम हमेशा बहुत कम टाइम देते हैं. हम हमेशा अपने बोलने की स्किल को ज्यादा टाइम देते हैं. ये ह्यूमन
1: हाँ जी,
0: बिहेवियर है, टेंडेंसी है. वेरी नाइस,
1: यस
0: कंटिन्यू.
1: मैम, हाँ जी। हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे तो और हम डिमोरलाइज हो जाते हैं उन्हीं प्रॉब्लम्स को रिपीटेडली व्हेन वी टॉक अबाउट, तो लगता है तो गई, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब कैसे ठीक होगा। तो हो चुका, वो तो घट गया, उसको तो अब असाइड करके, तो उसके बाद फैमिली में भी बैठे हुए हैं या अपने स्टाफ के साथ भी आप बैठे हुए हैं, सबके व्यूज लेके फटाफट फटाफट आप सॉल्यूशंस के बारे में बात करो, फिर वो प्रॉब्लम फिर छोटी लगने लग जाती है। तो ये आपने बहुत ही सुंदर पॉइंट बताया कि रे ऑफ आप देखिए हर चीज में, पूरा डार्क नहीं होता कभी भी, कहीं ना कहीं एक सनशाइन होती है, एंड वी शुड चेज दैट एंड वी शुड फॉलो दैट, और हमेशा सॉल्यूशंस के बारे में बात, प्रॉब्लम्स को फटाफट रिजॉल्व करें। ये आप बता रहे थे, दिस वाज वेरी नाइस
0: वेरी
1: मैम,
0: नाइसली
1: थैंक
0: समराइज.
1: यू सो मच।
0: थैंक यू सो मच फॉर समराइजिंग दिस वेरी वेल. एनीबडी एल्स? थैंक यू सीमा, आपने तो बड़ी प्रॉब्लम मेरी सॉल्व कर दी. मुझे लग रहा था कि मैं ही बोलती जा रही हूँ, पर आपने समराइज करके तो बहुत उसको इजी बना दिया.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।
2: गुड इवनिंग मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। जी मैम, जैसा सीमा मैम ने बोला और आपके हमने ट्रेनिंग में ये सुना भी था, आपने बहुत पहले ही बोला था कि प्रॉब्लम्स को क्रिएटिव माइंड के थ्रू आप सॉल्व करते हैं। आपकी एक आदत है कि आप उस प्रॉब्लम को लेके बैठते नहीं है और उसको आप क्रिएटिव माइंड के थ्रू, अभी लास्ट स्मिता मैम ने भी हमें फ्राइडे में बताया था लाइफ स्किल्स की ट्रेनिंग में, आपका ये एग्जांपल देके, और मैंने उसको ना एक जेस्ट कर लिया इस पॉइंट को, और उस पॉइंट पे अब मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 3-4 दिन से। मैं इस पे बहुत फोकस करके प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे सामने जो भी प्रॉब्लम आ रही है, मैं पहले क्या होता था कि जो प्रॉब्लम आती थी अगर उसका सॉल्यूशन नहीं निकलता था तो मैं हार मान के बैठ जाता था, और एक टेंशन दिमाग को होती थी, बहुत ज्यादा डिप्रेशन सा लगता लगता था कि यार अब क्या होगा कैसे होगा, बट जब मैंने इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, मतलब जैसे सीमा मैम ने बोला कि प्रॉब्लम्स को हम असाइड कर दें और उसके सॉल्यूशन के ऊपर बात करें, तो अब सेम वही मैं करना स्टार्ट करा है, तो इतना मतलब लग रहा है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल ही जाता है जब उसके ऊपर दिमाग लगाओ और उस पर करते रहो फोकस, कि कुछ तो आएगा हल, कुछ तो आएगा, वो अल्टीमेटली आता है, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, भले से थोड़ा सा ही आए लेकिन आता है, उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। रियली थैंक यू मैम, आपने मतलब इतने अच्छे से उसको समझाया था कि वो दिमाग में एकदम बैठ गया है।
0: नहीं, बहुत अच्छी बात है। और ये अगर हम सोचते ही रहेंगे प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स प्रॉब्लम्स, तो हमारे कंधे के ऊपर जो बैग है ना, वो इतना भर जाएगा कि एक दिन वो इतना भारी हो जाएगा कि हमें दबा देगा वो। पर अगर हम हर प्रॉब्लम का सलूशन लेके वो बैग हम खाली करते रहेंगे, तो वी विल फील लाइट, हमारा ब्रेन लाइट फील करेगा और हम कुछ नया सोच पाएंगे करने के लिए। तो जो अपने कंधे के ऊपर बैग लेके हम चलते हैं ना, उसको बस ये याद रखिए कि हमें लाइट ही रखना है। देयर एंड देन यू फाइंड अ सॉल्यूशन एंड स्टार्ट एक्शन ऑन दैट, राइट?
2: यस बिल्कुल। और एक चीज और कि हम कभी भी, मेरे साथ अक्सर ये होता है कि मैं बहुत आगे तक की सोचता हूँ कि यार कल क्या होगा, अगर मैं ऐसा एक्शन करूंगा तो इसमें फिर क्या होगा, आगे वाले नतीजे क्या रहेंगे, तो उसको लेके क्या होता था, एक स्टेप फॉरवर्ड होने के बजाय और बैकवर्ड हो जाता था। लेकिन अब मैंने ये सोचा है कि नहीं, जो होगा उसके लिए भी कोई ना कोई नया सॉल्यूशन निकाला ही जाएगा, अभी फिलहाल जो है उसको पूरा करो।
0: बिल्कुल, मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि जब हम प्रपोजल लिखते हैं तो हमें नहीं पता सक्सेस क्या होगी।
2: जी
0: हम तो डोनर को ये थोड़ा कर देते हैं कि हम 1 साल के बाद जी हम ये 100% करके दिखा देंगे आपको। हम प्रपोज करते हैं कि हम कोशिश करेंगे करने की, राइट?
2: यस।
0: तो हमेशा जो एक्शन है उसको हम अगर सीधे रास्ते पे रखें या सीधी सोच के साथ रखें, तो रिजल्ट्स तो आएंगे ही आएंगे। ठीक है,
2: यस मैम,
0: थैंक यू सो मच। और मैं इनकरेज करूंगी, अगर किसी के कोई और भी डाउट्स रहते हैं तो दे आर वेलकम टू राइट बैक टू मी, राइट? बिकॉज लीडर्स आपको बनना ही बनना है, राइट? ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: एज ए पार्ट ऑफ द करियर काउंसलिंग में आज के सेशन में हम टीचिंग जॉब से रिलेटेड अलग अलग जो एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो आपके स्कूल लेवल पे हैं या कॉलेज लेवल पे हैं, तो आज हम सब के बारे में इन डिटेल डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ टीचिंग स्किल्स क्या क्या होती हैं, क्या चीजें आपके अंदर ऐसी होनी चाहिए कि जो आपको एक यू कैन बिकम ए गुड टीचर, तो ये सारे इश्यूज पे आज के इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी तक पिछले सेशंस में हमने सिविल सर्विसेज के बारे में, फिर हमने गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में किया था डिस्कस, तो आज का जो सारा सेशन है वो टीचिंग जॉब से रिलेटेड है। फिर लास्ट में आपकी जो क्वेरीज होंगी डिफरेंट एग्जाम्स के बारे में, वो भी हम इस सेशन में सारी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज क्या है, देखिए टीचिंग जो है ना वो एक नोबल प्रोफेशन, और ऐसा नहीं कि मतलब आप को अगर अच्छा टीचर बनना है तो अच्छा टीचर आप किसी भी स्टैंडर्ड की क्लास के लिए बन सकते हैं। चाहिए क्या कि आपके अंदर हो, जोश हो पढ़ाने का, यू मस्ट हैव पैशन फॉर द टीचिंग, टैलेंट, नॉलेज धीरे धीरे इंप्रूव की जा सकती है। ठीक है, तो ये अगर आपका टीचिंग में इंटरेस्ट है तो उसमें आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है और विद द पैसेज ऑफ की आप एक बहुत अच्छे टीचर बन जाते हैं। तो हमारा जो मेजर पॉइंट है कि जब हम टीचिंग के बारे में बात करते हैं तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं। सीटेट है, एसटेट है, रीट है, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट है, जीआरएफ है, डीएसएसबी, केवीएस, लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर, आर्मी स्कूल्स, तो मतलब इस तरह की सारी टर्म्स जो है वो जब भी कोई पर्सन एक गवर्नमेंट टीचिंग के टुवार्ड्स प्लानिंग करता है तो इस सारी चीजों के बारे में उसे पता होना चाहिए। उससे क्या रहता है कि अगर आपको स्टार्टिंग से ही क्लियर है कि हमें टीचिंग प्रोफेशन में जाना है तो आप उसी तरीके से अपने करियर को शेप अप कर सकते हैं, क्योंकि टीचिंग में जाने के लिए अगर आपको गवर्नमेंट टीचर बनना है तो उसके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशंस भी हैं, कुछ आपको टेस्ट भी क्वालिफाई करने रहते हैं, तो उसके लिए इट्स बेटर कि आप यू कैन प्लान अर्ली, जितना जल्दी आप प्लान करेंगे उतना ही फिर आप एक अपने राइट ट्रैक पे जा सकते हैं। तो आज के इस सेशन में आपको मैं इन सब टर्म्स के बारे में एक एक करके एक्सप्लेन करूंगा, किस एग्जाम में क्या क्या आपसे पूछा जाता है, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और कैसे आप उस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, तो ये सारा आपको मैं आज के सेशन में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज क्या है बेटे कि हाँ अभी मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा, अभी तो जस्ट एक मैंने एक वो दिया है, परव्यू दिया है, अभी हम आगे एक एक फुल फॉर्म के बारे में बात करेंगे। तो देखिए जब आप टीचर की बात करते हैं तो ये कुछ जनरल सी वैकेंसीज होती है हमारे पास में, या तो आप प्राइवेट टीचर बन सकते हैं, उसके लिए तो आपको एक मिनिमम क्वालिफिकेशंस हो आपकी, आपने बीएड किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, तो आप एक प्राइवेट स्कूल में टीचिंग स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आपको गवर्नमेंट में टीचर बनना है तो उसमें ये अलग अलग आपके लेवल्स होते हैं। सबसे जो एलिमेंट्री लेवल होता है वो प्राइमरी लेवल होता है, प्राइमरी टीचर जिसे हम कहते हैं, फिर आपके 9th से 12th स्टैंडर्ड तक के टीचर होते हैं। ठीक है, कॉलेज कैडर में भी टीचर रहते हैं, फिर आपके डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर और ये सारी वैकेंसीज आती है, तो ये एक स्किल होता है। तो मतलब स्टार्टिंग से प्राइमरी टीचर से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर तक का, और इसमें एंट्री के लिए अलग अलग लेवल पे अलग अलग क्वालिफिकेशन है। तो आज अब हम समझेंगे कि करके कि सबसे एलिमेंट्री पर क्या क्वालिफिकेशन होती है और कैसे आप टीचर बनते हैं। तो सबसे पहले बात मैं करूंगा यहाँ पर सी टेट और एस टेट के बारे में, जो स्कूल लेवल टीचिंग से रिलेटेड एग्जाम्स हैं हमारे, जो सीटेट होता है इसमें आपके क्लास वन से लेकर एट क्लास तक के टीचर आप बनते हैं, और उसके बाद में जो पीजीटी की वैकेंसीज होती है वो स्टेट वाइज आती है। तो सबसे पहले तो बेटा आपको ये क्लियर हो कि प्राइमरी टीचर होता है फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ क्लास तक के जो क्लासेज है उनको जो टीचर टीच करता है उसे हम प्राइमरी स्कूल टीचर भी कहते हैं, पीआरटी भी कह देते हैं, एलिमेंट्री टीचर भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में होता है सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक, तो सिक्स्थ क्लास से लेकर एट्थ क्लास तक जो टीचर होते हैं वो टीजीटी टीचर उन्हें बोला जाता है, और ऐसे ही जो नाइन्थ से लेकर ट्वेल्थ तक होते हैं उन्हें पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कह देते हैं। तो नाइन्थ से ट्वेल्थ तक आपके पीजीटी टीचर्स कहा जाता है, सिक्स टू एट में टीजीटी, और क्लास फर्स्ट से लेकर फिफ्थ क्लास तक प्राइमरी टीचर होते हैं। अब इनके लिए अलग अलग पैटर्न है, अलग अलग क्वालिफिकेशंस है। सबसे पहले हम यहाँ पे आज अभी हम डिस्कस करेंगे सीटेट के बारे में। क्लास वन से लेकर क्लास एट तक अगर आपको टीचर बनना है, मतलब प्राइमरी टीचर बनना है या टीजीटी टीचर अगर आपने बनना है, तो उसके लिए आपके लिए सीटेट क्वालिफाई करना मस्ट है। मतलब दिल्ली में, यूपी में, हरियाणा में, कहीं भी जहां भी वैकेंसीज निकलती हैं, या आपकी केवीएस में निकलती है केंद्रीय विद्यालय के अंदर, या आर्मी स्कूल्स के अंदर, जवाहर नवोदय के अंदर, जहां भी वैकेंसीज निकलती है, तो सीटेट आपके लिए एक एसेंशियल क्वालिफिकेशन होती है। अब हम सबसे पहले ये समझें कि सीटेट की फुल फॉर्म क्या है। सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये इसकी फुल फॉर्म है, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। और सीटेट जो है वो साल में दो बार कंडक्ट होता है। अभी इस साल कोविड 19 के कारण अभी एग्जाम अभी था सितंबर के मंथ में, तो उसे एक्सटेंड कर दिया गया है। बट जनरली सीटेट का जो एग्जामिनेशन है साल में दो बार आपका होता है, ठीक है, और क्लास वन से लेकर क्लास एट तक के लिए, तो मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, उसके साथ साथ टीजीटी टीचर के लिए, दोनों के लिए सीटेट का एग्जाम होता है। इसमें दो पेपर आपके होते हैं, फर्स्ट इज पेपर वन, सेकेंड इज पेपर टू। पेपर वन जो आपका होता

में आप अगर आपको प्राइमरी लेवल का टीचर बनना है तो 12th में 45% आपके मार्क्स होने चाहिए, ठीक है, या आपके पास में कैंडिडेट शुड क्लियर ग्रेजुएशन विद 45% और 12th विद 50%। सी कैट के लिए जैसे एक तो जो आपका एलिमेंट्री टीचर्स के लिए है तो 12th में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए। जेबीटी या आपने एनटीटी का कोई भी ट्रेनिंग किया हुआ है वो आपके लिए एक रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो अब इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या एग्जामिनेशन होता है, जैसे पेपर वन जो है, पेपर वन मतलब एलिमेंट्री क्लासेस के लिए, क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए, तो उसमें आपका ये 150 मार्क्स का पेपर होता है जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ठीक है, लैंग्वेज वन एंड टू, ये दो लैंग्वेजेस में आपको देना है, मतलब टू लैंग्वेजेस आपकी होती है, जनरली हम इंग्लिश और हिंदी लेते हैं, इसके साथ साथ आपको मैथमेटिक्स और एनवायरमेंटल स्टडीज, तो ये मतलब फाइव सब्जेक्ट्स आपने प्रिपेयर करने होते हैं। 30-30 मार्क्स के फाइव सब्जेक्ट आते हैं, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है जो पेपर वन होता है, जिसके थ्रू अगर आप पेपर वन क्वालिफाई करते हैं तो एलिमेंट्री टीचर जिसको हम क्लास वन से क्लास फाइव तक की जो टीचिंग है वो आप हर गवर्नमेंट जॉब में एंटाइटल हो जाते हैं। आप देखते हैं कई बार दिल्ली में काफी वैकेंसीज आती है जब भी आती है, या आजकल तो अगर एज ए गेस्ट टीचर भी लगाना है वहां भी आपको सी टेट क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो फाइल करने के लिए आपको पहले पेपर वन जो देना है वो आपका ये रहता है 1 to 5 के लिए, और सिमिलरली पेपर टू होता है, पेपर टू स्कीम है, उसमें क्या है कि बाकी सब चीजें सेम है, जैसे आपके फर्स्ट सब्जेक्ट आपका सेम है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, लैंग्वेज भी आपको टू लैंग्वेजेस आपको लेनी होती है, इंग्लिश और हिंदी, उसके साथ साथ फिर आपको या तो मैथमेटिक्स और साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, या आपका सोशल स्टडीज और सोशल साइंस का कॉम्बिनेशन होता है, मतलब आप जैसे मैथ्स के टीचर रहेंगे या साइंस के टीचर रहेंगे उसके अकॉर्डिंगली आपको कॉम्बिनेशन ऑप्ट करना रहता है, और 60 मार्क्स का आपका पेपर रहता है वो, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर हो जाता है। तो एक तरह से अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सबसे फर्स्ट स्टेप आपका ये है कि सी टेट आपने क्वालिफाई करना है, और मैं आपको बताऊं भी कैसे आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वैसे तो इसमें जो सब्जेक्ट है वो इतने डेप्थ नहीं होते, मतलब जैसे आपकी लैंग्वेज है जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है, या इसके साथ साथ आप जो मैथमेटिक्स साइंस या एसएस पढ़ते हैं तो वो 8th स्टैंडर्ड तक का आपको क्लियर होना चाहिए, और उसमें भी बेटर यही है कि आप एनसीईआरटी बुक्स को अपना फॉलो करिए, और एनसीईआरटी में से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली। तो अगर आप टीचिंग में जाना चाह रहे हैं तो फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक का एनसीईआरटी आपने मैथमेटिक्स का, साइंस का और एसएस का आप उसको स्टडी करिए। उसके साथ साथ चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के लिए आप बीएड के लेवल में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स आती हैं, तो कोई एक अच्छी सी बुक आप परचेज कर सकते हैं, या मार्केट में भी एक नंबर ऑफ बुक्स आर अवेलेबल जिसमें अरिहंत पब्लिकेशन की बुक्स आती है चाइल्ड डेवलपमेंट की, पेडागोजी की, तो आप उन बुक्स को फॉलो करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर्स भी मार्केट में अवेलेबल रहते हैं सी टेट के, क्योंकि हर साल में 2 बार होता है और पेपर पेंसिल बेस्ड होता है, तो उसके पेपर्स भी अवेलेबल रहते हैं। तो अगर आप 4-5 प्रीवियस ईयर पेपर सो कर लेंगे, एक वहां से आपको एक क्लियर आइडिया हो जाता है किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये आपका सी टेट के बारे में है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है सी टेट के अंदर। हाँ, आप चाइल्ड देखिए उसमें क्या है कि अरिहंत पब्लिकेशन बुक आती है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की, ठीक है, तो आप अरिहंत पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपका प्रतियोगिता किरण पब्लिकेशन की भी बुक आती है, या बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी की बुक्स होती है। अगर आप मतलब अगर आपने जेबीटी किया है, बीएड आपने किया है, तो बीएड में चाइल्ड डेवलपमेंट की बुक्स होती है, तो आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जनरली सीटेट में देखा गया है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो ये भी अच्छी बुक है, ये जो ड्रोवर की बुक है, प्रतियोगिता ड्रोवर है, ये एक तरह का पब्लिकेशन है, तो इनकी भी अच्छी बुक्स है, ठीक है। बट उसमें वही सेम चीज है जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लासेस में बताया, तो पहले 1 स्टैंडर्ड बुक आप फॉलो करिए,
एक बुक को जब आप देखते हैं

0: उसके बाद सर आप जो प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करते हैं तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और जो बुक आप पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हैं क्या उस बुक में उस लेवल के क्वेश्चंस कवर्ड है या नहीं है, तो ये थोड़ा सा आपने ध्यान रखना होता है। मैं आपको बीएड की जो बुक्स आती है उसमें नेम ऑथर आपको मैं कंफर्म करके एक्सप्लेन कर दूंगा। बाकी अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, सीडीपी की, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या होती है सीटेट के एग्जाम में कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होता आपका, तो आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई किसी भी तरह का नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो इस टाइप से आप अपना सीटेट का प्रिपरेशन करिए। हाँ, ये एक चीज मैं फिर ऐड कर रहा हूँ यहाँ पर दोबारा से कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि साल में दो बार होता है और सारे पेपर्स अवेलेबल है, तो आप अगर 5-7 पेपर्स उनको अटेम्प्ट करेंगे देखेंगे तो आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स है वो सारे स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब उसमें कोई चेंज होने का नहीं है, कोई आपका जो करंट का क्वेश्चन तो आता नहीं उसमें, तो सारे हैं जो आपके फिक्स ही हैं। तो पिछले कुछ सालों के पेपर जब आप चेक करते हैं तो उससे आपको एक बहुत अच्छा आइडिया हो जाता है और फिर आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो ये एक पहला स्टेप है आपके लिए, अगर आपको प्राइमरी या टीजीटी टीचर में जाना है तो आपको सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई करना। आजकल तो प्राइवेट स्कूल्स में भी सीटेट के एग्जाम की मतलब दे ऑल्सो आस्क फॉर क्वालिफिकेशन इन सीटेट, तो मतलब ये आपको पहला स्टेप आता है। अभी आता हूं बेटा एनटीटी के बारे में भी आता हूं। अब इसके बाद सेकंड होता है हमारा जेबीटी, मतलब अब मैं आपको बताऊंगा कुछ हमारे जो अलग अलग चीजें हैं, जैसे जेबीटी कह लीजिए या आपका एनटीटी का प्रोग्राम होता है 2 ईयर का, या इसके अलावा आपका डीएलईडी होता है, ठीक है, जो बेसिकली डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन होता है, ठीक है। तो देखिए क्या रहता है कि 12th के बाद आप जेबीटी कर सकते हैं, क्योंकि एलिमेंट्री जो टीचर है, जो प्राइमरी टीचर है, प्राइमरी टीचर के लिए या तो आपने जेबीटी किया हो, जिसको हम जूनियर बेसिक ट्रेनिंग कहते हैं, जो जूनियर बेसिक ट्रेनिंग है ये 12th के बाद होती है, ये एक तरह का डिप्लोमा होता है 2 ईयर्स का, जिसमें 4 सेमेस्टर होते हैं। इसमें स्टेट वाइज कॉलेजेस है, बाकी फॉर्म्स निकलते हैं जब आप 12th के एग्जाम देते हैं उसके बाद में। मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो 12th में 45% की है, राइट। ये एक तरह से जो डीएलडी होता है, डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इक्वल होता है, ये प्राइमरी टीचर्स के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। ऐसे ही एनटीटी का आपका होता है, उसमें भी आपको 2 ईयर का डिप्लोमा रहता है एनटीटी का, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या रहती है कि आपको जहां से भी आप ये जेबीटी करें, चाहे आप अपना डीएलडी करें, चाहे आप एनटीटी करें, वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। कई बार मार्केट में कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो रिकॉग्नाइज नहीं होते, तो वो फिर बाद में आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो आज से 4-5 साल पहले, व्हाट हैपेंड, आज से 4-5 साल पहले जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ था, ठीक है। तो जम्मू से जेबीटी करने का ट्रेंड हुआ तो बहुत लोगों ने जम्मू से जेबीटी किया, ठीक है, और बाद में फिर पता चला कि वो तो आपका वैलिड नहीं है। तो ये इस तरह से कई बार प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कि जिसमें हम ऐसा अपना कोर्स डिप्लोमा कर लेते हैं और जो बाद में वैलिड नहीं होता, तो ये थोड़ा आपको ध्यान रखना होता है इसमें कि आप जहां से भी करिए वो आपका वैलिड होना चाहिए। तो जेबीटी है चाहे आपका एनटीटी है, ये आपको एक टाइप से मतलब एक टाइप से एलिमेंट्री जो टीचर्स होते हैं, जो हमारे प्राइमरी टीचर्स होते हैं, उनके लिए ये मस्ट होती है ये क्वालिफिकेशन आप। अब इसमें स्टैंडर्ड मतलब क्या पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसी है, देखिए कैसे वैकेंसीज आती हैं और कैसे आप उनमें अप्लाई करते हैं। जैसे अलग अलग स्टेट का अपना पैटर्न है, जैसे मैं पहले हरियाणा की आपको बताऊं, हरियाणा में क्या है कि एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है। वैसे तो जो सी टेट है वो पूरे इंडिया में वैलिड है, ठीक है, बट हरियाणा में क्या है कि हरियाणा में एज ए टीचर लगाने के लिए एच टेट का फॉर्म निकाला जाता है, जो हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ठीक है। तो जो टीईटी का मतलब यही होता है, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। अब हरियाणा में क्या है कि 3 स्टेजेस में वैकेंसीज आती हैं, मतलब उसमें आपके प्राइमरी टीचर्स की वैकेंसीज आती हैं, आपके टीजीटी की वैकेंसी आती है जिसको हम ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर कहते हैं, और ऐसे ही आपकी पीजीटी की वैकेंसी आती है, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। मैंने आपको पहले ही बताया कि प्राइमरी टीचर जो होते हैं वो क्लास वन से लेकर क्लास फाइव तक के लिए हैं, जो टीजीटी टीचर होते हैं वो क्लास सिक्स से लेकर एट तक के लिए हैं, और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं एट से अबो। अब इनके लिए जो क्वालिफिकेशंस भी अलग अलग है, जैसे जो पीजीटी आपकी जो प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आती है उसमें आपकी ट्वेल्थ होनी चाहिए, और ट्वेल्थ के साथ साथ आपने जेबीटी किया हो, एनटीटी का कोर्स किया हो, या आपने डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन किया हो, ठीक है, तो उसमें आप प्राइमरी टीचर के लिए एंटाइटल होते हैं, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए जाना है, जिसको हम टीजीटी कहते हैं, तो टीजीटी के लिए आपको बैचलर डिग्री के साथ साथ बीएड करनी है। अब देखिए बीएड क्यों इंपॉर्टेंट है, आप ये मान के चलिएगा अगर आपको प्राइमरी टीचर से ऊपर किसी भी पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, चाहे वो टीजीटी है और चाहे वो पीजीटी है, तो दोनों के लिए बीएड होना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में क्या होता है कि मास्टर डिग्री के साथ साथ बीएड होना चाहिए। तो देखिए क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है कि प्राइमरी टीचर के लिए तो 12th इज द मिनिमम क्वालिफिकेशन, साथ में आपने जेबीटी एनटीटी कुछ भी किया हो। अगर आपने टीजीटी टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन के बाद आपको बीएड करनी है, और उसके बाद अगर आपने पीजीटी के लिए जाना है तो मास्टर डिग्री भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये एचटेट की एक मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो इसलिए जनरली बच्चों को टीचिंग के लिए जो इंटरेस्टेड होते हैं उनको एडवाइस किया जाता है कि बेटे आप पहले आप अपनी ग्रेजुएशन करिए सबसे पहले, तो क्योंकि जब आप ग्रेजुएशन करते हैं और ग्रेजुएशन होने के बाद आप बीएड करो, ठीक है। नहीं इसमें केवल आर्ट से या साइंस नहीं, इसमें आप बेटे किसी भी बैकग्राउंड से हो सकते हैं। जैसे क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी टीचर है वो तो किसी भी स्ट्रीम का हो सकता है, आपके पास चाहे मेडिकल है चाहे नॉन मेडिकल है, चाहे आपके पास में कॉमर्स है चाहे आर्ट्स है, आपने उसके बाद में जेबीटी किया हुआ है, ठीक है। अगर आप टीजीटी के लिए जाते हैं तो बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, वो भी आपकी किसी भी स्ट्रीम में हो सकती है, आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, उसके बाद आपको बीएड करना होता है। बट अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में जाते हैं फिर सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जैसे मान लीजिए आपको मैथमेटिक्स का टीचर बनना है तो ग्रेजुएशन में भी एज ए मैथमेटिक्स आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, इसके साथ साथ मास्टर्स में भी आपका मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होना चाहिए, और आपका जो एचटेट क्वालिफाइड है वो भी मैथमेटिक्स में ही क्वालिफाइड होना चाहिए। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में थोड़ा सा क्वालिफिकेशन ज्यादा रहती है, अदरवाइज हम जो टीजीटी है या जो आपके प्राइमरी टीचर्स है उसमें कॉमन क्वालिफिकेशन है, ठीक है। अब इन सब का अलग अलग एग्जाम है, तो जनरली क्या होता है कि अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की क्वालिफिकेशन पूरी है तो आप बाकी सबके लिए भी एग्जाम अपियर कर सकते हैं। हरियाणा में जो एस्टेट 2020 की जो एज आई है 18 से लेकर 38 इयर्स तक है, बट कुछ कैटेगरीज में एज का रिलैक्सेशन भी है, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या पैटर्न रहता है, एक बार मैं एस्टेट का आपको पैटर्न बताऊं। एस्टेट का तीनों लेवल के जो पेपर होते हैं, पेपर वन है चाहे पेपर टू है चाहे पेपर थ्री है, 150 मार्क्स का आपका पेपर होता है, 150 क्वेश्चंस उसमें आते हैं, 2.5 आवर के अंदर आपने करने होते हैं, और ऑब्जेक्टिव टाइप आपके क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। और तीन अलग अलग पेपर हैं, अगर आपको प्राइमरी का देना है तो आप पेपर वन देंगे, ऐसे ही अगर आपको टीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर टू देंगे, और अगर आपको पीजीटी के लिए देना है तो आप पेपर थ्री देंगे। नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, ना ही सेक्शनल कट ऑफ होता है, जो सब्जेक्ट्स रहते हैं वो बिल्कुल सेम जो सब्जेक्ट का पैटर्न है, कि हरियाणा में अब पीछे इन्होंने सब्जेक्ट्स में चेंज किया था, जैसे क्वांटिटेटिव एबिलिटी, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस, ये आपके 30 क्वेश्चंस आते हैं। जनरली जो सीटेट में है उसमें ये चीज नहीं आती, आपने देखा होगा अभी मैंने पीछे आपको सीटेट का पैटर्न बताया जिसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी थी, वहां दो लैंग्वेजेस थी, ठीक है। अब हरियाणा में क्या पैटर्न है, आपका मैथमेटिक्स आएगा, रीजनिंग आएगी और जनरल अवेयरनेस, तो 30 क्वेश्चंस आएंगे। ये एक तरह के बहुत ही जनरल से क्वेश्चंस होते हैं, रीजनिंग में सभी टॉपिक से आपके जो कवर हो जाते हैं, जिसमें नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, डायरेक्शंस, ब्लड रिलेशंस, ये सारे टॉपिक आते हैं, एक एक क्वेश्चन आपको मिल जाता है। ऐसे जो मैथमेटिक्स होता है वो भी बहुत ही स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जैसे एक जनरल आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करते हैं जिसमें अब बेसिक अर्थमेटिक है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन है, और उसके साथ साथ कुछ क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के भी होते हैं। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी 30 मार्क्स का, फिर हिंदी इंग्लिश के 15 क्वेश्चन है, फिर आपका मैथमेटिक्स है 30 मार्क्स का, और एनवायरमेंटल स्टडी जिसको हम EVS कह देते हैं। तो ये हमारा पेपर वन है एलिमेंट्री टीचर के लिए हरियाणा के अंदर। इसके साथ साथ आप अगर TGT के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको पेपर टू अपियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो पेपर टू किस टाइप का है, क्या पैटर्न है पेपर टू के अंदर, तो इसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रीजनिंग जनरल अवेयरनेस 30 मार्क्स के हैं, फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हिंदी इंग्लिश यहाँ तक कॉमन है, फिर आपके 60 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको एसएस साइंस या कुछ भी सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया हुआ है, क्योंकि उसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली फिर आप वैकेंसीज जो निकलती हैं उसमें आप अप्लाई करते हैं। और अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जाना है तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए फिर आपको जिस सब्जेक्ट में आपने जैसे आपको साइंस में जाना है या अगर आपको मैथमेटिक्स में जाना है तो उसी सब्जेक्ट का पेपर आप उसमें अपीयर करते हैं, ठीक है। तो एसटेट का जो पेपर जनरली होता है, आपने अगर एक बार क्वालिफाई कर लिया तो 5 ईयर तक वैलिड होता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि हर साल आपको देना है, ऐसे ही आपका सीटेट का पेपर है कि आपने एक बार क्वालिफाई कर लिया तो कुछ सालों तक वो पेपर आपका चलेगा, ठीक है। तो ये एक तरह की मिनिमम क्वालिफिकेशंस है। अब हरियाणा में वैकेंसीज का पैटर्न कैसे होता है कि पहले तो आपका एसटेट का पेपर होता है, एसटेट का पेपर आप क्वालिफाई करेंगे, फिर अलग अलग वैकेंसीज आएंगी, फिर वो अपना स्क्रीनिंग टेस्ट करते हैं, और उसके बाद फिर उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनकी फिर फाइनल जाके ज्वाइनिंग होती है। हाँ, ये हरियाणा में 5 साल का ना बेटे एसटेट जो है, ये अभी शायद कुछ चेंज करने की इसमें बात चल रही है 7 साल के लिए, क्योंकि पीछे जो एसटेट सीटेट एसटेट हुआ था उसके बाद में फिर वो तब उसके बाद की वैकेंसी नहीं आई बहुत सालों से, तो ये कुछ उसमें चल रहा है अभी इसको 7 साल के लिए कर दें, तो ये पीछे दैट वाज इनटू द न्यूज आल्सो, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे राजस्थान है वहां पे रीट का पेपर होता है, जैसे हरियाणा में आपका एसटेट का पेपर है, ऐसे ही राजस्थान के अंदर रीट का पेपर होता है, तो वो भी बेसिकली इसीलिए है। जैसे आपकी वैकेंसी अभी जैसे पीछे इट वाज इनटू द न्यूज कि रीट 2020 में अराउंड, हाँ यूपी का भी होता है बेटे, यूपी का टेट होता है, तो उसमें हर स्टेट अपना पेपर कंडक्ट कराता है, बट मोर और लेस जो इनके सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम है, मतलब इसमें कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। सभी स्टेट्स में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी एज ए सब्जेक्ट आता है, सभी स्टेट्स में आपका लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज है, उसके साथ साथ फिर आपका सोशल साइंस साइंस और मैथ्स एज ए ऑप्शनल, जैसे भी आपने जिस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपके क्वेश्चंस उसमें पूछे जाते हैं। तो अभी जैसे रिसेंट में राजस्थान में रीट 2020 का, हाँ मतलब अप्लाई आप कर सकते हो बेटे, क्या होता है ना देखिए, क्या जैसे हरियाणा में भी आप अप्लाई कर सकते हो, अगर कोई यूपी का बच्चा उसे एसटेट देना तो वो यहाँ भी अपीयर कर सकता है, क्योंकि जो टीचिंग जॉब में कोई ये तो फिक्स नहीं होता कि हरियाणा का ही होना चाहिए, आप कहीं भी किसी भी स्टेट के टेस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ये एक तरह के उनके टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मतलब वैकेंसी से पहले आपको फॉर्म फिलअप करने से पहले ये टेस्ट आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। हाँ, इसमें बेटे जो आपका जीके का पैटर्न होता है, बस वही थोड़ा डिफरेंस है कि उसमें जैसे हरियाणा में क्या है कि आपका अभी पहले उसमें जीके का सेक्शन नहीं आया करता था, तो लास्ट ईयर से उसमें जैसे 30 क्वेश्चन में 10 मार्क्स आपके मैथमेटिक्स के, 10 मार्क्स रीजनिंग के, और 10 मार्क्स जो है वो जनरल अवेयरनेस के उसमें ऐड कर दिए हैं, तो वो जो 10 मार्क्स जनरल अवेयरनेस के हैं उसमें फिर वो हरियाणा जीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही और स्टेट्स में भी ऐसे ही होता है कि जैसे आप हम रीट की बात करें तो रीट का जो एग्जाम पैटर्न है वो इस तरह से है, जैसे उसमें भी रीट में भी 2 लेवल के पेपर्स रहते हैं, लेवल 1 है और लेवल 2 है। तो लेवल 1 जो है वो आपका एलिमेंट्री टीचर के लिए है, तो उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी लैंग्वेज मैथमेटिक्स एनवायरमेंटल स्टडीज रहता है, नहीं एक्चुअली देखिए क्या है बेटे कि प्राइमली ये जो टीचिंग के टेस्ट है ना, देखो ज्यादातर मैं आपको वैसे पर्सनल ओपिनियन दूं इसमें, हरियाणा में, यूपी में, राजस्थान में टीचर्स की जो सैलरीज है, ठीक है, या अगर हम ये कहें कि गवर्नमेंट टीचर्स की जो वैकेंसीज है वो कंपैरेटिवली अदर स्टेट के मुकाबले में ज्यादा आती है। महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट टीचर्स की वैकेंसी काफी कम आती है क्योंकि वहां पे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे ज्यादा टीचर लगाए जाते हैं, तो वो अपना इस तरह का उनका भी एग्जाम होता है, वैसे होता है, मतलब वो भी अपना टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, या कई बार क्या करते हैं कि जो सीटेट का एग्जाम है उसी के मार्क्स के बेसिस पे, मतलब अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है तो उसके बेसिस पे वो करते हैं। पर एज ए जनरल नॉर्थ इंडिया में टीचर्स की सैलरी ज्यादा है एज कंपेयर टू द महाराष्ट्र और व्हेन यू गो इनटू द साउथ। तभी हम देखते हैं कि नॉर्थ में बहुत बच्चे ऐसे हैं बेटे जो एक टाइप से टीचिंग के लिए स्पेसिफिकली प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये रीट का ये पेपर वन है, ऐसे ही आपका पेपर टू होता है, हाँ ऐसे ही आपका पेपर टू होता है जिसमें आपका अगर आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे हरियाणा में है, चाहे आपका राजस्थान में है, चाहे यूपी में है, कि ये रेगुलर अफेयर है। हर साल दो साल के बाद में कुछ ना कुछ वैकेंसी आती है, कोई ना कोई एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका होता रहता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चे यहाँ पे टीचिंग जॉब्स के लिए काफी बच्चे जाते हैं। तो स्कूल लेवल में टीचर बनने के लिए आप दो तीन चीजें बेटे आप अपना ध्यान रख लीजिए, ये मैं इसलिए यहाँ पर थोड़ा ऐड कर दूं। एक तो आप बेटे ये लेवल्स इनको समझो ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको प्राइमरी टीचर्स में जाना है तो ट्वेल्थ के बाद आप कुछ ना कुछ अपना जेबीटी करिए, चाहे आप बेटे एनटीटी का कोर्स करिए, ठीक है, चाहे आप डीएलडी करिए, ठीक है, मतलब एक तरह से कुछ ना कुछ आपने, चाहे आप डीएड करो। रीट में क्या है कि नहीं, इसमें रीट में यहां पर आपका लेवल थ्री की वैकेंसी नहीं है, जैसे लेवल टू में तो वो साइंस और एसएसटी में च्वाइस नहीं देके कुछ क्वेश्चन साइंस के होते हैं, मतलब उसमें एक तरह से जो कॉम्बिनेशन मेक किया हुआ है साइंस और मैथ का कॉम्बिनेशन हो गया, तो कुछ क्वेश्चन साइंस के कुछ क्वेश्चन मैथ के हैं, एसएसटी का भी कॉम्बिनेशन ऐड कर दिया उसमें। पर मैं एक जनरल अपना वो बताऊं आपको बेटे कि अगर आप टीचिंग के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं टीजीटी लेवल के लिए, तो टीजीटी लेवल में तो आप ये मान के चलो बेटे आपको मैथमेटिक्स, साइंस और एसएसटी तीनों सब्जेक्ट्स में ही आप अपनी कमांड लेके चलिए, क्योंकि पीजीटी में फिर भी कुछ स्पेसिफिक आपका वो हो जाता है कि आप मैथ्स के टीचर हैं या साइंस के आप टीचर हैं, पर जनरली टीजीटी में ये देखा गया है कि सेम टीचर जो है वही मैथ्स भी ले रहा है, साइंस भी ले रहा है, एसएसटी भी ले रहा है। तो आप थोड़ा सा मतलब अगर स्टार्टिंग से अपना परव्यू ऐसा लेके चलिए कि तीनों, क्योंकि देखिए आपको ओनली एट्थ क्लास तक का मैथ्स करना है, एट्थ क्लास तक की आपको साइंस करनी है, एट्थ क्लास तक का आपको एसएसटी पढ़ना है, तो वो तीनों सब्जेक्ट्स को अगर आप कमांड लेके चलेंगे तो आगे फिर आपको हर तरह का एग्जाम क्वालिफाई करना इजी हो जाता है। तो मेन थिंग आपने अब ये ध्यान रखना है बेटे कि अगर आप प्राइमरी टीचर के लिए जा रहे हैं तो ट्वेल्थ करने के बाद से ही अपना जेबीटी कर लीजिए, एनटीटी कर लीजिए, कोई भी एक आधा कोर्स करिए, डिप्लोमा करिए टीचिंग के अंदर, और फिर आप प्राइमरी के लिए एंटाइटल है और सीटेट का पेपर क्वालिफाई करिए। सिमिलरली अगर आप अपना लेवल इंप्रूव करना चाहते हैं तो ट्वेल्थ के बाद आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आप बीएड करिए। अब देखिए दिक्कत क्या है, आजकल की बीएड भी आपकी टू इयर्स की है, जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपको दो साल बीएड में स्पेंड करने पड़ते हैं, ठीक है, तो वो पांच साल ट्वेल्थ के बाद कम से कम आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर बीएड में कुछ चेंज किया गया है, अब देखो जब अप्लाई होगा तभी वो चीजें क्लियर हो पाएंगी, बट अभी जो एट प्रेजेंट जो पैटर्न यही है कि आपको ट्वेल्थ के बाद कम से कम फाइव इयर्स लगाने पड़ेंगे, तीन साल का ग्रेजुएशन और टू ईयर का बीएड, और वहीं अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बनना चाहते हैं तो फिर आपको मास्टर डिग्री भी करनी है, तो कम से कम सेवन ईयर ट्वेल्थ के बाद आपको स्टडी करना पड़ेगा और फिर उसके बाद आप अपना टेस्ट क्वालिफाई करिए जो अलग अलग होते हैं, और फिर आप कहीं जाके अप्लाई कर पाएंगे। रीट की बेटे आपकी राजस्थान में लोकल लेवल की काफी किताबें आती हैं, मतलब जैसे आप राजस्थान में किसी भी जहां भी आप स्टे करते हैं कोई ऐसे कुछ स्पेसिफिक तो एक तरह से जो पब्लिकेशन नहीं है बट कई सारी जो बुक्स अवेलेबल है उपकार पब्लिकेशन की भी आती है रीट की, या आपके लोकल में भी कई इंस्टीट्यूट्स भी हैं जो काफी टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं जिनकी अपने स्टडी मटेरियल भी आते हैं। तो ऐसे तो क्योंकि मैं राजस्थान से बिलोंग नहीं करता तो मुझे वहां की बुक्स के बारे में ज्यादा आइडिया नहीं है। अब जैसे हरियाणा में है तो हरियाणा में तो अरियंत पब्लिकेशन की बुक चलती है, ठीक है, या यहाँ पर विद्यापीठ टाइम्स है और भी कई सारे लोकल पब्लिकेशंस हैं जिनकी काफी बुक्स आती हैं। तो अब सेकंड पॉइंट क्या बेटे कि ये जो वैकेंसीज कहाँ कहाँ निकलती है, टीचर की वैकेंसीज कहाँ कहाँ आती है, एक तो आपकी स्टेट वाइज वैकेंसीज आती है, ठीक है, जैसे नहीं महाराष्ट्र में इस तरह का एग्जाम नहीं है बेटे। महाराष्ट्र में क्या है कि वो एक तो आपका जो सीटेट का एग्जाम एक तो लेते हैं मतलब प्राइमरी टीचर के लिए, या आपका जो आरटीजीटी के लिए, ठीक है। हम मेडिकल तो वो तो बेटे बाद की स्टेज है ना, वो तो क्या होता है कि वो तो जैसे पहले आपने ये टेस्ट क्वालिफाई किया जो भी आपने एसटेट सीटेट या रीट जो भी आपने दिया, उसके बाद फिर वैकेंसीज आती है, स्टेट वाइज वैकेंसीज होती है, जैसे हरियाणा अपनी वैकेंसी अलग निकालता है, यूपी की वैकेंसीज आती है, राजस्थान में वैकेंसीज आती है, दिल्ली में डीएसएसबी की वैकेंसीज आती है, ठीक है, तो उसमें भी कई बार काफी टीचर्स की जॉब्स आती है। आपका केवीएस है, केंद्रीय विद्यालय है, तो केवीएस में सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए आपका, तो केवीएस की भी काफी वैकेंसीज आती है, हर साल एक तरह का फिक्स पैटर्न है, ठीक है। तो ऐसी आर्मी स्कूल्स है इंडिया में, नंबर ऑफ आर्मी स्कूल्स आर देयर, आर्मी स्कूल्स भी अपनी वैकेंसीज निकालते हैं टीचर की। इसके साथ साथ जवाहर नवोदय विद्यालय है, इनकी भी वैकेंसीज आती है, तो उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन आपकी सीटेट होती है। तो अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया हुआ है और उसके बाद आप वहाँ फॉर्म फिलअप करते हैं, फिर फॉर्म फिलअप करने के बाद वो अपना टेस्ट कंडक्ट कराते हैं। अब टेस्ट कंडक्ट होता है उसमें फिर जैसे जैसे आपका स्कोर आता है फिर उसके बाद में इंटरव्यू होता है, फिर आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो ये सारी चीजें इस तरह का रहता है। हाँ एक्चुअली क्या है कि देखो इसमें क्या है कि मैक्सिमम तो आपकी गवर्नमेंट जॉब की वैकेंसी आती है, बट कई बार कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में भी आपको सीटेट मांगते हैं। एक्चुअली इंडिया में क्या पैटर्न हो गया कि आपको अगर टीचर बनना है, अगर चाहे आप कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है चाहे आप एक्चुअल गवर्नमेंट जॉब पे है, तो उसमें सीटेट तो आपसे मांगेंगे मांगेंगे। तो मतलब आपके लिए ये पहली चीज है कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो सीटेट मस्ट बी क्वालिफाइड, क्योंकि तभी आप फिर कहीं एंटाइटल हो पाएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए कि सीटेट का पेपर तो आपका पास होना ही चाहिए, ठीक है। तो स्कूल लेवल में इस तरह से अलग अलग एरियाज में वैकेंसीज आपकी आती है, ठीक है। तो बाकी फिर भी ये है कि देखिए अगर आप मेहनती हैं, आप पढ़ने वाले हैं, टाइम तो लगता है, क्योंकि अभी पिछले जैसे मैं आपको बताऊं आज से 3-4 साल पहले हरियाणा में हजारों में वैकेंसी आई थी, मतलब हालात ये थी कि जिस पर्सन की क्वालिफिकेशन पूरी है, अगर उसने अपना एमए एमएससी जो भी किया हुआ है और उसने एसटेट का पेपर क्वालिफाइड है तो वो जॉब पे लग गया था, फिर उसके बाद में वैकेंसी आनी कम हो गई। अब पिछले 3-4 सालों से वैकेंसी काफी कम है, ठीक है। तो फिर भी क्योंकि जो टीचिंग की वैकेंसीज है अगर आपकी स्पेयर होती है तो उसके बाद वैकेंसीज निकालनी पड़ती है। चाहे स्टेट, अभी जैसे मैं पढ़ रहा था, आज ही चेक कर रहा था कि राजस्थान में री 2020 के अंदर 30,000 की अप्रोक्सीमेट वैकेंसीज आएंगी। तो 30,000 वैकेंसीज बहुत ज्यादा होती है, अब 30,000 वैकेंसीज आएंगी चाहे वो अलग अलग सब्जेक्ट्स की है, तो अगर क्वालिफिकेशन पूरी है, हमने मेहनत कर रखी है, तो उनको कहीं ना कहीं हम अपना वे आउट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसा होता है जनरली क्या होता है कि देखिए आप अपना अपने क्वालिफिकेशन पूरा किया, अपना अपने स्टार्टिंग में प्राइवेट स्कूल में टीच करना स्टार्ट कर दिया, धीरे धीरे एक्सपीरियंस एड ऑन होता जाता है, और जब भी आपकी एक टाइम से गवर्नमेंट सेक्टर में जब वैकेंसीज निकलती है तो आप वहां अप्लाई करते हैं और कहीं ना कहीं आपकी सेटलमेंट हो ही जाती है, जॉब कहीं ना कहीं आपको लग जाता है, ठीक है। तो ये हमारी स्कूल लेवल की टीचिंग जॉब होती है, ये सारी टाइप की आपकी वैकेंसी है। हर साल फॉर्म निकलते हैं, जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बताया कि जो सीटेट का है वो तो साल में 2 बार एग्जाम होता है, एसटेट भी ऑलमोस्ट साल में एक बार तो कंडक्ट होता ही है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप रीट की मतलब अगर आप राजस्थान की बात करें तो साल डेढ़ साल में एक बार एग्जाम जरूर होता है, यूपी टेट का भी एग्जाम होता है, ठीक है। तो जो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स है तो वहां तो टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है वो एक रेगुलर उस पर होते ही है। डीएसएस की भी वैकेंसी आती रहती है, मतलब हर साल दो साल में वैकेंसी आती है। केवीएस की ऑलमोस्ट हर साल वैकेंसी आती है, आर्मी स्कूल्स की है चाहे जवाहर नवोदय की है, तो ये वैकेंसी तो रेगुलर बेसिस पे आती है। तो अगर हमारी क्वालिफिकेशंस पूरी है, और इनमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि कोई ऐसा एसच वो नहीं कि हम ये कहें कि पेपर आउट हो गया, सिफारिश चल गई, आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है। एक क्वालिफाइंग मार्क्स होते हैं, वो क्वालिफाइंग मार्क्स आपने अचीव करना है और उसके बाद आपका टेट क्वालिफाई हो जाता है, फिर आप वैकेंसीज के अकॉर्डिंगली अप्लाई करते रहते हैं। मार्क्स की वेटेज रहती है, आपके ट्वेल्थ में कितने मार्क्स हैं, ग्रेजुएशन में कितने हैं। देखिए अगर आप टीचिंग जॉब के लिए जा रहे हैं तो एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि हमारा एजुकेशनल रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए, ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, पढ़ने में हम अच्छे हो, तभी आगे हम एक वी कैन बिकम ए गुड टीचर। तो ये तो सारा मैंने आपको स्कूल वहीं फिर हम में ऐसा नहीं कि हम स्कूल लेवल पे, हम कॉलेज लेवल पे भी जा सकते हैं एज ए टीचर। तो कॉलेज लेवल में जैसे हरियाणा में है या और स्टेट्स में है तो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज होती है, मतलब जो कॉलेज जो कैडर की वैकेंसीज आती है जिनको हम असिस्टेंट प्रोफेसर्स कहते हैं। और ऐसे ही जो यूनिवर्सिटीज है उसमें डिपार्टमेंट्स होते हैं अलग अलग, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, लॉ डिपार्टमेंट है, तो उनमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की वैकेंसीज आती है। तो स्कूल लेवल और कॉलेज लेवल के टीचिंग में एंट्री में थोड़ा डिफरेंट है। कैसे? आप जैसे मैंने आपको बताया अभी स्कूल लेवल में अगर आपने टीजीटी या पीजीटी में आपने जाना है तो आपको बीएड करना मस्ट है। वही कॉलेज के लिए आपको बीएड करने की नीड नहीं है, आपने सिंपल मास्टर डिग्री होना चाहिए आपका। जैसे आपने ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन के बाद फिर आपने मास्टर डिग्री कर लिया, मास्टर डिग्री के जब आप फाइनल ईयर में होते हैं मास्टर डिग्री के तो आपको फिर नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। जो प्राइमरी आपका नेट का एग्जाम होता है, एनटीए कंडक्ट करा रहा है, पहले यूजीसी कराता था, उसके बाद सर कुछ साल सीबीएसई बोर्ड में कंडक्ट कराया, तो नाउ दिस नेट एग्जाम इज कंडक्टेड बाय एनटीए, ठीक है। तो उसमें क्या रहता है, जो नेट का एग्जाम है वो हमारे लिए मस्ट है, ठीक है। उसमें भी दो तरह के आपके नेट होते हैं, एक तो जो नेट के सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, इंग्लिश है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, ये तो आपका एनटीए कंडक्ट कराता है। और साइंस से रिलेटेड जिसमें आपका मैथमेटिक्स है, फिजिक्स केमिस्ट्री है, वो सीएसआईआर कंडक्ट कराता है। तो इस तरह से दो आपके नेट के एग्जाम्स होते हैं। तो जिस भी स्ट्रीम के आप है, जिस भी स्ट्रीम में आपने मास्टर डिग्री किया हुआ है, उसी स्ट्रीम का आपको नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है। जो नेट में भी आपका एक जेआरएफ होता है जिसको हम जूनियर रिसर्च फेलोशिप कहते हैं। जैसे आपने मास्टर डिग्री करने के बाद नेट का पेपर दिया, उसी नेट के एग्जाम में जो मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, 55% है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए, और जेआरएफ के लिए 30 इयर्स की एज होती है। जेआरएफ का मतलब क्या है कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको मिलता है अराउंड 25,000 रुपीज पर मंथ का स्टाइफंड आपको मिलता है पीएचडी करने के लिए। तो इसमें क्या रहता है कि उसी नेट एग्जाम में कुछ टॉप के स्टूडेंट लिए जाते हैं, उनको जेआरएफ लगता है और फिर वो जब स्टडी करते हैं तो उस स्टडी टाइम में उन्हें स्कॉलरशिप्स मिलती हैं। अब नेट का पेपर जो है, एनटीए का जो नेट का पेपर है उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो पेपर होते हैं इसमें। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका कॉमन है सभी सब्जेक्ट्स के लिए, उसमें जनरल अवेयरनेस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एबिलिटी या कॉम्प्रीहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं जिसको हम एनटीए पेपर वन कहते हैं। और सेकंड होता है एनटीए पेपर टू, वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिस सब्जेक्ट में आपने नेट क्वालिफाई करना है उसी सब्जेक्ट का आपका एग्जाम होगा। जैसे मैं पैटर्न बताऊं आपको, जो एनटीए का पैटर्न है, जैसे पेपर वन है, पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं, पहले पैटर्न अलग था, पिछले कुछ टाइम से पैटर्न चेंज हुआ है। तो पेपर वन में 50 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और पेपर टू आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है। जैसे सपोज आपने आपने एमए इकोनॉमिक्स किया हुआ है तो आप नेट इकोनॉमिक्स में पास करना चाह रहे हैं तो आपको फिर 100 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट करने हैं जो इकोनॉमिक्स के होंगे आपके। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 3 आवर का आपका पेपर होता है जिसमें कोई ब्रेक आपको नहीं मिलेगा। तो ये एक आपका स्कीम होती है जो एनटीए नेट का एग्जाम है, ठीक है। तो अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर कॉलेज वाइज वैकेंसीज निकलती है जैसे प्रोसेस मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर वो अपना अलग से पेपर कंडक्ट कराते हैं, उसमें जिस सब्जेक्ट की वैकेंसीज आई है आपने उस सब्जेक्ट में अप्लाई किया है। और अगर आप डिपार्टमेंट वाइज वर्क करना चाहते हैं किसी यूनिवर्सिटी के अंदर तो वहां भी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है दैट इज द नेट, कि अगर आपका नेट क्वालिफाइड है तो आप वहां पर जॉब के लिए एंटाइटल है। वैकेंसीज निकलती है, इंटरव्यू कंडक्ट होता है और इंटरव्यू कंडक्ट होने के बाद में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो यू कैन बी असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है हमारे कॉलेजेस में जाने के लिए कि नेट का पेपर आपको उसी सब्जेक्ट में जरूर क्वालिफाई होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आप टीचर बन सकते हैं, मतलब स्कूल लेवल में थोड़ा ये डिफरेंस है कि वैकेंसी ज्यादा आती है। अगर हम कॉलेज लेवल की बात करें तो कॉलेज लेवल में जो नंबर ऑफ वैकेंसीज है कंपैरेटिवली कम है, बट फिर भी एडवांटेज क्या है कि अगर आप किसी भी लेवल पे एंटर करना चाहो, अगर स्टार्टिंग में सपोज आपने क्वालिफिकेशंस पूरी है बट हमें जॉब नहीं मिलता, बट इंडिया में प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस काफी ज्यादा है। आप देखेंगे चाहे आप बेटे किसी भी लेवल पे देखिए, चाहे आपके ग्रेजुएशन के अंदर है, चाहे मास्टर डिग्री के अंदर है, चाहे प्रोफेशनल कोर्सेज में है, चाहे हम स्कूल्स की बात करें, तो काफी ज्यादा प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। तो फिर क्या रहता है कि आप अपनी कहीं ना कहीं जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। एक बार आपने अपनी अर्निंग स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे आप अप्लाई करते रहिए और विद द पैसेज ऑफ टाइम कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाता है। बट अगर क्वालिफिकेशंस पूरी है तो हाँ, अब सपोज आपने बीएडी नहीं कर रखा, अगर आपने बीएड नहीं किया हुआ तो फिर दिक्कत है। तो क्वालिफिकेशंस को कंप्लीट करना सबसे पहला काम है और एक बार आपकी क्वालिफिकेशंस पूरी हो जाएंगी तो उसके बाद फिर आप अपना टेस्ट पास करिए। तो आज नहीं कल नहीं परसों विद द पैसेज ऑफ टाइम जॉब्स लगती हैं, वैकेंसीज काफी ज्यादा आती है टीचिंग में, काफी वैकेंसीज आती है तो उसमें जॉब लगने का स्कोप रहता है, ठीक है। तो इस तरह से बेटे ये हमारे सारे एग्जाम्स होते हैं जो टीचिंग से रिलेटेड है, राइट। तो ये बेटे दैट इज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं किसी भी टाइप से रिलेटेड, तो अब मैं आपकी क्वेरीज का आंसर करूंगा। मैंने अपनी ओर से एक बार आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया कि किस किस टाइप के एग्जाम्स है, किस किस टाइप की जॉब्स है, क्या रहता है इसके अंदर। हाँ, सैलरीज काफी अच्छी है, मतलब अगर हम आज के टाइम में गवर्नमेंट टीचर्स की बात करें तो स्टार्टिंग सैलरी 40,000 प्लस स्टार्टिंग सैलरी है, चाहे आप एलिमेंट्री टीचर भी हैं और उसके बाद में एवरी ईयर इंक्रीमेंट्स आर देयर। तो आपकी सैलरी मतलब 15 से 20 साल अगर आप गवर्नमेंट जॉब में एज ए टीचर रहते हैं तो 80,000 प्लस आपकी सैलरी कम से कम रहती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर में तो स्टार्टिंग सैलरी आपकी 60-70,000 प्लस रहती है। तो सैलरीज अच्छी है, वर्कलोड कम है इंडिया में, ज्यादा पढ़ाने का इतना बड़ा प्रेशर नहीं होता है, बस एक बार एंटर करना इंपॉर्टेंट है, वो आपके लिए, उसके लिए आपको रेगुलर एफर्ट करना रहता है। तो अब आप कुछ भी पूछना चाहें तो हम आंसर करेंगे एक एक करके।
1: दिनेश जी, एक मेरे पास क्वेश्चन है, ये सभी के लिए शायद कॉमन होगा, ये शायद इन लोग के पास भी कुछ आइडिया हो जाए। ये सीटीटी के बारे में जो आपने बताया है, जो ऑलरेडी आप प्राइमरी टीचर के लिए जो आप जो है 1 से 10th क्लास तक के आप जो अप्लाई करेंगे, उसको करने के बाद बहुत सारे होते हैं जो जो गवर्नमेंट का जो निकलता है स्कूल वाइज या फिर सेंट्रल स्कूल का या अदरवाइज लेकर के प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल एंट्रेंस, इससे कोई एंट्रेंस का तो कोई लेना देना नहीं है क्योंकि काफी लोग पैटर्न भी स्टेट वाइज अपना रखते हैं कि चलो भाई
0: प्राइवेट स्कूल्स जो है वो कई बार एलिजिबिलिटी टेस्ट जरूर मांग लेते हैं कि आपका सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। exactly, वो कई बार या आपसे बीएड मांग लेते हैं कि बीएड होना चाहिए आपका, अदरवाइज तो प्राइवेट स्कूल का तो सिंपल सा पैटर्न है कि वो तो इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं, उसमें तो वो तो उनके अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको टीचर चाहिए होता है, तो उनका पैटर्न अलग है। ऐसे कोई हम नहीं कह सकते पर्टिकुलर टेस्ट आपको अपीयर करना है फॉर द प्राइवेट स्कूल टीचर, उसके लिए ऐसे कुछ क्वालिफिकेशंस भी नहीं है।
1: नहीं है,
2: जैसे वो ये बता देते हैं कि पेपर है ये, अगर आप सिलेक्टेड हैं तो पेपर है और कुछ नहीं होते।
0: हाँ
3: गुड आफ्टरनून सर, परा बोल रही हूँ रामपुर से। सर मुझे ये पूछना था, सर मुझे ये पूछना था सी टेट या यूपी टेट में से हमें एक ही क्वालिफाई करना है या फिर दोनों क्वालिफाई करना है?
0: एक्चुअली क्या रहता है, देखिए जो सी टेट का एग्जाम है ना वो आपका एक टाइप से जो सेंट्रल लेवल का एग्जाम है, जैसे आपने दिल्ली की कोई वैकेंसी आई, ठीक है, कहीं भी वैकेंसी आएगी वो आपसे मतलब जो क्वालिफिकेशन एक्सपेक्ट करेगा वो सी टेट करेगा। एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी स्कूल में वैकेंसी आएगी तो वहां पर आपको सी टेट पास करना पड़ेगा। बट जब स्टेट वाइज वैकेंसी आती है ना तो फिर वो अपने स्टेट का ही वो मांगते हैं, एग्जाम मांगते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप यूपी से बिलोंग करते हैं, यूपी में अगर प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई है तो वहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन लिखेगा ना वहां पर वो यूपी टेट लिखेगा, तो फिर आपको यूपी का टीट वो करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। तो आप ये मान के चलिए कि अगर आपको टीचिंग में जाना है तो दोनों ही पास करने हैं आपको।
3: जैसे अभी हमने बीटीसी कर ली है तो सी टेट का भी एग्जाम दिया था तो अभी तीन नंबर से रह गए थे हम।
0: हाँ जी,
3: तो
0: हाँ जी।
3: पूछ रही हूँ कि सी टेट या यूपी टेट से अगर हमारा एक ही क्वालिफाई होता है तो क्या उसके बाद सुपर टेट फिर आएगा?
0: नहीं नहीं, ये क्या करते हैं, ये जो स्टेट वाइज वैकेंसी निकालते हैं ना तो उसमें वो सी टेट को नहीं मानेंगे, वो अपना पेपर मानेंगे जो यूपी टेट का होगा, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम करते हैं। बट ये है कि अगर आप जो सी टेट का क्वालिफाई करते हैं तो बाहर कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हैं।
3: अच्छा, यूपी में नहीं हो सकता ये? यूपी का ही
0: चल जाता है। मतलब क्या रहता है ना कि वो उसमें अब जैसे क्या है कि अगर आपकी पीजीटी की वो आएंगी, अगर आपकी पीजीटी की आती है वैकेंसी तो अप्लाई नहीं हो पाएगा, फिर पेपर वन है पेपर टू है, तो मतलब आपका चल जाता है। पर वो उसमें लिखा होता है, मतलब जैसे जो फॉर्म निकलते हैं ना तो उसमें, क्योंकि देखिए क्या है कि इसका क्या इसका प्रोसीजर क्या होता है कि जो टेट का पेपर है वो ओनली एलिजिबिलिटी टेस्ट है। जब आपकी वैकेंसी आती है ना तो उसमें फिर लिखा होता है भी आपने आपका या तो टेट क्वालिफाई हो या आपका सी टेट क्वालिफाई हो या उसके अलावा कोई और भी कोई एग्जाम अगर है तो वो लिखा हो तो वहां आपका चल जाता है।
3: अच्छा सर, जो सुपर टेट है यूपी टेट हमारा जैसे क्लियर हो गया, उसके बाद हमने सुपर टेट भी क्लियर कर लिया, तो उसके बाद भी हमारा इंटरव्यू या कोई एग्जाम वगैरह होता है या डायरेक्टली हम डाल सकते हैं फिर?
0: नहीं, उसमें ये क्या करते हैं, देखिए अभी जैसे पहले तो क्या होता था कि जो टेट क्वालिफाई होता था उसी के बेसिस पे होता था, जॉब लग जाती थी
3: जी।
0: अभी उन्होंने क्या किया हुआ है कि अभी ये जैसे टेट को कर रखा है अलग, ये तो एक टाइप का ये हो गया कि आपकी एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। फिर जब वैकेंसीज निकालते हैं तो वैकेंसीज निकालेंगे तो उसमें ये लिखेंगे कि मिनिमम वही पर्सन अप्लाई कर सकता है जिसका टेट क्वालिफाई है, फिर वो अपना अलग से पेपर लेते हैं एट द टाइम ऑफ अज्वाइनिंग। जैसे हरियाणा में क्या है कि आपने एस्टेट क्वालिफाई कर लिया, एस्टेट पास करने से जॉब नहीं मिलेगी आपको, जब वैकेंसी आएगी वो फिर से पेपर लेंगे आपका। तो इस तरह से चलता है इसमें। एक ये क्वेश्चन है सीमा सिंह जैसे पूछ रहे हैं कि बीएड करने का क्या प्रोसेस है। जो बीएड करने का प्रोसीजर है कि आपको ग्रेजुएशन के बाद आप बीएड कर सकते हैं, डिस्टेंस से बीएड नहीं होती है। पहली चीज, ओनली इग्नू ऑफर करता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी ऑफर करती है, बट उसमें भी उसमें आप किसी ना किसी स्कूल में एज ए टीचर वर्क कर रहे हो, तो उसमें जो लोग एज ए टीचर जॉब कर रहे होते हैं उनके लिए एक उनके लिए प्रोसेस है कि वो बीएड जो है डिस्टेंस से कर सकते हैं, बट इन जनरली जो बीएड है वो आपको एज ए रेगुलर कोर्स ही करना पड़ता है। तो आपने बीए बीकॉम बीएससी जो भी आपने किया है तो उसके बाद आपको टू ईयर का बीएड करना पड़ेगा। ये आपका जैसे सर मैंने डीएलडी किया है, टेट क्लियर है, इंटर कॉलेज जॉब्स का क्या स्कोप है, क्योंकि इंटर कॉलेज जैसे ये मेरे हिसाब से यूपी से बिलोंग करते हैं ना आप, यूपी में इंटर कॉलेज होता है। हाँ, तो वैसे तो इन जनरली क्या होता है, जैसे मैं अपनी हरियाणा या और जगह की बात करें तो वहां पर जो कॉलेज की वैकेंसी तो आपकी अलग से आती है। यूपी में क्या है कि इंटर कॉलेज मतलब जो ट्वेल्थ को करता है टीच, मतलब आपका 8 to 12 एक पीजीटी कहते हैं ना उसे हम बोलते हैं, तो उसमें तो आपको बीएड करनी पड़ेगी। देखिए क्या रहता है कि पीजीटी के लिए बीएड क्वालिफिकेशन आपकी मस्ट है पूरे इंडिया में, ठीक है, और अगर आपको एलिमेंट्री टीचर का करना है तो आपने जैसे डीएलडी किया हुआ है, तो आप उसमें टाइटल है, तो आपको ये थोड़ा सा इसमें देखना पड़ेगा। हाँ, सीमा सिंह आस्किंग वन हैज टू गो टू कॉलेज एवरी डे। देखिए नहीं, उसमें क्या है कि बीएड में देखिए आपके दो तरह के कॉलेजेस है, एक जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है, एक प्राइवेट कॉलेज है। तो प्राइवेट कॉलेज तो फीस ही चार्ज करते हैं बस, मतलब आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है। मैक्सिमम जो बीएड है वो आपकी इसी तरह से होती है, बट रेगुलर कोर्स है, मतलब उसके साथ आप कुछ और नहीं कर सकते। बीएड एक तरह का रेगुलर कोर्स है। अगर आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर रहे हैं तो आपको कॉलेज जाने की नीड नहीं है, एग्जाम्स होंगे बस आपके, ठीक है। बट उन दो सालों के अंदर अंदर आप उसके साथ कोई और डिग्री नहीं हो पाएगी आपकी, आप केवल बीएड ही करेंगे, क्योंकि काफी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जो बीएड करवाते हैं। तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज से बीएड कर सकते हैं, वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के साथ में एफिलिएट होगा। अकबर जी बताएंगे, यूनिवर्सिटी में टीचिंग जॉब के लिए नेट की आवश्यकता होती है। देखिए क्या है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर वो पूरे स्केल की सैलरी देंगे तो नेट आपसे मांगेंगे जरूर। देखिए क्या होता है ना, प्राइवेट में भी मतलब जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज है वो टू टाइप के टीचर रखती है। एक तो वो टीचर रखती है जो वो अपने रोल्स पे दिखाती है, मतलब जिनको एक नंबर में सैलरी पे दिखाती है, तो वहां तो नेट क्वालिफाइड होना कंपलसरी है, क्योंकि आप कॉलेज लेवल पे टीचर तभी बन सकते हो जब आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है। तो कुछ टीचर्स को वो एडवोक पे दिखाती है, तो वहां पर आपका चल जाता है। मतलब तो ये है कि स्टार्टिंग की जा सकती है, बाकी अगर आपको कॉलेज लेवल पे या यूनिवर्सिटी लेवल पे टीचिंग करनी है तो नेट क्वालिफाई करना मस्ट है आपके लिए, उसके बिना आपको सैलरी कभी पूरी नहीं मिल पाती। सुनील जी पूछ रहे हैं एसटेट का सिलेबस क्या रहेगा, बीएड एसएसटी इंग्लिश से है, बीएड एसएसटी उसमें देखिए अगर आप टीजीटी का दे रहे हैं पेपर तो उनकी तो आपके टॉपिक वाइज आपको बुक्स मिल जाती है उसमें। जैसे जो टीजीटी का पेपर है, हाँ, उसमें जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जैसे 150 नंबर का पेपर आता है, तो 30 क्वेश्चंस तो आपके हरियाणा में जैसे मैथ्स रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस के हो गए, 30 क्वेश्चन चाइल्ड पैडागोजी के हैं, और उसके बाद जो 30 क्वेश्चंस हैं वो आपके इंग्लिश और हिंदी के हो गए, और फिर बच्चे 60 क्वेश्चन आपके बचे, उन 60 क्वेश्चंस में आपका एसएसटी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे आपके टीजीटी में। जितने आस्किंग कॉलेज रेगुलर करना चाहिए ना वो नहीं, देखिए क्या क्या रहता है कि आप कॉलेज कैसे भी कर सकते हैं, आपने बीए चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी किया हुआ है चाहे आपने रेगुलर किया हुआ है वो मैटर नहीं करता, बट हाँ उसमें मार्क्स आपके मैटर करते हैं, क्योंकि जब भी वैकेंसी आती है ना तो उसमें कुछ ना कुछ जो वेटेज है कुछ आपके मार्क्स को होता है वेटेज। तो आपने कहीं से कोर्स किया हो वो आपका चाहे कॉरेस्पॉन्डेंसी है चाहे आपका रेगुलर कोर्स है वो इक्विवेलेंट ही ग्राउंड पे होता है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता एज ए जॉब के लिए। देखिए कॉलेज रेगुलर करना ही बेनिफिशियल होता है, वो बिल्कुल ठीक बात है आपकी, मतलब जनरली आप बीकॉम जो भी करिए मतलब आप हर कोर्स को रेगुलर से ही करिए तभी बात बन पाएगी, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डेंस से एक तो ना तो मार्क्स आपके अच्छे आते पहली चीज, और ना ही आपकी सब्जेक्ट में इनडेप्थनेस हो पाती है। तो ये तो एडवाइजेबल होता है कि करना तो रेगुलर ही चाहिए।

0: गुड आफ्टरनून,
1: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून। काफी हम लोग बात कर चुके हैं लाइफ स्किल्स के ऊपर, और कुछ सेशंस आई बिलीव आप लोग खुद कर रहे हैं, खुद से बना के, या कुछ सेशंस जो हम लोगों ने दिए हैं उनको भी आप शायद यूज करते होंगे। क्योंकि ये नॉन यूनिक है, और ज्यादातर हम चाहते हैं कि जितने लोगों के साथ आप ये कुछ शेयर कर सकें, उनकी सॉफ्ट स्किल्स बिल्डअप हो सकें। इंटरनेट से भी वीडियोस आप ऐड कर सकते हैं सेशंस को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। एक मेजर लाइफ स्किल जो हमें एज ए इंडिविजुअल भी आनी चाहिए और एज अ यू नो फैमिली पर्सन भी आनी चाहिए, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऊपर हम मनी को लेके हम सबको कुछ ना कुछ इश्यूज रहते ही हैं, चैलेंजेस रहते ही हैं। चाहे आज हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम आज अर्न कर रहे हैं, चाहे हम हाउसवाइफ हैं, चाहे हम स्मॉल एंटरप्रेन्योर हैं। सो वी थॉट दैट इट कुड बी इम्पोर्टेंट टू हैव अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव टू अ लाइफ स्किल, बिकॉज ज्यादातर स्कूल्स में, कॉलेजेस में इस पे बात होती है, लेकिन ये लाइफ स्किल ऐसी है जो जब हम लाइफ में जब इस इसके अंदर उतरते हैं तभी वो धीरे धीरे करके बिल्डअप होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीजें प्रॉबली हैं जो अगर हम शुरू से ही अपने दिमाग में रखें तो हम एक बेटर फंड मैनेजर या बजट मैनेजर या इंडिविजुअल जो अकाउंट की जो हमारी अपनी वेल्थ मैनेजमेंट है उसको हम बेटर कर सकते हैं। सो टेकिंग दैट आई कैन शेयर सम स्लाइड्स। मैंने अपनी जो एक फोटो है वो लिखी, एक लगाई हुई है, बट आई बिलीव जब आप ये सेशन अपने बेनिफिशरीज के साथ करेंगे, उसमें बच्चे भी होंगे, उसमें औरतें भी होंगी, उसमें यूथ भी हो सकता है, उसमें हो सकता है बुजुर्ग भी होंगे। सो सबसे पहले हमें ये जरूरत है उस चीज की मैपिंग की कि मुझे एज एन इंडिविजुअल मनी चाहिए क्यों। सो कैन एनीबडी टेल कि मनी हमें लाइफ में चाहिए क्यों होता है? पहले जब रुपए नहीं आए थे तभी भी तो जिंदगियां चलती थी ना, बार्टर सिस्टम से चलती थी, या फिर उसके अलग तरीके होते थे। अब क्योंकि मनी है, करेंसी आई है, तो ये अब हम क्रिप्टो करेंसी में जा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में जा रहे हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि सैलरीज बैंक में क्रेडिट होती है, हम मनी को फिजिकल फॉर्म में तो देख ही नहीं पाते, वो आती है ईएमआईज में चली जाती है, पेमेंट्स में चली जाती है, स्कूल फीस में चली जाती है। सो एज एन इंडिविजुअल मनी हमें चाहिए क्यों, कोई बता सकते हैं? एज एन इंडिविजुअल इसमें कुछ सही कोई गलत नहीं है, हमारी जिंदगी में मनी हमें क्यों चाहिए, इफ समबडी कैन यू नो डिफाइन दैट।
1: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बायरेड्डीपल्ली।
0: हेलो जी, मनी
1: एक बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए मैम,
0: हमें बेहतर जिंदगी के लिए चाहिए। वेरी गुड जी।
1: अच्छे से कंफर्टेबल लाइफ के लिए।
2: मैम, मनी की हमें आवश्यकता मैम हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करने के लिए भी बहुत जरूरी थी आज के टाइम में, क्योंकि एक तौर पर ये एसेट के तौर पर इसे आइडेंटिटी दी गई है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। सो बेसिक नेसेसिटी यानी कि खाना, कपड़े हो गए, हमारी एजुकेशन हो गए। एजुकेशन तो राइट टू एजुकेशन के अंदर फ्री है, लेकिन फिर भी हमें क्वालिटी एजुकेशन के लिए काफी मनी चाहिए होता है। डू वी अग्री ऑन दैट?
1: यस मैम।
0: तो एनीथिंग एल्स? एक तो बेहतर लाइफ के लिए हमें चाहिए, बेसिक लाइफ के लिए चाहिए जो कि अभी हमारे दोस्त ने हमें बताया, संगीता जी ने बताया कि बेटर लाइफ के लिए चाहिए, और किस चीज के लिए मनी चाहिए हमें?
1: मैम इस प्रिया वर्मा बाराबंकी सेंटर। मैम जो हमारी दैनिक आवश्यकताएं होती हैं जैसे रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए
0: हाँ
1: हमें
0: जी
1: मनी की नीड होती
0: बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि हमारे फतेहपुर सेंटर से किसी ने बताया था शायद कि बेसिक नीड्स, और आप भी वही बोल रहे हैं, दैनिक दैनिक नीड्स जो हैं, जो आवश्यकताएं हैं उनके लिए हमें चाहिए पैसा चाहिए, यानी कि पेट भरा होना चाहिए, कपड़े होने चाहिए, बेसिक जो हमारी नीड्स हैं उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। ये दो चीजों के अलावा किसी और चीज के लिए हमें मनी चाहिए होता है? आप अपनी जिंदगी में किसी और चीज के लिए पैसा चाहते हैं? दैनिक नीड में क्या हमारे और कुछ जरूरतें आती हैं, या ऐसी कोई चीज जिसके लिए आपको मनी चाहिए होता है?
1: इसमें हमारा
0: हेल्थ
1: स्वास्थ्य हुआ, शिक्षा हुई।
0: के लिए चाहिए। वेरी गुड।
1: एक्चुअली मैम
0: एजुकेशन
1: इनफैक्ट हर एक चीज के लिए हमें मनी चाहिए ही है एट प्रेजेंट।
3: सब कुछ के लिए, इवन पानी भी अभी तो पैसे से ही है, सब कुछ के लिए
0: तो वो तो बेसिक नीड्स में कवर हो जाता है ना, पानी हो गया, रोटी कपड़ा मकान हो गया, राइट।
2: मैम
0: जी बताएं।
2: मैम सत्यम फतेहपुर मैम, हमें मैम मनी की आवश्यकता मैम, कोई स्टार्टअप करने के लिए भी पड़ती है, जैसे हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए कर रहे हैं,
0: बिल्कुल
2: के लिए कर।
0: बिल्कुल, तो हमें बेसिक से उठ के अगर हमें कोई रोजगार शुरू करना है, बहुत ही अच्छा, थैंक यू सो मच। मैं इसी तरह के इनपुट की कोशिश कर रही थी।
3: मैम
0: जी
3: फार्मिंग
0: बताइए।
3: के लिए भी चाहिए होती है, मैंने
0: फार्मिंग के लिए,
3: माय
0: बिजनेस के लिए चाहिए, ठीक है, और
3: गॉड।
0: बताएंगे। क्या आपको अगर अच्छा फोन चाहिए उसके लिए पैसे चाहिए होते हैं? यहाँ तो सब अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन हम मनी खर्च किन किन चीजों पे करते हैं आजकल? हम एक्सपेंसिव कपड़ों पे खर्च करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हम अलग अलग जगह पे घूमने जाएं, उसके लिए हमें मनी चाहिए होता है। हम चाहते हैं कि कभी कभी की अच्छी अच्छी जगह पे खाना खाने जाएं, करीबन मतलब कभी कभी तो हम जाएं अच्छी जगह पे, कोई हमें बहुत फैंसी सा रेस्टोरेंट पसंद है, तो उसके लिए हम चाहते हैं कि हमारे पास मनी हो। क्या ऐसा होता है हमारे साथ?
4: यस मैम, पर्सनल ग्रूमिंग पर भी मैम इस टाइम पर बहुत ज्यादा खर्चा होता है, क्योंकि जो बहुत जरूरी है आपको प्रेजेंटेबल लगना जब आप बाहर जा रहे हो, तो इन सब चीजों पे काफी एक्सपेंसेस आते हैं।
0: बिल्कुल, तो ये जो सना ने बोला ये बहुत हटके है हमारी बेसिक जरूरतों से। बेसिक जरूरतें यानी कि हमारा रोटी कपड़ा मकान हो गया, एजुकेशन हो गई, इसके लिए तो हमें ये तो हमारी बेसिक नीड्स में आ जाता है। जो सना ने बोला या जो फतेहपुर से बोला था अभी किसी ने, कि हमें एंटरप्राइज शुरू करने के लिए, अपना बिजनेस या लघु उद्योग शुरू करने के लिए सीड मनी चाहिए होता है, यानी कि हमें अपना कुछ ऐसा पैसा चाहिए जो हम अपना उद्योग शुरू कर सकें या अपना बिजनेस शुरू कर सकें। और बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है जो कि सना ने बोली है, कि आजकल हम बेसिक से उठ के अपनी एक इमेज मैनेजमेंट, जिसको कह सकते हैं कि हम बाहर जा रहे हैं तो हमें क्या लगता है कि हमें अपने आप को किस तरह प्रेजेंट करना चाहिए, उसके लिए भी हम काफी पैसे खर्च करते हैं एज एन इंडिविजुअल। हो सकता है सभी नहीं करते हो, बट बहुत आजकल ये जो सोशल मीडिया की वजह से ना, हमें ये बहुत लगता है कि अच्छा ऐसे कपड़े होने चाहिए, ऐसा मेकअप होना चाहिए, इस तरह का फोन होना चाहिए, इस तरह के कपड़े, इस तरह की जगहों पे मुझे जाके फोटोज लेना है। तो इसको हम बोलेंगे कि ये एक बेसिक जरूरत नहीं है, लेकिन आज के दौरान में ये एक फैशन या फिर एक ऐसी जरूरत बन गई है जो कि हमारी शायद इमेज मैनेजमेंट, जिसको हम कह सकते हैं कि हम चाहते हैं हमारी इमेज ऐसी हो, तो हम उस इमेज मैनेजमेंट के लिए भी बहुत पैसा खर्च करते हैं। उसकी जरूरत है नहीं है वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है, उसमें सही या गलत कुछ भी नहीं हो सकता या है। तो अब जब हम मनी की बात करते हैं ना, तो अभी देखिए सबने अलग अलग जवाब दिए, तो मनी की वैल्यू मेरे लिए कुछ और हो सकती है, सना के लिए कुछ और हो सकती है, संगीता जी के लिए कुछ और हो सकती है, हमारे जो और दोस्त जुड़े हैं सभी के लिए मनी की जो वैल्यू है वो अलग अलग हो सकती है। आज मैं स्टूडेंट हूँ तो मेरी जरूरत हो सकता है कुछ और होगी, आज मैं हाउसवाइफ हूँ या मैं एज ए मदर हूँ तो मेरी जरूरत कुछ और हो सकती है। तो मनी की जो नीड है वो समय समय पर चेंज होती है, और अमाउंट ऑफ मनी क्या चाहिए वो भी चेंज होता है। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ मनी की बात करेंगे, ये बहुत जरूरी है कि हर इंडिविजुअल इसकी विशेषता अपने हिसाब से डिफाइन करे, और इसमें कोई सही या कुछ गलत नहीं है, बिकॉज किसी के पास थोड़ा है तो उसमें भी शायद वो खुश है या ना खुश है, किसी के पास बहुत है तो उसमें भी वो खुश है ना खुश हो सकता है। सो मनी इज टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, द नीड ऑफ दैट मनी इज ऑल्सो टू बी डिफाइंड फॉर योर सेल्फ, योर फैमिली, योर चिल्ड्रन, योर फ्यूचर, यू नो पेरेंट्स, और योर फ्यूचर एंड द फ्यूचर ऑफ योर नियर एंड डियर वंस। एवरीबडी अग्रीज, या इसमें किसी की कोई और सोच है या कोई और हेल्प करना चाहता है इसको डिफाइन करने के लिए? तो पहले तो हमें इम्पोर्टेंस ऑफ मनी समझना है। यहाँ पे थोड़े बच्चे भी हैं, ये प्रिया वर्मा के जो सेंटर से हैं,
1: मैम बाराबंकी सेंटर।
0: बाराबंकी से हैं, ओके फाइन। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एटलीस्ट दिस एज ग्रुप टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ मनी। ये टीओटी सेशन ज्यादा है, सो आई बिलीव जो हमारे कोऑर्डिनेटर्स हैं वो इस बात को समझ पाएंगे, और अगर इन बच्चों के कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उस पर आज बात कर सकते हैं, या फिर आपके सेशंस के दौरान भी आप इन चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। सो जैसे अगर हम अपना एक मंथली बजट बनाएंगे, मनी मैनेजमेंट की बात हम ये कर रहे हैं कि ठीक है, एज ए स्टूडेंट मुझे क्या मैनेज करना है, कितना मुझे बजट चाहिए, एज ए हाउसवाइफ मुझे क्या चाहिए, एज ए एंटरप्रेन्योर अगर हम अपना कोई उद्योग शुरू करना चाह रहे हैं तो मुझे किस तरह का बजट चाहिए, वो बजट बनाना बहुत जरूरी होता है। तो हम जब एक महीने का भी बजट बनाएंगे ना, तो मोटा मोटा हमें पता चलेगा कि हमारा मेजर खर्चा वो किस चीज के लिए रहा है। कभी किसी ने बजट बनाया यहाँ पे अपने, जेन्युइनली बताना कि किसी ने भी बजट बनाया है अपने घर का या फिर बिजनेस का या फिर सेंटर का, तो आप बनाते ही होंगे, सेंटर का बजट बनाया है। कभी किसी ने ये सोचने की कोशिश करी है कि मेरी जो सैलरी आती है या मेरी जो इनकम आती है वो जाती कहाँ, जब जब मैं

0: ये सब मैंने बना कर रखा है, और कभी कभी अचानक भी ज्यादा पैसों की जरूरत लग जाती है, तो
1: बिल्कुल बिल्कुल सही,
0: थोड़ा मैनेजमेंट करना।
1: बिल्कुल सही। हम पूरा बजट बनाते हैं, कभी कभी ऐसी चीजें हमारे सामने आ जाती हैं जो हमने शायद प्लान भी नहीं करी होगी। तो बहुत जरूरी है पहले तो अपनी नीड्स को समझना। नीड्स हो गई जो बेसिक हमारी जरूरतें हैं, उनको पूरा करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत है, कितना कितना बजट की जरूरत है। पहले तो हमें वो समझना है अपनी लाइफ में, अपने इंडिविजुअल लाइफ में। और फिर दूसरी आ गई वॉन्ट्स, जिसकी वॉन्ट्स मतलब जिसकी हमारी जरूरत नहीं है, उसके बिना भी हम जी सकते हैं, लेकिन एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छा आउटलुक मेंटेन करने के लिए हमें वो चीजें चाहिए। मुझे अच्छा फोन चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, अच्छा जगह पे खाना खाना चाहती हूँ। खाना तो मैं बेसिक भी खा सकती हूँ, घर पे बना हुआ, खुद का बनाया हुआ, मम्मी के हाथ का बनाया हुआ, या बहन के या भाई के हाथ का, किसी के भी हाथ का बनाया हुआ खाना मैं खा के खुश रह सकती हूँ। लेकिन मुझे चाहिए कि मैं एक रेस्टोरेंट में जाऊँ, वहां जाके अच्छे कपड़े पहनूं और फिर वहां जाके अच्छा सा खाना खाऊं और टाइम स्पेंड करूं, थोड़ी सेल्फीज लूं, वो सेल्फीज को मैं पोस्ट करूं, तो वो हो गई मेरी वॉन्ट। तो ये नहीं कहना है कि नीड्स और वॉन्ट्स जो है वो दो अलग अलग चीजें हैं। नीड्स मतलब अगर मेरी जरूरतें पूरी हैं तो मैं जी सकती हूँ, मैं वॉन्ट्स पे तब जाती हूँ जब मेरी नीड्स पूरी हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी जरूरतों को कम करके अपनी वॉन्ट्स को पूरा करूँ। जब हम वो करना शुरू करते हैं तब हमारा बजट जो है वो हिल जाता है कि भाई बेसिक नीड, राशन तो घर में आया नहीं महीने का, लेकिन हमने जाके बाहर रेस्टोरेंट में खाना खा लिया और एक ही बारी में 10,000 रुपए खर्च हो गए, तो अब राशन तो आएगा नहीं क्योंकि वो हमने पैसा खर्च कर दिया। तो एक दिन तो मैंने अच्छी जगह पे खा लिया, मेरे पास फोटोज भी आ गई, मैंने उसको पोस्ट भी कर दिया, मेरे पास 10,000 लाइक्स भी आ गए, बट क्या वो मेरी जरूरत थी या नहीं थी, ये आप इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे अपने लिए। इसमें अगेन कुछ सही या कुछ गलत नहीं है, आपकी जिंदगी का क्या नजरिया है आपकी जिंदगी के लिए वो यू कैन ओनली डिफाइन, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल टू अंडरस्टैंड। ये बहुत जरूरी है एक लाइफ स्किल होना कि पैसे की अहमियत आज समझिए, कल बेहतर, आज और बेहतर कल के लिए। चाहे हम स्टूडेंट हैं, चाहे हम अभी नया नया जॉब शुरू किया है, या चाहे हम एक लघु उद्योग बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, चाहे हम हायर एजुकेशन करना चाहते हैं, काम भी कर रहे हैं और एक हायर एजुकेशन भी करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं अपनी कुछ बिजनेस यहाँ पे कर रही हूँ और थोड़े टाइम में मैं ये चाहती हूँ कि मेरा पर्सनल ग्रोथ हो और मैं कुछ आगे जाके एडवांस कोर्सेज करूँ, तो मुझे उसके लिए भी सेविंग्स करनी है। तो बहुत जरूरी है हम एक बजट बनाएं। कुछ लोग मंथली बनाते हैं, कुछ लोग 2-3 महीने का बना सकते हैं, कुछ लोग साल का बना सकते हैं, इट्स अप टू यू, बट डू मेक अ बजट एंड डू ट्राई एंड ट्रैक कि जो बजट आपने बनाया एट द एंड ऑफ द मंथ आप कहाँ पे थे, तब आप अपने आप को पहचान पाएंगे। कभी कभी हम क्या कहते हैं, इम्पल्स इम्पल्स खर्चे भी कर देते हैं, कभी कभी इमरजेंसी खर्चे हो जाते हैं। जैसे अभी हमारे पास जो हमारे फ्रेंड फतेहपुर से जुड़े हुए हैं, उन्होंने बताया कि कभी कभी वो कोशिश करते हैं कि इन इन चीजों पे खर्चा करें, बट ऐसी कोई इमरजेंसी आ जाती है या ऐसी कोई फीस आ जाती है जो उन्होंने शायद प्लान नहीं करी थी और इमिडिएटली उनको पे करना पड़ा, तो उस चीज में उनका बजट हिल जाता है। जब आप ये 3, 4, 5, 6 बारी करेंगे ना, तो आप खुद इफेक्टिवली अपना बजट, जो मंथली बजट्स हैं या जो साल के या 6 महीने के आपका जो एक प्लान है बजट को लेके, वो आप अंडरस्टैंड करना शुरू करेंगे और जो भी मनी आपके पास है उसको आप एक बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। अच्छा, जैसे किसी के पास सैलरी आती है, मान लीजिए जो काम कर रहे हैं, जब सैलरी आती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं, कोई एग्जाम्पल्स दे सकते हैं?
0: मैम, सबसे
1: हेलो मैम,
0: पहले जो
1: नमस्ते मैम। नमस्ते जी।
0: जी गजराज बोल रहा मैम, महाराज से।
1: हाँ जी, गजराज सर।
0: वैसे मैम अभी जो सेशन चल रहा बड़ा अच्छा, अभी तक किसी अभी तक जो योजना है बजट को लेकर, पारिवारिक खर्चों को लेकर किसी, मैं मेरी बताऊं तो मैंने अभी फोकस नहीं किया। बाकी ये आज का सेशन से आगे के लिए काफी कुछ सीखने को मिलेगा, और जिनके साथ हम काम करेंगे उनको भी ये समझाने की जरूरत है मैम। अब जो
1: जी
0: आज अभी आप पूछ रहे हो कि क्योंकि जैसे जो सैलरी मिलती है, तो सबसे पहले तो जो राशन पर खर्चा कितना होता है, राशन पर खर्च होता है नंबर एक, तो 1 महीने में जितना भी जो अपन को जरूरत
1: बिल्कुल
0: होती
1: बिल्कुल,
0: है,
1: पेट
0: और
1: भरना
0: दूसरा
1: सबके लिए
0: पानी और
1: जरूरी,
0: बिजली,
1: ठीक है, पानी हो गया और बिजली हो गया,
0: और फिर एजुकेशन बच्चों के, उस

0: क्योंकि ये तो मनुष्य की जो अति जरूरत चीज है, जब तक राशन नहीं होगा जब तक उसका जीवन नहीं चलेगा,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो ये है मैम। इसलिए सबसे पहले राशन, यानी कि 1 महीने का कितना खर्च, जो सैलरी मिलती है वो उस पर नॉन तेल घी जो भी है जरूरतों पर चला जाता है मैम।
1: बिल्कुल
0: दूसरा
1: सही
0: फिर फोकस करते हैं कि क्योंकि बिजली नहीं है तो भी अंधेरा है, तो वो बिजली का बिल जो भी चुकाना होता, पानी पर खर्च है, फिर उसके बाद में बच्चों के एजुकेशन पर मिनिमम जो भी जितना बचता है वो धीरे धीरे ऐसे मतलब इस खर्चे होते चले जाते हैं मैम।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही बोला आपने। और कोई बताना चाहेगा? थैंक यू गजराज सर। गजराज सर ने बहुत सिंपल और सरल तरीके में बताया कि सबसे पहले तो जरूरतों को हम पूरा करते हैं, क्योंकि सबसे पहले जैसे सैलरी आती है या जिनका कोई बिजनेस है, कुछ मनी आता, तो महीने में सबसे पहले वो अपना राशन पूरा कर लेते हैं कि ठीक
0: जी
1: है, पूरा राशन, पूरे परिवार का पेट भरा होना चाहिए, तो हमने उसको राशन पूरा कर दिया। उसके बाद बिजली पानी होना चाहिए, हमारे ऑब्वियसली घरों में बिजली पानी का खर्चा है, वो खर्चे पूरे हो जाते हैं। तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट है एजुकेशन, तो ये तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं। हमारा हर मंथ मंथ दर मंथ ऐसे चलता रहता है, महीने दर महीने, महीने दर साल दर साल, बिल्कुल इन जरूरतों को हम पूरा करते रहते हैं। कोई और एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा इसके बाद, इसके साथ साथ किसी का कोई अलग नजरिया है, कुछ कोई अलग तरीके से अगर अपनी सैलरी को मैनेज करते हैं, कोई शेयर करेंगे?
2: मैम, हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं पहले हम उनको पूरा कर लेते, जो फिर मनी बचती है उसको हम अपने पास सेविंग्स रखते हैं, क्योंकि वो जो आगे मनी आएगी वो आगे भी काम कभी आ सकती है।
1: वेरी गुड। सो पहले हम बेसिक्स पूरा कर लेते हैं और जो बचा हुआ मनी है उसको सेविंग्स में रख लेते हैं। तो सेविंग्स में आप क्या सेविंग बैंक अकाउंट खोलते हैं, उसमें रखते हैं या कुछ इन्वेस्टमेंट करते हैं?
2: सेविंग अकाउंट में
1: सेविंग अकाउंट में रखते हैं, भाई कभी भी जरूरत पड़े तो हम उस सेविंग अकाउंट में से वो मनी निकाल सकते हैं। सेविंग अकाउंट पे कुछ ना कुछ इंटरेस्ट भी मिलता है, कुछ 3% के करीब हमें सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट भी मिलता है। तो जो जो सैलरी हमारी आई उसमें हमने बेसिक खर्चे निकाल लिए और जो बचा हुआ पैसा है वो हमारा सेविंग में पड़ा रहा, बहुत ही बढ़िया है। और कोई कुछ बताना चाहेगा? थैंक यू।
3: मैम, सबसे पहले प्रायोरिटी सैलरी आने के बाद होती है कि फीस जमा करनी है बच्चों की।
1: बिल्कुल
3: मैम, वो एक प्रायोरिटी है जो करना ही करना है, उसके अलावा जो ईएमआई है वो पे करना है। प्लस मैम, 5% मेरी सैलरी का हम एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे रख देते हैं, क्योंकि बच्चों का स्कूल है, कभी भी कोई फंक्शन हो गया स्कूल में या किसी भी चीज के लिए जरूरत पड़ गई या बच्चों की कोई हेल्थ का इश्यू हो गया, तो वो अर्जेंट नीड के लिए वो पैसे सेव करके रखने पड़ते हैं, 5% ऑफ द सैलरी
1: इमरजेंसी, आप उसको
3: वो बेनिफिट है।
1: इमरजेंसी फंड कह सकते। तो ठीक है, अब हमारे पास एक तीसरा पहलू आ गया जो सना ने बोला। अभी तक हमारे पास सिर्फ दो पहलू थे कि पहले हम अपनी बेसिक नीड्स जो है रोटी कपड़ा मकान उसके उसके ऊपर करते हैं, दूसरा था एजुकेशन, अभी तीसरा आ गया इमरजेंसी फंड, यानी कि एजुकेशन से बच्चों से रिलेटेड, क्योंकि सना एक यंग कपल है तो वो अपने बच्चों के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं कि भाई कुछ भी खर्चा आए तो बच्चों के लिए एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए। तो अब हमारे पास मोटे मोटे तीन पहलू आ गए, पहला रोटी कपड़ा मकान, दूसरा हमारी एजुकेशन, तीसरा इमरजेंसी फंड। इमरजेंसी फंड हेल्थ के लिए भी हो सकता है, एजुकेशन के लिए भी हो सकता है, कुछ भी। एक हमने इमरजेंसी फंड के लिए खुद से, वो कह रही है कि हमने बाय डिफॉल्ट 5% अपनी इनकम का सेविंग्स का उससे कोई लेना देना नहीं है, वो एक इमरजेंसी फंड में उसको रख देते हैं 5%। बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ, किसी और का कोई और तरीका है अपनी सैलरी को मैनेज करने का, कुछ अलग, इससे कुछ अलग, अगर इसके कुछ एडिशन में अगर कोई कुछ बताना चाहता है, कुछ भी सही या गलत नहीं है, हम कुछ नया सीखने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है आपके तरीके से, जैसे मैं कभी इमरजेंसी फंड में शायद नहीं करती हूँ, लेकिन आज सना की बात सुन के शायद मैं आज से 2%, 1%, 3%, 5% इमरजेंसी फंड में हो सकता है रखना शुरू कर दूं। कोई कुछ और करता है अलग सा, ऐसा कोई डब्बे के नीचे छुपाता है पैसे, हस्बैंड से आटे के अंदर, चावल के अंदर, ऐसा नहीं करते?
3: ऑल द लेडीज मैम,
1: ऑल द लेडीज डू दैट। सो उसको उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको उसको भी हम एक सेविंग के तौर में, मतलब हमने कहीं बैंक में नहीं रखा, उसमें हमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिल रहा, लेकिन एज ए वो भी एक इमरजेंसी फंड ही है, लेकिन वो हमने एज ए सेविंग की तरीके से उसको अपने बचत की तरीके से रखा, यानी कि हो सकता है हमने घर की इनकम के लिए 100 रुपया निकाला हो सैलरी में से, लेकिन हमने घर को इतने अच्छे तरीके से चलाया कि 80 रुपए में उस महीने के खर्चे हो गए और जो 20 रुपए बचे उसको हमने एक बचत के तौर पे रख दिया, यानी कि बजट बनाया और उसको भी बचत के तौर पे रख दिया। ये हम सब करते हैं, खासकर लेडीज करती हैं, शायद जेंट्स नहीं करते हो या करते हो या इससे भी इफेक्टिवली करते हो, तो ये भी एक सेविंग्स का तरीका है।
0: चंद्र प्रकाश बोल रहा हूँ।
1: जी सर,
0: मैं तो खुद तो मेरी बचत करता ही हूँ, पर लेकिन जो मेरे व्यूवर स्टाफ है जो भी साथ काम के, सबको 20% राशि की आरडी का पोस्ट ऑफिस में आरडी करवा रखी मैंने सबकी।
1: वेरी गुड। सो पोस्ट ऑफिस में जो कि सेफ भी माना जाता है, अच्छा इंटरेस्ट भी मिलता है उसके ऊपर, और एक कंपल्सिव सेविंग भी हो जाती है,
0: स्वीपर से लगा,
1: दैट इज अनदर।
0: स्वीपर करता है उसकी भी मैंने उसके हिसाब से आरडी करा रखी है। बी बार महिला है उनकी भी आरडी करा रखी है। तो सबकी जितना पैसा आता है एजेंट वही बुला लेता हूँ सेंटर पे, सबको जमा करवा देता हूँ। तो उनके लास्ट में 100 रुपये पे उनको 6,500 करीब मिलेंगे उनको 5 साल में। तो एक उनकी सबकी सेफ बचत आदत पड़ेगी, सबकी बचत होने की।
1: तो छोटी छोटी बजट से आपने देखा किस तरीके से स्मॉल सेविंग्स कैन यील्ड टू अ बिग अमाउंट। एक 5 साल के हमें सोचने में लगता है कि 5 साल बहुत दूर है, लेकिन वो छोटी छोटी छोटी छोटी सेविंग्स करते करते लमसम मनी हमको एंड में मिल जाता है। थैंक
3: मैम,
1: यू चंद्र
3: कैन आई
1: प्रकाश
3: से
1: जी।
3: समथिंग मैम?
1: जी जी मैम, बिल्कुल।
3: मैम, आई डोंट नो इफ आई कैन से लाइक दिस, आई सेव एवरी मंथ सम मनी टू गिफ्ट माय डॉटर एवरी ईयर समथिंग इन गोल्ड मैम, सो एवरी मंथ आई सेव।
1: तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो आप एक अलग से फंड क्रिएट करते हैं, बिकॉज आपकी प्रायोरिटी वो है कि यू हैव टू गिव समथिंग टू योर डॉटर, राइट? अभी आपकी जो बेसिक नीड्स हैं वो शायद आप प्रोबेबली उस एज में पहुंच गए हैं, उस स्टेज में पहुंच गए हैं आपकी लाइफ में जहां पे बेसिक नीड्स के बियॉन्ड, क्योंकि आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी हो चुकी है, यू हैव मेड कमिटमेंट्स टू देयर यू नो मैरिज एंड अदर अदर थिंग्स दैट यू हैव, यू माइट हैव सेविंग्स फॉर योर हेल्थ एंड एमरजेंसी। तो आपको लगा कि आपको एक ऐसा फंड क्रिएट करना है जो कि लमसम हो एंड यू कैन गिफ्ट टू योर डॉटर एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये जो हम गोल की बात कर रहे थे कि आपको मनी क्यों चाहिए, ये आपको खुद को डिफाइन करना एक परफेक्ट एग्जाम्पल है उसका। शायद मेरी जिंदगी में अभी वो नीड नहीं है क्योंकि मेरे बच्चे छोटे हैं, जैसे सना ने बोला उनके बच्चे छोटे हैं, तो हमारी नीड्स अभी इस वक्त है उनके एजुकेशन को लेके, फ्यूचर को लेके। बट शायद जो हमसे थोड़े बड़े हैं, जो हमसे थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं, उनकी नीड बदल गई है क्योंकि उनको एक अलग लेवल की जरूरत है। सो आई थिंक, थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग, इट्स अ परफेक्ट एग्जाम्पल जो मैं कहना चाह रही थी कि नीड हम सबकी मनी को लेके हर वक्त अलग होती है और वो नीड बदलती रहती है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई दैट नीड एंड वर्क योर बजट अकॉर्डिंग टू योर नीड। एज ए स्टूडेंट हमारी नीड अलग हो सकती है, हमें उसे पहचान के अपना डिफाइन करना है कि मुझे लाइफ में कितना मनी चाहिए अपनी स्टूडेंट या अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करने के लिए। जब वो हो जाता है, हमें कितना बजट चाहिए अपने घर
3: हेलो,
1: परिवार को चलाने के लिए। हाँ जी,
3: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते जी,
3: कैसे हो मैम? ठीक
1: मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं?
3: है मैम, हम भी, और आपको देख के और ज्यादा ठीक
1: अरे हाँ, हम भी आपको देख के खुश हो गए, और आप
3: गए। अच्छा
1: बोल रहे हैं ये
3: मैम,
1: सबसे अच्छी बात है। जी
3: मैं मसून सेंटर से बोल रही हूँ। हाँ जी, मोबिलाइजेशन का काम करती हूँ मैम, शोभा नाम है मेरा।
1: जी जी जी
3: मैम,
1: बताओ
3: हमने
1: शोभा
3: जो
1: जी,
3: हमारी सैलरी मिलती है ना, हम उसमें से अपने पैसे निकाल के हम बचत जमा करते हैं। मैम,
1: कहाँ पे करते हैं आप बचत जमा?
3: हमने 10 महिलाओं का ग्रुप बना रखा है।
1: अच्छा ठीक है,
3: 10 महिलाओं का ग्रुप बना के हम उसमें से 200 रुपये पर मंथ निकाल के अपनी बचत जमा करते हैं, सेव करते हैं।
1: तो फिर वो आपको मिलता कैसे है, वापस कैसे मिलता है?
3: मैम, वो पैसा हमको, जैसे हमें कभी कोई इमरजेंसी आ जाए घर में, जरूरत पड़ती हो, तो हम एक प्रस्ताव बनाते हैं मिलके 10 लेडीज इकट्ठा होके, तो उसमें से जिसको जितनी जरूरत होती है उसमें से पैसे निकालते हैं और अपना काम चलाते हैं हम। और फिर
1: वेरी
3: वो
1: गुड,
3: 200 रुपये बचत तो हमेशा ही जमा होती है, लेकिन पर उसकी किस्त बन जाती है।
1: वेरी गुड।
3: 1% का ब्याज है मैम इसमें।
1: 1% का ब्याज। तो
3: हाँ जी,
1: आपने ये एक लोकल लेवल पे जो सेविंग स्कीम है अपनी महिलाओं के साथ, एक महिला ग्रुप के साथ वो शुरू किया है, राइट?
3: हाँ जी,
1: तो ये जो है, ये आपको एट ए टाइम ऑफ जो इमरजेंसी है या ऐसी कोई बेसिक जरूरत है जो यकायक आ जाती है, उसके लिए आप उसको, इस फंड को यूज कर लेते हैं,
3: हाँ जी।
1: राइट? बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल ये आपने दिया। तो जब हम अपने बेनिफिशरीज के साथ बात करेंगे, जैसे चंद्र प्रकाश जी ने भी बताया कि हर किसी को ये जो स्किल है एज ए लाइफ स्किल आना बहुत जरूरी है, स्पेशली आने वाली जेनरेशन को, क्योंकि आने वाला जो टाइम है ना वो इससे भी ज्यादा जो है स्ट्रेसफुल होने वाला है इमेज मैनेजमेंट के ऊपर,
3: बिल्कुल
1: कि अच्छा मुझे किस तरीके से अपने आप को दुनिया को दिखाना है। उस चीज में कहीं ना कहीं हम अपनी बेसिक जरूरतों को काट के हम अपनी इमेज मैनेजमेंट में लग जाते हैं, और हम फिर क्रेडिट कार्ड्स पे या फिर लोन्स लेके या फिर ऐसे एक विशेष सर्कल में फंसते चले जाते हैं जहां पे हम कितना ही कमा ले हमको वो कम ही पड़ता है। सो इट इज वेरी वेरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मनी को मैनेज करना सीखें अपने लेवल पे। हम किस लेवल पे हैं आज, लेवल एज इन हम स्टूडेंट हैं, हमारी शादी हो चुकी है, बच्चे हैं, हमारे घर में बुजुर्ग पेरेंट्स हैं जिन जिनकी हो सकता है हेल्थ कंडीशन ऐसी हो कि हमें उनके लिए भी सेविंग्स करना है। तो समय समय पे ये चीजें चेंज होती हैं और उस समय के अनुसार हमें अपना घर परिवार बजट मैनेज करना सीखना है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल जो कि हमारे बच्चों को, हमारे आने वाली पीढ़ी को समझना हमसे भी शायद ज्यादा जरूरी रहेगा। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बताया, अभी हमें सुन से जो एग्जाम्पल मिला है, सना ने जो बताया एंड शैलजा मैम ने बताया, स्टार्ट स्मॉल। इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि हम 10,000 रुपए की एफडी करें या 50,000 की एफडी करें या बहुत बड़े म्यूचुअल फंड में, आजकल हम देखेंगे म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना सही है, बहुत बहुत आसान है, ऐसे करके एड्स आती हैं। अगर इस समय पे हमें वो बड़ी चीजें नहीं समझ में आ रही या हम नहीं कर पा रहे, इट डज नॉट मैटर। हमारी पहले की जो पीढ़ी थी, जैसे कि मैंने बताया कि मेरी दादी या उनकी जो मदर थी, उनको उनकी कहानियां सुनेंगे तो ये होगा कि अच्छा उन्होंने अपनी जो मंथली उनके पैसे आते थे उनको मिलते थे हाथ में, उस टाइम पे तो लेडीज अर्न नहीं करती थी ना ज्यादा, उनको जो भी उनके हस्बैंड्स ने दिया या कुछ दिया वो घर के खर्चों में से बचत करके साल 2 साल 10 साल में इतने पैसे इकट्ठे कर लेती थी कि कभी कभी उनको खुद नहीं रियलाइज होता था कि इतने पैसे उनके पास पड़े हुए हैं। कहने का मतलब है कि स्टार्ट स्मॉल, आज आप छोटा भी अगर सेविंग कर सकते हैं, ऐसी बहुत सारी स्कीम्स भी हैं आजकल गवर्नमेंट के अंदर। हम स्कीम्स के ऊपर बात नहीं कर रहे, आज हम एटीट्यूड के ऊपर बात कर रहे हैं, पैसे को लेके जो एटीट्यूड है हमारा, उस लाइफ स्किल की बात कर रहे हैं। लेकिन उसकी बात करते करते भी हमें इतने सारे एग्जाम्पल्स मिल गए हैं कि कुछ जो अभी फतेहपुर से थे उन्होंने बताया कि वो सेविंग बैंक में रखते हैं, सना ने बताया वो इमरजेंसी फंड में रखते हैं, शैलजा मैम, संगीता हमारे साथ और चंद्र प्रकाश जी जो और 2-3 लोगों ने बताया कि वो अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने नॉन फॉर्मल या फिर फॉर्मल जो सेविंग स्कीम्स हैं, जैसे कि पोस्ट ऑफिस हो गई, प्रोविडेंट फंड है, आजकल तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स, बहुत सारी ऐसी स्कीम्स हैं जो हम छोटे लेवल पे स्टार्ट कर सकते हैं। छोटा लेवल एज इन अगर आज हम 100 रुपए भी बचा सकते हैं, 200 रुपए भी बचा सकते हैं, तो 5 साल 10 साल के बाद हमें वो मल्टीप्लायर इफेक्ट देता है। कई स्कीम्स ऐसी होती हैं, कई इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे होते हैं जो कंपाउंड इंटरेस्ट भी देते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स स्कीम्स हैं, उनको अगर अभी हम नहीं भी समझ पा रहे हैं तो हम सिंपल सेविंग, जो सिंपल सेविंग स्कीम्स हैं उनके उनको समझ के उसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसमें क्यों करेंगे, क्योंकि उसमें रिस्क कम है और अगर जब हमें इमरजेंसी में जरूरत हो तो हम वो फंड निकाल सकते हैं। लेकिन आदत सेविंग्स की होनी चाहिए, सेविंग्स की आदत ऐसे पड़ सकती है कि हम कंपल्सरीली कुछ परसेंट, 1%, 2%, 5%, 10% अपनी सेविंग्स का, अपने इनकम का सेविंग्स में रखें ही रखें। उस एटीट्यूड को बनाने की आज हम कोशिश कर रहे हैं, उस एटीट्यूड पे बात करने की आज कोशिश कर रहे हैं। जितने लोग हमारे साथ जुड़े हैं वो करीबन मतलब एक ऐसी एज पार कर चुके हैं जहां पे उनको सेविंग्स की आदत लग गई है, बट ये सेशन हम अपने बेनिफिशियरी के साथ करेंगे जो 15 से लेके हो सकता है 30 तक की एज में होंगे। वो एज ग्रुप जो है ना वो बहुत वनरेबल है। मैं अपने बेटे को भी देखती हूँ, उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके भी जो एटीट्यूड है टुवर्ड स्पेंडिंग, ठीक है अर्बन है, यहाँ पे एक्सपोजर ज्यादा है, बट ये एक्सपोजर हर जगह पे है क्योंकि जो फोन के जरिए से मीडिया है ना, वो सब तरीके से फैला हुआ है। तो ये चीज जो मनी को लेके हमारा एटीट्यूड है ना, कंजम्पशन का, मतलब आज अगर हमारे पास पैसा है तो हम उसे कंज्यूम करके खुश हो जाएं, कहीं ना कहीं वो हैबिट आ रही है। कुछ हमारी जनरेशन में भी है, कुछ हमारी आने वाली जनरेशन में भी है। हमारे से पहले वाले जनरेशन तो पूरा ही बचत की तरफ चलते थे, कभी कोई नीड उन्होंने पूरी करी ही नहीं। एक नई शर्ट लेने के लिए भी मुझे लगता है वो 100 बार 10 बार सोचते थे, इंक्लूडिंग माई पेरेंट्स। मतलब बहुत ही सेविंग्स की तरफ वो, उनका रुझान अलग ही लेवल का था। जब हमारी जनरेशन आई तो हमने एक मिक्स्ड, कुछ हम कंज्यूम करते हैं, कुछ हम अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करते हैं और कुछ हम सेविंग्स करते हैं। तो अगेन, सही या गलत कुछ भी नहीं है। द आइडिया इज टू आइडेंटिफाई योर नीड्स एंड वॉन्ट्स। पहले नीड्स को पूरा करके हम कुछ सेव करेंगे इमरजेंसी के लिए, या ऐसे कोई प्लानिंग के लिए, जरूरी नहीं है इमरजेंसी के लिए हम सेव करेंगे। अगर मेरा शौक है कि मुझे आज से 20 साल के बाद मुझे किसी बाहरी देश में घूमने जाना है, तो कोई ये बड़ी बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नहीं जा सकते। छोटा छोटा छोटा छोटा इन्वेस्ट करें, कहीं स्मॉल स्मॉल सेविंग्स करें, 5 साल 10 साल के बाद एक फंड ऐसा आ जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, हो सकता है आपका यही ऑब्जेक्टिव है। जैसे कि शारजा मैम ने बोला, उनका एक ऑब्जेक्टिव है, वो एक गिफ्ट करना चाहती हैं हर साल के एंड पे अपनी डॉटर को। सो आपका ऑब्जेक्टिव है, आपका फंड है, आप उसे मैनेज करेंगे, बट तभी कर पाएंगे अगर आप अपने फंड को तरीके से समझ पाए, अपनी नीड्स और वॉन्ट्स को दो मोटे मोटे भागों में बांट पाए। कभी कभी ना हम किसी चीज को देखते हैं और हमारे पास पैसा है, हमारे पास सेविंग्स भी है, कभी कभी लगता है हमें ना ये चीज खरीद लेनी चाहिए। तो जब मैं ये सेशन बना रही थी, बहुत प्यारी सी 30-day rule मेरे सामने आई। सो आई वॉन्ट टू शेयर विद यू, हो सकता है किसी को ये हेल्पफुल हो। तो ये रूल ये कहता है कि अगर मेरी बेसिक नीड्स पूरी हो गई, मेरा खाना पानी बिजली, मेरी एजुकेशन भी हो गई, बच्चों की एजुकेशन भी हो गई, अब मेरा दिल कर रहा है कि एक बड़ी सी कोई चीज लेने का, मान लीजिए मोबाइल फोन है, बहुत अच्छा सा नया मोबाइल फोन आया मार्केट में और मुझे वो लेना है, या एक बहुत सुंदर सी साड़ी आई है वो लेनी है, या एक बहुत अच्छा सा रेस्टोरेंट खुला है, सब उसमें जा रहे हैं, मेरी सारी फ्रेंड्स जा रही हैं, मुझे भी उसमें जाना है, लेकिन वो बहुत खर्चा हो जाएगा उसमें। जितनी मेरी सेविंग्स है, करीबन उसकी आधी जो सेविंग्स है वो निकल जाएगी। तो ये 30-day rule ये कहता है, बचत का ये रूल है कि आप जो ये डिसीजन लेना चाहते हैं ना, 30 दिन के लिए रुक जाइए। 30 दिन आज आप डिसाइड कर लीजिए कि हाँ ये चीज मेरे को लेनी है, वो पैसा आप अलग से 30 दिन के लिए डाल दीजिए, किसी एक FD में डाल दीजिए, तो 30 दिन की FD भी आती है आजकल। 30 दिन के बाद आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, आप सिर्फ उसका ध्यान नहीं करेंगे। आपको ये पता है कि 30th day ही मैं उसके बारे में सोचूंगा। तो 30-day rule ये कहता है कि अगर 30 दिन के बाद भी आपकी वो जरूरत उतनी ही प्रोमिनेंट है, तब तो आप उस चीज में इन्वेस्ट करिए। अगर आपके 30 दिन के बाद वो जो जरूरत है वो कम हो जाती है, या आपको नहीं लगता कि ठीक है ये तो वेस्ट हो सकता है, इसे बोलते हैं इम्पल्सिव परचेज। इम्पल्सिव मतलब मुझे, मेरी जो आज की सोच है या आज के इमोशंस है ना, कभी कभी हम उससे बहुत बड़ा खर्चा कर देते हैं, जो आगे जाके हमें अफसोस होता है कि अरे इसकी शायद इतनी जरूरत नहीं थी। इसके बारे में, बिकॉज हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है, आई वॉन्टेड टू लीव दिस विद यू, बट अगर आप चाहें तो बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज हैं इसके बारे में, ऑनलाइन स्टोरीज हैं 30-day savings rule के बारे में। आप चाहें तो ये स्टोरीज आप देख सकते हैं अपने बेनिफिशरीज के साथ, जब आप ये सेशन करेंगे यू कैन शेयर दो स्टोरीज। एंड मुझे लगता है ये वाकई, मैंने खुद भी कभी ऐसा प्रैक्टिस नहीं किया, तो ये बहुत आई थिंक प्यारा रूल है कि अगर कोई चीज हमें आज लग रहा है कि मुझे वो खरीद लेनी चाहिए, या मुझे उसमें पैसा इन्वेस्ट कर देना चाहिए, मुझे घूमने चले जाना चाहिए, इस जगह पे तो मुझे जाना ही जाना है, सारे लोग जा रहे हैं, 30 दिन के बाद भी अगर आपका दिल, आपका मन, आपकी जरूरत अभी भी वैसी ही है। ये हम इम्पल्सिव परचेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, जहाँ की हमारी सेविंग्स जो है वो खर्च हो जाती है, कभी कभी हमारा बजट पूरा हिल जाता है, उस चीज के बारे में हम इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। किसी के कोई एग्जाम्पल्स, कभी किसी ने ऐसा किया हो, कोई बहुत जरूरत की चीज लग रही हो और उसको 5 दिन के लिए रख दिया कि नहीं अच्छा 5 दिन के बाद सोचूंगी या सोचूंगा, ऐसा हुआ कभी किसी के साथ? नेक्स्ट टाइम लेट्स ऑल ट्राई, अगर ऐसा होता है, अगर हमें लगता है तो वी कैन ट्राई दिस एंड दिस माइट हेल्प अस बिल्ड आवर सेविंग्स अलॉट, और हम उस मनी को हो सकता है किसी और अच्छी चीज पे खर्च करने के लिए बचा लें. सो दिस इज वन टेक्निक. दूसरा एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट आया कि जो हमारी इनकम है उसको हम खर्च करने के दो तरीके हो सकते हैं. पहला तरीका जो ट्रेडिशनल तरीका है कि जैसे ही हमारी सेविंग्स आती है हम अपने बेसिक खर्चों में उसे खर्च कर देते हैं और जो बचा हुआ है उसको सेविंग्स में डाल देते हैं. ये एक ट्रेडिशनल वे है अपनी बजट मैनेजमेंट का. एक प्रोग्रेसिव वे और एक ऑल्टरनेट वे ये है कि जैसे ही हमारी इनकम हमारे पास आती है हम कंपल्सरीली सबसे पहले बचत में डालें उसको, और जो बचा हुआ पैसा है उससे हम खर्चे पूरे करें. तो ये अब अलग अलग लोगों की अलग अलग नजरिए हो सकते हैं इसके बारे में, बट जो सेविंग्स करने का तरीका है वो उल्टा होना चाहिए. पहले हम अपने 100 रुपए में से 5 रुपए 10 रुपए जो जितना भी मेरा जितने भी मुझे लगता है कि मैं सेव करना चाहती हूँ या चाहता हूँ पर मंथ, वो एंड में नहीं करेंगे, वो सबसे पहले करेंगे. जिसका एग्जाम्पल सना ने भी हमें दिया कि इनकम आते ही हम सबसे पहले अपना बचत का जो पोर्शन है उसको अलग कर लेंगे और खर्चे बाद में करेंगे. दैट इज अनदर वे ऑफ यूजिंग आवर मंथली बजट या हमारे साल दर साल का जो हमारे एक्सपेंसेस हो सकते हैं. देयर वाज अनदर रूल कि ये 50-30-20 का रूल है. इसके अलावा मुझे 70-20-10 का भी रूल मिला है. इसका कहने का मतलब वही है कि किस चीज पे हम कितना पैसा खर्च कर रहे हैं ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल अलग हो सकता है. तो 50% जो है हमारी बेसिक नीड्स के लिए हम हमेशा उसको रखें, यानी कि रोटी कपड़ा मकान, एजुकेशन, हेल्थ हो गया, इंश्योरेंस हो गया, इन सब चीजों पे आप समय समय पे अपना जो है एक्सपेंसेस, जो भी आपकी सालाना इनकम है उसका 50% आप खर्च करते हैं. हम सब खर्च करते हैं. 20% सेविंग कर सकते हैं, 10% सेविंग कर सकते हैं, 5% सेविंग कर सकते हैं. और कुछ आप देखिए हर वक्त सेविंग करते रहेंगे इतना तो कोई हम साधु का जीवन नहीं जी रहा, कोई भी नहीं जी रहा है. तो जरूरी नहीं है कि हर वक्त सेविंग मोड में ही रहना है. हमें कुछ अपने शौक भी पूरे करने हैं, हमें कुछ अपने इच्छाएं भी पूरी करनी है उस मनी के लिए, क्योंकि हर कोई इंसान चाहता है कि मैं कुछ ना कुछ समय समय पे अपने आप को, अपनी फैमिली को या अपने जो हमारे नियर एंड डियर वंस हैं उनको मैं कुछ अलग रिवॉर्ड सा दूं. वो आती है बॉन्ड्स में, वो आती है हमारी लग्जरी में. हो सकता है कुछ लोग दिवाली पे नए कपड़े खरीदते हैं, कुछ लोग ईद पे नए कपड़े खरीदते हैं, हो सकता है कुछ लोग मंथली बोलते हो कि ठीक है मुझे कुछ ना कुछ बचत करके अपने लिए या अपने बच्चों के लिए नया खरीदना ही है. तो उसके लिए भी आप पहले से प्लानिंग करके चलें. जब आप प्लानिंग करके चलेंगे तो आप इफेक्टिवली यूज करेंगे, इंपल्सिवली नहीं यूज करेंगे. इंपल्सिव में फिर हमारा 30-day रूल आ जाएगा कि अगर इम्पल्स बाय है तो 30 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, 15 दिन के लिए मैं रुक जाऊं, अगर 15 दिन के बाद भी मुझे वो जरूरत लगती है तो हम वो चीज को परचेज कर सकते हैं. ये छोटी छोटी टिप्स हैं. अगेन आई वुड से कि हम हो सकता है कर रहे हो इसको, लेकिन ये सेशंस हमने अपने बेनिफिशरीज के लिए भी बनाए हैं जिसमें कि बच्चे भी हैं, यूथ भी है, शायद उन्होंने अभी कमाना शुरू नहीं किया, लेकिन 20-25 साल की उम्र में जो कमाने लगेंगे अगर पहले से ही शुरू से ही वो आदत डल जाए कि हाँ हमें बचत करते हुए चलना है. तो आप ये सोचिए जो 20 साल में सेविंग्स करना शुरू कर देगा जब तक कि वो 50 साल का या 60 साल का हो जाएगा, कितनी सारी सेविंग्स उनके पास इकट्ठी हो जाएंगी. सो दिस इज अ हैबिट मैनेजमेंट, दिस इज अ बिहेवियर मैनेजमेंट जो कि हमें खुद से अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना है. सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट सेशन. आई थॉट कि दिस इज वन ऑफ द वेरी इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जिसके बारे में हमने फॉर्मली कभी बात नहीं करी है. सो दिस इज समथिंग दैट आई वॉन्टेड टू शेयर. आई जस्ट स्टॉप शेयर. ऑल राइट, सो दिस वॉज अ वेरी स्मॉल सेशन ऑन फाइनेंस मैनेजमेंट. कुछ टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी. दिस यू कैन शेयर विद द बेनिफिशरीज, स्पेशली जैसे कि चंद्र प्रकाश जी ने बोला वो उन्होंने आदत डलवाई है, ना कि सिर्फ अपने बेनिफिश, ना कि खुद को बल्कि अपने स्टाफ को भी, इंक्लूडिंग एवरीबडी, जितने लोग उनके साथ जुड़े हैं सेंटर पे। सेविंग्स की अहमियत उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट करी है। आई वुड से सेविंग्स जो है हम छोटे से शुरू कर सकते हैं, जितना जल्दी शुरू करें, जितना इनफॉर्मल करें फॉर्मल करें। इनफॉर्मल मतलब हम सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में रखें, एफडी में उसको रखें, या फॉर्मल तरीके से किसी इन्वेस्टमेंट में रखें। अगर किसी इन्वेस्टमेंट में रख रहे हैं तो पूरी जानकारी के साथ आप अपना फंड इन्वेस्ट करिए, पूरी समझ बूझ के साथ करिए, क्योंकि वो आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी के बहकावे में आके या किसी के कहने के ऊपर किसी गलत स्कीम में मत उसको इन्वेस्ट कर दीजिए, क्योंकि कभी कभी हम सोचते हैं अच्छा 30% का इंटरेस्ट मिलेगा, इतना हमें रिटर्न मिलेगा, उसके धोखे में आके गलत जगह पे इन्वेस्ट करने से अच्छा है हम कम इन्वेस्ट करें, कम इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, लेकिन जो हमारे को समझ में आता है उस चीज पे हम इन्वेस्टमेंट करके चलें। और जितना हम प्लानिंग से चलेंगे उतना हम लोन्स की तरफ कम हमारा रुझान रहेगा, जितना लोन्स की तरफ कम रुझान रहेगा उतना हम इंटरेस्ट कम पे करेंगे, और उतनी हम मनी सेव्ड इज मनी अर्न, कभी हमने सुना है। तो जितना हम सेविंग्स और जितना हम अपने से सक्षम होके चलेंगे उतना हमारा आगे आने वाला वक्त सही तरीके से गुजरेगा। सो दिस वाज सम टिप्स, सम सेशन ऑन दैट। कोई कुछ इसमें ऐड करना चाहता है, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, दे आर मोस्ट वेलकम टू डू दैट। कोई क्वेश्चंस हैं, कुछ कमेंट्स हैं, वी कैन टेक दैट आल्सो।
3: मैम, इट वॉज सच अ वंडरफुल सेशन मैम, एंड मोस्ट नीडेड ऑफ द आवर मैम. वी कैन रियली, एज यू सजेस्टेड, वील रियली टेक इट टू द बेनिफिशरीज ऑल्सो.
1: यस, क्योंकि मैम सभी लोग काम इसीलिए करते हैं कि अपना फ्यूचर ब्राइट करके चल सके, खुद का फ्यूचर, बच्चों का फ्यूचर, अपनी फैमिली का, कोई इमरजेंसी हो तो। हमेशा पैसे को लेके हर किसी का चैलेंज ही रहता है, चाहे कम है चाहे ज्यादा है, हमेशा चैलेंज ही रहता है। सो दिस इज वन थिंग जिसमें हम कितनी ही बात कर लें वो बात कम ही, मतलब उसमें कोई श्योर शॉर्ट तरीका नहीं है, लेकिन हम जितना आपस में शेयर कर सकते हैं तरीके, उससे हमें कुछ ना कुछ टिप्स ऐसी मिलेंगी शायद कि हम बेटर फंड मैनेज कर सकें अपने खुद के, अपने परिवार के। एंड दिस शुड बी अ हैबिट, मोर मोर ऑफ अ हैबिट टू मैनेज, टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज आवर नीड्स, बिकॉज आजकल काफी इम्पल्स परचेजेस बहुत ज्यादा हो रही हैं, स्पेशली यूथ यूथ को लेके ये कंसर्न है काफी पेरेंट्स का। जो मेरी फ्रेंड्स हैं उनका भी ये कंसर्न रहता है, हमारा खुद का ये कंसर्न रहता है कि आगे जो बच्चे हैं वो बहुत मनी की जो रियल वैल्यू है उसको समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, उस पर काफी डिबेट चलता है। तो दिस इज अ बिहेवियर चेंज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट मनी फॉर अस, फॉर एज ए इंडिविजुअल। थैंक यू मैम, मैं बहुत बोल चुकी हूँ, अभी कोई और बोलना चाह रहा है? एनीबडी वॉन्ट्स टू एड प्लीज डू दैट।
3: गुड आफ्टरनून मैम.
1: गुड आफ्टरनून अर्चना जी।
3: जी मैम, मैम अभी आपने बात करी, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ दिन पहले हमारे सेंटर पे मेकअप आर्टिस्ट की ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें से तीन बच्चे बहुत ही अच्छी तरह, उसमें उनको पहले से भी आता था कुछ, और फिर उन्होंने ट्रेनिंग ली तो उनको बहुत अच्छे से आ गया। तो अभी तो जो बात हुई कि घर में हम किस तरह से मैनेज करते हैं, सबका अपना अपना नीड है, बेसिक नीड के अलावा भी बहुत सारे नीड होते हैं, फिर बहुत सारे वे हैं जहाँ पे वो सेविंग कर सकते हैं, करते हैं, तो बहुत सारे लोगों ने किया, बहुत अच्छा लगा, और ये सुन के कि हमारे पास नए आइडियाज भी आए। और मैम वो आपने अभी बात करी थी, तो हम मेट्रो सिटी का तो नहीं पता, लेकिन हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें मैं उनकी बात बता रही हूँ, फिर मैं अपनी बेनिफिशरीज की बात बताऊंगी कि उन्होंने क्या किया है। तो मैम मेरी सोसाइटी में, मैंने आपने भी बात जो की हुई थी उससे ही है कि पहले के जो हमारे जो पहले के जनरेशन के थे, पिछले जनरेशन के, वो अपनी सारी नीड को किल करके, मतलब जो जो बहुत जरूरी है, सर्वाइव करना, खाना पीना, ये सब, यहाँ तक कि मैंने देखा वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, अपने सारे नीड को किल करके और पैसे जमा करते थे।
1: बिल्कुल
3: फिर जो हमारा जनरेशन है उन्होंने देखा क्या, अरे वो तो सारे कुछ भी नहीं करते थे और फिर ऐसे ही चले गए दुनिया से। नहीं, हम लोग को ना अपना भी करना चाहिए और सेविंग भी करना चाहिए, यानी हम खाएंगे पियेंगे अच्छे से रहेंगे और थोड़ा सा सेविंग भी करेंगे। तो
1: बिल्कुल
3: हमें लगता है अभी का जो जनरेशन है ये दोनों चीज और इंजॉय भी कर रहे हैं ठीक ठाक। मैं मैम मिडिल क्लास, और मतलब मैं जो कम्युनिटी में रहती हूँ उसकी बात कर रही हूँ,
1: और दूसरे जगह मुझे उतना नहीं पता, लेकिन कहीं कहीं से मैथ्स तो करता ही होगा, तो उसने करी। अब जो हमारा अगला जनरेशन आने वाला है उनको तो मनी वैल्यू पता ही नहीं है, वो जो भी अर्न करेंगे वो सारा का सारा खर्च करेंगे जैसे दिख रहा है। तो मैम हमें, मुझे लगता है कि हम अपने बच्चों को और जो भी हमारे आसपास जुड़े हैं उनको ये सिखाना चाहिए कि वैल्यू क्या होती है, मनी वैल्यू। इसके लिए तो हमको घर से लेकर के और जहां भी हम काम करते हैं वहां तो दिखाना पड़ेगा ना कि मैम, मतलब ऐसे ही हम कहीं भी किसी भी चीज के लिए एक बार मन किया खरीद लिए, तो हमको जो खुद
0: बिल्कुल
1: वैल्यू नहीं है तो वो बच्चे क्या सीखेंगे। वो तो मेरी मेरी सिंगल चाइल्ड है तो वो तो यही समझेंगे ना, मम्मी को जब जरूरत होता है तब खरीद लेती है, तो मेरे भी पास ही आ जाएगा क्योंकि पैसा इसके पास है तभी तो आ रहा है। जब हम अपने
0: बिल्कुल
1: ऊपर नहीं कमांड करेंगे तो बच्चे तो यही सीखेंगे कि अच्छा मम्मी ने 20,000 का फोन लिया, ठीक है मैं भी जब कभी बोलूंगी मुझे तो 10,000 का आ जाएगा। तो मैं बच्चों के लिए भी ये करती हूँ कि मैं अपनी मेरी सिंगल चाइल्ड है, मैं फिर भी देर करती हूँ थोड़ा सा कि देखो अच्छा ठीक है आ रहा है, आ जाएगा 1-2 महीने में आ जाएगा या 15 दिन में, बहुत ज्यादा नीड है, एजुकेशन से जुड़ी है तो कोई बात नहीं, लेकिन सिर्फ इंजॉय करने की चीज है तो आ जाएगा। तो ये हुई, तो मैम सबके अलग अपने अपने वो नीड है और अपने अपने तरीके हैं, तो सब करते हैं, ऐसा कोई नहीं है कि मैं करती हूँ वो करते हैं एक ही पर्टिकुलर, सभी आजकल करते हैं सेविंग, जो अपना स्टेज वो पार कर चुके हैं 25 वाला, क्योंकि 25 तक तो सब। हाँ हाँ जी मैम, तो मैंने बेनिफिशरीज को मैम देखा वो मैं कर रही हूँ, और मैं सभी से आपसे भी मैम गुजारिश करती हूँ कि यदि कोई बहुत अच्छा टिप हो तो वो आप जरूर शेयर कीजिएगा। तो बेनिफिशरीज ने तो हमारे यहाँ क्या हुआ, मैंने वो एसटीएस से शेयर किया हुआ था, जो हम 4 जन जिसमें से 3 बच्चे बेनिफिशरीज और एक मैं हूँ, 4 का ग्रुप बनाई और फिर हमने प्लान किया और हमने अपना पार्लर खोल लिया।
0: अरे वाह,
1: हाँ हाँ मैम, तो पार्लर में खोल लिया। अब इसका ये आया कि भाई सेटअप तो मेरे पास पहले से जो सेंटर का ये दिया हुआ है तो सेटअप सारा मेरे पास पहले से था, उसमें कुछ प्रोडक्ट लाने थे और जैसे बोर्ड बनाना, कुछ बेसिक जो होता है थ्रेडिंग वगैरह के लिए फेशियल के लिए वो सारे प्रोडक्ट लाने थे, और फिर थोड़ा सा वो एडवर्टाइज के लिए कुछ पैसे खर्च करने थे। तो हम लोगों ने प्लान किया कि घर से यदि लाओगी तो बेनिफिशरीज के तो गार्जियन पूछेंगे कि भाई तुम क्या कर रही हो, ये वो सब कुछ तो है, हमारे यहाँ रूम है, इलेक्ट्रिसिटी है और बच्चे भी आ रहे हैं। तो हम लोग ये काम करते हैं, कुछ पैसे हम लोग अपने में जितना भी सेविंग है 500 या 1,000 उसमें मैं भी पार्टिसिपेट की हूँ मैम, तो हम लोग ले आते हैं। इसके बाद हमारा जो पैसा आएगा तो उसमें से एक बेनिफिशियरी जो ग्रेजुएट है वो बोली कि हमारे पास जो कमाई के कुछ पैसे आएंगे, जैसे कि अभी दिवाली छठ चल रहा है तो कुछ ना कुछ तो आएंगे ही हमारे पार्लर में, क्योंकि अभी उतना ज्यादा मैम प्रचार नहीं हुआ है, बहुत कम लोगों तक तो पहुंचा है कि यहाँ की पार्लर खुल गया है। तो उस पैसे से हम और प्रोडक्ट जो भी मतलब जरूरी है थोड़ा बड़ा करेंगे उसको, फिर हम पैसे शुरू करेंगे अपने पास रखना। तो मुझे आइडिया ये अच्छा लगा मैम, और इस छठ में मुझे लगता है उन लोगों ने 500 कुछ अर्न किया है, और उससे वो सामान ही लाई है, कभी फेशियल का कुछ तो मैनिक्योर का, पेडिक्योर का कुछ प्रोडक्ट सभी। तो मुझे लगा कि वो ग्रेजुएट बच्ची है, गांव की है, लेकिन फिर भी इतना मतलब कि सोच रही है, तो मुझे अच्छा लगा कि आजकल के बच्चे भी थोड़ा सा ये ध्यान दे रहे हैं कि मुझे अभी उसमें से खर्च नहीं करना है, अभी मुझे अपना वो पार्लर सेट करना है।
0: वेरी नाइस अर्चना जी, थैंक यू सो मच. एग्जैक्टली जो मैंने कोशिश कर रही थी, मुझे लगा कि मैं जो बोल रही हूँ शायद मैं सही से नहीं समझा पा रही, लेकिन आपकी इनपुट से मुझे बिल्कुल क्लियर हो गया कि यही बात हम लोग करना चाह रहे हैं कि जनरेशन दर जनरेशन एक तो नीड्स और वांट्स बदलती जा रही हैं, और जब हम खुद पे नहीं कंट्रोल कर पाते हैं कभी कभी खर्चा करने के लिए, तो हम अपने बच्चों को कैसे बोल सकते हैं, या अपने जो हम जो जो हमें अपना एज ए मॉडल देखते हैं, या जो हमें सोचते हैं कि ठीक है अगर ये ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी फिर ऐसा ही करना है, चाहे वो बेनिफिशरीज हो गए, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे आप सेंटर में अगर एक लीडर के आप सभी लीडर हैं अपने अपने सेंटर्स के, तो चाहे आप सेंटर पे एज ए लीडर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे हैं. सो वेरी ब्यूटिफुली शेयर्ड एग्जाम्पल की किस तरीके से हम एक तो खुद को एज ए रिप्रेजेंटेटिव मान के हम खुद से अपनी मनी मैनेजमेंट को अच्छी तरीके से करें, और दूसरा जो आपने एग्जाम्पल दिया कि छोटे से ग्रुप ने कैसे एक फंड क्रिएट किया आपस में मिलके और एक छोटा सेंटर शुरू किया, लेकिन आइडिया है कि उसको धीरे धीरे करके उसी फंड से कैसे हम बड़ा करेंगे.
1: हाँ जी
0: दैट इज अ ब्रिलियंट एग्जाम्पल ऑफ यू नो बजट मैनेजमेंट. घर का भी आपने बता दिया और अपने एंटरप्राइज का भी बता दिया. थैंक यू अर्चना जी.
1: थैंक यू मैम, थैंक यू। और मैम प्लीज सजेस्ट कीजिएगा आप इसमें कि बच्चे कर रहे हैं इससे भी कोई अच्छा होगा कि हम कैसे उसको आगे ले जा सकते हैं, तो मैम इसके लिए बहुत ये रहेगा। ठीक है जी, ठीक है, विल टॉक सेपरेटली फॉर दैट.
3: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू. ओके, सो आई होप दिस सेशन वॉज अ लिटिल हेल्पफुल टू समबडी. हो सकता है शायद किसी ने कुछ सीख के इससे कुछ अपने आज से या पहले से कर रहे हो तो उसको रीइंस्टेट करें और उसको अपने बिहेवियर में लेके आए. एंड आई होप यू शेयर दिस सेशन विद योर बेनिफिशरीज, स्पेशली टू द यूथ, क्योंकि जैसे अर्चना जी ने कहा जो 25 साल से ऊपर है उनको तो कहीं ना कहीं हैबिट लग गई है, लेकिन ये हैबिट हमें शुरू से ही अपने, मैं सेविंग्स की बात नहीं कर रही, मैं आइडेंटिफिकेशन और उसमें फर्क की बात कर रही हूँ कि हमारी जरूरतें क्या हैं और हमारी इच्छाएं क्या हैं. इन दोनों चीजों में, जरूरतों में और इच्छाओं में फर्क करना बहुत जरूरी है. और अपने लेवल को पहचानते हुए, लेवल एज इन अपने सिचुएशन को, एज ए स्टूडेंट, अपने सिचुएशन एज अ होम मेकर या एज अ एंटरप्रेन्योर या फार्मिंग को लेके जो हमारी जरूरत है उसको पहचानते हुए अपने बजट्स को कैसे मैनेज करना है, इसके ऊपर हमने आज बात करी है. सो थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग इट एट शॉर्ट नोटिस. थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड आई होप दिस इज हेल्पफुल. बाय बाय. थैंक यू.
3: वेरी हेल्पफुल मैम. थैंक यू सो मच.
2: थैंक यू मैम.
3: थैंक यू मैम.
1: थैंक यू.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

आज का जो सेशन है, मैं बताना चाहूंगी कि हम लोग हमेशा एक परफेक्ट आंसर ढूंढने की कोशिश करते हैं, राइट? और जब हमें परफेक्ट आंसर नहीं मिलता है किसी भी चीज का, तो हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। ये मेरे साथ भी होता है और ये हर एक इंसान के साथ होता है कि हम परफेक्ट आंसर अपनी लाइफ में नहीं ढूंढ पाते हैं। तो उस स्टेज में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे किसी के साथ होते हैं कि परफेक्ट आंसर ही नहीं पता चलता कि क्या गलत है क्या ठीक है, बट हम करते हैं कुछ भी, अपनी तरफ से हम बहुत कुछ करते हैं, क्योंकि हमारा माइंड, जो पिछले सेशंस में मैंने बोला है कि माइंड इतना स्ट्रांग होते हैं कि माइंड हमें गाइड करता है। वो बच्चे की स्टोरी मॉन्स्टर से लड़ने की, उसका माइंड ही उसको इंस्टिगेट कर रहा था। और माइंड में जो थॉट्स आ रहे थे कि मुझे एप्पल देना है, मुझे पानी देना है, मुझे स्माइल करनी है, तो माइंड वॉज एक्टिंग। तो हम बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस हमारे सामने आ जाती हैं और रोजमर्रा की जिंदगी में आती हैं कि हम वेदर वी आर डूइंग इट राइट, वेदर वी आर टेकिंग द राइट डिसीजन, बट फिर नॉर्मली हमारी ये टेंडेंसी हो जाती है कि हम परमात्मा पे छोड़ देते हैं। अच्छा, जो होगा ठीक ही होगा, गलत क्या होगा, हम एक्शन तो ले ही लेते हैं, राइट? मैं इधर एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूंगी, अगर आप ये स्लाइड्स में देखेंगे कि मेरे पास एक गाड़ी है और मैं गाड़ी चला रही हूँ, मैंने नई गाड़ी खरीदी है और उस पे स्क्रैच आ गया, तो मुझे बहुत एक अजीब सी फीलिंग होती है कि ओहो, मैंने इतने लाख की गाड़ी खरीदी और उस पे ये स्क्रैच आ गया। तो हमारी जो फीलिंग है वो बड़ी आई शुड से दैट नेगेटिव सी हो जाती है कि ओहो सच अ लॉस, वाई दिस स्क्रैच हैज कम। तो हम दूसरों से बात करते हैं तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता है। नीचे देखो मैंने लिखा हुआ है, समवन वुड से यू शुड ड्राइव स्क्रैचलेस कार। अरे, ये तो आपकी पर्सनालिटी के साथ सूट ही नहीं करता कि आपकी गाड़ी पे डेंट लगे हुए हैं। हमारे में भी ये फीलिंग आती है, बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल मैंने दिया है। और कोई दूसरा कहेगा तो क्या हुआ, गाड़ी सड़क पे लेके जाओगे तो स्क्रैच नहीं आएंगे, तो और क्या होगा, हवा में थोड़ा उड़ानी है आपने गाड़ी, स्क्रैच तो आएंगे ही आएंगे। इट हार्डली मैटर्स व्हाई यू आर लिंकिंग दिस विद योर स्टेटस और पर्सनालिटी। अब क्या हुआ, एक ने कह दिया अरे तुम्हारी पर्सनालिटी के साथ तो स्क्रैच गाड़ी पे हो तो सूट ही नहीं करता, और दूसरा कह रहे क्या फर्क पड़ता है। तो हम जिसकी गाड़ी है वो कंफ्यूज हो जाता है कि मैं स्क्रैच को ठीक कराऊं नहीं कराऊं, और लगने दो फिर एक ही बार करा लूंगा, या कोई बात नहीं ऐसे ही चलता रहे। तो हम डिसीजन नहीं ले पाते हैं कि हम क्या करें, तो हमें क्या करना चाहिए। तो ये एक स्टेटमेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, इन लाइफ देयर इज सेल्डम वन राइट आंसर। हमें आंसर सही नहीं मिलता है, बहुत डीप बात मैं कर रही हूँ यहाँ पे आप लोगों के साथ, पर सिचुएशन तो हमारे हाथ में है। हम आंसर अगर ठीक नहीं ले पा रहे हैं पर सिचुएशन हमारे हाथ में है, हमारा माइंड हमारे हाथ में है, हमारी सोच हमारे हाथ में है, हमारी एनालिटिकल पावर्स हमारे हाथ में है, और ये सब कुछ जब सिंक्रोनाइज हो जाता है तो हम कॉन्शियसली राइट डिसीजन ले लेते हैं। ऐसा होता है हमारे साथ, है ना? तो हम क्या करते हैं ऐसी सिचुएशन में, हम किसको सुनते हैं? यू मे स्टैंड अलोन, मतलब कि तुम कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती हैं। लीडरशिप की क्वालिटीज में मैंने ये भी बताया था कि लीडर्स को कभी बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे उसको स्टैंड अलोन करना पड़ता है, बट ही इज लिसनिंग टू हिज और हर इनर कॉन्शियंस। वो अपनी कॉन्शियंस को सुनता है और वो कहता है कि नहीं, मैं ठीक हूँ और मैं ठीक कर रहा हूँ। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, हम अपने अंदर जो व्हाट इज राइट फॉर यू, यू को मैंने कैपिटल वर्ड्स में लिखा है, जो मेरे लिए सही है वही मेरे लिए सही आंसर है। इज इट ओके? कोई इसके रिलेटेड कोई एग्जाम्पल शेयर करना चाहेगा?
ये बहुत बड़ी लीडरशिप क्वालिटी है। बहुत बारी ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं कि यू फेस द पीपल हु वोंट लेट यू ग्रो, हु वोंट appreciate what your wider vision is, who will not even think a pin pin jitna bhi wo nahi sochte jo tum soch rahe ho, aur wo itni badi hurdle khadi kar dete hain aapke samne. Us situation mein ek leader ko kya karna hai, 10 log agar wo baat sun rahe hain to 10 log apni apni perception rakhte hain, par aapko kya karna hai, आपको वही करना है जो सच है, जो आपका जो इनसाइड यू है, जो आपके अंदर छुपा हुआ है, उसको सुनना है और वही एक्शन लेना है. एम आई राइट? ये बात समझ में आ गई सबको? हम करते हैं प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में करते हैं, पर इसको रिपीट करना और इसको बार बार इस सिचुएशन में जब हम आते हैं और इस स्लाइड को याद करना हमें बहुत मदद करेगा, बहुत ज्यादा मदद करेगा अगर हम इसकी एक हैबिट बना लें और हम अपने आप को हमेशा एनालाइज भी करते रहें, सेल्फ एनालिसिस करें. यू लिसन टू योर इनर वॉइस, व्हाट योर इनर वॉइस इज टेलिंग यू, ये बहुत जरूरी है. और इनर वॉइस जो कहती है वो कभी भी ये नहीं कहती है, अगर हम लीडर हैं और अगर हम वो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ लीडर को याद करें जिसमें पहला पॉइंट था कि ट्रूथफुलनेस, और अगर हम सच्चे हैं अपने साथ और अपने लोगों के साथ, तो जो हमारी इनर कॉन्शियस है वो हमेशा राइट डिसीजन लेने के लिए कहेगी. हम किसी की बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि हमें किसी भी बात का हम ये नहीं कह सकते कि राइट आंसर है या रॉन्ग आंसर है. हमें हमेशा अपने ही कॉन्शियस को सुनना है. हम सलाह जरूर करें, हम लोगों से बात जरूर करें, और हमेशा जो अंदर से आवाज आती है उसको अगर हम सुने तो मुझे ये लगता है कि हमारे लिए वही राइट आंसर होता है. तो अगर मैं अपने कम्युनिकेशन को बिगाड़ लेती हूँ, नेगेटिविटी में ले जाती हूँ या आर्ग्यूमेंट में आ जाती हूँ, तो शायद काम बिगड़ेगा ही, काम सुधरेगा नहीं. तो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ा पॉइंट है, और क्लैरिटी कम्युनिकेशन के साथ, क्लैरिटी इन कम्युनिकेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. हम घुमा फिरा के बात नहीं करें, हम स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करें, क्योंकि हमारा गोल बहुत क्लियर है, हमारी विजन बहुत क्लियर है, हमारा मिशन बहुत क्लियर है. हम अपनी आईज को एक फोकस्ड रख रहे हैं, हम इधर उधर देख ही नहीं रहे कि क्या हो रहा है. इधर उधर देखना है इसलिए क्योंकि कोई नेगेटिविटी हमें इम्बाइब ना कर ले, अदरवाइज अगर हमारा मिशन क्लियर है, विजन क्लियर है, तो हम अपने गोल पे फोकस्ड ही रहते हैं. राइट? क्रिएटिव थिंकिंग, आप सब लोग कर रहे हैं क्रिएटिव थिंकिंग, अपने काम में भी कर रहे हैं, अपने सेंटर्स को कैसे चलाना है, कैसे करना है, ये अडेप्ट कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं राइटली, और फिर उसको क्रिएटिव थिंकिंग से आगे बढ़ा के लेके जा रहे हैं. देन डिपेंडेबिलिटी, बहुत जबरदस्त हम डिपेंडेंट है. अगर आज के सेशन में 55 लोग हैं तो मैं ये कहूंगी कि मैं 55 लोगों पे ही डिपेंडेंट हूँ अपनी बात सुनाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, अपने मिशन को रियलाइज करने के लिए. आई कैन नॉट स्टैंड अलोन टू डू ऑल दीज थिंग्स. हम एक दूसरे पे इतने निर्भर हैं, और हमारा समाज ही ऐसे बना हुआ है कि हम एक दूसरे पे निर्भर होके रहते हैं. कोई भी इंसान आइसोलेशन में अकेले अपनी जिंदगी नहीं जी सकता है, ये तो पता ही है. वर्क एथिक्स, वर्क एथिक्स हम बहुत बार ही चर्चा करते हैं कि हम कैसे काम कर रहे हैं, अपने काम को उसमें एथिकली कर रहे हैं या नॉन एथिकली कर रहे हैं, इसके ऊपर चर्चा करने की जरूरत नहीं है. ये चीजें सब आपको पता है, बट सिर्फ हर एक पॉइंट को अपने कॉन्शियस के साथ जोड़ने की जरूरत है. टीम वर्क, हर कोई टीम में काम कर रहा है. पॉजिटिविटी, पॉजिटिव थिंकिंग से कर रहे हैं. देखो, रोज एक नेगेटिविटी आ जाती है जब हम काम करते हैं, पर उसको सहज भाव से सोचना, उसको एनालाइज करना,
फिर अपनी सोच को बदलना कि मैं नेगेटिव ना हो के इसको पॉजिटिव किस नजर से देख सकती हूँ, उस नजर से उसको देखना और फिर एक्शन लेना। ये 4 स्टेप्स बहुत बहुत जरूरी हैं पॉजिटिविटी को मद्देनजर रख के और अपने गोल पे पहुंचने के लिए। टाइम मैनेजमेंट, यस, बहुत जरूरी है। मोटिवेशन, एक दूसरे को मोटिवेट करना। प्रॉब्लम सॉल्विंग, हम मींस अकेले अगर हमें नहीं समझ में आ रही, टीम वर्क में हम कैसे उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, और कैसे, अगर मैं इसको पहले वाली स्लाइड के साथ लिंक करूं, तो हम अगर कम्युनिकेशन में ट्रांसपेरेंसी रखते हैं और अगर हमें दूसरे जो हमारा टीम मेंबर है उसकी बात से हम समहाउ नहीं कॉन्फिडेंट हैं, तो हम बड़े सहज भाव से बोल सकते हैं कि अगर हम इसको दूसरे तरीके से सोच लें तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा। क्रिटिकल थिंकिंग इस एनालिटिकल स्किल कि उसके अच्छाइयाँ क्या होंगी, बुराइयाँ क्या होंगी, और फिर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। ये सब, ये जितने भी पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं 10-12, इनके ऊपर कितनी बुक्स लिखी गई हैं, कितने ऑथर्स ने इसको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन किया है, इसको हम पढ़ भी सकते हैं। आजकल तो हिंदी वर्जन्स भी बहुत मिलते हैं इन किताबों के। तो ये हमें आई वुड से दैट कि अपने सबकॉन्शियस लेवल पे ये एक डिसिप्लिन में ले आना चाहिए कि ये हमारा एक डिसिप्लिन है हमारी पर्सनालिटी का, हमारी लाइफ का, और हम इन पॉइंट्स को अगर हर रोज अपने एक्शंस में एक्सपीरियंस करें तो आप देखना कि बड़ी जल्दी आप लोग एक डिफरेंट लेवल पे एक डिफरेंट पर्सनालिटी बन जाओगे। आप लोग हो, मैं ये नहीं कह रही हूं कि नहीं हो, पर हर चीज को एक रिमाइंडर देने की जरूरत होती है क्योंकि हर रात के बाद एक सवेरा होता है। तो अगर हम इन पॉइंट्स को एनालाइज करते रहें और अपने आप को एक रिमाइंडर देते रहें तो हमारी हमारी पर्सनालिटी ग्रो करेगी, हमारी पर्सनालिटी शाइन करेगी और हमारा जो नेचुरल प्रोसेस है थिंकिंग का वो एक बहुत ऊंचे स्थान पे चला जाएगा। तो मैं आगे बढ़ती हूँ, एक और स्लाइड है, मैं उसके ऊपर भी चर्चा करती हूँ। सॉफ्ट स्किल्स और नॉन टेक्निकल स्किल्स, जो जहाँ पे हम ये अब लीडरशिप की बात कर रहे हैं और मैंने सॉफ्ट स्किल्स की बात की है, ये तो नॉन टेक्निकल है, इसमें कोई हम डिग्री तो पास नहीं करते हैं, पर हमारी परफॉर्मेंस पे ये इतना इम्पैक्ट करती हैं सॉफ्ट स्किल्स हमारे वर्क प्लेस पे, अगर हम इनको रोज प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं, राइट? और ये कॉरपोरेट सेक्टर में और हम लोग भी सेशंस करते हैं और कॉरपोरेट सेक्टर में भी इसके ऊपर अभी बहुत इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, बिकॉज दैट इज द एटीट्यूड ऑफ अ पर्सन विच डिफाइन्स। तो यू लाइकली ऑलरेडी हैव सॉफ्ट स्किल्स फ्रॉम योर स्कूल एंड वर्क एक्सपीरियंस, पर हम उसको कितना यूज करते हैं, हम उसको बॉक्स में बंद करके नहीं रखें, क्योंकि ये शिक्षा तो हम जब स्कूल जाते हैं हमें मिलनी शुरू हो जाती है, थोड़े थोड़े लेवल की इंक्रीज होती रहती है जब हम जाते हैं, पर हम जब बड़े होते हैं कहीं ना कहीं हम पीछे उस शिक्षा को छोड़ते आते हैं, तो हम आगे आके कंफ्यूज पर्सनालिटी बन जाते हैं। पर अगर हम उसको अपने आप को रिमाइंडर देते रहे, अपने आप को डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते रहे, एंड आई एम सो ग्रेटफुल टू गॉड कि मुझे उन्होंने सोशल सेक्टर में काम करने का मौका दिया जिसमें मैं अपनी ये सारी सॉफ्ट स्किल्स को हर रोज सुधारने का भी मुझे मौका मिलता है, इंट्रोस्पेक्ट करने का मौका मिलता है कि मैं कहाँ स्टैंड करती हूँ, मुझे कहाँ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, मैं कैसे इस पर्टिकुलर जो सॉफ्ट स्किल है उसको इम्प्रूव कर सकती हूँ। और ये हमें सबको सोचना चाहिए। यू कैन ऑल्सो डेवेलप सॉफ्ट स्किल्स एट वर्क, स्कूल, वॉलेंटियर एक्टिविटीज एंड इन जॉब ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। आप सब लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ही कर रहे हो, आप सब लोग ज्ञान ही बांट रहे हो, आप सब लोग दूसरों को सक्षम ही बना रहे हो, और अगर ये सॉफ्ट स्किल्स आप
अपने सेंटर पे एक चार्ट में लिख के रख दोगे तो दैट इज अ रिमाइंडर टू एवरीवन, राइट। और इस पे अगर 10 मिनट रिफ्लेक्ट भी कर लेंगे तो पर्सनालिटी बहुत ज्यादा इवॉल्व हो जाती है। सो इंक्लूड योर सॉफ्ट स्किल्स इन योर रिज्यूमे एंड कवर लेटर ऑल्सो। जब आप एम्प्लॉयबिलिटी की, यूथ डेवलपमेंट की वर्कशॉप्स करते हो तो आप उनको बोलो, क्योंकि आप नॉर्मली, आप एक लाइन आती है रिज्यूमे में कि मुझे क्या हॉबीज हैं, मेरी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस क्या हैं, और सॉफ्ट स्किल्स की हार्डली कोई लाइन होती है। पर अगर हम इनको भी इक्वली इम्पोर्टेंस दें, जो यूथ है आजकल का, जो जॉब ढूंढ रहा है, जो हमारे सेंटर्स पे आके ट्रेनिंग्स लेता है, कैरियर काउंसलिंग की क्लासेस होती हैं, इसके ऊपर भी हमें इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए जो हम अपनी टेक्निकल स्किल्स को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। एंड डेमोन्स्ट्रेट योर सॉफ्ट स्किल्स ड्यूरिंग इंटरव्यूज ऑल्सो। कल मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, एक हरियाणा की लड़की आईएएस ऑफिसर की इंटरव्यू में बैठी थी, 6 लोग बैठे थे और कमरे में, और शी वॉज आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। और मैं यहाँ पे 3 क्वेश्चंस हाईलाइट करना चाहूंगी जो इंटरव्यूअर था जिसने उस लड़की को बोला, जब सबने क्वेश्चंस पूछ लिए तो उसने बोला आप नर्वस हो रही थी। तो लड़की ने बोला हाँ मैं नर्वस हो रही थी। तो उसने बोला ये आपका पर्सनालिटी ट्रेट है या आप फर्स्ट टाइम नर्वस हो रही थी, आप देखिए सॉफ्ट स्किल्स से कितना लिंक करती है ये बात। उसने बोला कि ये मेरा पर्सनालिटी ट्रेट है, जब मेरे ऊपर बहुत प्रेशर हो जाता है तो मैं नर्वस हो जाती हूँ। पर उस लड़की ने उस पे अगर पहले काम किया होता तो उसका आंसर कभी और भी हो सकता था, बट शी थॉट कि दैट इज द राइट आंसर, बिकॉज मैं क्यों बताऊं कि मैं इंटरव्यू के दौरान नर्वस हो रही हूँ। दूसरा क्वेश्चन, एक लड़की भी बैठी थी इंटरव्यूअर बोर्ड में, उसने उससे बोला कि आपको कुछ आंसर्स नहीं आते थे पर आप 5-6 सेकेंड, 10 सेकेंड ले सकती हैं आंसर मतलब कि याद करने में, और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ओपनली बोल भी सकते हैं कि सॉरी मुझे ये आंसर याद नहीं आ रहा है।

चीज का ध्यान रखिए. इट वॉज नॉट अ बैड सजेशन, इट वॉज वेरी गुड सजेशन कि हम जिस कल्चर में रहते हैं, जिस कल्चर में हम काम करते हैं, हमें उस कल्चर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उस कल्चर की इज्जत करनी चाहिए और कल्चरली ओरिएंटेड हमें अपना लाइफस्टाइल भी बनाना चाहिए. तो ये जो आजकल हम बात करते हैं कि हम वेस्टर्निज्म को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहे हैं, करिए, मैं भी करती हूँ, मेरी फैमिली भी करती है. बट जब हम ऐसी सिचुएशन में ऐसा ट्रैवल करने जाते हैं, मैं क्यों ये आपको बता रही हूँ कि आप लड़कियों को बताइए ये सारी बातें जब आप उनको ट्रेनिंग्स दे रहे हैं, तो अपने कल्चर को कभी भी मत छोड़िए, अपने कल्चर को हमेशा बांध के रखिए, वही आपको कहीं ना कहीं आगे लेके जाएगा. दैट्स व्हाट आई जस्ट वांटेड टू शेयर टुडे.

0: नमस्कार दोस्तों, मैं अंजू, हमारे कार्यक्रम रेडियो रीड इंडिया में आपका स्वागत है। तो आज हमारे साथ हमारी सहेली उर्मिला आई हैं और अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बारे में हमारे साथ कुछ अपनी बातें शेयर करेंगी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगेगा। तो आइए जानते हैं उर्मिला की कहानी उन्हीं की जुबानी।
1: मैं उर्मिला बोल रही हूँ, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे, जिला जालौन है। सेंटर रीड इंडिया में 2 साल से जुड़ी हूँ और मैं सिलाई भी सीखती हूँ और जो भी काम आता है वो भी करती हूँ। तो 10 साल से आ गई मैं दिल्ली में, मेरे बच्चे भी पढ़ते हैंगे, हस्बैंड ड्यूटी करते थे उसमें लेके आए गए, बच्चे भी पढ़ने लगे स्कूल। और रीड इंडिया के बारे में जब पता लगा कि उसमें सिलाई बिनाई बहुत सारा आती थी, तो हमने काफ़ी जनों से पूछा, हमने कि कहाँ सिलाई सीखती हैं, मैं इतनी जानकारी नहीं आती दिल्ली में आए के। तो एक पड़ोसी बोली कि वहाँ रीड इंडिया खुलो है, वो गाँव की लेडीज हती, तो वो लेके आई ना, तो उसने बताया, तो यहाँ देखी बहुत सारा सीखने को मिला मुझे। तो हमने कि इससे तो हम बहुत आगे बढ़ जाएंगे। तो हम आए और मतलब सारा चीज सीखे और आगे बढ़े। 2 साल हो गई मुझे, अब तो काफ़ी मेरी ज़िंदगी में सुधार आ गया और सूट उट सिल लेती हैं। महीना की इनकम 1000 हो जाए, कभी 2000 हो जा, मतलब जैसो काम आ जा, जैसी इनकम हो जा। तो पीस, जैसे पीस वाला काम आता था तो कभी कभी 2000 का हो जाता, तो कभी 5000 का हो जाता, तो जैसी उसमें बना सकते हैं घर का काम करके, मतलब वहाँ में काफ़ी फायदा आती उसमें। तो मतलब बहुत कछु हमने बनवा रखा है, गहनों भी बनवा रहा हूँ और हस्बैंड भी खुश आते हैं कि मतलब कुछ जाती है तो कुछ करती है, ऐसा तो नहीं है कि मतलब बैठी ठाड़ी रहती, अब जाते हैं तो कुछ करते हैं। तो उसमें बच्चे भी खुश आते, हम भी खुश आते, हस्बैंड भी खुश आते कि मतलब फालतू कितनी फिरती है। तो रीड इंडिया में तो मतलब जो भी काम आता था तो जो करते थे।
0: यहाँ आने से पहले आपके हस्बैंड जो हैं, उनका क्या नज़रिया था आपके लिए?
1: उनका का मतलब घर में रहो, घर से कहीं बाहर निकलो ना, कछु ना देखना सुनना, बस जैसी घर में रहे जैसी बुद्धि आती। अब जो थोड़ा सा बाहर निकले तो थोड़ी सी बुद्धि मतलब नॉलेज हो गई हर चीज़ की। तो उसमें मतलब हस्बैंड के अब वो होगा कि मतलब वो भी खुश हो लगे कि मतलब जो अब दिल्ली आई है तो कुछ जानने मिलने लगी है, तो बच्चे को मतलब लेने आने उठेंगे और जो भी काम होता है तो करा देती स्कूल वगैरह को उठेगा।
0: तो आपके बच्चे, आपके हस्बैंड आपका सपोर्ट करते हैं, खुश हैं, वो आपका साथ देते हैं?
1: हाँ, उनका दिमाग में जब चल गई कि मतलब जब बहुत कुछ जानने लगी है कि अब आगे के बहुत काम सोच लेती है कि मतलब हम इतना सोचते नहीं आते जितना आगे हो गई, कभी कभी हो जाते है कोनो कोनो किस्मत कैसे हो जात।
0: तो रीड इंडिया के द्वारा आपका इतना, आप सक्षम हुई, आपके बारे में इतना सबको पता लगा, आपकी स्टोरी जो है आगे अमेरिका तक भी गई, तो बच्चे आपके बारे में क्या सोचते हैं?
1: बच्चे तो बहुत कुछ सोचते हैं कि मम्मी ने बहुत कुछ बोला, ऐसा हस्बैंड तो बोल रहे थे ऐसे तूने क्या लिख के भेज दिया तो तेरे नाम आ गया। तो हमने कि कभी कभी हो सकता है कोई कोई बोली ऐसी निकल जाती है तो कभी कामयाब हो जात, कोई कोई मूड पटक के रह जाता भी कामयाब नहीं होता। रीड इंडिया के बारे में ना शुरू से थैंक यू बोले तो अब भी थैंक यू बोल रहे हैं।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

रीड इंडिया माने रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहां हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं। ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीड इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं नईम अख्तर। श्रोताओ, भारत कच्चे जूट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। जूट केवल एक फसल या उद्योग नहीं है, इससे देश के करीब 40 लाख किसान परिवार जुड़े हैं और जूट मिलों तथा इससे जुड़े उद्योगों में लगभग 3,70,000 लोगों को सीधे रोजगार मिलता है। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 76 लाख गांठ कच्चे जूट का उत्पादन हुआ और करीब 12,80,000 मीट्रिक टन जूट उत्पाद तैयार किए गए। इसी अवधि में भारत ने करीब 1,71,000 मीट्रिक टन जूट उत्पादों का निर्यात किया, जिसकी कीमत 3,155 करोड़ रुपए से अधिक रही। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि भारत में जूट उत्पादन की शुरुआत कैसे हुई, समय के साथ ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और उद्योग का महत्वपूर्ण हिस्सा कैसे बना और सरकार की नीतियों, तकनीक और नए उत्पादों के जरिए गोल्डन फाइबर को एक टिकाऊ और आधुनिक उद्योग के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है। श्रोताओ, भारत का गोल्डन फाइबर इंडस्ट्री यानी जूट उद्योग एक लंबे इतिहास से जुड़ा है। भारत में जूट के इस्तेमाल का इतिहास 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक जाता है। ब्रिटिश काल में जूट का व्यावसायिक महत्व तेजी से बढ़ा। खासतौर पर सेना से जुड़े कामों में इसके इस्तेमाल के कारण जूट की मांग बढ़ी और बंगाल में बड़ी संख्या में जूट मिलें स्थापित हुईं। लेकिन 1947 में देश के विभाजन के बाद जूट उद्योग के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। जूट उगाने वाले करीब 80% इलाके पूर्वी पाकिस्तान में चले गए, जबकि ज्यादातर जूट मिलें भारत में रह गईं। यानी कच्चा माल एक तरफ था और उसे तैयार करने वाली मिलें दूसरी तरफ। इससे भारत में कच्चे जूट की कमी हुई। इसके बाद सरकार ने सितंबर 1949 में ग्रो मोर जूट अभियान शुरू किया। किसानों को धान की जगह जूट की खेती बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। बाद के वर्षों में सरकार ने जूट के लिए बाजार बनाए रखने पर जोर दिया। वर्ष 1987 का जूट पैकेजिंग एक्ट इसका एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। इसके जरिए जरूरी वस्तुओं की पैकिंग में जूट की बोरियों के इस्तेमाल को बढ़ावा मिला और किसानों के लिए जूट का एक स्थिर बाजार तैयार हुआ। आज पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे आगे है। इसके बाद बिहार, असम, ओडिशा और झारखंड जैसे राज्य आते हैं। जूट की बुआई आम तौर पर मार्च और अप्रैल में होती है और फसल लगभग 100 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। आइए अब समझते हैं जूट आखिर इतना महत्वपूर्ण क्यों है।
2: जूट जैव अवक्रमणीय यानी प्राकृतिक रूप से नष्ट होने वाला और दोबारा इस्तेमाल किया जा सकने वाला फाइबर है। ये तेजी से बढ़ता है, आसानी से उपलब्ध है और इसकी लागत भी अपेक्षाकृत कम है। इसके रेशे मजबूत और टिकाऊ होते हैं, इनमें नमी सोखने की क्षमता होती है और जूट से बने उत्पादों में तापमान और आवाज को रोकने जैसी उपयोगी खूबियां भी पाई जाती हैं। इसी वजह से जूट का उपयोग खेती, निर्माण, उद्योग, सजावटी सामान और कपड़ों में भी हो रहा है। जूट को दूसरे प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों के साथ मिलाकर भी नए उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। जूट की एक और खास बात है जिसका संबंध सीधे हमारे खानपान से है। जूट के पत्तों को अफ्रीका, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। जापान में भी जूट की पत्तियों को स्वास्थ्य से जुड़े खाद्य पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इनमें विटामिन, कैल्शियम, पोटेशियम और आहार फाइबर जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं। जूट की पत्तियों से एंटीऑक्सीडेंट हर्बल ड्रिंक और स्वास्थ्य से जुड़े दूसरे उत्पाद बनाने की तकनीक पर भी काम हुआ है। जूट के आधुनिक इस्तेमाल का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है जूट जियोटेक्सटाइल। जूट जियोटेक्सटाइल यानी जूट से बना ऐसा कपड़ा जिसका इस्तेमाल सड़क निर्माण और मिट्टी के कटाव को रोकने जैसे कामों में किया जाता है। इसे खास तरीके से बुना जाता है, इसकी सतह खुरदरी होती है और शुरुआती दौर में इसकी पकड़ मजबूत होती है, इसलिए इसे ढलानों, सड़क किनारे की मिट्टी, नदियों के किनारों और नहरों जैसी जगहों पर इस्तेमाल किया जा सकता है। जूट का इस्तेमाल अब केवल पैकेजिंग के लिए नहीं हो रहा, ये ऐसे बुनियादी ढांचे का भी हिस्सा बन रहा है जिसमें पर्यावरण और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश की जाती है।
1: श्रोताओ, ऐसे समय में जब दुनिया प्लास्टिक और दूसरे कृत्रिम पदार्थों के टिकाऊ विकल्प तलाश रही है, तब जूट की उपयोगिता और बढ़ रही है। साथ ही जूट के लिए नए बाजार और नए अवसर तैयार हो रहे हैं। इसका फायदा किसानों और जूट से जुड़े उद्योगों तक पहुंचाना भी जरूरी है। यही वजह है कि सरकार का ध्यान केवल जूट का उत्पादन बढ़ाने तक सीमित नहीं है, कोशिश ये है कि किसान से लेकर बाजार तक जूट की पूरी वैल्यू चेन को मजबूत किया जाए। किसानों को बेहतर कीमत देने, खेती की प्रोडक्टिविटी और गुणवत्ता बढ़ाने, जूट से नए उत्पाद तैयार करने, छोटे कारोबारियों और कारीगरों को बाजार से जोड़ने और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए खरीद प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई स्तरों पर काम किया जा रहा है। आइए अब जानते हैं कि इन सरकारी प्रयासों से जूट उद्योग में क्या बदलाव आया है और इसका असर किसानों, कारीगरों और उद्योग तक किस तरह पहुंच रहा है।
2: जूट किसानों के लिए सरकार की सबसे महत्वपूर्ण पहल मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी MSP है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कच्चे जूट का MSP 5,925 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। ये अखिल भारतीय औसत लागत के मुकाबले करीब 61.8% का लाभ देता है। MSP पर खरीद के लिए जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। जब बाजार में जूट की कीमत MSP से नीचे जाती है तब JCI किसानों से सीधे जूट खरीद सकती है। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में डिपार्टमेंटल परचेज सेंटर्स बनाए गए हैं। पश्चिम बंगाल, असम, बिहार, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और त्रिपुरा में ऐसे करीब 110 केंद्र काम कर रहे हैं। नेशनल जूट डेवलपमेंट प्रोग्राम जूट क्षेत्र के विकास के लिए एक बड़ी योजना है। वित्त वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक इसके लिए 485,58,00,000 रुपए का प्रावधान किया गया। इसका जोर जूट की खेती, किसानों की आय और जूट के नए उत्पादों को बढ़ावा देने पर है। इसी के तहत जूट आई केयर योजना शुरू की गई है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक खेती, बेहतर बीज, मशीनों और बेहतर रेटिंग यानी जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया के जरिए उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाना है। जूट के रेशे को पौधे से अलग करने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जैसी योजनाओं के साथ मिलकर रेटिंग के लिए तालाब तैयार किए जा रहे हैं। लेकिन जूट उद्योग को आगे बढ़ाने के लिए केवल खेती बढ़ाना पर्याप्त नहीं है, जरूरत है कि जूट से ऐसे उत्पाद बनाए जाएं जिनकी बाजार में अधिक कीमत हो। इसी सोच के साथ जूट डाइवर्सिफिकेशन स्कीम के जरिए जूट की प्रोसेसिंग, मार्केटिंग और सेल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। जूट रॉ मटेरियल बैंक छोटे उत्पादन केंद्रों, कारीगरों, महिला स्वयं सहायता समूहों और MSMEs को नियमित और अच्छी गुणवत्ता का कच्चा जूट उपलब्ध कराने में मदद करता है। जूट के बाजार को मजबूत करने के लिए क्वालिटी और ब्रांडिंग पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जूट मार्क इंडिया लोगो जूट उत्पादों की गुणवत्ता और ऑथेंटिसिटी देने का काम करता है। जूट स्मार्ट नाम का ई गवर्नेंस पोर्टल जूट की खरीद और फूड ग्रेन पैकेजिंग के लिए इस्तेमाल होने वाली जूट बोरियों की सप्लाई को डिजिटल बनाने में मदद करता है। इसरो के नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने JCI और नेशनल जूट बोर्ड के साथ मिलकर जूट क्रॉप इन्फॉर्मेशन सिस्टम विकसित किया है। रिमोट सेंसिंग और फील्ड डेटा के जरिए जूट की खेती की निगरानी की जाती है। भुवन जंप मोबाइल ऐप और पटसन वेब प्लेटफॉर्म के जरिए फील्ड लेवल इन्फॉर्मेशन जुटाकर खेती से जुड़े फैसलों के लिए डेटा उपलब्ध कराया जाता है। समाचार कक्ष से मैं प्रशांत कुमार।
1: श्रोताओं, इन सभी प्रयासों को एक साथ देखें तो जूट उद्योग में बदलाव की एक स्पष्ट तस्वीर सामने आती है। पहला बदलाव है किसान के स्तर पर। MSP और सरकारी खरीद से किसानों को कीमत में सुरक्षा देने की कोशिश की जा रही है। वहीं बेहतर बीज, वैज्ञानिक खेती और मशीनों के इस्तेमाल से उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ाने पर जोर है। दूसरा बदलाव है उद्योग के स्तर पर। जूट को केवल बोरी और पैकेजिंग तक सीमित रखने के बजाय जियो टेक्सटाइल्स, हैंडलूम और दूसरे उत्पादों के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। तीसरा बदलाव है छोटे कारोबारियों और कारीगरों का। जूट रॉ मटेरियल बैंक्स, ट्रेनिंग सेंटर्स और मार्केट लिंकेजेस के जरिए छोटे उद्यमों को वैल्यू चेन का हिस्सा बनाया जा रहा है। यानी जूट की कहानी अब केवल खेत से मिल तक की कहानी नहीं है, ये किसान से शुरू होकर प्रोसेसिंग, छोटे उद्यम, महिला समूह, टेक्नोलॉजी, डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट्स तक पहुंचने वाली पूरी वैल्यू चेन की कहानी बन रही है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं।

0: मानव सेवा से राष्ट्रोत्थान के नायक श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026। दुनिया इसे धरती का स्वर्ग कहती है, लेकिन इस स्वर्ग ने अपनों को दूर जाते देखा। साल 1990 एक अनिश्चितता का दौर था, जब अपने ही घर छूट रहे थे, तब बृजलाल भट्ट ने इसके विपरीत जाने का साहस दिखाया।
1: मेरे दिल में एक ही बात आई कि मुझे कश्मीर नहीं छोड़ना है। हमारा लक्ष्य एक ही है, मानव सेवा से राष्ट्र उत्थान,
2: मैन मेकिंग नेशन बिल्डिंग।
0: इसके नींव उनके बचपन में ही पड़ गई थी। अनंतनाग के एक बड़े संयुक्त परिवार में पले बड़े भट्ट साहब की सुबह इंद्रनाग चश्मे, गुरुद्वारा, देवी बल मंदिर और ऋषि साहब की जियारत से होकर गुजरती थी। यही गंगा जमुनी तहजीब आगे जाकर उनके जीवन का सबसे बड़ा मिशन बन गई। वे पिछले 55 वर्षों से नागदंडी के श्री रामकृष्ण महासम्मेलन आश्रम और विवेकानंद केंद्र के सानिध्य में सनातन धर्म के मूल मंत्र मानव सेवा और वैश्विक भाईचारे का प्रसार कर रहे हैं। 1996-97 के कठिन दौर में भट्ट साहब के नेतृत्व नागदंडी आश्रम ने माता खीर भवानी में भंडारा शुरू करने की ठानी।
1: शुरू में भंडारे में माता खीर भवानी मुश्किल से 400-500 लोग थे, पर बिना किसी परवाह के हम बस आगे बढ़ते गए और मेरी अर्धांगिनी हर मोड़ पर मेरे साथ खड़ी रही।
3: भरपूर साथ।
0: उनके उस निडर पहेल का रंग आज साफ नजर आता है। 2024-25 में उसी भंडारे की पंगत में 35,000 से अधिक लोगों ने भोजन किया। समाज को जोड़ने के साथ साथ अमेरिका से हॉर्टिकल्चर की उच्च शिक्षा प्राप्त भट्ट साहब ने कश्मीर की बंजर और वीरान जमीनों को भी संवारा। वैज्ञानिक सोच से सेब और अखरोट के लहलहाते बाग खड़े किए। कोल्ड चेन और नई पैकेजिंग से गांव वालों को आत्मनिर्भर बनाया। युवाओं को योग शिक्षा शिविर, संस्कार वर्ग और युवा सम्मेलन द्वारा सही दिशा दिखाई, ताकि उनके हाथों में कलम हो। अब वे नागदंडी आश्रम का विस्तार कर रहे हैं, ताकि एक साथ 400 लोग वहां ठहर सके। आज कश्मीर का युवा जान चुका है कि असली ताकत आपसी भाईचारे में है। सम्मान और पुरस्कार तो बस एक पड़ाव है, उनकी असली वसीयत वो बीज है जो उन्होंने यहाँ के दिलों में बोए हैं।
1: जब हमारे युवाओं का जोश और माता पिता का होश एक साथ आएगा, तभी हमारा कश्मीर फिर से एक खूबसूरत गुलदस्ता बनकर महकेगा।
0: उनकी ये यात्रा अब एक महायात्रा बन चुकी है, जो सदैव चलती रहेगी। श्री बृजलाल भट्ट, पद्मश्री 2026।
4: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
5: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं, बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहां कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। पहली अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
6: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और उसकी जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
5: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
6: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इम्पैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबर्धन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्यूर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
5: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले, पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।

0: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, पिछले कुछ दशकों में भारत की कृषि ने देश की खाद्य जरूरतों को पूरा करने के साथ अपनी क्षमता और उत्पादन में भी लगातार बढ़ोतरी की है। वित्त वर्ष 2016 से 2025 के बीच कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों ने औसतन 4.45% की वृद्धि दर्ज की है, जो पिछले दशकों में सबसे अधिक है। लेकिन वर्षों से लगातार खेती, रासायनिक पदार्थों के अधिक इस्तेमाल और जलवायु परिवर्तन का असर कई क्षेत्रों में मिट्टी की सेहत पर पड़ा है। ऐसे में खेती का एक ऐसा तरीका जरूरी है जो केवल पैदावार पर ध्यान न दे, बल्कि आने वाले वर्षों के लिए मिट्टी और पूरे कृषि तंत्र को भी मजबूत बनाए। खेती को लंबे समय तक मजबूत और टिकाऊ बनाने की इसी सोच से जुड़ी है पुनर्योजी कृषि। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि पुनर्योजी कृषि क्या है, इसकी जरूरत क्यों महसूस की जा रही है, खेतों में इसे किस तरह अपनाया जा सकता है और सरकार की विभिन्न योजनाएं किसानों को इन तरीकों को अपनाने में किस प्रकार मदद कर रही हैं। श्रोताओं, पुनर्योजी कृषि खेती का एक ऐसा तरीका है जिसमें मिट्टी की सेहत सुधारने, जैव विविधता बढ़ाने और खेती को लंबे समय तक मजबूत बनाए रखने पर ध्यान दिया जाता है। सरल शब्दों में कहें तो इसका उद्देश्य खेत से केवल फसल लेना नहीं, बल्कि खेत की मिट्टी और प्राकृतिक व्यवस्था को भी लगातार बेहतर बनाना है। लेकिन पुनर्योजी कृषि कोई एक तकनीक नहीं है, ये खेती के कई ऐसे तरीकों का समूह है जिनका उद्देश्य पानी, मिट्टी, पोषक तत्वों और दूसरे संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना है। आइए अब जानते हैं कि पुनर्योजी कृषि के अलग अलग तरीके किस तरह खेती को अधिक मजबूत और संसाधनों की दृष्टि से बेहतर बना सकते हैं।
2: पुनर्योजी कृषि में सबसे पहले बात आती है पानी और संसाधनों के बेहतर इस्तेमाल की। सूक्ष्म सिंचाई यानी ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी प्रणालियों में पानी को पौधों तक अधिक नियंत्रित तरीके से पहुंचाया जाता है। ड्रिप सिंचाई में पानी सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पानी की बर्बादी कम होती है। स्प्रिंकलर से खेत में पानी अपेक्षाकृत समान रूप से पहुंचाया जाता है। इसी तरह खेती में मशीनों और उपकरणों का सही इस्तेमाल भी संसाधनों की बर्बादी कम करने में मदद कर सकता है। मिट्टी और पोषक तत्वों का सही प्रबंधन भी इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। नाइट्रोजन, उर्वरक की सही मात्रा और सही समय पर इस्तेमाल फसल की जरूरत पूरी करने के साथ साथ नाइट्रस ऑक्साइड जैसे उत्सर्जन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके अलावा मिट्टी की सेहत सुधारने के लिए हरी खाद, कवर क्रॉपिंग और मल्चिंग जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। हरी खाद में ऐसी फसलें उगाकर मिट्टी में मिलाई जाती हैं जिनसे मिट्टी में जैव पदार्थ और पोषक तत्व बढ़ाने में सहायता प्राप्त होती है। कवर क्रॉपिंग में मुख्य फसल के अलावा मिट्टी को ढकने के लिए फसलें उगाई जाती हैं। इससे मिट्टी के कटाव को कम करने और उसमें जैव कार्बन बनाए रखने में मदद मिलती है। वहीं मल्चिंग में पत्तियों, पुआल और दूसरे जैविक अवशेषों से मिट्टी की सतह को ढका जाता है। इससे मिट्टी में नमी बनाए रखने, तापमान को नियंत्रित करने और खरपतवार को कम करने में मदद मिलती है। प्राकृतिक खेती भी पुनर्योजी कृषि के महत्वपूर्ण तरीकों में शामिल है। इसमें खेत में ही तैयार किए जाने वाले जैविक पदार्थों जैसे जीवामृत और बीजामृत का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह जलवायु अनुकूल खेती में पानी का सही इस्तेमाल, संतुलित उर्वरक उपयोग, कीट प्रबंधन और मिट्टी की नमी बचाने जैसे तरीकों पर जोर दिया जाता है। निखिल कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: श्रोताओं, इन तरीकों को बड़े स्तर पर अपनाने के लिए किसानों को जानकारी, प्रशिक्षण, तकनीक और आर्थिक सहायता की जरूरत होती है। इसलिए सरकार ने प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, सूक्ष्म सिंचाई और वैज्ञानिक मिट्टी प्रबंधन से जुड़ी कई पहल शुरू की हैं। आइए अब जानते हैं कि इन प्रयासों के जरिए पुनर्योजी कृषि को किस तरह बढ़ावा दिया जा रहा है और इससे किसानों तथा पर्यावरण को क्या लाभ मिल सकते हैं।
3: वर्ष 2024 में शुरू किया गया राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन किसानों को धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके तहत प्रति किसान एक एकड़ भूमि पर दो वर्षों तक हर साल 4,000 रुपए का प्रोत्साहन दिया जाता है। किसानों को जीवामृत और बीजामृत जैसे जैविक पदार्थ आसानी से उपलब्ध कराने के लिए 10,000 बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर बनाए जाने हैं। प्राकृतिक खेती के क्लस्टर भी विकसित किए जा रहे हैं। 5 मार्च 2026 तक देश में 18,786 ऐसे क्लस्टर बनाए जा चुके थे। इनसे 8,80,000 हेक्टेयर क्षेत्र जुड़ा था और 18,19,000 किसान इसमें शामिल थे। किसानों को मार्गदर्शन देने के लिए 33,676 कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन को प्रशिक्षण दिया गया था। जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में शुरू की गई परंपरागत कृषि विकास योजना भी महत्वपूर्ण है। इसके तहत जैविक खेती करने वाले किसान को 3 वर्षों में प्रति हेक्टेयर 31,500 रुपए की सहायता दी जाती है। अक्टूबर 2025 तक इस योजना के तहत 16,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया जा चुका था। पानी के बेहतर इस्तेमाल के लिए हर बूंद अधिक फसल यानी पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना भी लागू है। इसके तहत ड्रिप और स्प्रिंकलर जैसी सूक्ष्म सिंचाई प्रणालियों को बढ़ावा दिया जाता है। छोटे और सीमांत किसानों को इन प्रणालियों के लिए 55% और अन्य किसानों को 45% आर्थिक सहायता दी जाती है। मई 2026 तक इस योजना के तहत करीब 109 लाख हेक्टेयर भूमि को कवर किया जा चुका था और 26,325 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता जारी की गई थी। इसी तरह वर्षा आधारित क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत एकीकृत कृषि प्रणाली को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसमें फसल उत्पादन के साथ बागवानी, पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन जैसी गतिविधियों को जोड़ा जाता है। दिसंबर 2025 तक इस कार्यक्रम के तहत 9,53,000 हेक्टेयर भूमि को शामिल किया गया था और 15,73,000 किसानों को लाभ मिला था। मिट्टी की सेहत को समझने और सही मात्रा में खाद एवं दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल के लिए मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना भी महत्वपूर्ण है। इस योजना के तहत किसानों को उनकी जमीन की मिट्टी की वैज्ञानिक जांच के आधार पर रिपोर्ट दी जाती है। इसमें मिट्टी के 12 प्रमुख मानकों की जांच की जाती है और फसल के अनुसार उर्वरक तथा दूसरे पोषक तत्वों के इस्तेमाल की सलाह दी जाती है। 13 मार्च 2026 तक इस योजना के तहत 25,89,00,000 मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके थे। अब बात पुनर्योजी कृषि से होने वाले फायदों की। पुनर्योजी कृषि से स्वस्थ मिट्टी बनने पर सिंचाई रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों पर निर्भरता कम करने में मदद मिल सकती है। इससे खेती की लागत कम होने, पैदावार को स्थिर रखने और किसान की आय बढ़ाने की संभावना बनती है। इसके साथ ही मिट्टी में पानी रोकने की क्षमता बढ़ने से सूखे जैसी स्थिति का सामना करने में मदद मिल सकती है। मिट्टी का कटाव कम हो सकता है और नदियों तथा जलाशयों में मिट्टी और प्रदूषकों के बहाव को भी सीमित किया जा सकता है। पुनर्योजी कृषि रोजगार के नए अवसर भी पैदा कर सकती है। खेती के साथ सलाह, तकनीकी और पर्यावरण प्रबंधन जैसी गतिविधियों में काम के नए अवसर बन सकते हैं। पुनर्योजी कृषि से जैव विविधता को भी बढ़ावा मिलता है। खेत में परागण करने वाले जीव, उपयोगी कीट और मिट्टी के सूक्ष्म जीव कृषि व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इस पद्धति का एक महत्वपूर्ण पहलू जलवायु परिवर्तन से निपटने की क्षमता बढ़ाना भी है। पुनर्योजी कृषि में मिट्टी में जैव पदार्थ बढ़ाने से कार्बन को मिट्टी में रखने की क्षमता भी बढ़ सकती है। इस तरह यह खेती की उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा में भी योगदान देती है। यानी पुनर्योजी कृषि का मूल विचार सीधा है, स्वस्थ मिट्टी, बेहतर संसाधन उपयोग और अधिक मजबूती। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
1: श्रोताओं, भारत की कृषि ने पिछले वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। अब इस प्रगति को लंबे समय तक बनाए रखने के लिए खेती की बुनियाद को मजबूत करना भी जरूरी है। पुनर्योजी कृषि इसी दिशा में एक रास्ता दिखाती है। इसका आधार बहुत सरल है, मिट्टी को स्वस्थ रखें, पानी का समझदारी से इस्तेमाल करें, खेती में विविधता बढ़ाएं और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करें। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया अनिकेत ने।

0: डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, एक उपचारक जिसने पुनर्जीवित किया एक खत्म होती विरासत को, हिमालय की खामोशी में 2500 साल पुरानी उपचार परंपरा दम तोड़ रही थी। सोवा रिग्पा, नाड़ी देखकर बीमारी समझना, दुर्लभ जड़ी बूटियों से इलाज करना। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद मानते थे कि कुछ विरासतों को बचाना बेहद जरूरी है। सोवा रिग्पा को बचाने का उनका सफर बड़ी ही कम उम्र में शुरू हुआ। वो अक्सर अपने पिता को दवाइयां बनाते और लोगों का इलाज करते हुए देखा करते थे। उन्होंने सोवा रिग्पा को नहीं चुना, सोवा रिग्पा ने उन्हें चुना। शुरुआत में वो इसे सीखना नहीं चाहते थे, लेकिन उनके पिता ने उन्हें समझाया। डॉक्टर ग्योरमेद ने अपना जीवन इस चिकित्सा पद्धति को बचाने में समर्पित किया। उन्होंने सोवा रिग्पा पर कई किताबें भी लिखी, लेकिन परंपरा को बचाना आसान नहीं होता।
1: शुरुआत में इस सिस्टम को दोबारा खड़ा करना बहुत मुश्किल था। अपने ही लोगों को समझाना कि ये भारत की विरासत है, काफी घुटन भरा था। छात्रों के लिए सोवा रिग्पा आखिरी विकल्प होता था। हमारी परंपरा दम तोड़ रही थी।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने कई सोवा रिग्पा चिकित्सकों को एक साथ लाया, अनेक सम्मेलन आयोजित किए और पुराने ग्रंथों को इकट्ठा किया। उनकी पहल पर माननीय प्रधानमंत्री के सहयोग से लेह में राष्ट्रीय सोवा रिग्पा संस्थान की स्थापना हुई। पर संघर्ष यही खत्म नहीं हुआ।
1: 2014 में मुझे भारत में चीनी दूतावास से एक प्रेस रिलीज मिली, जिसमें लिखा था कि वो इस चिकित्सा पद्धति को यूनेस्को में अपनी सांस्कृतिक विरासत के रूप में दर्ज कराएंगे।
0: डॉक्टर ग्योरमेद ने सभी संबंधित दस्तावेज इकट्ठा किए, फाइल बनाई और पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़े। इस लंबे सफर में कई लोगों ने डॉक्टर ग्योरमेद का साथ दिया।
1: मेरे परिवार ने बहुत त्याग किया है। 25 सालों में मैंने शायद ही कभी छुट्टी ली होगी। जब मेरे पिता स्वस्थ थे, वो मुझसे कहते थे, मेडिसिन बुद्धा तुम्हारे साथ है, अगर तुम अच्छा काम कर रहे हो तो एक दिन जरूर सफल होगे।
0: आज एक नई पीढ़ी इस प्राचीन ज्ञान की ओर लौट रही है। डॉक्टर ग्योरमेद की अथक मेहनत से सोवा रिग्पा सिर्फ बचा ही नहीं, उसे मिली एक नई जिंदगी। एक उपचारक के बेटे से भारत में सोवा रिग्पा सूत्रधार तक का सफर वाकई प्रेरणादायक है। डॉक्टर पद्मा ग्योरमेद, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
2: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
3: नमस्कार, आकाशवाणी के कार्यक्रम विश्लेषण में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार। आज के कार्यक्रम का विषय है राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, स्वस्थ पशुधन समृद्ध किसान। भारत में पशुधन ग्रामीण अर्थव्यवस्था और करोड़ों किसानों की आजीविका का महत्वपूर्ण आधार है। ऐसे में पशुओं को संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखना केवल पशु स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि इसका सीधा संबंध किसान की आय, दुग्ध उत्पादन, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से भी है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने वर्ष 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम यानी NADCP की शुरुआत की। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य देश भर में टीकाकरण और वैज्ञानिक निगरानी के जरिए खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD तथा ब्रुसेलोसिस को नियंत्रित करना और इनके उन्मूलन की दिशा में आगे बढ़ना है। NADCP के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है, जिससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। वहीं वर्ष 2019 में FMD के 132 मामले सामने आए थे, जो वर्ष 2025 में घटकर 40 रह गए। ब्रुसेलोसिस के मामले भी 2019 के 22 से घटकर 2025 में 15 रह गए हैं। तो सवाल ये है, भारत में पशु रोग नियंत्रण के इस बड़े अभियान को किस तरह लागू किया जा रहा है, इसका किसानों और पशुधन की उत्पादकता पर क्या असर पड़ा है, और बदलते समय में तकनीक, डिजिटल निगरानी और वन हेल्थ जैसी अवधारणाएं इसमें क्या भूमिका निभा रही हैं? इसी को समझने की कोशिश करेंगे आज के विश्लेषण में। आइए शुरुआत करते हैं हमारी पहली रिपोर्ट से।
4: रोग मुक्त पशुधन की दिशा में राष्ट्रीय अभियान। भारत में पशुधन लंबे समय से ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। 2019 की 20वीं पशुधन गणना के अनुसार देश में मवेशियों की कुल संख्या 535.78 करोड़ थी, जिनमें 302.79 करोड़ गौवंशी मवेशी शामिल थे। इतनी बड़ी पशुधन आबादी के लिए बीमारी की रोकथाम और समय पर इसका इलाज बेहद जरूरी है। खुरपका और मुंहपका रोग यानी FMD एक अत्यंत संक्रामक वायरल बीमारी है। यह गाय, भैंस, भेड़, बकरी और सुअर जैसे विभाजित खुर वाले पशुओं को प्रभावित करती है। इस बीमारी से पशुओं की दूध उत्पादन क्षमता, विकास, प्रजनन और काम करने की क्षमता प्रभावित होती है। इसलिए FMD का प्रभाव केवल पशु तक सीमित नहीं रहता, बल्कि किसान की आय पर भी पड़ता है। दूसरी प्रमुख बीमारी है ब्रुसेलोसिस, यह गाय और भैंसों में होने वाला प्रजनन संबंधी रोग है। इससे पशुओं के सामान्य प्रजनन कार्य प्रभावित होते हैं और दूध तथा मांस उत्पादन पर भी इसका असर पड़ सकता है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सितंबर 2019 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत FMD से बचाव के लिए योग्य पशुओं का हर 6 महीने में टीकाकरण किया जाता है। वहीं 4 से 8 महीने की बच्चियों को ब्रुसेलोसिस से बचाव के लिए उनके जीवन काल में एक बार टीका लगाया जाता है। कार्यक्रम केवल टीकाकरण तक सीमित नहीं है, इसमें पशुओं के कान टैगिंग, पंजीकरण, डिजिटल रिकॉर्ड, सिरो निगरानी, बीमारी की पहचान, नमूना परीक्षण और टीकों के लिए कोल्ड चेन जैसी व्यवस्थाएं भी शामिल हैं। इसका उद्देश्य है कि बीमारी की पहचान समय पर हो, टीकाकरण का प्रभाव पता चलता रहे और जरूरत के अनुसार आगे की रणनीति तैयार की जा सके। NADCP के तहत अब तक FMD के 147.16 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं। इसका लाभ 8.04 करोड़ किसानों को मिला है। टीकाकरण के बाद की निगरानी से भी सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। वर्ष 2025 में टीकाकरण के बाद की निगरानी में गायों की बच्चियों में 75.63% और भैंस की बच्चियों में 67.17% सेरो कन्वर्जन दर दर्ज की गई है। यानी टीकाकरण के बाद बड़ी संख्या में पशुओं में बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित हुई है। पशु स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण कदम है दूर दराज के क्षेत्रों तक चिकित्सा सेवाओं की पहुँच। 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 4019 मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां संचालित हैं। ये टोल फ्री नंबर 1962 के माध्यम से किसानों के घर तक पशु चिकित्सा सेवाएं पहुंचाती हैं।
5: पशु रोगों पर नियंत्रण के लिए ये जरूरी है कि सरकार के पास पशुओं की संख्या, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ा सही और समय पर उपलब्ध डेटा हो। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए पशुधन से जुड़े रिकॉर्ड को डिजिटल बनाया जा रहा है। इसके साथ ही अनुसंधान, वैक्सीन की गुणवत्ता, निगरानी और किसानों की सेवाओं की पहुँच को भी मजबूत किया जा रहा है। आइए अब सुनते हैं हमारी दूसरी रिपोर्ट।
6: आज के समय में किसी भी बड़े स्वास्थ्य कार्यक्रम की सफलता के लिए सही डेटा और वैज्ञानिक निगरानी बेहद महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में भी डिजिटल तकनीक और वैज्ञानिक निगरानी को प्रमुख स्थान दिया गया है। इस दिशा में भारत पशुधन पोर्टल महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इस पोर्टल पर पशुओं का पंजीकरण किया जाता है और प्रत्येक पशु को 12 अंकों की विशिष्ट टैग आईडी दी जाती है। जुलाई 2026 तक इस पोर्टल पर 39 करोड़ से अधिक पशु पंजीकृत किए जा चुके थे। इससे पशुओं की पहचान, टीकाकरण और बीमारी से जुड़ी जानकारी को एक जगह दर्ज करने में मदद मिल रही है। डिजिटल रिकॉर्ड का फायदा यह है कि किसी बीमारी के फैलने की स्थिति में प्रभावित पशुओं और क्षेत्रों की पहचान करना बेहद आसान हो जाता है। भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित विश्लेषण, रियल टाइम डैशबोर्ड और टीकाकरण की ट्रेसिबिलिटी जैसी व्यवस्थाएं इस निगरानी को और मजबूत कर सकती हैं। टीकों की उपलब्धता और उनकी गुणवत्ता बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। इन प्रयासों का संबंध केवल बीमारी को कम करने से नहीं है। सरकार का उद्देश्य वर्ष 2030 तक प्रति पशु प्रति वर्ष औसतन 3000 किलोग्राम दूध उत्पादन हासिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। इससे स्पष्ट है कि पशु स्वास्थ्य को अब केवल बीमारी की रोकथाम के नजरिए से नहीं बल्कि पशुधन की उत्पादकता और किसान की आर्थिक स्थिति से भी जोड़कर देखा जा रहा है।
5: वन हेल्थ का मतलब है मानव स्वास्थ्य, पशु स्वास्थ्य और पर्यावरण को एक दूसरे से जुड़ा हुआ मानना। अगर किसी पशु बीमारी की समय पर पहचान हो जाए और उसे नियंत्रित कर लिया जाए तो इससे इंसानों में संक्रमण का जोखिम भी कम किया जा सकता है। महामारी के अनुभवों ने हमें ये भी दिखाया है कि भविष्य की स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए पहले से तैयारी जरूरी है। इसी पहलू को समझते हैं हमारी तीसरी और अंतिम रिपोर्ट में।
6: आज दुनिया के सामने संक्रामक और जूनोटिक बीमारियों का खतरा एक महत्वपूर्ण चुनौती है। जूनोटिक बीमारियां वे होती हैं जो पशुओं से मनुष्यों में फैल सकती हैं। इसलिए पशुओं में बीमारी की जल्द पहचान, प्रभावी निगरानी और समय पर नियंत्रण मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम इसी व्यापक सोच को मजबूत करता है। वन हेल्थ दृष्टिकोण मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य की आपसी निर्भरता को स्वीकार करता है। भारत में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन को 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद की बैठक में मंजूरी दी गई थी। इस मिशन का उद्देश्य देश में वन हेल्थ से जुड़ी गतिविधियों को समन्वित और एकीकृत करना है। सरकार ने पशु स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए मानक पशु चिकित्सा उपचार दिशा निर्देश भी तैयार किए हैं। इनका उद्देश्य वैज्ञानिक पशु चिकित्सा पद्धतियों, दवाओं के तर्कसंगत इस्तेमाल और एंटी माइक्रोबियल प्रबंधन को बढ़ावा देना है। इसके साथ ही पशु रोगों के लिए संकट प्रबंधन योजना तैयार की गई है ताकि बीमारी के प्रकोप की स्थिति में तेजी से कार्रवाई की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कुल 2010 करोड़ रुपए का बजट परिव्यय रखा गया है। इसमें रोग नियंत्रण, पशु चिकित्सा सेवाओं और पशु स्वास्थ्य देखभाल को एकीकृत तरीके से आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस तरह NADCP ने भारत में पशु स्वास्थ्य को एक व्यापक और डेटा आधारित व्यवस्था से जोड़ने की नींव रखी है।
5: भारत के लिए पशुधन केवल कृषि से जुड़ी संपत्ति नहीं है, ये करोड़ों किसानों की आय, ग्रामीण रोजगार और देश की खाद्य सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत अब तक 147 करोड़ 16 लाख FMD वैक्सीन खुराक दी जा चुकी है और इससे 8 करोड़ 4 लाख किसानों को लाभ मिला है। विकसित भारत 2047 की दिशा में आगे बढ़ते हुए पशु स्वास्थ्य में निरंतर निवेश किसानों की समृद्धि के साथ साथ भविष्य की महामारियों से निपटने की राष्ट्रीय क्षमता को भी मजबूत कर सकता है। इसी उम्मीद के साथ आज के विश्लेषण कार्यक्रम में बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया है हमारी सहयोगी श्रेया पाठक ने और तकनीक की सहयोग दिया है अरुणदीप सिंह ने।

ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ऐसे 5-600 साल पहले एनवायरमेंट को साफ रखने के लिए बोला था, जब पवन गुरु पाने पिता माता तर्त महत, अपनी माता पर कुछ गंदगी फैले तो सबसे बुरा इंसान हमसे कोई नहीं। शर्म का कम कूड़ा फैलाना, इज्जत मान का कम है कूड़ा संभालना, और लोग कूड़ा फैलाने से शर्म नहीं करते, सफाई करने से शर्म करते।
1: ये है पंजाब पुलिस के रिटायर्ड DIG इंदरजीत सिंह सिद्धू, जिन्हें चंडीगढ़ के लोग रोज सड़कों की खुद सफाई करते देखते हैं। 6 जून 1938 को पंजाब के संगरूर जिले के एक फौजी परिवार में जन्मे इंदरजीत सिंह सिद्धू को विरासत में मिले थे देश प्रेम और अनुशासन। एक मेधावी छात्र रहे इंदरजीत सिंह सिद्धू 1961 में पंजाब पुलिस में शामिल हो गए। अपनी कर्तव्य निष्ठा एवं निस्वार्थ सेवा से इन्होंने राष्ट्रपति पुलिस मेडल भी प्राप्त किया। ये जहां भी जाते सफाई की जिम्मेदारी सहजता से अपने कंधों पर ले लेते।
2: तो शादियों में जाना तो कभी वो डिस्पोजेबल कप्स में लोग बस पीपी के ऐसे ही फेंक देते थे, यूजुअली उनको बोलते थे कि इसको उठा के डस्टबिन में फेंको, भाई यहाँ पे क्यों रखा है। दैट इज हिज नेचर, शुरू से ऐसे ही है।
1: 1996 में सेवानिवृत्ति के बाद इंदरजीत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ आ गए। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने देखा कि एक समय में देश का सबसे सुनियोजित माना जाने वाला शहर स्वच्छता में भारत के सर्वोच्च 10 शहरों में भी नहीं गिना जा रहा है। उनके लिए ये बेहद खेदपूर्ण था, क्योंकि उन्होंने चंडीगढ़ में घर नहीं बनाया था, उन्होंने चंडीगढ़ को घर बनाया था। इंदरजीत सिंह सिद्धू ने बेझिझक रास्तों की गंदगी को अकेले ही नियमित रूप से साफ करना शुरू कर दिया।
0: धीरे धीरे यह बात बढ़ती गई, कूड़ा उठाने के लिए ज्यादा टाइम लगा लिया, शहर के लिए कम। अल्टीमेटली हुआ कि मैंने शहर तो बिल्कुल बंद कर दी, सिर्फ कूड़ा उठाने याद रह गया।
1: एक रिटायर्ड DIG को सड़कों पर खुद सफाई करते देखना लोगों को अटपटा लगा, किसी ने उपहास किया तो कोई चौंक गया।
2: मेरे दोस्त हैं अभी आते हैं मिलने के लिए, तो वो कहते हैं कि अगर हम तुम्हारे नेबरहुड में ना हो तो हम तो इधर ही फेंक दें। अब हमें लगता है कि आपके फादर उठा रहे हैं तो हम इधर फेंकते नहीं।
1: इन्हें कूड़ा उठाते देख हाथों में दस्ताने पहनने की सलाह देने तो कई आए, मगर हाथ बटाने के लिए कोई नहीं आया। पर ये बिना किसी दिखावे या हिचकिचाहट के सफाई को अपना कर्तव्य समझ कर करते रहे हैं।
0: मैं ये सड़कें और ये पार्क, ये पब्लिक प्लेसेस साफ करने की कोशिश करता हूँ, ताकि बाकी लोग भी देख लें कि भाई ये खाली हाथ से काम कर रहा है, हम भी लग जाए इनके साथ और पब्लिक प्लेसेस को साफ कर दें।
2: लेकिन जब पद्मश्री मिला है तो वही लोग जो मुझे बोलते थे कि ये क्या कर रहा है या व्हाट इज योर डैड डूइंग, उनका एटीट्यूड में चेंज मैंने देखा है। मैं आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
1: सरदार इंदरजीत सिंह सिद्धू, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमस्कार।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत

0: नहीं थी। वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है। लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहाँ कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। 1 अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
1: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
0: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
1: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इंपैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबरधन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।
2: Nani Caribbeano, catching honey paradise, little things sound not fun.
3: पर्वतों की गान कोकिला, श्रीमती कोकिला लेक टीपी, पद्मश्री 2026। कार्बी अंगलोंग असम का एक सुंदर गांव, जहां रहता है कार्बी समुदाय और पोकिला लेक टेपी। गुमंतु कलाकारों के परिवार में जन्मी पोकिला को कार्बी संगीत न सिर्फ विरासत में मिला बल्कि उन्होंने उसे जिया। बचपन से ही उनकी असाधारण प्रतिभा झलकने लगी थी। संगीत के इस स्वरूप से गहरे जुड़ाव ने उन्हें महसूस कराया कि ये विरासत संकट में है। कार्बी संगीत केवल बुजुर्गों तक सीमित था।
4: उन दिनों कार्बी गीत तो थे, पर लोगों को उन्हें पेश करने का ज्यादा मौका नहीं मिलता था।
3: बाधाएं अनेक थी, लगातार निर्धनता की छाया थी और परंपरा ने महिलाओं को सार्वजनिक मंचों से दूर रखा। वर्षों तक पोकिला पृष्ठभूमि में रही, लुप्त होती कला की मौन प्रहरी बनकर। किंतु उनकी आवाज एक दायरे में नहीं बंध सकती थी। बंधन तोड़कर उन्होंने चर्च में अपना मंच पाया, समविचारी लोगों को साथ लिया और महिलाओं को साहस देकर अपने साथ जोड़। वे दुर्गम इलाकों में घूमी, बुजुर्गों से मिलकर लुप्त होती कला का दस्तावेजीकरण किया।
4: आप गीत के बोल लिखिए, उन्हें धुन में डालिए। हम हर संभव मदद करते थे और अपने सांगरी म्यूजिक सोसाइटी के माध्यम से हमने इन गीतों को पेश किया।
3: स्थानीय आकाशवाणी केंद्र के प्रसारणों से लेकर अपने पहले कैसेट कांदोन के साहस भरे निर्माण तक उन्होंने कार्बी आत्मा को राष्ट्रीय ताने बाने में पिरोना शुरू किया। महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब जुबीन गर्ग के साथ उन्होंने अपनी कला प्रदर्शित की। आधुनिक ऊर्जा के साथ प्राचीन मंत्रों को पेश करके नई पीढ़ी को आकर्षित किया। 50 वर्ष, 300 गीत, उन्होंने कार्बी संगीत को पहाड़ियों से निकालकर लोगों के हृदय तक पहुंचाया। आज पोकिला कार्बी संगीत की कुल माता है। लेखक, मार्गदर्शक और प्रस्तुति द्वारा अतीत सहेज कर सुनिश्चित कर रही है कि कार्बी आंगलोंग की महिलाएं अपना भविष्य स्वयं स्वरबद्ध करें।
4: मुझे आशा है कि हमारा कार्बी आंगलोंग और प्रगति करेगा। कार्बी आंगलोंग की महिलाएं भी हर क्षेत्र में आगे बढ़े, यही मेरा सपना है।
3: श्रीमती पोकिला लेक टेपी, पद्मश्री 2026, कोटि कोटि नमन।
5: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं कनकलता। श्रोताओं, किसी भी देश का भविष्य उसकी शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता से तय होता है। ऐसे में स्कूल सिर्फ बच्चों को पढ़ाने की जगह नहीं बल्कि उनके ज्ञान, कौशल, सोच और व्यक्तित्व के विकास की आधारशिला होते हैं। इसी दृष्टिकोण को स्कूल स्तर पर लागू करने की दिशा में 7 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी PM-SHRI योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 14,500 से अधिक मौजूदा स्कूलों को आदर्श और उत्कृष्ट स्कूलों के रूप में विकसित करना है। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि PM-SHRI योजना की जरूरत क्यों महसूस हुई, इन स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में कैसे विकसित किया जा रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को यहाँ किस तरह लागू किया जा रहा है और इन स्कूलों से आसपास के दूसरे स्कूलों में भी बदलाव लाने की क्या उम्मीद है। श्रोताओं, भारत में स्कूली शिक्षा का दायरा बहुत बड़ा है। देश में 14,71,000 से अधिक स्कूल हैं, जहां 24,69,000 से ज्यादा विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। इतने बड़े शिक्षा तंत्र में केवल कुछ स्कूलों की सुविधाएं बेहतर करना पर्याप्त नहीं है। जरूरत ऐसे संस्थानों की है जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ नई शिक्षण पद्धतियों, तकनीक, समावेशिता और संवहनीय विकास का उदाहरण भी पेश कर सकें। PM-SHRI योजना इसी सोच को स्कूल स्तर पर लागू करने की पहल है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि PM-SHRI स्कूलों की परिकल्पना क्या है और इस योजना के तहत अब तक किस तरह की प्रगति हुई है।
1: श्रोताओं, प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया यानी पीएम श्री एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा लागू किया जा रहा है। योजना की शुरुआत 7 सितंबर 2022 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य मौजूदा स्कूलों को मजबूत करके उन्हें ऐसे आदर्श संस्थानों के रूप में विकसित करना है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को प्रभावी ढंग से लागू करने का उदाहरण पेश करें। पीएम श्री योजना के अंतर्गत 14,500 से अधिक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए कुल 27,360 करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान भी किया गया है। योजना के तहत स्कूलों में सिर्फ भवन और दूसरी बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने पर ध्यान नहीं दिया जा रहा बल्कि सीखने का सुरक्षित, स्वागतपूर्ण और उत्साह बढ़ाने वाला वातावरण तैयार करने पर इस योजना का जोर है। जुलाई 2026 तक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 13,092 स्कूलों का चयन पीएम श्री स्कूलों के तौर पर किया जा चुका है। इनमें केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय समिति और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद यानी NCERT के अंतर्गत आने वाले स्कूल भी शामिल हैं। पीएम श्री स्कूलों को केवल अपने विद्यार्थियों तक सीमित संस्थान नहीं माना गया है, इन्हें अपने क्षेत्र के लिए मॉडल के तौर पर विकसित किया जा रहा है ताकि ये आसपास के स्कूलों के साथ अपने अनुभव और बेहतर तौर तरीके साझा कर सकें। मार्गदर्शन, सहयोग और क्लस्टरिंग के माध्यम से इन स्कूलों से व्यापक स्तर पर बदलाव लाने की परिकल्पना की गई है, यानी एक स्कूल में विकसित होने वाली अच्छी शिक्षण पद्धति और व्यवस्थाएं धीरे धीरे आसपास के दूसरे स्कूलों तक भी पहुंचें। इन स्कूलों में शिक्षा को केवल पाठ्यपुस्तक और परीक्षा तक सीमित रखने के बजाय सीखने के अधिक व्यापक अनुभव पर जोर दिया जाता है। अनुभवात्मक और शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा के साथ शुरुआती वर्षों में खेल और खिलौनों के माध्यम से सीखने को बढ़ावा दिया जाता है। बस्ता मुक्त दिनों, स्थानीय कारीगरों के साथ इंटर्नशिप, स्थानीय कला और शिल्प के अध्ययन तथा पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी गतिविधियों को भी इसके अंतर्गत प्रोत्साहित किया जाता है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नई परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढालने और अपने ज्ञान का इस्तेमाल करने में सक्षम बनाना है। पीएम श्री स्कूलों में गुणवत्ता का एक महत्वपूर्ण हिस्सा समावेशी शिक्षा भी है। अलग अलग सामाजिक और शैक्षणिक पृष्ठभूमि से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वातावरण तैयार किया जा रहा है। इसी के साथ शुरुआती कक्षाओं में मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा के इस्तेमाल को भी बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा में शिक्षा को स्थानीय आवश्यकताओं और भाषाई विविधता से जोड़ने पर भी जोर दिया गया है।
6: श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की अवधारणा का अगला महत्वपूर्ण पक्ष है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लक्ष्यों को स्कूल के रोजमर्रा के वातावरण में उतारना। इसके लिए शिक्षा के साथ तकनीक, कौशल, खेल, कला, जीवन कौशल और शिक्षक प्रशिक्षण जैसे पहलुओं को भी स्कूल विकास का हिस्सा बनाया गया है। आइए अब जानते हैं कि पीएम श्री स्कूलों में इन क्षेत्रों पर किस तरह काम किया जा रहा है और स्कूलों का चयन किन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाता है।
5: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के केंद्र में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का दृष्टिकोण है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के साथ साथ 21वीं सदी के जरूरी कौशल विकसित करने पर जोर दिया जाता है। सीखने का वातावरण ऐसा बनाने का प्रयास है जिसमें विद्यार्थी सक्रिय रूप से भाग लें और उन्हें सुरक्षित, समावेशी और सहयोगी माहौल मिले। तकनीक भी इस बदलाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। पीएम श्री स्कूलों में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी ICT सुविधाओं, स्मार्ट क्लासरूम, इंटरनेट कनेक्टिविटी, डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म और स्टेम जैसी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक संसाधनों की उपलब्धता और उनके आदान प्रदान को आसान बनाते हैं। इससे डिजिटल साक्षरता के साथ साथ तकनीकी दक्षता, आलोचनात्मक सोच और समस्या समाधान जैसे कौशल विकसित करने में मदद मिलती है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षा का दायरा खेल, कला और जीवन कौशल तक भी बढ़ाया गया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों के भीतर नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता, सामाजिक और भावनात्मक कौशल तथा संवाद की क्षमता को विकसित करना है। यानी विद्यार्थी केवल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए तैयार न हो बल्कि भविष्य की शैक्षिक, पेशेवर और सामाजिक चुनौतियों के लिए भी सक्षम बने। इस पूरी प्रक्रिया में शिक्षक और स्कूल नेतृत्व की भूमिका महत्वपूर्ण है। पीएम श्री स्कूलों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के व्यावसायिक विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थानों यानी DIET के माध्यम से क्षमता निर्माण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। प्रधानाचार्यों को
7: को शैक्षिक नेतृत्व, स्कूल प्रबंधन और योग्यता आधारित शिक्षण योजना से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है। शिक्षकों को समग्र प्रगति कार्ड, स्कूल सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और कल्याण तथा अन्य क्षेत्रों का भी प्रशिक्षण दिया जाता है। श्रोताओं, पीएम श्री स्कूलों की एक और विशेषता है इनका चयन गुणवत्ता मानकों के आधार पर किया जाना। इसके लिए चैलेंज मोड अपनाया गया है। चयन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। पहले चरण में राज्य और केंद्र शासित प्रदेश केंद्र सरकार के साथ समझौता ज्ञापन यानी MOU हस्ताक्षर करते हैं। दूसरे चरण में UDISE+ के आंकड़ों और निर्धारित मानकों के आधार पर पात्र विद्यालयों की पहचान की जाती है। तीसरे चरण में पात्र विद्यालय चैलेंज आधारित चयन प्रक्रिया में हिस्सा लेते हैं और निर्धारित मानकों को पूरा करने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद संबंधित राज्य, केंद्र शासित प्रदेश, केंद्रीय विद्यालय संगठन या नवोदय विद्यालय समिति के अधिकारी निरीक्षण के माध्यम से शर्तों के पूरा होने की पुष्टि करते हैं और चयनित विद्यालयों की सूची की सिफारिश शिक्षा मंत्रालय से की जाती है। अंतिम चयन के लिए शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति गठित की गई है। चयन के लिए स्कूलों को कुछ न्यूनतम मानक पूरे करने होते हैं। इनमें पक्की इमारत, सुरक्षित और सुगम आवागमन, सुरक्षा उपाय, अलग अलग शौचालय, पीने का पानी, हाथ धोने की सुविधा और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं। इसके अलावा पुस्तकालय या खेल सुविधाएं, पर्याप्त नामांकन और शिक्षकों के लिए पहचान पत्र जैसी व्यवस्थाएं भी चयन के मानकों का हिस्सा हैं। चैलेंज विधि के तहत शहरी क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 70% और ग्रामीण क्षेत्रों के स्कूलों को न्यूनतम 60% अंक हासिल करना जरूरी है। इस मूल्यांकन में अवसंरचना के साथ साथ सीखने के परिणाम, शिक्षण शास्त्र, पीएम पोषण, व्यावसायिक शिक्षा, हरित पहल और विभिन्न हितधारकों की प्रतिबद्धता जैसे पहलुओं को भी शामिल किया गया है।
6: श्रोताओं, पीएम श्री योजना के माध्यम से स्कूलों को हरित बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है। स्कूलों की गुणवत्ता के एक महत्वपूर्ण मानक के रूप में पर्यावरण के अनुकूल तौर तरीकों को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह स्थानीय उद्यमिता इकोसिस्टम से जुड़ाव और 21वीं सदी के कौशलों पर जोर विद्यार्थियों को भविष्य की दुनिया के लिए तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पीएम श्री योजना केवल कुछ स्कूलों को बेहतर बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ऐसे मॉडल विकसित करने की कोशिश है जिन्हें दूसरे स्कूल भी अपना सकें। आखिरकार किसी शिक्षा व्यवस्था की सफलता केवल स्कूलों की संख्या से नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वहाँ पढ़ने वाला बच्चा कितना सीखता है, कितना सोचता है, अपने ज्ञान का कितना इस्तेमाल कर पाता है और भविष्य की चुनौतियों के लिए कितना तैयार होता है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। इस कार्यक्रम को तैयार किया हमारे सहयोगी उत्पल कुमार ने, प्रस्तुति सहायक अरुण देव सिंह। नमस्कार।
8: वो खिलाड़ी जिसने जानवरों की भलाई की राह चुनी, डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026। तंजावुर जिले के एक सुंदर गांव बल्लम में 1960 के दशक में एक युवा लड़का किसान परिवार में पला बढ़ा। उसे खेल बहुत पसंद थे। उसका सपना एथलेटिक्स और हॉकी का स्टार खिलाड़ी बनना था। वो अपने परिवार में कॉलेज जाने वाले पहले व्यक्ति थे। वो अपने दादा के बहुत प्रिय थे।
9: कॉलेज की पढ़ाई के लिए जब मैं अपने दादाजी के पास आशीर्वाद लेने गया तो उन्होंने कहा, कुछ ऐसा सीखो जो किसानों के काम आए। वह मेरी जिंदगी का निर्णायक मोड़ था। तब मैं सिर्फ BSc एग्रीकल्चर के बारे में जानता था, मुझे वेटनरी साइंस की जानकारी नहीं थी। मेरे दोस्त और सहपाठी वीर पांडियन ने मुझे वेटनरी साइंस से परिचित कराया।
8: युवा पुण्यमूर्ति 70 के दशक के मध्य में मद्रास वेटनरी कॉलेज पहुँचे। वो न केवल पढ़ाई में होशियार थे बल्कि वो लगातार 2 साल तक कॉलेज एथलेटिक्स चैंपियन भी रहे। कुछ वर्षों बाद वे इरोड के कृषि विज्ञान केंद्र में कार्यरत हुए। वहीं एक घटना ने उनकी सोच को नई दिशा दी।
9: मैं इरोड में एक युगल द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री फार्म पर गया। मुर्गियां स्वस्थ दिख रही थी, अच्छा खा रही थी, फिर भी अंडे नहीं दे पा रही थी। रिकॉर्ड से पता चला कि उन्हें कॉक्सिडियोसिस यानी परजीवी रोग के लिए सल्फानामाइड दवा 10 हफ्ते तक दी गई थी। इसका दीर्घकालीन असर उनके प्रजनन पर पड़ा और वे अंडे नहीं दे पाई। अगर हमें भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स बचानी है तो उनका समझदारी से उपयोग करना चाहिए या फिर उनके विकल्प खोजने होंगे। मुझे ये एहसास हुआ।
8: पौधों के औषधीय गुणों की मदद से डॉक्टर पुण्यमूर्ति ने पशु रोगों के उपचार और रोकथाम में औषधीय पौधों का उपयोग किया। इस प्रकार उन्होंने एथनो वेटरिनरी को विकसित और प्रमाणित किया, प्राकृतिक तत्वों पर आधारित पशु चिकित्सा पद्धति।
9: पशुपालकों के लिए मास्टाइटिस एक गंभीर बीमारी है। इसके उपचार के लिए एक चम्मच एलोवेरा, दो मुट्ठी हल्दी और थोड़ा सा चूना मिलाकर दवाओं के बिना सफल उपचार किया जा सकता है। ये पारंपरिक सिद्ध आधारित इलाज के असर को दिखाता है।
8: उनके इलाज से लाखों गायों और किसानों को फायदा हुआ। उन्होंने जानवरों की 34 बीमारियों के लिए 5 आसान इलाज विकसित किए।
9: एक जिम्मेदार पशु चिकित्सक के रूप में जितना जरूरी स्वस्थ दूध, अंडे और मांस मुहैया कराना है, उतना ही जरूरी गायों का स्वस्थ गोबर और मूत्र भी है, ताकि मिट्टी का स्वास्थ्य बना रहे। भविष्य के लिए एंटीबायोटिक्स को बचाए रखना भी जरूरी है, जो हम एथनोवेटनरी चिकित्सा के जरिए कर रहे हैं।
8: डॉक्टर पुण्यमूर्ति की सभी खोजें सबके लिए निःशुल्क हैं। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड ने उनके काम को लाखों किसान तक पहुंचाया, जिससे उन्हें बहुत फायदा मिला।
9: मैं दिल से खिलाड़ी हूं, इसलिए अपने काम से पूरा प्यार करता हूं।
8: डॉक्टर पुण्यमूर्ति नटेशन, पद्मश्री 2026।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: Hi friends, welcome to Jeete Raho once again.
1: Kisi ki muskurahaton pe ho nisaar, kisi ka dard mil sake to le udhaar, jeena isi ka naam
0: hai. Isse kya hua hai? Tumhari tabiyat to theek hai na Bablu?
1: Of course, mujhe kya hua hai? Anyways, aapse milkar bahut khushi hui Miss Kokila MBBS, main aapke liye kya kar sakta hoon?
0: तुम्हें तो रातों रात ड्रास्टिक चेंजेस आ गए हैं।
1: हाँ, एक्चुअली लाइफ में पहली बार मुझे एहसास हुआ है कि किसी के काम आने में कितना आत्मिक सुख मिलता है।
0: अच्छा?
1: एक्चुअली मेरे एक दोस्त को बहुत जरूरी काम से अचानक शहर से बाहर जाना पड़ गया, तो पूरे एक हफ्ते मुझे उसकी बूढ़ी दादी की देखभाल करने का मौका मिल गया। अभी मैं उन्हीं के पास से आ रहा हूँ। तुम्हें तो पता है ना कोकिला, वृद्धावस्था में पहुंच चुके लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है? गठिया। दादी जी भी इसी की मरीज हैं।
0: ओह, तो ये बात है। और अगर मैं ठीक गेस कर रही हूं तो आज शायद तुम गठिया यानी आर्थराइटिस के बारे में विस्तार से जानना चाहोगे, राइट?
1: ऑफ कोर्स।
2: हर रोज ना जाने कितनी बार आप झुकते हैं, कूदते हैं, दौड़ते हैं, नाचते हैं। आप कभी नहीं सोचते आप ये सब इतनी आसानी से कैसे कर पाते हैं। सच मानिए, जब सब कुछ ठीक से चल रहा होता है तो आप चाहे जैसे अपने शरीर का इस्तेमाल करते रहते हैं, और इस लापरवाही का नतीजा निकलता है उफ, आह, आउच। हमें ये मोबिलिटी यानी गतिशीलता और फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है जॉइंट से। चलिए एक बड़ी मशीन के जरिए समझते हैं हमारे जॉइंट्स यानी जोड़ों की बनावट।
3: बड़ी बड़ी मशीनें भी हमारे जॉइंट्स की नकल करके बनाई गई हैं। मशीन ठीक से काम करे इसलिए इसकी रेगुलर ऑयलिंग की जाती है। ऑयलिंग नहीं की तो मशीन के जॉइंट्स घिस जाएंगे और काम ठप हो जाएगा।
2: ग्रीस के इस्तेमाल से मशीन के जॉइंट स्मूथली काम करते हैं। इस मशीन की तरह हमारे जॉइंट्स को भी ऑयलिंग की जरूरत पड़ती है, और ये ऑयलिंग हमारे जॉइंट्स में नेचुरली होती है।
3: हमारे शरीर के जॉइंट्स को मुख्यतः दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला वर्ग है बॉल और सॉकेट जॉइंट्स, जैसे शोल्डर और हिप जॉइंट्स। दूसरा वर्ग है हिंज जॉइंट्स, जिनमें शामिल हैं एल्बो, नी और एंकल जॉइंट्स। बॉल और सॉकेट जॉइंट्स में जहां रेंज ऑफ मूवमेंट अधिक होती है, वहीं हिंज जॉइंट्स में रेंज ऑफ मूवमेंट लिमिटेड है।
2: इसको समझने से पहले आइए समझते हैं हमारे जॉइंट्स की संरचना। हमारे शरीर में दो हड्डियां जहां एक दूसरे से जुड़ती हैं, उनके जॉइंट्स पर एक नाजुक कवर होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इस गद्देदार कार्टिलेज से जॉइंट्स का लचीलापन भी बना रहता है, जिससे जोड़ों को मोड़ने में आसानी होती है। हड्डियों का जोड़ एक कैप्सूल जैसी संरचना में सुरक्षित रहता है। इस कैप्सूल पर पतली टिश्यू की परतें होती हैं, जिसे साइनोवियल मेम्ब्रेन कहते हैं। जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम भी ये साइनोवियल मेम्ब्रेन ही करते हैं। दरअसल साइनोवियल मेम्ब्रेन एक चिकना फ्लूइड पैदा करते हैं जो जॉइंट्स में ऑयलिंग का काम करता है और हड्डियों को रगड़ से बचाता है, और इसके साथ साथ कार्टिलेज और हड्डी को नरिशमेंट यानी पोषण देता है। अगर किसी वजह से कार्टिलेज घिस जाए या उसमें किसी तरह का बदलाव आ जाए तो जोड़ों में स्टिफनेस यानी अकड़न और इन्फ्लेमेशन यानी सूजन होने लगती है, जिसे हम आर्थराइटिस कहते हैं। जोड़ों को कई वजहों से नुकसान पहुंच सकता है और इन्फ्लेमेशन हो सकती है। कई बार आर्थराइटिस से जॉइंट्स की शेप ही बदल जाती है, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं और इससे बेहद दर्द भी होता है। गठिया या आर्थराइटिस का शाब्दिक अर्थ है जोड़ों की सूजन या इन्फ्लेमेशन। बुढ़ापे की दहलीज पर तो आर्थराइटिस जैसे हमारा इंतजार करते मिलती है। उम्र के साथ शरीर जर्जर होता जाता है, जोड़ों के सिरों की कार्टिलेज भी घिस जाती है। कार्टिलेज के घिसने से जॉइंट्स के जोड़ों में रगड़ से दर्द होता है। संतुलित आहार न लेने से शरीर में कैल्शियम की कमी से बोन की डेंसिटी यानी घनत्व कम हो जाता है और हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। फैटी फूड खाने से शरीर का वजन बढ़ने लगता है, मतलब जोड़ों को ज्यादा और ज्यादा बोझ उठाना पड़ता है, और एक वक्त आता है जब शरीर में हड्डियों के ये जोड़ जवाब देने लगते हैं। इसके अलावा कुछ और किस्म की आर्थराइटिस भी हैं, जो किसी भी उम्र के लोगों में पाई जा सकती है।

0: वेलकम बैक। एपिसोड के इस भाग में हम बात करेंगे आर्थराइटिस के टाइप्स की। हालांकि आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन
1: कोकिला मुझे अब तक एक बात समझ में नहीं आई, आखिर आर्थराइटिस होने की वजह क्या है?
0: बिल्कुल ठीक पॉइंट पर आए तुम बबलू। एक्चुअली एजिंग आर्थराइटिस की एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे रीजंस हैं जो आर्थराइटिस जैसी गंभीर बीमारी की बड़ी वजह बन सकते हैं।
2: आर्थराइटिस के ज्यादातर मामले क्रॉनिक होते हैं, यानी लंबे समय तक इस बीमारी से जंग लड़नी पड़ती है। जोड़ों में दो हफ्ते से ज्यादा दर्द या स्टिफनेस और सूजन का मतलब है जल्द से जल्द डॉक्टर की सलाह लेने की चेतावनी। हो सकता है आप आर्थराइटिस के निशाने पर हों। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं इस बीमारी की ज्यादा शिकार होती हैं। महिलाओं में ये बीमारी पुरुषों के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा पाई जाती है। समय पर इलाज से इस बीमारी पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। इस बीमारी के लक्षण कभी तो अचानक सामने आते हैं और कई बार सिम्टम्स लंबे समय में धीरे धीरे दिखाई देते हैं। आर्थराइटिस के प्रमुख लक्षण हैं जोड़ों में दर्द, सूजन और अकड़न। लेकिन सिर्फ डॉक्टर ही तय कर सकता है कि आर्थराइटिस है या नहीं, और अगर है तो किस तरह की, और फिर तय किया जाता है ट्रीटमेंट प्लान। आर्थराइटिस वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, लेकिन मोटे तौर पर आर्थराइटिस 4 तरह से हड्डियों पर हमला बोलती है। पहला ऑस्टियोआर्थराइटिस, दूसरा गॉटी आर्थराइटिस, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस और चौथा इन्फेक्टिव आर्थराइटिस। पहले बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस की। इसे बुढ़ापे की बीमारी भी कहते हैं। बुढ़ापे में जॉइंट्स भी बूढ़े हो जाते हैं। हड्डियों में कैल्शियम की कमी से बोन डेंसिटी यानी हड्डियों में मिनरल्स कम होने लगते हैं और हड्डियों का घनत्व कम हो जाता है। कार्टिलेज भी सालों के इस्तेमाल से घिसती जाती है और बची खुची कसर कमजोर मसल्स पूरी कर देते हैं। वीक मसल्स जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव को ज्यादा रोक नहीं पाते, जिससे कार्टिलेज रगड़ खाते हैं और घिस जाते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस में शरीर के बड़े जॉइंट जैसे कंधे का जॉइंट्स, घुटनों का जॉइंट, हिप जॉइंट और रीढ़ की हड्डी पर यह बीमारी ज्यादातर असर डालती है। लगातार हड्डियों में रगड़ होने से जोड़ों में टूट फूट या रिसाव भी होने लगता है। कभी कभी तो कार्टिलेज असामान्य रूप से हड्डियों के किनारे पर बढ़ जाता है, जिसे बोनी स्पर्स कहते हैं। और अब बात करते हैं गाउटी आर्थराइटिस की। ये आर्थराइटिस हमारे मेटाबोलिज्म में होने वाली गड़बड़ी से पैदा होती है। मेटाबॉलिज्म में खराबी के चलते हमारे खून में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। ये यूरिक एसिड जब किसी जॉइंट पर जमा हो जाते हैं तो वहाँ तेज दर्द होता है। इस आर्थराइटिस का असर ज्यादातर छोटे जॉइंट्स पर जैसे पैर और हाथ के अंगूठे पर होता है। अक्सर किसी पैर के अंगूठे के जॉइंट में बहुत तेज दर्द होता है, रोगी को पसीना आता है और शिवरिंग महसूस हो सकती है। जॉइंट के ऊपर की त्वचा बाद में काफी नाजुक और लाल हो जाती है। खाने पीने की कुछ चीजों से ये बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि अधिक शराब पीने से गाउटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स में बीमारी और बढ़ सकती है। अब बात करते हैं इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की। इन्फेक्शन की वजह से जॉइंट्स में सूजन होने लगती है और इसे इन्फेक्टिव आर्थराइटिस कहते हैं। अक्सर जो जॉइंट इस बीमारी का शिकार होते हैं वहाँ पहले कभी चोट लगी होती है, जिस कारण वहाँ जर्म्स इन्फेक्शन फैलाने में कामयाब हो पाते हैं। अगर समय पर इस पर काबू ना पाया जाए तो ये बीमारी लंबे समय तक परेशान कर सकती है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि आर्थराइटिस कितना गंभीर रूप धारण कर सकती है। आप लोगों को एक बात बता दूं, हम में से बहुत से लोग आर्थराइटिस को वृद्धावस्था में होने वाला रोग समझते हैं, जबकि ये बीमारी किसी भी उम्र के लोगों को अपनी चपेट में ले सकती है। और तो और, ये कोई एक बीमारी नहीं बल्कि 100 से अधिक बीमारियों का एक बड़ा समूह है। आइए देखते हैं क्या है आर्थराइटिस के सिम्टम्स और इस बीमारी का पता लगाने के लिए डॉक्टर्स क्या क्या फिजिकल एग्जामिनेशंस यानी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं।
1: आर्थराइटिस का एक ऐसा प्रकार भी है जिसकी वजह हमारे इम्यून सिस्टम में आई गड़बड़ी होती है। दरअसल हमारा इम्यून सिस्टम शरीर में आने वाले किसी भी फॉरेन पार्टिकल पर हमला करता है और उसे खत्म कर हमें रोगों से बचाता है, लेकिन कई बार हमारा इम्यून सिस्टम शरीर के किसी अंग को ही फॉरेन बॉडी मानकर उस पर हमला कर देता है। इसको ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं। ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर जब जॉइंट्स पर असर करता है तो इसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस कहते हैं। इम्यून सिस्टम की गड़बड़ी के बाद जॉइंट कैविटी और साइनोवियल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती है। जॉइंट की इन्फ्लेमेशन से दर्द होता है, अकड़न पैदा होती है और जॉइंट के आसपास का एरिया गर्म और लाल हो जाता है। जैसे जैसे रिमेटॉइड अर्थराइटिस का असर बढ़ता है, कार्टिलेज खिसती जाती है, कभी कभी हड्डियाँ आपस में फ्यूज होने लगती हैं। अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि आर्थराइटिस केवल बुढ़ापे की समस्या है, पर ये रोग बच्चों और युवाओं को भी अपनी चपेट में ले सकता है। अगर सही समय पर इसके टेस्ट और ट्रीटमेंट नहीं कराए गए तो बच्चों को आगे चलकर चलने फिरने में भी दिक्कत हो सकती है। जुवेनाइल रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऐसी ही एक आर्थराइटिस है जो बच्चों और युवाओं को शिकार बनाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस पर और बात करने से पहले जानते हैं ये बीमारी किस तरह ऑस्टियोआर्थराइटिस से अलग है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को शिकार बना सकती है। इस बीमारी का असर शरीर पर छोटे जॉइंट्स पर होता है, जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स। लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है और इसका असर बड़े जॉइंट्स पर होता है, जैसे कंधे का जॉइंट, नी जॉइंट, हिप जॉइंट आदि। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में शुरू से ही सूजन और दर्द होता है और ये समय के साथ बढ़ता जाता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में पेन और दर्द काफी बाद में होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में जॉइंट्स में दर्द अक्सर सुबह होता है, लेकिन ऑस्टियोआर्थराइटिस में दर्द मूवमेंट करने से जॉइंट्स पर पड़ने वाले दबाव से होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर सबसे पहले पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री लेते हैं। पेशेंट को दर्द कहां पर हो रहा है और दर्द कितना सीवियर है और कितने वक्त से है, ये अच्छे से समझा जाता है। फिजिकल एग्जामिनेशन में डॉक्टर दर्द वाली जगह की त्वचा, जोड़ और मसल स्ट्रेंथ का सही सही आकलन करते हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के डायग्नोसिस में एक खास तरह के ब्लड टेस्ट की भी मदद ली जाती है। दरअसल रिमेटॉइड फैक्टर, जिसे आर फैक्टर कहते हैं, एक खास तरीके का एंटीबॉडी प्रोटीन होता है जो कि रिमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट के ब्लड में पाया जाता है। हालांकि बीमारी की शुरुआत में ये आर फैक्टर एब्सेंट भी हो सकता है। इसके अलावा WBC और ESR टेस्ट के जरिए भी रिमेटॉइड आर्थराइटिस का डायग्नोसिस किया जाता है। ब्लड में सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से इन्फ्लेमेशन की प्रेजेंस का पता चलता है, इसलिए सी रिएक्टिव प्रोटीन की मौजूदगी से भी RA की डायग्नोसिस में काफी मदद मिलती है। लेकिन ये टेस्ट रिमेटॉइड आर्थराइटिस होने के कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं है। इस टेस्ट से सिर्फ ये पता चलता है कि शरीर में इन्फ्लेमेशन प्रोसेस चल रही है। एक्सरे से रिमेटॉइड आर्थराइटिस के कारण हुई सूजन और जॉइंट्स को हुए नुकसान का आकलन किया जाता है। एक्सरे से सूजन काफी हद तक निर्धारित कर इलाज के निर्णय में डॉक्टर को आसानी होती है।
0: अब तो आप समझ ही गए होंगे, आर्थराइटिस बहुत से रूपों में शरीर के किसी भी अंग को प्रभावित कर सकता है, लेकिन सही ट्रीटमेंट एक सामान्य जीवन की संभावना को बढ़ा सकता है।
1: ऑस्टियोआर्थराइटिस के मुख्य कारण हैं बढ़ती उम्र, ज्यादा वजन, असंतुलित आहार और व्यायाम की कमी।
2: व्यायाम करने से जो है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, और जब शरीर की मांसपेशियां स्ट्रांग हो जाती हैं तो वो जोड़ों को आपस में घिसने से बचाती हैं। तो एक प्रकार से ऑस्टियोआर्थराइटिस को रोकने के लिए और जल्दी उसको तकलीफ न होने देने के लिए उसमें काफी फर्क पड़ जाता है। और मांसपेशियां अगर अच्छी होती है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस भी लेटर स्टेज में कम होती है। एक तो ये कि अपना वजन संतुलित रखे, और इस प्रकार का आप आपके जो खान पीन है उसमें इस प्रकार की है कि आपका वजन नहीं बढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि नियमित रूप से व्यायाम कीजिए ताकि मांसपेशियां आपकी स्ट्रांग हो जाएं और वो जोड़ों को घिसने से बचाएं। तीसरी चीज जो बहुत जरूरी है वो कि अपना पोस्चर ठीक रखें, आपके बैठने का तरीका, आपका लेटने का तरीका या इस तरह की चीजें जो हैं उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होगी।
1: गॉटी आर्थराइटिस में चूंकि मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ होने से शरीर में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, इसलिए इसे दवाइयों और खानपान में बदलाव कर काबू में किया जाता है। मरीज को शराब पीने से परहेज करना होगा और कुछ खाने की चीजों से परहेज करना होगा। गॉटी आर्थराइटिस के पेशेंट्स को NS8 के अलावा कुछ खास दवाई दी जाती है, जैसे कि एलोप्रिनॉल और कॉल्चाइसिन। आर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पेन और इन्फ्लेमेशन कम करने की नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स यानी NS8 जैसे एस्पिरिन और आइबुप्रोफेन दी जाती है। कुछ पेशेंट्स को स्टेरॉयड्स भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं। जरूरत पड़ने पर जॉइंट्स में स्टेरॉयड्स के इंजेक्शन भी लगाए जाते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी करने के लिए बताया जाता है। इन्फेक्टिव आर्थराइटिस में पेशेंट्स को NS8 दवाओं के अलावा एंटीबायोटिक दवाई दी जाती है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NS8 दवाओं के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है। आर्थराइटिस के पेशेंट्स को हीट थेरेपी भी दी जाती है। हीट थेरेपी से रक्त का प्रवाह तेज होता है और मरीज की दर्द सहने की क्षमता भी बढ़ती है। आर्थराइटिस के बहुत बढ़ जाने पर कुछ पेशेंट्स को ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करनी पड़ती है जिनसे जोड़ों को सपोर्ट मिलता है और जॉइंट्स मूवमेंट में दर्द कम होता है। इन डिवाइसेस की जरूरत तब पड़ती है जब बीमारी बहुत बढ़ जाती है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं। इन सर्जरीज में आती हैं नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। जॉइंट्स हमारे शरीर को मोबिलिटी यानी गतिशीलता प्रदान करते हैं। हमारे जॉइंट्स पर मौजूद नाजुक कवर को कार्टिलेज कहते हैं। कार्टिलेज से जॉइंट्स में लचीलापन आता है और मूवमेंट आसान होती है। कार्टिलेज के घिसने, उसमें बदलाव आने और इन्फ्लेमेशन होने को आर्थराइटिस कहते हैं। आर्थराइटिस को मोटे तौर पर 4 श्रेणियों में बांटा गया है, ऑस्टियोआर्थराइटिस, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस और गाउटी आर्थराइटिस। ऑस्टियोआर्थराइटिस बुढ़ापे की बीमारी है। ज्यादातर इसका असर बड़े जॉइंट्स जैसे कंधे और घुटने के जोड़ों पर होता है। रिमेटॉइड आर्थराइटिस किसी भी उम्र के लोगों को अपना शिकार बना सकती है। ज्यादातर इसका असर शरीर के छोटे जॉइंट्स जैसे उंगलियों और अंगूठों के जॉइंट्स पर होता है। संतुलित भोजन, एक्सरसाइज और वजन को नियंत्रण में रखकर ऑस्टियोआर्थराइटिस को काफी हद तक काबू में रखा जा सकता है। आर्थराइटिस के पेशेंट का सामान्यतः NSAID और स्टेरॉयड से इलाज किया जाता है। कुछ अति गंभीर मामलों में डॉक्टर सर्जरी भी करते हैं, जैसे नी और हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी। रिमेटॉइड आर्थराइटिस में NSAID के अलावा इम्यून सप्रेसेंट ड्रग दी जाती है।
3: कोकिला, आर्थराइटिस पेशेंट्स की पेनफुल लाइफ को देखकर दुख होता है, क्या हम इनके लिए कुछ कर सकते हैं?
0: क्यों नहीं कर सकते, वही कर सकते हैं जो तुम कर रहे हो। यस, ह्यूमन सपोर्ट। दोस्तों, मेडिकल साइंस और डॉक्टर्स तो अपना काम कर ही रहे हैं, मगर हम और आप भी आर्थराइटिस से जूझते लोगों की मदद कर सकते हैं। तो बस, बबलू जी की इस लाइफ के प्रति पॉजिटिव अप्रोच के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।
3: बाय।

0: परिवर्तन की शांत लहर, श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026। कुछ लोग बदलाव की बातें करते हैं और कुछ लोग बदलाव लाते हैं। मध्य प्रदेश के श्री मोहन नागर जी को प्रकृति और पानी से प्रेम संस्कार में मिले थे।
1: हमने अपने काम की शुरुआत शिक्षा के माध्यम से की। भारत भारती के माध्यम से 500 गांवों में एकल विद्यालय प्रारंभ किए।
0: पर असल समस्या और थी।
2: जमीन बेकार हो गई थी, खेती बंद हो गई, लोग गांव छोड़ रहे थे।
1: पदयात्रा के समय अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि दिवाली के समय पानी की बहुत समस्या हो जाती है और लोग पलायन कर जाते हैं। पर्याप्त बारिश होने के बाद भी कुएं, बावड़ी, तालाब और स्टार्ट डैम की कमी के कारण अधिकांश पानी बह जाता था।
0: श्री मोहन नागर जी ने नदी नालों में बहते पानी को रोकने का एक अनोखा रास्ता निकाला।
1: हमने सीमेंट की खाली बोरियों में रेत भर के नदी नालों में बोरी बंधान बनाए, जिसके कारण पानी की समस्या कम हुई और पलायन बंद हुआ।
0: इसके बाद बारी थी जमीन के जल स्तर को बढ़ाने की।
1: हमने गंगा अवतरण अभियान के माध्यम से जन भागीदारी से सोना घाटी की पहाड़ी पर 8,000 कंटू टेंच बनाए और 32,000 पौधे लगा करके ताप्ती उपन उगाए, जिसके कारण उस क्षेत्र का भूजल स्तर बढ़ गया। लैंड माफिया, रेत माफिया, इसका हमको विरोध का सामना करना पड़ा। हमने अपने काम को नहीं रोका, हमने लोगों का विश्वास जीता और धीरे धीरे जो हमारे विरोधी थे वो भी हमारे सहयोगी बन गए।
0: प्रकृति और पानी बचा के मोहन जी ने वर्तमान बचाया और अब उनका लक्ष्य था एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करना।
1: भारत भारती विद्यालय के माध्यम से हम बच्चों को शिक्षा देकर आने वाले कल के लिए एक संस्कारी, प्रतिभाशाली और उत्कृष्ट नेतृत्व क्षमता वाले युवा तैयार करते हैं। हमने बाचा गांव को ग्रामवासियों के सहयोग से एक आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया है। बाचा गांव शांति, प्रगति और समृद्धि का प्रतीक बन गया है।
0: लेकिन अनगिनत बदलाव लाने वाले श्री मोहन नागर जी की एक चीज कभी नहीं बदली, उनके परिवार का अटूट भरोसा। मोहन जी को कई सम्मान मिले पर उनका असली सम्मान तो भरे हुए तालाब, लहराते पहाड़ और मुस्कुराते चेहरे हैं।
1: पानी बचाना एक काम नहीं या वचन है आने वाली पीढ़ियों से, क्योंकि जल है तो कल है।
0: श्री मोहन नागर, पद्मश्री 2026।
3: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
4: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, भारत आज दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने अपनी आर्थिक क्षमता को मजबूत किया है और विकास के नए अवसर तैयार किए हैं। भारत की इस आर्थिक यात्रा में निर्यात की भूमिका लगातार बढ़ रही है। कभी बड़े पैमाने पर आयात करने वाले देश के रूप में देखे जाने वाला भारत आज वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों और सेवाओं की पहुंच लगातार बढ़ा रहा है। इस बदलाव में भारत के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों MSME की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। देश के अलग अलग हिस्सों में बड़ी संख्या में MSME, किसान, कारीगर और छोटे कारोबारी ऐसे उत्पाद तैयार करते हैं जिनकी घरेलू बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में भी मांग है। इसलिए भारत के निर्यात को बड़े औद्योगिक केंद्रों से आगे बढ़ाकर छोटे शहरों, कस्बों और जिलों तक ले जाना जरूरी है। यहीं पर डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स यानी DEH पहल की भूमिका सामने आती है। इसका उद्देश्य देश के अलग अलग जिलों की आर्थिक ताकत और वहाँ मौजूद निर्यात क्षमता वाले उत्पादों और सेवाओं की पहचान करना और उन्हें वैश्विक बाजार से जोड़ना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स पहल की शुरुआत कैसे हुई, ये वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट यानी ODOP की सोच से किस तरह आगे बढ़ती है और स्थानीय MSME, किसानों तथा कारोबारियों को वैश्विक बाजार से जोड़ने में इसकी क्या भूमिका है। श्रोताओं, भारत के अलग अलग जिलों में स्थानीय उत्पादों की अपनी एक अलग पहचान रही है। कहीं कृषि उत्पाद महत्वपूर्ण है तो कहीं हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग सामान या दूसरे स्थानीय उद्योग। इन्हीं स्थानीय क्षमताओं को आर्थिक अवसर में बदलने की सोच से उत्तर प्रदेश में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आगे चलकर इसी कार्यक्रम ने एक समूचे अभियान का रूप ले लिया। आइए इस विकास क्रम को विस्तार से समझते हैं।
5: वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत वर्ष 2018 में उत्तर प्रदेश की एक राज्य पहल के रूप में हुई थी। इसे मुरादाबाद के पीतल उद्योग को आधार बनाकर शुरू किया गया और बाद में इसे राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मुख्य विचार था कि हर जिले से एक विशिष्ट उत्पाद की पहचान की जाए, उसे बढ़ावा दिया जाए, उसकी ब्रांडिंग की जाए और उसकी बाजार पहचान मजबूत की जाए, यानी स्थानीय उत्पाद और स्थानीय पहचान को आर्थिक अवसर से जोड़ा जाए। लेकिन किसी उत्पाद की पहचान और उसकी ब्रांडिंग के बाद अगली चुनौती ये थी कि उसे बड़े बाजार तक कैसे पहुंचाया जाए और उसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए किस तरह तैयार किया जाए। इन्हीं चुनौतियों से निपटने के लिए 2019 में डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स की शुरुआत हुई और 2023 की विदेश व्यापार नीति में इसे औपचारिक रूप दिया गया। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का जोर मुख्य रूप से स्थानीय उत्पाद की पहचान, ब्रांडिंग और प्रचार पर था, जबकि डिस्ट्रिक्ट्स एज एक्सपोर्ट हब्स पहल ने इसका दायरा बढ़ाकर निर्यात को बढ़ावा देने और पूरे स्थानीय तंत्र को मजबूत करने पर ध्यान दिया। इस नए अभियान के तहत वाणिज्य विभाग और विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT की अगुवाई में अलग अलग सरकारी योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल पर जोर दिया जा रहा है। इस पहल को एक अलग वित्तीय योजना के बजाय ऐसी व्यवस्था के रूप में विकसित किया गया है जिसमें केंद्र और राज्य की मौजूदा योजनाओं, संस्थाओं और उद्योगों के बीच तालमेल बनाकर जिलों में निर्यात का माहौल तैयार किया जाता है। इसी व्यवस्था को कन्वर्जेंस फ्रेमवर्क कहा जाता है। जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन कमिटीज यानी DEPCs काम करती है। ये समितियाँ जिले में निर्यात की संभावनाओं की पहचान करती हैं, स्थानीय समस्याओं को समझती हैं और उद्योग, निर्यातकों तथा दूसरे संबंधित पक्षों के साथ मिलकर उनके समाधान की दिशा में काम करती हैं। जनवरी 2026 तक DEH पहल देश के 770 से अधिक जिलों को अपने दायरे में ला चुकी थी। ये इस बात को दिखाता है कि निर्यात की योजना अब कुछ बड़े औद्योगिक केंद्रों तक सीमित रखने के बजाय देश के अधिक से अधिक जिलों तक पहुंचाने की दिशा में आगे बढ़ रही है।
4: श्रोताओं, इस पहल के तहत कृषि, विनिर्माण, हस्तशिल्प और GI टैग वाले उत्पादों सहित अलग अलग क्षेत्रों की निर्यात क्षमता की पहचान की जा रही है। उदाहरण के लिए गुजरात के साबरकांठा में सेरेमिक, टाइल और आलू, अरावली में खनिज, कृषि प्रसंस्करण और ग्लास, महाराष्ट्र के जलगांव में केला और बैंगन, मध्य प्रदेश के आगर मालवा में संतरा तथा छत्तीसगढ़ के बस्तर में लौह, शिल्प, चावल, ज्वार और मक्का जैसे उत्पादों में निर्यात की संभावना पहचानी गई है। लेकिन किसी उत्पाद का अच्छा होना उसे निर्यात योग्य नहीं बनाता। वैश्विक बाजार में पहुंचने के लिए गुणवत्ता के साथ प्रमाणन, पैकेजिंग और ब्रांडिंग भी जरूरी है। इस योजना के तहत इन पहलुओं के बारे में स्थानीय कारोबारियों में जागरूकता और उनकी क्षमता बढ़ाने पर भी काम किया जा रहा है। आइए इन प्रयासों को विस्तार

0: स्पेस पैकेजिंग और छोटे सामान भेजने जैसी सुविधाएं शामिल हैं। निर्यात के लिए जरूरी जानकारी और कौशल बढ़ाने के लिए DGFT के क्षेत्रीय कार्यालय के साथ मिलकर जिला प्रशासन जागरूकता और स्किलिंग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें लॉजिस्टिक्स की योजना, निर्यात की प्रक्रिया, पैकेजिंग और नियमों का पालन जैसे विषय शामिल होते हैं। इन कार्यक्रमों में ECGC, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर हैंडीक्राफ्ट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ MSME, इंडिया पोस्ट और एक्सिम बैंक जैसे संस्थान भी सहयोग कर रहे हैं। इस अभियान के तहत जमीनी स्तर पर निर्यात क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष पहल भी की जा रही है। DGFT ने एक्सिम बैंक के साथ मिलकर ग्रासरूट्स इनिशिएटिव्स फॉर डेवलपमेंट यानी ग्रिड कार्यक्रम के तहत 6 जिलों अनंतपुर, रायपुर, सोलन, त्रिपुर, कानपुर और कोल्हापुर को चुना है। इसमें जिले की विशेष जरूरतों और उद्योगों के सामने आने वाली समस्याओं को समझकर उनके लिए अलग अलग उपाय तैयार किए जा रहे हैं। अगर कोई कारोबारी इस पहल का लाभ लेना चाहता है तो सबसे पहले वे अपने जिले के डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान में शामिल उत्पादों और सेवाओं की जानकारी ले सकता है। नए निर्यातकों को इम्पोर्टर एक्सपोर्टर कोड यानी IEC के लिए DGFT के माध्यम से पंजीकरण कराना होता है। इसके अलावा कारोबारियों के लिए सरकार द्वारा आयोजित बायर सेलर मीट्स, प्रदर्शनियों, व्यापार मेलों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना भी वैश्विक बाजार की जानकारी और खरीदारों तक पहुंच बनाने का माध्यम है। समाचार कक्ष से मैं फरहत नाज।
1: श्रोताओं, भारत की निर्यात यात्रा अब एक नए चरण में पहुंच रही है। 2025-26 में देश का कुल निर्यात 863 अरब 11 करोड़ अमरीकी डॉलर के अब तक के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंचा। खास बात ये रही कि इस वित्त वर्ष की चारों तिमाहियों में अलग अलग स्तर पर अब तक का सबसे अधिक निर्यात दर्ज किया गया। देश के व्यापार इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ। इसमें सेवा क्षेत्र की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण रही। 2025-26 में भारत का सेवा निर्यात बढ़कर 421 अरब 32 करोड़ अमरीकी डॉलर हो गया, जो 2024-25 के 387 अरब 55 करोड़ अमरीकी डॉलर की तुलना में 8.71% अधिक है। वहीं वस्तु निर्यात 437 अरब 70 करोड़ अमरीकी डॉलर से बढ़कर 441 अरब 78 करोड़ अमरीकी डॉलर हुआ, यानी 0.93% की वृद्धि। आने वाले वर्षों में भारत ने निर्यात को और बड़े स्तर पर ले जाने का लक्ष्य रखा है। सरकार वर्ष 2030-31 तक कुल 2 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के निर्यात का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है। इसमें 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के वस्तु निर्यात और 1 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर के सेवा निर्यात का लक्ष्य शामिल है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल बड़े उद्योगों और बड़े शहरों पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं होगा। भारत के अलग अलग जिलों में मौजूद MSME, किसान, कारीगर और स्थानीय उद्योग भी इस निर्यात यात्रा का हिस्सा बने। यही डिस्ट्रिक्ट एज एक्सपोर्ट हब जैसी पहल का बड़ा महत्व है। ये अभियान आत्मनिर्भर भारत की व्यापक सोच से भी जुड़ता है। आत्मनिर्भरता का अर्थ दुनिया से अलग रहना नहीं, बल्कि अपनी उत्पादन क्षमता और प्रतिस्पर्धा को मजबूत करके भारतीय उत्पादों को दुनिया के बाजार में मजबूती से पहुंचाना है। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक अलका सिंह।

0: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: नमस्ते, मैं कुमारी उषा भारती, मैं बलिया जिला की रहने वाली हूँ और मैं यहाँ रीज इंडिया में कुछ सीखती हूँ। यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है, हम कुछ सीख कर आगे भी बढ़ सकते हैं, अपने बच्चों को भी भविष्य बना सकते हैं, ऐसा यहाँ है। बस इतना ही कुछ कहना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को कुछ लड़कियों के बारे में एक दहेज गाना सुनाना चाहती हूँ, जो आप लोग भी सुनेंगी और जानेंगी कुछ कि लड़कियाँ कितनी आगे हैं और कितनी चल सकती हैं। ठीक है, मैं सुना रही हूँ। कब तलक अपनी भारत की बेटी बल की बेड़ी पे चल।

छोड़ो, जिसके घर में है कन्या कुमारी, उस पिता के दिलों से तो पूछो, उस

सहजी, क्या पता बेटी शादी से सहजी, क्या पता है कफन ओढ़े लेगी। मैं आप लोग को ये दहेज की सुनाने सुनाई, बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ, दहेज को दूर करो और लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे भेजो, आगे कुछ बनाओ उन्हें, क्योंकि लड़कियाँ लड़कों से कम नहीं है, एक कदम आगे हैं। थैंक यू।

वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज हम स्मरण कर रहे हैं लोकनायक जयप्रकाश नारायण का।

आजादी की यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे। अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति ऑडियो एल्बम का संग्रह जन गर्जे।

झंझा सोई तूफान रुका, प्लावन जा रहा कगारों में, जीवित है सबका तेज किंतु अब भी तेरे हुंकारों में। सुप्रसिद्ध कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां संबोधित हैं उस महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सुधारक और राजनेता को, आधुनिक भारत के इतिहास में जिनकी उपस्थिति अविस्मरणीय है। भारतीय स्वाधीनता आंदोलन से लेकर स्वतंत्र भारत की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले वो महान राष्ट्रभक्त थे, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। राष्ट्र सदैव उनके जीवन के केंद्र में रहा। देश के तीन महत्वपूर्ण आंदोलनों में उनकी सक्रिय भागीदारी रही। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। आजादी के बाद 50 और 60 के दशक में भूदान आंदोलन में भाग लेकर उन्होंने बड़े पैमाने पर सामाजिक परिवर्तन लाने की दिशा में योगदान किया और 70 के दशक में भ्रष्टाचार और अधिनायकवाद के विरुद्ध संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया। तत्कालीन परिस्थितियों के विरुद्ध विपक्ष को एकजुट कर उन्होंने देश के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन किया। संपूर्ण क्रांति का उनका दर्शन और आंदोलन भारतीय राजनीति में बड़ा बदलाव तो लाया ही, साथ ही देश के सामाजिक ताने बाने को बदलने में भी कारगर साबित हुआ। आजादी के बाद वो देश के महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हो सकते थे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद के प्रस्ताव उनके समक्ष रखे भी गए, किंतु उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। दरअसल जयप्रकाश नारायण हमेशा स्वयं को राज सत्ता से अलग रखकर लोक सत्ता को मजबूत करने में लगे रहे। वे राजनीति और राज सत्ता के ऊपर लोकनीति और लोक सत्ता का अंकुश रखने के पक्षधर थे, ताकि राज सत्ता को भ्रष्ट होने से बचाया जा सके। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर सन 1902 को बिहार के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में विजयदशमी के दिन हुआ था। उनके पिता का नाम हरसुदयाल और माता का नाम फूल रानी देवी था। मां की सादगी और निर्मलता तथा पिता की देशभक्ति और स्वतंत्र विचारधारा की गहरी छाप उन पर पड़ी। सन 1919 में मैट्रिक पास करने के बाद जयप्रकाश जी का नामांकन आईएससी में पटना कॉलेज में हुआ। ये वो समय था जब जलियांवाला बाग, रोलेट एक्ट, होम रूल आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह जैसी घटनाओं से देश उद्वेलित था। इस वातावरण का गहरा प्रभाव जयप्रकाश जी पर पड़ा। पटना में ही उन्होंने मौलाना अबुल कलाम आजाद का असहयोग और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार पर भाषण सुना, जिसने उन्हें पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया। सन 1920 में पटना में हुई गांधी जी की सभा का भी उन पर गहरा असर हुआ। स्वदेशी का प्रभाव ऐसा हुआ कि उन्होंने खादी पहनना शुरू कर दिया, चरखा चलाना भी सीख लिया। चौरी चौरा कांड के बाद जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया, तब जयप्रकाश नारायण के कई साथी वापस कॉलेज जाने लगे, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत द्वारा चलाए जा रहे शिक्षण संस्थानों में वापस जाना उन्हें स्वीकार्य नहीं था। इसलिए जयप्रकाश नारायण ने बिहार विद्यापीठ में प्रवेश लिया और आईएससी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अनुग्रह नारायण सिंह, रामचरित्र सिंह, पांडे रघुनंदन, पांडे हरिनंदन और शंभु शरण वर्मा जैसे देशभक्त मित्रों के सानिध्य का भी उन पर प्रभाव पड़ा। देश से उनके सरोकार बढ़ते चले गए। भारत भूमि से उनका आत्मिक जुड़ाव बचपन से जो था।

सन 1920 में जब जयप्रकाश नारायण 18 वर्ष के थे तब उनका विवाह प्रभा देवी के साथ संपन्न हुआ। बिहार विद्यापीठ से पढ़ाई करने के बाद सन 1922 में अपनी पत्नी प्रभा देवी को गांधी जी के साबरमती आश्रम में छोड़कर जयप्रकाश नारायण कैलिफोर्निया के बर्कले विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने चले गए। यहां अपनी पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए उन्होंने खेतों, कंपनियों, होटलों में काम भी किया। इन सालों में उनके विचार और दृष्टिकोण में सबके लिए समान अधिकार की बात स्पष्ट रूप से अंकित हो चुकी थी। अमेरिका में रहते हुए ही उन्होंने बीए और एमए की डिग्री हासिल की, लेकिन माताजी की तबीयत खराब होने के कारण अपनी पीएचडी अधूरी छोड़कर सन 1929 में वो भारत वापस लौट आए। संपूर्ण जीवन देश को समर्पित करने का संकल्प अब उनके मन में था। इसी शुभ भावना के साथ उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया और देश के स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय हो गए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेने के कारण सन 1932 में जयप्रकाश नारायण मद्रास में गिरफ्तार किए गए। ये उनकी पहली जेल यात्रा थी। यहां से वे मुंबई आर्थर रोड जेल और फिर नासिक जेल लाए गए। नासिक जेल में ही वो राम मनोहर लोहिया, अशोक मेहता, मीनू मसानी और अच्युत पटवर्धन जैसे नेताओं के संपर्क में आए। सन 1939 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के महासचिव के रूप में उन्होंने आह्वान किया कि द्वितीय विश्व युद्ध का फायदा उठाते हुए भारत से अंग्रेजी सरकार को उखाड़कर फेंक दिया जाए। उनकी सघन सक्रियता को देखते हुए उन्हें 9 महीने कारावास की सजा हुई। अगस्त 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान करते हुए करो या मरो का नारा दिया। इस आंदोलन में जयप्रकाश नारायण जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। 9 अगस्त की सुबह गांधी जी के साथ साथ सभी वरिष्ठ नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। आंदोलन का लगभग संपूर्ण नेतृत्व ही जेलों में डाल दिया गया। ऐसे समय में जयप्रकाश नारायण ने राम मनोहर लोहिया और अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर इस आंदोलन को महत्वपूर्ण नेतृत्व दिया। हालांकि उन्हें भी जल्दी ही गिरफ्तार कर लिया गया और हजारीबाग सेंट्रल जेल में कैद कर दिया गया। लेकिन जयप्रकाश नारायण जानते थे कि जेल के बाहर रहकर ही इस आंदोलन को गति दी जा सकती है। इसलिए 8-9 नवंबर 1942 की रात दीपावली के त्योहार का फायदा उठाते हुए अपने 6 साथियों को लेकर वो फरार हो गए और उसके बाद भूमिगत रहकर आंदोलन को गति देते रहे। इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन में वो एक नायक की तरह उभरे। अंग्रेज सरकार द्वारा उन्हें जिंदा या मुर्दा पकड़कर लाने वाले को 5,000 रूपये के इनाम की घोषणा की गई, जिसकी राशि बाद में बढ़ाकर 10,000 रूपये कर दी गई। अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध जयप्रकाश नारायण ने नेपाल में आजाद दस्ते का गठन किया। पुलिस उन्हें ढूंढ रही थी। इन परिस्थितियों में उनके नेपाल पहुंचने का किस्सा भी अत्यंत रोचक है। बंबई से मद्रास और फिर कलकत्ता होते हुए वो बिहार आए। यहां से सहरसा जिले को पार कर उन्हें नेपाल पहुंचना था। पुलिस को धोखा देने के लिए शादी के बाद दुल्हन को वापस घर लौटाने का नाटक रचा गया। हाथी पर सज धज कर बैठे जयप्रकाश जी आगे आगे चले और पीछे पीछे पालकी में चली अच्युत पटवर्धन की छोटी बहन विजया पटवर्धन। इस तरह सन 1943 में नेपाल में आजाद दस्ते का गठन हुआ। अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो के शंखनाद की गूंज बढ़ती गई। कुछ महीनों बाद सितंबर 1943 में रेल यात्रा करते समय जयप्रकाश नारायण को पंजाब से गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1945 में उन्हें लाहौर से आगरा जेल भेज दिया गया, जहां राम मनोहर लोहिया भी उनके साथ थे। स्वाधीनता आंदोलन की जानकारी प्राप्त करने के लिए जेल में उन्हें असहनीय यातनाएं दी गईं, लेकिन जयप्रकाश जी पहाड़ की तरह अटल रहे।

11 अप्रैल सन 1946 को 31 महीने के कारावास के बाद जयप्रकाश नारायण रिहा हुए। 15 अगस्त 1947 को देश में स्वर्णिम विहान जागा, भारत स्वाधीन हुआ। लेकिन आजादी के बाद उन्होंने कोई भी पद ग्रहण करने से इनकार कर दिया। दरअसल गांधी जी के बाद ऐसे आदर्श प्रस्तुत करने वालों में वो एकमात्र व्यक्ति थे। गरीबों के लिए उनकी प्रतिबद्धता कभी कम नहीं हुई और यही संकल्प उन्हें आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के करीब ले गया। विनोबा जी से उनकी पहली मुलाकात सन 1950 में हुई थी। विनोबा जी से मिलकर उन्होंने महसूस किया कि विनोबा जी अद्भुत प्रतिभा संपन्न मौलिक विचारक हैं और उनके व्यक्तित्व में दूसरों को अनुप्राणित करने की अनोखी शक्ति है। इस तरह जयप्रकाश जी के मन में ये विश्वास जागा कि सर्वोदय योजना के द्वारा ही गांधी जी के सपने को साकार किया जा सकता है। उन्होंने कहा भी था, आई सी सम लाइट हियर। इस तरह विनोबा जी से उनका आत्मीय जुड़ाव जीवन पर्यंत रहा। जयप्रकाश जी ने देश से कभी कुछ मांगा नहीं, सिर्फ दिया ही। इसीलिए देश स्वयं उनके नैतिक अधिकार को हमेशा मानता रहा। ये उनके व्यक्तित्व का ही प्रभाव था कि चंबल के लगभग 500 डाकुओं का हृदय परिवर्तन करने में वो सफल रहे और उनका आत्मसमर्पण करवाया। एक संत की तरह देश को सब कुछ सौंपकर वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। लेकिन 70 के दशक की शुरुआत में उनके जीवन का तीसरा चरण आरंभ हुआ। तत्कालीन परिस्थितियों से परेशान गुजरात के छात्रों ने उनसे नवनिर्माण आंदोलन के नेतृत्व का आग्रह किया। खराब स्वास्थ्य के बावजूद देश हित में जयप्रकाश जी फिर उठ खड़े हुए। 5 जून सन 1974 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। 5 लाख से भी अधिक लोग इस सभा में जुटे थे। जेपी की हुंकार पर नौजवानों का जत्था सड़कों पर निकल पड़ा। बिहार से उठी क्रांति की चिंगारी देश के कोने कोने में प्रचंड अग्नि बनकर भड़क उठी। देश में आपातकाल लागू हो गया। जयप्रकाश नारायण सहित सैकड़ों नेता गिरफ्तार कर जेलों में डाल दिए गए। इस आंदोलन का ही परिणाम था कि अंततः देश के नेतृत्व में परिवर्तन हुआ। जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति की अवधारणा में 7 क्रांतियां शामिल थीं: राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, बौद्धिक, शैक्षणिक और आध्यात्मिक क्रांति। संपूर्ण क्रांति आंदोलन के दौरान ही जयप्रकाश नारायण का स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। आपातकाल के दौरान उनकी तबीयत अचानक 24 अक्टूबर सन 1976 को बिगड़ गई और 12 नवंबर सन 1976 को उन्हें रिहा कर दिया गया। जांच करने पर मालूम हुआ कि उनकी किडनी खराब हो गई थी, जिसके बाद वो डायलिसिस पर ही रहे। 8 अक्टूबर सन 1979 को पटना में उन्होंने अंतिम सांस ली। देश में शोक की लहर दौड़ गई। उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर विनोबा जी ने अत्यंत विह्वल स्वर में कहा, लोगों ने उन्हें लोकनायक की उपाधि दी, परंतु उन्होंने कभी अपने को लोकनायक माना नहीं था, लोक सेवक ही माना। यदि वे चाहते तो प्रधानमंत्री अथवा राष्ट्रपति बन सकते थे, किंतु ऐसी कोई इच्छा उनके मन में कभी उत्पन्न नहीं हुई। वो लोगों के बीच रहकर ही आम लोगों की सेवा करते रहे। उनके निधन का समाचार सुनकर 36 देशों ने संवेदना संदेश भेजा और संयुक्त राष्ट्र संघ में भी झंडा झुका दिया गया। उनकी देश सेवा के प्रति कृतज्ञ राष्ट्र ने सन 1998 में उन्हें भारत रत्न से विभूषित कर अपना आभार व्यक्त किया। ऐसे निस्वार्थ कर्मयोगी लोकनायक जयप्रकाश नारायण को हमारा शत शत नमन।

आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग। मार्गदर्शन श्री शिवशेखर शुक्ल, समन्वय श्री संजय यादव और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय, संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम, सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
1: हेलो, मैं पूजा शाबाद मोहम्मदपुर से, मैं रीड इंडिया से 6 साल से

पढ़ी हुई हूँ। मैंने रीड इंडिया से सबसे पहले बेसिक कंप्यूटर सीखा, उसके बाद मैंने टीचर ट्रेनिंग की, फिर मैंने सिलाई की। सिलाई करके फिर काफ़ी टाइम तक मैं अपने घर में अपने बच्चों के साथ व्यस्त रहने लगी। लेकिन मेरे एक दिन एक लेडीज़ मेरे पास आई कि बेटा मेरे को सूट सिलवाने हैं, अगर यहाँ पे कोई आसपास में सूट सिलता है तो मुझे बता दो। वो भी फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी, वो भी यहाँ पे नहीं जानती थी किसी को, क्योंकि वो यहाँ पे किराए पे रहने वाली थी। उसने वो मेरे पास आई, फिर मैंने उनको बोला कि आंटी मैं सिल सकती हूँ। बोले कि बेटा आप सिलना जानते हो? मैं बोले कि हाँ आंटी मैं सिल सकती हूँ, मेरे को सिलाई आती है। उन्होंने फर्स्ट टाइम ऐसे सूट सिलवाया, उन्होंने जो सूट सिलवाया था उन्होंने मेरे को सिर्फ 2 दिन का टाइम दिया था, और मैंने उनको 2 घंटे में सूट तैयार करके उनके पास फ़ोन किया कि आंटी आपका सूट कम्प्लीट है, आप ले जा सकते हो। तो वो मेरे घर आई, उन्होंने सूट देखा, उन्होंने सूट मेरा बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा कि बेटा आप ऐसे ही सूट सिलते रहोगे तो हम आपसे और सिलवाएंगे। नेक्स्ट डे आई, फिर उन्होंने मेरे से एक ब्लाउज सिलवाया, मैंने उनका ब्लाउज सिलवाया, उन्हें वो भी अच्छा लगा कि बोला कि बेटा तुमने फिटिंग बहुत अच्छी मतलब बिठा रखी है कि सूट की और ब्लाउज की, तो मुझे बहुत अच्छी लगी। मैं बोले कि थैंक यू आंटी। बोले कि नहीं बेटा आप सिलते रहो, हम आपसे जुड़े रहेंगे और आपसे ही सिलवाएंगे। मैंने कहा ठीक है आंटी आपकी मर्जी है। उस टाइम मेरे पास हाथ की मशीन थी, वैसी पैर वाली मशीन नहीं थी। धीरे धीरे करके मैंने सिलाई की, सिलाई करके अपना पैसा जोड़ा, इकट्ठा किया। सबसे पहले मैंने अपनी एक गुल्लक खरीदी 5 रुपए वाली। मैंने उस गुल्लक में जितना मैं सिलाई करती थी सारा पैसा उस गुल्लक में डालती रहती थी। मैक्सिमम मुझे 1 साल हो गया था जब मैंने अपनी गुल्लक को फोड़ा, तो मेरे गुल्लक में मैक्सिमम 3,000 रुपए निकले। मैं यहाँ से घर से निकली, मैंने सबसे पहले अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे सिलाई मशीन के पैर लेके आने हैं। उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। फिर मैंने अपनी सास को बोला, वो बोली कि क्या करेगी आंखें खराब होती हैं। फिर मैंने पापा को बोला, ससुर को, उन्होंने कहा बेटा नहीं कोई सिलाई विलाई नहीं करनी है, अपने घर में रहो, बच्चों को देखभाल करो, उनको खाना पीना खिलाओ। किसी ने मेरा सपोर्ट नहीं किया। एक दिन मैं खुद पालम गई, फिर मैं वहां से अपनी मशीन के पैर लेके आई। आके मैंने घर पे एक मशीन वाले को बुलाया, उन्होंने मेरी मशीन उस पे रखी, उसको स्टार्ट किया। उसके बाद मैं अपनी सिलाई करना शुरू किया। सब मेरे को टोकते थे कि बेटा नहीं तेरी आंखें खराब हो जाएंगी, मत सिल, और फिर यही है कि तेरे को दिखना बंद हो जाएगा, चश्मा लग जाएगा। मैंने मना कर दिया कि नहीं मैं सिलूंगी, मेरा मन करता है कि मैं सिलाई करूं। उस दिन के बाद मेरे को इतना प्राउड हुआ कि मैं खुद सिलाई करती हूं, और आज है मेरे अंदर इतना प्राउड कि मैं बाहर के सिलती हूं और अपना सारा पैसा इकट्ठा करती हूं। मेरे बच्चों को जो भी जरूरत होती है, जैसे कि हस्बैंड कोई हेल्प नहीं करता, उनको किसी भी हेल्प बुक की ज़रूरत होती है, किसी भी पेन की, पेंसिल की, मैं सारी चीज़ें अफोर्ड करती हूँ उनके लिए। हस्बैंड तो सुबह के ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं, वो मेरे को कोई खर्चा भी नहीं देके जाते, लेकिन जब भी पीछे से बच्चे बीमार होते हैं या कोई भी प्रॉब्लम होती है, यहाँ तक कि सास ससुर को भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, मैं एक बार भी ये नहीं सोचती कि उन्होंने मुझे सपोर्ट नहीं किया। मैं उनके लिए भी हर टाइम तैयार रहती हूँ, किसी भी चीज़ के लिए, चाहे बीमारी के लिए कोई पैसा हुआ, या खाने पीने की चीज़ हुई, या कि कोई भी चीज़ पसंद आए कि हमें ये सूट चाहिए, मैं वो सारी चीज़ें दिलाती हूँ। लेकिन एक बार भी उनको अब तक ये नहीं है कि हाँ वो हमारे लिए इतना कर रही है कि हम उसको सपोर्ट करें। रीड इंडिया से फिर मैं दोबारा से जुड़ी हूँ, क्योंकि रीड इंडिया में कंप्यूटर और सिलाई और ब्लॉक पेंटिंग और पार्लर का कोर्स किया जाता है। अब मैं पार्लर का कोर्स कर रही हूँ और मैंने बेसिक कंप्यूटर भी सीख लिया है। और पार्लर का कोर्स करने के बाद अब मैं घर पे जाके मेरी 2 देवरानियाँ हैं उन पर ट्राई करती हूँ, मेरी सास है उन पर ट्राई करती हूँ, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड है, मेरे को अपने मतलब खुद मेरे हाथ से खुद अपनी हेड मसाज करवाते हैं, फुट मसाज करवाते हैं। वो बहुत बोलते हैं कि मुझे बहुत रिलीफ मिला है, लेकिन अब तक उन्हें भी मेरा 1% भी सपोर्ट नहीं किया है। लेकिन हाँ, मैं निकली हूँ घर से और मैं सीख रही हूँ कि मैं भी कुछ करूं और मेरी भी एक अलग पहचान हो। जब फर्स्ट टाइम मैंने सिलाई की थी, जो मेरे पास सबसे पहले पैसा आया था, सबसे पहले तो मैंने भगवान के मंदिर में जाके उनका प्रसाद बांटा था, और सबसे पहले मैंने अपना एक सूट लिया था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रीड इंडिया से भी जुड़ी हूँ, उससे मैंने सिलाई भी सीखी है, उस बेस पे मैं अपने पैरों पे स्टैंड हुई हूँ। तो मैं थैंक यू करती हूँ पूरी रीड इंडिया के टीचर्स का कि थैंक यू आप सब ने मेरे को इतना सपोर्ट किया और मुझे इस काबिल बनाया कि ठीक है मैं घर से बाहर नहीं जा सकती, लेकिन घर में एक पूरी फैमिली के सामने मैं स्टैंड हूँ कि कल को अगर मेरे पर कोई प्रॉब्लम भी आ जाए तो मैं किसी की तरफ देखूंगी नहीं, मैं खुद कर सकती हूँ अपना। तो थैंक यू।

0: कृषि विशेष एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम जानकारी और कृषि शोध हम आपके साथ साझा करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हम आपके लिए एक ऐसे औषधीय पौधे की जानकारी लेकर आए हैं जो हमारे खान पान से लेकर हमारी जीवन शैली और इसके साथ ही हमारे जीवन के हर हिस्से में एक अलग ही महत्व रखता है। बात करें अगर रीति रिवाजों की या फिर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तो इसका विशेष महत्व है। हम बात कर रहे हैं हल्दी की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, मैं हूं मोनालिसा। आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से जानते हैं हल्दी के बारे में। शादी विवाह की बात हो या फिर सौंदर्य की, हल्दी का प्रयोग होता ही है। वहीं किसी भी चोट या घाव को हल्दी जल्द ही भर देती है, इसलिए इसे मैजिकल हर्ब भी कहते हैं। यही वजह है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है और किसान भी बड़े पैमाने पर इसकी खेती को अपनाने लगे हैं।
1: भारत वर्ष कृषि प्रधान देश है जिसकी अर्थव्यवस्था में कृषि रीढ़ की हड्डी के समान है। हमारे देश प्रदेश में हमारी आजीविका का प्रमुख साधन कृषि है। कृषि किसी भी देश की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियों में से एक है क्योंकि यह न केवल लाखों करोड़ों लोगों को भोजन प्रदान करती है बल्कि जीडीपी के समग्र विकास में भी योगदान देती है। और इस नए दौर का किसान अब सिर्फ परंपरागत खेती के ऊपर निर्भर नहीं है। किसान अब अपने खेत में विभिन्न प्रकार के फसलों को उगाकर अच्छा मूल्य प्राप्त कर रहा है और ऐसी ही एक फसल है हल्दी। हल्दी एक औषधीय पौधे के रूप में जानी जाती है। हमारे भारत देश में बड़े स्तर पर हल्दी की खेती की जाती है। भारत देश के हर परिवार में हल्दी का स्थान महत्वपूर्ण है। घरों में खाना बनाने से लेकर किसी भी शुभ कार्य जैसे पूजा, शादी विवाह आदि में हल्दी का उपयोग पुराने जमाने से लेकर आज के आधुनिक युग तक हो रहा है। मसाला, औषधि, गृह उपयोग, फेस क्रीम बनाने में बड़े स्तर पर हल्दी का उपयोग किया जाता है। औषधीय गुण होने के कारण ये कई प्रकार की बीमारियों में भी लाभकारी है। यही कारण है कि हल्दी की मांग दिनों दिन बढ़ती ही जा रही है। इसी को देखते हुए आने वाले समय में हल्दी की खेती फायदेमंद साबित हो सकती है। भारत विश्व में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है और हल्दी की सबसे ज्यादा खपत भी भारत में ही होती है। अर्थात हल्दी का सबसे अधिक उत्पादन और इसका सबसे बड़ा बाजार भारत में ही है। हल्दी अदरक की प्रजाति का 5 से 6 फुट तक बढ़ने वाला पौधा है जिसकी जड़ की गांठों में हल्दी मिलती है। हल्दी की सबसे ज्यादा खेती आंध्र प्रदेश में होती है, इसके बाद ओडिशा और तमिलनाडु का नंबर आता है। वैसे हल्दी की खेती कहीं कम या कहीं ज्यादा, लेकिन होती तो पूरे भारत में ही है। हल्दी को देश के विभिन्न भागों में अलग अलग नाम से जाना जाता है।
2: हल्दी एक महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और हमारे देश में हल्दी की खेती व्यापक रूप से की जाती है और मुख्य रूप से ये एक बड़ी लंबी अवधि की फसल है। इसको बुआई से लेकर कटाई तक तकरीबन 8 से 10 महीने का कार्यकाल की आवश्यकता होती है। हमारे देश में हल्दी के ऊपर अनुसंधान कार्य किए गए और उसमें उन्नत किस्मों का विकास किया गया, जिसमें प्रमुख रूप से जो संस्थान इसमें काम किए हैं उसमें नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय फैजाबाद, दूसरा जो है हमारा केरला एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डॉक्टर YSR हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश और अन्य कई संस्थानों के द्वारा। हमारा संस्थान है केरल में CTCRI जिसको बोलते हैं, वहां से भी हल्दी की किस्मों का विकास किया गया है।
1: भारतीय चिकित्सा पद्धति आयुर्वेद की बात की जाए तो आयुर्वेद के अनुसार हल्दी एक औषधीय पौधा है और कोरोना संकट काल में इसकी बढ़ती मांग को देखते हुए बहुत सारे नए किसानों ने हल्दी की खेती की शुरुआत की है। हल्दी एक ऐसा मसाला है जिसके बिना हम खाने की कल्पना भी नहीं कर सकते। जरा सोचिए, अगर आपकी सब्जी में हल्दी ना हो तो कितनी बेरंग लगेगी। लेकिन खाने में इसके उपयोग के साथ साथ इसके कुछ अलग विशेष फायदे औषधि के रूप में भी है, जैसे पाचन तंत्र को सुधारना, सूजन कम करना और अन्य कई बीमारियों के इलाज के लिए उपयोग में लाई जाती रही है। हल्दी त्वचा के लिए भी काफी लाभदायक है, इसी के चलते हल्दी को हम मिरेकल हर्ब भी बोल सकते हैं और हल्दी की इस फसल से किसान अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
2: हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण मसाले की फसल है और इसके अंदर मिलने वाला जो तत्व है कुरकुमिन, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी रोग रोधन क्षमता का विकास करने के लिए। और ये एंटी फंगल एंटीबायोटिक प्रॉपर्टी रखता है, इसके निरंतर इस्तेमाल करने से हमें स्वस्थ रहने में मदद मिलती है। और पिछले हमने कई वर्षों में देखा है, जब कोरोना का बुरा समय हमारे देश को देखने को मिला या कहूँ मैं पूरी दुनिया ने देखा, तो उसमें हल्दी का बहुत बड़ा रोल रहा। हल्दी हमारी जो इम्यूनिटी है उसको सुधारता है, इसका निरंतर इस्तेमाल करना हमारे लिए आवश्यक है। हालांकि हमारी भारतीय खान पान जो पद्धति है उसमें हम अधिकांश सब्जियों की तैयारी में हल्दी का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इसकी तुलना करें यूरोप के देशों में, वहाँ पे हल्दी का कम इस्तेमाल होता है, लेकिन जैसे जैसे विश्व स्तर पर इसकी व्यापकता बढ़ी है तो भारतीय हल्दी की मांग भी बढ़ी है।
0: तो अब तक आपने जाना हल्दी के महत्व के बारे में। इसी के साथ कार्यक्रम कृषि विशेष में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्दी की खेती के बारे में और जानेंगे कि किसान किस तरह से इससे लाभ ले रहे हैं। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: दो दशकों से किसानों का सबसे भरोसेमंद खरपतवार नाशक सुपर काम भरोसे का नाम तड़का सुपर।
1: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11306 और 1800-11306। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम बात कर रहे हैं मैजिकल हर्ब हल्दी के बारे में। आइए इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं हल्दी की खेती के बारे में। आइए दिखाते हैं आपको कि किस तरह से किसान हल्दी की बुआई कर सकते हैं और हल्दी की बुआई के लिए किस तरह की मिट्टी, जलवायु और बीज की जरूरत होती है। अगर हम बात करें हल्दी की खेती के लिए किस प्रकार की जलवायु उचित रहती है, तो आपको बता दें कि हल्दी की खेती के लिए गर्म और नम जलवायु उत्तम मानी जाती है। इसकी खेती के लिए 225 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए। हल्दी की फसल के लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस अच्छा होता है। और अगर हम हल्दी की अच्छी फसल के लिए मिट्टी की बात करें, तो ऐसी मिट्टी अच्छी मानी जाती है जिसमें जल निकासी की क्षमता अच्छी हो। अतः हल्दी की खेती बलुई दोमट या मटिया दोमट मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है। हल्दी की खेती के लिए मिट्टी को अच्छी तरह तैयार करना जरूरी होता है, क्योंकि हल्दी जमीन के अंदर ही फलती फूलती है। जमीन को अच्छी तरह से भुरभुरी बनाया जाना आवश्यक होता है। हल्दी के खेत में पानी की निकासी की उचित व्यवस्था होनी जरूरी है।
1: सामान्यतः इसकी बुआई किसान भाई अप्रैल के मध्य या मई के प्रारंभ तक करते हैं, और उसके लिए उन्नत किस्म के जो कंद होते हैं, राइजोम्स होते हैं, उनको इस्तेमाल में लाया जाता है। बुआई से पूर्व उनको कुछ दिन के लिए नमीयुक्त स्थानों में रखते हैं या थैलों से लपेट के रखते हैं कपड़े से, ताकि उसमें अंकुरण प्रारंभ हो जाए और बुआई और खेत में जमाव में समय को कम किया जा सके। इसके लिए उष्ण ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल जलवायु उपयुक्त रहती है, और क्योंकि ये एक राइजोम की फसल है, तो इसके बेहतर विकास के लिए संतुलित उर्वरकों का इस्तेमाल के साथ साथ प्रचुर मात्रा में गोबर की खाद या कंपोस्ट खाद, अच्छी गुणवत्ता के ये जो खाद हों, उनका इस्तेमाल करने की सिफारिश की जाती है।
0: वर्षा होने पर हल्दी की फसल के लिए भूमि को तैयार कर लेना चाहिए। खेत को हल्दी की फसल के लिए 3 से 4 बार गहराई से जोतना जरूरी होता है। दोमट मिट्टी में कृषि विशेषज्ञ या अनुभवी किसान की सलाह से 400 से 500 किलोग्राम हेक्टेयर की दर से चूने के पानी का घोल डालकर अच्छी तरह जुताई करने से भूमि हल्दी की खेती के लिए अच्छी तरह तैयार हो जाती है। हल्दी की बुआई के लिए अच्छी तरह विकसित और रोग रहित संपूर्ण या प्रकंद के टुकड़े हल्दी के बीज के रूप में उपयोग करते हैं। प्रकंद एक प्रकार का पौधे का तना है, जो या तो मिट्टी की सतह पर या भूमिगत स्थित होता है। ध्यान रहे कि बीज रोग रहित होना चाहिए। कुछ क्षेत्रों में हल्दी की फसल की बुआई क्यारियों या मेड़ बनाकर की जाती है। इसके बाद 25 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हाथ से खोदकर छोटे गड्ढे बनाए जाते हैं। हल्दी की बुआई के लिए 250 किलोग्राम हेक्टेयर प्रकंद बीज की आवश्यकता होती है।
1: किस प्रकार से किसान भाई हल्दी की बेहतर उपज लें, उसमें जैसे पोषण का अपना महत्व है, खेत का चयन, बुआई का समय, किस्म विशेष की उत्पादकता, उसकी उत्पादन क्षमता, इन बातों के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से आप अपनी फसल का प्रबंधन करते हैं। यानी कि अगर फसल को पानी की आवश्यकता है तो पानी देना है, उसमें पत्तियों को मुरझाने की अवस्था नहीं आने देनी है। अगर आपकी वानस्पतिक बढ़वार मध्यम दर्जे की होगी, अधिक वानस्पतिक बर्बाद होने की स्थिति में, जैसे इस बार मैं कह सकता हूं कि बहुत अधिक वर्षा के कारण वानस्पतिक वृद्धि अधिक हुई है, और जहां पे अब इसकी फसल लगाई हुई है हमारे किसान भाइयों ने, उसमें आप पानी को कम कर सकते हैं, ताकि उसमें और वानस्पतिक बढ़वार को कम कर सके। क्योंकि वनस्पतिक बाढ़वार अगर ज़्यादा होगी तो उसमें जो राइजोम बनने की प्रक्रिया है वो देरी से होगी या कम मात्रा में राइजोम बनेंगे। तो ये एक आपस में संतुलन बैठाने की बात है कि अगर हमको बेहतर उत्पादकता लेनी है तो इस बात पे ध्यान देना आवश्यक है। साथ ही अगर अच्छी गुणवत्ता के कंद बने तो उसमें आपको पोटेशियम उर्वरकों का इस्तेमाल भी करना आवश्यक है। अगर आपने पोटेशियम उर्वरक में पोटेशियम सल्फेट या पोटेशियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया है तो निश्चित रूप से आपको बेहतर कंद राइजोम मिलेंगे। अगर नहीं किया है तो आप इसका 2-3% का पर्णीय छिड़काव भी अपनी खड़ी फसल में कर सकते हैं और उसका राइजोम के विकास में और उसकी गुणवत्ता के सुधार में उसकी मददगार हो सकती है। तीसरी बात आपको ध्यान रखने की है कि क्योंकि अधिक वर्षा की स्थिति में खेत में अगर लंबे समय तक पानी रहता है तो इसे वानस्पतिक बढ़वार और कंदों के विकास को जो अपने सलकंद या राइजोम में कह रहा हूँ उनको विकास को प्रभावित करते हैं। तो आपको वर्षा बंद होने के बाद खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था भी करना आवश्यक है। अगर खेत में लंबे समय तक पानी खड़ा रहता है तो जमीन के अंदर कंपैक्शन आता है और पौधे की बढ़वार में रुकावट आती है।
0: हल्दी की खेती वैसे तो सुरक्षित होती है लेकिन फसल संरक्षण पर ध्यान देना जरूरी है। हल्दी की फसल तैयार होने के बाद खुदाई का समय आता है। हल्दी की खुदाई प्रजातियों के अनुसार बुआई के 7-9 महीने में किया जाता है। अल्प अवधि की प्रजातियां 7-8 महीने में, मध्य अवधि की प्रजातियां 8-9 महीने में और दीर्घकालीन प्रजातियां 9 महीने के बाद तैयार हो जाती है। खेत को जोतकर प्रकंदों को हाथ से इकट्ठा कर बड़ी सावधानी पूर्वक मिट्टी से अलग करते हैं। हल्दी की खेती के लिए हल्दी के बीज का भंडारण एक जरूरी प्रक्रिया है। इसके लिए ताजे निकले कंदों को ठंडे व सूखे स्थान पर भंडारण किया जाता है।
2: हल्दी की खेती के बारे में जानने के बाद अब बारी आती है इसके प्रसंस्करण की, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर।

0: रो सब्जी का स्वाद बढ़ाए और घर वालों का प्यार पाए। गोल्डी सब्जी मसाले
1: जहां जाए रिश्ते बढ़ाए। गोल्डी मसाले
2: कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक, बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर है 1800-11-3060 और 1800-11-3061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर।

कहां होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहां रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति, जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर।

0: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें अब तक हमने बात की हल्दी की विशेषता और इसकी खेती के बारे में। आइए अब जानते हैं इसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए देखते हैं कि किस तरह से हल्दी का प्रसंस्करण किया जाता है और किसान इससे अधिक मुनाफा कमाते हुए आत्मनिर्भर बन रहे हैं।
1: व्यावसायिक सूखी हल्दी बनाने के लिए इसके कंदों को जमीन से निकालकर एक सप्ताह के अंदर उबाला जाता है, जिसे क्योरिंग कहते हैं। क्योरिंग एक महत्वपूर्ण काम है। इसके तहत हल्दी का व्यावसायीकरण होता है। हल्दी की फसल को घरेलू स्तर पर भी लोहे के बर्तन में उबाला जाता है और रासायनिक विधि द्वारा बड़े पैमाने पर क्योरिंग की जाती है। क्योरिंग करने से प्रकंद का आकर्षक नारंगी या पीला रंग विकसित होता है। हल्दी के प्रसंस्करण के लिए सबसे पहले

0: इस मशीन को बिना बिजली के चलाया जाता है। मशीन के अंदर एक बार में 10 से 15 किलो तक हल्दी डाली जाती है। मशीन के नीचे एक तिरपाल बिछाया जाता है ताकि सारी गंदगी वहां गिर जाए। उसके बाद हल्दी को मशीन से निकाला जाता है जिससे उसे पीसा जा सके। हल्दी को पीसने के बाद उसे पैक किया जाता है और फिर उसकी लेबलिंग की जाती है तथा उसे बाजार में भेजा जाता है।
1: फसल पक के तैयार हो जाती है फरवरी के अंत में। देश के अलग अलग भागों में अलग अलग समय पे ये तैयार होती है। कहीं कहीं दिसंबर के अंत में भी तैयार हो जाती है और इसको जो है किसान भाई फिर निकालते हैं, निकाल करके उनको धुलाई करते हैं और धुलाई करके इसका प्रसंस्करण करते हैं, सुखाते हैं, पाउडर बनाते हैं। और उसके लिए जो किसान भाई इसका मूल्य संवर्धन करना चाहते हैं उसके लिए अपने कृषि विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र या जो हमारे FPO पहले से इस दिशा में कार्य कर रहे हैं उनसे संपर्क करके उसकी जो बेहतर प्रोसेसिंग पद्धति है उसकी जानकारी लेना आवश्यक है। और इसके संबंध में कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय हमारे जो कृषि विश्वविद्यालय हैं या हमारे ICR के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं वो इसमें ऐसे उद्यमियों को या ऐसे किसानों को, युवाओं को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण दे करके उनको तैयार करते हैं किस प्रकार से मूल्य संवर्धन करके और हल्दी का बेहतर व्यापार और इसका निर्यात में बढ़ावा दे सकते हैं।
0: बाजार में हल्दी की बढ़ती मांग को देखकर हल्दी की खेती के बाद किसान इसका प्रसंस्करण करके भी अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। इससे किसानों की कमाई तो बढ़ती ही है, साथ ही वो आत्मनिर्भर भी बन रहे हैं और दूसरे किसानों को रोजगार भी दे रहे हैं जिससे वो भी संपन्न बनते जा रहे हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर रहे हैं।
2: तो ये थी हल्दी से जुड़ी हुई कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये अंक आपको जरूर पसंद आया होगा। कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है dd.krishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय, जानेंगे उसके तमाम पहलुओं के बारे में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।

रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े बीबीए और एमबीए की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं, और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो बीए कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं, और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है, तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें, और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं, रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: अभिता और फर्रा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं, और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अभिदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अभिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अभिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अभिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अभिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलकत्त के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए हैं, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से, लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की। तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया, उन्होंने मेरा एडमिशन एक गवर्नमेंट स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल। वहां से मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद, वहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के, खुद के पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को फोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से, अरबी लैंग्वेज सीखी उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था, बार बार ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया, काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है, आगे कुछ बनना है, कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया, और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ कोर्स आई। बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर दी, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया, उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। तभी मुझे रीड नॉवल अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया, और रीड इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे और मुझे चाहिए था हॉल। तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे, तो मैंने रीड इंडिया सेंटर चलाया। और मेरे ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़कियों से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी मेरी जान पहचान बढ़ गई, और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई। और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है, और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया, और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बातचीत करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने लेने के बाद कमाना शुरू किया, और अपने पैरों पर खड़ी हुई है। उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया, काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा भी रही हैं।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा, और आप तो रीप से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं, जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीप से जुड़ी हैं। और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब पेरेंट्स
1: जी मैम,
0: नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ, और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने। तो फरा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अमिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
1: जी मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे ऐसे कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं, और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे।
2: मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, फरा के जैसी भी कोई और है, करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए। तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है, जो घर से बिल्कुल लड़के नहीं निकल पाती है। तो उन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें एक हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की, तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम, हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं। पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं, तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई, और लड़कियां आज इतनी है कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो, लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी, हम वहां पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है, तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिदा ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150-150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों और लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम, ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था, वो निकल के आया।
0: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूंगी कि रीड का मॉडल ही ऐसे है। रीड का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें, जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियां बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें, और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आए, और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के, घर की रजामंदी ना होने की वजह से, या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे आबिदा ने भी किया। आबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसिस में रीड का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी, और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से, और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी। क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरा पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज़ से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम, और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है, इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है, आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से रियलाइज़ करती हूँ, तभी रीड गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बनके हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
1: मैं ऐसा है जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनकी फैमिली सपोर्ट ज्यादा नहीं था उन पर, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है काफी लड़कियों के वालिद, उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट्स जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना खर्च भी उठा रही हैं और अपने घर का खर्च भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी और उन्होंने इतना कमाने लगी है वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़की ऐसी है जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना खर्च अपने बच्चों का खर्च खुद से उठा रहे हैं।
0: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया, दूसरा उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी, ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
2: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है। स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है, और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें रीड इंडिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, कंप्यूटर की लड़कियां हैं, स्विमिंग की लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है। तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं, उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्प्रिंगवुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई, क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, 5-5 बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्प्रिंगवुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती हैं, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है, तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने 5-5, 4-4 लड़कियों बच्चों का या 2-2 बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर वो क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई, बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या 1-2 गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए, लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो फेसबुक से अपने दोस्तों को, बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हमसे ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो, वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग तब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ, तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी, वो 500 चुन्नियां लड़कियां हमारे पास बहुत थी और हमने आपस में 20-20-30 चुन्नी बांटी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम, और आज की कंडीशन है लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000-1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है, हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे, उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग खुल जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है, फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है, तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है, तो सीखने के बाद जो फरा ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, आपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
1: जी मैम, मैं हमारे पेंडल में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था, जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में एक ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही है। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। तो एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी। उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही हैं।
0: वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और मैं फरा को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ, क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिज़ाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
2: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए, और गरारों की, कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहनते हैं तो प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं। बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है, और जो चीज़ उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो, अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया तो उसको ना नहीं करना है, चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसके ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट तो उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
0: बहुत
2: जी
0: बढ़िया
2: मैम,
0: फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
1: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह, ये काफी पसंद है। यहाँ पर काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है, मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना, और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
0: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
1: जी
0: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
1: जी
0: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
2: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे, तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी। और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में, तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
0: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं, वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग करें, सोचें कैसे करेंगे, तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं, और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है, वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता है। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं, वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है, वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
2: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
0: ऑनलाइन ट्रेनिंग को, टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना, और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है, और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सके, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सके आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सके फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे, और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना
2: टेक्नोलॉजी
0: चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
2: में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें सुइंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर पे कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम सेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए, वो ऑनलाइन में आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आके बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
0: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी, फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं, और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है, और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अभिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
1: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम की तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रीड इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अबिदा, मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें, तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है, और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं, और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आए, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

0: नमस्कार, सलोना ग्रुप प्रस्तुत करता है कार्यक्रम सबला। मैं हूँ आरती।
1: प्रीति की ओर से भी सभी सुनने वाले श्रोताओं को ढेर सारा नमस्कार।
0: हाँ प्रीति, तो आज हम श्रोताओं को किस विषय पर बातें करेंगे?
1: हाँ आरती, हम अपने श्रोताओं को आज देव सूर्य मंदिर के बारे में बताएंगे और चर्चा करेंगे।
0: हाँ, तो अब हम श्रोताओं को ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर।
2: हाँ तो दोस्तों, आज हम आपको ले चलते हैं देव सूर्य मंदिर की ओर, जो कि बिहार के औरंगाबाद जिले से 18 किलोमीटर दूर दक्षिण की ओर देव में स्थित है।
1: बाबा मंदिर के बारे में विशेषता बताइए ना।
3: मेरा नाम सच्चिदानंद पाठक है। मैं देव सूर्य मंदिर का मुख्य पुजारी हूँ। यह सूर्य मंदिर जो बना हुआ है, यह त्रेता युग का बना हुआ मंदिर है। इस मंदिर में कोई चूना सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं है, केवल पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है। यह मंदिर भगवान जो वहाँ बैठे हुए हैं, अलग अलग ब्रह्मा महेश और विष्णु की यह प्रतिमा है। भविष्य पुराण से 12 नाम आदित्य का भगवान का लिया हुआ है। आदित्य है प्रथमो नाम द्वितीयं तु दिवाकर तृतीयं भास्करं प्रोक्तं चतुर्थं तु प्रभाकर पंचमं तु सहस्रांशु अष्टम चैव त्रिलोचनम सप्तम हरिदशस्वश्च अष्टम च विभावसो नवमं दिन कृत प्रोक्तं दशम द्वादशात्मक एकादशम त्रिमूर्ति द्वादशं सूर्य वचा 12वां नाम सूर्य है जो हम नित्य प्रति दर्शन करते हैं। यहाँ एकादश सूर्य की प्रतिमा विराजमान है। उदय काले ब्रह्मणे रूपं, उदय काल में ब्रह्मा के रूप में रहते हैं भगवान। मध्यान्हे तु महेश्वर, और मध्यान्ह काल में महेश्वर के रूप में रहते हैं। अस्तमाने स्वयं विष्णु, अस्त काल में विष्णु के रूप में रहते हैं। त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों मूर्ति दिवाकर हैं। यह भगवान सूर्य नारायण की विशेषता में विशेष तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि यह भगवान सूर्य नारायण प्रत्यक्ष के देवता हैं। सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ये जब छुप जाते हैं तो अंधेला हो जाता है, पूरा विश्व अंधेला रहता है। जहाँ उगते हैं वहाँ दिन होता है, जहाँ नहीं उगते हैं वहाँ रात होता है। ये जलचर, थरचर, नभचर, ये तीनों लोक में जितने भी जीव हैं, सारे जीवों की ऊर्जा इन्हीं के द्वारा प्राप्त होता है। ग्रहों के राजा हैं सूर्य, प्रत्यक्ष के देवता हैं सूर्य। ये जितने भी तारे चंद्रमा तक चमकते हैं, सब इन्हीं के प्रकाश से प्रकाशमान हैं, समझे कि नहीं। ये शरीर के मालिक हैं, समझे। इनके यहाँ आते हैं लोग, दंडवत वगैरह देते हैं, उससे उनका शरीर आरोग्य होता है। जो राजा इस मंदिर को बनवाए, वे राजा कुष्ठ से ग्रसित थे।

0: ये राजा अहिल थे, बाहर लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है सुन्न भ्योम नभोर सिंधु करभु हिने द्वितीय जुगे माघे बाने अमौ तिथौ तिथे गुरु दिने देवे दिनेशालाम प्रारभे दृश्य दान रचित सभ्यादि अस्तासी तस्मराधिप प्रभुते आलोको विशुको भुवि। कहता है कि माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देवनामक स्थान में इला के पुत्र अहिल ने त्रेता में 1,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया, जबकि 1,96,000 वर्ष का त्रेता व्यतीत हो गया, मतलब 80,000 वर्ष त्रेता में बचा हुआ था तब इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास हुआ। द्वापर 8,64,000 वर्ष व्यतीत हो गया, वर्तमान कलयुग 5,910 वर्ष व्यतीत हो गया, ये कुल मिलाकर के 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर को बने। इसका लगभग 110 फीट ऊंचाई है पूरे, लंबाई चौड़ाई तो हमको ज्ञान नहीं
1: है,
0: यह करीब करीब 1 एकड़ में यह पूरे मंदिर है। हाँ हाँ, मंदिर तो सार्वजनिक है, सभी लोग यहाँ आते हैं, दर्शन पूजा पाठ करते हैं, सभी की कामना पूर्ण होती है, जो सच्चे हृदय से भगवान सूर्य नारायण को आवाहन पूजा करता है उसकी कामना को पूर्ण करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं, कोई यहाँ से खाली हाथ नहीं जाता, नहीं जाता है। जो राजा अहिल इस मंदिर को बनवाए वे कुष्ठ से ग्रसित थे। वो राजा अहिल कौन थे? तो हर युग में एक मनमंत्र होते हैं, जैसे ये कलयुग में वैवस्व नाम के मनमंत्र हैं, उसी प्रकार से ये त्रेता में मनु नाम के मनमंत्र थे। तो वो मनु की लड़की थी इला और चंद्रमा के लड़का बुध, ये दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वही राजा अहिल हुए, और जो कि कुष्ठ से ग्रसित थे, कुष्ठ उनका यही निवारण हुआ, उन्हीं के द्वारा जो है सो ये मंदिर का निर्माण किया गया, भगवान सूर्य का स्थापना किया गया।
2: देखिए श्लोक का अर्थ है, ये श्लोक जो शिला पट लिखा हुआ है, इस श्लोक का अर्थ है माघ मास में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र एल ने त्रेता में 1,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। त्रेता युग 1,96,000 वर्ष का होता है, इसमें से 1,16,000 वर्ष घटा देने पर 80,000 वर्ष त्रेता बचा, तब देव सूर्य मंदिर का शिलान्यास कराया गया। द्वापर 96,400 वर्ष का होता है, वर्तमान कलयुग के 50,078 वर्ष बीत चुके। इस प्रकार माघ बसंत पंचमी संवत 2029 को देव मंदिर को बने हुए 80,000 प्लस 8,64,000 वर्ष प्लस 50,078 वर्ष कुल मिलाकर 9,46,078 वर्ष हो गए, कुल मिलाकर 9.5 लाख वर्ष इस मंदिर को बने हुए हो गए आज तक। देव सूर्य मंदिर के दाहिने तरफ से प्रांगण में परिक्रमा करने के वक्त दुर्गा जी का प्रतिमा स्थापित किया गया है। यहाँ पर जितने श्रद्धालु नारियल अंदर में सूर्य नारायण भगवान को चढ़ाते हैं, उस नारियल को वहाँ से चढ़ेला के बाद श्री दुर्गा जी के पास आनकर यहाँ उसको संकल्प करके फोड़ा जाता है और उसका जल माँ को अर्पण किया जाता है। पर भगवान का चरणामृत स्थान है, जितने भी वहाँ पर भगवान को स्नान कराया जाता है, सुबह शाम जो आरती होता है उस स्नान में जितने भगवान का स्नान किया हुआ जो जल है उस इसी प्रकार के रास्ते से निकलकर बाहर जाता है। सीधे मंदिर के पीछे मुंडन स्थान है, जो अपने श्रद्धालु आते हैं अपने मनोकामना को यहाँ मांगते हैं कि हमको बाल बच्चा नहीं है, बाल बच्चा हो जाएगा तो हम यही मुंडन कराएंगे, तो उस श्रद्धालु यहीं पर आके अपना बाल बच्चे को मुंडन करा के बाल मुंडन बाबा पर चढ़ा देते हैं। ये मंदिर जो बनाया हुआ है वो पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है, जब ये पत्थर पर पत्थर रखा हुआ है तो इसमें कहीं कील है, जो लोहा का कील चारों पत्थर के कोन पर लगाया हुआ है और एक बीच में कील लगाया हुआ है लोहा का, उसी कील के सहारे ये पूरे मंदिर का निर्माण कराया गया है। जो कील है जो लोहा का लगाया हुआ है, देखिए लोहा प्रमाणित करता है आपको, देखिए लोहा प्रमाणित करता है कि लोहा का कील यहाँ देखिए ठोका हुआ है, यहाँ भी देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, ये देखिए लोहा का कील ठोका हुआ है, और इसमें भी लोहा का कील जो प्रमाणित करता है, जो एक चारों कोन पर लोहा का कील ठोका हुआ है, हाँ चारों कोना पर पत्थर का लोहा का कील है।
1: सुनते हैं कि ये भगवान का मंदिर विश्वकर्मा द्वारा बनाया गया है?
2: नहीं, विश्वकर्मा भगवान त्रेता युग में थे, त्रेता युग में विश्वकर्मा भगवान तो उस समय हम लोग देखे नहीं, सुना हुआ बात कहते हैं। भगवान सूर्य नारायण की भी विश्वकर्मा भगवान को आदेश किए होंगे भगवान कि जाके मंदिर एक रात में बना दो, तो हम लोग भी सुनते हैं कि विश्वकर्मा भगवान बनाए हैं मंदिर को, हम लोग तो देखे नहीं है कि विश्वकर्मा भगवान बनाए, लेकिन कहने का मतलब है कि जब लोहा लगाया हुआ है इसमें तो लोह युग का निर्माण कब हुआ, जब जब लोहा का निर्माण किया गया होगा तब इस मंदिर का निर्माण हुआ, तभी तो लोहा चारों कोण पर लगाया गया। इसलिए हम लोग मानते हैं कि त्रेता युग में जब कुछ दिन बीच जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र उस समय थे, विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिए होंगे कि जाके देव सूर्य मंदिर को बना दीजिए, और तीन रात में तीन मंदिर बना, देव, देवकुड़ और उमगा, यही इसका प्रमाणित है। अब आगे में चलिए, आप समझे ना, जहाँ भी है महेश्वर भगवान में ही सूर्य है, त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है, जैसे उदय ब्रह्मणे रूपम मध्यान्हे तु महेश्वर अस्तमाने स्वयं विष्णु त्रिमूर्तिश्च दिवाकर, तीनों रूप में सूर्य नारायण भगवान यहाँ विराजमान है। जो उदय लेते हैं सूर्य नारायण भगवान तो ब्रह्मा के रूप में रहते हैं, मध्य काल में महेश्वर के रूप में हो जाते हैं, जब अभी का समय है वो महेश्वर भगवान का है, और अस्त काल में विष्णु भगवान का रूप धारण करके अस्त हो जाते हैं, वही त्रिकाली सूर्य का यहाँ पूजा होता है। अब आइए कि भगवान सूर्य नारायण का हर मंदिर में दरवाजा पूर्व की दिशा होता है, तो ये देव सूर्य मंदिर का दरवाजा पश्चिम दिशा क्यों है? तो ये लोग पहले का बूढ़ बुजुर्ग लोग जो थे वो कहते थे कि इस मंदिर का दरवाजा पश्चिम इस तरफ से हो गया कि औरंगजेब लोग जब उस समय आया था, जब मंदिर विध्वंस करने लग रहा था, तो उस समय यहाँ पर भी आया उन लोगों ने आक्रमण करने, तो आक्रमण के दौरान उन्होंने यहाँ पर भी तोड़ना चालू किया, तो यहाँ का पुजारी ये मूर्ति जो है से सब मूर्ति खंडित हुए हुए हैं, जितना भी मूर्ति है यहाँ सब भी खंडित हैं, जितने भी मूर्ति यहाँ हैं सब खंडित हैं, समझे ना, विष्णु भगवान ब्रह्मा जी दुर्गा जी जितना भी मूर्ति हैं, ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का सब मूर्ति खंडित है, जितने विशाल मंदिर है यहाँ उतने विशाल मूर्ति भी थे यहाँ, लेकिन वो खंडित के चलते सब निकाल दिया गया है बाहर में, उन सब का पूजा अर्चना होता है। हाँ, औरंगजेब ने मंदिर को तोड़ फोड़ कर दिया, उसके बाद जब मंदिर ढहने का प्रक्रिया चालू किया तो उस समय सब आग्रह करने लगा कि हमारे मंदिर में सत्य है इसलिए मत तोड़िए, इसको छोड़ दीजिए, तो उस आग्रह पर औरंगजेब ने, लोग कहता है, हमने सुना नहीं है, कहीं लिखा हुआ नहीं है ऐसा, लोग कहता है कि पुजारी लोग महात्मा लोग यहाँ का जितने रहने वाले थे बूढ़ बुजुर्ग लोग उन्होंने मना किया, तो औरंगजेब ने मना करने के बाद कहा कि तुम्हारे मंदिर में जब सत्य है तो अगर एक रात में अगर दरवाजा पूर्व से पश्चिम की ओर हो जाएगा तब मैंने छोड़ देगा, मंदिर को नहीं ढहाएंगे। तो इसी प्रकार भगवान को आराधना करते हुए सब बूढ़ बुजुर्ग पुजारी लोग बैठ गए दरवाजे पर, और सुबह हुए उन लोग को नींद आ गया, और सुबह हुआ तो एक बैग देखा जा रहा है कि पूर्व से दरवाजा पश्चिम भर खुल गया और पूर्व भर मुंद आ गया, इसलिए औरंगजेब ने इस मंदिर को सत्य मानकर छोड़ दिया, नहीं तोड़ा गया। देव सूर्य मंदिर का पौराणिक हवन कुंड है, इसमें जितने भी देव सूर्य मंदिर में श्रद्धालु आते हैं वो मंदिर में दर्शन कैला के बाद अपना धूप अगरबत्ती कपूर जो भी होता है वही इसी हवन कुंड में उन लोग जलाते हैं और कपूर का आरती करते हैं। इस हवन कुंड से जितने भी घी हवन कुंड में डलाता है और सब घी एक जगह पर जला हुआ जमा हो जाता है, उस घी से यहाँ पर घी को जितने भी भक्त आते हैं उनको अगर बाय चांस कभी किसी को भगवान न करे कि वैसा हो और जिसको कुष्ठ रोग से ग्रसित रहते हैं वो घी का सेवन करते हैं तो उनका भी कुष्ठ रोग निवारण होता है, समझे ना, इसीलिए हवन कुंड को जो है कि हवन कुंड को यहाँ पर जलाते हैं लोग, और उसका जो है कि जो घी बचा हुआ रहता है, जो जला हुआ रहता है, उसको शरीर में अपना लगाते हैं, जहाँ जहाँ किसी किसी को दाग होता है, उससे इस घी से, जले हुए घी से वो कंचन शरीर हो जाता है। यही हवन कुंड है। हवन कुंड बहुत पुरानी हवन कुंड है, जो हम लोग के होश से पहले से ही हम लोग ने देख रहे हैं कि यहीं पर हवन कुंड स्थापित किया गया था, जो आज तक इसको विराजमान रखा गया है, और इसको जो है कि ऊपर से छा छोप दिया गया है। हमारे पास 1957 का फोटो है, जो उस समय भी ये भोलेनाथ का प्रतिमा उस फोटो में भी दर्शाता है। इसलिए ये भोलेनाथ का बाबा का जो मूर्ति है शंकर जी का, ये बहुत पुरानी मूर्ति है। जिस समय मंदिर बना था उसी समय से ये भोलेनाथ का शिवलिंग है, यहाँ स्थापित किया गया था, और इसको भगवान पूजा अथी भगवान के दरबार में पूजा श्रद्धालुओं करते हैं और अपना मनोकामना पूर्ण करते हैं। का प्रतिमा जो अंदर में है, जो स्थापित किए हुए ब्रह्मा विष्णु शंकर जी का, तीन कमल आसन है ये, जो एक दो तीन, तीन कमल आसन है। इसीलिए इनको भी पूजा लोग करता है, श्रद्धालु लोग आन के यहाँ भी पूजा पाठ करने से श्रद्धालुओं का मनोकामना पूर्ण होता है, क्योंकि भगवान का आसन है। इसलिए यहाँ पर भी श्रद्धालुओं ने पूजा पाठ करते हैं। अब देखिए, भगवान का मंदिर है, जो भगवान का मंदिर है इसमें 12 मंदिर बने हुए हैं। भगवान का जो 12 नाम है उस इसमें 12 मंदिर भी बने हुए हैं। जो दो मंदिर तो आपको उसी में लोक रहा है, जो एक गणेश जी के नीचे मंदिर और एक ऊपर स्वयं बड़ा मंदिर। देखिए 5 मंदिर दरवाजा पर है, और इसी के जस्ट पीछे जो दरवाजा भगवान के पास है उस पर 5 मंदिर है। तो 5 × 2 = 10 और 2 = 12 मंदिर, और 12 को भगवान सूर्य नारायण का नाम है और 12 को मंदिर है। ऊपर में सोना का कलश है
1: जी, आप उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं?
2: हाँ, सोना के कलश है। तो सोना के कलश कम से कम 1.25 मन का सोना का कलश ऊपर सूर्य नारायण भगवान पर रखा गया है जी। जो उस मंदिर पर रखा गया तो आज से नहीं है, त्रेता युग से ही कलश रखा गया है। उस कलश को भी ओरिजिनल सोना लोग कहते हैं कि है, हम लोग तो वहाँ गए नहीं है, देखे नहीं है, वहाँ कोई जा नहीं सकता है, और जो जाता है।
3: बाबा सुने कि कोई गया है वहाँ पास?
2: हाँ, गया था, जो उनका गर्दन तक तो लोग जाता ही है माइक तक बांधने के लिए, जो बहुत वो आत्मा का अपना मतलब परिपूर्ण रहता है, वो वहाँ जाता है गर्दन तक चढ़ जाता, सभी आदमी नहीं, एक दो आदमी जाता है, उस कलश पास कोई नहीं पहुँचता है। जो प्रयास करता है कि उस कलश पास जाएं, उसको भगवान वहीं पर सटा लेते हैं कि तुम यहाँ किस लिए आया हो, उसको वहीं पर सटा लेते हैं, जैसे प्रमाणिक है। पहले लोग कहते हैं, कि प्रमाणिक है। पहले लोग कहते हैं, 4 चोर चढ़ रहे थे उस सोने को कलश को उतारने के लिए, जो भगवान उसी कलश उसी मंदिर में अपने सटा लिए, पत्थर को बना दिए। इसलिए कोई ऐसा काम नहीं करता है आज के, अब नहीं करता है, हम लोग देखे नहीं है, सोने हुए बात कर रहे हैं कि चोर लोग जो है ऐसे चढ़ रहा था, जो भगवान वहीं पर उसको जला दिए, और इसके बाद पुनः फिर भगवान का जो है से कि स्थापना हुआ, और जो है से उसी समय से पौराणिक मंदिर सब श्रद्धालुओं का आस्था है पूर्ण होता है, और आस्था को अपना बरकरार रखने के लिए हिंदू लोग, हिंदू भाई धर्म जो है जितने भी हैं, मंदिर में दर्शन पूजा करते हैं।
4: मेरा नाम सतीश कुमार राय है, मैं इस मंदिर का कोषाध्यक्ष हूं, और पिछले 7 वर्ष से यहां कोषाध्यक्ष है। इस किला के अंतिम राजा राजा जगन्नाथ प्रसाद थे, जिनका देहांत 1934 में हो गया था, और उन्हीं के नाम पर एक यहां पर विद्यालय है, राजा जगन्नाथ उच्च विद्यालय। इस किला के विषय में यह जानकारी है कि यह लगभग 1000 वर्ष पुराना किला है, और इसके प्रथम राजा कौन थे ये तो जानकारी नहीं है, लेकिन राजा जगन्नाथ प्रसाद जो लास्ट राजा थे, जिनकी मृत्यु 1934 में हुई थी, इनकी 3 रानियां थी, तो एक बेगम, अभी बेगम से ही इनका बाल बच्चा था, अन्यथा 2 रानियों का किसी भी प्रकार का कोई बाल बच्चा नहीं हुआ, और वे लोग ऐसे ही मृत हो गए। बेगम से जो उनके औलाद हैं वो अभी जीवित हैं, उनके और लोग जीवित हैं। रही बात इस किला का, यह छोटा सा किला है लेकिन अपने आप में गौरवान्वित इसलिए है कि यह अंग्रेजों का पिट्ठू नहीं रहे हैं, ये अंग्रेजों से लोहा भी लिया। वीर कुंवर सिंह जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनका ससुराल इसी किला में, उनका ससुराल इसी किला में हुआ करता था। और वीर कुंवर सिंह के विषय में विशेष तो आप लोग

0: जानकारी है कि वो 80 वर्ष की अवस्था में भी कभी भी लोहा अंग्रेजों से लोहा लेने में कमी नहीं महसूस की। हाँ, और इसी सूर्य मंदिर का जो भी प्रताप पुण्य प्रताप रहा हो, इन्होंने उनसे उक्ति ली, उनसे आशीर्वाद लिया और अंग्रेजों से बराबर लोहा लेते रहे।
1: जी अंकल, सुनने में आता है ये महल पहले मुस्लिम लोग का था, मुस्लिम शासक थे यहाँ पहले?
0: ऐसा नहीं है, ऐसा इसलिए नहीं है कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि राजा जगन्नाथ प्रसाद के जो पूर्वज थे वो 7-8 पुश्त से ही हैं।
1: जी।
0: तो 7-8 पुश्त से यहाँ पर है तो ऐसा नहीं हो सकता है, इसलिए कि मुस्लिमों का जहाँ भी साम्राज्य रहा है वहाँ पर मुस्लिम आबादी बहुत ज्यादा रही है।
1: जी, जी।
0: लेकिन देव एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की हर जातियों का, हर धर्म का लोग रहे हैं, लेकिन यहाँ मुस्लिमों का प्रभाव आज तक नहीं रहा है, बल्कि कहा जाए कि नहीं ही है।
1: जी।
0: तो इसलिए कहीं भी राजा अगर मुस्लिमों का है तो वहाँ पर अपने अनुसार वो मुस्लिमों को बसाए हैं, लेकिन यहाँ ऐसी बात नहीं रही, यहाँ 100-200 मुसलमान ही आज के डेट में भी निवास करते हैं।

0: बहुत पुराना मंदिर है। लोगों का कहना है कि अगर बरसात के दिनों में पानी ना हो तो इनको दूध में डुबाने से या पानी में डुबाने से वर्षा होने लगती है, और सभी किसान जिस साल अकाल होने की संभावना रहती है उस साल इनको दूध या पानी में डुबाते हैं जिससे वर्षा होने लगती है, ऐसा लोगों का कहना है।
1: सूर्य मंदिर पर जानकारी दे रहे थे अलका, प्रीति, पूजा, आरती, अंजू, सविता, खुशबू और संजू।
2: तो दोस्तों, हम आशा करते हैं आप जल्द ही सूर्य मंदिर से देव औरंगाबाद से रूबरू होंगे। तो अब हम लोगों को दीजिए इजाजत। नमस्कार,
3: नमस्कार, नमस्कार।

0: रीड इंडिया रेडियो में फिर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आपकी दोस्त अनुजा। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कार्यक्रम लेकर के आए हैं अपनी सभी महिला साथियों और बेटियों और बहनों के लिए और बाकी और श्रोताओं के लिए भी। हॉस्पिटैलिटी एक ऐसा शब्द है जिसको हम ज्यादातर होटल इंडस्ट्री में सुनते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी किस तरीके से, और घर में तो रोज ही हम हॉस्पिटैलिटी करते हैं, लेकिन हॉस्पिटैलिटी घर अपने रोजमर्रा के कामों में किस तरीके से आपको और आपके परिवार के मन, चित्त और स्वास्थ्य को सुंदर रख सकती है, और कैसे आपके आपका जो असर है दूसरों के ऊपर वो एक बेहतर कर सकती है, और कैसे आप इससे अपने लिए कोई काम काज भी खोज सकते हैं और अपना जीवन बेहतर कर सकते हैं, इस पर ही बात हम करेंगे आज। और इस पर बात करने के लिए आज हमारे पास है दीक्षा। तो दीक्षा, आपका रीड इंडिया रेडियो में स्वागत है।
1: थैंक यू।
0: दीक्षा, अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं।
1: मेरा नाम दीक्षा है, मैं दिल्ली की ही रहने वाली हूँ। मैंने अपना बैचलर्स करा है होटल मैनेजमेंट में, उसके बाद मैंने एक साल का डिप्लोमा पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स करा था कुकिंग में, जो कि एफिलिएटेड था ले कोडो ब्लू पेरिस से, जो कि एक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी है, मेरे पास उसका भी सर्टिफिकेट है। तो अब मैं रीड इंडिया में आई हूँ और रीड इंडिया में लोगों को हॉस्पिटैलिटी के बारे में सिखाऊंगी।
0: क्या चीज आपको खींच के होटल मैनेजमेंट की ओर ले गई, जबकि आज भी दुनिया में डॉक्टर, इंजीनियर और तमाम लोग बहुत ही ग्लैमरस व्यवसाय समझे जाते हैं, तो क्या चीज थी जो होटल मैनेजमेंट की ओर आपको खींच ले गई?
1: जैसे कि आपने बोला कि ग्लैमरस, एक्चुअल ग्लैमर आपका होटल इंडस्ट्री से आता है। मैंने होटल इंडस्ट्री इसलिए ज्वाइन करी थी कि मेरे को मौका मिलेगा, मैं अलग अलग देश के अलग अलग लोगों से मिलूंगी, उनको सर्व कर सकती हूँ या उनके साथ बैठ के मैं उनसे बात कर सकती हूँ, उनसे इंटरैक्ट कर पाऊंगी, तो मैं उनको और उनके कल्चर को जान पाऊंगी उनसे। अगर मेरे को मतलब मौका मिलेगा किसी से बात करने का, तो मेरे को एक तरीके का जैसे कि किसी नए इंसान से मिलने में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होती है, खुशी होती है, मेरे को वो उत्साह था, तो मैंने इसलिए होटल मैनेजमेंट ज्वाइन करा था।
0: तो देखिए, दीक्षा हर बार कुछ नए लोगों से मिलना चाहती थी, कुछ नया जानना चाहती थी, और इसीलिए दीक्षा ने चुना होटल इंडस्ट्री को, और उन्होंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई करी, और कुछ नया सीखने सिखाने के लिए वो फिर अब आपके बीच में भी हैं। तो दीक्षा के होने का हमें फायदा मिलना ही चाहिए, क्योंकि दीक्षा अब हमारे साथ रीड इंडिया की बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को जो गांव में हैं, जो बाहर अभी निकली भी नहीं है, जो रोजमर्रा की चीजों में आनंद लेती हैं, मजा लेती हैं, वो अच्छी बात है, बट उसको और कैसे सुंदर बनाया जाता है, इस पर बहुत जल्दी आपके बीच में आने वाली है। तो दीक्षा, हमें आप बताइए कि होटल मैनेजमेंट में एक टर्म होता है, एक शब्द होता है हॉस्पिटैलिटी, क्या है ये हॉस्पिटैलिटी?
1: हॉस्पिटैलिटी लोग अक्सर जब सुनते हैं हॉस्पिटैलिटी, तो कुछ लोग उसको हॉस्पिटल के पास ले जाते हैं, वो नहीं है। हॉस्पिटैलिटी होता है जैसे अब मैं आपके यहाँ पे आई हूँ रेडियो पे, तो मेरे को आप अच्छी हॉस्पिटैलिटी दे रहे हैं, मतलब आप होस्ट है और मैं गेस्ट हूँ,
0: मतलब कि हम कैसे आपका स्वागत कर रहे हैं, कैसे आपकी आवभगत कर रहे हैं। अभी हॉस्पिटैलिटी में वो हमारे साथ क्या करने वाली हैं दीक्षा, इसके बारे में थोड़ा बताइए।
1: मैं हॉस्पिटैलिटी में जो मेरे पास लेडीज होंगी उन सबको मैं अच्छे से ट्रेन करूंगी। किस में? सबसे पहले मैं उनको किसी से अगर कोई आता है उससे कैसे उसकी आवभगत करनी है, कैसे बात करनी है, कैसे उसके साथ पेश आना चाहिए, क्या जैसे हम कभी होटल में जाते हैं तो हम देखते हैं अंदर घुसते ही हमें टाइम के हिसाब से लोग ग्रीट कर रहे हैं, मतलब विश कर रहे हैं गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, तो ऐसे मैं उन लोग को पहले सिखाऊंगी कि हम लोग को अपना पोस्चर, मतलब कैसे बैठना चाहिए, कैसे किसी के सामने आना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, ये वो बात है। हॉस्पिटैलिटी में सबसे बड़ा की पॉइंट होता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, मतलब जब आपको इंसान पहली नजर में देखेगा जो इम्प्रेशन तब पड़ेगा वो पहला और आखिरी इम्प्रेशन है, उसके बाद आप इम्प्रेशन कुछ भी करते रहो वो इम्प्रेशन कभी नहीं बदलेगा आपका। तो मैं हमारी सारी लेडीज को ऐसे ट्रेन करूंगी कि लोग अगर कहीं वो बाहर जॉब अप्लाई करने जाते हैं, कुछ करते हैं, लोग देखें ये ना बोले कि ये लोग गांव के हैं, ये बोले यार ये गांव के होके भी ऐसे हैं, इनको तो हमने लेना ही लेना है।
0: थोड़ा सा दीक्षा ये बताइए कि आपको लग रहा है कि ये गांव की औरतों के साथ या गांव की बेटियों के साथ या गांव के लड़कों के साथ हम इस कोर्स को करेंगे अगर, तो उससे उनके लिए क्या अवसर खुलते हैं, क्या मौके खुलते हैं?
1: ये एक सिर्फ टर्म है कि हम गांव के लोगों के साथ कर रहे हैं। अभी अगर आप देख लो कि जो हमारे शहर के लोग हैं और जो गांव के लोग हैं, अगर मैं अभी कंपैरिजन करूं तो मेरे गांव के लोग ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं शहर के लोगों से ज्यादा। शहर के लोगों के सर पे हवा चढ़ी हुई है, गांव के लोग उतने ही हैं कि हाँ हमें कुछ करके दिखाना है, तो उनके लिए काफी अवसर है। अब जैसे आप मुझसे बात करें कि मैं उनको अगर पोस्टर्स भी सिखाऊंगी, जेस्टर्स सिखाऊंगी, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैसे किसी को ग्रीट करना है वो सिखाया जाएगा, कैसे बैठना है, कैसे अपने आप को पेश करना है लोगों के सामने, एक बार ये चीज सिखाई जाएगी तो उनमें अपने आप कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ के अब आप पूछेंगे इसका होटल में क्या काम है। अगर ये लोग किसी क्वालिफिकेशन की वजह से आगे फ्रंट होटल के फ्रंट में नहीं जा सकते तो ये बैक ऑफिस में काम कर सकते हैं। होटल में एक होता है सर्विस सेंटर, सर्विस सेंटर हर होटल का बैकबोन होता है, रीढ़ की हड्डी होती है। तो सर्विस सेंटर में गेस्ट, जितने भी गेस्ट होते हैं, हमें लगता है हम गेस्ट, अगर हम गेस्ट हैं, हम फोन कर रहे हैं तो वो डायरेक्ट रिसेप्शन पे जा रहे हैं, वो कॉल जाती है सर्विस सेंटर में, ये लोग उठाते हैं, ये लोग ग्रीट करते हैं, ये लोग बात करते हैं, ये लोग होटल को रिप्रेजेंट करते हैं गेस्ट के सामने, सारी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। उसके बाद अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि ये सॉल्व नहीं कर पाते तब फ्रंट ऑफिस पे जाती है वो बात, रिसेप्शन पे तब जाती है, ऐसे नहीं जाती, तो ये ही लोग संभालेंगे, तो इनके लिए ये अवसर है।
0: एक बात मैं और पूछना चाहूंगी आपसे कि बहुत अच्छी बात आपने ये कही है कि बैक ऑफिस के लोग जो होते हैं वो भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने फ्रंट ऑफिस वाले, और सच में वो बड़े प्रॉब्लम सॉल्विंग भी होते हैं कई बार। एक होटल इंडस्ट्री के अलावा एक नई तरीके की सीरीज, एक नए तरीके का फूडिंग कल्चर डेवलप हो रहा है हमारे देश में सब तरफ, खासकर अगर आप हाईवे पर देखेंगे जो ढाबे खुल रहे हैं वो ढाबे ज्यादातर लोकल लोग ही खोलते हैं, चाहे वो शहर के हों चाहे वो गांव के हों। ये जो हॉस्पिटैलिटी का कंपोनेंट हम पाते हैं अपने होटल्स में, जो हाई ग्रेड होटल्स हैं, 3 स्टार, 2 स्टार, 1 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, वहां से अगर हम इन ढाबों का कंपैरिजन करें, देखिए ढाबों का स्वरूप भी बदलता जा रहा है, पहले गुमटी होती थी, फिर थोड़ा कहीं कोई खाना बना लेता था, वो अपने अपने इनकम और अपने कैपिटल के हिसाब से करते हैं। फिर अभी मैं क्योंकि मैं बहुत ट्रैवल करती हूँ, रोड ट्रैवल भी बहुत करती हूँ, तो मैं कई अलग अलग तरीके की जगहों पर जा रही हूँ जहां पर लोग ढाबों को एक अलग शक्ल में पेश कर रहे हैं, जहां पर वो लोकल टेक्सचर देते हुए ढाबों को प्रस्तुत करते हैं कि उन्होंने हट शेप में केबिन्स बना रखे हैं, कुर्सियां रख रखी हैं। मुझे लगता है कि हॉस्पिटैलिटी के अंदर इन ढाबों को और बेहतर, कम खर्च में और बेहतर करने, और यहाँ के जो बच्चे हैं जो काम करते हैं यहाँ पर या जो पकाते हैं, हालांकि ढाबे के खाने का एक अलग टेस्ट होता है लेकिन वो वहां पर उतनी वैरायटी में नहीं आपको मिलता है कि अगर मैं एक दिल्ली के होटल में चली जाऊं और उनको बोलूं कि मुझे वेज दलिया दे दीजिए तो वो दे देते हैं। तो क्या हम ढाबे को की नजरिए से भी हॉस्पिटैलिटी को देखेंगे कि वो खुद कैसे रहें, कैसे प्रेजेंट करें, कैसे सफाई रखें, कैसे फूडिंग करें, कैसे सॉल्व करें चीजों को, वो सारी चीजें भी क्या आप इसमें, क्योंकि मुझे लगता है कि जो होटल मैनेजमेंट में जाएंगे वो एक ग्रुप हो सकता है मगर कुछ लोग अपना खुद का शुरू कर सकते हैं जी, तो इसमें क्या संभावनाएं हैं?
1: जरूर उसकी पूरी संभावना है, मैं आपको बताती हूँ। एक ढाबा, अगर आप ढाबे के नजरिए से देखें, ढाबा आप भी वही ढाबा चूज करेंगे जो साफ सुथरा आपको लगेगा, गंदे ढाबे में तो आप भी पैर नहीं रखेंगे। तो हॉस्पिटैलिटी वहां भी आपकी काम करती है। एक ढाबा किस तरीके से ढाबा आपको लॉन्च करना है, स्टार्ट करना है, जरूरी नहीं है एक ढाबा आप शुरू करें तो उसमें आप 100 चीजें एक साथ रखें, आप 10 चीजें रखें लेकिन उन 10 चीजों का पूरा टेस्ट रखें और पूरी सफाई से अपने ढाबे को साफ रखें। आप साथ ही में बात कर रहे थे कि ढाबे को कैसे डेकोरेटिव वे में आजकल रखा जाता है, तो जैसे कि एक नाम इंसान की अगर लैंग्वेज में मैं बोलूं तो जो दिखता है वो बिकता है, तो वही आजकल केस है हमारे ढाबों के साथ। जो आप देखेंगे जो छोटे छोटे लोग भी होते हैं, जो गांव के ही लोगों का ढाबा देख लीजिए, वो अपने गांव की जो भी कल्चर होता है उस कल्चर के हिसाब से वो ढाबा बना के सुंदर तरीके से हाथ से डेकोरेट करके वैसा ढाबा रखते हैं। और अगर हम जैसे लोग वहां जाएंगे वो देखेंगे और सफाई है उस ढाबे में तो कौन नहीं रुकेगा उस ढाबे पे।
0: मतलब हमारा ऐसा विश्वास है हमारे सोसाइटी में कि जो जिस खाने में बहुत तेल और मसाला होता है वो खाना स्वादिष्ट होता है, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है।
1: ऐसा नहीं है, ये गांव के लोगों की सोच है कि उनको बचपन से जो सिखाया गया है कि बेटा ज्यादा तेल वाला खाना ही सबसे स्वाद होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब मैं जो करूंगी इन लोग के साथ, मैं इन लोग को सिखाऊंगी इन्हीं का रोजमर्रा का खाना लेकिन कम तेल में,
0: और न्यूट्रिशन को बचाते हुए।
1: जी, पूरा हेल्दी उसका क्या मतलब, जो वो खाते हैं वो कितना हेल्दी है उनको मैं सब एक्सप्लेन करूंगी, समझाऊंगी कि क्या कितना हेल्दी है। अगर इतना तेल यूज करोगे तो इतना हेल्दी है, इससे ज्यादा मात्रा में यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली आपकी बॉडी के लिए और आपकी हेल्थ के लिए खराब है, तो वो समझाया जाएगा।
0: तो एक बात बहुत अच्छी है कि हमारे गांव आज भी बहुत ही साफ सुथरा और ताजा सामान के साथ खाना बनाते, क्योंकि सब्जियां वहां मिल रही हैं, अनाज वहां मिल रहा है, तेल वहां मिल रहा है, तो शुद्धता तो उनके पास है,
1: लेकिन सफाई और खाना बनाने के बाद की सफाई, हाँ। उससे पहले की सफाई, खाना बनाते समय सफाई रखना, और कितना न्यूट्रिशन आप डाल रहे हैं। ज्यादा घी ज्यादा तेल न्यूट्रिशन नहीं होता,
0: ना न्यूट्रिशन होता है ना स्वाद होता है,
1: वो सिर्फ आपको आंखों में दिखता है जिनको तेल देखने की आदत है कि हाँ भाई बहुत तेल पड़ा है अच्छा ही होगा, लेकिन उसमें ना कोई स्वाद होता है, कुछ नहीं होता, वो आपकी बॉडी के लिए एक तरीके से जहर होता है।
0: क्योंकि समय बदल गया है तो अब खान पान के तौर तरीके भी
1: बदलने की जरूरत है।
0: तो दीक्षा बहुत जल्दी आपके बीच में आ रही है अपनी चटपटी मजेदार और अलग तरीके की चीजें आपको बता सकती हैं, और बहुत सारा कुछ वो आप उनसे सीखेंगे। जरूरी नहीं है कि हमेशा चीजें बाहर काम करने के लिए ही सीखी जाएं, बहुत कुछ हम अपने को आनंद देने के लिए, मजा देने के लिए भी सीखते हैं, और दीक्षा हमारे साथ यही करने वाली हैं। तो तैयार रहिए अपना परचम उठा करके कि दीक्षा का स्वागत करने के लिए एक नई हॉस्पिटैलिटी के साथ। नमस्कार, और हम लेते हैं कार्यक्रम से विदा। धन्यवाद, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

श्रोताओं, बज्जू में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बज्जू और उसके आसपास रहने वाले गांव से बहुत सारे बालक और बालिकाओं ने इस कार्यशाला में भाग लिया। अपने समुदाय की परेशानियों को रेडियो कार्यक्रम के माध्यम से लोगों तक पहुंचाना भी इस कार्यशाला में सिखाया गया। तो प्रस्तुत है इन्हीं बालक और बालिकाओं द्वारा बनाया गया ये कार्यक्रम। सबसे पहले प्रस्तुत है बालिका शिविर की बालिकाओं द्वारा प्रस्तुत ये गीत, जिसमें अपने अधिकारों की बात की गई है।

0: और अब सुनिए चितरंजन और भंवर द्वारा प्रस्तुत ये कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
1: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को चितरंजन
2: और भंवर का प्यार भरा नमस्कार।
1: आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कार्यक्रम अपना गांव अपनी बात।
2: हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आएंगे अपने ही गांव की कहानियाँ और गीत।
1: हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाएंगे जिससे आपको शिक्षा मिले।
2: हम एक दूसरे की कहानियाँ पढ़कर उससे सीख लेंगे और अपने ही गांव को खुशहाली की ओर ले जाएंगे।
1: चलिए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं एक नाटक से जिसमें शराब से होने वाले नुकसान के बारे में बताया गया है।
3: थक गयो यार, आज तो काम करते करते खेत में दारू ले रहा हूँ, आज जाऊँ। अरे कृष्णा राम
4: सा
3: घरे हो गए?
4: वही हाँ।
3: दारू है गए?
4: हाँ है।
3: देवो ने किस है, थर्डी है इंग्लिश?
4: इंग्लिश थर्डी दुनी है।
3: तो ते थर्डी लाओ, एक
4: लो।
3: कितने रुपया है बोलता था?
4: 60 रुपया।
3: 60 रुपया दे थाने, काम मत जाऊँ, ऐसा भोजन दे। दारू तो यार तो हखरो ही कोने गए है, हखरो कोने। तो कृष्णा राम
4: सा
3: अरे इंग्लिश दे तो हकरो ही कौन, कहा गिरजा पीनो मैं तो हकरो ही कौन, दर नर्सो ही कौन आए थे। इंग्लिश दो के बताओ।
4: इंग्लिश महंगो घड़ो है।
3: कितने रुपये है?
4: 280 रुपये बोतल है।
3: अरे रुपया हूँ थान दे हूँ, 280 रुपया थे बोतल तो दे।
4: पक्की बात दे दो रुपया।
3: हाँ रुपया दे दू
4: लो
3: भावे। रुपया इंग्लिश बोतल रुपया कटे यार, रुपया होता थारे खाने कौन आता थारे घेरे आया। इंग्लिश तो बहुत अच्छे है यार दारू, इंग्लिश तो बहुत अच्छो है।
5: ओ विकू गाड़ला रुपया दे ही गए।
3: अरे कौन है तू?
5: हूँ छोटू।
3: केड़ो छोटू है, हूँ कौन जानो जाने?
5: जाने कहाँ कर कौन है, रुपया लेने वाले टाइम तू जान ले, हमें जाने ही कौन
3: है। ए भगवान यहाँ से भगवान ना कर, जाने आने
5: जानो कहाँ कर कौन है, कृष्ण राम जी के नाल दारू लियो।
3: अरे केड़ो किसी ने सर बाप ने बुला ला भी ना जा।
5: बुला कर ले हाल जो।
3: हूँ कौन सर, सर बाप नटे बुला ला भी ना जा।
5: तो आला
3: इधर आला।
5: कृष्ण राम गने
3: सर बाप गने बे हाल बे
5: बे
3: बाप कहेंगे बाल बोल दे कहेंगे रुपया कर देना मैंने
4: कल दिया नहीं
3: क्या बुढ़ा बोले मन को रुपया को देना झूठ बोला तो
5: दिया
3: रुपया
4: 500 रुपया दिया कल
3: दिन कहे डरे
4: कल रोमाल छोटू
3: क्या
5: एक बियर एक थर्टी दो बोतल ले गया कई भुजिया तुजिया बिस्कुट आगे ले जाओ तार बड़े के दिया को निजन कर दे।
3: सर बाप रुपया लग गए मराब लग मजूरी मारो कमार लो रुपया
5: बाप मजूरी बात है।
4: काल देखो काल आड़ो याद करो।
3: अरे हाँ यार रुपया हाँ दिन है सोची बोई तो हाँ जानू रुपया हाँ देना फिर दे। अरे दे फिर कहते थे कृष्ण राम से अरे थोड़ा ही दे अरे मारे सब हो खान मा तो पैसा जन मैं थाने दे रुपया थाने दे दारू वाला और छोटी ने दे।
6: ए दारूडे की संग मारी कर दी सगाए रे कर दी सगाई मन जट पर नाई रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे।
3: ए भुगे गवे भुगे ए भुगे जीत गवे।
6: ए सोन्यो बीमार मारो मोन्यो बीमार दापुड़ी निकासी होगी पे मन पुकार इनने कोई तो दरवर दवाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे।
3: ए सर बाप ने क्या सोच रहा है मगन कोई लौट को नहीं भावे लौट और दवाई सर बाप ने क्या आवाज ना रे।
6: ए दारुड़े की संग मारी कर दिस गई रे कर दिस गई मन जट पर नाई रे मन बुरो तो मिलियो कसाई रे हमारे घर में फूट गया पाई रे।
3: ए रेंडे बूटा थरा बूटा थर बाप रा हूँ क्या करूँ मैं तो बे हूँ दारू ऐस कर बोल तो गए करे।
6: ए नसबंदी रो क्या सारो घना समझ जाऊं से नसबंदी रो क्या सारो घना समझ जाऊं से घना समझ जाऊं सारो गली गली कैसे इरी बुद्धि ठिकाने लवरे हमारे घर में फूट गया पाई रे।
3: ए रंडे कर बकबक करे हमारी बुद्धि ठिकाना तू धर ठिकाना ला रंडर कहीं गीत का मन घर में आ गलियां मुबे।
6: ए सारो दिन पिए जद मोटी मोटी आगे है मोटी मोटी आगे जद छोरों ने डर है कोई पूरी कबड्डी टीम बनाओ रे हमारे घर में फूट गया पाई रे।
3: कबड्डी कबड्डी कबूज
5: क्या
3: ए भगवान ने कबिया माला इतना मरवा था ज्यादा मुझे भगवान हो मैं भीगू हाँ मेरा नाम भीगू है जाने मुझे
5: जानू
3: ए भगवान ने अगर भागे थे
6: दारूडे के संग मार कर दिस गए रे कर दिस गए मन जट पर नाई रे मन बुरो तुम लियो कसाई रे मार घर में फूट गया पाई रे
3: वे रे सुब्रया ने कागा का बटिन मारोगा जान रे रहने लगा चल रे दो दे सुब्रया यार घर बगल लागी है बोले मरा अरे यार गाय करो रोंडी लारे पर की दारू सोडा ने गांव वाला बस लगले अब दारू जोड़ा यार दारू जोड़ो आदर बाद में दारू पीऊं को नहीं यार और हम कहीं करूं पैसा ही करने को नहीं यार रांड बढ़ो जी ने घरे गाना कर रहे अब यार रांड ना तो रिबे दे मैं कमाऊं जो दारू बांध दे रांड गाना कर रहे रोज ने आज बाद में यार दारू छोड़ना और अब कहीं करा
2: अभी आपने नाटक सुना भाई मैं तो मान ही गया कि शराब पीने से नुकसान ही नुकसान है फायदो कोई नहीं
1: सही कह रहे हो मोहनलाल जी तो हमारे गांव में रहने वाले लोग भी इस बात को मान गए होंगे
2: अगर आप या आपके आसपास वाले शराब पीते हैं तो आज ही फैसला ले लो कि शराब के हाथ तक नहीं लगाना है देखा भिखाराम को कितना नुकसान उठाना पड़ा और फिर उनके जब अकल आई तो उन्होंने दारू छोड़ दिया
1: अब तो होली भी आने वाली है मोहनलाल जी इस बार होली पर अपन को अच्छे अच्छे पकवान खाने हैं अच्छे अच्छे गाने गाने हैं शराब को तो इस बार हाथ भी नहीं लगाना है
2: इसी बात पे एक अच्छा सा गाना हो जाए
7: दारू थे छोड़ो नी भाया दारू थे छोड़ो नी दारू थे छोड़ो नी भाया दारू थे छोड़ो नी सब भाया हूँ अर्ज भी

0: दारू पिए जल्द पड़िया गया मैं ऊपर कुत्ता मुते जी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी, दारू थे छोड़ो नी भाया, दारू थे छोड़ो नी।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करे श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे।
3: अभी हम सब ने जो गाना सुना मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगा भवनलाल जी।
4: हाँ, इसी गाने पे मुझे एक दोहा याद आ रहा है,
3: जल्दी सुनाओ भवनलाल जी, श्रोताओं को इंतजार है।
4: राम जन्म में दूध मिला, कृष्ण जन्म में घी, कलयुग में दारू मिला तो सोच समझ कर पी।
3: सही कह रहे हो भवनलाल जी, एकदम सही कह रहे हो। आपने पिछले दिनों वो घटना हुई थी उसका सुना था क्या?
4: हाँ, वो जो कोलायत में घटना हुई थी उसके बारे में हमने सुना था। लोगों की नजरें होते हुए भी जानबूझकर अंधे बन रहे हैं।
3: सही कह रहे हो, दारू को किस तरह अमृत बनाकर पिया और फिर किस तरह पछताए।
4: अब हम समय को देखते हुए श्रोताओं से आज के इस कार्यक्रम के लिए इजाजत लेते हैं।
3: अब अगले सप्ताह इसी समय इसी दिन फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमारा नमस्कार।
5: आ खेल दी तो तगड़ी मिली नहीं रे आज, इनका आटू तो तन सारो घर खर्चो हव निकल जाए। 3 क्विंटल लकड़ी बड़ा निकाली, बीकानेर बेचा।
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार,
1: सूखी धरती करे पुकार,
2: पेड़ लगा कर करो श्रृंगार।
5: छोरो रो माथो फूट्यो, काल में पेड़ लगाओ, कुण लगाए पेड़ थे लगा बोगरो पेड़ और हूँ काटी राखू। ओ गियो हमें स्वाम नाम गाड़ो लेर जाने इम चाल चाल पनो टेक गाड़े और बेचा बीकानेर।
1: ओहो आज खेत जायो, खेत जाए घना दिन हो गया जिको आज खेत जा रहा हूँ देखने। ओहो।
6: और श्रोताओं, अब रानू सिंह लेकर आए हैं कार्यक्रम मेहनत करो मंजिल दूर नहीं। इस कार्यक्रम में वो आपको मिलवाएंगे दासोड़ी गांव के बालक जयदेव से। तो आइए जानते हैं जयदेव की कहानी और सुनते हैं कि इस कहानी के द्वारा रानू सिंह हम सबको क्या संदेश दे रहे हैं।
7: कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी श्रोताओं को रानू सिंह की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज मैं अपने आपके लिए मेहनत करो मंजिल दूर नहीं कार्यक्रम लेकर आया हूँ। अपने इस कार्यक्रम को मैं हर बार लेकर आता हूँ। आज हमारे गांव में रहने वाले उन लोगों से बातचीत करेंगे जिन्होंने मेहनत से अपनी जिंदगी को बदल डाला। इस कार्यक्रम से पता चलेगा कि मेहनत करने वालों को फल भी मीठा मिलता है। जो एक अशिक्षित बालक था वो शिविर के माध्यम से शिक्षा का महत्व समझा। आइए उसे बात करते हैं। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं का आपका नाम बताइए।
8: मेरा नाम जयदेव सिंह चारण।
7: आपको पढ़ाई अच्छी क्यों नहीं लगती थी?
8: मुझे इसलिए पढ़ाई अच्छी नहीं लगती थी कि जब मैं स्कूल जाता था तब मुझे मास्टर मारते डांटते थे, इसलिए मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया था।
7: बाद में पढ़ाई अच्छी क्यों लगी?
8: जब मैं शिविर में आया तब देखा कि शिविर में इतने सारे बालक पढ़ रहे हैं तो मुझे थोड़ी सी पढ़ाई को उचित समझा। मैंने इतने बालक थे कि वो पढ़ाई कर रहे थे, मैंने भी सोचा कि पढ़ाई से क्या होता है, इसलिए मैंने पढ़ाई को अच्छा मानकर पढ़ने लगा और मुझे मेहनत का फल मिल गया।
7: अपने शिविर के अनुभव हमारे श्रोताओं को बताइए।
8: जब मैं शिविर में आया तो शिविर में कई 80 बालक थे, लगभग 80 बालक थे जो इलमिल कर रहते थे और किसी को गाली गलौज नहीं देना, प्यार से रहना, सभी के साथ खाना खाना, पानी पीना, इसलिए सभी साथ खेलते थे। ये अनुभव हमारे शिविर के।
7: स्कूल व शिविर की पढ़ाई में क्या अंतर है?
8: स्कूल और शिविर की पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। जैसे स्कूल में तो मास्टर आते ही नहीं है टाइम पर, और शिविर में समय समय पर बदलते रहते हैं पीरियड, जिस पीरियड का जो पीरियड होती है हिंदी की, तो हिंदी मैडम आके पढ़ाने लग जाती है।
7: आप आगे अपने जीवन में क्या बनना चाहते हो?
8: मैं पढ़ लिख कर अपने जीवन में देश की रक्षा करना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के पिताजी से। आइए, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। सभी श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
9: मेरा नाम है मांगीदान चरण।
7: जयदेव के बारे में क्या कहना चाहते हो?
9: जयदेव के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि जयदेव को मैं कहता था कि तुम पढ़ो और समय पर स्कूल जाओ, और वो हमें पता नहीं चला कि जयदेव समय पर जाता है या नहीं, और जयदेव तो स्कूल का बहाना बनाकर वो तो दूसरी जगह कहीं पर छुप जाता, और मैं जानता कि जयदेव पढ़ने के लिए जाता है। बाद में एक दिन जयदेव के साथी से मैंने पूछा कि छात्र से पूछा कि जयदेव स्कूल आता है या नहीं। जब उन्होंने बताया कि जयदेव तो स्कूल में आता ही नहीं है, जब मैंने सोचा कि जयदेव तो ऐसे नहीं पढ़ पाएगा, और एक दिन मुझे एक उमूल कार्यकर्ता ने कहा कि ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए एक बजू में शिविर खुल रहा है, उसमें आप इस बच्चे को भेज दो, तो मैंने उसी शिविर के अंदर इसको भेज दिया और वो पढ़ाई करने लगा। और जब उन्होंने उस शिविर के अंदर प्रथम स्थान से पांचवी कक्षा पास की, तो मैंने सोचा कि अब इसकी रुचि लग गई है और अब ये अच्छी पढ़ाई कर सकता है और अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है। बस मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, अब मिलते हैं जयदेव के अध्यापक से। आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। कृपया श्रोताओं को अपना नाम बताइए।
10: मेरा नाम कुमार दान है।
7: जयदेव पढ़ाई के साथ साथ किस में भाग लेता था?
10: यह कहानियां अच्छी लिखता है और यह खेल कूद में अच्छा है। यह हर फंक्शन में भाग लेता था। 80 लड़कों में से इसने प्रथम स्थान हासिल किया, तो आप भी इसका अंदाज लगा सकते हैं। मुझे ऐसे विद्यार्थी पर गर्व है। लगभग सब बच्चे 8 बजे सो जाते थे, लेकिन यह 10 बजे तक पढ़ता। यह खेल की जगह खेल और पढ़ाई की जगह पढ़ाई करता। ऐसे बच्चों के साथ मेरी मनोकामना है।
7: धन्यवाद। श्रोताओं, इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि बच्चे के जीवन में शिक्षा का महत्वपूर्ण योगदान है। इससे बच्चे का विकास होता है और साथ साथ खेल का भी ध्यान रखना चाहिए। शिक्षा है अनमोल रतन, पढ़ने का सब करे जतन। अर्थात शिक्षा एक ऐसा रतन है, हीरा है, जो चाहे गरीब हो, बीमार हो, गरीब हो, अमीर हो, वो सभी

0: अभी सुने उन बालक और बालिकाओं ने बनाए थे जिन्होंने मीडिया कार्यशाला में रेडियो प्रोग्राम बनाने सीखे। आशा है आपको इन बालक और बालिकाओं का ये प्रयास जरूर पसंद आया होगा। नमस्कार।
1: नमस्ते सबको, मैं आपको बताना चाहूंगी थोड़े कम शब्दों में, लेकिन क्योंकि टाइम भी कम है और थोड़ी नर्वस है और फर्स्ट टाइम मैं बोल रही हूँ मंच पे आकर, तो मैं इतना ही बताऊंगी कि मैंने जो ये ट्रेनिंग की ब्यूटी की, मैंने मोहम्मदपुर अहीर से ही सीखा था और अब मैं एज अ ट्रेनर सोन में जॉब कर रही हूँ। तो थैंक यू सो मच मैम ये आने के लिए और ये सेंटर वहां खोलने के लिए। थैंक यू सो मच।
2: नमस्ते सभी को, मेरा नाम सविता है, मैं सोन सेंटर में स्टिचिंग की जॉब करती हूँ और मैंने ये स्टिचिंग यहाँ से मोहम्मदपुर अहीर से सीखा था और मैं रीड में ही काम कर रही हूँ और मैं इसके साथ साथ अपने घर भी बुटीक खोल रखी है और उसमें भी काम करती हूँ।
3: प्रयासों की बुनाई, सम्मान की कमाई। खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। हजारों की उम्मीद और उनकी जीविका के मार्गदर्शक हैं खेमराज सुंदरियाल, जिन्हें सब स्नेहवश गुरुजी कहते हैं। खेमराज जी का जन्म 1943 में पौड़ी गढ़वाल में हुआ था। आर्थिक अभाव के कारण उन्होंने बचपन में बहुत कठिनाइयों का सामना किया।
4: मैं जब पढ़ रहा था तो एक दिन संत कबीर जी के बारे में जाना, उनका बड़ा नाम है और हम इतनी किताबें पढ़ती हैं उनके, तो मैं तो उन्हीं के जैसा काम सीखूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं बुनकर बनूंगा।
3: हैंडलूम टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करने के बाद खेमराज सुंदरियाल जी की काम की तलाश ने उन्हें यह बता दिया कि रोजगार के लिए उन्हें दिल्ली जाना ही होगा। लेकिन खेमराज जी के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे। तभी एक दिन उनके चचेरे भाई को चोट लग गई और उन्हें इलाज के लिए दिल्ली ले जाना पड़ा। उनकी देखभाल के लिए इन्हें भी साथ भेजा गया और यही सफर खेमराज जी को पहली बार दिल्ली ले आया। दिल्ली क्लॉथ मिल में काम करने के बाद खेमराज सुंदरियाल बुनकर सहायता केंद्र में कार्यरत हो गए। 9 से 10 साल गुजर गए। काशी के बुनकर सेवा केंद्र में खेमराज जी की मुलाकात एक टेक्सटाइल आर्टिस्ट SV निकम जी से हुई। उन्होंने इनकी प्रतिभा को पहचान कर इन्हें केंद्र से लौटने के बाद आर्टिस्ट लोगों के लिए टेपेस्ट्री बनाने की सलाह दी।
4: उन्होंने मुझे 175 रुपए दिए लूम खरीदने के लिए।
3: इसी दौरान खेमराज सुंदरियाल बुनकर सेवा केंद्र की पानीपत शाखा में आ गए और जल्द ही देश के कई सुप्रसिद्ध कलाकारों के लिए टैपेस्ट्री बुनने लगे। जिस लड़के के पास पौड़ी से दिल्ली आने तक के पैसे नहीं थे, उनका काम उन्हें देश विदेश ले गया। जामदानी तकनीक पर खेमराज जी की पकड़ देखते ही बनती थी और साथ ही उन्होंने हत्ता तकनीक और पॉलिएस्टर की बुनाई भी शुरू कर दी। अपनी इसी लगन से उन्होंने पानीपत की दरी और खेस को एक बार फिर से प्रसिद्ध कर दिया। रिटायर होने के बाद खेमराज जी ने विष्णु हैंडलूम कोऑपरेटिव शुरू किया, जिसमें वो अब तक 10,000 से ज्यादा युवाओं को काम सिखा चुके हैं। भारत के कई प्रख्यात संस्थानों के छात्र भी खेमराज जी से बुनाई की कला सीखने आते हैं।
4: इस कला ने मुझे मान सम्मान और पहचान दिलाई। अब लगता है मैंने इस कला को नहीं, इस कला ने मुझे अपना है।
3: खेमराज सुंदरियाल, पद्मश्री 2026। कोटि कोटि नमस्कार।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: गुड मैम, गुड
0: गुड
1: है मैम।
0: आफ्टरनून
1: मैम, बहुत गर्मी के बाद बहुत अच्छी बारिश हो रही है। ठीक
0: और सब कैसे हैं? ठीक
1: है मैम।
0: है। कोई और कैसे हैं? सब
1: गुड आफ्टरनून मैम, सब ठीक है? आप कैसी हैं मैम? गुड
0: ठीक है जी। और कैसे हैं सब?
2: आफ्टरनून मैम, हम
1: मैम अच्छे।
2: अच्छे
1: गुड
2: हैं। अच्छे हैं। और
1: मैम,
2: कैसे हैं?
1: अच्छे हैं। आपको देख के थोड़ी एनर्जी फील होने लगी अब।
0: एनर्जी है। और कैसे हैं सब?
1: ठीक है मैम, अच्छे
0: ठीक हैं। और कैसे हैं सब? क्या इमोशन है इस
1: है
0: वक्त?
1: मैम, बहुत बढ़िया।
0: बढ़िया है। और कैसे हैं?
1: मैम को आज सबकी वॉइस सुननी है।
0: मुझे ये जानना है सब हैं कैसे। अभी तक मुझे ये पता है कि पांच छह लोग अच्छे हैं, बढ़िया हैं।
2: मैम सब कुछ ठीक है, बट मौसम खराब है तो गला खराब हो जाता है मैम
0: ठीक है,
2: सबका।
0: लेकिन गला खराब है, थोड़ी तबीयत खराब है, लेकिन वैसे ठीक है ना?
2: मैम
0: आपको सिर्फ सुनना है, ज्यादा बोलना तो है ही नहीं, तो कम से कम वीडियो ऑन कर सकते हैं, है ना? कैसे हैं? मेरे को अभी भी जवाब नहीं मिला है, सिर्फ ठीक है, अच्छे हैं। चार पांच लोगों ने बोला है यहाँ पे, तो 30 से ज्यादा लोग हैं। कुछ तो और महसूस कर रहे होंगे, कुछ कोई तो होगा जो अच्छा नहीं फील कर रहा है कि सब अच्छे हैं।
1: सब अच्छे हैं मैम।
0: सब अच्छे हैं। यहाँ कुछ प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, स्वर्णा जी आपके साथ, मेरे ख्याल से आपका ही आंखें दिख रही हैं शायद, है ना?
2: हाँ
0: हाँ जी। बच्चे कैसे हैं आप लोग?
2: सांगली अच्छे हैं, मराठी
0: सांगले, सांगले का क्या?
2: में बात करते हैं मैम वो
0: हाँ, तो सांगले का क्या मतलब होता है? अच्छे
2: अच्छे हैं हम सब।
0: हैं, सब अच्छे हैं। और कैसे हैं? महाराज
2: बोला
0: आपके पीछे मुझे है तो सब अच्छे हैं, ठीक है। अच्छे के अलावा और किसी को नहीं पता कि वो कैसे हैं, उनका फीलिंग कैसा है आज, मन में क्या है। जब हम किसी से मिलते हैं, हम पूछते हैं अच्छा और कैसे हो, तो हम बोलते हैं सब ठीक है, या फिर जैसा ऋतु जी ने बताया सब ठीक है लेकिन मौसम खराब है तो थोड़ी तकलीफ हो रही है, देर से पहुंचे कि जहां पहुंचना था, खांसी जुकाम हो गया। बट हम कैसे फील कर रहे हैं ज्यादातर हमें पता ही नहीं होता, या तो अच्छे हम बोलते हैं कि हम अच्छा ही फील कर रहे हैं, है ना? अभी ये सवाल मैंने कम से कम 15 से 20 बार ही पूछा और सिर्फ यही जवाब मिला कि हम अच्छे हैं। सब मानते हैं यही जवाब मिला हमको? यस।
1: यस मैम,
2: यस मैम,
0: तो
1: यस
0: आज
1: मैम।
0: इसी चीज पे बात करेंगे जिसपे मैम ने कल छोड़ा था। मैम ने कल अपने सेशन में 10 E's की बात करी थी। जो लोग इस सेशन में थे कल, हम वहीं से आगे इसको कंटिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जैसा मैम ने बताया था कि हम किसी चीज को अधूरा नहीं छोड़ना चाहेंगे, इन डेप्थ हम जानना चाहेंगे हर एक चीज का मतलब क्या है हमारी जिंदगी से। ये जो सेशंस हैं इसमें हम कुछ सिखा नहीं रहे, कुछ सीख नहीं रहे, बस कोशिश ये है कि अपने आप को थोड़ा बेहतर हम पहचान सके और थोड़ी जो हमारी शक्तियां हैं, जो स्किल्स हैं, जो स्ट्रेंथ्स हैं, हम उसको और पॉलिश कर सके, ताकि हम एक बेहतर ह्यूमन बीइंग बन सके, सोशली, इमोशनली एंड प्रोफेशनली। क्योंकि सभी यहाँ पे जो हमारे साथ जुड़े हैं वो कुछ ना कुछ आगे जिंदगी में या तो कुछ कर रहे हैं या तो कुछ करना चाहते हैं। जो कर रहे हैं वो आगे बढ़ना चाहते हैं और जो कुछ करना चाहते हैं वो अपनी राह ढूंढ रहे हैं। सही बात है या कोई और भी जुड़े हैं किसी और रीजन से? सही
1: सही बात है मैम, बिल्कुल।
0: बात। चुप तो रह नहीं सकते ना, मैं पांच बार बार पूछती रहूंगी ताकि कोई देखू सो तो नहीं गया कोई, है ना? तो आज का हमारा ये 40-45 मिनट होंगे, हम उस चीज पे बात करेंगे जो पहला ई था। पहला ई क्या था? किसी ने सुना था ना कल, सबने 10 E नोट किए होंगे। पहला ई क्या था बता सकता है कोई?
1: एम्पावर
0: पावर ऑफ व्हाट?
1: मैम, इमोशनल स्ट्रेंथ।
0: एब्सोल्युटली। मैं तब से यही बात कर रही हूँ कि इमोशनल स्ट्रेंथ हमारी क्या है, हम कैसा फील करते हैं, हमारी जिंदगी में इमोशंस क्या रोल फील करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। हम सुबह उठने से लेके जब तक सोने जाते हैं और सोने के बाद भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, यानी कि हमारे सपनों में भी हमारे इमोशंस प्ले करते हैं, हाँ कि ना? अगर आप उदास हैं, अगर आप दुखी हैं और उस फॉर्म में हम सो जाते हैं, तो हमारे सपने भी हमें उसी तरीके के आते हैं। ऐसा होता है क्या कभी? अगर हम खुश हैं, हमारा दिन अच्छा बीता है, हमने जो चाहा था हमें मिला है, या जो हम अचीव करना चाहते थे, अच्छा सा परिवार भी सुखी है, तो हम अच्छी नींद अगर सोते हैं तो हमें सपने भी अच्छे आते हैं, ऐसा होता है? तो इसका ये मतलब है कि इमोशंस का रोल हमारी जिंदगी में सबसे बढ़ के है। जितना जरूरी खाना पीना, अपने कपड़े, हमारे रहन सहन, हमें अपने फिजिकल नीड्स, जो हमारी फिजिकल नीड्स हैं उनको पहचानना है, उतना ही या शायद कभी कभी उनसे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमें हमारी इमोशनल नीड्स को पहचानना। मुझे कोई बता सकता है कि कितने इमोशंस हैं, ह्यूमन एक इंसान में कितने इमोशंस हैं, आपको क्या पता है इस बारे में? कोई गूगल नहीं करेगा इस वक्त, ये नहीं कि जो लोग स्क्रीन पे नहीं है आप गूगल करना शुरू करें, गूगल में सबसे पहले सबसे ऊपर आ जाएगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी अगर आप सच्चे हैं तो प्लीज गूगल मत करिए, क्योंकि सबकी स्क्रीन ऑन नहीं है। आप, ये कोई टेस्ट नहीं है, इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने हैं, बस आप अपनी समझ से जितना हम पढ़े हैं, कोई यहाँ पे 20 साल का है, कोई 25, कोई 30, कोई 40, कोई 50 साल का है, इन 50, 20, 30 सालों में आपने कितने इमोशंस महसूस करे होंगे, कोई भी बोल सकता है। और जो नहीं बोल रहे मैं इनकरेज करूंगी वो भी बोले, क्योंकि यहाँ कोई गलत और सही जवाब नहीं है। कितने
2: मैम बहुत सारे इमोशंस होते हैं, लाइक खुशी
0: होते
2: हो,
0: हैं? 5, 6। खुशी होती है, और बताइए।
2: हम जैसा
0: हेलो,
2: फील करते हैं वैसा इमोशनल हो जाते हैं हम,
0: जैसे कि दुखी हो गए, खुश हो
2: जैसे
0: गया, गुस्सा
2: हम
0: हो
2: गुस्सा आ
0: गया।
2: जाते हैं, कभी कभी अंदर से
0: पांच,
2: नाराजगी होती है, बोल नहीं पाते हैं तो
0: छह, सात,
2: वो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, कभी कभी कभी
0: सात खुश,
2: दिक्कत भी होता है।
0: 8, 8 इमोशंस हो गए। तो बिल्कुल ठीक, 7 या 8 कोर इमोशंस होते हैं जो हमारी जिंदगी में हमें रूल करते हैं। मैं एक बार स्क्रीन शेयर करती हूँ, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन भी बनाई है, होस्ट को रिक्वेस्ट करती हूँ प्लीज मुझे अलाउ करेंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए। आई रिक्वेस्ट द होस्ट टू अलाउ मी टू शेयर द स्क्रीन प्लीज। तो अब कायदे से तो मुझे गुस्सा आना चाहिए ना, क्योंकि मेरी स्क्रीन ही नहीं अलाउ हो रही आज शेयर करने के लिए, है ना? मेरा इमोशन इस वक्त क्या होना चाहिए, मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए, मैंने इतनी मेहनत करके प्रेजेंटेशन बनाई और होस्ट मुझे अलाउ नहीं कर रहे स्क्रीन शेयर करने को, या मेरे को घबराहट हो जानी चाहिए कि अब मैं आगे क्या बोलूंगी, मैंने तो स्क्रीन से देख के पढ़ना था और अब तो मेरे को डर लग रहा है क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं मैं आगे क्या बोलूंगी, लेकिन मैं फोन करके स्क्रीन शेयर के लिए बोलती हूँ। सो राहुल ने मुझे अलाउ करा है स्क्रीन शेयर करने के, आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं,
2: यस मैम, यस
0: फुल स्क्रीन
2: मैम,
0: दिख रहा है। सो आज हम पहले ई पे बात करेंगे, जो मैम ने बताया था इमोशनल इंटेलिजेंस, जिसको कि हम ई क्यू भी बोलते हैं, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है। ये एक प्रॉपर स्टडी है साइकोलॉजी में, इमोशनल क्वोशेंट इसको बोलते हैं, लेकिन हम इस पे बहुत ही बेसिक लेवल पे बातचीत करने जा रहे हैं। ये कोई साइकोलॉजी का सेशन नहीं है, मैं कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट प्रैक्टिकली इस चीज के क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में, हम इस पे आपस में बात करेंगे। मैं कुछ आपको सिखा नहीं सकती क्योंकि आपके इमोशंस आपके हैं, मेरे इमोशंस मेरे हैं, बट मैं ये बता सकती हूँ कि इमोशंस का रोल क्या है और इसको पहचानना और इसको मैनेज करना। हम इमोशंस चेंज तो कर नहीं सकते, गुस्सा आ रहा है तो आ रहा है, लेकिन गुस्से में क्या मैं किसी को थप्पड़ मार रही हूँ, क्या मैं किसी पे चीख चिल्ला के बात कर रही हूँ, या मैं समझ बूझ के, समझ से सिचुएशन को हैंडल करके बातचीत कर रहे हैं। और हर बार ही जरूरी नहीं है कि एक ही रिएक्शन होता है, हर एक सिचुएशन में हमारे इमोशन अलग होते हैं। तो हम बोलते हैं कि अच्छा, हम ये सेशंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई हमारे एक ख्वाब है, हमारा एक गोल है लाइफ में, उसको हमें अटेन करना है, बट उस गोल को अचीव कैसे करना है। तो हमने सोचा चलो हम वो ईज की बात कर रहे हैं तो इमोशनल इंटेलिजेंस से बात करते हैं। जैसा कि सना ने बताया, हमारे कुछ 8 या 9 जो कोर इमोशंस हैं वो हमारी लाइफ में रोल प्ले करते हैं, जिसमें कि हो गया हैप्पी हूँ, सैड हूँ, वरिड हूँ, नर्वस हूँ, गुस्से में आ गई मैं। ये सारे इंग्लिश के, मैंने जो यहाँ पे आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये कुछ 12-14 अलग अलग इमोशंस हैं। ये इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं, लेकिन इसके हमारे को हर भाषा में कोई ना कोई इसका एक वर्ड जरूर मिल जाएगा। तो हम आमतौर पे, हमें लगता है कि हमारे करीबन 12 या 13 अलग अलग इमोशंस होते हैं जो हमारी लाइफ, कुछ इमोशंस नेगेटिव होते हैं और कुछ इमोशंस पॉजिटिव होते हैं। दोनों ही हमारे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बिहेवियर को दर्शाते हैं। अगर मुझे जल्दी गुस्सा आ जाता है, इसको कहते हैं ना, अरे इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आता है, इससे ज्यादा बात मत करो, ये तो एकदम बिगड़ जाएगा या बिगड़ जाएगी, इससे ज्यादा ज्यादा इससे कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, तो वो क्या होता है, वो हमारा बिहेवियर हो गया। क्योंकि जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर को बहुत उस पे, हमारे हमारे जो एक्शन है उसको हमारे को गाइड करता है। कुछ लोग होते हैं इससे कितना भी बात कर लो ना, इसे गुस्सा नहीं आता, अब ये तो कहना गलत है कि गुस्से वाला इंसान ठीक नहीं है और जो प्यार से बात कर रहा है वो ही ठीक है, ऐसा तो नहीं है ना। हो सकता है जो गुस्से वाला इंसान है वो ज्यादा समझदारी की बात कर रहा हो, लेकिन उसका बताने का तरीका ऐसा है कि वो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने इमोशंस को दो भागों में बांटा है, आमतौर पे नेगेटिव इमोशंस और पॉजिटिव इमोशंस बोला जाता है। नेगेटिव इमोशंस में गुस्सा आ गया, शर्मिंदा हूँ, उदास हूँ, मुझे डर लग रहा है, मुझे नफरत है किसी से, मुझे अफसोस है, इन सब शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव इमोशन में मुझे अच्छा लग रहा है, मुझे अपने ऊपर मुझे प्राइड है, यानी कि मुझे गुरूर है अपने काम पे, मुझे गर्व है अपने काम पे, मुझे आशा है, होप है, खुशी है, जॉय है, लव है, ये हमारे अच्छे इमोशंस होते हैं। लेकिन एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिनका यहाँ मैंने नाम दिया है रॉबर्ट, इन्होंने जब स्टडी किया, ये साइकोलॉजिस्ट माननीय साइकोलॉजिस्ट हैं, इन्होंने कई किताबें भी लिखी हैं, इन्होंने ये प्रूव किया अपनी थ्योरी से कि जो ये 7 या 8 इमोशंस होते हैं ये करीबन 34,000 इमोशंस ह्यूमन बीइंग में कॉम्बिनेशन में पैदा कर सकते हैं। हमें ये सब जानने की जरूरत इस वक्त पे नहीं है, हम कोई स्टडी नहीं कर रहे, हम कोई एनालिसिस नहीं कर रहे, बट मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि इमोशंस का इतना इम्पोर्टेंट रोल है हमारी जिंदगी में, हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हमारे एक्शंस इन्हीं से दर्शाए जाते हैं। इसलिए हमें इनको मैनेज करना आना बहुत जरूरी है। मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी और आप अपने इमोशंस मैनेज करना शुरू करोगे, लेकिन हम सबको ये आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि मेरा प्राइम इमोशन क्या है। कोई भी चीज अगर खराब होती है दिन भर में तो क्या मुझे गुस्सा आ जाता है, क्या मैं उदास रहती हूँ, या मैं उसको कोशिश करती हूँ कि मैं उसका सॉल्यूशन निकाल सकूँ उस सिचुएशन के, मैं कोशिश करके उसको पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकूँ। मकसद यही है कि हम अपने इमोशंस को पहचाने, इसको हम इमोशनल क्वोशेंट कहते हैं प्रोफेशनल लैंग्वेज में या फॉर्मल लैंग्वेज में, लेकिन जब हम उठते हैं, उठने से सोने तक, सोने के बाद भी हम इसी 34,000 के जो चक्र है इसमें फंसे रहते हैं। कोई कुछ ऐड करना चाहता है या किसी को कुछ लग रहा है कि गलत है या सही है? हम 1 मिनट के लिए रुक सकते हैं। जब नेगेटिव इमोशंस होते हैं तो उसकी फीलिंग कैसी होती है? हम इरिटेटेड रहते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती है, नर्वसनेस होती है हमें, जैसे एग्जाम देने जाना है और नेगेटिव इमोशन है, डर है हमारे अंदर, तो डर से क्या होगा? वरी होगी, नर्वसनेस होगी, तो क्या कोई फायदा होगा हमें एग्जाम देने में? नहीं। लेकिन अगर हम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, हमने बार बार अपना रिविजन किया है, तो उस नेगेटिव इमोशन को हम पॉजिटिव में कैसे बदल सकते हैं? वरी को हम कॉन्फिडेंस में लेके आ सकते हैं, हम वरी जो है हमारी उसको बदल के हम कॉन्फिडेंस में डाल सकते हैं। क्यों? हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं पहले से तैयारी करो, आखिरी मोमेंट पे कुछ मत छोड़ो, लिखित में प्रैक्टिस करो, बार बार उसका रिविजन करो, ताकि जो डर है, जो नर्वसनेस है, वो हमारा एक्शन क्या होगा कि हम आधा पेपर भूल जाएंगे, पेपर देख के डर जाएंगे, हमें समझ नहीं आएगा आंसर क्या लिखना है, हो सकता है गलत मलत लिखा है। लेकिन अगर हमने उस नेगेटिव इमोशन को पॉजिटिव में अपने एक्शन से बदला हो तो हम कॉन्फिडेंट होंगे, हम रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसा भी कोई क्वेश्चन आ गया कि मान लीजिए उसकी तैयारी हमने नहीं करी, तो भी चैप्टर्स तो हमने सारे पढ़े हैं, तो अपनी समझ बूझ से हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ना कि रिएक्ट करेंगे। घर से निकलने से पहले किसी ने कुछ बोल दिया तो उस पे भी हम नाराज हो जाते हैं, कभी कभी हमारे मन मुताबिक बात नहीं होती, पूरा दिन खराब हो जाता है, या रास्ते में जा रहे हैं, आजकल बारिश का मौसम है, गाड़ी तेज निकली, कपड़े खराब हो गए, कीचड़ कीचड़ हो गया, गुस्सा आ गया, बस इतना अच्छे से मैं बन ठन के जा रही थी और सारा खराब हो गया, मेरी तो मीटिंग थी, मेरा मेरा तो अच्छा काम होने जा रहा था, बट मैं क्या कर सकती हूँ, ये तो हो गया, ये तो सिचुएशन सामने आ गई, अब ये मेरे ऊपर है, मैं अपना इमोशन कैसे संभालूंगी? गाड़ी वाला तो निकल गया, हो सकता है उसकी भी कोई इमरजेंसी हो, तो हम एम्पैथी एम्पैथी में बदल सकते हैं अपने इमोशंस को, क्योंकि भाई अब तो ये हो गया ना, अब मैं इसका क्या कर सकती हूँ, अब अगर मेरे को अच्छे मीटिंग में जाना है तो मुझे सॉल्यूशन निकालना है ना उसका, हो सकता है मैं रुक के धो लूँ उसको, मेरे चलते चलते तक शायद वो सूख जाए, लेकिन उससे जो मैंने अपना इम्पोर्टेंट काम करना है उस पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। इसको हम इमोशनल क्वोशन्ट बोलेंगे कि सिचुएशन आने के बावजूद हम उसको मैनेज कर पाए। ये कोई गुट्टी नहीं है कि हमने घोली पानी में डाली और पी गए, ये प्रैक्टिस से आता है, बार बार प्रैक्टिस से ही आएगा। और अगर हम चाहेंगे तभी ये होगा। अगर हमें लगेगा कि इसके कोई फायदे हैं हमारी जिंदगी में, अगर हमें लगेगा कि नहीं जैसे हम हैं हम वैसे ही ठीक है, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं है। जैसे हम आज तक रिएक्ट करते आए हैं ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम लीडरशिप के सेशंस ले रहे हैं और अगर हम इमोशनल इंटेलिजेंस को वैल्यू दे रहे हैं, तो इमोशनल इंटेलिजेंस को समझना बहुत जरूरी है और उस पर फोकस करना बहुत जरूरी है कि प्रॉब्लम को ना समझ के, प्रॉब्लम को पर्सनलाइज ना करके, सिचुएशनलाइज करके हमें उसके कैसे आंसर्स ढूंढने चाहिए। कई बार बहुत गुस्सा आता है तो हम कहते हैं कि अच्छा आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करिए। किसी ने तेरे नाम पिक्चर देखी होगी तो देखा होगा ना सलमान खान उसमें वो 10 तक गिनती करता है। किसी ने देखी है वो मूवी? उसमें उस पिक्चर में सलमान खान को बहुत गुस्सा आता है, वो मार मारता रहता है सबको, लेकिन बाद में शायद जो हीरोइन होती है वो बोलती कि तुम 10 तक गिनती करो तो शायद तुम्हारा गुस्सा कम हो जाएगा। देखी है किसी ने ये मूवी, या मैं ही सबसे पुरानी हूँ यहाँ पे?
2: मैंने देखी है मैम,
0: सबने देखी है। तो वो क्यों करता है, उसको
2: मैम
0: उसने एक मैनेजमेंट टेक्निक बना ली कि मेरे को गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में रिएक्ट कर जाता हूँ, तो रिएक्ट ना करके मैं कैसे उसे कंट्रोल करूँ और उसको मैं पॉजिटिव। मैंने ये एज ए एग्जाम्पल ही दिया है, लेकिन ये कोई सिंगल तरीका नहीं है। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं, ऐसी बहुत सारी किताबें हैं। हमारी लाइब्रेरी में भी बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो इमोशनल क्वोशंट के ऊपर हैं। ऑनलाइन भी बहुत सारा मेटीरियल अवेलेबल है, जिनको कि लगता है उनकी जिंदगी में नेगेटिव इमोशन बहुत ज्यादा है। मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जाएं और कुछ कुछ स्पीकर्स हैं या कुछ कुछ किताबें ऐसी हैं, आप पढ़ने की कोशिश करिए उनको। वो आपको शायद एक बेहतर सोशली एंड पर्सनली वो आपको हेल्प करेगा। और जहां तक लीडरशिप की बात हो रही है, ये बहुत जरूरी है। आपने मैम को कभी रेयरली गुस्से में देखा होगा, आपने हमेशा देखा है कि वो कितनी बारीकी से इमोशंस को, सिचुएशंस को सिचुएशन पे रखती हैं, पर्सनलाइज नहीं करती हैं। ये बहुत मेहनत से आता है, बहुत एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट नहीं आ सकता। बट एज ए लीडर ये हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हमें गोल पे फोकस करना है, इमोशन पे नहीं। मेरे को कैसे बोल दिया इसने, अरे मैं तो ये हूं मैं तो वो हूं, मुझे बोल कैसे दिया इसने। बट वो आप उसे पर्सनलाइज ना लीजिए। अगर कोई फीडबैक दे रहा है तो आप उसे एक्सेप्ट करिए, अपनी गलतियां अपनी वीकनेस को पहचानिए एज ए लीडर और उस पे वर्क करिए। अगेन आई वुड से इट इज अप टू अस कि हम इसकी वैल्यू पहचानना चाहते हैं कि नहीं पहचानना चाहते। इस स्लाइड में हम ये बोल रहे हैं, इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है, इसके ऊपर हम कई चीजें बात कर चुके हैं। कई बार क्या होता है कि हम ये सोचते हैं कि नेगेटिव इमोशंस खराब होते हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट ने ऐसा भी स्टडी किया है कि जरूरी नहीं है हर बार और हर नेगेटिव इमोशंस हमारे लिए नेगेटिव ही रिजल्ट लेके आए। कभी कभी आपने सुना होगा ये इंसान ना स्ट्रेस में बड़ा अच्छा काम करता है, ऐसे सुना है किसी ने कि भाई इसको जब बिल्कुल सर पे आ जाती है ना, तब इसकी ये किसी की नहीं सुनता, ये देखना बहुत अच्छा काम करता है तब। क्योंकि उनको मैनेज करना आ गया है ये आर्ट कि स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। पूरा दिन कुछ, कई हमारी फ्रेंड ऐसी होती थी कुछ नहीं पढ़ती थी, सारा साल ऐसे ही इधर उधर डोलती रहती थी, लेकिन जब एग्जाम का प्रेशर आता था तो दिन रात पढ़ाई करके, क्योंकि उनको डर था कि मैं पीछे ना रह जाऊं, तो उस डर को उन्होंने पॉजिटिव इमोशन बनाया और दिन रात पढ़ाई करके अच्छे रिजल्ट लेके पास हो गए, है ना। और कुछ लोग हैं पॉजिटिव चीज को भी नेगेटिव बना लेते हैं, हाय मतलब प्रैक्टिस करे जा रहे करे जा रहे करे जा रहे, इतना प्रैक्टिस कर लिया है कि डर आ गया है कि यार मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इसी को बैलेंस करने की जो कला है उसको इमोशनल क्वोशंट हम कहते हैं। तो हमें हर बार नहीं सोचना कि हमें पॉजिटिव ही रहना है, कई बार नेगेटिव इमोशंस बहुत जरूरी होते हैं लाइफ में हमें सीख देने के लिए, ये समझाने के लिए कि शायद हम कहीं गलत जा रहे हैं, शायद हमें जरूरत है अपने कोर्स करेक्शन की। कभी कभी फेलियर बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब फेलियर ही नहीं है तो हमें ये पता ही नहीं है कि हम राह पे किसी राह पे चल भी रहे हैं कि नहीं, ऐसे अंधाधुंध चले जा रहे हैं। एक रैट रेस में सब सब चल रहे हैं तो हम भी चल रहे हैं। तो हमने ईक्यू समझा, इमोशनल क्वोशंट समझा, ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो जो पजल है जो हम 10 ईज की बात कर रहे हैं वो हमें हेल्प करेगा हमारा गोल डिफाइन करने में, हमारी लाइफ के गोल्स क्या हैं। तो इमोशनल क्वेश्चन को अब हम लिंक करेंगे कि हम गोल्स कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम हमने बात करी कि यहाँ सभी लोग किसी ना किसी गोल से या किसी ड्रीम को अचीव करने के लिए ही यहाँ पे जुड़े हैं। किसी को 12th में अच्छे मार्क्स लाने हैं, किसी को ग्रेजुएशन करना है, किसी को कोई स्पेसिफिक कोर्स करना है, नर्सिंग का करना है, पार्लर का करना है, स्टिचिंग का करना है, कोई एम्ब्रॉयडरी करके कुछ करना चाहता है, सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो कुछ क्या है वो भी तो हमें डिफाइन करना है ना। लेकिन अगर हम नेगेटिव इमोशंस में ही घिरे रहेंगे, मेरे घर में तो बहुत परेशानी है, मेरे को तो निकलने नहीं दिया जाता, मेरे पास तो वक्त नहीं है, मैं सुबह 4 बजे उठती हूँ, अरे जाके भी मुझे काम करना पड़ता है, मुश्किल से 1 घंटा निकालती हूँ, अगर हम इन सब चीजों में फंसे रहेंगे तो हम लाइफ में गोल ही सेट नहीं कर पाएंगे, और अगर गोल ही सेट नहीं होगा तो हम उस राह पे चलेंगे कैसे। किसी को कुछ क्वेरी है, कुछ सजेशन, कोई पॉइंट शेयर करना चाहता है? ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि हम अपना गोल डिफाइन कर कैसे सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन है, ये स्लाइड हम आपसे शेयर कर देंगे। अगर हम इन 10 क्वेश्चन के आंसर करने शुरू करें तो हो सकता है हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं ये हम खुद से पहचान पाए। ये मैं आपके लिए नहीं कर सकती, आप किसी और के लिए नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों के लिए भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्या करना चाहते हैं ये वो ही डिफाइन करे, तभी वो लाइफ में खुश रहेंगे, सक्सेसफुल होंगे, क्योंकि गोल उनका होना चाहिए। हम गाइड कर सकते हैं, हम हेल्प कर सकते हैं उस राह पे चलने के लिए, लेकिन इन क्वेश्चंस का आंसर तो हमें ही पता है ना, क्योंकि हम सच्चाई से आंसर देंगे इन इन सब क्वेश्चंस का। मैं लाइफ में क्या करना चाहती हूँ, तो मुझे खुश क्या करता है? किसी को सिलाई खुशी देती है। अभी हम पीछे किसी कुछ बच्चों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बोला मुझे, मैं सीख तो स्विंग रही हूँ लेकिन मुझे बनना पार्लर का काम करने में बहुत मजा आता है, तो मैं स्विंग सीख के पार्लर भी करूंगी। ठीक है, आप स्विंग सीख लो, बट वो बहुत क्लियर थी कि मुझे ब्यूटी का काम करने में बहुत मजा आता है, बट हो सकता है उनके परिवार वाले इस वक्त अलाउ ना कर रहे हो या सीट खाली ना हो ब्यूटी और वेलनेस में, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना ब्यूटी का बाद में रखा। तो उनको बहुत क्लियर था कि उनको मजा किस चीज में आता है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स को एडवांटेजेस में कैसे बदल सकती हूँ, मुझे अपना गोल अचीव करने के लिए फाइनेंसेस क्या क्या चाहिए होंगे, और इन फाइनेंसेस को मैं अरेंज कैसे कर सकती हूँ। क्या कभी कभी हमारा गोल ऐसा होता है कि हमें लगता है ये फुलफिल नहीं हो सकता, कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई करना चाहती हूँ लेकिन वो तो महंगी होती है, मैं पायलट बनना चाहती हूँ लेकिन वो तो बहुत महंगी होती है। उसको आप पहले डिफाइन करेंगे तभी तो, आप पहले पहचानेंगे तभी तो आप उसको ब्रेक डाउन करके उस लेवल तक लेके आएंगे कि उसे पूरा किया जाए। तो पहला ऑब्जेक्टिव है उसको पहचानना कि वो ऐसा काम क्या है जो आप रोज उठ के करीबन 30, 40, 50 साल तक आगे करना चाहते हैं। जो बच्चे आज 20 साल के हैं वो कम से कम 60 साल तक काम करेंगे, तो 20 से 60 साल की जो जर्नी, यानी कि 40 साल अगर आपको काम करना है, मैं मिनिमम की बात कर रही हूँ, आजकल तो 80, 90 साल के भी जो हमारे मेंटर्स हैं वो भी हमें गाइड करते हैं अभी तक, तो आप सोचिए काम करने की तो कोई उम्र ही नहीं होती। तो अगर आपको 40, 50, 60 साल तक आगे काम करना है तो ऐसा क्या काम है कि रोज सुबह उठेंगे तो उतने ही खुशी से आगे बढ़ेंगे, चैलेंजेस रोज आएंगे, ऐसा नहीं है कि मेरी मर्जी का काम होगा तो चैलेंज नहीं आएगा, चैलेंज तो रोज आएंगे, क्योंकि चैलेंज के बिना तो आई थिंक लाइफ का सर्कल पूरा नहीं है, लेकिन उन चैलेंजेस को हम तभी एंजॉय करेंगे अगर काम हमारी पसंद का है। अगर आज वो काम हम नहीं कर सकते तो मैं उनकी तरफ आगे कैसे बढ़ सकती हूँ, उनको भी हमें छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना है। बट ज्यादातर लोग जो है ना, फियर ऑफ फेलियर, यानी कि मैं कहीं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, अगर मैं सिलाई सीखने गई और मेरी सिलाई सबसे अच्छी नहीं हुई तो शायद मेरे पास कोई ग्राहक नहीं आएगा, अगर मैंने अचार बनाना सीखा और मेरे अचार खराब हो गए तो हो सकता है मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, हो सकता है मैंने बिजनेस करना शुरू किया और मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आया तो मेरे पैसे तो खराब हो जाएंगे तो मैं नहीं करूंगी। ये जो फियर ऑफ फेलियर है ये हमें आगे बढ़ने से हमेशा रोकता है, और फियर ऑफ फेलियर हम सब में ही है। ये लाइफ स्किल के सेशन देने से पहले मेरे अंदर फियर ऑफ फेलियर था, अगर लोगों को मेरे सेशन में नींद आने लग गई तो मैं क्या करूंगी, अगर उनको मेरे सेशन अच्छे नहीं लगे, अगर मेरी बातें समझ नहीं आई, अगर वो सिर्फ स्क्रीन ऑन करके बैठे रहे और मेरी बात का कोई मतलब नहीं समझे तो मुझे कैसे लगेगा। तो ये फियर ऑफ फेलियर था मेरे अंदर, पर मैंने अपना काम पूरी जस्टिफिकेशन से किया, जो टॉपिक था उसे समझा, उसमें जितनी मेरी समझ थी उसके सारे जो पॉइंट्स थे मैंने लिखे। हो सकता है एक बच्चे को भी या एक बेनिफिशियरी को भी उससे फायदा हो जाए, तो वो जो फियर ऑफ फेलियर है ना मेरे, उससे मैं मोटिवेट हुई कि चलो एक शायद मेरी 4-5 घंटे की मेहनत से हो सकता है एक इंसान को कुछ मोटिवेशन मिल जाए और वो अपने इमोशंस को पॉजिटिव की तरफ मोड़ना चाहे, और हो सकता है वो अपना गोल डिफाइन करने में सक्षम हो सके। तो इसलिए फिर वो फियर ऑफ फेलियर को मैंने कन्वर्ट किया कि नहीं, मुझे ये काम करना है तो मुझे अच्छे से करना है, फियर ऑफ फेलियर से उसको बांध के नहीं रहना। बट हम सभी आगे बढ़ने से डरते हैं, कुछ नया काम करने को बोलो तो हमें डर लगता है कि दूसरे लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, हमारे ऊपर हमारे लिए ओपिनियन बनाएंगे, लेकिन हमें क्या करना है हमारे लिए वो बहुत जरूरी है। सो नेवर बी शाय, नेवर बी अफ्रेड, मतलब कभी डरिए मत कि हम हार जाएंगे, हमें हमें लोग हंसेंगे, हो सकता है मैं फेल हो जाऊं। फेल होंगे ही होंगे, आप कितनी बड़ी कंपनी के लोगों की बायोग्राफीज पढ़ी, हमारी लाइब्रेरी में इतनी बायोग्राफीज हैं, ऑटोबायोग्राफीज हैं, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ होगा। बड़ी कंपनी उठा लीजिए जिसके जो बायोग्राफी है उसमें ये नहीं लिखा होगा, ये ऑटोबायोग्राफी में, कि मैं कभी फेल ही नहीं हुआ या मैं कभी फेल ही नहीं हुई। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो कभी फेल नहीं हुआ होगा, कुछ ना कुछ कदम तो गलत हुए ही होंगे। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बड़े बन गए और एक छोटी सी गलती से भी वापस नीचे आ गए। ऐसे बहुत किताबें हमने पढ़ी हैं कि कैसे बड़े बड़े एम्पायर्स जो हैं वो नीचे आ गए। तो फेलियर तो पार्ट ऑफ सक्सेस है ही, अगर आप सक्सेस का कर्व पढ़ेंगे तो सक्सेस में फेलियर कहीं ना कहीं तो आएगा, लेकिन क्या हम उससे डर के रुक जाएं? ये आपकी मर्जी है, अगर आपको डर के रुकना है तो आप डर के रुकिए, बट अगर आपने हमारे सेशन ज्वाइन किया है तो हम कभी भी नहीं कहेंगे कि आप फियर ऑफ फेलियर से रुक जाएं, थम जाएं। कोशिश करिए उसको आइडेंटिफाई करें, उन जो फेलियर्स हो सकते हैं पहले से उसकी तैयारी करके हम चले आगे, रास्ते में अगर रुकावटें आएंगी तो उसको मैनेज करना हमें सीखना है। आप जो भी अकम्प्लिश करना चाहते हैं, मैम ने भी सबको बताया, एक डायरी जरूर मेंटेन करिए, जैसे कि इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, हम उसको छोटे छोटे स्टेप्स में अगर तोड़ेंगे, यानी कि हमें एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने के लिए उस बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ना बहुत जरूरी है। अगर मैं ये कह रही हूँ कि 1 साल के अंदर अंदर मैं अपनी बुटीक खोल लूंगी, तो उसको मुझे ये स्टेप्स में तोड़ना पड़ेगा, ठीक है बुटीक खोलूंगी तो आज से 3 महीने तक तो पहले मैं बेसिक स्टिचिंग सीखूंगी, बेसिक स्टिचिंग सीखने के बाद मुझे 10 या 15 लोगों के फ्री में बनाने पड़ेंगे, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मेरी क्वालिटी ठीक है कि नहीं ठीक है। हो सकता है मुझे पैसे मिले उस चीज के, हो सकता है मुझे मेरे मुंह पे आके फेंक दे कि ये क्या क्वालिटी तुमने दिया है, क्या मैं रुक जाऊंगी तब? ये आपकी मर्जी है। अगर आप सीख के आप बोलेंगे अच्छा ठीक है मैं दोबारा ठीक करके देती हूँ, मैं इसके कोई पैसे भी नहीं दूंगी, ये आपके ऊपर है, मैं ये नहीं कह रही आप ऐसा ही करिए, लेकिन अपने लक्ष्य को ब्रेक करिए कि अगर 1 साल में बुटीक खोलना है तो पहले 3 साल में मेरे को बेसिक स्टिचिंग सीखनी है। अब मैं बेसिक स्टिचिंग पे करके सीख रही हूँ कि रीड के सेंटर पे जाके सीख रही हूँ, जहाँ पे मैं सेफ भी हूँ, मुझे अच्छे टीचर मिले हैं। बेसिक के बाद मैंने 3 मंथ्स का एडवांस स्टिचिंग लिया, उसके बाद मैंने छोटा बुटीक खोला, और उसके बाद 1 साल के अंदर अंदर मैंने थोड़े थोड़े पैसे जमा करके बड़ा बुटीक खोला। 1 साल में नहीं खोल पाई, हो सकता है 1.5 साल में खोला, अपने गोल को रीएडजस्ट करिए। तो मेरा मतलब यह है कि अपने गोल को पहले डिफाइन करिए और उसे छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़िए, और हमेशा उसे रिविजिट करिए कि जो मैं करना चाहती थी वो मैं कर पाई कि नहीं कर पाई। जहां फेलियर हुआ उस फेलियर को एक्सेप्ट करिए, आइडेंटिफाई करिए, उसे कुछ सीखिए। एवरी टाइम वी हैव समथिंग टू लर्न फ्रॉम आवर फेलियर, फ्रॉम द ऑब्स्टेकल्स, फ्रॉम द रोड ब्लॉक्स, जो भी बीच में रोड ब्लॉक्स आए हैं, अनहैप्पी सिचुएशंस आई हैं, कोविड आ गया, कोई प्रॉब्लम और आ गई, तो उसको आइडेंटिफाई करते हुए हमें उसको पॉजिटिव में ही बदलना है। यही एक रास्ता है आगे बढ़ने का, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यहाँ पे हम सॉफ्ट स्किल की बात करें, बार बार इमोशन आ जाते हैं कि हमें घबराना नहीं है, उनको नेगेटिव इमोशंस में नहीं बदलना है। सॉरी मैंने टाइम भी नहीं देखा। यहाँ पे कुछ किताबें हैं जरूरी नहीं है ये सारी किताबें हमारे लाइब्रेरी में हो, लेकिन इसके कई कई जो एक्सर्ट्स हैं, यानी कि जो जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, वो ऑनलाइन फ्री अवेलेबल है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बाकी किस लैंग्वेजेस में है मैं रिसर्च कर सकती हूँ अगर किसी को इंटरेस्ट है तो। और ये कोई एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है, मैं ये बताना चाह रही हूँ ऐसी बहुत सारी किताबें हैं जो हम चाहें तो उनको पढ़ के हम और अच्छे से अपना गोल डिफाइन करके आगे खुद से बढ़ने की कोशिश कर सकते हैं। लाइफ इज टू शॉर्ट नॉट टू फॉलो योर ड्रीम्स, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव, कि अपना गोल आइडेंटिफाई करिए और अपने पॉजिटिव इमोशंस को पहचानिए। नेगेटिव इमोशंस को हम किस तरीके से पॉजिटिव में चेंज कर सकते हैं, दैट इज अनदर थिंग। सो दिस वॉज अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन सेशन ऑन द 10 ईज। जो पहला ई था हमारा इमोशनल इंटेलिजेंस का, आज हमने वो कवर किया है। अगले सेशन में मैम का लीडरशिप का सेशन होगा, सेकेंड ई पे हम उसके बाद बात करेंगे, राइट? अब इसके साथ कोई अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना चाहता है या कोई गोल, या आप जिसने डायरी रखनी शुरू करी है कोई फीडबैक देना चाहता है? बिकॉज क्या है ना, हम सुन के बंद कर देंगे ये जूम सेशन और कहीं आगे नहीं बढ़ पाएंगे, जहां थे वहीं पे ही रहेंगे। इसलिए वी शुड बी एनकरेजिंग ईच अदर टू इंटरैक्ट। सो आई एम स्टॉपिंग नाउ एंड आई एनकरेज एवरीबडी, आपके साथ बेनिफिशरीज भी अगर हैं तो उनको भी एनकरेज करिए कि कुछ इस इन सेशन से अगर समझ में आया या कुछ सीखा, और मुझे भी फीडबैक दीजिए कि अगर ये सेशन बहुत वर्बोस था, यानी कि वर्ड्स बहुत ज्यादा थे, तो मैं इसे और कम और सरल तरीके से प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगी।
2: हेलो मैम, इट्स संगीता फ्रॉम बाइरेडीपल्ली.
0: हेलो संगीता जी।
2: यस मैम, जो आपने अभी इमोशंस के बारे में बताया, आई डोंट रिमेम्बर, कोविड टाइम पे मैंने एक चैप्टर था घृणा का महत्व, हिंदी में किसी बच्चे को एक्सप्लेन करना था. दैट वाज अ डिग्री स्टूडेंट, मुझे याद नहीं है. बट वो इमोशंस जो हमारा हेट्रेड इमोशंस है, जैसे आप एक्सप्लेन कर रही थी, उसको बहुत डिटेलली उस चैप्टर में एक्सप्लेन किया था कि जब तक हम घृणा नहीं करेंगे तो जो बुराई है उसके प्रति लोगों का अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, नहीं तो उससे डर के, अरे लोग क्या बोलेंगे क्या सोचेंगे, इससे डर के गलत काम नहीं करेंगे. वो पूरा बहुत अच्छे से था. तो आप जब समझा रहे थे तो वो चैप्टर में रिकॉल कर रही थी मैम.
0: एब्सोल्युटली राइट। हम कभी कभी इतना डर जाते हैं नेगेटिव इमोशन से ना। जब मैंने पूछा, मैं 100% ये श्योर हूँ कि आज जो 60 लोग हमारे साथ जुड़े हैं सभी अच्छा नहीं फील कर रहे। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो हमें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई ऐसी परेशानी। सबको ये टाइम सूट करता है ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि सभी लोग अपना वक्त निकाल के एग्जैक्टली 3 बजे आ गए और वो अच्छा भी फील कर रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। लेकिन हम नहीं बोला नहीं, क्योंकि हम डरते हैं कि हम कुछ नेगेटिव बोलेंगे तो नेगेटिव ही सोचा जाएगा। भाई मेरे को नहीं, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैंने सुबह खाना नहीं खाया वक्त से, मेरा सिर में दर्द हो रहा है, मेरा नहीं मन है सेशन अटेंड करने का, मेरा नहीं मन है वीडियो पे आने का, मेरा नहीं मन है कुछ बोलने का। तो वो हमारा मन है, हम उसको नहीं चेंज कर सकते। मैं आपकी जिंदगी में आके उसको चेंज नहीं कर सकती, लेकिन ये हम पे है कि हम उसे मैनेज कैसे करेंगे। ये हम पे है कि दिन भर में जो हमारे सामने आता है हम उसे एक्सेप्ट करके अपनी लाइफ में कुछ बदलाव करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं, ये सब हमारे हाथ में, क्योंकि ये हमारी लाइफ है।
2: नाउ फॉर दिस आंसर मैम, कि आप कैसी हैं. मैं खुश हूँ मैम.
0: आप खुश हैं? अच्छा, वेरी गुड। और आप खुश हैं तो बहुत बहुत अच्छी बात है, बिकॉज पॉजिटिव इमोशन से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जो बिहेवियर है, मतलब इमोशन से हमारे एक्शन होते हैं। मैं जब ये सेशन बना रही थी तो मैंने कई वीडियोस और कई साइकोलॉजिस्ट थी जो थ्योरीज थी उनको पढ़ने की कोशिश की, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को ना हल्के में नहीं लेना चाहिए, और ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। और मेरे ब्रदर ने तो इस सब्जेक्ट पे पीएचडी, डबल पीएचडी करी है ह्यूमन साइकोलॉजी पे, तो वो अभी भी पढ़ रहा है, उसको करीबन 12 साल हो गए हैं ये सब्जेक्ट पढ़ते हुए, और अभी भी वो पढ़ रहा है, प्रैक्टिस भी कर रहा है और पढ़ भी रहा है। तो हम आधे घंटे के सेशन में तो इस चीज पे बात भी नहीं कर सकते, और मैं तो इस चीज पे बोल भी नहीं सकती क्योंकि मेरी कोई अथॉरिटी नहीं है। तो जब हम इन चीजों पे मैं पढ़ रही थी तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे सामने आई कि जो पॉजिटिव इमोशन है इमोशन जो बना है ना, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेराइवेटिव है. इंग्लिश का जो वर्ड है इमोशन, ये एक फ्रेंच वर्ड का डेरिवेटिव है. इमोशन यानी कि जो हम फील कर रहे हैं उससे हमारा मोशन होगा, उससे हमारा रिस्पॉन्स होगा. जो हमारा इमोशन है उससे हम रिस्पॉन्ड करेंगे. हम खुश हैं तो सब खुश हो जाएगा, हमारे आसपास के लोग खुश होंगे, हम खुशियां फैलाएंगे. अगर हम उदास हैं, गुस्सा है, अब ये इमोशन भी जरूरी तो है हमारे लिए, ये हमारी लाइफ से कोई ले नहीं सकता. तो अगर मैं चिड़चिड़े मूड में हूँ तो अगर कोई बच्चा आके, मेरा बेटा आके मुझे हग भी करता है, पीछे डर, मेरे को नहीं करना, मेरा मूड नहीं है, तो उस बेचारे की क्या गलती है? दिन तो मेरा खराब गया है और चिड़चिड़ी तो मैं हूँ, इमोशन तो मेरा खराब था, मैंने अपना खराब इमोशन उसको भी पास ऑन कर. ऐसा ही सेम रिलेशनशिप इश्यूज जो है वो इमोशन से ही पैदा होते हैं, क्योंकि रिलेशनशिप बने ही इमोशन पे हैं. चाहे वो प्रोफेशनल इमोशन है, सोशल इमोशन है, फैमिली इमोशन है, घर के है, हस्बैंड वाइफ, सास बहू, मदर डॉटर, मदर सन, जितने हैं रिलेशनशिप वो इमोशन पे ही बने. तो इसकी अहमियत तो हम हटा नहीं सकते, इसको हम सिर्फ मैनेज कर सकते हैं. आपके लिए मैं नहीं मैनेज कर सकती, आप मेरे लिए नहीं मैनेज कर सकते. अपने अपने पहचान की और अपने अपने मैनेज करने. मैंने बहुत बोल लिया, अब आप लोग प्लीज कुछ शेयर करिए. हेलो
2: हेलो मैम, गुड आफ्टरनून।
0: स्वाति जी, वेरी गुड आफ्टरनून, आप कैसे हैं?
2: मैं बढ़िया हूँ मैम, आप कैसे?
0: मैं अच्छी हूँ, मुझे खुशी हो रही है. इतना सारा इंफॉर्मेशन जो मैंने इकट्ठा किया था पिछले 1.5 दिन में, मैंने सारा शेयर कर दिया. कुछ कुछ चीजें बच गई हैं, मैंने बहुत सारा पढ़ा था लेकिन फिर भी काफी कुछ शेयर कर दिया, तो मुझे अच्छा लग रहा है.
2: यस मैम, काफी टाइम ना मतलब कुछ चीजों पे ऐसी धूल सी जम जाती है, तो वो सेशन के जरिए आगे चल के आता है हमारे सामने और फिर से लगता है कि नहीं, हमें ये ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए था। और काफी टाइम पे तो मैम ऐसे होता है कि निगेटिव जो चीजें हमारे साथ घड़ती है सुबह से लेकर शाम तक, वो ज्यादा टाइम तक हमारे माइंड में घूमती रहती है, और जो कुछ अच्छी बातें होती है ना तो वो बहुत कम टाइम के लिए रहती है। तो ऐसा कुछ बताइए कि हम निगेटिव चीजों के जल्दी से भूल जाए।
0: ये जब मैं रिसर्च कर रही थी इस टॉपिक पे, ये सबसे पहले उठ के आ रहा था कि नेगेटिव इमोशंस जो है ना वो सबसे ज्यादा भारी हो जाते हैं. हो सकता है नेगेटिव इमोशन एक होगा, वो इमोशन या सिचुएशन हुई, मान लीजिए लड़ाई हो गई सुबह सुबह किसी से, तो वो हमारा इमोशन नेगेटिव हो गया. या कोई बीमार हो गया घर में तो नेगेटिव इमोशन हो गया हमारा. अब वो नेगेटिव इमोशन पूरा दिन हमारे साथ रहता है, पूरा दिन, पूरे दिन में चाहे 100 से भी ज्यादा अच्छे एक्सपीरियंसेस आए हों, लेकिन जो उसका भार है, जो उसका बोझ है यहाँ पीछे दिमाग में, वो घर कर जाता है, उसको हम जाने ही नहीं दे सकते. अब ये डॉक्टर्स ने, साइकोलॉजिस्ट ने नेगेटिव इमोशन पे बहुत ज्यादा स्टडी करी है. इस पे आप काउंसलर्स जो होते हैं, जो आपने सुना होगा कि काउंसलिंग के लिए जाना पड़ता है. हमारे यहाँ तो इंडिया में मेंटल इलनेस को तो मतलब इतना बढ़ावा नहीं दिया जाता, इसकी इसके बारे में ज्यादा बात भी नहीं करी जाती, लेकिन बाहरी देशों में ये एक कॉमन टॉपिक है. अगर मुझे डिप्रेशन है या मुझे दुख है या मैं नेगेटिव इमोशन से घिरे रहती हूँ, तो हम वो लोग डरते नहीं हैं अपने साइकोलॉजिस्ट के पास जाने में या फिर ऐसे एक्सपर्ट्स के पास जाने में जिनसे वो अपनी बात कर सके. एक एक घंटे का सेशन होता है और वो उनसे बात करते हैं. हम यहाँ पे अपनी सहेलियों से बात करके मन हल्का कर लेते हैं. ऐसा होता है, एक सहेली सबकी होती है जिससे अपना पूरे दिन की भड़ास निकाल दो, ऐसा ऐसा ऐसा हुआ, इसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, अब ठीक लग रहा है, अब मुझे ठीक लग रहा है, अब ठीक. तो ये एक्चुअली हम रियलाइज नहीं करते, ये हमारा नेगेटिव इमोशन मैनेजमेंट का तरीका बन गया है. कुछ कुछ लोग होते हैं अपनी मदर से बात करके बहुत खुश होते हैं, या कुछ अपनी डॉटर से, क्योंकि वो एक ऐसा बॉन्ड है कि कोई चेंज नहीं कर सकता. तो हम किसी से बात कर लेते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है. मैंने कई कई लोगों को देखा है कि वो भगवान की मूर्ति से बात करते हैं कि भाई हम किसी से नहीं बात कर सकते. कभी कभी ना भगवान के पास बैठ के वो अपने मन की पूरी बात कह देते हैं कि अब मैंने आपको बता दिया, अब आप देखो कि क्या हो सकता है. वो और कुछ नहीं है, वो अपने दिल की जो बातें हैं वो बाहर निकाल रहे हैं. बाहर निकाल रहे मतलब उसको एक्सेप्ट करे कि हाँ ये चीजें मुझे तकलीफ दे रही है. जब हम एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो बोझ कम होने लगता है. हमारे यहाँ प्रॉब्लम यह कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कई बार कि हमारी प्रॉब्लम क्या है. वो एक सिचुएशन प्रॉब्लम है, ये क्या मैं उसे सॉल्व नहीं कर सकती? अगर मैं उसे नहीं सॉल्व कर सकती तो वैसे भी दुखी होने का मेरा कोई रीजन ही नहीं। अगर मैं उसे सॉल्व कर सकती हूँ तो मुझे ये देखना है कि परेशान होने की बजाय मैं ऐसा क्या करूं कि मैं उसे सॉल्व कर सकूं। कुछ लोग डायरी मेंटेन करते हैं अपने दिन भर की, जो भी दिन भर की परेशानियां हैं, अच्छी चीजें है, उसमें जरूर लिखते हैं। ऐसे बहुत लोग हैं जो सीक्रेट डायरी मेंटेन करते हैं, वो किसी को भी पता नहीं होता, सीक्रेट डायरी होती है, आज के दिन की ये चार बातें हैं वो उसमें मैंने लिख दी और मेरी सीक्रेट डायरी सिर्फ मेरे पास रहेगी। ये भी एक तरीका होता है कुछ लोगों का। अब ये तरीका आपका क्या है ये तो आप ही को ढूंढना पड़ेगा, राइट। लेकिन नेगेटिव इमोशन को अपने ऊपर हावी होने देना एक वक्त से ज्यादा वो आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ चारों को खराब कर सकता है। फिजिकल हेल्थ कैसे? आप परेशान रहेंगे, डायबिटीज का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, सिर में दर्द, चक्कर आना, डिप्रेशन होना। फिजिकल कैसे? भूख नहीं लगेगी आपको, गुस्से में है, परेशान है, डिप्रेशन में है, तो फिजिकल हेल्थ वैसे ही खराब हो जाएगी। इमोशनल हेल्थ कैसे? सब आप दुखी हैं, आपके बच्चे दुखी रहेंगे, आप चिड़चिड़े रहेंगे, आपके हस्बैंड, आपकी मदर सब आपसे थोड़ा थोड़ा थोड़ा दुखी, क्यों तो दुखी रहती है, पता नहीं क्या है, बोलती भी नहीं है क्या प्रॉब्लम है ना। प्रोफेशनल कैसे? आप अपने काम पे ही ध्यान नहीं दे पाएंगे। अब आपके इमोशंस तो कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन उसे आइडेंटिटी, उसको पहले अपनाना बहुत जरूरी है कि, और ये मानना बहुत जरूरी है कि सिर्फ मैं ही ऐसी नहीं हूँ शायद कि जिसको इतनी बड़ी दिक्कत है, और भी लोग हैं दुनिया में जो शायद इससे भी बड़ी बड़ी दिक्कतों से, इसमें अमीर गरीब का कोई वो नहीं है। हो सकता है बहुत अमीर लोग हैं, पैसा भरपूर है, फिर भी नेगेटिव इमोशन बहुत सारे हैं। और एक इंसान है जो अपना काम करता है, सिंपल लिविंग है, रोजी रोटी है, घर परिवार है, और आप देखेंगे वो इतना खुश है, इतना खुश है कि पूछिए ही मत। वो कोई मेटीरियलिस्टिक चीजों से खुशी नहीं कभी कभी भी बंधी होती। नेगेटिव पॉजिटिव इमोशंस सारे हमारे अंदर हैं, कितनी तवज्जो हमें किसको कब किस वक्त पे देनी है, और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल भी, जैसा कि संगीता जी ने भी कहा कि जो नेगेटिव इमोशन है वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, टू कम बैक टू से कि पॉजिटिव इमोशन की महत्व क्या है हमारी लाइफ में, उनसे दोस्ती करने के लिए नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होना भी बहुत जरूरी है।
2: एंड वन मोर थिंग मैम, मेरे साथ तो ऐसे होता है मोस्टली, आई थिंक सबके साथ, जब हम हमारे नेगेटिव इमोशंस की वजह से जब दुख है किसी के साथ शेयर करते हैं तो वो कम हो जाता है, एंड हैप्पीनेस वो डबल हो जाती है व्हेन आई शेयर विद समबडी एल्स।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, ये फॉर्मूला भी है कहीं पे, मैंने ये भी पढ़ा था, ऐसा हैप्पीनेस का फॉर्मूला एंड जो नेगेटिव एंगर का जो फॉर्मूला है, बिल्कुल आपने जो बोला ऐसा है, एक उन्होंने डिराइव करके लिखा हुआ। मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ साइकोलॉजी में कि वो फॉर्मूला डिराइव कर दूं, लेकिन आई रेड अबाउट इट।
2: यस मैम, जब गुस्सा होता है बर्स्ट हो जाता है तो वो अपने आप कम हो जाता है, और दुख रहते हैं किसी से बोल के रो देते हैं तो भी वो इमोशन बस कम हो जाता है, और हैप्पीनेस किसी से
0: लेकिन
2: भी कितना भी शेयर करो डबल ट्रिपल होता जाता है।
0: हमें ये ध्यान रखना है कि गुस्से में हम गुस्सा कर किस पे रहे हैं, कहीं गुस्से में हम ऐसा गुस्सा किसी पे ना कर दें कि जो हमारा पूरा रिलेशनशिप उससे खराब है। उसको इमोशनल इंटेलिजेंस कहते हैं, उस पॉइंट पे, उस ट्रिगर पॉइंट पे हमारा रिएक्शन क्या है, हमारा रिएक्शन यानी कि हमारा एक्शन क्या है, उसको पहला ई जो मैम ने कल बताया था, EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, इमोशनल क्वोशंट, उस बैलेंस को कि नेगेटिव इमोशन पॉजिटिव इमोशन का जो वो बैलेंस है, कहाँ भाई नेगेटिव इमोशन कहीं ना कहीं तो निकलेगा, या तो मैं रो के निकालूंगी, गुस्सा करके निकालूंगी, भड़कूंगी किसी पे, या लिख के, या किसी को बोल के, या किसी और तरीके से नेगेटिव इमोशन तो निकलेगा ही निकलेगा। नहीं निकलेगा तो वो प्रेशर कुकर हो जाएगा, फट जाएगा किसी को, तो उसको निकलना भी जरूरी है। बट उसको मैनेज कैसे करेंगे, और मैनेज करने का तरीका हम सबका अपना है, और उसका रिएक्शन का एक्शन भी हमारा अपना है, और उसका रिजल्ट भी हमारा अपना है, राइट। बट इस चीज को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें लाइफ में आगे बढ़ना है तो हमारे को गोल डिफाइन करने के लिए अपने आप को पॉजिटिव की तरफ कैसे लेके जाना है। तो आज हमने दो चीजों को रिलेट करा है, हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो, कॉम्प्लेक्स हो, हम दोनों चीजों को अलग अलग भी समझ सकते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस और गोल सेटिंग, कि हमें लाइफ में गोल कैसे सेट करना चाहिए।
1: हेलो मैम,
0: हाँ जी ज्योत्सना जी,
1: मुझे भी आज ये फील हुआ है कि मैं भी अपना जो नेगेटिव इमोशन है वो मतलब कैसे यूटिलाइज करती थी। आज तक पहले मुझे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, जैसे मैं मुझे कभी बहुत ज्यादा किसी से लड़ाई हुई, गुस्सा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा काम करती थी,
2: जितने मेरे पेंडिंग्स काम होते थे मैं सारे कंप्लीट कर देती थी उस दिन, जबकि मैं वैसे भी बहुत अच्छा करती थी ऐसा नहीं है, लेकिन जिस दिन मेरे किसी से गुस्सा हो गया या किसी से फाइट हो गई या कोई बात हुई तो मैंने उस दिन सारे पेंडिंग काम कंप्लीट कर दिए। तो मुझे आज पहली बार ये आइडेंटिफाई हुआ है कि जब मैं गुस्से में आती थी तो मैं ज्यादा काम करती थी। तो अब मुझे ये चीज और याद है, अंडरस्टैंड हो रहा है कि मुझे अपने नेगेटिव इमोशन को और कैसे बैलेंस करना है और कैसे आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं मैम जो लोग बहुत डरते हैं कुछ भी मतलब करने से पहले, करना चाहते हैं प्रैक्टिस करते हैं और करने के बाद उन्हें ये डर लगता है कि हम कर नहीं पाएंगे। वैसे तो ये डर सबके अंदर होता है,
0: हम सब
2: लेकिन सबके अंदर होता है वन टू ऑल, अपने अपने लेवल पे मैम सबके अंदर होता है, लेकिन स्टूडेंट्स को फिर हम धीरे धीरे धीरे धीरे पॉजिटिव करने की कोशिश करते हैं। पर ठीक है, आज हमें और गाइडेंस मिले कि वो अपना स्ट्रेस कैसे निकाल सकते हैं, कैसे उसको चेंज कर सकते हैं, कैसे गाइड कर सकते हैं। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा आपका सेशन। थैंक
0: थैंक यू।
2: यू
0: मेरी
2: सो
0: मेरी एक फ्रेंड थी, उसकी मदर जब गुस्से में आती थी तो बहुत अच्छा खाना बनाती थी। तो जिस दिन उसका खाना बहुत अच्छा बना होता था ना, तो हम उसको कहते आज मम्मा गुस्से में थी क्या। ऐसा बहुत होता है कि हम अपने नेगेटिव इमोशंस को भी पॉजिटिव में चेंज कर पाते, हमें पता नहीं होता लेकिन हम वो कर सकते हैं।
2: जी।
0: हाँ जी तुषार, आप बोलना चाह रहे?
1: एक साल पहले आप हमारा जो कारेगांव का सेंटर था पुणे में, वहाँ आप मैम आई थी, तब आपसे जो बात हुई थी मैम, उससे जो पॉजिटिव वाइब्स हमें मिले थे, वो आज भी हमें काम करने के लिए इनकरेज कर रहे हैं। हर हमारा जो सेंटर है सर मैम, यहाँ पर इंडस्ट्री लेबर और माइन वर्कर्स के बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो उन बच्चों में जो पुअर बैकग्राउंड होते हैं उनका कोई भी एजुकेशन की वैल्यू नहीं होती उनके घर वालों को, तो यहाँ पर काम करने पर जो बच्चे आते हैं, तो उनको नहीं क्या पुराने जमाने में जो टीचर थे हाथ में लाठी लेकर बड़ा बड़ा चश्मा पहनते थे और गुस्से से बोलते थे, ऐसा ऐसा कंसेप्ट उनके दिमाग में बैठ गया था। लेकिन जब से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पर ट्रेड के साथ, तो जो तारे जमीन पर में जो आमिर खान सर ने जो कैरेक्टर प्ले किया था, कि ऐसा भी टीचर होता है जो बच्चों के साथ उनका उनके जैसा रहकर काम करता है, और जो बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो डरते हैं सभी चीजों से, नई चीजें करने में, तो उनके साथ वैसा रहकर इनकरेज करके उनके अंदर भी जो क्वालिटी होती है वो बाहर निकलने का काम आपके जो सेशंस होते हैं मैम, उससे हमें इनकरेजमेंट होता है, मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच मैम, आप जो मोटिवेट करते हैं हमें और गाइडेड करते हैं, इसलिए
0: थैंक यू तुषार। हमने ये देखा है कई बार बच्चे डरते हैं साइकिल चलाने से क्योंकि मैं गिर जाऊंगा या गिर जाऊंगी, लेकिन पेरेंट्स जो है वो छोड़ तो नहीं देते ना, वो फिर भी इनकरेज करते, नहीं आप साइकिल चलाओ, गिरोगे तो क्या हुआ, कोई वहां पे कुछ बांध देता है, कपड़ा बांध देता है, अच्छा घुटने नहीं छिलेंगे, कभी हेलमेट पहना देते, अच्छा चोट नहीं लगेगी, तो हम उसको मैनेज करने का तरीका, लेकिन हम रुक तो नहीं जाते ना। तो हमें ये कोशिश करनी है कि हम फियर ऑफ फेलियर नहीं लेके आएंगे, फेल तो होना ही है, लेकिन फियर ऑफ, पहले से ही क्यों मान ले कि हम फेल होंगे। अभी पीछे कोई बातचीत चल रही थी तो हमने ये सुना था कि हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रहते हैं क्योंकि अर्थ की जो रेडिएशंस है वो खींच रही है हमको अपनी तरफ, ग्रेविटी खींचती है ना, तभी तो हम उड़ते नहीं रहते, हम अर्थ से चिपक के रहते हैं, जमीन पे रहते हैं। तो हम एक मैग्नेटिक एनवायरनमेंट में रह रहे हैं और जो हम सोचते हैं पावर ऑफ माइंड, वो बात कभी कभी सच हो जाती है। हम कहते हैं ना कि हम आज ये सोच ही रहे थे, अरे वो तो हो ही गया, क्यों? क्योंकि ये साइकोलॉजी में या कई कई किताबों में आप देखो कि पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, यानी कि जो हम सोचते हैं वो हम खींचते हैं अपनी तरफ, वो रेडिएशंस हमारी तरफ आती हैं और हम उसी रास्ते पे चल पड़ते हैं। तो अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तभी तो हम पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, पहले ही सोच लेंगे कि मैं फेल हो जाऊंगी, लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, तो वैसे ही नहीं कर पाओगे आप तो, है ना आप, मैं कोई भी नहीं कर पाएगा। मुझे इस टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता था, मैम ने मुझे बताया कि हम इस तरीके से करते हैं, हमने कल पढ़ाई करी, थोड़ा सा तो कुछ मैं निकाल के ला पाई, मैं नहीं कह रही कि मैं एक्सपर्ट हो गई इस टॉपिक में, बट मुझे भी नहीं पता था कि 34,000 इमोशंस होते हैं हमारे अंदर। मुझे लगता था गुस्सा हंसी खुशी यही 4 5 8 10 इमोशन होते हैं, पर सोचे मुझे भी कुछ पता चला, मैं अब और पढ़ूंगी इस बारे में, हो सकता है मैं भी जान पाऊं कि मैं हमेशा हंसती तो नहीं रहती, गुस्सा मुझे भी आता है, लड़ती मैं भी हूं, बट इन चीजों का हमारी जिंदगी पे क्या असर हो रहा है, वो चीज समझना बहुत जरूरी। तो आज पहला ई हम समझ के गए हैं, और अगर आप चाहें तो आज से लेके अगले सेशन तक आप ये लिख सकते हैं कि हर दिन के एंड सुबह आप कैसा फील करते थे और शाम को आप कैसा फील करते थे। जरूरी नहीं है इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, मराठी, तमिल, तेलुगु, जिस लैंग्वेज में आप लिखना चाहते हैं हम लिखते हैं। हम भी देखेंगे 34,000 इमोशन होते कैसे हैं, है ना। सो थैंक यू एवरीबॉडी मेरी बहुत सारी बातें सुनने के लिए। आई विश यू अ वेरी गुड वीकेंड, और आप एंजॉय करिए, अच्छा काम करिए, अपने सपनों को बड़ा करिए। ये सेशन जितने लोगों से शेयर कर सकते हैं करिए। हाँ
3: मैम, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ 2 मिनट।
0: जी, हाँ जी, बिल्कुल बोलिए सुमन जी।
3: जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू रीड इंडिया का और आप सबका, क्योंकि जो रीड से जुड़ जाता है तो मुझे नहीं लगता वो उसमें नेगेटिविटी इतनी रहती है, और हर वक्त रीड कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हम लोगों के साथ तैयार खड़ा रहता है। और इतना कुछ सिखाया कि कभी कुछ उदासी हो जाती है, कुछ नेगेटिविटी होती है हमारे साथ, तो हम उसको पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। और मेरी जो सबसे बड़ी, मुझे नहीं पता ये क्या है, कि जब मैं कभी उदास होती हूँ, कभी नेगेटिविटी मेरे अंदर आती है, तो मुझे लगता है कि मुझे किसी की हेल्प करनी चाहिए। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं उनके ऊपर अगर मैं थोड़ा सा ध्यान देती हूँ, तो उस चीज में मुझे हैप्पीनेस दिखाई देने लग जाती है अपनी आप ऑटोमेटिक ही। और ये सब शायद मैंने रीड से ही सीखा है और आप लोगों से सीखा है। थैंक यू मैम इसके लिए।
0: थैंक यू सुमन जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। चलिए अब वक्त हो गया, आप लोगों को भी इम्पोर्टेंट काम करने होंगे, तो अब हम सेशन क्लोज कर रहे हैं। ठीक है, बाय टू एवरीबॉडी।
4: मृदंगम ही उनकी धड़कन है, श्री तिरुवारूर भक्त वत्सलम, पद्मश्री 2026। तिरुवारूर 18वीं शताब्दी में कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति, संगीत ममूर्ति की जन्मस्थली।
5: मैं एक संगीत के वातावरण में पला बढ़ा। मेरी माँ तिरुवारूर तंजावुर क्षेत्र की एक प्रतिष्ठित संगीतज्ञ थी। जब मैं केवल 2.5 वर्ष का था, तब मुझे पिता की अनुपस्थिति महसूस हुई। कहा जाता है माँ एक पवित्र मंदिर के समान होती हैं, और मेरे जीवन में यह बात पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई। मेरी माँ ने अपने 3 भाइयों और हमारी जिम्मेदारी उठाई, छोटे छोटे संगीत कार्यक्रमों में प्रस्तुति देकर।
4: हर सुबह बालक भक्त वत्सलम अपनी माँ आनंद वल्ली की प्रार्थना और भक्ति गीतों की मधुर स्वर लहरियों के साथ जगता था। वो संगीत से मंत्रमुग्ध हो जाता। माँ ने उन्हें संगीत की शिक्षा देना शुरू किया। यही प्रारंभिक शिक्षा उनके जीवन भर की संगीत यात्रा की मजबूत नींव बनी। कुछ ही समय में वे अपनी माँ और मामा के साथ स्थानीय संगीत कार्यक्रमों में संगत करने लगे।
5: मेरे मामा तिरुवारूर कृष्णमूर्ति, मैंने उनसे जिद करके मृदंगम सीखना शुरू किया। वे मुझे सिखाना तो चाहते थे, लेकिन हिचकिचाते थे। संगीतकारों की आय नियमित नहीं होती थी। वे नहीं चाहते थे कि मुझे भी उन्हीं संघर्षों का सामना करना पड़े जिनसे वे गुजरे थे।
4: उस समय चेन्नई भारतीय शास्त्रीय संगीत का प्रमुख केंद्र बन चुका था। देश भर के महान विद्वान और कलाकार वहीं आकर बस रहे थे।
5: जब मैं मद्रास आया, तब मैं किसी को नहीं जानता था और न ही कोई सहारा था। मेरी माँ मेरे साथ आने में हिचकिचाई। मैंने एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया और बहुत आग्रह करके माँ को अपने साथ ले आया। मेरे लिए उन्होंने जो त्याग किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। उन्होंने मेरी खातिर उसी छोटे से कमरे में स्वयं को ढाल लिया। हम एक ऐसी बस्ती में रहते थे जहाँ छोटे छोटे घर एक दूसरे से जुड़े हुए। मैं पड़ोसियों को परेशान नहीं करना चाहता था, इसलिए खिड़कियों पर मोटे पर्दे लगाकर कमरे को ध्वनि निरोधित करता और घंटों मृदंगम का अभ्यास करता। लगातार 10 वर्षों तक यही मेरी दिनचर्या रही।
4: एक बार प्रसिद्ध गायिका M.L. बसंत कुमारी के साथ व्हाइट हाउस में प्रस्तुति के दौरान आयोजकों ने उनसे अनुरोध किया कि वे अपने माथे पर लगा पारंपरिक विभूति चिन्ह हटा दें, लेकिन भक्त वत्सलम ने इनकार कर दिया। उनके लिए वो उनकी पहचान और आस्था का प्रतीक था, और उन्होंने

0: கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக.
1: जो ज्ञान सीखने योग्य है उसे पूरी निष्ठा से सीखो और फिर जीवन भर उन्हीं सिद्धांतों के अनुरूप आचरण करो.
2: संगीत मेरी सांस है, मैं अगले जन्म में भी मृदंगम ही बजाना चाहूंगा.
1: श्री तिरुवारूर भक्तवत्सलम, पद्मश्री 2026.
3: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है. तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम. सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी.
4: हेलो, मेरा नाम रजनेश देवी है और मैं सावाद मोहम्मदपुर में रहती हूँ और मैं यहाँ की सरकारी डिस्पेंसरी में आशा वर्कर का काम करती हूँ. मुझे ये काम करके बहुत अच्छा लगता और इस काम से अलावा अब मैं थोड़ा अपना टाइम बचा के मैं अभी इसमें रीड इंडिया में आती हूँ. सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और मुझे यहाँ सीखने में बहुत अच्छा लगता है. यहाँ का स्टाफ भी बहुत अच्छा और हमारे साथ बहुत कोऑपरेट करता है. यहाँ पे लाइब्रेरी है, कंप्यूटर क्लासेस लगती है, सिलाई सेंटर है और यहाँ पे पार्लर का काम भी सिखाया जाता है जो कि बहुत ईमानदारी से और लगन से सिखाया जाता है. यहाँ का स्टाफ हमें सिखाने में हमारी बहुत मदद करता है और मैं थोड़ा बहुत समय निकलता है तो मैं यहाँ पे आती हूँ और मैं अपने एरिया में काम करती हूँ. मुझे वो काम करके बहुत अच्छा लगता है. पहले मैं कुछ नहीं करती थी, घर में ही बस बच्चों के साथ रहना, अपना करना. लेकिन अब मैं जब से मैं डिस्पेंसरी में जाती हूँ वहाँ पे मैं लोगों की मदद भी करती हूँ और हमें वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है और हम सीखते हैं और हम फील्ड में उसको बताते हैं. जिससे कि प्रेग्नेंट लेडीज है जो हॉस्पिटल में रूटीन चेकअप नहीं कराती है, हमारी मदद से वो लेडीज हॉस्पिटल में जाती हैं और अपना रूटीन चेकअप कराती हैं. बच्चों को इम्यूनाइजेशन कराते हैं हम 0 से 5 साल तक के बच्चों को, क्योंकि एक भी बच्चा टीके से छूटना नहीं चाहिए. और इसके अलावा हम फैमिली प्लानिंग पर भी ध्यान देते हैं. जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है उनके लिए हम NSV जो कि पुरुष नसबंदी है, इसमें बिना चीरे बिना टाके के नसबंदी होती है जिसे गवर्नमेंट उसको 1100 रुपए प्रोत्साहन राशि देती है. और महिला के लिए नलबंदी है जिसमें गवर्नमेंट उसको 250 रुपए देती है. ये एक दूरबीन द्वारा किया जाता है, एक टाका आता है, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है और महिला अपना आराम से रहती है. जिनकी फैमिली कम्प्लीट हो चुकी है वो ये है कि बार बार अबॉर्शन ना कराए, अपना ये मेथड अपनाए और अपने सुखी जीवन रहे. कहते हैं ना, छोटा परिवार सुखी परिवार. और पहले हम करते नहीं थे तो हमें भी अजीब सा लगता था, लेकिन जैसे जैसे हमने सीखा है हमें बहुत अच्छा फील होता है और हम दूसरों की मदद करते हैं तो इसमें हमें अपने ऊपर भी गर्व होता है कि हम भी कुछ लायक हैं. जब उस टाइम पे जब हम पहली बार घर से बाहर निकले थे तो हमें डर सा लगता था कि हम कैसे पब्लिक से बोलेंगे, कैसे बातें करेंगे. हमें ऐसा डर लगता था, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, क्या पता ये बंदा हमको क्या कह दे, ये डर था. लेकिन अब जैसे जैसे हमें, मुझे यहाँ पे 6 साल हो गए काम करते करते, अब मुझे किसी से कोई भय नहीं है. मैं अपनी बात रख सकती हूँ और दूसरों की बात भी मैं पूछ सकती हूँ, उनको पूछती हूँ, अपना बताती हूँ, तो उससे लोगों को मेरे पर विश्वास है और मुझे अब लोगों के ऊपर विश्वास हुआ है तो मैं बेहिचक घर से बाहर जा सकती हूँ. इसमें मेरे हस्बैंड मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं, मेरा साथ देते हैं. हम अगर कोई मदद कर रहे हैं तो दिन में भी कर रहे हैं तो ठीक है, अगर रात है तो मेरे हस्बैंड मेरे साथ मेरी मदद करते हैं. इससे महिलाओं को भी फायदा होता है और हमें भी ये महसूस होता है कि हम भी किसी के लिए कुछ कर सकते हैं. पहले जब हम नहीं करते थे तो हमें ऐसा लगता था क्या है, अब ऐसा है कि थोड़ा मैं भी कमाती हूँ, थोड़ा मेरे हस्बैंड भी कमाते हैं तो मुझे खर्चने में कोई दिक्कत नहीं आती है. मैं अपने फैसले अपने आप भी ले सकती हूँ और मैं महिला को ये ही समझाती हूँ कि वो भी अपने पैरों पे खड़ी होए और अपने लिए लड़े. अपने लिए तो कम से कम लड़े ही कि क्या अच्छा है क्या बुरा, उसमें ये होना चाहिए.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण

समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: इसी कड़ी में मैं बुलाना चाहूंगी शैलजा जी को. शैलजा जी आगरा से आए हैं हमारे साथ और करीबन पिछले 10 साल से जुड़ के हमारे साथ काम कर रहे हैं. सो शी विल शेयर हर एक्सपीरियंसेस विद ऑल ऑफ अस.
1: I am Shailaja from Andhra Pradesh. I am a coordinator and a small gist I would like to tell about my center. My center is on the fence of a forest called Kaundinya, which runs across Chittoor district. So, as we all, many of my friends were talking about their health. So, as we all know, it's a need of the hour where we have to awaken ourselves and go into a better life. For a better life, we need a better food. So I would like to take you all across millets, which is being spoken widely these days. So I'll just introduce you all to the millets and their benefits. I have a small PPT done. I will just talk to you all. Millets are these small seeds which are grown with a very less water. So my place is a place where we do not have water. We depend on rain-fed crops. So this is one of the things, these millets, these are the different types of millets. We have foxtail millet, ragi, which is a staple food of South India. This is little millet, we call it samlu in our language. So these are grown in parts of Asia. These are very rich in food and they are very rich in protein, fiber and minerals. They are used in traditional foods of South India like pongal, idli and dosas. Then pearl millet. Pearl millet is also known as bajra. I think most of the North Indians also use bajra, which is rich in protein again and essential minerals like iron and magnesium. It is gluten-free, making suitable for individuals with gluten intolerance. This helps in reducing risk of cardiovascular diseases and diabetes due to high fiber content. Then this also provides sustained energy due to the slow digestion of carbohydrates. This is our staple food in South India, especially in Karnataka and parts of Andhra Pradesh where I live. This is exceptionally rich in calcium, making it beneficial for bone health. Today, most of the people are struggling with vitamin D deficiency, calcium D deficiency. So particularly vegetarians who may have limited source of calcium, we can get in this. This can be consumed in many various ways. We can make, which is called as a ragi bowl, or you can make a bread out of it, or you can even have a porridge out of it. So this also helps in weight management as it digests very slowly. It helps in controlling blood sugar, making it suitable for individuals with diabetes. This also contains amino acids, making complete protein source. Then foxtail millet. This is again very good for diabetes, low glycemic index, making it suitable for individuals with diabetes and controlling sugar levels. It is also rich in antioxidants, which helps in reducing oxidative stress and inflammation in the body. This contains good amount of iron and calcium, supporting overall health and preventing anemia and bone-related issues. Most of the millets are very rich in fiber and aiding to digestion. Barnyard millet. This is also widely cultivated in India. This is also rich in fiber, minerals and particularly zinc and iron. This also can be used in porridge, upma and idlis. So as I already said, these are the benefits, nutritional benefits which millets have. They are gluten-free, low glycemic index and nutritional benefits. Another thing is, this does not need any pesticides to grow. So it is chemical-free and cultivated with a very less water, unlike wheat or rice. And I'm a farmer too, so I do know all this. And as many people have said, even I'm an award winner of Andhra Pradesh as the best women farmer of 2018. Thank you.
2: Thank you so much, Devji Bhai, Aarti, Seema, and Ahmed, Sonal, Shailja, and Inder and Jessica. It was a wonderful session. I just want to make one statement here. We call about sustainability. We think and we act. But sustainability cannot be achieved if stomach is not full. That was the REIT's agenda. Going to the people who really need us the most and make them earn money to serve their family, to get good food, and then provide good education to their children. That we were able to achieve when we were addressing the sustainability goals. The second point I just wanted to make here is empowerment. Empowerment, just creating opportunity at their doorsteps. Again, helping them to save money. They don't have to send their children out, have dual houses, spend more money for their residing outside the village. So we created the opportunity in their villages. The third point which I would like to emphasize, enable women to realize the importance of education. When they are visiting the library and engaging themselves with our livelihood component so that they can save money for the higher education and the continuous education of their children. That is the third thing we achieved during this process. Fourth was delayed age at marriage. Girls are very smart in rural areas. They say, now I am earning 5,000, so I have to marry that girl who is earning 10,000. तो ये बहुत बड़ा साइलेंट इम्पैक्ट है जो हम नहीं रियलाइज करते. और ये मैं जहां जहां जाती हूँ, जिस विलेज में जाती हूँ, ये मुझे अचीव होता है. और द लास्ट पॉइंट हियर इज कि इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में, बिकॉज शी इज एंगेज्ड नाउ, शी वांट्स टू मैनेज हर टाइम एंड शी इज द डिसीजन मेकर for giving birth to the children and bearing them. These are the goals which are attached not only with education and livelihood, but directly, indirectly, we are creating the impact for the holistic development of the community. I would also take this opportunity to share one thing here. When I went to Devji Bhai's house in Bhuj, I met his father. मैं इनके पिताजी को मिली वहां पे, जो बहुत बुजुर्ग है, 90 प्लस इयर्स के हैं. और मुझे उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी, मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ. उन्होंने ये स्टोरी सुनाई कि हमें जब गांव में कीर्तन होता है, जहां पे सत्संग होता है, वहां पे हमें जाने नहीं दिया जाया था. और मैं क्या करता था, एक पिलर से चढ़ के ऊपर बैठ के सब कुछ सुनता था, क्योंकि लाउड स्पीकर लगा होता था. और उस लाउड स्पीकर से सुन के जो मैं वैल्यूज लाता था, वो मैं अपनी कम्युनिटी में सुनाता था. एंड दैट इज व्हाट रीड इज डूइंग, बिकॉज रीड इज अ वेरी डीप कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड वी प्रोवाइड वैल्यूज टू द कम्युनिटी आफ्टर प्रैक्टिसिंग दैट इन एन ऑर्गेनाइज. That is the impact we are creating, which doesn't come on the paper. So I really wanted to share this. You meet people here, you tell any girl, any participant to stand, she is full of culture, knowledge, and practice values at home. When we say we are empowering women, we are not standing against their families. The first thing we tell, be supportive of your family. If you are learning, contribute to the development of your family and be supportive with your husband, with mother-in-law and the whole family, whether they are directly related or indirectly related, and they are the stalwarts in the community. They are respected. The stories are that earlier they were at home, now they walk in the village and people say, ये रीड की मेंबर है, ये रीड की टीचर है, ये रीड की ट्रेनर है, और लोग रास्ता खाली कर देते हैं और उनको हाथ जोड़ के खड़े करते हैं कि आप यहाँ से निकले. दीज आर द स्टोरीज विच आर हियर, एंड व्हेन आई हियर आई रियली feel that I should be thankful to the person who started READ and given me the opportunity to experience all these things. भूज की जो इन्होंने बात करी कि वहां पे मैं औरतों को खुद मिलने गई थी, आधार कार्ड नहीं दिए थे उन्होंने. उन्होंने बोला मैम आप आइए, पर हमारे इस क्षेत्र के बाहर जो बाउंड्री है इसके अंदर लॉर्ड शिवा का इतना इम्पैक्ट है, अगर आप कुछ हमारे साथ करेंगे तो लॉर्ड शिवा आपके साथ गलत करेगा, तो इस बात को समझने के बाद हमारे साथ काम करिएगा. तो दैट इज द वैल्यू आई गेट व्हेन आई गो टू द कम्युनिटी. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम फॉर शेयरिंग सच एक्सपीरियंसेस दैट यू यू नो एक्सपीरियंस्ड ऑन ग्राउंड.
3: शुक्रिया अदा करती हूँ गीता मैम और रीड इंडिया का, क्योंकि मुझे ये फील्ड के दौरान ही पता चला था कि यहाँ पर एक सेंटर है, और मैंने उस सेंटर में जाकर कंप्यूटर सीखा, और उसके बाद मैंने दिल्ली महिला आयोग में जॉब ज्वाइन की, और जो मैं दीपशिखा में ही दूसरे प्रोजेक्ट में काम करती हूँ दिल्ली महिला आयोग में, वो सब संभव हो पाएगा आपकी वजह से गीता मैम. थैंक यू.
4: हेलो, मेरा नाम तनु है, मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ. मुझे कंप्यूटर्स कोर्स के बारे में पता चला तो मैं यहाँ पर रीड इंडिया सेंटर में आई. मुझे योजनाओं के बारे में पता चला, नई नई चीज़ सिखाई जा रही है, बट मुझे कंप्यूटर में इंटरेस्ट था तो इसलिए मैं कंप्यूटर सीखना चाहती थी. तो मुझे कंप्यूटर के बारे में पहले कुछ नहीं पता था, बट अब मुझे कंप्यूटर के बारे में पता है, और कंप्यूटर के न्यू ऐप्स के बारे में टीचर ने मुझे बताया, पर पहले मुझे नए ऐप्स के बारे में पता नहीं था, पर अब मुझे पता है. और यहाँ की जो टीचर हैं वो बहुत अच्छे से समझा रही है, मुझे समझ में आ रहा है. मैंने अपने पेरेंट्स को भी बताया, उन्होंने कहा कि ठीक है कर लो कोर्स.
0: अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे जो स्टार्स हैं, शाइनिंग स्टार्स, उनके जो लीडर्स हैं हमारे साथ, अंजू हैं, रितु हैं, फरा हैं, आप यू नो आप अपनी कुछ यू नो जर्नी बताएंगे शॉर्ट में, बिकॉज आई थिंक वी आर शॉर्ट ऑन टाइम ऑल्सो, एंड देन वी विल टेक द नेक्स्ट सेशन. सो प्रॉब्ली विथ फरा.
5: आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, और मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा. तो थोड़ा सुबह से चलती हूँ, मैंने सोचा था शायद मुझे आज बोलने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी दिल में था कि लास्ट मोमेंट पे 2 मिनट मुझे बोलना ही है. तो मैंने एक कविता भी लिख के फोटो खींच के रखी है कि अगर बोलने का मौका मिला तो जरूर आपको सुनाऊंगी. और एक और बात मेरे मन में सुबह से चल रही थी कि कब वो दिन आएगा कि मैं यहाँ स्टेज पे बैठूंगी. पता नहीं क्यों अंदर से ही फील हो रहा था कि कब मैं ऐसा कोई अच्छा काम करूंगी कि मुझे भी ऐसे बुलाया जाए, और जैसे सर का सारा दिखाया जा रहा था कि सर ने ये अचीव किया है, इतनी लाइब्रेरीज खोली हैं और लाइब्रेरीज के बारे में बताया है, तो वही मेरे मन में बहुत टाइम से सुबह से चल रहा था. बट जैसे ही स्मिता मैम ने मेरा नाम लिया, आई एम वेरी वेरी शॉक्ड कि मैं उठी फिर बैठी, नहीं मैं नहीं हो सकती, कोई और होगा. तो वही है कि हम सपने देखते हैं और लगता नहीं है कि कभी वो सपने साकार होंगे, लेकिन जैसे ही वो सपने साकार होते जाते हैं हम एक छोटे से इतने से होते हैं, और जब हम इतना बड़ा बन जाते हैं तो पता ही नहीं चलता कि ये हमारी मेहनत का फल है या हम सबसे अलग हैं. मतलब समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा क्या किया है कि हम यहाँ तक पहुंच गए. तो आप सब मुझे तो जानते हैं, थोड़ी सी मैं अपनी जर्नी को भी लेके जाऊंगी, टाइम कम है तो शॉर्ट में ही बताऊंगी. 7 ईयर्स पहले, कुछ लोग मुझे जानते हैं और कुछ नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा बताते हुए चलूंगी. 7 ईयर्स पहले जो रीड इंडिया हमारे आगापुर में खुला था, तो उसको रीड इंडिया के नाम को सुनके ही मैं बहुत शॉक्ड थी, और वहां पर मैंने जब सुना कि लाइब्रेरी, सिलाई, पार्लर, कंप्यूटर, लड़कियों के लिए काफी सारी चीजें सेंटर पे हमारे घर पर, घर के पास हमारे लिए आई है. बट एक मैं मुस्लिम इलाके से थी, वहां कोई भी लेडीजों को जाने का, कहीं भी घर से निकलने का कोई भी पेरेंट्स ने हुक्म नहीं दिया था. जाना है तो वही मुख्य से जाना है. जब हमारे सेंटर पे, जब हमारे घर के पास सेंटर खुला, तो हम वहां विजिट करने के लिए जब सेंटर पर गए तो वहां हमने बुक्स पढ़ी, और मुझे लाइब्रेरी में किताबें पढ़ने का वहां बहुत शौक था, और जो वहां एक्टिविटीज होती थी तो उससे मन करता था, क्योंकि एक खुशी मिलती थी लाइब्रेरी से. वही है कि हमारा सेंटर ही लाइब्रेरी से स्टार्ट होता है. तो हमने मैंने लाइब्रेरी जाना शुरू किया। ऐसे ही मेरे पेरेंट्स का था कि 17 साल की उम्र में शादी कर देनी है और कुछ नहीं करना है, और वही जर्नी खत्म है, जाओ और रोटी बनाओ और खाओ पियो ऐश करो। तो वहीं से हमारी किताबें स्टार्ट हुई। मेरी मम्मी डैडी शुरू से ही बहुत मेहनत करते थे और उन्होंने मेहनत करके ही मुझे पढ़ाया। मेरे रिलेशन में दूर दूर तक किसी भी लड़की ने पढ़ाई नहीं की थी, बहुत बातें बनाई लोगों ने, मतलब कि जो पास में लोग रहते थे उन्होंने भी, और जो मेरे रिश्तेदार थे उन्होंने भी, और जो मेरे सगे थे मतलब सगे चाचा वगैरह फुफो, उन्होंने मम्मी के ऊपर बहुत ज्यादा ऑप्शंस उठाए कि क्यों पढ़ा रही हो। मेरी मम्मी ने हाई स्कूल इंटर तक सुना कि ठीक है इंटर पढ़ा के बंद करके शादी कर देनी चाहिए, लेकिन उन्होंने वहां पर सोचा कि लेकिन मैंने देखा कि मेरी मम्मी ने मुझे किस मेहनत से पढ़ाया है, जब वो रात को 8-8 बजे आके हमारे लिए खाना बनाती थी और कैसे वो हमारी स्कूल की फीस भरती थी, हम तीनों बहनों को इतनी मेहनत से पढ़ाकर किसी की ना सुनकर आगे पढ़ती थी। तो मैंने एक मन में ठाना कि चाहे जैसे मेरी माँ ने सबकी सुन के हम लड़कियों को आगे बढ़ाया, ऐसे ही मुझे अपने मम्मी डैडी के लिए कुछ करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, शादी कैसे भी ना करके कुछ भी किसी से लड़ाई हो, बट मुझे शादी नहीं करनी है। तो वही सपना मेरा साकार होता गया। मेरे लिए एक मेरी पहली सीढ़ी रीड इंडिया खुली, वहीं से मेरी लाइब्रेरी की स्टार्ट हुई और ECD में मुझे वहां से जॉब मिली। मैंने ECD को शुरुआत करके फिर मुझे मैंने कंप्यूटर सीखा, फिर मुझे कंप्यूटर में वहां पर लड़कियों को सिखाने का मौका मिला। वहां तो मेरा 5-6 किलोमीटर मुझे दूर राधापुर जाना पड़ता था, लेकिन जब मैम ने पटवाई सेंटर 15 किलोमीटर दूर खोला तो वहां पर मेरे कोऑर्डिनेटर मुझे बना दिया गया, और वहां पर मैं किसी लोगों को भी नहीं जानती थी, बहुत फर्स्ट टाइम डर लगा जाने में, लेकिन इतनी ट्रेनिंग से मुझे यहाँ पर मिली है कॉन्फिडेंस मिलने की, आर्ट थेरेपी की, मोबिलाइजेशन करा लोगों से बातचीत करने की। तो वहां 15 किलोमीटर दूर जाके जब मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मैंने सेंटर को संभाला, तो बहुत ज्यादा लोग वहां पर, जितने आज 7 साल बाद 4-5 हजार लोग मुझे जानते हैं और बहुत ही आदर से सम्मान से मेरा वेलकम करते हैं। और हम जो भी लड़कियों को लड़कियां ट्रेंड हैं उनके घरों में जाकर उनको कैसे बाहर निकालते हैं, उनको हम अपनी सक्सेस स्टोरी बताने की कि हम किस तरीके से यहाँ पर आए हैं जब उनके पेरेंट्स अपने घर से वहां भेजते हैं। तो शायद टाइम कम है, मैं अपनी एक छोटी सी पोएम सुनाकर एंड करना चाहूंगी। राह में मुश्किल होगी हजार, राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही। राह में मुश्किल होगी हजार, तुम दो कदम बढ़ाओ तो सही, हो जाएगा हर सपना साकार, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। मुश्किल है पर इतना भी नहीं, मुश्किल है पर इतना भी नहीं कि तू कर ना सके, दूर है मंजिल लेकिन इतनी भी नहीं कि तू पा ना सके, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, एक दिन तुम्हारा भी नाम होगा, तुम्हारा भी सत्कार होगा, तुम कुछ लिखो तो सही, तुम कुछ आगे पढ़ो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। सपनों के सागर में कब तक गोते लगाते रहोगे, सपनों के सागर में तुम कब तक गोते लगाते रहोगे, तुम एक राह है चुनो तो सही, चुनो तो सही। तुम उठो तो सही, तुम कुछ करो तो सही, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। कुछ ना मिला तो, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, कुछ ना मिला तो कुछ सीख जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे, जिंदगी का अनुभव साथ लेके जाओगे। गिरते पड़ते समझ जाओगे, गिरते पड़ते समझ जाओगे, फिर एक बार तुम जीत जाओगे, तुम चलो तो सही, तुम चलो तो सही। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू।

0: आपने सोनल को सुना, मिस्टर राय को सुना, यू नो हाउ वी आर ब्रिंगिंग इट टू द ग्राउंड लेवल. अब हम अपनी कम्युनिटी, अपने जो पार्टनर्स हैं, जो रियल ऑन ग्राउंड वर्कर्स हैं, उनको इनवाइट करना चाहेंगे टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस. सो नाउ आई लाइक टू इनवाइट सीमा जी एंड आरती राणा टू शेयर देयर एक्सपीरियंसेस.
1: सबको मेरा नमस्ते. मैं लखीमपुर खीरी से सीमा सिंह और मेरे साथ आरती राणा हैं. ये ट्राइबल सेंटर से हैं और ये ट्राइबल्स की बहुत बड़ी एक लीडर भी रही हैं. और अभी आई एम सो हैप्पी टू अनाउंस कि अभी हमारे साथ एज वीविंग ट्रेनर हमारे साथ काम कर रही हैं. पहले मैं हमारे सेंटर में, जैसे बाकी आपके सबके सेंटर्स में भी होता है, हम भी लाइब्रेरी और लाइवलीहुड के सारे ही प्रोग्राम्स करते हैं. और मुझे बहुत खुशी है कि मैं रूट लेवल से जुड़ी हुई हूं और रूट लेवल की सब अच्छी हुई चीजों को हम लोग बहुत आगे लेके जा रहे हैं. अच्छी चीजों को हम लोग और इन्हेंस कर रहे हैं, वुमेन को एम्पावर कर रहे हैं, अपनी छोटी छोटी छोटी मुहिम को हम बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी. हम अपने सेंटर पे हर वीक एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं, कोई मूवी दिखाते हैं, कुछ भी करते हैं. एक हमारे सभी के गांव में एक प्रॉब्लम होती है कि ड्रिंक बहुत करते हैं. वहां पे एक लेडी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे बोला आप एक जैसे मूवी चलाते हैं तो मेरा हस्बैंड मुझे बहुत परेशान करता है, मैं उसके बारे में उस मूवी के टाइम पे अनाउंस कर दूंगी. वो इतना डर गया इस बात को लेके कि नहीं, अब मैं दोबारा फिर ये नहीं करूंगा. तो इस तरह की छोटी सी चीज से उसका पूरा घर सुधर गया. तो आई वुड लाइक टू से थैंक्स टू रील इंडिया की इतनी छोटी सी चीज से एक लेडी का पूरा घर सुधर गया और वो और लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनी कि ये भी हो जाएगा. डरते हैं लोग कि नहीं, हम ऐसा कुछ करेंगे तो वहां प्रॉब्लम होगी. और अभी हम लोग बिल्कुल डेंस फॉरेस्ट में, बिल्कुल डीप इन द फॉरेस्ट हम लोग एक सेंटर हमने स्टार्ट किया है. वो आरती राणा उसको देखती हैं और वहां की वीविंग ट्रेनर हैं. और उधर हम हैंडीक्राफ्ट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो कि ओडीओपी का भी एक प्रोडक्ट जो है वो हम लोग वहां पे बना रहे हैं. ये हमारे ट्राइबल्स का एक ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसको कि हम डिफरेंट डिजाइनिंग करके, अच्छा उनको करा के और बेटर डिजाइनिंग देके हम लोग उसको बहुत आगे बढ़ा रहे हैं. उसमें आरती हम लोगों को बहुत सपोर्ट कर रही हैं. और हनी बी वियरिंग की ट्रेनिंग बहुत अच्छी तरह से वहां पे लेडीज ने अटेंड करी और हनी बी के प्रोडक्ट्स भी हम लोग बना रहे हैं वहां पे. और काफी अच्छा उधर इम्पैक्ट है क्योंकि बीच जंगल में है, लोगों को हनी बी के बारे में ज्यादा पता नहीं था और वहां बहुत अच्छा हम लोग काम करेंगे. इसके लिए भी हम लोग काफी चीजें आगे ट्राई कर रहे हैं. मैं आरती राणा से कुछ कहूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा बताएं. थैंक यू सो मच.
2: सभी लोगों को मेरा राम राम. मेरा नाम आरती राणा है. मैं किराम गुबरौला पोर्ट चंद्र चौकी डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी से. डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी एकदम नेपाल से सटा बॉर्डर सटा गांव है. जैसे वहां पे सटे गांव में जैसे हम लोगों का सन 2015 में मैं उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 350 स्वयं सहायता समूह बनाई थी. तो 16 में तुरंत रानी लक्ष्मीबाई वीरता पुरस्कार मिला था और 18 में ओडीओपी के अंतर्गत मेरा थावरी क्राफ्ट को चयन किया गया था मैं. तो 21 में मुझे नारी शक्ति सम्मान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिला था. 22 में राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था मैं. जो हमारे जनपद लखीमपुर खीरी में सटे हुए नेपाल वार्ड जैसे हम लोगों के गांव में कई संस्था आया, जैसे कि ये हथकरघा उद्योग चलाने के लिए, हैंडीक्राफ्ट के लिए. आज जैसे कि चलाने में तो चला दिए, फिर उसको देख रेख करने वाला कोई नहीं था. फिर उसके बाद जैसे कि अभी तो हमें ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 6-7 महीना हुआ है. पहले मैं गीता मैडम को धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थार जनजाति क्षेत्र की तरफ से और जैसे कि रीड इंडिया हम तक पहुंची. आज जितना हम लोगों का पीछे काम था मैम, हम लोग 97 से मैं काम कर रही हूँ मैं. और जैसे काम करते करते करते पीछे जैसे चलाने वाला कोई नहीं, रास्ता बताने वाला कोई नहीं. अभी हम 6-7 महीने से रीड इंडिया से हम लोग जुड़े हैं तो फिर से हम लोग को वापस आने का मौका मिला है. और जैसे कि तेजी से महिलाएं जुड़ रही हैं, अच्छे से काम भी कर रही हैं. और जैसे कि हम लोगों का मार्केटिंग का कोई दिक्कत नहीं है. हमें ट्राइफेड ट्राइफ इंडिया एक भारत सरकार की संस्था है, उससे हमारा लिंक है और काफी अच्छा उनका ऑर्डर है मैम. तो हम रीड इंडिया के सपोर्ट से, और रीड इंडिया का सपोर्ट रहेगा, हम लोग का मेहनत रहेगा तो अच्छी सफलता मिल जाएगी मैम. ऑल इंडिया को फिर से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि अपने थारू जनजात क्षेत्र की तरफ से और अपने जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र की तरफ से धन्यवाद।
0: थैंक यू सीमा जी एंड आरती जी, बहुत ही सरलता से आपने बताया कि किस तरीके से हम अपने मिशन को ग्राउंड पे लेके आए हैं।

0: This bit is all about how our partnership has been, how this community concept is possible on ground with a strong partnership, strong community engagement, and how we are contributing to the 17th SDG, which is all about partnership. So I would like to start with thankfulness Sirji, aapke saath. So would you, you know, share your views?
1: Namaskar. Jai Suraksha. मैं राम भागीरथी भाई दिगंबर दहीफल है. आई केम फ्रॉम महाराष्ट्र मुंबई. ये रीड इंडिया में मैं कैसे ज्वाइन हुआ उसके बारे में थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं. व्हेन आई वाज वर्किंग इन औरंगाबाद तो एक रीड इंडिया ने एंड परकिंस इंडिया जो औरंगाबाद में काम करती है उन्होंने एक लड़कियों के स्कूल में एक टॉयलेट बिल्टअप किया था और उसका इनॉग्रेशन के लिए मुझे बुलाया था. और उसके बाद में उन्होंने एक वहां एक नजदीक सेंटर रीड इंडिया चलाती है उसका सेंटर देखने के लिए मुझे लेके गए. सेंटर देखने के बाद मुझे अच्छा लगा कि मैंने फिर वो सेंटर के बारे में पूरा समझ लिया है. वो मतलब उसको कौन चलाता है, पार्टिसिपेंट कौन है, उसके लाभार्थी कौन है और कंसेप्ट क्या है. तो वहां दो चार कोर्सेस मतलब अच्छे से चल रहे थे. वहां के जो सेंटर कोऑर्डिनेटर थे, टीचर थे, उन्होंने सारी चीजें दिखाई समझाई. छोटे बच्चों के लिए था लाइब्रेरी, देन ड्रेस मेकिंग और कुछ के लिए था लाइब्रेरी देन ड्रेस मेकिंग और कुछ दो चार कोर्सेस थे. तो उसके बाद में मैंने मेरे बड़े भाई से बात की, उनको भी बुलाया वो सेंटर देखने को. फिर एक भाई मेरा प्रोफेसर है उसको भी बुलाया और उनको दिखाया. और बहुत दिनों से ऐसा लग रहा था कि ऐसे कुछ अपने एरिया के लिए अपन कर सकते तो, लेकिन क्या करना है वो समझ में नहीं आ रहा था. लेकिन सेंटर देखने के बाद लगा कि अपन कुछ मतलब कम्युनिटी के लिए, अपने एरिया के लिए, अपने गांव के लिए कर सकते हैं. जब बात कहे तो परकिंस वाले जो मैनेजमेंट के स्टाफ थे उन्होंने बताया कि सर हमारा जो ये है डिस्टेंस वो लिमिटेड है, मतलब 15 किलोमीटर के दायरे में ही हम कुछ कर सकते हैं. फिर रीड का जो स्टाफ था उनसे भी बात किया तो बोला आपकी बात हम हमारी गीता मैम उसके बारे में सोचती है और आप जब औरंगाबाद में मैडम आएंगे तो आप उनसे हम आपको आपको उनको मिलाते हैं. तो बीच में फिर मैम आ गई, हम भी मिले, मैम को भी एक दो प्रोग्राम में हमने इनवाइट किया और सिर्फ मैम को बताया कि मैम ऐसा ऐसा है, हमारा गांव औरंगाबाद से 300 किलोमीटर है और वहां जरूरत है. मैम ने उस समय सिर्फ सुन लिया, मैं क्या कह रहा हूं कुछ भी बोली नहीं. तो मैम आई, हमारा गांव देखा, स्कूल देखा, गांव के लोगों से मिली और बहुत अच्छा लगा. हमारे गांव के लोगों ने तो मैम को बोला गांव की बेटी आई है. और तब से मैम 3-4 बार आ गई है. उसके बाद में बीच में कोविड आया और कोविड आने के बाद तो 2-3 साल अपने को कुछ मतलब सब दुनिया ही ठप हो गई थी. लेकिन कोविड की जैसी जो इंटेंसिटी थी वेव थी वो कम हो रही थी. तब एक दिन सुबह मैम ने मेरे को याद किया फोन पे और बोले सर आपने बोला था कि आपको ऐसा करना है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. मैंने पूछा मैम क्या करना है. तो मैम बोले आप सिर्फ जगह देखो बाकी मैं देख लेती हूँ. तो फिर जगह मेरे पास जो मतलब थी थोड़ी अनडेवलप थी तो मैम से समझ लिया क्या क्या करना है. और जो औरंगाबाद का रीड का स्टाफ था मैम ने उन्होंने उनको काम पे लगाया और एक दो बार मेरे साथ भेजा और जो भी जगह थी उसको हमने डेवलप किया अच्छे से, जो भी फैसिलिटी अपने को लगती है. और वो रेडी होने के बाद मैं हमने पूरा जो बेसिक कोर्स थे तो उसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर भेज दिया और स्टाफ को भी मतलब लोकल स्टाफ को ही हमने मैम के गाइडेंस में ये तय कर दिया, मतलब थोड़ा डेवलप किया। और अभी शिवरात्रि जो 2 साल कंप्लीट हो गए हमारे सेंटर को और वहां पर अभी लगभग 7 कोर्सेज चलते हैं। मतलब आपको बता दो कि उसमें ड्रेस मेकिंग है, फिर जो ब्यूटी पार्लर बोलते हैं, उसके बाद

आगरा भी है, उसके बाद छोटे बच्चों के लिए है, मसाला मेकिंग है, फिर जो हॉस्पिटैलिटी के लिए नर्स असिस्टेंट है, ऐसे 6 से 7 कोर्सेज चलते हैं। अभी जो लोग वहां पर मतलब जो स्किल टू सक्सीड मतलब जिन्होंने स्किल सीखा है दे आर डिमांडिंग, अभी हमको हमारे हाथ को काम दो या हमें कोई एम्प्लॉयमेंट दे दो। तो जब मैं अभी आई थी बीच में सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, तो उस समय भी वो लोग मैम को मिले और मैम ने अभी ये अगला शब्द दिया है हमें कि तुम जगह डेवलप करो, हम कुछ ना कुछ मदद करते हैं। और जो मतलब क्या बोलते हैं स्टार्टअप, अभी स्टार्टअप करने जा रहे हैं हम लोग, तो हो सकता है अगले आने वाले साल में हमारे भी सेंटर से कोई प्रोडक्ट यहाँ पर डिस्प्ले करने की मैं मतलब कमिटमेंट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो थैंक यू गीता मैम एंड ऑल टीम फ्रॉम द रेड इंडिया, क्योंकि मेरा जो गांव है जो एकदम डिस्ट्रिक्ट के बॉर्डर पर है, मतलब 4 डिस्ट्रिक्ट की बॉर्डर लगती है और एकदम एंड पे है, तो थोड़ा गवर्नमेंट की तरफ से या डेवलपमेंट जैसा होना चाहिए वो नहीं है, सिर्फ लोग खेती है, बाकी कोई इंडस्ट्री नहीं है आजू बाजू में, जो भी मतलब रोजगार रहता है वो उतना नहीं है, लोगों को आना है तो बाहर आना पड़ता है, मुंबई पुणे या औरंगाबाद जैसे सिटी में। तो रीड इंडिया के माध्यम से हम कोशिश कर रहे हैं, अभी स्किल तो हमने शुरू किया है, आगे चल के स्टार्टअप करके अभी बहुत मतलब कुछ चंद दिनों में हम मसाला मेकिंग एंड टेलरिंग का ये करने जा रहे हैं। तो मैम को मैं वो स्टार्ट करने के लिए इनवाइट करता हूँ और फिर से धन्यवाद देता हूँ कि सिर्फ सेंटर ही स्टार्ट नहीं किया, उसको बहुत आगे तक लेके गए, अभी कम से कम 1000 महिलाओं ने उसका लाभ लिया है 2 साल में, तो इससे पता चलता है कि वहां कितनी जरूरत है। और लोग आजू बाजू में भी सेंटर की मांग कर रहे हैं, क्योंकि सब लोग उधर नहीं आ सकते ना, तो अभी मैम भी हम भी सोच रहे कि नजदीक में कहीं सेंटर शुरू कर सकते हैं और जल्द ही शुरू होगा। तो थैंक यू, मुझे यहां बुलाया और सम्मानित भी किया और 2 शब्द बोलने का अवसर भी दिया, और इतने सारे मतलब ऑल ओवर इंडिया से जो अपने पार्टनर्स है, जो पार्टिसिपेंट है, जो स्टेक होल्डर्स है, उनसे मिलाया और बहुत अच्छा लगा कि और भी मतलब क्या क्या कर सकते हैं, ये दिन भर सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब सिर्फ स्किल से मतलब मैंने बहुत सारे चीजें मैडम से सुनी थी, लेकिन आज वो मतलब सबसे मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत सारे मतलब रीड इंडिया सिर्फ 2-4 सेक्टर में ही नहीं है, लाइफ बनाने में बहुत मतलब जैसे खेती से निगड़ित है या एजुकेशन से निगड़ित है या जैसे हनी बीज है या और भी चीजें हैं उसमें मतलब अपन ये कर सकते हैं। तो मैं भी इसमें से बहुत सारा लेके जाके वो लोगों को पास ऑन करूंगा और आपको सर शब्द देता हूं कि अगले साल हमारा 1-2 प्रोडक्ट यहां पर डिस्प्ले होना चाहिए। थैंक यू।

0: बहुत बहुत धन्यवाद, मेरा इतना सम्मान किया। मैंने आपको तब सुनाया था कि इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला है। मेरा फादर 90 इयर्स ओल्ड है और ब्लाइंड है। इतना सारा नेशनल अवार्ड मिला तो जो नेशनल अवार्ड हमको जो मिला था ना, उनको सबको बुलाया, बिठाया और बात किया कि नेशनल अवार्ड इतना सारा लेकर क्या करोगे। तो हम तो सब चुप हो गए कि क्या करेंगे, तो मतलब क्या है। तो बोले और कुछ नहीं करना है, लेकिन आपके पास जो स्किल है वो बांटो, अब सबको बांटो, सबको दो, वो स्किल दूसरों को सिखाओ। तो योगानुयोग मैडम से भी मुलाकात हो गई और ये मौका मिल गया, अब ये बांटना है बस। धन्यवाद।
1: इनको ना एक

0: भी कुड़ा बाए भी यहाँ भी कुड़ा वहाँ भी। ए भाई तू जहाँ रहता है वो कोई कूड़ा घर नहीं, गली में कूड़ा है पार्कों में कचरा, दुनिया हमारी अब स्वर्ग नहीं। ए भाई
1: जी हाँ, क्या आप जानते हैं कि आपके बच्चों की बीमारियों का कारण आपके मोहल्ले का कूड़ा भी हो सकता है? पर यह कूड़ा आता कहाँ से है? अरे जनाब, आप ही के तो घर से। आपने कूड़े को निकाला, भरा और फेंक दिया, और बदले में आपको क्या मिला? बदबूदार नालियाँ, मक्खियाँ जो लाती हैं बीमारियाँ। आपका बच्चा घर से बाहर जाए और बीमारियाँ घर लाए।
2: तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं? जी हाँ, आप कर सकते हैं कूड़े का विभाजन। कूड़े को दो तरह के थैले में बांट लें। एक में गीला कूड़ा जैसे कि फल व सब्जियों के छिलके, बचा खाना, और दूसरे थैले में सूखा कूड़ा जैसे कि पेपर और प्लास्टिक डाल दें।
1: सरकार ने आपके मोहल्ले में दो प्रकार के कूड़ेदान रखे हैं, हरा गीले कूड़े के लिए और नीला सूखे कूड़े के लिए। यदि आप कूड़ा अलग अलग करके इसमें डाल देते हैं तो गीले कूड़े में खाद बनाई जा सकती है और सूखे कूड़े को तैयार कर दोबारा उपयोग में लाया जा सकता है।
2: इससे दूर रहेंगी बीमारियां और सुंदर होगा वातावरण। तो अब जब आपका बच्चा घर से बाहर जाए तो बीमारी घर में लेकर ना आए।
1: याद रखिए,
3: कूड़ा निवारण स्वस्थ जिंदगी।
4: रीड इंडिया अपने सभी केंद्रों के द्वारा विभिन्न समुदायों की युवतियों व महिलाओं में सीखने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देता रहा है। तो आइए सुनते हैं इन्हीं युवतियों व महिलाओं के अनुभवों पर आधारित कार्यक्रम। सुनिए उनकी कहानी, उनकी जुबानी।
5: नमस्ते, मेरा नाम नंदिनी है। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ और मैंने अभी एग्जाम दिया है और अभी मैं एक हफ्ते से यहाँ क्लास में आ रही हूँ और मैं अभी सिलाई का कोर्स कर रही हूँ। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं उसके बाद भी हमें लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो हमें इससे बहुत कुछ आगे बढ़ सकते हैं और आगे लाइफ में कुछ अच्छा कर सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। महिलाएं या फिर लड़कियाँ हों उनको आगे बढ़ने में, या फिर उनको कहीं कुछ जॉब वॉब दिलाने, या फिर हम अपनी तरफ से कोई एनजीओ वगैरह कुछ भी हम खोल सकते हैं। इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है और लोगों को हम सिखा सकते हैं और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। अपने भाई या बहन या कोई फ्रेंड्स महिलाएं किसी को भी बता सकते हैं कि इसके बारे में आगे कैसे बढ़ा जा सकता है, ज़िंदगी में क्या करना है क्या नहीं, आगे बढ़ने के लिए कुछ भी। इसमें बहुत सारे फैसिलिटी है, बहुत, चाहे 16 साल, चाहे महिलाएं हों चाहे लड़कियां हों, सभी को सिखाया जा सकता है, सभी सीख सकते हैं। और टीचर बनना चाहती हूँ, टीचर बन के मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट लेके इंग्लिश का टीचर बनना चाहती हूँ और लोगों को मतलब फ्री में भी पढ़ाना चाहती हूँ और स्कूल में भी जॉब करना चाहती हूँ।
6: आकाशवाणी समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति विश्लेषण।
7: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम विश्लेषण के नए अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा। श्रोताओं, महात्मा गांधी के लिए स्वच्छता केवल व्यक्तिगत आदत नहीं थी, वे साफ सुथरे शरीर, साफ मन और स्वच्छ वातावरण को एक बेहतर समाज का जरूरी हिस्सा मानते थे। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे महात्मा गांधी के स्वच्छ भारत के सपने को पूरा करने के लिए एक जन आंदोलन बनाने का आह्वान किया था। लेकिन जैसे जैसे शहर बढ़े, आबादी बढ़ी और हमारी खपत बढ़ी, कचरे की मात्रा भी बढ़ती गई। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। इन नियमों का उद्देश्य कचरे को केवल हटाना नहीं बल्कि उसकी पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाना है। आज के कार्यक्रम में जानेंगे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 किस तरह कचरे के प्रबंधन को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही समझेंगे कि शहरों में वर्षों से जमा कचरे के पहाड़ को हटाने की दिशा में क्या काम हो रहा है और कचरे को किस तरह ऊर्जा, खाद और दूसरे उपयोगी संसाधनों में बदला जा सकता है। श्रोताओं, शहरों में बढ़ती आबादी

0: और बदलती जीवन शैली के साथ कचरे की मात्रा भी लगातार बढ़ रही है। लेकिन समस्या केवल कचरे की बढ़ती मात्रा की नहीं है। जब कचरे को सही तरीके से अलग, कलेक्ट और प्रोसेस नहीं किया जाता तो इसका असर हमारे आसपास के वातावरण पर पड़ता है। कचरा खुले में पड़ा रहे या बिना छंटाई के एक जगह जमा होता रहे, इससे हवा और पानी के प्रदूषण के साथ साथ बीमारियों और आग जैसी समस्याओं का खतरा भी बढ़ता है। दूसरी ओर कचरे में मौजूद कई ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकल किया जा सकता है, लेकिन जब अलग अलग तरह का कचरा एक साथ मिल जाता है तो इन चीजों को वापस उपयोग में लाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कचरा प्रबंधन की शुरुआत वहीं से जरूरी है जहाँ कचरा पैदा होता है। इसी जरूरत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 लागू किए हैं। पहली अप्रैल 2026 से लागू हुए ये नियम वर्ष 2016 के नियमों की जगह लेते हैं और कचरे के कलेक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तथा डिस्पोजल तक पूरी व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते हैं। आइए अब समझते हैं कि नए नियम इस व्यवस्था में क्या बदलाव लेकर आए हैं।
1: इनका सबसे महत्वपूर्ण बदलाव है कचरे को चार अलग अलग हिस्सों में बांटना। पहला है गीला कचरा। इसमें रसोई का कचरा, फल सब्जियों के छिलके और खाने से जुड़ा दूसरे तरह का जैविक कचरा आता है। इसे खाद बनाने या बायोगैस तैयार करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। दूसरा है सूखा कचरा। इसमें कागज, प्लास्टिक, धातु, कांच और लकड़ी जैसी चीजें आती हैं। इन्हें अलग करके दोबारा इस्तेमाल या रिसाइकिलिंग के लिए भेजा जा सकता है। तीसरा है सैनिटरी वेस्ट, जैसे इस्तेमाल किए गए डायपर्स और सैनिटरी पैड्स। इसे अलग और सुरक्षित तरीके से रखना जरूरी होगा। चौथा है स्पेशल केयर वेस्ट। इसमें दवाइयाँ, बल्ब, मरकरी वाले उपकरण और पेंट कैंस जैसी चीजें शामिल हैं। इन्हें सामान्य कचरे के साथ मिलाने के बजाय अधिकृत एजेंसियों या तय किए गए केंद्रों तक पहुंचाना होगा। नए नियमों में बड़े स्तर पर कचरा पैदा करने वाले संस्थानों की जिम्मेदारी तय की गई है। जिन संस्थानों का क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर या उससे ज्यादा है, या जो रोज 40,000 लीटर या उससे ज्यादा पानी इस्तेमाल करते हैं, या प्रतिदिन कम से कम 100 किलोग्राम कचरा पैदा करते हैं, उन्हें बल्क वेस्ट जनरेटर्स माना गया है। इनमें बड़े सरकारी कार्यालय, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट और रेसिडेंशियल सोसाइटीज जैसे स्थान शामिल हैं। इन संस्थानों को अपने कचरे के कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट और प्रोसेसिंग की जिम्मेदारी निभानी होगी। जहां संभव हो गीले कचरे को उसी परिसर में प्रोसेस करने पर जोर दिया गया है। नए नियमों में टेक्नोलॉजी को भी महत्वपूर्ण जगह दी गई है। कचरे के पैदा होने से लेकर उसके कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, प्रोसेसिंग और डिस्पोजल तक की जानकारी एक सेंट्रल ऑनलाइन सिस्टम के जरिए ट्रैक की जा सकेगी। वेस्ट प्रोसेसिंग फैसिलिटीज का रजिस्ट्रेशन और रिपोर्टिंग भी ऑनलाइन होगा। फैसिलिटीज का ऑडिट किया जाएगा और की जानकारी भी ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ नियमों में एक और महत्वपूर्ण बदलाव है, पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान नियमों का पालन नहीं करती, गलत जानकारी देती है, तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। लैंडफिल के मामले में भी सोच बदली गई है। अब लैंडफिल में वही कचरा जाना चाहिए जिसे न रिसाइकल किया जा सकता है, न उससे एनर्जी हासिल की जा सकती है और न ही उसका कोई दूसरा उपयोग संभव है।
0: श्रोताओं, नए नियम आज से व्यवस्था तो सुधार सकते हैं, लेकिन शहरों में पिछले कई दशकों से जमा कचरे का क्या होगा? भारत के कई शहरों में कचरे के बड़े बड़े ढेर आज भी मौजूद हैं। ये केवल पुराने कचरे के ढेर नहीं हैं, इनसे जमीन, हवा और भूजल पर असर पड़ता है। इनमें आग लगने और हानिकारक गैसें निकलने का खतरा भी बना रहता है। इसलिए कचरे के प्रबंधन की नई व्यवस्था तभी पूरी मानी जाएगी जब हम पुराने डंप साइट्स को भी खत्म करें और नए डंप साइट्स बनने से भी रोकें। इसी सोच के साथ सामने आता है लक्ष्य जीरो डंप साइट। ये सिर्फ सफाई का अभियान नहीं है, इसे ऐसे विकास की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा सकता है जिसमें शहर साफ भी हों और कचरे से संसाधन भी तैयार हों।
1: भारत में करीब 2479 लेगेसी डंप साइट्स की पहचान की गई है। इनमें वर्षों से करीब 25 करोड़ मीट्रिक टन कचरा जमा है और ये करीब 15,000 एकड़ जमीन पर फैले हुए हैं। इन पुराने डंप साइट्स को हटाने के लिए नवंबर 2025 में डंप साइट रिडेम्पशन एक्सेलरेटर प्रोग्राम शुरू किया गया है। इसी अभियान का नाम है लक्ष्य जीरो डंप साइट। इसके तहत पुराने कचरे को वैज्ञानिक तरीके से हटाया जा रहा है। इसे बायो माइनिंग कहा जाता है। सरल शब्दों में समझे तो पुराने कचरे को खोदकर बाहर निकाला जाता है और फिर अलग अलग हिस्सों में बांटा जाता है। अब तक 60% से अधिक लेगेसी वेस्ट को प्रोसेस किया जा चुका है। जीरो डंप साइट की दिशा में 214 हाई इम्पैक्ट डंप साइट्स पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इनमें देश में बचे हुए लेगेसी वेस्ट का करीब 80% हिस्सा मौजूद है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है, डंप साइट हटाना अपने आप में अंतिम हल नहीं है। अगर आज पुराना डंप साइट हटा दिया और कल फिर उसी जगह नया कचरा जमा होने लगा तो समस्या वापस आ जाएगी। इसलिए जीरो डंप साइट की रणनीति दो हिस्सों पर काम करती है, पुराने कचरे को हटाना और नए डंप साइट्स बनने से रोकना। इस रणनीति के तहत शहरों में मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज, कंपोस्ट प्लांट्स और वेस्ट टू एनर्जी जैसी सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। यानी कचरे की यात्रा अब लैंडफिल तक पहुंचने की नहीं बल्कि रिकवरी और रीयूज तक पहुंचने की होनी चाहिए। यही सोच हमें सर्कुलर इकोनॉमी की तरफ ले जाती है। सर्कुलर इकोनॉमी का मतलब है किसी चीज के इस्तेमाल के बाद उसे सीधे कचरा मानने की बजाय उसमें मौजूद संसाधन को फिर से उपयोग में लाया जाए। ये सोच केवल शहरों के कचरे तक सीमित नहीं है, कृषि में भी हर साल बड़ी मात्रा में वेस्ट पैदा होता है। भारत में हर साल करीब 350 मिलियन टन कृषि कचरा पैदा होने का अनुमान है। इसमें फसल के अवशेष, भूसा, धान की भूसी, पशुओं का गोबर और फूड प्रोसेसिंग से निकलने वाला कचरा शामिल है। अगर इन्हें जला दिया जाए या खुले में छोड़ दिया जाए तो इससे प्रदूषण और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ सकते हैं, लेकिन यही कचरा खाद, बायोगैस, बायोफ्यूल और दूसरे उपयोगी उत्पादों का स्रोत भी बन सकता है। इसी सोच के तहत गोबर्धन जैसी पहल पशुओं के गोबर, फसल के अवशेष और फूड वेस्ट से बायोगैस और ऑर्गेनिक मैन्योर तैयार करने को बढ़ावा देती है। 14 जनवरी 2026 तक देश के 51% से अधिक जिलों में 979 बायोगैस प्लांट्स काम कर रहे थे। इसी तरह क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट के तहत किसानों को फसल के अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में मिलाने और खेत की मिट्टी को ढकने की प्रक्रिया यानी मल्चिंग के लिए इस्तेमाल करने या दूसरे उपयोगों के लिए बाहर ले जाने में मदद दी जा रही है। समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
0: श्रोताओं, स्वच्छता सरकार, नगर निकायों और उद्योगों की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन इसकी शुरुआत हम नागरिकों से होती है। हम घर से निकलने वाले कचरे को अलग करते हैं या नहीं, सड़क पर कचरा फेंकते हैं या नहीं, सिंगल यूज चीजों का इस्तेमाल कितना करते हैं और अपने आसपास सफाई बनाए रखते हैं या नहीं, इन छोटे फैसलों का असर पूरी व्यवस्था पर पड़ता है। स्वच्छ भारत का लक्ष्य केवल साफ सड़कें और साफ शहर नहीं है, ये ऐसी व्यवस्था बनाने का लक्ष्य है जिसमें स्वच्छता हमारी आदत बने और विकास के साथ पर्यावरण की भी रक्षा हो। इसी के साथ कार्यक्रम विश्लेषण में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। इस कार्यक्रम को तैयार किया है अनिकेत ने, प्रस्तुति सहायक दानिश जैदी। आप इस कार्यक्रम को हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। श्रोताओं, अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें।

हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन, यू आर ऑल वेलकम इन टुडे सेशन। तो आज का जो सेशन है, मतलब अभी हमारा 12th नंबर सेशन था, जैसे देखिए अभी तक के सेशंस में हम करियर से रिलेटेड काफी कोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, कई स्ट्रीम्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, और मेरे हिसाब से कई स्ट्रीम्स आपको ऐसी नई भी पता चली होंगी अभी, जो शायद पहले आपको नहीं पता हो, या कई स्ट्रीम्स के बारे में आपको ज्यादा जानकारी मिली होगी, जो हो सकता है आपको आगे अपना करियर बनाने में काफी हेल्पफुल रहे। आज के सेशन में हम जो बात करेंगे कि 10th के बाद जो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं, जिसे हम पॉलिटेक्निक डिप्लोमा कहते हैं, उनमें क्या क्या स्कोप रहता है, किस किस टाइप के डिप्लोमाज होते हैं। आप सब जानते हैं, आप जहां भी रहते हैं, जिस भी एरिया में आप हैं, तो आपके आसपास में काफी पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं जो डिप्लोमा ऑफर करते हैं 10th क्लास के बाद में। ये जो 10th क्लास के बाद में डिप्लोमा होता है, आपका 3 ईयर का डिप्लोमा होता है, और इक्विवेलेंट टू 12th माना जाता है। मतलब आप देखेंगे कहीं भी 12th के बेस पे कोई भी वैकेंसी निकलती है, कुछ भी एडमिशन अगर 12th के बेस पे है, तो वहां लिखा होता है क्लास 12th और 3 ईयर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा। तो ये जो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है, आपका एक तरह से 12th के इक्विवेलेंट होता है। तो जो लोग 10th के बाद, मतलब एक तरह से ये डिसाइड नहीं कर पाते कि उन्हें किस स्ट्रीम में जाना है, या वो आगे कॉमर्स, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल क्या ले, तो वो क्या करते हैं कि 10th के बाद वो डिप्लोमा में एडमिशन ले लेते हैं जो 3 ईयर का रहता है, विच इज इक्विवेलेंट टू क्लास 12th। अब डिप्लोमा की जो फिलॉसफी थी, ये एक तरह से वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट था, जिसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि आपको कुछ टेक्निकल नो हाउ प्रोवाइड की जाए, जिस भी स्ट्रीम में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपने उस फील्ड में डिप्लोमा किया, और उसके बाद आप लोअर लेवल से स्टार्ट कर सकते हैं। जनरली देखा गया है कि आप डिप्लोमा करते हैं तो आपको जो जॉब मिलती है, वो हम ये कह सकते हैं जैसे A to D क्लास में अगर हम जॉब्स को डिवाइड करें, तो सी कैटेगरी की जॉब्स आपको मिलती हैं, और वही अगर आपने बीटेक किया हुआ है, तो आपकी जॉब जो है वो आपकी बी कैटेगरी की हो जाती है। जैसे आप किसी भी फैक्ट्री में देखिए, वर्कशॉप में, या इतनी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से, आज मैं आपको बताऊंगा इसके अंदर भी कहां कहां वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। आप इंटरनेट पे सर्च करके देखिए, आज ही मैं सर्च कर रहा था इंटरनेट के ऊपर कि डिप्लोमाज, मतलब वैकेंसीज आफ्टर डिप्लोमा, तो मतलब थाउजेंड्स ऑफ वैकेंसीज आर देयर जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में निकलती हैं, या प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट फैक्ट्रीज, आप देखेंगे NCR एरिया के अंदर, गुड़गांव के अंदर इतनी सारी वर्कशॉप्स है, फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, तो वहां पर डिप्लोमाज की जॉब काफी निकलती है, ठीक है। थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे थोड़ा सा लाइन हार्डवर्किंग होता है आपको, मतलब बिल्कुल लोअर लेवल से स्टार्ट करना रहता है, और धीरे धीरे धीरे धीरे आपका लेवल इंप्रूव होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी। तो ये हमारा आज का ऑब्जेक्टिव रहेगा वोकेशनल कोर्सेज के बारे में। तो लेट अस स्टार्ट विद इट। थोड़ा ये समझें कि वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, थोड़ा सा उसकी थ्योरी के बारे में बताऊंगा आपको पहले, फिर हम बात करेंगे कि कौन कौन से कोर्सेज होते हैं 10th के बाद। मैंने आपको पहले ही बताया कि 10th के बाद कई बार कंफ्यूजन हो जाता है, या हम ये कह सकते हैं कि हमारे पेरेंटल, जो हमारे फैमिली जो है, वो ज्यादा फाइनेंशियली हमें सपोर्ट नहीं कर सकते, तो उनका कहना ये होता है भी 2-3 सालों में आप कोई ऐसा टेक्निकल कोर्स कर लीजिए, जिसके बाद उसको यूज करके आप अपना कोई छोटा मोटा काम स्टार्ट कर सकते हैं, या कहीं पर आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमारे पेरेंट्स का एक एम सा होता है कि 2-3 साल कुछ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर दी, और उसके बाद फिर आप अपना कुछ काम करना स्टार्ट कर सकें। तो वोकेशनल कोर्सेज एक तरह से करियर स्टार्ट करने का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, इट इज अर्ली बिगनिंग, ठीक है। मतलब वही अगर हम पहले 12th करें, फिर हम बीटेक करें 4 साल की, और फिर उसके बाद एमटेक करें, तो वो एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। वही डिप्लोमा कोर्सेज में हमें बहुत जल्दी, मतलब 3 साल का डिप्लोमा आपने किया और उसके बाद आपको जॉब मिल जाती है प्राइवेट सेक्टर में, काफी गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफी वैकेंसीज आती हैं डिप्लोमाज की, गवर्नमेंट PSUs में भी काफी वैकेंसीज आती हैं। आप उसके बाद इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं, वो भी मैं बात करूंगा आज के इस सेशन में कि उसका क्या प्रोसीजर रहता है। तो वोकेशनल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं, वोकेशनल कोर्सेज ना स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं। आपने एक तरह से हैंडीक्राफ्ट में डिप्लोमा करना है, ब्यूटिशियन में डिप्लोमा करना है,
ठीक है, इस तरह से मतलब बहुत स्ट्रीम है। अभी हम जनरली जो मानते हैं कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, ये पांच छह स्ट्रीम की हम बात करते हैं, बट अगर आप इनडेप्थ में जाओगे तो वोकेशनल कोर्सेज में काफी ज्यादा स्ट्रीम्स अवेलेबल होती है। कई जो गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर स्ट्रीम ही बहुत कम होती है, पर वो तो जैसे भी आप जहां भी अप्लाई करेंगे, बाकी काफी ज्यादा स्ट्रीम्स होती हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर, और उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी दिया जाता है। ऑब्जेक्टिव

0: यही रहता है कि 3 ईयर स्पेंड करने के बाद में आप कहीं ना कहीं अपना वर्क करने की स्टेज में आए, आप अपना करियर स्टार्ट कर पाए डिप्लोमा करने के बाद में। तो जैसे पॉलिटेक्निक्स को हम कहते हैं बेसिकली दैट इज वोकेशनल कोर्स, तो पहली चीज की 10th क्लास के बाद आप एडमिशन ले सकते हैं और ये इक्वलेंट टू 12th क्लास होता है। तो इसका मतलब 3 साल में आपकी 12th भी हो जाती है और प्लस में आपका टेक्निकल एजुकेशन भी आप सीख जाते हैं जिस स्ट्रीम में आप अपना काम करना चाहें। इसके कई सारे किन किन स्ट्रीम में ये रहता है आप देखेंगे, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में, हेल्थ केयर में, ऑटोमोबाइल्स में, एनिमेशन में, फैशन एंड टेक्सटाइल में, मतलब इतनी स्ट्रीम्स हैं वोकेशनल कोर्सेज के अंदर। यस, स्टिचिंग में है, ब्यूटी कल्चर में है, तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना वोकेशनल में आती है। आप देखते हैं जैसे रीड के ऊपर भी एक तरह से हम ये कहेंगे, जैसे आप स्टिचिंग, जैसे बहुत आप में से लेडीज ऐसी हैं जो स्टिचिंग का कोर्स करती हैं, एक टाइप से जो ब्यूटिशियन का लेवल करती हैं, तो वही चीज आप ऐसे, मतलब जो यहाँ रहता है वो इसे इनफॉर्मल एजुकेशन, ठीक है, मतलब उसका आपने सीखा और उसको आपने डायरेक्ट फिर इम्प्लीमेंट किया, अपना काम स्टार्ट किया। एक होता है कि 10th के बाद आपने फॉर्मली कोर्स में एडमिशन लिया, 2 या 3 साल का आपने कोर्स किया, ठीक है। तो ये मतलब इतनी सारी स्ट्रीम्स हैं कि आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से अपना करियर चूज कर सकते हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा जो लोग पॉलिटेक्निक में जाने से जो बचते हैं, या जी हम ये कहें कि काफी लोग ऐसे भी हैं आपको मिलेंगे जो आपको ये कहेंगे कि पॉलिटेक्निक के बाद जॉब अपॉर्चुनिटी कम होती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज तो है बट आपको मतलब कुछ साल मेहनत करनी रहती है, क्योंकि आपको बहुत अच्छे लेवल से एंट्री नहीं होती, एक तरह से बिल्कुल एलिमेंट्री लेवल से आप किसी इंडस्ट्री में एंटर करते हैं और धीरे धीरे 2-4-5 साल मेहनत करने के बाद में फिर आप एक अच्छे लेवल पे पहुंच पाते हैं, एक हैंडसम सी सैलरी आपकी हो जाती है। बट स्टार्टिंग में आपको 2-4 साल हार्डवर्क करना रहता है, क्योंकि एज भी आपकी कम है ना, अभी 10th के बाद आपने 3 साल का डिप्लोमा किया, मतलब 20-21 साल के आसपास आपकी एज है, तो 20-21 ईयर्स के अंदर आपने अपना जॉब स्टार्ट किया और 4 से 5 सालों में आप, जब आपकी एज 25 ईयर्स तक होती है, तो आप एक ठीक ठाक सैलरी पे पहुंच जाते हैं अगर आपने स्टार्टिंग आपकी ठीक ठाक हो गई है तो, राइट। तो ये एक सारे एडवांटेजेस हैं डिप्लोमा कोर्सेज के। अब देखिए किन किन फील्ड्स में है, थोड़ा मैं टाइम जो है वो इस बात पे स्पेंड करूंगा कि किन किन फील्ड्स में है। थोड़ा सा डिप्लोमा की दिक्कत क्या है कि जैसे आप कोई हरियाणा से बिलोंग करता है, कोई आप में से उत्तराखंड से है, कोई उत्तर प्रदेश से है, तो हमारे आसपास जो डिप्लोमा कॉलेजेस है, जो पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होते हैं, कुछ कॉलेजेस में उतने कोर्सेज अवेलेबल नहीं होते, एक स्पेसिफिक से कोर्स अवेलेबल है। एक बहुत बड़ी हमारे कॉलेजेस की प्रॉब्लम क्या रहती है कि कॉलेजेस में प्लेसमेंट की फैसिलिटी ज्यादा नहीं होती, मतलब जितने डिप्लोमा कॉलेजेस हैं वहां प्लेसमेंट पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। तो अगर उस चीज को थोड़ा एक तरह से ध्यान दिया जाए तो बच्चों की अगर वहीं से ही प्लेसमेंट होनी स्टार्ट हो जाए तो डिप्लोमा कोर्सेज भी काफी मार्केट में वेटेज ले के आ सकते हैं। तो जैसे पहले हम बात करेंगे कि हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट कोर्सेज, ठीक है, ये भी आपके डिप्लोमा के अंदर आते हैं, वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। ये बेसिकली होटल से डील करते हैं या ऐसा इंडस्ट्री जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जिसे हम कहते हैं, इसमें आपका डिप्लोमा होता है फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर। अब ये फूड एंड बेवरेज सर्विस जो है, जैसे जितनी भी आपकी सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जैसे जो कोल्ड ड्रिंक जिसे हम कहते हैं, कोका कोला है, कोक है, तो आप अगर यहां से डिप्लोमा करते हैं तो उसमें जॉब आपको मिल जाती है एज ए फूड एनालिस्ट की, ठीक है, इस तरह की जॉब्स रहती हैं। डिप्लोमा इन बेकरी एंड कन्फेक्शनरी होता है, जैसे आप सोच के देखिए गुड़गांवा में या NCR के अंदर अगर आप बेकरी का प्रोडक्ट जो बनाना सीखना चाहते हैं तो उसकी क्लासेज के काफी ज्यादा फीस चार्ज की जाती है प्राइवेट के अंदर, ठीक है, मतलब आपको बेकरी और जो कन्फेक्शनरी की आइटम्स होती हैं काफी ज्यादा हैवी फीस चार्ज की जाती है सिखाने के लिए, केक बनाना सिखाना और प्रोफेशनली काम करना। अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है 3 साल का बेकरी के अंदर, तो उसके बाद आप अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं। और स्मॉल स्केल पे आप देखिए आज के टाइम के अंदर जो बेकरीज हैं बहुत थोड़ी इन्वेस्टमेंट से, देखिए ये वो चीजें हैं बेसिकली जो वोकेशनल कोर्सेज का कॉन्सेप्ट ही यही था कि आप लो इन्वेस्टमेंट से अपना काम स्टार्ट कर सकें, ठीक है। जैसे अगर आपने बेकरी में कोर्स किया हुआ है तो आप बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट से अपनी बेकरी ओपन कर सकते हैं, ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, राइट। डिप्लोमा 3 साल का होता है, जितने भी डिप्लोमा होते हैं ना, देखिए 10th क्लास के बाद में जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो सभी 3 साल के होते हैं, ठीक है, कि जो डिप्लोमा होल्डर है वो 12th के इक्वलेंट है, तो 3 साल का डिप्लोमा रहता है। क्वेश्चन था जैसे मैंने आंसर किया उसका। हाँ जी, मैं बात कर रहा था बेटे बेकरी एंड कन्फेक्शनरी का, तो आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आज के समय में केक्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा हो चुकी है, मेरे हिसाब से कोई विरला ही घर ऐसा होगा जिसमें बर्थडे सेलिब्रेशन किया जाता है बिना केक, ठीक है, छोटे छोटे बच्चा, ठीक है, तो वो मतलब अगर अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है या फैमिली में कोई भी फंक्शन है, एनिवर्सरी है किसी की, तो केक तो बहुत छोटा, मतलब केक तो एक आप मान के चलिए असेंशियल आइटम है, ठीक है, आप अपने आसपास में भी देखेंगे काफी बेकरीज होती हैं, तो अगर आपने प्रोफेशनली तरीके से कोर्स किया हुआ है तो आप उसको काम कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है वो मतलब 22 से 23 साल तक है, मतलब जैसे आपकी 10th जो है ना 17 ईयर में हो जाती है, ऑलमोस्ट 17 नहीं तो 18 में हो जाती है, तो उसके बाद 4-5 साल तक आप डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हैं। गैप ईयर के लिए आपको सर्टिफिकेट देना होता है, एक एफिडेविट आपको देना होता है कि ये जो गैप आपका है इसमें आपने कुछ किया है। ऐसे ही फूड प्रोडक्शन में क्राफ्ट कोर्स है, आप देखिए रीड के सेंटर्स पे भी कई सेंटर्स पे ऐसी एक्टिविटी की गई है, जैसे जहां पर फूड प्रोडक्शन से रिलेटेड, फूड मतलब एक तो हम खाना बनाते हैं एट अवर होम, ठीक है, एक हम प्रोफेशनल कुकिंग करते हैं, प्रोफेशनल कुकिंग मतलब हमें 50 लोगों का खाना बनाना है, 100 लोगों का खाना बनाना है, मैंने देखा है पीछे कई सेंटर्स के ऊपर, जैसे आपका एक तरह का जो कुमासपुर सेंटर है, कई सेंटर्स में इस तरह की ट्रेनिंग भी हुई है। तो जो डिप्लोमा की एज जो है वो आपकी मिनिमम 17 है, मैक्सिमम जैसे मैंने आपको बताया 4 से 5 साल है, बट भाईपाल जी ने आंसर किया है कि 24 साल तक आप डिप्लोमा कर सकते हैं, तो 17 से 24 साल तक एज है इसमें, ठीक है। फिर डिप्लोमा इन कुकरी है, हाउस कीपिंग है, रेस्टोरेंट एंड काउंटर सर्विस है, होटल रिसेप्शन है, हॉस्पिटैलिटी ऑपरेशन मैनेजमेंट है। आप देखिए जैसे अगर आपको होटल इंडस्ट्री में काम करना है तो उसमें एक ऑप्शन तो क्या रहता है कि 12th के बाद आप होटल मैनेजमेंट करिए, कोर्स करिए, ठीक है, वो आपका 3 साल का कोर्स रहता है BSc इन होटल मैनेजमेंट, उनका भी हम एक अलग से क्लास लेंगे कि जिसमें मैं होटल मैनेजमेंट फैशन डिजाइनिंग का भी हमने एक अलग से सेशन प्लान किया हुआ है। तो एक तरीका तो क्या रहता है कि पहले आपने 12th किया और 12th के बाद में आपने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया, 3 साल का आपका कोर्स रहता है, BSc इन होटल मैनेजमेंट होती है। सेकेंड ऑप्शन क्या रहता है कि आपने डिप्लोमा किया 3 साल का 10th के बाद, और हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के किसी भी कोर्स में जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो वो करने के बाद आप उस इंडस्ट्री में काम स्टार्ट कर सकते हैं। आप देखिए आपके आसपास में इतने होटल्स ओपन होते हैं, काफी रेस्टोरेंट्स हैं, तो उन रेस्टोरेंट्स में जो लोग काम करते हैं, पहले तो क्या होता था कि जो एक तरह से जो वेटर है या जो कुक है वो कोई भी एरा गेरा रख लिया जाता था, बट आज के समय में आप देखेंगे जैसे ही होटल का लेवल ज्यादा बढ़ता जाता है तो दे ऑल्सो नीड सम प्रोफेशनल पीपल, ऐसा लोग, ऐसे लोग जिनको उसके बारे में पता हो। तो एक ये हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट का भी स्कोप है और इसमें भी सोचा जा सकता है डिप्लोमा करने का अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो इसके बाद सेकंड आता है इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, मतलब जो हमारे एक तरह से जो टेक्निकल हम कहें जिसको, कि ज्यादातर बच्चे जिस लाइन में जाके डिप्लोमा करते हैं, मैक्सिमम आप देखेंगे जब जहां भी हम वोकेशनल या वोकेशनल कोर्सेज या पॉलिटेक्निक डिप्लोमा की बात करेंगे तो मैक्सिमम बच्चे जो है वो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा करते हैं, ठीक है, जिसमें आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप होता है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जॉब जल्दी मिल जाती है। आप देखेंगे इंडिया में इतनी कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ट्रक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, ठीक है, जहां पर आपको अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आपको मतलब जॉब मिल जाती है इजिली, स्टार्टिंग लेवल से आपकी एंट्री होती है किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, फिर आप धीरे धीरे अपना करियर बना सकते हैं। केमिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होता है, सिविल इंजीनियरिंग में होता है, सिविल इंजीनियरिंग में तो गवर्नमेंट जॉब्स भी काफी निकलती हैं अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो, रेलवेज में पीछे हमने बात किया था, जैसे रेलवेज में तो डिप्लोमाज की वैकेंसी ज्यादा आती है, जैसे आपको ध्यान हो मैंने अभी पीछे एक सेशन लिया था कि जॉब अपॉर्चुनिटीज इन रेलवे, जो हमारा रेलवे डिपार्टमेंट है उसमें अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, तो रेलवे में जो भी हमारी टेक्निकल पोस्ट है, ठीक है, उन टेक्निकल पोस्ट में काफी पोस्ट ऐसी हैं जो डायरेक्ट आपसे डिप्लोमा मांगती है, तो उसमें अगर आपने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है, मतलब ये सारी स्ट्रीम्स हैं, इनमें इंजीनियरिंग भी होती है, इन सब में आप बीटेक भी कर सकते हैं, पर अगर आपने डिप्लोमा भी किया हुआ है इसके अंदर 3-3 साल का, अब तेरी समस्या थोड़ी ये रहती है, मैं आपको बताऊं एक्चुअल रूट कोज क्या है, दिक्कत कहां पर है। दिक्कत सारी यहां पर है कि हमारे इंडिया में वोकेशनल कोर्सेज या हम डिप्लोमाज को कहें, इनको इतना सीरियसली नहीं लिया जाता, ठीक है। उसके पीछे कारण क्या है कि इतना सीरियसली नहीं लेते, जो कॉलेज में टीचर्स हैं वो भी इतना ज्यादा ध्यान नहीं देते, और दूसरा बच्चे भी नॉन सीरियस एटीट्यूड इसमें रखते हैं। अगर आप किसी अच्छे पॉलिटेक्निक से 3 साल का डिप्लोमा करते हैं, 3 ईयर बहुत बड़ा टाइम होता है, तो जिस भी फील्ड में आप डिप्लोमा करेंगे उस फील्ड में आपको एक अच्छा नॉलेज हो जाता है, अच्छा अवेयर हो जाते हैं उस फील्ड से रिलेटेड, आपको उस फील्ड से रिलेटेड जितने भी टेक्निकल नॉलेज काम करने में चाहिए उतना टेक्निकल नॉलेज आपको मिल जाता है। आप देखेंगे, जैसे मैं आप एक चीज और ऐड करूं यहां पर, काफी बच्चे ऐसे हैं जो दे गो फॉर आईटीआई, वो क्या करते हैं आईटीआई भी करते हैं, ठीक है। अब वही चीज देखिए, जो आईटीआई है वो डिप्लोमा से भी लो लेवल में काउंट किया जाता है, मतलब ये 3 आपकी लेयर्स हैं। फर्स्ट लेयर जैसे सबसे लो लेवल पे अगर हम बात करें तो आईटीआई आता है, सेकेंड लेवल पे आपके डिप्लोमाज होते हैं, पॉलिटेक्निक डिप्लोमाज होते हैं, और थर्ड लेवल पे आपका बीटेक होता है। तो एक तरह से ये तीनों ही टेक्निकल एजुकेशन की लेयर्स हैं, राइट। तो आप अपने कैपेबिलिटी के हिसाब से जो भी करना चाहें, ठीक है, वो आप उसमें कर सकते हैं, राइट। तो जैसे इसमें ये सारी फील्ड्स में आप अपना डिप्लोमा कर सकते हैं कि जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट हो, और उसके बाद अगर आप उसी में अपना करियर बनाना चाहें आगे फर्दर, आप उसमें इंजीनियरिंग करना चाहें तो फिर अपना इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। बाकी मैं आपको बताऊं स्टेट वाइज, जैसे हरियाणा की हम बात करें चाहे हम यूपी की बात करें, तो आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, या टाउन एंड प्लानिंग का डिपार्टमेंट है, या काफी डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर डिप्लोमा होल्डर की वैकेंसीज आती है। आपका जो बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट है वहां पर डिप्लोमा होल्डर्स की, जिन्होंने इलेक्ट्रिकल्स में किया हुआ है, उनकी काफी वैकेंसी आती है। आपके जो एक तरह से टाउन प्लानिंग है उनमें सिविल इंजीनियरिंग की काफी वैकेंसीज आती है अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है, ठीक है। तो मतलब ये डिपेंड करता है कि आपने किस स्ट्रीम में डिप्लोमा किया है। लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण, देखो जनरली क्या होता है, मैंने देखा बहुत बच्चों से मिलते हैं जिन्होंने डिप्लोमा किया और बाद में दे से भी डिप्लोमा करने का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। वो क्या होता है कि वो बाहर जॉब से अप्लाई नहीं कर पाते ज्यादा, मतलब लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण उन्हें पता ही नहीं चल पाता कि कहाँ वैकेंसी निकली हुई है, कॉलेज उसमें सपोर्ट नहीं करता प्लेसमेंट के अंदर, तो जिस कारण फिर वो दे फील कि डिप्लोमा का कोई ज्यादा यूज नहीं हुआ। बट काफी बच्चे ऐसे भी हैं एनसीआर एरिया में स्पेशली, जो डिप्लोमा करने के बाद में एक ठीक ठाक कंपनी में जिनकी सेटलमेंट हो जाती है और एक अच्छा लेवल पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। इसके साथ साथ और भी काफी फील्ड्स हैं जिसमें डिप्लोमा होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म में है, इंग्लिश कम्युनिकेशन एंड पर्सनल दैट इज प्रेजेंटेशन स्किल्स में, टेक्सटाइल डिजाइनिंग में, फैशन डिजाइनिंग है, हेयर एंड स्किन केयर में। आप देखते हैं आजकल VLCC का नाम आप सबको पता ही होगा, VLCC एक तरह से आपका जो ब्यूटिशियन से रिलेटेड कोर्सेज कराते हैं, ठीक है, या उसमें आपका हेयर या जो स्किन केयर के कोर्सेज रहते हैं, तो वो एक तरह से प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बट वहीं गवर्नमेंट सेक्टर में भी ये इनसे रिलेटेड डिप्लोमाज होते हैं। ब्यूटिशियन का डिप्लोमा है, इवेंट मैनेजमेंट है, ऑफिस मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर मैनेजमेंट है, कॉस्मेटिक एंड लाइफ प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, कैटरिंग मैनेजमेंट है। तो मतलब इट्स अ वेरी वाइड एरिया, ठीक है, मतलब बहुत बड़ा स्कोप है, काफी ज्यादा इसमें स्ट्रीम्स हैं, ठीक है, ज्यादा स्ट्रीम्स हैं, इसलिए आप अपना फ्यूचर बिल्डअप कर सकते हैं अगर आपने किसी भी कोर्स में डिप्लोमा किया है। बट स्टार्टिंग में थोड़ी मेहनत रिक्वायर्ड होती है इसके अंदर, क्योंकि इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, इमीडिएट बहुत अच्छी जॉब्स नहीं है डिप्लोमा में। डिप्लोमा करने के बाद कुछ टाइम आपको मेहनत करनी रहती है, तभी आप अच्छी जॉब ले सकते हैं। अब क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, देखो डिप्लोमा तो आपने कर लिया, डिप्लोमा करने के बाद क्या क्या चीजें आप कर सकते हैं, जैसे मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल आपको देता हूं। वेब डेवलपर का आप काम कर सकते हैं, वेब डेवलपर मतलब जो एक टाइप से जो आप लोगों की जो वेबसाइट्स होते हैं, जो डेवलप करते हैं, अगर आपने कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा किया हुआ है और उसके बाद आपने किसी प्राइवेट कॉलेज से साल डेढ़ साल का कोई कोर्स भी किया है थोड़ा लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने में, तो वेब एज ए डेवलपमेंट आप कर सकते हैं, साइट्स जो बनती हैं वो आप बन सकते हैं बना, जो डेटा एनालिस्ट का काम होता है, ब्यूटिशियन का आप अपना काम कर सकते हैं। आप देखो मैं काफी रीड के कई सेंटर्स पे मैं एज ए लास्ट ईयर मैंने कई सेंटर्स आपके देखे जहां पर क्या होता है कि एक टाइप से ब्यूटिशियन का कोर्स करवाया जाता है, ठीक है, और ब्यूटिशियन का कोर्स में भी आपके लेवल्स हैं लेवल वन लेवल टू, और जब आप एडवांस कोर्स कर लेते हैं तो उसके बाद मोटिवेट किया जाता है फीमेल्स को कि आप अपना ब्यूटी पार्लर खोलें। कई जगह पर मैंने देखा है कि काफी सक्सेसफुल ब्यूटी पार्लर भी है। मैं जैसे रामपुर की बात करूंगा, रामपुर में मैं गया था पीछे हो गया मुझे साल सवा साल, तो वहां पर जैसे भी हमने जैसे विमेन एंटरप्रेन्योरशिप पे काम किया था, तो वहां पर काफी एग्जांपल्स ऐसे थे जिन्होंने रीड के सेंटर के थ्रू ब्यूटिशियन का कोर्स किया, और ब्यूटिशियन का कोर्स करने के बाद फिर उन्होंने अपना जो पार्लर ओपन किया, और काफी पार्लर उसमें ऐसे हैं जो सक्सेसफुली काम कर रहे हैं। ऐसे ही एक टाइप से जो कुमासपुर में भी ऐसा चल रहा था आपका माने, मतलब काफी सेंटर्स पे ये कोर्सेज चलते हैं, तो मतलब वही चीज है कि वहां पर हम जो इनफॉर्मल कोर्स आपको दे रहे हैं वही अगर आपने 10th के बाद एक 3 साल का डिप्लोमा किया हुआ है तो एक तरह को हम कह सकते हैं ये फॉर्मल एजुकेशन है आपकी, तो ये चीजें आप सारी कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये आजकल जैसे सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, ये भी एक बहुत फ्यूचर का एक तरह से हम ये कह सकते हैं इज द करियर। SEO बेसिकली क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या है कि आप देखते हैं आजकल लोग YouTube के थ्रू Facebook के थ्रू अपने चैनल्स बनाते हैं या काफी एक्टिविटी करते हैं ताकि उनको वहां से इनकम आनी स्टार्ट हो जाए, ठीक है, तो लोग साइट्स बनाते हैं और ये चाहते हैं कि जब सर्च किया जाए तो उनका साइट सबसे ऊपर आए, उनका नाम सबसे ऊपर आए, तो ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है, इसका एक कोर्स होता है, अगर आपने ये किया हुआ है SEO का कोर्स किया हुआ है तो फिर आप एज ए SEO पर्सन काम कर सकते हैं कंपनीज के लिए। हेयर ड्रेसर का भी काम रहता है, आपका ग्राफिक डिजाइनर है, सोशल मीडिया मैनेजर है, शेफ है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, मतलब इट्स अ वेरी वाइड स्ट्रीम। मैं आपको बताऊं जो अगर हम कई और कंट्रीज को कंपेयर करें, USA की बात करें, UK की बात करें, तो वहां पे अर्ली एज से ही टेक्निकल एजुकेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता है, जबकि हमारे इंडिया में अलग है, हमारे इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन का भी ज्यादा रोल नहीं है अभी, इतना ज्यादा मतलब क्रेज नहीं है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में काम किया गया है, थोड़ा सा उसमें कहा गया है कि वोकेशनल कोर्सेज पे ज्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ एकेडमिक कोर्सेज, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज के बाद आप बहुत जल्दी सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, मतलब बहुत जल्दी आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपना कुछ काम कर सकते हैं। आप देखते हैं सुनते भी होंगे कि जो मोदी जी जितनी बार भी स्पीच देते हैं कई मैक्सिमम टाइम, चाहे वो अपने मन की बात में दे चाहे कहीं भी दे, तो उनका एक बहुत बड़ा एजेंडा रहता है कि एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप किया जाए, मतलब हम ये ना माने कि सरकार हमें जॉब देगी, हम खुद ही अपने एंड के ऊपर जॉब क्रिएशन की बात करें, ठीक है, मतलब अभी हमारे यहाँ ट्रेंड थोड़ा रिवर्स है, हम चाहते हैं कि हमने एजुकेशन कंप्लीट किया, अपना कोर्स कर लिया, अब कोर्स करने के बाद में अब जो गवर्नमेंट है वो हमें जॉब देते, एक तरह से ये हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं कि दैट इज साइकोलॉजी, हमारा सोच ये है, जबकि गवर्नमेंट के पास इतनी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, तो हमें खुद कुछ भी कोर्स कोई भी टेक्निकल स्किल लेने के बाद में हमें अपने लेवल पे मेहनत करनी चाहिए और खुद भी हम अपने पैरों पे खड़ा हों, और उसके साथ साथ हमने कुछ लोगों को अपने साथ में एम्प्लॉय भी करा, उनको भी हमने जॉब अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करी, तो ये एक तरह से मतलब ये सारी करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल होती है जो अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप एक तरह से अपना काम कर सकते हैं, बहुत जल्दी आप सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब आपको किसी की नौकरी करने की नीड नहीं है, आप थोड़ी सी मेहनत करके अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो डिप्लोमा के बाद एक ये काम हो सकता है, एंटरप्रेन्योरशिप जो आपका डेवलपमेंट है वो काफी उसको हेल्प मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट जॉब्स है, ऐसा नहीं कि मतलब प्राइवेट सेक्टर में जॉब्स हैं, एक तरह से काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती हैं डिप्लोमा होल्डर्स के लिए, ठीक है, मैंने पिछले जैसे अभी अक्टूबर और सितंबर की मैंने काफी जॉब्स निकाल के यहाँ शो करता हूँ, किन किन कंपनीज में, किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब मिलती है या गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। देखिए आप सब जानते हैं कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग होता है, मतलब एक तरह से जो गवर्नमेंट की कंपनीज होती हैं, जिसमें सेल या आपकी स्टील की कंपनी है, भेल है, BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है, बेल है, गेल है, IOCL है, मतलब पेट्रोलियम कंपनीज है, HPCL है, ONGC को तो सब जानते ही है कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, तो मतलब ये सारी जो है ये पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है। ठीक है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, जिनके इंडिया में कई कई जगह पर काफी बड़े बड़े प्लांट हैं। ठीक है, अब उन प्लांट्स में क्योंकि जब टेक्निकल काम होगा तो टेक्निकल लोग चाहिए काम करने के लिए, और टेक्निकल लोग जो काम करने के लिए चाहिए होते हैं उसमें प्राइमरी दो तरह के टेक्निकल लोग चाहिए होते हैं। पहले तो वो जो हायर क्वालिफिकेशंस के हैं, हायर क्वालिफिकेशंस का मतलब क्या है, जिन्होंने बीटेक किया हुआ है। ठीक है, सेकंड जो एक तरह से जो मिडिल लेवल जो एम्प्लॉयज होते हैं वो चाहिए होते हैं, जिसमें डिप्लोमा होल्डर्स को काफी एक तरह से उनकी डिमांड रहती है, तो इसमें डिप्लोमा होल्डर्स को जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी मिलती है या टेक्नीशियन की वैकेंसी मिलती है। अब देखिए कहीं भी JEE की वैकेंसी निकलती है ना जूनियर इंजीनियर की, क्योंकि जो डिप्लोमा होल्डर एक तरह से जूनियर इंजीनियर ही है, टेलीकॉम डिपार्टमेंट में, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में, जहां भी JEE की वैकेंसी निकलती है, जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी निकलती है, वो बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए होती है। तो वहां पर आप कर सकते हैं। हाँ सर, जो बीटेक मई में, हाँ उनको अगर उसमें जाना है तो फिर गेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, ये आपने सही यहां बताया, मैं भी इसको बाद में पूरे उसमें डिस्कस करूंगा एक तरह से, कि अगर जो बीटेक वालों को अगर इनमें जाना है, इन PSU में जाना है, तो गेट एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद ही जा सकते हैं, पर डिप्लोमा होल्डर्स में जूनियर इंजीनियर की वैकेंसीज डिप्लोमा करने के बाद ही उन्हें मिल जाती है। देखिए ये मैं, ये स्ट्रीम्स है सारी, एग्रीकल्चर में भी डिप्लोमा होता है, ऑटोमोबाइल्स है, केमिकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, कंप्यूटर साइंस है, तो ये अलग अलग वैकेंसीज के स्ट्रीम्स है, होटल मैनेजमेंट में है, मैरीन इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में है, तो मतलब ये इतनी स्ट्रीम्स में, इतने अगर आपने इन स्ट्रीम्स में डिप्लोमा किया हुआ है तो इनकी वैकेंसीज आती रहती है टाइम टू टाइम। ये मैंने कुछ पिछले कुछ टाइम की वैकेंसीज का मैं एक चेक कर रहा था, अभी इसमें हम देखेंगे तो सबसे ज्यादा कंप्यूटर साइंस में वैकेंसी आएंगी, राइट। तो ये सभी वैकेंसीज जो है वो अलग अलग कंपनीज में है, जैसे ये मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, जैसे CMPDI है, ये अभी 29 सितंबर को वैकेंसी निकली है इसके अंदर, CMPDI, सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये इसलिए आपको मैं यहां बता रहा हूं कि इसमें जो वैकेंसीज आती है ना, अलग अलग पूरे इंडिया में PSU फैली हुई है। आप देखेंगे हमारे इंडिया में काफी बहुत बड़ी बड़ी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं या बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, बस इसमें थोड़ा ये रहता है कि या तो हमारा घर ऐसी जगह पे हो जो मतलब जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया है, क्योंकि जॉब तो वहां मिलेगी। जैसे मैं आपको बताऊं, आप में से जो लोग रामपुर के पास है, उत्तराखंड से जैसे हैं, तो आप जैसे उत्तराखंड से हल्द्वानी की तरफ जाएंगे तो वहां पर अब काफी बड़ा इंडस्ट्रियल वो है, मतलब एक तरह से जो लाल कुआं है, पंत नगर है, वो जो बेल्ट है, तो वहां काफी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज आई हुई है, मतलब वहां जॉब इजिली मिल जाती है। हाँ, दैट इज द रुद्रपुर। और वहीं अगर आप इधर आए, अपना NCR एरिया में आते हैं, अगर आप गुड़गांव की बात करते हैं, तो जैसे आपका मानेसर है, तो यहाँ पर काफी इंडस्ट्रीज है, तो बहुत इजीली डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब्स मिल जाती है। या फिर अलग अलग प्लेसेस पर, जैसे कुछ स्टेट वाइज भी वैकेंसी निकलती हैं, जैसे देखो आप इसमें देखेंगे जो सेकंड पोस्ट है, हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की 1661 जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की वैकेंसीज आई है। ठीक है, जो फ्रेशर्स के लिए है, जिसमें फिक्स किया होता है कि आपका ऑफिस एंड मैनेजमेंट में डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से मतलब वैकेंसीज काफी होती हैं। थोड़ा सा आप ये कह सकते हैं कि अवेयरनेस आपके अंदर होनी चाहिए, आपके पास में लिंक्स के सोर्सेज होने चाहिए भी, कहां से आपको पता चल पाए कि किस किस फील्ड की वैकेंसी कहां से आई है। आजकल तो इंटरनेट के थ्रू आप घर बैठे ही पता कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज और ऐड करूं कि आप में से जो लोग ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर है या कोई आगे डिप्लोमा करने की अभी सोच रहा है, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ जो भी आपने 3 साल का जिस भी स्ट्रीम में आपने डिप्लोमा किया, तो टेक्निकल एजुकेशन के साथ साथ आप थोड़ा सा एजुकेशन अपने आप को इंटरनेट नो हाउ, जिसे हम कहते हैं कि अभी अगर हम इंटरनेट नो हाउ की बात करें तो हमें सभी को फेसबुक यूट्यूब तो सबको पता है, सभी लोग उसे यूज भी करते हैं, ठीक है, पर हम में से बहुत कम लोग ऐसे हैं जो गूगल अलर्ट यूज करते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, वैसे तो काफी एक तरह से साइट्स भी है जो आपको एक टाइप से जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स निकलती हैं वो आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर भी अगर आपको एक स्पेसिफिक जॉब चाहिए, जैसे आपने डिप्लोमा किया हुआ है, डिप्लोमा होल्डर से रिलेटेड आपको जॉब्स के बारे में पता करना है, तो आपने गूगल अलर्ट के अंदर जॉब्स आफ्टर डिप्लोमा डाल दिया, तो उसमें क्या रहता है कि एवरी डे पूरे इंडिया के अंदर किसी भी पेपर में, किसी भी वेबसाइट के ऊपर, गूगल पे किसी वेबसाइट के ऊपर अगर डिप्लोमा के बाद की जॉब निकली है ना, तो उसका एक तरह से आपको लिंक मिल जाता है, तो वहां से आप सर्च आउट कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि वैकेंसीज काफी ज्यादा है। बस ये है कि थोड़ा सा एरिया फर्क पड़ जाता है कि आप अगर एनसीआर में रह रहे हैं और आपकी जॉब निकली है वो आपकी बंगाल में है, वेस्ट बंगाल में है, कहीं महाराष्ट्र में है, तो हम अप्लाई नहीं कर पाते, ठीक है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अदरवाइज हम अगर डिप्लोमा होल्डर्स की बात करें तो 12th, 10th के बाद में 3 साल कोर्स करने के बाद जॉब लेना कोई ज्यादा मुश्किल की बात नहीं है, और एक तरह से गवर्नमेंट सेक्टर में भी वैकेंसीज रहती है। पर एक प्रॉब्लम और भी है कि गवर्नमेंट सेक्टर में जो वैकेंसीज है के बाद एग्जाम होता है आपका, एग्जाम मतलब दे टेक द टेस्ट, और टेस्ट में जो आता है वो बेसिकली क्या रहता है कि एक तो आपका जो भी जिस फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिस भी फील्ड में आपने डिप्लोमा किया हुआ है उस फील्ड के बारे में नॉलेज आपको अच्छी हो, आपने अच्छी ढंग से पढ़ाई कर रखी हो, और उसके साथ साथ जो सेकेंड पेपर आपका रहता है उसमें जनरल रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जो बेसिक आपके सब्जेक्ट होते हैं जो किसी भी गवर्नमेंट जॉब में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, तो वो भी आपको थोड़ा बहुत तैयार करना रहता है जो आपको हेल्प करते हैं जॉब लेने के लिए। ये और भी ये आप देखेंगे सभी अक्टूबर मंथ की वैकेंसीज हैं, आप देखिए ये 7th अक्टूबर, 6th अक्टूबर, 5 अक्टूबर, मतलब ये सारी वैकेंसीज जो है ये बेसिकली डिप्लोमा होल्डर्स के लिए है, ठीक है, कहीं पर 500 वैकेंसीज है, कहीं 42 है, कहीं 21 है, कहीं 36 है, राइट, किसी में एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, कोई फ्रेशर के लिए है, ठीक है। और जनरली आप देखेंगे जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशंस मैंने लिखी हैं, सभी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आपकी PSU या गवर्नमेंट सेक्टर की ऑर्गेनाइजेशन, मैंने किसी प्राइवेट का नाम नहीं लिखा है इसके अंदर, ये बताने के लिए आपको कि गवर्नमेंट में भी डिप्लोमाज की काफी ज्यादा वैकेंसी आती है, बशर्ते अगर हम उसमें थोड़ा सा अवेयर हो उनके बारे में, ठीक है, और अवेयर होने के साथ साथ हम अप्लाई भी करें, क्योंकि बहुत बच्चों की प्रॉब्लम क्या रहती है कि वो अप्लाई नहीं करते जॉब्स के लिए। आप मतलब मैं हम कई बच्चों को जानते हैं कि उनका एम तो है भी मुझे गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बट उनसे पूछे अगर भाई कहाँ का फॉर्म अप्लाई किया, कहता जी मैंने तो कभी फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया, फिर फॉर्म अप्लाई करता है तो वो तैयारी नहीं करता, तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं कि अवेयरनेस होना भी, एप्लीकेशन ऑफ द फॉर्म भी, उसके बाद प्रिपरेशन करना भी, मतलब एवरीथिंग प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ठीक है। अब ये तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी बातें आपको समझा दी कि क्या क्या डिप्लोमा में रहता है, और कुछ चीजें और भी हैं भी, जैसे जो अगर आप डिप्लोमा करते हैं तो उसमें आप प्रोफेशनल स्किल साथ साथ सीख जाते हैं, ठीक है भाई, आपने जो टेक्निकल जो भी आपने ट्रेनिंग किया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग किया, ठीक है, और वो टेक्निकल स्किल आपने सीख लिया तो जॉब लेने में आसानी रहती है। स्किल्ड एम्प्लॉयज की डिमांड हमेशा से रही है इंडिया में स्पेशली, और आप देखेंगे भी आने वाले टाइम में तो स्कोप और ज्यादा बढ़ेगा। जैसे आपने सुना होगा अभी कोविड के बाद में, जैसे कोरोना का अटैक हुआ COVID-19 के बाद में, वर्ल्ड वाइड चाइना को माना गया भी इसके पीछे जो एक तरह से चाइना वाज रेस्पॉन्सिबल, और स्टार्टिंग में तो यू हैव हर्ड इनटू द न्यूज, जैसे काफी वर्ल्ड में काफी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने ये अनाउंसमेंट किया था कि हम चाइना में जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वहां से हम अपनी इंडस्ट्रीज को चेंज करेंगे, ठीक है, जैसे जिसमें जापान था, USA था, फ्रांस था, तो वो मतलब वो चाइना से दे आर नॉट हैप्पी विद चाइना, ठीक है। अब देखिए वहां से इंडस्ट्री अगर निकल के इंडिया में आती है, आप देखेंगे इंडिया ने उसमें फिर काफी इनिशिएटिव लिया और एक तरह से ऑफर भी किया भी आप इंडस्ट्रीज इंडिया में लगाइए, यहाँ पर आपको ये टैक्स इंसेंटिव दिया जाएगा, ये बेनिफिट दिया जाएगा, तो ये काफी ज्यादा बातें चल रही हैं। तो अगर इतनी इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी तो आप सोच के देखिए उनमें काम करने वाले लोग भी तो चाहिए ना, और काम करने वाले लोग जो होते हैं वो ज्यादातर टेक्निकल लोगों की डिमांड होती है, और टेक्निकल लोगों में तो फिर जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं वही आपके सामने रहते हैं, ठीक है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं कि फ्यूचर में अच्छा साइन है कि अगर जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज इंडिया में आएंगी, जितना प्रोडक्शन एक्टिविटी यहाँ पर होगा उतना ही डिप्लोमा होल्डर्स को जॉब मिलेगी, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें मैटर करती हैं। दूसरा एक बहुत बड़ी बात और भी है कि जैसे आपके मेट्रो कॉरपोरेशन है, मैं आपको बताता हूँ जो DMRC है, जो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन है, हजारों लोग ऐसे हैं, हजारों एम्प्लॉयज ऐसे हैं DMRC के अंदर जो जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पे काम करते हैं DMRC में। और उसके लिए अगर हम क्वालिफिकेशंस की बात करें तो ओनली उसके अंदर क्या कहा गया है कि आपने डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास में 10th के बाद। काफी वैकेंसीज निकलती है। अब तो देखो एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि सैचुरेशन आ चुका है क्योंकि DMRC ऑलरेडी काफी रिक्रूटमेंट कर चुका है, बट स्टार्टिंग में जब नया नया ये कॉरपोरेशन आपका बना था उसमें जब नई नई वैकेंसीज निकलनी स्टार्ट हुई थी तो बहुत बच्चे ऐसे थे जो DMRC के अंदर लग गए, जिन्होंने थोड़ा बहुत मेहनत किया था और डिप्लोमाज किए हुए थे। और ऐसी अब हर स्टेट में आगे जो मेट्रो एक्सपेंड हो रही है तो जितनी ज्यादा एक्सपेंड होगी उतना ही जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं लोगों के लिए। फिर एक और बहुत बड़ी चीज है कि डिप्लोमा करने के बाद अगर आप इंजीनियरिंग करना चाहें तो उसमें भी आपको लेटरल एंट्री मिल जाती है, ठीक है। मतलब क्या है कि देखो वैसे तो बीटेक आपकी 4 साल की होती है, ठीक है, अगर आप 12th के बाद करते हैं तो अगर आपने 12th 10th के बाद डिप्लोमा किया है 3 साल का तो उसमें भी आपको डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन मिल जाता है, तो 1 साल आपका बच जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो इक्वलेंटी हो जाता है, किसी बच्चे ने 10th क्लास के बाद में पहले डिप्लोमा किया फिर उसने बीटेक में एडमिशन लिया, या आपने पहले 12th किया फिर आपने बीटेक में एडमिशन लिया, तो टोटल टाइम स्पेंडिंग जो है वो ऑलमोस्ट इक्वली रहेगी आपकी, वो आपका 1 साल वेस्ट नहीं जाएगा, उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हर स्टेट इस तरह का लेटरल एंट्री का अपना अलग अलग एग्जाम लेता है, जैसे हरियाणा के जो बच्चे हैं वो लीड का एग्जाम देते हैं, LEET, लेटरल एंट्री इंजीनियरिंग टेस्ट होता है आपका, लीड का पेपर होता है, हर स्टेट का एग्जाम होता है उसमें जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, तो वो अपना एक टाइप से जो लेटरल एंट्री का एग्जाम लेते हैं, ठीक है। तो उसमें फिर क्या होता है कि आपको वो पेपर पास करना होता है डिप्लोमा के बाद में, और फिर आपका डायरेक्टली सेकेंड ईयर में एडमिशन हो जाता है, ठीक है। तो ये भी एक अच्छा स्कोप हो जाता है भी, आपको टेक्निकल नॉलेज भी आपने सीखा 3 साल के अंदर, अगर आपका उस फील्ड में करियर बनाने का इंटरेस्ट है, हाई से हम लीड कहते हैं लेटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट, तो अगर आप उस फील्ड में आगे फ्यूचर में और टेक्निकल नॉलेज लेना चाहते हैं तो आप उसी फील्ड के अंदर बीटेक कर सकते हैं और आपका कोई ईयर भी वेस्ट नहीं होगा, तो सेम उसमें आप अपनी इंजीनियरिंग करके अपना करियर आगे लेके जा सकते हैं। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले डिप्लोमा करते हैं फिर 2 साल जॉब करते हैं, ठीक है, उसके बाद दे टेक एडमिशन इन द बीटेक, राइट। तो ये एक अच्छी आपके लिए वो हो जाता है भी, आपकी हायर क्वालिफिकेशन भी हो गया और आपको इंडस्ट्री के बारे में पता भी चला, आपने इंडस्ट्री में काम भी किया, टेक्निकल एक्सपीरियंस भी आपका हुआ, तो ये भी एक स्कोप रहता है। और हर स्टेट में पेपर होता है, मैंने तो हरियाणा का आपको बताया जैसे लीट का पेपर है, ऐसे ही DTE केरला के अंदर होता है, वो मतलब एग्जाम का नाम अलग अलग है, बाकी पेपर जो है एग्जाम जो है वो हर स्टेट में होता है लेटरल एंट्री के लिए, तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं लेटरल एंट्री की स्कीम के अंदर, ठीक है। तो ये आज का हमारा सेशन था, मैंने काफी चीजें आपको बताई इससे रिलेटेड, या एक दो चीजें मैं और भी ऐड करूंगा कि जैसे मैं PSU की बात कर रहा था, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, जिसमें आपको मैंने ONGC गेल इन सब के बारे में बताया। देखिए उनमें क्या होता है ONGC में गेल में कि अगर आपको वैसे जॉब लेनी है इंजीनियर की तो बीटेक आप करते हैं तो बीटेक के बाद फिर आपको गेट का एग्जाम क्वालिफाई करना रहता है, ठीक है। और वही अगर आपको जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी अप्लाई करनी है तो जूनियर इंजीनियर की काफी वैकेंसीज निकलती हैं, जिसमें आपको एक आपके फील्ड से रिलेटेड टेक्निकल नो हाउ से रिलेटेड आपने एग्जाम देना है और उसके बाद फिर आपको अपना जो थोड़ा बहुत मैथ रीजनिंग का पेपर रहता है तो वो आप उसे दे सकते हैं। तो स्कोप इज वेरी वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव एटीट्यूड लेके, क्योंकि अगर हम वर्ल्ड वाइड कंपेयर करते हैं तो डिप्लोमा कोर्सेज को काफी वेटेज दिया जाता है। और मैं एक चीज और यहाँ पर ऐड करूं कि अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप बाहर भी जा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा जो डिमांड है वो उन लोगों की है जो टेक्निकल काम कर सके, मतलब टेक्निकल मतलब जिसको हम लोअर टेक्निकल कहते हैं, जैसे आप अपने यहाँ पर जो फिल्टर का काम होता है, ठीक है, मतलब ऐसे काम, क्योंकि बाहर की कंट्रीज में वहां के जो लोग हैं वो मतलब दे यू कैन से दैट दे हैव सो मच मनी, या हम ये कह सकते हैं कि वो छोटे काम नहीं करते। जबकि इंडिया से अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है किसी भी फील्ड के अंदर तो आप फॉरेन में जाके भी अपना एक ऐसे करियर स्टार्ट कर सकते हैं उसमें, और आपको वहां पे जॉब्स मिल जाती है, ठीक है। तो मतलब स्कोप इज वाइड, थोड़ा सा पॉजिटिव लेके आपने इस चीज को करना है, ठीक है। तो ये आज मैंने आपको अपनी ओर से बताया है। इसके अंदर एक चीज और ऐड करूं, जैसे फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिप्लोमा होता है, अब फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो लोग डिप्लोमा करते हैं तो उसका भी काफी स्कोप है। अब देखिए आज इतनी इंडस्ट्रीज ओपन हो चुकी है फूड जो फूड से एसोसिएटेड है, तो मतलब स्कोप काफी रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिविटी लेके आपको इसमें काम करने की जरूरत रहती है, ठीक है। तो दिस इज फ्रॉम माई साइड, बाकी आप कि कोई क्वेरी है, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप फ्रीली पूछ सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करेंगे।
1: हाँ दिनेश जी, इसमें है ना दो तीन पॉइंट ऐड था। टेंथ के पास, टेंथ पास करके जैसे कि फुटवेयर टेक्नोलॉजी जैसे कि आगरा में है, टेंथ पास
0: जी जी सर जी बिल्कुल सर।
1: और आप जिस तरह ज्वेलरी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी जैसे पुणे में है, आपको ऑलरेडी चेन्नई में भी है, जैसे ज्वेलरी पर आपको डिप्लोमा करना चाहता है उसका भी है। प्लस सबसे बड़ी बात है, शायद किसी को पता हो या नहीं भी हो, जो हमारे पूरे भारत वर्ष में जो है टेंथ पास करके फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स होती है, वो जो टेंथ पास करके भी लड़के अप्लाई करते हैं प्लस टू करके भी, जैसे इंडो डेनिश टूल रूम और इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और डेनमार्क के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, जमशेदपुर में है, और एक है इंडो जर्मन टूल रूम, इंडिया और जर्मनी के कोलेब्रेशन से कॉलेज बनी हुई है, वो है इंदौर में। ये दोनों टेंथ पास करके, प्लस टू पास आउट करके, टेंथ पास करके जाएंगे तो फाइव इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स है, प्लस टू करके जाएंगे तो फोर इयर्स का इंटीग्रेटेड कोर्स है, इसके लिमिटेड सीट होते हैं। तो ये लोग अप्रैल में भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका मेन एग्जाम होता है और जुलाई से सेशन स्टार्ट होता है।
0: तो मतलब ये सारा बात यह है कि वोकेशनल कोर्सेज में स्कोप काफी है, ठीक है, वो एक आप स्कोप है, और मतलब इसमें आप ये कह सकते हैं कि बहुत छोटी एज में आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब अपना आपने जॉब स्टार्ट कर दिया और उसके बाद फिर आप धीरे धीरे उसमें यू कैन गेट प्रमोशंस, और अगर आप अपना भी काम करना चाहें तो इसमें लो इन्वेस्टमेंट पे अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफी वाइड एरिया होता है।
1: गोल्फ कंट्री में भी सर आपने बताया भी है, जैसे साउथ अफ्रीका हुआ, गोल्फ कंट्री में भी काफी डिमांड होती है डिप्लोमा के।
0: गोल्फ कंट्री में बहुत डिमांड,
1: बहुत बहुत सर है कि वो स्टेट वाइज जो एनटीपीसी है, जैसे कि स्टेट वाइज जहाँ पे इनकी ये मतलब कॉर्पोरेट ऑफिस होती है, इंटरनल वो लोग शायद आईटीआई वालों को या अदरवाइज लेकर के डिप्लोमा वाले को भी वो लोग हायर करते हैं क्या, जैसे जैसे उनका ऑल ओवर इंडिया का एग्जाम नहीं होकर जो कंडक्ट जो जहाँ पे इनकी ऑफिस है, जैसे कि चित्रकूट में उसका एनटीपीसी का है, फिर उसके बाद यहाँ दादरी में एनटीपीसी, तो ये लोग इंटरनल भी शायद निकालते हैं।
0: क्या है सर कि वैसे तो जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है जिसमें एनटीपीसी भी है, नेशनल थर्मल पावर है, तो इनका तो प्रोसेस ये होता है सर कि ये अपनी दो तरह की जॉब्स निकालते हैं, एक तो सर जो परमानेंट बेसिस पे निकालते हैं और सेकंड वो जो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं। जो तो एडहॉक बेसिस पे लगाते हैं वो तो ये इंटरनल सोर्सेज से या कहीं से भी कर लेते हैं, बट जो परमानेंट पोस्ट निकालेंगे ना, परमानेंट पोस्ट में तो इनको नोटिफिकेशन निकालना पड़ता है और उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करना पड़ता है। मतलब जो एक तरह से जो परमानेंट पोस्ट रहती है वहां तो एक प्रॉपर प्रोसेस से ही वो काम चलता है, उसका टेस्ट भी लेते हैं ये लोग, सारी चीजें करते हैं। हाँ ये है कि कई बार कुछ पोस्ट ऐसी होती हैं जो आपकी एडहॉक इन नेचर होती है, एक साल की, दो साल की, या जो टेम्परेरी पोस्ट होती है, तो वहां तो ये इंटरनल सोर्सेज से कहीं से भी कुछ ना कुछ कर जाते हैं, बट एक्चुअल जो आपके परमानेंट जॉब्स हैं जिसको हम जूनियर इंजीनियर की जॉब कहते हैं इसके अंदर, तो वो तो एक प्रॉपर प्रोसेस से निकालते हैं।
1: बहुत सारा स्कोप है टेंथ पास करने के बाद, आईटीआई करने के बाद या पॉलिटेक्निक, बहुत सारे स्कोप है। थैंक यू दिनेश जी।
2: मेरा नाम कार्तिक है, मैं कक्षा सातवीं ए का छात्र हूँ। मैं शहबाद मोहम्मदपुर के रीड इंडिया एक लाइब्रेरी में आता हूँ, मैं आपके सामने पोयम प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सीखो फूलों से नित हंसना, सीखो भोरों से नित गाना, दिनकर की किरणों से सीखो जगना और जगाना, चिड़ियाओं से हंसकर सीखो सबसे हिल मिल करना।

ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं। ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाके अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: वेलकम फ्रेंड्स, जीते रहो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अरे बबलू, ये क्या कर रहे हो?
1: खुजला रहा हूँ, और क्या, तुम्हें तो दिखता रहेगा फिर भी पूछोगी।
0: नहीं नहाओगे तो ऐसे ही होगा, ये सब गंदगी का नतीजा है।
1: तुम्हें तो मौका चाहिए बस। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरे पैर में ये छोटे छोटे दाने निकल रहे हैं, पर इसे कोई परवाह ही नहीं। जस्सी,
0: तो तुम खुजा के उसे और क्यों बढ़ा रहे हो? और तुम्हारे नाखून, देखो अपने नेल्स। दोस्तों, आप ये गलती कतई मत कीजिएगा।

0: दाने निकल रहे हों और दाने वाली जगह पर त्वचा लाल भी हो तो प्लीज उसे नाखून से मत खुजाइएगा इस बुद्धू की तरह, बीमारी और बढ़ जाती है।
1: तुम इतना पैरानॉइड क्यों हो रही हो? छोटा सा तो है, मैं तो बस चिढ़ा रहा था।
0: मैं जानती हूँ तुम क्या कर रहे हो, और हम में से ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं। हम त्वचा की बीमारी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। दोस्तों, ऐसा करना उचित नहीं है। त्वचा हमारे शरीर का सबसे संवेदनशील स्थान है।
2: हम एक दिन में न जाने कितने ही सेंसेशंस महसूस करते हैं। इन सेंसेशंस के महसूस होने में त्वचा का अहम रोल है। त्वचा हमारे शरीर का बहुत संवेदनशील अंग है। जाहिर है ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हमारी त्वचा हमेशा एक्सपोज रहती है। वातावरण में ऐसी कई चीजें हैं जो हमारी त्वचा को प्रभावित कर सकती हैं, जिनसे त्वचा की बीमारियां हो सकती हैं। हमारी त्वचा को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचता है प्रदूषण से। प्रदूषण और हार्मफुल केमिकल से स्किन रैशेस, डर्मेटाइटिस जैसी त्वचा की परेशानियां हो सकती हैं। और अगर इतना काफी नहीं था तो परेशान करने के लिए मौजूद हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का पूरा पारिवारिक समूह। जीवाणुओं जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई भी त्वचा की बीमारियों की एक अहम वजह हैं। इनसे एक्ने, रिंगवर्म इन्फेक्शन और हर्पिस जैसी त्वचा की बीमारियां होती हैं। ऐसे में बहुत जरूरी है अपनी स्किन का ध्यान रखा जाए। वैसे कुदरत ने भी कुछ हद तक त्वचा का ख्याल रखा है। त्वचा पर मौजूद बाल बाहरी तत्वों से इसको सुरक्षा प्रदान करते हैं और शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। हमारी त्वचा स्वेट ग्लैंड्स के जरिए भी बॉडी टेम्परेचर नियंत्रित करती है। ज्यादा तापमान, शारीरिक परिश्रम और स्ट्रेस की स्थिति में ये स्वेट ग्लैंड्स पसीने का उत्पादन करते हैं। ये पसीना त्वचा में मौजूद पोर्स यानी रोम छिद्रों से बाहर निकलकर जब इवेपोरेट यानी वाष्पित होता है तो शरीर को ठंडक पहुंचती है। जाहिर है पसीना पसीना होना महज एक मुहावरा ही नहीं बल्कि हमारे शरीर की जरूरत भी है। ग्लैंड्स और हेयर फॉलिकल्स के अलावा त्वचा में करोड़ों की संख्या में अन्य स्किन सेल्स भी मौजूद रहते हैं। ये सभी त्वचा की तीन अलग लेयर्स में बटे रहते हैं, पहला एपिडर्मिस, दूसरा डर्मिस और तीसरा सबक्यूटेनियस टिश्यू। त्वचा की सबसे ऊपरी लेयर जिसे एपिडर्मिस कहते हैं कागज के टुकड़े जितनी मोटी होती है। एपिडर्मिस पर बाल और पोर्स यानी कि रोम छिद्र होते हैं। एपिडर्मिस की सबसे निचली लेयर में बेसल सेल्स मौजूद होते हैं। ये बेसल सेल्स टूटकर स्क्वेमस सेल्स बनते हैं जो केराटिन नामक प्रोटीन का उत्पादन करते हैं। यही केराटिन हानिकारक रसायन और इन्फेक्शन से त्वचा की रक्षा करता है। एपिडर्मिस के नीचे होती है त्वचा की सबसे मोटी परत जिसे डर्मिस कहते हैं। इसमें नर्व एंडिंग्स, स्वेट ग्लैंड्स, ऑयल ग्लैंड्स, मसल्स, ब्लड कैपिलरीज और डीप सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं। तीसरी और अंतिम लेयर को सबक्यूटेनियस टिश्यू कहते हैं। इसमें मुख्यतः वसा होती है और इसके अलावा क्यूटेनियस नर्व्स और ब्लड वेसल भी होती हैं। क्यूटेनियस नर्व्स ही स्किन से सेंसेशन लाने और ले जाने का काम करती है। सबक्यूटेनियस टिश्यू ही गर्मी कैद कर हमारे शरीर को इंसुलेशन प्रदान करता है और गर्मी को शरीर के अंदर रखता है। जहां तक त्वचा के रंग का सवाल है तो इसके पीछे मेलेनोसाइट्स नामक सेल्स का हाथ है जो कि एपिडर्मिस में पाई जाती हैं। ये सेल्स मेलानोजेनेसिस प्रक्रिया के जरिए मेलानिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं। जैसे ज्यादा चाय पत्ती डालने पर चाय का रंग काला हो जाता है, वैसे ही मेलानिन के ज्यादा बनने से स्किन भी डार्क हो जाती है। मेलानिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। भारतीयों में मेलानिन की मात्रा यूरोपियन से ज्यादा होने की वजह से हम अल्ट्रावायलेट रेस से होने वाले स्किन कैंसर से काफी हद तक बचे रहते हैं। हमारी स्किन शरीर के किसी और हिस्से के मुकाबले सबसे तेज रिप्लेस होती है। त्वचा की एपिडर्मिस लेयर में ऑयल ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं जिनमें से एक है सिबेशियस ग्लैंड। यही सिबेशियस ग्लैंड्स एक तरल पदार्थ का उत्पादन करते हैं जिसे सीबम कहते हैं, जो बाल और त्वचा का मॉइस्चर कंटेंट बनाए रखने में मदद करता है। गंदगी, अनुवांशिक कारणों या फिर हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से कई बार सेबम ज्यादा मात्रा में बनने लगता है। यही सेबम जमा होकर मुहासे या पिंपल्स के रूप में त्वचा पर दिखाई देते हैं। सिबम के इस जमाव में बैक्टीरिया भी पैदा होने लगते हैं। जब बैक्टीरिया और सिबम त्वचा के सतह के नीचे रहते हैं तो वहाँ पर व्हाइट हेड्स दिखते हैं। त्वचा की सतह से बाहर निकलकर मेलानिन के साथ रिएक्ट कर ये जमाव ब्लैक हेड्स का रूप भी ले सकते हैं।
3: मुहासों का इलाज दो तरह से होता है, लगाने का भी है और खाने का भी है। एग्जामिनेशन जरूरी है ये देखने के लिए कि माइल्ड है या मॉडरेट है या सीवियर है। माइल्ड है जिसमें बोलते हैं सिर्फ कोमेडोन्स हैं, तो उसमें आपका लगाने का दवा जिसमें कई जेल्स आ जाते हैं, एंटीबायोटिक जेल्स हैं या बेंजोइल पेरोक्साइड जेल है या रेटिनॉइड जेल एक कैटेगरी आता है, वो जेल्स लगाएं। मॉडरेट में पस के दाने निकलते हैं जिसको पिंपल्स बोला जाता है कॉमन पार्लेंस में, उसके लिए एंटीबायोटिक्स खाने के लिए दिए जाते हैं और लगाने के लिए भी दवा दी जाती है।
2: एक्ने जैसे कॉमन डिसऑर्डर के अलावा त्वचा के कुछ और कॉमन डिसऑर्डर्स भी हैं, जैसे एक्जिमा जिसे डर्मेटाइटिस भी कहते हैं और सोरियासिस। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेज और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। एक्जिमा की शुरुआत होती है सूजन और खुजली से। एक्जिमा के कारण त्वचा पर ब्लिस्टर्स या फफोले भी पड़ने लगते हैं। यदि एक्जिमा लंबे अरसे तक रहे तो त्वचा सूखी, बर्तीली और बदरंग भी हो सकती है। ये एलर्जी एसिड और अन्य हानिकारक रसायनों के संपर्क में आने से हो सकती है। कुछ धातुओं जैसे निकल से बने चश्मों के फ्रेम और बटन के संपर्क में आने पर भी कई लोगों को स्किन एलर्जी हो जाती है। एक्जिमा के मूल कारण और रैशेज के आकार और जगह के आधार पर एक्जिमा के प्रकार निर्धारित किए गए हैं। जैसे अटोपिक एक्जिमा, ये अमूमन उन लोगों को होता है जिनमें एलर्जी होने की जेनेटिक टेंडेंसी यानी आनुवांशिक प्रवृत्ति होती है। ये नियमित रूप से आता जाता रहता है। एक ही जगह बार बार खुजलाने और रगड़ने पर भी एक्जिमा हो सकता है। जहाँ एक्जिमा के पीछे बाहरी कारणों का हाथ है, वहीं त्वचा की एक ऐसी बीमारी भी है जिसकी मूल वजह जेनेटिक है। इस बीमारी का नाम है सोरियासिस। त्वचा की बाहरी लेयर एपिडर्मिस में कोशिकाओं के प्रोडक्शन और रिमूवल की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जब बेसल लेयर्स द्वारा निर्मित सेल्स का उत्पादन बहुत ज्यादा हो जाता है, तब शरीर पर गठीले लाल रंग के पैचेस दिखने लगते हैं। इसी अवस्था को सोरियासिस कहते हैं। अधिकतर घुटने, कोहनी, पीठ, कूल्हे और सर, इन भागों पर सोरियासिस असर करता है। जहाँ तक ट्रीटमेंट का सवाल है तो सोरियासिस का इलाज उसकी तीव्रता पर निर्भर करता है। सोरियासिस होने पर इलाज के लिए स्किन पर मलहम या क्रीम लगाई जाती है। यदि इनसे राहत न पहुँचे तो फोटोथेरेपी भी की जाती है। इसमें ज्यादातर प्रभावित क्षेत्र पर अल्ट्रावायलेट किरणों का प्रयोग किया जाता है। सोरियासिस के काफी बढ़ जाने पर डॉक्टर्स खाने की दवाएं और इंजेक्शन भी प्रिस्क्राइब करते हैं।
0: अरे बबलू, तुम ये लंगड़ाते हुए क्यों आ रहे हो?
1: देखो ना, जहां मुझे खुजली हो रही थी वहां कैसे घाव हो गए हैं। कोई इन्फेक्शन तो नहीं है?
0: ओह, मगर आपकी माने तो ये इन्फेक्शन वगैरह तो सब किताबी बातें हैं ना?
1: प्लीज कुहू, दर्द भी हो रहा है और जलन भी, देखने में भी कितना खराब लग रहा है, रोना आ रहा है मुझे।
0: अच्छा कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर दूंगी, ठीक हो जाएगा।
1: नहीं, और भी ज्यादा दर्द होगा। नहीं, मुझे
0: कुछ नहीं होगा बबलू। घाव कैसा भी हो साफ तो करना ही पड़ेगा ना, और मर्ज कैसा भी हो इलाज तो जरूरी है ना।
2: स्केबीज एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जिसमें तेज खुजली होती है। ये बीमारी फैलाने वाले माइट स्किन के अंदर अपने को छुपा लेते हैं। इनके काटने से तेज खुजली होती है जो रात में अक्सर बढ़ जाती है। ये माइट्स बहुत छोटे होते हैं और मैग्नीफाइंग ग्लास से ही दिखाई देते हैं। ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड व्यक्ति के कपड़ों और बिस्तर के इस्तेमाल से फैल सकता है। स्केबीज का इलाज क्रीम या लोशन से आसानी से हो जाता है, लेकिन मरीज के कपड़ों और बिस्तर के कपड़ों को उबालना जरूरी है जिससे माइट्स मर जाते हैं। अगर ऐसा नहीं किया जाए तो माइट्स दोबारा इन्फेक्ट कर देंगे और किसी और को भी इन्फेक्शन लग सकता है। आइए अब बात करते हैं फंगल इन्फेक्शन की। हम में से काफी लोगों ने रिंगवर्म का नाम तो सुना ही होगा। दरअसल ये रिंगवर्म है क्या? इसके पीछे हाथ है टीनिया नामक फंगस का, जो हमारी त्वचा, बाल और नाखूनों में पनप सकता है। इसकी ग्रोथ गोलाकार स्वरूप लेती है, बीच में त्वचा नॉर्मल रहती है और इसके आसपास लाल, पथरीली और थोड़ी उभरी रहती है। इस कारण यह इन्फेक्शन रिंग जैसा दिखता है और यहीं से इसका नाम पड़ा रिंग वर्म। हालांकि हकीकत में त्वचा में कोई कीड़ा मौजूद नहीं रहता। ये बीमारी शरीर के किसी भी अंग में हो सकती है, पैर के अंगूठों के बीच में, छाती, बांह और पांव पर अक्सर ये बीमारी असर करती है। इस फंगल इन्फेक्शन के होने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, ये किसी संक्रमित व्यक्ति को छूने से हो सकता है। दूसरा, फंगाई ज्यादातर नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर या शौचालय और स्टोरेज करने की जगहों में पनपती है। ऐसी जगहों से भी संक्रमण होने का खतरा रहता है।
4: देखिए, एंटी फंगल दवाइयाँ जो आती हैं वो दो तरह से आती हैं, एक तो क्रीम फॉर्म में आती हैं और एक टैबलेट फॉर्म में आती हैं। क्रीम फॉर्म के साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं कि जहां पर भी क्रीम लगाई है वहां पे खुजली मचना, जलन मचना और कुछ तरह के दाने हो जाना, ये साइड इफेक्ट्स कई बार देखे जाते हैं। तो अगर आपको ये हो जाए तो पेशेंट को दवाई को रोक के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। ओरल जो दवाइयां आती हैं टैबलेट्स के फॉर्म में, उसके साइड इफेक्ट्स में एलर्जिक रिएक्शंस होना वो बहुत कॉमन है, जिसके कारण से इसमें लाल चकत्ते पड़ जाना शरीर के ऊपर, या फिर पेशेंट को वॉमिटिंग हो जाना, उल्टी जैसा लगना, नौजिया लगना, पेट में दर्द होना, ये सब चीज़ें, कई बार भूख भी कम हो जाती है पेशेंट की। अगर ये सब हो जाए तो पेशेंट को दवाई रोके फिर डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए।
2: इलाज से बेहतर है बचाव। रिंग वर्म या टीनिया इन्फेक्शन से बचाव के लिए त्वचा को साफ रखें और नमी से बचा कर रखें। कुछ और आम बातें हैं जो हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं। जब जरूरी ना हो तब जूते उतार दें, मसलन घर पर, ताकि पैरों को जरूरी हवा मिल सके। मोजे और अंडरवेयर रोजाना बदलना, खासकर गर्म मौसम में। नमी वाली जगहों पर जैसे सार्वजनिक स्नान घर में नंगे पाव ना चलें। त्वचा पर होने वाले बॉयल्स या फोड़े हेयर फॉलिकल से होने वाला बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। बॉयल्स त्वचा पर पस युक्त इन्फ्लेमेशन का रूप लेते हैं। बॉयल्स के इलाज में पस को सुखाया जाता है, इसके लिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का इस्तेमाल भी करते हैं।

0: ब्रेक के बाद बबलू अपने इन टैटू वाले हाथों से आप सभी दोस्तों का फिर से स्वागत करता है।
1: टैटू बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए तो
0: ज्यादा पढ़े लिखे होने का यही नुकसान है, हर चीज में इन्फेक्शन ही दिखता है।
1: छोड़िए दोस्तों, इसको कुछ समझाना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। आइए अब बात करते हैं वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की।
2: वायरल स्किन डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आने वाले दो कॉमन डिसऑर्डर्स हैं वॉट्स यानी मस्से और हर्पीस यानी खाज या दाग। वॉट्स एक किस्म की स्किन ग्रोथ है जिसके पीछे ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या HPV का हाथ है। वॉट्स शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं, चेहरे, हाथ के पिछले भाग पर, पैरों के तलवे पर, मुंह के अंदरूनी भाग में और यहाँ तक कि जेनिटल एरिया में भी। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है, यानी ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। शारीरिक कॉन्टैक्ट या फिर इन्फेक्टेड व्यक्ति के तौलिए, कपड़े इत्यादि इस्तेमाल करने पर यह इन्फेक्शन फैल सकता है। काफी मामलों में वॉट्स कुछ महीनों में खुद ब खुद गायब भी हो जाते हैं, पर कई बार इनका इलाज दवाइयों या अन्य किसी ट्रीटमेंट पद्धति के जरिए ही करना पड़ता है। इलाज के कुछ कॉमन तरीके हैं रासायनिक, जैसे कि सैलिसिलिक एसिड या कैंथराइडिन वॉट्स पर लगाना, या फिर लिक्विड नाइट्रोजन के माध्यम से वॉट्स को फ्रीज कर देना। इस पद्धति को क्रायोथेरेपी भी कहते हैं। कुछ केसेस में वॉट्स को स्पेशल तरीके से जलाया जाता है, जिसे कॉटराइजेशन भी कहते हैं। जेनिटल वॉट्स बेहद कंटेजियस होते हैं और इनका ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स की निगरानी में करना चाहिए।
3: वॉट्स टच करने से फैलते हैं, तो पेशेंट उस वॉट को बार बार अपने हाथों से ना छुए, और दवाई लगाने के बाद अगर क्रीम्स हैं तो अपने हाथों को साबुन से या पानी से अच्छी तरह धोए। दूसरी बात यह है कि वॉट्स, जेनिटल वॉट्स जो हैं, यौन संबंध करने से फैलते हैं। मतलब अगर एक सी आदमी को जो वॉट्स हैं, तो वो अगर यौन संबंध बनाता है तो दूसरे उसके पार्टनर को वॉट्स हो सकते हैं।
2: वायरस से होने वाली त्वचा की एक और बीमारी है हर्पिस। ये बीमारी दो तरह के वायरस से फैलती है। पहला वायरस है हर्पिस सिंप्लेक्स, जो ओरल कैविटी और जेनिटल को इन्फेक्ट करता है। हर्पिस सिंप्लेक्स कॉन्टेजियस होता है और अधिकतर ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलता है। हर्पिस फैलाने वाला दूसरा वायरस है हर्पिस जोस्टर। ये वायरस एक ही नर्व को अपनी चपेट में लेता है। जहाँ जहाँ वो नर्व निकलती है, उस जगह पर दाने निकल आते हैं। इसमें बहुत दर्द होता है, लेकिन ये कंटेजियस नहीं है। हर्पिस जोस्टर वायरस चिकन पॉक्स वायरस का ही एक किस्म है। इसके ट्रीटमेंट में कुछ एंटीवायरल दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन संपूर्ण रूप से यह अपने आप ही ठीक होता है, जिसकी अवधि 3 सप्ताह से लेकर 1.5 महीने तक हो सकती है। सीरियस इन्फेक्शन में दाने खत्म हो जाने के बाद भी दर्द 6 महीनों तक रह सकता है। ऐसे हालत में कुछ समय तक दर्द निवारक दवाओं का इस्तेमाल करना पड़ता है। स्कैल्प में होने वाली परेशानियां हैं डैंड्रफ। डैंड्रफ स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से होता है, जिसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। डैंड्रफ एक हल्के फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। इसका इलाज क्रीम और लोशन से किया जाता है। हेड लाइस एक पैरासाइट है, जिसे जू भी कहते हैं। ये सर के बालों में रहती है। इसके स्किन के अंदर छुपने से इचिंग और इन्फ्लेमेशन होती है। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, लेकिन ऐसा पैचेस में होता है। इसकी वजह इन्फेक्शन हो सकता है या कोई ट्रॉमा जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। लेकिन सबसे कॉमन एलोपीसिया, जिसे एलोपीसिया एरिएटा कहते हैं, के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है। इलाज के लिए मेडिसिन और क्रीम के जरिए स्कैल्प के नरिशमेंट का ध्यान रखा जाता है। ज्यादातर मामलों में कुछ महीनों के बाद प्रभावित जगह पर बाल फिर से उगने लगते हैं।
4: अब बात ल्यूकोडर्मा की। इसमें मेलेनिन की कमी से स्किन पर व्हाइट पैचेस हो जाते हैं। शुरुआत में और जब ये बीमारी शरीर के कुछ अंगों तक सीमित होती है, तो इसका पूरा इलाज संभव है। लेकिन अगर ये बीमारी बहुत अधिक अंगों तक फैल जाए, तो इस रोग का पूरा निवारण कई बार संभव नहीं होता। लेकिन गौर तलब है कि ये छूत की बीमारी नहीं है और इससे व्हाइट पैचेस के अलावा शरीर को कोई नुकसान नहीं होता। इसका इलाज मेडिसिन, क्रीम्स और फोटोथेरेपी से किया जा सकता है। इस इलाज के बाद मेलानिन का बनना बढ़ जाता है और स्किन का सामान्य रंग वापस आने लगता है। एल्बिनिज्म एक जेनेटिक कंडीशन है, जिसमें जन्म से ही शरीर में मेलानिन नहीं पाया जाता, इसलिए रंग सफेद होता है। त्वचा पर मौजूद बाल शरीर का सही तापमान बनाए रखने में मदद करते हैं। त्वचा को तीन लेयर्स में बांटा गया है, एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस टिश्यूज। त्वचा में मौजूद मेलेनिन हमें अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाता है। एक्जिमा एक एलर्जिक बीमारी है जिसमें त्वचा पर रैशेस और लाल धब्बे दिखने लगते हैं। वॉट्स कंटेजियस इन्फेक्शन है और शरीर के किसी भी हिस्से में हो सकते हैं। हर्पीस की बीमारी दो तरह के वायरसेस से होती है, हर्पीस सिंप्लेक्स और हर्पीस जॉस्टर। स्कैल्प की स्किन के ड्राई होने से डैंड्रफ होता है, इसमें डेड स्किन के फ्लेक्स उतरने लगते हैं। एलोपीसिया में बाल उड़ जाते हैं, इसकी वजह इन्फेक्शन या ट्रॉमा हो सकती है जिसमें हेयर फॉलिकल्स खत्म हो गई हो। एलोपीसिया एरिएटा के होने की वजह का पता नहीं चल पाया है।
0: वाह कोकिला, क्या इलाज किया, आज मान गए तुमको, अब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आगे क्या बताओगी?
1: आगे वेल बबलू, समय हो गया है।
0: क्या बात करती हो कोकिला, अभी तो शुरू ही हुआ था। कोई बात नहीं, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे।
1: जी हाँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम डॉक्टर निधि गुलाटी, रीड इंडिया लखनऊ से आपके साथ, आपके लिए कुछ सिखाने और सीखने के लिए ये कार्यक्रम आओ सीखे के अंतर्गत आप तक लाया गया है। श्रोताओं, जैसे कि हम सब जानते हैं कि मॉनसून आ गया है, बारिश का मौसम आ गया है और ये बारिश का मौसम अपने साथ बहुत सी बीमारियों को लेकर आता है। आज मैं उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी के बारे में बात करूंगी जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर क्या होता है? टाइफाइड फीवर एक बीमारी है जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से होती है और इसके बैक्टीरिया का नाम है सेल्मोनेला टाइफी। सेल्मोनेला टाइफी एक मेडिकल टर्म है और ये बैक्टीरिया हमारे जब बॉडी के अंदर घुसता है तब हमें टाइफाइड फीवर के होने के बहुत चांसेस हो सकते हैं। ये बैक्टीरिया पानी और खाने के जरिए लोगों के अंदर जाता है और इसके द्वारा बहुत से लोगों में ये फैल जाता है। सच ये है कि टाइफाइड का बैक्टीरिया जो होता है वो पानी या सूखे मल में हफ्तों तक जिंदा रहता है। इस तरह से वे दूषित पानी या खाद्य पदार्थों के जरिए शरीर में पहुंचकर संक्रमण का कारण बनता है। जब कोई व्यक्ति किसी संक्रमित व्यक्ति का जूठा खाद्य पदार्थ खाता है या पीता है तो इससे दूसरे व्यक्ति को टाइफाइड रोग होने का संभावना बन सकती है। आमतौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित या बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने के मुख्य वजह है। किसी भी व्यक्ति को अगर घर में टाइफाइड है तो घर के अन्य सदस्यों को भी टाइफाइड होने का खतरा हो सकता है। मॉनसून में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार का वायरस बहुत परेशान करता है। टाइफाइड एक तेज बुखार से जुड़ा रोग है। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड होने का कारण क्या है? टाइफाइड बुखार, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, सेल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया से संक्रमित होता है। ये भोजन या पानी के सेवन से होता है या इस बैक्टीरिया से जो पीड़ित व्यक्ति होता है या जिसको पहले से ही टाइफाइड होता है उसके जूठा खाने से या उसके आसपास बैठने से भी हमें टाइफाइड हो सकता है। दूषित खाद्य पदार्थ से भी ये संक्रमित हो सकता है। पाचन तंत्र से पहुंचकर इन बैक्टीरिया की संख्या बढ़ जाती है। शरीर के अंदर ये बैक्टीरिया एक अंग से दूसरे अंग तक पहुँचता है। श्रोता, आप जानते हैं कि इसके लक्षण क्या होते हैं? बुखार होता है, इसमें 104 डिग्री तक बुखार जाता है। जैसे जैसे संक्रमण बढ़ता है वैसे वैसे भूख कम हो जाती है। टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सिर में भी दर्द होता है। टाइफाइड के लक्षण के रूप में शरीर में दर्द होता है, ठंड की अनुभूति होती है, सुस्ती एवं आलस का अनुभव होता है, टाइफाइड से कमजोरी का भी अनुभव होता है, इसमें दस्त का भी अनुभव होता है, दस्त भी होने लग सकते हैं। आमतौर पर टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को 104 बुखार तक पहुंच सकता है। बड़े बच्चों को कब्ज की भी शिकायत हो सकती है तथा बच्चों में दस्त की भी शिकायत हो सकती है। श्रोताओं, आप जानते हैं टाइफाइड से बचाव का उपाय क्या है? आमतौर पर भोजन और जीवन शैली के असर के कारण भी टाइफाइड होता है। इसके लिए आहार और जीवन शैली को थोड़ा सा बदलाव करना पड़ता है। आइए जानते हैं कि क्या बदलाव कर सकते हैं। टाइफाइड में प्याज और लहसुन या वो खाद्य पदार्थ जिसकी बहुत तीव्र स्मेल हो उससे हमें बचना चाहिए। टाइफाइड में सभी मसाले जैसे कि मिर्च, सौंफ, सिरका आदि से परहेज करें। इस बुखार में गैस बनने वाले आहार जैसे अनानास, कटहल आदि से परहेज करें। टाइफाइड के लक्षण महसूस होने पर घी, तेल से परहेज करें। टाइफाइड में बाजार की बनी हुई चीजें ना खाएं। टाइफाइड में मांसाहारी भोजन
से भी परहेज करें। पेट भरकर कुछ भी ना खाएं। ऐसा भोजन ना करें जो देर से पचता है। चाय कॉफी का भी कम सेवन करें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि जीवन शैली में क्या बदलाव लाने चाहिए। उचित स्वच्छता बनाए रखें। अपने हाथों को गर्म पानी से साबुन के साथ बार बार धोएं। साफ उबला पानी पिए और केवल बोतल बंद पानी पिए। कच्चा आहार ना लें। उचित तरीके से पका भोजन गरम गरम ही खा लें। भारी दुकानों से पाए गए पदार्थ ना लें। संक्रमित व्यक्ति को घरेलू कार्यों से दूर रखें। संक्रमण को रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति की व्यक्तिगत उपयोग और वस्तुओं को अलग रखें। पानी को स्वच्छ कर ही पिएं। कूड़े कचरे को सही तरीके से फेंकें और अच्छा स्वास्थ्य भोजन करें। संक्रमित व्यक्ति को अपने बर्तन और भोजन किसी से भी नहीं शेयर करने चाहिए, बांटने चाहिए। संक्रमित व्यक्ति को भोजन भी नहीं पकाना चाहिए। कच्चे फल और सब्जियां खाने से बचें। ज्यादातर गर्म खाद्य पदार्थ का सेवन करें और अपने आसपास सफाई रखें। श्रोताओं, आप जानते हैं कि टाइफाइड का उपचार में घरेलू नुस्खे क्या होते हैं। टाइफाइड जैसे रोग अक्सर डिहाइड्रेशन का कारण बनते हैं, इसलिए रोगी को कुछ कुछ समय के बाद अपने पदार्थ में पानी, ताजे फल का रस या हर्बल चाय का सेवन करना चाहिए। उबले पानी का ही सेवन करें। यह टाइफाइड में कमजोरी की स्थिति में भी आपकी मदद कर सकता है और बीमारी से राहत दिला सकता है। टाइफाइड में तुलसी का पानी भी बहुत अच्छा इलाज है। सेब का जूस भी टाइफाइड में उपचार के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है। सेब का जूस निकालें, इसमें अदरक का रस मिलाकर पिएं। इस तरह से बुखार में राहत मिलती है। आप टाइफाइड के उपचार के लिए लौंग का इस्तेमाल करें। लौंग में टाइफाइड ठीक करने के गुण होते हैं। 8 कप पानी में अगर आप 5 से 7 लौंग डालकर उबाल लेंगे, जब पानी आधा रह जाएगा तो उसे छानकर पी लें। इस उपचार को 1 हफ्ते लगातार करें, इससे टाइफाइड में हुई कमजोरी दूर हो सकती है। अगर बुखार तेज है तो ठंडे पानी की पट्टियां भी कर सकते हैं। टाइफाइड के उपचार के लिए शहद का सेवन भी बहुत अच्छा होता है। गुनगुने पानी में 1 चम्मच शहद मिलाकर पानी को पी लें। ये टाइफाइड के उपचार के लिए उपयोग में लाया जाने वाला बहुत फायदेमंद उपाय है। श्रोताओं, ये तो मैंने आपको कुछ घरेलू नुस्खे बताए थे, पर जब टाइफाइड होता है तो हमें डॉक्टर के पास भी जाना उतना ही जरूरी है। टाइफाइड के लक्षण दिखते ही हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। उसे अपनी बीमारियों के बारे में बताना चाहिए, नहीं तो ये एक बहुत गंभीर बीमारी बन सकती है। श्रोताओं, आप जो डॉक्टर आपको दवाई देता है उसका अच्छे से पालन करें, समय से दवाई खाएं और साथ साथ हम घरेलू उपाय भी कर सकते हैं। श्रोताओं, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये कार्यक्रम अच्छा लगा हो, और अगर आपके घर में कोई भी टाइफाइड का मरीज हो या आपको ही टाइफाइड हो जाए तो आपको ये सब जानकारी मिलने के बाद आप अपना और अपने घर वालों का अच्छे से ध्यान रख सकें। मेरा आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।

रीड इंडिया प्रस्तुत करता है विज्ञान प्रसार द्वारा निर्मित विज्ञान और तकनीकी पर आधारित कार्यक्रम। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: भगवान ने अगर बड़ी बड़ी आंखें दी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे और बड़ा करके तुम सामने वाले को घूरते रहो।
1: क्या क्या कह रहे हो तुम?
0: मैं कह रहा हूँ कि अपनी इन बड़ी बड़ी आंखों को थोड़ा छोटा कीजिए और प्रोग्राम शुरू कीजिए।
1: राइट। फिर आज किस बारे में जानना चाहोगे तुम बबलू?
0: ये आंखें उफ युम्मा।
2: खूबसूरती देखने वाले की आंखों में होती है, मगर आंखें खोलते ही देखने की प्रक्रिया जितनी सरल प्रतीत होती है उतनी है नहीं। इसके पीछे विज्ञान है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट या अपवर्तित होकर कॉर्निया पर पड़ती है। कॉर्निया के बाद लाइट एंटीरियर चेंबर से होकर गुजरती है, जिसमें एक तरल पदार्थ होता है जिसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ये तरल पदार्थ इंट्रा ऑक्यूलर प्रेशर पैदा करता है, जिससे आई बॉल्स की शेप बनी रहती है। कॉर्निया के बाद लाइट आयरिस पर पड़ती है, जो लाइट की तीव्रता के हिसाब से कम या ज्यादा खुलता है। कैमरे का अपर्चर कुछ ऐसे ही काम करता है। अगर रोशनी ज्यादा होती है तो कैमरे का अपर्चर और हमारी आंख का आयरिस कुछ बंद हो जाता है, और कम रोशनी में अपर्चर और आयरिस ज्यादा खुल जाते हैं। आयरिस से होकर लाइट प्यूपिल और लेंस से होती हुई रेटिना पर पड़ती है, और इससे रेटिना पर जो इमेज बनती है वो उल्टी होती है। इन इमेजेस को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाने का काम करती है ऑप्टिक नर्व्स। ब्रेन में कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनकी मदद से रेटिना पर बनने वाले इमेज को ब्रेन पढ़ता है। ब्रेन इमेज को सीधा करके देखता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण ये है कि आंखें सामने देखते वक्त अपने दोनों तरफ भी देख पाती हैं, और इसे आंखों का फील्ड ऑफ विजन कहते हैं। अक्सर जब आंखों के देखने की क्षमता कम हो जाती है तब फील्ड विजन कम हो जाता है। कई बार आंखों में डिफेक्ट आ जाते हैं, जिससे देखने की प्रक्रिया में मुश्किल होने लगती है। कभी लेंस में दिक्कत आने से रेटिना तक रोशनी पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। कई बार इमेज रेटिना पर ना बनकर उसके आगे और पीछे बनने लगती है, जिससे हमें चीजें साफ नहीं दिखती और चश्मा लगवाना पड़ता है। कई बार आंखों के इन्फेक्शन या आंख में चोट लगने से भी हमारी दृष्टि पर असर पड़ता है। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। इस बीमारी में धीमी लाइट में और अंधेरे में दिखना बहुत कम हो जाता है। इसके इलाज के लिए जरूरी है कि मरीज को विटामिन ए से भरपूर भोजन दिया जाए। इन बीमारियों का इलाज तो हो सकता है, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें लापरवाही करने से आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। वजह कुछ भी हो, पर आंखों की बीमारी यदि गंभीरता से ना ली जाए तो नतीजा एक ही निकलता है, दृष्टिहीनता। गंभीरता से ना लेने की एक बहुत बड़ी वजह होती है इन बीमारियों का धीरे धीरे बढ़ना।
1: ये तो हम जानते हैं कि हमारे शरीर में एक चमत्कारिक शक्ति है सेल रिपेयर करने की, यानी किसी भी अंग द्वारा क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को रिपेयर या रिप्लेस करने की क्षमता। मगर आंखों की स्थिति जरा भिन्न है। इसके लेंस की कोशिकाओं को ना तो रिपेयर किया जा सकता है और ना ही रिप्लेस। इसलिए अगर लेंस को कोई भी नुकसान पहुंचता है तो यह धीरे धीरे जमा होकर बीमारी का रूप धारण कर लेता है। यह बीमारी है कैटरैक्ट, यानी मोतियाबिंद। इस बीमारी में आंखों से धुंधला दिखाई देता है। आइए देखते हैं यह बीमारी होती कैसे।
2: मोतियाबिंद की बीमारी में लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है और लेंस क्लाउडी यानी कि धुंधला होता जाता है। इसकी वजह से लेंस से होकर जाने वाली रोशनी रेटिना तक पूरी नहीं पहुंचती और धुंधला दिखने लगता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेंस के प्रोटीन में बदलाव आता है, जो लेंस को अपारदर्शी बना देता है। इसे अंडे के उबलने और ऑमलेट के बनने जैसी साधारण प्रक्रिया से समझा जा सकता है। अंडे की सफेद जर्दी प्रोटीन से बनी होती है और सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, लेकिन जब अंडे को उबाला जाता है या पकाया जाता है तो अंडे के प्रोटीन में बदलाव आ जाता है जिससे वो अपारदर्शी हो जाता है। कैटरेक्ट में भी लेंस के प्रोटीन में आया बदलाव उसे अपारदर्शी बना देता है। कैटरेक्ट के बहुत अधिक बढ़ जाने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है। मोतियाबिंद के सामान्य लक्षण हैं धुंधला दिखना, और ये धुंधलापन बीमारी के साथ बढ़ता जाता है। अगर इलाज न किया जाए तो पूरी तरह दिखना बंद भी हो सकता है। रात में रोशनी वाली जगह पर चमकीले स्पॉट्स दिखना, चश्मे के नंबर में बार बार बदलाव आना और डबल विजन यानी हर चीज दो दिखना। बढ़ती उम्र के साथ होने वाला मोतिया सिनाइल कैटरेक्ट कहलाता है। इसमें दो स्थितियां हो सकती हैं। पहली स्थिति में लेंस के प्रोटीन में बदलाव के कारण प्रोटीन के क्लंप यानी थक्के रेटिना तक पहुंचने वाली इमेज की शार्पनेस को कम कर देते हैं। प्रोटीन के क्लंप के कारण लेंस की पारदर्शिता खत्म हो जाती है जिससे रेटिना तक समुचित मात्रा में रोशनी नहीं पहुंच पाती। दूसरी स्थिति में पूरे लेंस की पारदर्शिता धीरे धीरे खत्म होने लगती है जिससे दृष्टि में धुंधलापन आने लगता है। जैसे जैसे लेंस की पारदर्शिता कम होती जाती है वैसे वैसे धुंधलापन बढ़ता जाता है। जब आंख की किसी दूसरी बीमारी की वजह से आंख के लेंस में होने वाले इन्फेक्शन से कैटरेक्ट होता है तो इसे सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। अगर कैटरेक्ट की सर्जरी के बाद हुए इन्फेक्शन से दोबारा कैटरेक्ट हो जाता है तो इसे भी सेकेंडरी कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में किसी चोट जैसे फायर क्रैकर के स्प्लिंटर्स या चिंगारियों से हुआ घाव और बिजली के झटकों से होने वाले कैटरेक्ट को ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट कहते हैं। आंख में गहरी चोट जो कॉर्निया से होते हुए लेंस को भी नुकसान पहुंचा दे उससे ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट हो सकता है।
0: ब्रेक के बाद एक बार फिर मैं और कुहू आपका स्वागत करते हैं। ये आंखें उफ यम्मा। अरे कोकिला, तुम मुझे दो क्यों दिख रही हो?
1: पता नहीं एपिसोड के अंत तक दिखूंगी भी कि नहीं। जाओ जाकर अपना इलाज करा लो, वरना आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें शुरुआत में इलाज ना कराने पर आंखों की रोशनी हमेशा के लिए चली जाती है।
0: वो तो मैं करा लूंगा, मगर आपने तो सिर्फ बीमारी के बारे में बताकर छोड़ दिया मैडम कुहू MBBS। इलाज नहीं है क्या?
1: बबलू, मैं इलाज के बारे में ही बताने जा रही थी। जानते हैं फ्रेंड्स, पुराने जमाने में मोतियाबिंद का इलाज करने के लिए उसके पूरे पकने का इंतजार करते थे, मगर आज किसी भी स्टेज में उसका इलाज किया जा सकता है। असल में इसे तीन स्टेजेस में डिवाइड किया गया है। शुरुआती दौर में इसे ट्रेस कैटरेक्ट कहते हैं, फिर माइल्ड या मॉडरेट, और जब मोतियाबिंद पूर्ण रूप से बढ़ जाता है तो उसे पक्का मोतिया कहते हैं।
0: अब इलाज की बात करें।
2: मोतियाबिंद का डिटेक्शन व्यापक जांच के बाद होता है। इनमें आते हैं विजुअल एक्यूटी टेस्ट, डायलेटेड आई एग्जाम और अल्ट्रासाउंड। विजुअल एक्यूटी टेस्ट में एक चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट के दौरान व्यक्ति 6 मीटर की दूरी से चार्ट के अक्षरों को पढ़ता है। इसकी रीडिंग फ्रैक्शन में लेते हैं। फ्रैक्शंस के आधार पर आंखों के पावर का निर्धारण ऑप्टोमेट्रिस्ट करता है। ये टेस्ट आंखों की दूसरी बीमारियों की जांच के लिए भी किया जाता है।
3: जांच के दौरान डायलेशन में आंखों में ऐसे आई ड्रॉप्स दिए जाते हैं जो प्यूपिल को बड़ा कर देते हैं। इससे प्यूपिल के पीछे का हिस्सा जांचना आसान हो जाता है। पिछला हिस्सा देखने के लिए ऑप्थेल्मोस्कोप नामक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं। इससे किसी भी प्रकार की आंख की बीमारी पकड़ में आ जाती है।
4: ओपेक लेंस को सर्जिकली रिमूव करके ही कैटरेक्ट का पूरा इलाज किया जाता है। कैटरेक्ट के शुरुआती दिनों में डॉक्टर कई बार चश्मा लगाने की सलाह देते हैं। इसके पश्चात सर्जरी की जाती है, जिसके जरिए लेंस को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। ये सर्जरी दो तरह की होती है, एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी और फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी।
3: एक्स्ट्रा कैप्सुलर सर्जरी में कॉर्निया में चीरा लगाकर खराब हो चुके लेंस को बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद निकाले गए लेंस की जगह कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। जहां लेंस नहीं लगाया जाता, वहां मरीज को सर्जरी के बाद चश्मा लगाया जाता है। दूसरी सर्जरी है फैको इमल्सिफिकेशन सर्जरी, जो एक मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी है। इसमें कॉर्निया में एक बहुत छोटा सा सुराख किया जाता है, फिर इस सुराख के जरिए अल्ट्रासाउंड वेव्स प्रवाहित की जाती हैं। इन अल्ट्रासाउंड वेव्स के कारण मोतिया यानी कि अपारदर्शी लेंस मुलायम होकर टूट जाता है और उस जगह पर कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट की मदद से लेंस लगाने से पहले लेंस का पावर और साइज तय किया जाता है। कैटरेक्ट सर्जरी आजकल लगभग आधे घंटे का मामूली ऑपरेशन है, जिसमें मरीज को लोकल एनेस्थीसिया दिया जाता है।

0: वेलकम बैक फ्रेंड्स. मोतियाबिंद तो एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आंखों की एक ऐसी बीमारी भी है जिसमें अगर एक बार आंखों की रोशनी चली गई तो फिर उसे वापस नहीं लाया जा सकता. ये बीमारी है ग्लॉकोमा. आइए देखते हैं ये बीमारी क्या है और इसका इलाज क्या है.
1: ग्लूकोमा यानी काला मोतियाबिंद, ये आंखों की एक ऐसी बीमारी है जिसमें आंखों के अंदर का प्रेशर बढ़ जाने से ऑप्टिक नर्व्स के क्षतिग्रस्त होने का खतरा बढ़ जाता है. ऑप्टिक नर्व ही इमेज को आंखों से ब्रेन तक पहुंचाती है. दरअसल कॉर्निया और लेंस के बीच एक्वस ह्यूमर नामक एक तरल पदार्थ मौजूद होता है जो कि आई बॉल का आकार मेंटेन रखने के लिए एक दबाव आंखों में पैदा करता है जिसे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर कहते हैं. प्राकृतिक रूप से एक्वस ह्यूमर आंख के एक हिस्से में लगातार बनते रहते हैं और दूसरे हिस्से से लगातार निकलते भी रहते हैं. इससे आई प्रेशर संतुलित रहता है, लेकिन कभी कभी एक्वस ह्यूमर का निर्माण जरूरत से ज्यादा होने लगता है या इनका निकलना बाधित होने लगता है. ऐसी स्थिति में आई प्रेशर बढ़ जाता है. एक्वस ह्यूमर के बहाव में होने वाले परिवर्तनों के आधार पर ग्लूकोमा दो तरह का होता है. पहला ओपन एंगल ग्लूकोमा, ट्राबेक्युलर मेशवर्क जिससे होकर एक्वस ह्यूमर बाहर निकलता है उसमें धीरे धीरे आने वाली रुकावट से ओपन एंगल ग्लूकोमा होता है तथा दोनों आंखों को प्रभावित करता है. दरअसल ट्राबेक्युलर मेशवर्क टिश्यूज कॉर्निया के पास होते हैं और इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर मेंटेन करने के लिए एक्वस ह्यूमर को बाहर निकालते हैं. अगर इनमें कोई रुकावट आ जाती है तो एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ने लगता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है. दूसरी तरह का ग्लूकोमा है क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा, जिसमें आयरिस एक्वस ह्यूमर के फ्लो में रुकावट पैदा करता है. नतीजतन एक्वस ह्यूमर के बाहर निकलने का रास्ता बंद हो जाता है और इससे इंट्रा ऑक्युलर प्रेशर भी बढ़ जाता है जो आंख को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकता है और आंखों की रोशनी भी जा सकती है.
2: क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में आंख का प्रेशर बढ़ने के कारण आंख की नस को नुकसान पहुंच जाता है जिसके कारण आपकी आंख की रोशनी जा सकती है. इसमें एक तो आंख में दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है, सिर में दर्द होता है. जब आप लाइट को देखोगे कलर्ड हेलोस दिखेंगे, कभी कभी उल्टी भी हो जाती है. अगर आपको ये सब सिम्टम्स है तो आपको जल्द से जल्द आई स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए.
1: ये एक इमरजेंसी की अवस्था है और अगर मरीज के इलाज में 24 से 48 घंटे की देरी हो जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए भी जा सकती है. कोई भी इसका शिकार हो सकता है, बेशक वो अपने आंखों के डॉक्टर से नियमित रूप से जांच करवा रहा हो और आंख इससे पहले बिल्कुल ठीक हो. और अब बात सेकेंडरी ग्लूकोमा की. इन्फ्लेमेशन, आंखों का ट्यूमर और वेनस प्रेशर के बढ़ने से होने वाले ग्लूकोमा को सेकेंडरी ग्लूकोमा कहते हैं. आमतौर पर क्रॉनिक ग्लूकोमा में कोई निश्चित लक्षण नहीं दिखाई पड़ते और ये किसी को भी अपनी चपेट में ले सकता है, लेकिन कुछ लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे जिनकी उम्र 50 वर्ष से ऊपर हो, जिनके परिवार में ग्लूकोमा की फैमिली हिस्ट्री हो, डायबिटीज, माइग्रेन या हाइपरटेंशन के मरीज हों, लंबे समय से स्टेरॉइड्स का सेवन कर रहे लोग या जिनकी आंखों में चोट लगी हो. ग्लूकोमा के डायग्नोसिस के लिए जो टेस्ट किए जाते हैं उनमें प्रमुख है टोनोमेट्री. इसमें मोतियाबिंद के टेस्ट की ही तरह एक विशेष इंस्ट्रूमेंट द्वारा आंखों के प्रेशर को नापा जाता है. दूसरा महत्वपूर्ण टेस्ट है ऑप्थैल्मोस्कोप टेस्ट, जिसके जरिए आंखों के पीछे ऑप्टिक नर्व की जांच की जाती है. तीसरा टेस्ट है विजुअल फील्ड असेसमेंट. इस टेस्ट में एक स्क्रीन पर रोशनी की छोटी छोटी स्पॉट्स डाली जाती है और मरीज को रोशनी वाले स्थान को पहचानने के लिए कहा जाता है. इससे पता चलता है कि मरीज के विजन पर कितना असर पड़ा है. ग्लूकोमा का इलाज उसके वर्ग पर निर्भर करता है. ओपन एंगल ग्लूकोमा का आई ड्रॉप्स या खाने वाली दवाओं से इलाज किया जाता है. यदि दवाओं से इलाज न हो सके तब सर्जरी से इसे कंट्रोल करते हैं, सर्जरी में एक्वस ह्यूमर के आउटफ्लो के लिए एक नया रूट बनाया जाता है, इसको ट्रैबेक्यूलोक्टोमी कहते हैं। क्लोज एंगल ग्लूकोमा का इलाज कारगर रूप से सर्जरी के द्वारा होता है। सर्जरी में आयरिस की बाहरी सीमा पर एक छोटा छेद करते हैं, इससे एक्वस ह्यूमर बाहर निकल जाता है। इसके लिए ज्यादातर लेसिक सर्जरी या फिर मामूली ऑपरेशन किया जाता है और एक्वस ह्यूमर के निकलने के लिए दूसरा रास्ता बना दिया जाता है।
3: यो फ्रेंड्स, ब्रेक के बाद हम लाए हैं कुछ खट्टी मीठी बातें। चलिए बताइए कि हम एक मिनट में कितनी बार पलकें झपकाते हैं। कोकिला, तुम शुरू करो।
0: यही कोई 15 बार।
3: क्या आप जानते हैं कि आंसू क्यों बहते हैं?
0: बबलू, तुम वही बताओगे जो सबको पता है, कुछ नया नहीं बता सकते।
1: विजन लॉस का एक और कारण है कॉर्नियल अल्सर या कॉर्नियल डैमेज। दरअसल कॉर्निया शीशे जैसा एक पारदर्शी टिश्यू है। इसका व्यास लगभग 11 से 12 मिलीमीटर होता है। ये आंख के काले हिस्से का आवरण है। किसी भी प्रकार की चोट, इन्फेक्शन या अधिक ताप से कॉर्निया डैमेज हो जाने पर कॉर्नियल ट्रांसप्लांट ही एकमात्र उपाय है। अगर कॉर्निया के उस हिस्से में डैमेज हुआ है जहां से विजन पर असर नहीं पड़ता तो कॉर्नियल ट्रांसप्लांट नहीं किया जाता। चूंकि कॉर्निया का पोषण रक्त से नहीं होता है बल्कि आंख के गोले के भीतर द्रव से होता है, इसलिए मृत्यु के पश्चात भी इसे ट्रांसप्लांट के लिए निकाला जा सकता है। आई डोनर की मृत्यु के 3 से 4 घंटों के भीतर कॉर्निया को निकाल लिया जाता है। सर्जन केवल कॉर्निया बदलता है, न कि आंख का पूरा गोला।
4: नेत्रदान महादान है। अगर आप नेत्रदान के इच्छुक हैं तो अपने पास के आई बैंक से संपर्क करें।
1: आंखों का एक और गंभीर इन्फेक्शन है जिसे पैन ऑप्थल्माइटिस कहते हैं। इसमें लेंस, कॉर्निया, आयरिस और रेटिना पर असर पड़ सकता है। अगर समय पर इसका इलाज न हो तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है और कई मामलों में पूरी आंख को ही निकालना पड़ सकता है। ट्रैकोमा आंखों का एक और इन्फेक्शन है जो एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से दूसरे में एक दूसरे के सामान के इस्तेमाल से फैल सकता है। एक बच्चे से दूसरे बच्चे में और माँ से बच्चे में ट्रैकोमा का इन्फेक्शन ज्यादा फैलता है। ये इन्फेक्शन अक्सर वहाँ होता है जहाँ गंदगी फैली होती है और साफ सफाई के लिए पानी की कमी होती है। ड्रायर क्लाइमेट्स यानी अति शुष्क जलवायु वाले इलाकों में ये इन्फेक्शन ज्यादा होता है। अगर इस बीमारी का इलाज नहीं किया जाए तो आंखों की रोशनी हमेशा के लिए जा सकती है।
3: So, कैसा रहा? खूब सारी बातें बता दी, नहीं?
0: अब बातें ही करते रहोगे या कुछ कंक्लूजन भी होगा?
3: ओहो, मेरे डायलॉग की चोरी। खैर, बच्चों को भी कभी कभी छूट दे देनी चाहिए।
0: बबलू,
3: बाय फ्रेंड्स,
0: तुमसे मैंने
3: नेक्स्ट वीक मिलेंगे, बाय।
0: सॉरी फ्रेंड्स, मुझे ना इसके बड़बोलेपन पर रोक लगानी पड़ेगी, इसलिए आपसे इजाजत चाहूंगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।
3: बबलू,
1: आइए अब एक नजर इस एपिसोड की कुछ खास बातों पर। आंख में लाइट कई जगह पर फोकस होती है। किसी भी व्यक्ति, वस्तु या जीव से लाइट रिफ्लेक्ट होकर कॉर्निया पर पड़ती है। रेटिना के ऊपर उल्टी इमेज बनती है। मस्तिष्क में हमें सीधा दिखाई देता है। मोतियाबिंद में धुंधला दिखने लगता है। ऐसा आंखों के लेंस में मौजूद प्रोटीन के आकार में परिवर्तन के कारण होता है। मोतियाबिंद का इलाज एक छोटे से ऑपरेशन से किया जाता है। ग्लूकोमा में आंखों की ऑप्टिक नर्व्स क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। ग्लूकोमा काफी खतरनाक हो सकता है, इसलिए इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि स्टीरॉयड आई ड्रॉप्स का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की सलाह पर ही करना चाहिए।

0: कि हमारी थाली तक जो भोजन पहुंचे वो रसायन मुक्त हो और पोषण से भरपूर हो। आज के सफल किसान में हम आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से संबंध रखने वाले शिव कुमार से, जो कि मुख्य रूप से जैविक यानी ऑर्गेनिक खेती के लिए जाने जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सफल किसान की।
1: गाजियाबाद भारत की राजधानी से सटे ऊपरी गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र में स्थित है। इसी जिले के गांव चोलस से आते हैं हमारे सफल किसान शिव कुमार, जो दूसरे किसानों के सामने मिसाल पेश कर रहे हैं, जिन्होंने साधारण खेती नहीं बल्कि ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खेती और पशु पालन दोनों को एक साथ चुना। शिव कुमार जैविक खेती से मिले फल सब्जियों का सेवन करने वाले लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं, साथ ही साथ मोटा मुनाफा भी कमा रहे हैं। वो कैसे, तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं उन्हीं की जुबानी।
2: ऑर्गेनिक एंड नेचुरल फार्मिंग करता हूं और नेचुरल फार्मिंग भी तो मैं अब से करने लगा हूं। पहले मैं जैविक खेती करता था। 2005-06 से मैं राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद के संपर्क में आया, जहां से ये केंचुए पालन मुझे सीखने को मिला और मैंने इनसे ट्रेनिंग लेकर के विधिवत तरीके से अपने यहां पर केंचुए पालन शुरू किया, जिससे मुझे केंचुए पालन के साथ साथ में वर्मी कंपोस्ट भी मिलता था और वर्मी वास भी मिलता था। इससे क्या हुआ, जब मैंने अपने खेतों में विधिवत तरीके से अप्लाई किया तो मैंने वर्मी कंपोस्ट से कुछ किसानों को बेचा भी कि इस विधि से हम जैविक पे आ सकते हैं, और जो हम जहरीली खेती कर रहे हैं, जो कन्वेंशनल फार्मिंग कर रहे हैं या ये केमिकल फार्मिंग से पेस्टिसाइड से जो हम खेत में लगा रहे हैं, इससे हम लोगों को निजात मिल सकता है, जिससे हम जहर मुक्त भोजन ले सकते हैं।
1: आज भले ही शिव कुमार अपने गांव और आसपास के इलाकों में चर्चा का विषय बन रहे हों, लेकिन ये सब करना उनके लिए इतना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें मदद मिली गाजियाबाद के राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से, जिनकी मदद और सही सलाह अपनाने के बाद शिव कुमार आज एक सफल किसान बनने की राह पर अग्रसर है। कैसे शिव कुमार और उनके जैसे हजारों लाखों किसान खेत की मिट्टी को बेहतर बना सकते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के उप निदेशक जगत सिंह।
3: कुमार जी, वर्ष करीब 2005 से ही एक इनोवेटर के रूप में उभरे हैं और वर्ष 2014 से ये राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र से जुड़े। तो जब इनसे मेरी पहली बार मुलाकात हुई तो इनसे मुझे पता चला कि इनके खेत की मिट्टी का पीएच हाई है और खेत में मोटे मोटे ग्रेवल्स हैं, माने कैल्शियम कार्बोनेट के पत्थर हैं, जो निशानी है ऊसर भूमि की या हाईली सैलाइन एल्कली की। तो उसी समय से हमने इनको जैविक खेती के परिपेक्ष में दो तीन चीजें बताई थी कि एक तो कंटिन्यू आपको ग्रीन मैन्योर का इस्तेमाल करना है, पकी और पची हुई खाद का इस्तेमाल करना है, जहां जहां पे सैलाइन एल्कली के पैचेज हैं वहां पे गोबर डाल के और थोड़ा मीठा डाल के उसको गलाना है, और जहां पे ज्यादा खारी सॉइल है वहां की मिट्टी उठा के उसमें मीठी मिट्टी और गोबर डालना है। तो पहले बार में इन्होंने ये काम किया। दूसरी बार में हमारे केंद्र से कुछ कल्चर दिए जाते थे जो डिकम्पोज करने का काम करते थे, शिव कुमार जी ने उस कल्चर का अपने खेतों में प्रयोग किया और उस कल्चर के प्रयोग से जो खेत का जो सैलाइन एल्कली का जो नेचर था हाई पीएच, वो लो पीएच में कन्वर्ट हो गया, और साथ ही साथ जो खेत में 1.5 से 2 इंच मोटे पत्थर थे वो भी धीरे धीरे समाप्त हो गए।
1: अब ये जैविक खेती है क्या जिससे हमारे सफल किसान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जरा इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। जैविक खेती फसल उत्पादन की एक प्राचीन पद्धति है, जिसमें फसलों के उत्पादन में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसलों के अवशेष और प्रकृति में उपलब्ध कई तरह के खनिज पदार्थों के जरिए पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। सबसे खास बात यह है कि ऐसी खेती में प्रकृति में पाए जाने वाले

0: कीटनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती पर्यावरण की शुद्धता बनाए रखने के साथ ही भूमि के प्राकृतिक स्वरूप को बनाए रखती है। जैविक खेती का मतलब एक ऐसी कृषि प्रणाली से है जिसमें फसलों के उत्पादन में रासायनिक खादों एवं कीटनाशक दवाओं के स्थान पर जैविक या प्राकृतिक खादों का प्रयोग किया जाता है। जैविक खेती को लेकर शायद हमारे सफल किसान शिव कुमार भी जानते हैं कि जिस तरह जैविक खेती बीते कुछ समय में लोकप्रिय हुई है, उसी हिसाब से आने वाला समय जैविक खेती का ही है, इसलिए उन्होंने जैविक खेती को चुना।
1: जैविक हर किसी को चाहिए और नेचुरल उत्पाद हर किसी किसान को, हर किसी उसको चाहिए जिनको खाना है, तो उसको लेकर के जितना मेरे पास में उत्पाद था उससे डिमांड अत्यधिक थी मेरी, तो इसलिए मैं बंसी गोल्ड पहले से लगा रहा था। बंसी गोल्ड गेहूं मैंने एमपी वाला गेहूं लगाया था, उसका उत्पादन बहुत अच्छा आया और उसकी जो हमारी पैदावार थी वो थोड़ी सी इससे कम थी, लेकिन जो हमारा खाने में बहुत अच्छी गुणवत्ता देता था एचडी 226, उसका विकल्प एचडी 3226 वैरायटी करके मुझे राष्ट्रीय नेशनल सीड कॉर्पोरेशन से प्राप्त हुई। केवल 6 क्विंटल बीज मुझे मिल पाया था, तो मैंने विधिवत तरीके से अपने खेत में नवम्बर में, यानी 17-18 नवंबर को मैंने इसको अपने खेत के अंदर लगा दिया था और इसको मैंने बिजाई सुपर सीडर से की। उसका सीड ट्रीटमेंट मैंने अपने जीएल खाद से वही 1 चम्मच लेकर के और थोड़ा उसमें 1 लीटर पानी डाल करके और मैंने लगभग 3 क्विंटल गेहूं को पर्याप्त मात्रा में उससे बीज शोधन किया था और थोड़ा सा उसमें मैंने हल्का सा 250 ग्राम गुड़ घोल कर भी उसको मिला लिया था। उसका मैंने विधिवत तरीके से उसका उपचार किया और उपचार करने के बाद में जो मेरे पास में वर्मी कंपोस्ट था तो मैंने अपने उर्वरक की फर्टिलाइजर की जगह वर्मी कंपोस्ट अगले टापे में भर करके पिछले में सीड डाल करके और मैंने अपने सुपर सीडर से इन खेतों की बिजाई कर दी है और यील्ड शायद इस बार बहुत अच्छा आएगा सर, मुझे रेट बहुत अच्छा मिल रहा है।
0: शिव कुमार का मानना है कि गांव में खेतीबाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है और इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा, तो वहीं सह फसली जैविक खेती पर सोने पर सुहागा का काम कर रही है जिससे शिव कुमार को 2 गुना लाभ हो रहा है। इस तरह सह फसली खेती करने से मेहनत मजदूरी के साथ साथ पानी, खाद, उर्वरक, बीज और कटाई का खर्चा निकल आता है।
1: पहले जैसे हम खेती कर रहे थे अभी भी और अच्छे तरह से उसको खेती को कर रहे हैं, हम फसल चक्र में लेकर आए हैं। एक तो फसल चक्र से फायदा क्या है कि जो हमारा ये जो वीड है ये वीड अपने आप ही कंट्रोल हो जाता है फसल चक्र से। जैसे हमने अब तिलहन यानी तिलहन लगाया है तो तिलहन के बाद में फिर हमने इसके तिलहन के बाद में जैसे मक्का लगाया है, मक्का के बाद में हम और सब्जी वर्गीय यानी कद्दू वर्गीय फसल इस तरह से घिया, तोरई, ककड़ी, खीरा ये इस तरह से ले रहे हैं और इससे जो है किसान भाई समझें कि इससे अत्यधिक बेनिफिट है। सब्जी से जो आदमी उस किसान को जो मिलता है उससे बहुत ज्यादा कुछ मिलता है।
0: इन फसलों में धान और गन्ना जैसी फसल मुख्य है। गन्ने के साथ सह फसली करने के एक नहीं कई फायदे हैं। जहां गन्ने की फसल को पकने में 10 से 12 महीने लग जाते हैं वहीं 60 से 90 दिनों में दूसरी फसलें पक जाती हैं। इस दौरान बीच बीच में सब्जियों और दलहनी फसलों की खेती करने से 2 से 3 महीनों में दूसरी फसलों की उपज से पैसे मिल जाते हैं। अच्छी बात ये भी है कि ऐसा कर हमारे सफल किसान अपनी जैविक खेती से दूसरे किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं।
2: इसी के साथ ही सफल किसान में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे जैविक खेती से जुड़े कुछ खास पहलुओं के बारे में। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सफल किसान।
3: आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य, इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं फ्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा।
2: सफल किसान में हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले से संबंध रखने वाले शिव कुमार के बारे में जो कि जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती करने की बात करें तो वो आज के समय की मांग भी है। जी हाँ, हमने दशकों रसायन युक्त खाना खाया, यानी ऐसे फसलें उगाई गई जिनमें रसायनों का उपयोग किया गया। इसकी वजह से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित हुई और ये मानव स्वास्थ्य के लिए भी काफी हानिकारक है। वहीं अगर हम जैविक खेती करें या फिर ऑर्गेनिक खेती करें तो उससे रसायनों को हम दूर कर सकते हैं, यानी ये रसायन मुक्त खेती होती है और इसीलिए ये हमारे लिए काफी लाभकारी भी है, पर्यावरण के अनुकूल भी है और मानव स्वास्थ्य पर भी इसका कोई विपरीत असर नहीं है। आइए देखते हैं जैविक खेती से जुड़ी कुछ खास बातें।
0: जैविक खेती को लेकर शिव कुमार का मानना है कि जैविक खेती पशु पालन के बिना मुश्किल है। शिव कुमार ने जैविक खेती को और बेहतर तरीके से करने के लिए ही पशु पालन करना शुरू किया था। किसान शिव कुमार अपने खेतों के लिए जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकम्पोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन इत्यादि का प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। खाद का इंतजाम भी पशुओं के अपशिष्ट से ही हो जाता है, मतलब आम के आम और गुठलियों के भी दाम।
1: ये हमारे पास एक गिर गाय है जो हमारी देसी नस्ल की गाय है और इसका दूध बड़ी गुणवत्ता युक्त है। देखने में आया है कि यदि हम कितनी भी पूरे दिन की मेहनत, हमने हार्डवर्क कितना भी परिश्रम किया हो, यदि एक गिलास दूध हमें शाम को मिल जाता है तो सुबह को पुनः हम कोई भी हार्डवर्क करने के लिए, पूरे दिन के कार्य करने के लिए हम तत्पर रहते हैं। और जैविक खेती ऑब्लिक प्राकृतिक खेती, गौ आधारित खेती है, बगैर गाय के या बगैर पशुधन के हमारी खेती संभव नहीं है। तो हम ये गाय पालन भी कर रहे हैं और भैंस पालन भी कर रहे हैं। इसी के गोमूत्र से हम जो अपना इंसेक्ट है उसको भगाने का कार्य करते हैं और जो हमारे न्यूट्रिशन वैल्यू है इसी से हम कर लेते हैं। गाय के गोबर से इसी की झिल्ली को उतार करके हम जो सफल खाद है और सरल खाद है उसका प्रयोग करते हैं। किसान भाइयों, ये हमारी पशुशाला है और गायों को और भैंसों को हम अलग अलग रखते हैं, और क्योंकि गाय की गुणवत्ता बहुत अत्यधिक होती है, भैंस की थोड़ी सी कम होती है, इसका दूध भी भारी होता है और जैविक खेती बिना पशु के संभव नहीं है। तो इसीलिए किसान भाइयों, पशुपालन से भी हम लोगों को बहुत आमदनी होती है, तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोग अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं। हमारे घर में यानी भैंस या गाय होनी चाहिए, कई पशु होने चाहिए, 10 पशु किसान को कम से कम रखने चाहिए, जिसमें से 6 पशु कम से कम हर समय मिल्क पीरियड में होने चाहिए, तो किसान की आमदनी में इजाफा होगा।
0: जैविक खेती वाकई सभी के लिए फायदेमंद है, लेकिन इसके बावजूद किसानों के लिए एक दिक्कत जैविक फसल को बाजार में सही दामों पर बेचने की है, क्योंकि इसमें मेहनत थोड़ी अधिक होने के चलते जैविक फसल दूसरे फल सब्जियों से थोड़ी महंगी होती है। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि जैविक खेती से उपजी फसल आपको सेवन के लिए फायदेमंद कितनी है।
1: जैसे मैंने देखा है, सुना है कि भाई जैविक के दाम बहुत ज्यादा होते हैं, तो जो अच्छा है शुद्ध खाना हर कोई चाहता है। मैं तो इसको नॉर्मल रेट पर बेचना चाहता हूं, क्योंकि अब उत्पादन, पहले जब हम जैविक खेती में आए थे तो हमारा उत्पादन घटा था, अब हमारा उत्पादन पहले से भी अधिक होने लग गया है और मैं इसको नॉर्मल रेट पर मैं चाहता हूं कि जो गरीब आदमी है वो भी इसको खाए, वो भी अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत है। ऐसा नहीं कि जिनके पास सब कुछ है, दाता का दिया हो, कुदरत की मौज है, वही ऑर्गेनिक भोजन या नेचुरल जो हमारा उत्पाद है उसको खरीद पाए। मेरी ये ललक होती है कि हम डोर टू डोर हर किसी के घर से, जो भी मतलब जिनको भी चाहिए या जिनको नहीं भी चाहिए उनको भी हम तो ऐसे ही दे के आ जाते हैं कि सर आप हमारे सैंपल है, इसको आप चेक करके देखिएगा, जिनको पसंद आता है सर दोबारा से हम लोगों को कॉल करते हैं, दोबारा से उनको दरवाजे खटखटाते हैं, सर जो भी आपने उत्पाद की डिमांड की थी वो उत्पाद आपके सामने है।
4: यहाँ पर जो हमारे बड़े भाई श्री शिव कुमार जी हैं, जो आजकल पूरे जनपद में जैविक का काम कर रहे हैं, इनके फार्म पर हम लोग आते रहते हैं, पूरी हमारी टीम आती रहती है, हमारे हेड भी आते रहते हैं। मैंने इनके वार्ता से ये यहाँ पर देखा है कि जो इनकी जो फार्म की जो मिट्टी थी पहले कुछ ऊसर टाइप की थी और कुछ रेहयुक्त थी, और इन्होंने कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से पूरा ऑर्गेनिक ट्रेनर लेकर के और इन्होंने अपने फार्म को आज बहुत अच्छा बना रखा है, और यहाँ पर इन्होंने काफी ऑर्गेनिक पर काम कर रखा है इन्होंने, जिसको हम देखते हैं इनके नेड ऑफ कम्पोस्ट, वर्मी कम्पोस्ट, और इन्होंने वर्मी वास के द्वारा इनकी बहुत अच्छी खेती होती है, और हम कृषि विज्ञान केंद्र साइंटिस्ट की टीम इनके खेत पर भ्रमण करती रहती है, और आज के जनपद के अंदर बहुत अच्छा अपना जैविक उत्पाद कर रहे हैं। इनके पास में काफी मधुमक्खी पालन का भी इनके बॉक्स हैं, और इन पर इनके पास अपना जैविक का अपना नींबू भी है, काफी अच्छा इनका काम रहता है यहाँ पर। और मिट्टी की जांच के कृषि विज्ञान केंद्र पर समय समय पर अपने इस फार्म की कराते रहते हैं, और इनके साथ में पूरा जनपद क्या पूरा सभी विभाग का इनका इनका कोरिलेशन रहता है जी। मिस्टर शिव कुमार जी बहुत अच्छी जैविक पर काम कर रहे हैं, और समय समय पर हमारे जो जैविक केंद्र है गाजियाबाद में वहाँ भी अपना प्रशिक्षण समय समय पर जैसे लेते रहते हैं, और इनको बहुत अच्छी जानकारी है जैविक के ऊपर, और ये बहुत ही अच्छा अपना काम कर रहे हैं।
5: जैविक खेती के लिए मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी होना बेहद जरूरी है, लेकिन इन दिनों रसायनों का इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ चुका है। नतीजा ये हो रहा है कि इनसे स्वास्थ्य भी खराब हो रहा है और खेत की मिट्टी भी कमजोर पड़ रही है। रासायनिक पदार्थ पानी के साथ मिलकर जमीन के नीचे स्थित पानी तक भी पहुँच रहे हैं और उसे भी प्रदूषित कर रहे हैं। यही वजह है कि जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए काम कर रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र।
2: इसी के साथ ही यहाँ वक्त है थोड़ी सी ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान किस तरीके से इस दिशा में प्रयास कर रहा है। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है, आप देख रहे हैं सफल किसान। अब बात करते हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती संस्थान के बारे में। जी हाँ, इस संस्थान का मुख्य मकसद यही है कि किसानों को बताया जाए कि कैसे वो जैविक या फिर प्राकृतिक खेती को अपना सकते हैं, इसके लाभ के बारे में भी उन्हें जानकारी दी जाए, और साथ ही ये भी बताया जाए कि कैसे जैविक खेती को अपना कर भी वो अच्छा उत्पादन ले सकते हैं और बाजार में इसके अच्छे दाम भी प्राप्त किए जा सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से।
5: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र और इससे जुड़े वैज्ञानिक किसानों को समय समय पर खेती किसानी से जुड़ी सही और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। इस तरह से किसानों को प्राकृतिक खेती करने के लिए प्रेरित किया जाता है, और कैसे ये केंद्र किसानों की मदद के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम का आयोजन करते हैं, बता रहे हैं राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र के निदेशक डॉक्टर जगनीश शर्मा। साथ ही संस्थान के उप निदेशक जगत सिंह बता रहे हैं कि कैसे किसान सही जानकारी के जरिए अपने खेत में बढ़िया उपज पा सकते हैं।
6: हमारा जो संस्थान है वो देश में जैविक एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रमुखतया यहाँ पर कार्यरत है, और हमारे जो संस्थान है इसके चार मुख्य मैंडेट्स हैं, जो कार्य हैं हमारे। सबसे पहला जो है हमारा कार्य वो ट्रेनिंग है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, किसान भाइयों से लेके और सभी जितने भी एक्सटेंशन ऑफिसर्स हैं, कृषि वैज्ञानिक हैं, उन सब के साथ मिलके जो है हम कृषि के जितने भी जैविक कृषि के ट्रेनिंग्स हैं, हमारे जो प्रशिक्षण के प्रोग्राम हैं वो चलाते हैं, और कैपेसिटी बिल्डिंग करना सभी स्टेक होल्डर्स की, ये हमारा सबसे पहला दायित्व है। दूसरा जो है हमारा प्रमाणीकरण है कि प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाना है देश में। आपको पता ही है कि दो प्रकार की प्रमाणीकरण की प्रक्रियाएं हैं देश में। पहली तो है थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जो अपेडा एजेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स उनके द्वारा चलाई जाती है, जो एक्सपोर्ट के लिए और डोमेस्टिक ट्रेडिंग के लिए दोनों के लिए कार्य करती है। हमारे यहाँ पर पीजीएस सेक्रेटरिएट है जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम ऑफ सर्टिफिकेशन। तो ये सर्टिफिकेशन ग्रुप बेस्ड सर्टिफिकेशन है, और जैसे कि आपने नाम सुना पार्टिसिपेटरी, मतलब किसानों द्वारा खुद का निरीक्षण खुद करके और खुद ही अपना पीयर इंस्पेक्शंस पीयर अप्रेजल्स के द्वारा डिक्लेयर करना कि हाँ हम जो है केमिकल फ्री फार्मिंग कर रहे हैं और हमारी जो है जैविक खेती हम जैविक कर रहे हैं और स्टैंडर्ड्स और जो मानक हैं उनके आधार पर जैविक खेती कर रहे हैं। तो इस प्रकार की जो सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया है वो भी हमारा दूसरा दायित्व है। और तीसरा जो हमारा मैंडेट है वो है टेस्टिंग का। हमारे यहाँ पर हमारे संस्थान के साथ हमारे पांच और संस्थान हैं जिनका हम क्षेत्रीय संस्थान कहते हैं, और जो रीजनल सेंटर हैं हमारे अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में हैं, जैसे कि हेडक्वार्टर गाजियाबाद से शुरू करें यहाँ पर। तो ये जो संस्थान है यहाँ पर लेबोरेटरी भी है, जो ऑर्गेनिक जो इनपुट्स हैं जैसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स हैं, बायो फर्टिलाइजर्स हैं, जो फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर 1985 है उसके तहत हमारी लैब्स जो हैं वो नोटिफाइड हैं, और हमारी जो हेडक्वार्टर की लेबोरेटरी है वो तो NABL एक्रेडिटेड भी है, और इसके अलावा बेंगलोर की लेबोरेटरी है RCNF बेंगलोर और RCNF नागपुर है, हाँ, और इसके अलावा जो है हमारी RCNF भुवनेश्वर है, इसके अलावा हमारे RCNF मणिपुर है। तो हमारी 5 संस्थान हैं क्षेत्रीय जो ट्रेनिंग भी करते हैं, टेस्टिंग भी करते हैं, और उसके साथ साथ में सर्टिफिकेशन की प्रक्रिया को भी सुचारू रूप से चलाने में सहायक हैं।
7: जैविक खेती के लिए जो इम्पोर्टेंट इनपुट हैं आज इसके ऊपर मैं चर्चा करेंगे। और जब जैविक खेती की बात करते हैं तो जैविक खेती में जो सॉइल हेल्थ या मृदा स्वास्थ्य जैविक खेती का मेरुदंड है, और मृदा स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है इसको इसका नर्वस सिस्टम कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जैविक खेती में भूमि स्वास्थ्य की एक अहम भूमिका है, और भूमि स्वास्थ्य में जो ऑर्गेनिक कार्बन है या ऑर्गेनिक मैटर है ये एक महत्वपूर्ण योगदान रखता है, क्योंकि पिछले 60-70 सालों में भारतवर्ष की मृदाओं में जो मृदा कार्बन जो कंटेंट है, जैसे जैसे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन बढ़ा है वैसे ही वैसे जो ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट है या मृदा में जो जैवांश पदार्थ है इसमें कमी आने लगी है। तो कमी आने की वजह से जो फर्टिलाइजर का रेस्पॉन्स भी कम होने लगा है, और जहां तक हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करते हैं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में जो ऑर्गेनिक कार्बन का या ऑर्गेनिक मैटर का इम्पोर्टेंट बहुत जरूरी है। हमारे देश में ऑन एन एवरेज जो सॉइल का जैवांश कार्बन स्तर है वो 0.2 से 0.3 के बीच है, और एक सफल जैविक खेती करने के लिए हमारी जमीनों का जो ऑर्गेनिक कार्बन है या जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.5 से तो बिल्कुल कम नहीं होना चाहिए। ये कन्वेंशनल फार्मिंग के लिए है, और अगर बढ़िया आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में आना है तो हमारी खेती का जो जैवांश कार्बन है वो करीब करीब 0.7 के ऊपर होना चाहिए, 0.7 से लेके 1.2 के बीच होना चाहिए। यदि इतना हमारा जैवांश कार्बन है तो हमारी जैविक खेती जो है उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं।
3: कृषि वैज्ञानिकों की सलाह लेकर शुरू की गई खेती के बाद शिव कुमार की आमदनी साल दर साल लगातार बढ़ती जा रही है। साल 2017 के बाद से जब उन्होंने अपने खर्च और मुनाफे का लेखा जोखा रखना शुरू किया तो उन्होंने पाया कि उनकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लगातार घट रही है जबकि मुनाफा लगातार बढ़ता जा रहा है।
1: किसान भाइयों, पहले से तो हिसाब किताब नहीं लगाया था, लेकिन 2017 से मैं थोड़ा अपने खेतीबाड़ी के बारे में लेखा जोखा रखता हूँ। उससे पहले क्या था कि मेरा खर्चा आ जाता लगभग 4-4.5 लाख खर्चा आ जाता था मेरे पास में। अपनी तो केवल 10 एकड़ जमीन है, लेकिन 5-6 एकड़ जमीन में लीज पे लेकर के उसमें कार्य करता था, अभी भी करता हूँ। तो उससे क्या होता था कि मेरा जो है लगभग 4-4.5 लाख रुपए उसमें खर्चा आ जाता था, और लगभग 5-6 लाख रुपए मुझको टोटल आमदनी होती थी। तो जिसमें शुद्ध बचत मुझको सालाना मुश्किल से 1-1.5 लाख मुश्किल से निकल आती थी, और जिसमें परिवार का भरण पोषण पालन बड़ा मुश्किल होता था। 2017 से जैसे मैं अब हिसाब किताब लगाने लगा हूँ, तो जब मैंने हिसाब किताब लगाया था तो मेरी जो बिक्री थी वो मेरी लगभग 7.5 लाख के आसपास में पहुंची थी, और खर्चा मेरा वही था लगभग 4-4.25 के समथिंग में हो गया था। उसके बाद में मैंने 2018-19 में डाटा निकाला था तो तब मेरी आमदनी बढ़कर के लगभग 8.5-9 लाख हो गई थी, और मेरा जो खर्चा है वो थोड़ा सा और डाउन चला गया था, लगभग मैं 2.25 लाख के आसपास में चला गया था। और 2021-22 के सेशन में भी मैंने अपने हिसाब का कैलकुलेशन किया है तो उसी स्थिति में देखने में आया तो मेरी आमदनी लगभग 11-11.5 लाख के करीब पहुंच गई, और मेरा जो खर्चा है वो 1.25 लाख मुश्किल से रह गया। और अभी का जो हिसाब है, अभी का हिसाब मैंने कैलकुलेशन नहीं किया है, लेकिन मुझे परिपूर्ण विश्वास है कि मेरी जो आमदनी है वो 23-24 लाख पार कर गई है, और मेरी जो खर्चा है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन मुश्किल से 60-65 हजार रुपए प्रति वार्षिक होगी। तो इस तरह से मेरी आमदनी में इजाफा हुआ और बहुत खुशहाली से मैं खेती कर रहा हूँ।
8: शिव कुमार आज के समय में नजीर बन दूसरे किसानों को प्रेरित तो कर ही रहे हैं, खुद भी अच्छा मुनाफा कमाकर गांव के कई और परिवारों को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। तो वहीं जैविक खेती को अपना कर समाज के कल्याण के लिए भी एक कदम बढ़ा रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि हमारे सफल किसान शिव कुमार आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं।
2: हमारा आज का सफल किसान, जिसमें आपने जाना कि कैसे ऑर्गेनिक खेती आज के समय की मांग भी है और इस क्षेत्र में किसानों के लिए बहुत तरह के अवसर भी हैं। बस आवश्यकता है कि आप इसे करने की ठाने और शुरुआती चुनौतियों से डरे नहीं, जैसा कि शिव कुमार जी ने किया। आशा करते हैं कि उनके जीवन से आप भी कुछ न कुछ जरूर सीखेंगे। आज के सफल किसान में फिलहाल इतना ही। अगर आपके कोई सुझाव है, अगर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम सफल किसान लेकर आए, किसी किसान की कहानी को कार्यक्रम में दिखाएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है safalkisan@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, सफल किसान कमरा नंबर 77 CPC दूरदर्शन खेलगांव नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स और आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। हम ऐसे किसानों की कहानियां जानना चाहते हैं जिन्हें आप हमें बताएं, ताकि उन्हें भी एक मंच मिल सके। सफल किसान में सफलता की कुछ और कहानियों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।

हमारे देश में कृषि पर्यटन में काफी संभावनाएं हैं। देश में कुल 6.50 लाख गांव हैं। इसमें 14 करोड़ से ज्यादा किसान रहते हैं और इनमें लगभग 70% से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर हैं। ऐसे में कृषि पर्यटन गांव में रहने वाले लोगों के लिए आय का अच्छा जरिया साबित हो सकता है। वैसे तो गांव की सुंदरता को रोजगार से जोड़ने के लिए कृषि पर्यटन की शुरुआत की गई, लेकिन कृषि पर्यटन शुरू करने के पीछे और भी कई कारण समझ आते हैं। जैसे कृषि जोत का आकार छोटा होना, युवाओं का शहर की तरफ पलायन और जलवायु परिवर्तन के कारण खेती में आने वाली परेशानियां, इन्हीं सब कारणों को ध्यान में रखते हुए कृषि पर्यटन को बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि पर्यटन खासकर उन शहरी लोगों के लिए अच्छा है जिनका बचपन आमतौर पर घर की चार दीवारी में ही बीत जाता है। वे अनाज, सब्जियां और दूध उत्पादन की प्रक्रिया को भी नहीं जानते। ऐसे लोगों को कृषि पर्यटन खेती के पारंपरिक तरीकों को देखने समझने का मौका देता है। कृषि पर्यटक स्थल पहाड़ी इलाकों में बनाए जा सकते हैं। अगर मैदानी इलाके में कृषि पर्यटक स्थल बनाना चाहते हैं, तो वहाँ की संस्कृति, पार्क और देसी तरीके से मिट्टी और बांस के बने आवास और खाने की सुविधा करनी चाहिए। कृषि पर्यटन स्थल बनाते समय कुछ जगहों को दृश्य स्थल में बदलकर वहाँ पर खेती के पुराने तरीकों और मशीनों का म्यूजियम बना सकते हैं। इसके अलावा कृषि पर्यटक स्थल पर आने वाले पर्यटकों के लिए खेती, बागवानी और पशु उत्पादन से जुड़े कामों का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। पिछले काफी समय में लोगों की आय भी बढ़ी है और घूमने का शौक भी बढ़ा है। ऐसे में आने वाले समय में कृषि पर्यटन बहुत बड़ा विकल्प बन सकता है, जो न सिर्फ प्रकृति की गोद में जाने का मौका देता है, बल्कि ग्रामीण आबादी को रोजगार भी देता है।

नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट खेती में। मैं आपको लेकर आया हूं आज चंडीगढ़ की पंजाब यूनिवर्सिटी में। पंजाब यूनिवर्सिटी में आप यहां पर देखेंगे बैम्बू फार्मिंग। मेरे पीछे जो आप देख रहे हैं ये रॉकेट की गति से तेजी से बढ़ने वाला बांस है जगेंडिस, और आप देख करके आपको लगेगा कि ये कहीं अमेजन के जंगलों में खड़े हुए इतने मोटे बांस है, लेकिन नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट भी नहीं है, ये चंडीगढ़ है और ये हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पूरे देश में कहीं भी हो सकता है। हम आपको बता दें कि बांस की करीब 1600 वैरायटी हैं पूरे हिंदुस्तान में, कुछ वैरायटी कहीं भी हो सकती हैं। और इस तरह से ये जगेंडिस जो है, यहां पर हमें पता लगा कि इसकी उम्र मात्र 3 महीने है, 3 महीने में भी ये इतना ऊंचा चला जाता है। उसके बाद जैसे ही वो ड्राई होता है, सूखता है, उससे पहले उसको काट लिया जाता है। उसके क्या उपयोग हैं, ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे। बांस को लेकर जो सरकार ने जो अपना प्रोजेक्शन दिया था, उसे जो एक तरह से लकड़ी से घास में की कैटेगरी में उसको रखा, और बांस की खेती पर किसी तरह का प्रतिबंध, उसे काटने पर किसी भी तरह का प्रतिबंध न हो, ये एक नियम बना दिया गया, तब से पूरे देश में बांस को प्रमोट किया जा रहा है।

0: हमारे साथ चंडीगढ़ में जो एनवायरमेंट सोशियोलॉजी के हेड हैं डॉक्टर विनोद कुमार चौधरी, आप यहां पर हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और डॉक्टर साहब से सबसे पहले हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो बांस है उसका इस एनवायरमेंट में क्या कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद आगे चलेंगे।
1: देखिए, बांस एकमात्र ऐसा पौधा है जो आपको बहुत ज्यादा ऑक्सीजन देता है। बाकी पौधों से अगर कंपेयर करें तो 135% तक ज्यादा ऑक्सीजन देता है।
0: क्या बात है?
1: और ये बढ़ता इतनी तेजी से है कि आप जैसे देख रहे हैं कि 3-4 महीने में ये 90-100 फीट तक चला जाता है।
0: रॉकेट साइंस है,
1: रॉकेट है। और ये एक दिन में 3-3 फीट तक बढ़ सकता है। आमतौर पर 1 फीट तो रेगुलर बढ़ते ही बढ़ते हैं, लेकिन 3-4 फीट तक भी बढ़ सकते हैं। और इसमें 1600 के करीब वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में हैं, वो अभी लगभग 30-35 वैरायटी अच्छे से चल रही हैं।
0: और ये आपने सिर्फ यहाँ पर डैमो के लिए, यहाँ पर ही ये हम सब देख रहे हैं कि इसका एक्सपेंशन भी किया गया है?
1: हम सैकड़ों एकड़ में इसकी खेती कर रहे हैं, मैं अपने खेत में भी कर रहा हूँ, मेरे दोस्त भी कर रहे हैं, और बहुत बड़े बड़े इलाकों में हम लगा रहे हैं।
0: एक्यूरेट कितने एकड़ में किया होगा?
1: लगभग 500 एकड़ में पहुंच चुका होगा।
0: क्या बात? हाँ। कौन कौन से एरिया स्पेशली कवर किए हैं?
1: इसमें हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से हैं जो तेजी से लग रहे हैं, और हिमाचल में भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, वो लगा रहे हैं। और इसको लगाने के पीछे कारण ये रहा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक पॉलिसी घोषित किया, जो बांस पहले पेड़ की कैटेगरी में था उसको अभी घास
0: की कैटेगरी
1: में लगा दिया है। इससे क्या हुआ कि जो नॉर्थ इंडिया के किसान थे उनको भी बांस में इंटरेस्ट जागा है। पहले हमें ये लगता था कि बांस को कल्टीवेट करना, इसको आगे बढ़ाना, ये इलीगल है, तो अभी इसको लीगल कर दिया है सरकार ने, उसकी वजह से ये बहुत तेजी से अभी फैल रहा है। ये CNG, चारकोल, एथेनॉल इससे बनना चालू हो चुका है, और इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर होता है, और ये बर्निंग के लिए काम आता है, जो बड़ी बड़ी भट्टियां चलाने के लिए। तो ये डीजल, पेट्रोल और कोयले का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है।
0: बिल्कुल, जैसा कि यहाँ पर आपको पता है कि अब बांस लकड़ी नहीं है, वो घास की कैटेगरी में है, उसको उगाना, उसको काटना, इसमें किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है, और इसी वजह से नॉर्थ इंडिया में भी किसानों ने इसको उगाना शुरू किया है। डॉक्टर साहब ने जैसा बताया कि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, इस इलाके में भी करीब 500 एकड़ जमीन पर तो उनके अकेले के प्रयास से ये शुरू हो चुका है, और इसके अलावा भी किसान अलग अलग तरीकों से उसे पहले से ही कर रहे हैं। यहां पर जो वैरायटीज हैं, हम उन वैरायटीज को जानेंगे, उनकी खासियत क्या है ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस रॉकेट बैम्बू से।
1: जी, इसको नाम जाइगेंटस है, और चाइनीज बैम्बू भी बोलते हैं, लेकिन चाइनीज बैम्बू थोड़ा डिफरेंट होता है। चाइनीज बैम्बू में क्या होता है, 5 साल तक वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, और 5 साल के बाद वो तुरंत 90-100 फीट का चला जाएगा विद इन 3 महीने में। और ये थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उसके जैसा ही है, ये जाइगेंटिस बोलते हैं इसको। और इसकी खास बात यह है कि ये बहुत मोटा होता है, इसकी जो फर्नीचर बनने का, घर बनाने के लिए, पैलेट्स बनाने के लिए, और एक जो खूबसूरत फर्नीचर होता है उसके लिए इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है, तो ये बहुत महंगा भी बिकता है। अगर प्रोसेस करके बेचा जाए तो किसान कई गुना ज्यादा मुनाफा इससे कमा सकते हैं।
0: यहाँ पर हम देख रहे हैं इससे उतर उतर कर इस तरह के प्लेट्स गिर रही हैं, आप इनको नेचुरल प्लेट कह सकते हैं, इनका क्या उपयोग?
1: देखिए, इसके हजारों उपयोग हैं। ये इसका पैकिंग मटेरियल बनता है, गत्ता बनता है, पेपर बनता है, कटोरियां बनती हैं, चम्मच बनते हैं, डिस्पोजल आइटम बनते हैं, ये सीधे भी पैकिंग मटेरियल के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं अभी, इसकी पैलेट्स भी बनती हैं, खाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं इसका। और ये हर पोरी पे एक गिरता है, तो किसान मान लो कि एक बैम्बो है उसके पास और 50 पोरियां, तो 50 ऐसे गत्ते उसके पास गिरने वाले हैं, तो ये एक्स्ट्रा इनकम है किसान की। और इसका मल्चिंग के लिए भी किसान अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं।
0: हम यहां से कुछ और वैरायटीज हैं उधर चलते हैं, और डॉक्टर साहब से जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो सामने हम एक और वैरायटी देख रहे हैं, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, और ये क्या उतनी ही तेजी से बढ़ता है जिस तेजी से जगंडिस बढ़ता है? जी डॉक्टर साहब,
1: देखिए, लगभग सारे बांस बहुत तेजी से बढ़ते हैं, और ये न्यूटन, टोल्डा और बालकोआ, ये 3-4 वैरायटी हैं जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा चलती हैं, उन्हीं में से ये एक है। और इसका भी बढ़ने का जो रफ्तार है वो बहुत तेज होता है, और इसमें आप देखेंगे जैसे हमने जाइगेंटिस में देखा, एक ही पौधे में हजारों डंडे निकले हुए हैं, इसमें भी उसी तरीके से हजारों निकलते हैं। और इसको संभालना और इसको मैनेज करना ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, और आप जितना चाहें इसको जिस तरफ चाहें बढ़ा सकते हैं।
0: आमतौर पर हम देखते हैं कि नॉर्थ इंडिया की जो मार्केट है, जिसमें बल्लियों की, जब आप बल्लियों की बात करते हैं, तो उसमें ये बांस जो है ज्यादा इस्तेमाल में आता
1: जी, ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आता है। और ये भरा हुआ निग्गर बांस जिसको बोलते हैं वो है, वो खोल अंदर से खाली होता है, ये पूरी तरह भरा होता है, तो इसमें वजन जाता होता है। तो अगर किसान इसको पर किलो के हिसाब से या पर टन के हिसाब से बेचे तो इसमें मुनाफा ज्यादा होता है।
0: बांस की तीसरी वैरायटी आई है हमारे साथ, और ये आप पीछे देख रहे हैं ये कुछ पतला बांस है, इसका क्या नाम है, इसकी खासियत क्या है? जी डॉक्टर साहब ये भी बताइए।
1: इसको टुल्डा रॉक्स बोलते हैं, और इसकी खास बात यह है कि यह भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और ये बंच में बढ़ने वाला बांस है। इसको जितना काटेंगे उतना ज्यादा फैलता रहेगा ये। और जिस मान लो कि आपको कच्चा बांस है उसमें 50% आपने तोड़ के अगर उसका अचार मुरब्बा बना लिया तो 50% डंडे और ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं, तो तुरंत आपको पैसा मिल गया अचार मुरब्बा से, और जो 50% बाकी बचा वो आपके डंडे बहुत ही अच्छी क्वालिटी के तैयार हो जाते हैं।
0: यहाँ पर बांस की उपयोगिता जो है वो बांस की वैरायटीज के साथ में बदलती रहती है, और इस उपयोगिता में आप कुछ और बांस देखेंगे। बांस खेतों की बाढ़ लगाने के भी काम में आता है। आपको बाढ़ लगाने में नेट पर अवेलेबल है कि इतने हजार रुपया लगेंगे पर एकड़, लेकिन यहाँ पर आप ये देखेंगे क्या शायद ये बाढ़ के लिए उपयोग आने वाला बांस है?
1: ये अर्बन हाउसेज में जो दीवारों के साथ में लगाते हैं, हेज बेम्बो बोलते हैं इसको, तो ये बहुत ही खूबसूरत हेज बनाता है, क्योंकि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिल रही है तो बहुत कम बढ़
0: खेतों की भी हेज बना देता है।
1: हाँ, खेतों की भी बना सकते हैं, लेकिन खेतों की हेज बनाना चाहिए आपको टुल्डा न्यूटन या बालकोआ से, और या एक डी स्टिक्टस बेम्बो है उसके पीछे लगा हुआ है उस तरीके से, क्योंकि वो पैसे ज्यादा देते हैं। ये केवल देखने के लिए काम आता है, इसके चटाई वगैरह मैट और ये सब चीजें बनती हैं। जो पीछे हमारा लगा हुआ है उसको बुद्धा वैली बोलते हैं, उसका इससे पीछे वाला उसका डेकोरेशन के लिए
0: बुद्धा वैली ये है। हम बुद्धा वैली के पास में ही आते हैं, ये बुद्धा वैली है जो गांठदार बांस है जी, इसके बारे में आप बता रहे हैं।
1: इसको बेम्बुसा वल्गरिस या बुद्धा वैली बोलते हैं, इसमें गांठें होती हैं छोटी छोटी, और ये देखने में खूबसूरत लगता है। अर्बन हाउस होल्ड में भी लगाते हैं इसको। इसी तरीके से इसको व्हाइट बेम्बो भी बोलते हैं, पॉलीमार्फा बोलते हैं इसको वैसे अंग्रेजी में, तो ये व्हाइट कलर का रहता है, और इसकी जो यूज है वो फर्नीचर में सीढ़ियां बनाने के लिए।
0: इसकी खास बात ये है कि इसमें जो है स्मूथनेस ज्यादा है।
1: हाँ, स्मूथनेस ज्यादा है, इसमें फालतू जो कांटे होते हैं जो डंडियां होती है वो नहीं निकला होता है। टुल्डा में, न्यूटन में और बालकोआ में थोड़ी बहुत डंडियां निकलती हैं।
0: बांस की एक और वैरायटी है, इस वैरायटी का नाम क्या है, इसकी खासियत क्या है, इसका बनता क्या है स्पेशली, ये भी हम डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये बेम्बुसा न्यूटन वॉल बोलते हैं इसको। वॉल इसलिए क्योंकि इसके कांटे आपस में फंस के और एक दीवार बना लेते हैं। जैसे किसान ने अपनी मेड पे चारों तरफ लगा दिए तो उसका फायदा क्या होगा कि कोई जानवर इंसान अंदर नहीं आ पाएगा।
0: आप कह रहे हैं कि किसान को अगर अपनी मेड तैयार करनी है तो बेम्बुसा सबसे अच्छा है।
1: हाँ, इसको बोलते हैं लाइव फेंसिंग या लाइव वॉल, तो ये पशुओं को भी रोकता है, इंसानों को भी रोकता है, और इससे पैसे भी आते हैं। ये दुनिया की एकमात्र बाउंड्री है जो पैसे खर्च नहीं करवाती, पैसे देती रहती है।
0: और स्पेसिफिक यही वाला बांस है वो?
1: हाँ, यही वाला है, और इसके अलावा भी दूसरी वैरायटी लगा सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह आपकी जो बाउंड्री उसको कवर कर लेगा।
0: तो क्या ये ऐसे फैलता नहीं है जैसे जगेंडिस वगैरह फैलता है इतना इस तरह से चूड़ा?
1: फैलते सारे हैं, लेकिन आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। जिस साइड से आपको नहीं फैलाना उसके साइड से ट्रैक्टर निकाल देंगे तो वो नहीं फैलेगा। और आप एक पीढ़ी लगाएगी इसको, बांस को मान लो कि मैं लगा रहा हूँ तो मेरी 3-4 पीढ़ियों के लिए मौज है। ये लगभग 60 से 70 साल चलता है, इनकी लाइफ बहुत अच्छी होती है।
0: मतलब ये घास जरूर है लेकिन ये घास 70 साल तक आपके लिए उपयोगी रहती है। यहाँ पर ये भी पेड़ है, ये इसका नाम क्या है, ये भी हैज की तरह दिखता है कुछ कुछ, लेकिन इसे भी समझेंगे।
1: हाँ, ये वाइल्ड बेम्बो हैं, और इनको भी न्यूटन के आसपास की ये वैरायटी हैं, जैसे वहां पे काट के भी हमने डाले हुए हैं। तो ये सारे बेम्बो ऐसे हैं जिनको कहीं पे भी लगाया जा सकता है। खारा पानी, मीठा पानी, अच्छी जमीन, खराब जमीन का भी इनको कोई दिक्कत नहीं होता है। एक बार लगाने के बाद में 70 साल तक ये नॉन स्टॉप चलते हैं।
0: राजस्थान में जैसलमेर जैसी जगहों पर जहां खारा पानी नीचे बहुत है वहां पर भी?
1: अभी BSF का एक प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान के जो बाउंड्री है हमारी उसके साथ साथ में 1 किलोमीटर चौड़ाई और लगभग 200 किलोमीटर लंबाई में वो लगा रहे हैं बेम्बो। हाँ, वो दुनिया
0: स्पेशली राजस्थान के बॉर्डर पर,
1: बिल्कुल, ताकि उससे एक तो फेंसिंग हो जाए, एक डेजर्ट ना फैले, दूसरा जो हमारे BSF के जवान हैं उनके लिए भी आसान रहे डिमार्केशन करना, और उससे पैसा भी निकलता रहे, और जो BSF या बाकी जो आर्म फोर्सेज हैं उनको जो बांस के डंडे चाहिए जो हजारों लाखों की संख्या में चाहिए होते हैं वो भी उनको वहां से मिल जाएंगे, और वो एरिया भी हरा भरा होना चालू हो जाएगा।
0: मतलब आप ये जो बैम्बू है, जो बांस है, इसकी आप जो महिमा है उसको आप समझ सकते हैं। 1600 तरह की वैरायटीज हैं। यहाँ पर एक और वैरायटी है और इस तरह की वैरायटी जो नॉर्थ इंडिया में आसानी से हो सकती है, और मैंने पहले बताया ये जो घास है ये 60-70 साल तक चलेगी और आपकी आने वाली पीढ़ियों को भी कुछ ना कुछ और बहुत कुछ लाभ देती रहेगी। ये वैरायटी जो है बहुत स्मूथ दिख रही है, इसका क्या नाम है, ये किस उपयोग में आती है, ये भी हम देखेंगे।
1: ये व्हाइट बेम्बो है, इसको टूल्डा व्हाइट भी बोलते हैं, इसको और भी दो तीन नामों से जानते हैं, लेकिन इसकी खास बात ये है कि इसके कोई कांटा नहीं है, बिल्कुल सीधा होता है ये, और इसकी जो हाइट है वो बढ़ती रहती है और ये चारों तरफ भी फैलता रहता है जितना हमें चाहिए, और ये बहुत ही नजदीक नजदीक ग्रो करते हैं, और इसका इस्तेमाल फर्नीचर बनाने में, केन बनाने में, या फिर जो सजावटी सामान है उसमें, और पशुओं के लिए बाड़ा वगैरह बनाने में इस्तेमाल होता है। वैसे बेम्बो की किसी भी वैरायटी को किसी भी काम में लिया जा सकता है, लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी हैं जिनका स्पेसिफिक फीचर की वजह से किसी पर्टिकुलर काम में उनका ज्यादा इस्तेमाल होता है। तो अगर मान लो कि पशुओं के बाड़ा बनाना है या फिर आपको उससे सीएनजी निकालना है या फर्नीचर बनाना है, तो उसके हिसाब से वैरायटी में थोड़ा थोड़ा फर्क आएगा। जैसे अभी हम ब्लैक बेम्बो देखेंगे, उसकी वैरायटी थोड़ी डिफरेंट है, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी करके तीन चार वैरायटी हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि बांस से लगभग 25,000 प्रोडक्ट बन सकते हैं। तो वो कैसे बनाएं और उसके बारे में हम बात कर सकते हैं।
0: यहाँ पीछे कम से कम 4-5 तरह के बांस के झुंड दिख रहे हैं, इनके नाम क्या हैं, इनकी खासियत क्या है, यहीं से एक बार डॉक्टर विनोद से हम जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ में फिर बांसों के अधिकतम उपयोग क्या हो सकते हैं उनके बारे में भी बातचीत करेंगे। जी डॉक्टर साहब,
1: ये डंडा बांस है, लाठी बांस है, इसको हम अलग अलग नामों से जानते हैं और हर क्षेत्र में इनके नाम बदल जाते हैं, साइंटिफिक नाम सेम रहते हैं, लेकिन जो डंडा बांस है उसकी खासियत, जैसे पुलिस वाले डंडे रखते हैं या फिर मच्छरदानी लगाने के लिए रखते हैं, या बायोमास में भी इनका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी और टूल्डा, न्यूटन, बालकोआ, इस तरीके से इनके एक पूरी फैमिली है, और इन फैमिली में दो तरीके के स्पेसिफिक बांस होते हैं, एक वो हैं जो दूर दूर फैलते हैं और एक वो हैं जो बिल्कुल बंच में एक साथ में निकलते हैं। तो इसमें दो मेजर वैरायटी हैं और ये कोई भी वैरायटी कहीं पे भी पैदा हो सकती है। जो ऐसी जगह है जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे थोड़ा वैरायटी सोच के लगाना पड़ता है और बहुत गर्म इलाकों में, उसके अलावा लगभग सभी वैरायटी सभी जगह पे चल जाती है।
0: बिल्कुल, यहाँ पर आखिर में मैं आपको ब्लैक बैम्बू की तरफ ले जाऊंगा और वहीं से फिर बांस का पूरा का पूरी जो खासियत है, बांस की जो उपयोगिता है पूरे के पूरे इकोसिस्टम को, उसके बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे।
1: इसको सिमेंसिस बोलते हैं। इस बांस की खास बात ये है कि ये पूरा बंच में उगता है और ये बहुत ही गहरा होता है। आप देखेंगे एक पौधा लगाया था ये, और इस एक पौधे के कई हजार बन चुके हैं।
0: ये भी वॉल बनाने के काम आ सकता है।
1: हाँ, वॉल बनाने के लिए भी काम आ सकता है, लेकिन इसका ज्यादा अच्छा इस्तेमाल होता है फर्नीचर में, अगरबत्ती की काड़ी बनाने में, या जो आपके चॉपस्टिक्स हैं, ऐसी सीधी चीजें जिनको मार्केट वैल्यू ज्यादा है उनमें इसका ज्यादा इस्तेमाल होता है। ये वाले जो बेम्बो हैं, इसके खास बात यह है कि ये हजारों की संख्या में उग जाता है, और जिस साइड में इसको पानी मिलेगा, जिस साइड में इसको नमी मिलेगी,
0: उधर
1: उस साइड में बढ़ना चालू हो जाएंगे। तो ये भी जैसे व्हाइट बेम्बो का एक वैरायटी है। इसका जो खास बात है ब्लैक बेम्बो का, ये इसको दो वैरायटी हैं, हैमिल्टोनी बेमिल्टोनी, इसको ब्लैक बेम्बो भी बोलते हैं, और इसकी खास बात ये है कि इसके पत्ते चौड़े होते हैं, और इसकी जो बॉटनिकल जानकारी है वो हमारे बॉटनी डिपार्टमेंट के जो टीचर हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं इस पे। लेकिन इसको अगर आप देखेंगे तो इसका बिल्कुल ब्लैक कलर है, और इस ब्लैक कलर की खास बात यह है कि जो ही वो ग्रीन उगता है वो ताजा प्लांट है, और जो ही वो काला हो जाता है
0: तो काट
1: ये काट लेने के लिए तैयार हो गया। लेकिन इसको बजा के देखते हैं कि अच्छा, जितना पुराना हो गया उतना अच्छा है। और इसको काटने के लिए किसान भाई को क्या करना चाहिए कि वो इसको तीन जनरेशन में डिवाइड कर ले, कि एक तो दादा है, एक बाप है, और एक पोता है। तो जो दादा है, मतलब 3 साल पुराना जो हो गया, उसको काटेंगे तो वो पूरी तरह पका हुआ है, तो पिछले साल वाले अगले साल तैयार हो जाएंगे, अगले साल तैयार हो जाएंगे। तो साल में एक बार इसकी अच्छे से कटाई करते रहें।
0: तो हमेशा आपको दादा को
1: निकालता रहना है, क्योंकि उसकी उम्र हो गई है, उसको नहीं निकालेंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो बांस एक ऐसा पौधा है जो जबरदस्ती पैसा देता है। अगर आप नहीं भी लेंगे तो बोलेगा कि भाई काटो मेरे को, मेरे पास पैसे रखने का अभी टाइम नहीं है। तो किसान के लिए एक जबरदस्त चीज है ये, अपने आप बढ़ता रहता है, कोई देखभाल नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती है, तो ये किसान के लिए बहुत ही अच्छा एक चीज है।
0: शुरू में डॉक्टर साहब जब बांस की खेती करनी होती है किसी किसान को, उस समय तो कुछ समय के लिए उसका पानी, उसकी देखरेख, इस सब को थोड़ा सा समझना होता है।
1: इसमें ये घास की वैरायटी है, जैसे हरियाणा पंजाब राजस्थान में झुंडा एक उगता है, सरकंडा जिसको बोलते हैं, लगभग वही चीज है ये इसकी हाइट और जो मोटाई है वो बढ़ जाती है, इसको ज्यादा देखभाल की जरूरत है नहीं। जब स्टार्टिंग में लगाएंगे तो अच्छे से इसको सोच समझ के, इसके बारे में जान के लगाना चाहिए, और आपके लोकल मार्केट में किस चीज की डिमांड है उसके हिसाब से लगाना चाहिए, फिर किसान को बेचने में दिक्कत नहीं आएगी। अभी सरकार की तरफ से भी और गैर सरकारी बहुत सारी संस्थाएं इसका चारकोल, CNG पैलेट्स और तमाम सारी दूसरी चीजें बनाना चालू कर चुकी हैं, तो बेचने के लिए वैसे भी दिक्कत नहीं आने वाला है। लेकिन फिर भी ऐसी वैरायटी लगाएं जो लोकल मार्केट में जल्दी बिक जाती है, जैसे टूल्डा, न्यूटन, हैमिल्टोनी, बेमिल्टोनी, जैगेंटिस, तो ये फटाफट बिकने वाली वैरायटी है। और इसके साथ साथ में जब पहला 1 से 2 साल मान लें किसान की, उसको बेसिक देखभाल करनी चाहिए।
0: 1 एकड़ में कितने पौधे,
1: ये डिपेंड करता है कि फार्मर कितना जल्दी प्रोडक्शन चाहता है। तो कुछ फार्मर इसका 500 पौधे लगाते हैं, कुछ 600 लगाते हैं, कुछ 750, कुछ 1000 भी लगाते हैं। तो
0: आपका रिकमेंडेशन?
1: मेरा रिकमेंडेशन ये है कि 600 से 750 के बीच में लगाने चाहिए, ताकि उनकी ग्रोथ भी अच्छी हो और आपके पास साइजेबल क्वांटिटी हो बेचने के लिए।
0: कुछ छोटी जोत के किसान इस देश में ज्यादा हैं, उनके लिए भी क्या ये लगाना जरूरी है, या फिर आप उनको यही सलाह देंगे कि वो ज्यादा से ज्यादा बाउंड्री पर लगाएं? तो
1: बाउंड्री से चालू करें, और जब उनको बाउंड्री से पैसे आने चालू हो जाएं तो वो अपनी बाकी सारी फसल से ज्यादा पैसा देना चालू करें।
0: कॉन्फिडेंस लेवल जब बढ़े,
1: बिल्कुल, जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए तो फिर अंदर भी लगाना चालू कर दें। और ये इसकी खास बात ये है कि मान लो कि कोई छोटा जोत का किसान है, मात्र 1 एकड़ का किसान है, उसने खेत के चारों तरफ बैम्बो लगाया, बीच में एक पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर का सिस्टम है जिसको PQNK भी बोलते हैं, तो उस मॉडल पे उसने फल सब्जियां लगा दिया, बीच में थोड़ी बकरियां छोड़ दी या बाकी जानवर छोड़ दिए, तो उसके मल्टीपल इनकम स्ट्रीम बन जाएंगे और उसकी दीवार भी उसको पैसा देना चालू करेगी। आपने और कोई दीवार नहीं सुनी होगी जो पैसा देती हो, लेकिन बैम्बो की दीवार पैसा देती है। इसके साथ साथ
0: दीवार के लिए ब्लैक बैम्बो भी अच्छा है,
1: कोई भी बैम्बो लगा सकते हैं। आपके खेतों में पशु का नुकसान कितना है उसके हिसाब से सोचना चाहिए।
0: आपने 500 एकड़ जमीन में किसानों को बांस लगवाया है अभी तक, इसको लेकर के आप कितना उम्मीद से हैं?
1: UN की एक रिपोर्ट आई है जिसमें लिखा गया है कि पानी की भयंकर कमी होने वाली है हमारे देश में, खासकर नॉर्थ इंडिया में, और हम पहले से ही ब्लैक जोन और डार्क जोन में, रेड जोन में आ चुके हैं, तो पानी आगे मिलेगा ही नहीं खेती करने के लिए। तो उसके लिए सबसे जरूरी है कि जितना भी पानी अभी हमारे पास है उसका इस्तेमाल करते हुए बैम्बो लगाए जाए, और एग्रीकल्चर की टेक्निक को समझ के पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे खेती की जाए, तो कम से कम पानी में किसान जिंदा रहेगा। इसके साथ साथ में पानी की कमी को पूरा करने के लिए बांस भी जिम्मेदार है, क्योंकि इसकी जड़ें लगभग 50,000 लीटर पानी को पकड़ के रखती हैं, और हर बरसात में ये पानी ज्यादा पकड़ के रखती हैं और बाकी पानी जमीन में छोड़ती रहती हैं। जमीन को ये ऑर्गेनिक करते हैं, फर्टाइल करते हैं, इसके आप देख रहे हैं हर जगह पे पत्ते जो गिरे हुए हैं, ये पत्ते जमीन को ढक के उसको ज्यादा नेचुरल बनाने में हेल्प करते हैं। तो ये कंप्लीट इकोसिस्टम जनरेट करता है, और इससे रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान, आप जो सोच सकते हैं वो सब बनता है। तो किसान को ये एक ATM मशीन जैसा है, जैसे बकरी को किसान का ATM बोलते हैं, वैसे ही ये भी ATM है। जब मर्जी उसको काटा और 200-300-400 रुपए का एक डंडा बिक जाता है, तो उसकी इनकम का एक स्टेबल जरिया ये रहेगा। इसके बाद में आपने क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग पे बहुत सारी सरकारों का और इंटरनेशनल बॉडीज के बारे में जो हल्ला मचा रहे हैं, उसका सॉल्यूशन भी बांस है, क्योंकि कार्बन सिंक करने में बांस का कोई दूसरा मुकाबला नहीं है। ये हवा से धूल कण, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, सल्फर डाइऑक्साइड, इन सबको कंज्यूम करके अपने अंदर समा लेता है।
0: बाकी पौधों के अलावा ज्यादा CO2 को कंज्यूम करता है?
1: जी, लगभग 130 से 135% ज्यादा लेता है ये, और उसका फायदा ये होता है कि हवा बहुत जल्दी साफ हो जाती है, और ये ऑक्सीजन भी ज्यादा छोड़ता है क्योंकि इसकी ग्रोथ भी अनलिमिटेड है।
0: कार्बन क्रेडिट को लेकर के आपने डॉक्टर साहब कुछ काम किया है? मान लिया 1 एकड़ में अगर 750 पौधे किसी किसान ने लगाए हैं, तो वो उसका कैलकुलेशन की भाई ये इतना CO2 कंज्यूम कर लेगा, और जो फैक्ट्री चलाने वाला आदमी है वो उसे इतना पैसा उसको मिल सकता है, ठीक है, क्या कंपनसेशन है उसका?
1: इसके लिए अभी यूरोप में चालू हो चुका है और इंडिया में भी कुछ कंपनियों ने चालू किया है और लगभग $75 पर टन के हिसाब से कंपनियां इस पे स्पेंड करेंगी। ये कंपलसरी उनके लिए हो चुका है और जो इनकम है कार्बन क्रेडिट सेल करके वो काफी अच्छा होने वाला है किसान को। एक मोटा मोटा अंदाजा मैं दूं तो 10-15 हजार से लेके और 60-70 हजार पर एकड़ उसको मिल सकता है बिना कुछ और एक्स्ट्रा किए,
0: अकेले कार्बन क्रेडिट से।
1: अकेले कार्बन क्रेडिट से। और प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल इसको लॉन्च किया है 15 अगस्त को कि कार्बन क्रेडिट हम सेल परचेज कर सकते हैं जैसे हम शेयर मार्केट में सेल परचेज करते हैं ठीक उसी तरीके से। तो ये कार्बन क्रेडिट का जो बिजनेस है इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगा क्योंकि हमारे यहाँ
0: से। मैं आपको बता दूं कि भारत में, जबकि उन्होंने डॉक्टर साहब का कहना है और हम भी मानते हैं कि कार्बन क्रेडिट जैसी बातें यूरोप में, पश्चिमी देशों में, विकसित देशों में ज्यादा होती हैं, फिर भी भारत के अंदर 4,000 करोड़ रुपया जो है कार्बन क्रेडिट के मार्केट में वहां से वो उठाया गया है। तो एक बात यह है कि जमीन से लेकर के और पूरे इकोसिस्टम को कैसे डील करता है अकेला बांस, ये एक बात यह है। एक साथ में बहुत बड़ी बात है जिसको हर किसान समझना चाहता है क्योंकि वो अपने वॉलेट की तरफ देखता है। आपने बैंबू की इकोनॉमी को समझा है, एक एकड़ में अगर वो 750 पौधे लगाता है तो एक एकड़ से वो साल भर में कितना पैसा वो अपने घर में ला सकता है, इसका कुछ अंदाजा?
1: जी देखिए, लगभग 3 साल बाद में चौथी साल में कटना चालू हो जाता है और ये एक पौधा लगाया गया था आपके सामने है, ये हजारों की संख्या में निकल चुके हैं। इसमें हम मान लें कि वो 10 से 15 डंडे ही काट पाएगा, तो अगर वो 10 डंडे भी काटेगा 7,500 डंडे उसके पास होते हैं। पर डंडा अगर 100 रुपए का भी बिक रहा है तो 7,500 रुपए का बनता है। तो आप 7,500 छोड़िए 6 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 3 लाख कुछ तो मिलेगा ही मिलेगा उसको। तो उसकी इनकम ये स्टार्टिंग है और वो हर साल बढ़ता रहेगा और कार्बन क्रेडिट भी मिलने की संभावना अभी बढ़ती जा रही है। उसके अलावा सब्सिडी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनल बैम्बो मिशन के अंडर दे रही है, कुछ राज्यों में हम चालू करवाने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, तो जल्दी ही सब जगह चालू होने की संभावना है। तो किसानों के लिए एक ये परमानेंट ATM जैसा है और वो लगाएंगे तो इससे मल्टीपल फायदे वो उठाएंगे। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि ज्यादातर किसान सब्जी की खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, सब्जी की खेती में एक एकड़ में वो लगभग 20,000 के जो बांस के डंडे होते हैं वो खरीद के लगाते हैं। तो अगर उसके खेत में 2 बांस भी लगे हुए हैं तो उसको अपनी जो बेसिक जरूरतें उससे पूरा कर लेगा। अगर उसने थोड़ा ज्यादा लगाया तो मान लो 20,000 रुपए वहां पे सेव कर रहा है, पशुओं के बाड़े बनाने पे सेव कर रहा है, बाउंड्री को अच्छे से बना लेता है ताकि आवारा पशु उसके खेत खराब नहीं करें, तो उसको एक कंटिन्यूअस इनकम का स्ट्रीम चालू हो जाता है। इसके बीच में वो पशुपालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, बकरी पालन और तमाम सारे दूसरे कार्य भी कर सकता है। इसके अलावा अगर किसी को बढ़ई का काम आता है, इसका फर्नीचर बनाए, इसकी कटलरी बहुत अच्छी बनती है और डिस्पोजल आइटम बहुत अच्छे बनते हैं, तो अनलिमिटेड चीजें इसकी बना सकते हैं। और ये छोटे हथकरघा जो उद्योग होता है इसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उसका भी वो फायदा उठा सकता है और ज्यादा से ज्यादा वो स्वरोजगार की तरफ जाएगा। तो हर रोज उसके घर में बैठ के उसको अच्छे खासे पैसे आते रहेंगे जितना वो किसी नौकरी में नहीं कमा पाएगा।
0: कई बार बांस के ट्रीटमेंट को लेकर के बात होती है कि ट्रीटमेंट अगर उसका नहीं किया गया तो उसकी जो एज है वो कम रह जाएगी, वो उतना ज्यादा सक्सेस नहीं होगा।
1: इसमें बोरोक्स पाउडर वगैरह से इसकी ट्रीटमेंट करते हैं, वो उस वजह से करनी पड़ती है। अगर आपको मान लो कि फर्नीचर बनाना है, घर बनाना है, तो आपको ये ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगर अदरवाइज अगर कुछ और काम कर रहे हैं इसका, जैसे चारकोल, पैलेट, CNG, एथेनॉल, CD, ये सब बना रहे हैं, तो कोई खास जरूरत है नहीं उसके करने की। क्योंकि बांस की जो लाइफ है, आप उसको अगर हल्का सा वार्निश या पॉलिश करते रहे और हल्का सा ट्रीटमेंट भी कर लिया और उसका घर बना लिया तो वो सैकड़ों साल में चला जाता है, है ना। तो बांस एक ऐसी चीज है जो रिन्यूएबल है, आप इसका घर अगर टूट भी गया तो दोबारा से आप बनाएंगे तो आपको सारी चीजें बांस से दोबारा मिल जाएंगी और ये कार्बन नेगेटिव फुटप्रिंट वाला घर होगा। इसके साथ साथ में नेचुरल है, ब्रीदिंग हाउस होता है। आप नॉर्थ ईस्ट में अभी मेरे साथी जाके आए हैं, उन्होंने देखा कि बांस से खूबसूरत घर बना के अंदर से वो लिपाई कर देते हैं मिट्टी की।
0: नॉर्थ इंडिया में भी बांस से घर बनाने के कुछ मॉडल जो है, कुछ स्टार्टअप शुरू हुए हैं।
1: हाँ बहुत सारे हुए हैं, आप चंडीगढ़ में भी देखेंगे सेक्टर 15 में वो रेडी वगैरह लगा रहे हैं, पूरा बांस से डेकोरेशन किया है, बांस का ही बनाया है। फाइव स्टार होटलों में मैंने कई सारी जगह पे देखा उन्होंने बांस से बहुत अच्छा डेकोरेशन और जो रूफ टॉप है उसके ऊपर हट्स वगैरह बांस की बनाई है। इसके अलावा चंडीगढ़ के आसपास में बहुत सारे ऐसे जगह बनी हुई है जहाँ पे बांस से घर बने हुए हैं, और पटियाला में और भी कई सारी जगह पे लोगों ने फुल फ्लैज घर बनाए हुए हैं बांस के, और टूरिज्म इंडस्ट्री, नेचुरोपैथी सेंटर, कई बार खेतों में लोग हट्स बनाते हैं इसकी खूबसूरत वाली, तो इसकी दुनिया भर की चीजें ऑलरेडी बन चुकी हैं और बन रही हैं। पहले दिक्कत ये थी कि बांस अवेलेबल नहीं था, इसकी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बहुत हाई है अगर आप नॉर्थ ईस्ट से लेके आएंगे तो उसकी वजह से इतना लोग ज्यादा एनकरेज नहीं फील कर रहे थे। अभी लोकल में जब हम बांस लगाएंगे तो इसकी जो इंडस्ट्रीज हैं वो हजारों की संख्या में आपको देखने को मिलेंगी यहाँ पे।
0: बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अगर सरकार भी सिग्नल दे चुकी है कि अब आपको बांस को काटने में, खरीदने में, ट्रांसपोर्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है बैम्बू वॉल जो है वो राजस्थान पाकिस्तान बॉर्डर पर वो करने जा रहे हैं उस प्रोजेक्ट को, और सबसे खास बात यह है कि ये ग्लोबल वार्मिंग को डील करता है, सबसे खास बात यह है कि ये पानी से डील करता है, अगर आपका स्लाइन वाटर है तो भी ये उस पानी में भी हो सकता है, आपके नमकीन पानी में भी ये हो सकता है, उसे बिल्कुल 7 PH का वाटर ही नहीं चाहिए, तो इसको लेकर के, और दूसरा उसकी जो इकोनॉमी है पर एकड़ है, बाउंड्री को लेकर के है, ये सब इतना ज्यादा है कि अगर आपने बांस को अपना मिशन बनाया तो ये बैम्बू मिशन केवल सरकार का मिशन नहीं बल्कि हर परिवार का मिशन भी बन सकता है। तो स्मार्ट खेती में मुझे इजाजत दीजिए, अगर आपने किसी तरह का कोई बीड़ा उठाया है, अगर आपने अपने यहां पर किसी तरह की स्मार्टनेस दिखाई है खेती में, तो आप हमें जरूर बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपके यहां की स्मार्ट खेती।

मेजर होशियार सिंह अपने जीवन काल में परमवीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले चंद शूरवीरों में हैं। हरियाणा के सोनीपत में जन्मे मेजर होशियार सिंह ने 1971 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाई थी। 1957 में होशियार सिंह का भारतीय सेना की जाट रेजिमेंट में चयन हुआ था और 3 ग्रेनेडियर्स में कमीशन लेने के बाद ये ऑफिसर बने। 1971 में भारत पाकिस्तान की जंग में भारतीय सैनिकों की वीरता और पराक्रम से जुड़े तमाम किस्से हैं। इस युद्ध में यूं तो 4 जांबाजों को परमवीर चक्र से नवाजा गया था, पर मेजर होशियार सिंह ऐसे अकेले सैनिक थे जिन्हें ये अलंकरण जीवित रहते मिला।

रूरल एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ग्रामीण शिक्षा एवं विकास। हमारा काम तो लाइब्रेरीज बनाना है और आज के समय में जो चर्चा हो रही है, लाइब्रेरीज खाली किताब पढ़ने के लिए नहीं है। लाइब्रेरीज एक ऐसी जगह है जहाँ हम बहुत कुछ अपने लिए भी कर सकते हैं और समुदाय के लिए भी कर सकते हैं। माने पढ़ें तो हम अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, हम बड़ों को भी पढ़ाएं, हम छोटे बच्चों के साथ भी एक्टिविटीज करें कि किताब क्या चीज है और किताब उनके जीवन में क्या महत्व रखती है। पर ड्यूरिंग द जर्नी इस समय के साथ साथ हमने ये सोचा कि हमें महिलाओं के लिए भी कुछ कार्यक्रम करने चाहिए। अगर महिला अपने आप को निखार सकती है, अपने आप को सक्षम बना सकती है और जिम्मेदारी अपने शोल्डर्स पे ले सकती है कि अपने बच्चों का विकास कैसे करना है, वो भी रीड इंडिया अपने कम्युनिटी लाइब्रेरीज और रिसोर्स सेंटर्स में करती है। हमने औरतों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्यक्रम किए, जैसे सिलाई सिखाना, ब्यूटी पार्लर की ट्रेनिंग देना और भी बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग्स हैं जो हम अपने सेंटर्स में करते हैं। पर उसका जो आउटकम है, जो हम समझ रहे हैं कि एक महिला इतनी सक्षम हो जाए कि वो अपने परिवार की भी सोच बदल सके, अपनी भी सोच बदल सके और अपने बच्चों को एक मकाम तक लेके जा सके। इसी दौरान हमने पिछले 3 सालों में उनको बहुत सारी ऐसी स्किल्स दी जिससे वो अपना बिजनेस भी शुरू कर सकती हैं और हम उनको रेगुलरली ट्रेस भी करते हैं, ट्रेस इन द सेंस कि हम उनसे बातचीत भी करते हैं कि वो अपने बिजनेस के बारे में क्या सोच रही हैं, अपना बिजनेस कैसे आगे लेके जा सकती हैं। और इसी दौरान हमने ये सोचा कि हम क्यों इतने बड़े बड़े BBA और MBA की बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो हम इतने पैसे कहाँ से लाएं कि हम इन महिलाओं को बोलें कि ये कोर्सेज ज्वाइन कर लो। तो रीट इंडिया ने क्या किया, अपने प्रपोजल में ये सारे एपिसोड्स लिख दिए। मैं इनको एपिसोड्स ही कहूंगी, मॉड्यूल्स नहीं कहूंगी, क्योंकि ये एपिसोड्स उनके जीवन में बहुत सा बदलाव ला सकते हैं, उनको एक उद्योग क्या है उसके बारे में ज्ञान दे सकते हैं और उद्योग करने के लिए उनको क्या क्या सीखना है वो भी ट्रेनिंग्स हम देने के लिए तैयार हैं। और हम महिलाओं को बोलते हैं, यंग लड़कियों को बोलते हैं जो BA कर चुकी हैं या 12वीं पास कर चुकी हैं, वो अपना नाम आके रीड इंडिया की लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर में लिखवाएं और हम बिल्कुल तैयार हैं उनको इनके ऊपर ट्रेनिंग देने के लिए। और आगे आने वाले समय में अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो अगर वो अपना एक लघु उद्योग शुरू कर लेती है और अपने परिवार की देखभाल अच्छे ढंग से कर लेती है और अपने हस्बैंड के साथ, अपने परिवार के साथ कंधे से कंधा मिला के अपने परिवार को आगे लेके जाती है, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सकती है, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज उनकी जिंदगी में क्या हो सकती है। तो श्रोताओं, मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप रीड इंडिया के मिशन को समझें, रीड इंडिया की लाइब्रेरी के बारे में जानें और जितना भी आप अपने आप को सक्षम कर सकते हैं रीड इंडिया के सेंटर पे आके अपना नाम लिखवाएं। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: विज्ञान वाणी के विज्ञान वार्ता प्रसारण में आपका स्वागत है।
1: प्राचीन भारत में प्लास्टिक सर्जरी सन 1769 और 1799 के बीच 30 साल की अवधि में ब्रिटिश सेना और हैदर अली तथा उसके बेटे टीपू सुल्तान के बीच 4 मैसूर युद्ध लड़े गए। इन युद्धों के दौरान अंग्रेजों को 2 अत्यंत महत्वपूर्ण भारतीय तकनीकों रॉकेट निर्माण और प्लास्टिक सर्जरी के बारे में जानकारी मिली। बाद में इन दोनों ही भारतीय तकनीकों का पहले इंग्लैंड में और तदनंतर यूरोप के अन्य देशों में तेजी से विकास हुआ। अंग्रेजों ने भारतीयों से किस तरह प्लास्टिक सर्जरी की विद्या सीखी, ये एक दिलचस्प दास्तान है। टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच तीसरा मैसूर युद्ध एक संधि के द्वारा समाप्त हो चुका था। उसके कुछ दिन बाद की ही घटना है। अंग्रेजों की खिदमत करने वाला कवसाजी नाम का एक मराठा गाड़ीवान और 4 तिलंगे मैसूर राज की सीमा में दाखिल हुए तो टीपू सुल्तान के सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया और उनके हाथ नाक कान सभी कुछ काट दिए। फिर उन्हें अंग्रेज कमांडर के पास वापस भेज दिया गया। उसके कुछ दिन बाद की बात है, वहां अंग्रेज कमांडर एक भारतीय व्यापारी से कोई और सौदा तय कर रहा था तो उसने देखा कि व्यापारी की नाक कुछ अजीब तरह की है और उसके ललाट पर जख्म के निशान भी हैं। कमांडर के पूछने पर व्यापारी ने बताया कि परस्त्री गमन के अपराध के दंड स्वरूप उसकी नाक कान काट दी गई थी और कुम्हार जाति के एक मराठा वैद्य से उसने नाक कान बनवा लिया था। अंग्रेज कमांडर ने उस वैद्य को बुला लिया और उससे कवसाजी तथा 4 तिलंगों की नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया करने को कहा। शल्यक्रिया पुणे के पास एक स्थान पर हुई। उस समय 2 अंग्रेज डॉक्टर थॉमस क्रूसो और जेम्स फिंडले वहां मौजूद थे। कुछ दिन बाद उस सनसनीखेज शल्यक्रिया का सचित्र विवरण मद्रास गजट में प्रकाशित हुआ। फिर लंदन में प्रकाशित होने वाला जेंटलमैन मैगजीन नामक पत्रिका के अक्टूबर 1794 के अंक में वो विवरण पुनः मुद्रित हुआ। 200 से भी कुछ अधिक साल पहले भारत में की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी के उस विवरण की प्रमुख जानकारी को यहाँ प्रस्तुत करना उपयोगी होगा। सर्वप्रथम नाक का सही माप लेने के लिए मोम की एक परत तैयार की गई, फिर ललाट से उसी आकार की त्वचा काटी गई पर आंखों के बीच थोड़ा हिस्सा रक्त संचार के लिए ललाट से जुड़ा रहने दिया गया। उसके बाद नासा छिद्रों के लिए ठीक से स्थान बनाकर नाक की चतुर्दिक सीमा की त्वचा में चीरा लगाया गया। फिर ललाट से काटी गई त्वचा को आधा मोड़कर नीचे नाक पर लाया गया और चीरे से फंसा दिया गया। फिर कपड़े की पट्टियों पर भीगे कत्थे का लेप लगाकर उसकी 4-5 परतें त्वचा की जोड़ पर लगा दी गई। जख्म को भरने के लिए कत्थे के उस सीमेंट के अलावा और किसी चीज का इस्तेमाल नहीं किया गया। 4 दिन बाद उन्हें हटाकर घी में डुबोई हुई पट्टियां जख्म पर लगाई गईं। 20वें दिन ललाट से जुड़ी हुई त्वचा को काट दिया गया। इस शल्यक्रिया के बाद मरीज को 5-6 दिन तक पीठ के बल बैठाया गया। नासा छिद्र पर्याप्त खुले रहे इसीलिए 10वें दिन उसमें मुलायम कपड़े के टुकड़े रखे गए। अंत में इस शल्यक्रिया के विवरण में एक टिप्पणी है, नाक की ये प्लास्टिक शल्यक्रिया हमेशा सफल रही है। ये बनावटी नाक मजबूत होती है और काफी हद तक कुदरती नाक की तरह दिखाई देती है। कुछ अरसे बाद ललाट का दाग भी काफी हद तक मिट गया है। भारत में ही की गई नाक की प्लास्टिक सर्जरी का ये विवरण लंदन में प्रकाशित हुआ तो इसे पढ़कर वहां के अनेक सर्जन चकित रह गए। उस सचित्र विवरण ने 30 साल के तरुण सर्जन जोसेफ कॉन्स्टेन कारपूर को सबसे अधिक प्रभावित किया। उससे इस प्रकार की शल्यक्रिया के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त की। फिर उसने साहस करके लंदन में 23 अक्टूबर 1814 को नासिक संस्थान की ठीक वैसी ही शल्यक्रिया की जैसी भारत में कवसाजी और तिलंगों पर की गई थी। उसके साथ ही यूरोप में आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का युग शुरू हुआ। लंदन में नाक संस्थान की वह पहली शल्यक्रिया करने में कारपूर को कुल 37 मिनट का समय लगा। उस पहली सफलता के बाद कारपुए ने जल्दी ही नाक संस्थान की दूसरी शल्य क्रिया की भी, जिससे उसे खूब प्रसिद्धि मिली। भारतीय नाक यूरोप में मशहूर हो गई। समीप के अंग से त्वचा लेकर अंग भंग के स्थान पर जोड़ी जाती है, तो उस विधि को आज भी भारतीय प्लास्टिक सर्जरी के नाम से जाना जाता है। कारपुए ने नासिका संधान के अपने अनुभवों के आधार पर सन 1816 में एक छोटी पुस्तक भी प्रकाशित की थी। उससे प्रभावित होकर जर्मन सर्जन ग्रोएफ ने हाथ की त्वचा लेकर नासिका संधान की प्लास्टिक शल्यक्रिया शुरू कर दी थी। इस जानकारी से सहज स्पष्ट हो जाता है कि आज बहुत अधिक इस्तेमाल होने वाला संश्लेषित प्लास्टिक पदार्थ से प्लास्टिक सर्जरी का कोई सारोकार नहीं है। प्लास्टिक शब्द यूनानी भाषा के प्लास्टिकोस शब्द से बना है, जिसका अर्थ है सांचा बनाना या आकार देना। प्लास्टिक शल्यक्रिया में शरीर के खोए हुए अंग को पुनः स्थापित किया जाता है अथवा विरूपता या विकृत अंग को दुरुस्त किया जाता है। हालांकि प्लास्टिक शल्यक्रिया एक बहुत पुरानी तकनीक है, परंतु तेजी से इसका विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद ही हुआ है। प्राचीन यूरोप से प्लास्टिक सर्जरी के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। बाइबल में इसका कोई उल्लेख नहीं है। होमर ने अपने महाकाव्यों में युद्ध जनित अनेक जख्मों और उनके उपचारों की जानकारी भी दी है, परंतु अंग भंग कहकर प्लास्टिक सर्जरी का कोई भी जिक्र नहीं है। रोमन चिकित्सक सेल्सस होंठ, कान और नाक की प्लास्टिक शल्यक्रिया उल्लेख करता है, मगर लगता है कि स्वयं उसने कोई शल्यक्रिया नहीं की थी। रोमन साम्राज्य के अवसान के बाद फिर हमें मध्ययुग तथा यूरोप से प्लास्टिक शल्यक्रिया के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। यूरोप में प्लास्टिक सर्जरी के उल्लेख 15वीं सदी से मिलने लग जाते हैं। दरअसल कॉफ्रे के पहले ही नासिका संधान की भारतीय विधि की जानकारी दक्षिण यूरोप के देशों में पहुंच चुकी थी। सिसली द्वीप के सर्जन ब्रांका ने 1442 ईस्वी में नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। उस शल्यक्रिया में उसने गाल की त्वचा का उपयोग किया था। बाद में ब्रांका के पुत्र एंटोनियो ने पिता के कार्य को जारी रखा। हाथ से त्वचा लेकर नासिका संधान की शल्यक्रिया करने वाला एंटोनियो यूरोप का पहला सर्जन था। पिता पुत्र ब्रांका के बाद 16वीं सदी के आरंभ में इटली के बोयानी परिवार ने प्लास्टिक सर्जरी का काम किया। 16वीं सदी के उत्तरार्ध में इटली के बोलोना विश्वविद्यालय में शल्य चिकित्सा के प्राध्यापक जास्पारो ताग्लियाकोजी ने नाक संधान के सर्जन के रूप में खूब ख्याति अर्जित की। उसने हाथ से त्वचा लेकर नाक संधान की शल्यक्रियाएं की। उसने कर्णबंध और ओष्ठबंध की शल्यक्रियाएं भी की। ताग्लियाकोजी ने 1597 ईस्वी की कागड़ा की प्लास्टिक सर्जरी की परंपरा के बारे में जानकारी दी है। पता चलता है कि अकबर के शासनकाल में कांगड़ा के बिधा नामक एक वैद्य ने नासिका संधान की शल्यक्रिया की थी। ईसा की 7वीं या 8वीं सदी के प्रख्यात चिकित्सक बाणभट्ट के ग्रंथ अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में भी प्लास्टिक शल्यक्रम के बारे में जानकारी मिलती है, परंतु सबसे प्राचीन जिस भारतीय ग्रंथ में प्लास्टिक सर्जरी के बारे में विस्तृत विवरण मिलता है वो है सुश्रुत संहिता। प्राचीन भारतीय चिकित्सा ज्ञान के दो महान विश्वकोश हैं, चरक संहिता और सुश्रुत संहिता। इसमें चरक संहिता अधिक प्रसिद्ध है और अधिक प्राचीन भी है। सुश्रुत संहिता की रचना कोई 2000 साल पहले हुई। चरक संहिता प्रमुख रूप से औषधि विज्ञान का ग्रंथ है। सुश्रुत संहिता में मुख्यतः शल्य चिकित्सा की विशद जानकारी दी गई है। प्लास्टिक सर्जरी के बारे में एक ग्रंथ प्रकाशित किया गया था, उसे आधुनिक प्लास्टिक सर्जरी का पहला वैज्ञानिक ग्रंथ भी माना जाता है। हाथ से त्वचा लेकर ताग्लियाकोजी ने नासिका संबंध की जिस विधि का विकास किया था वो अब इटालवी विधि के नाम से जानी जाती है। ताग्लियाकोजी ने चिकित्सा विज्ञान की अमूल्य सेवा की थी, फिर भी उसे ईसाई चर्च का कोपभाजन बनना पड़ा। उसे धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया और उसके शव को चर्च के कब्रिस्तान से निकालकर दूसरे सामान्य स्थान पर गड़वा दिया गया। मगर बोलोना के नागरिकों के दिल में अपने इस देशवासी के लिए अगाध श्रद्धा थी। उन्होंने ताग्लियाकोजी की स्मृति में एक मूर्ति स्मारक खड़ा किया। उस मूर्ति के एक हाथ में नाग है। ताग्लियाकोजी के बाद उसके शिष्य प्लास्टिक शल्यक्रियाएं करते रहे।

0: great pleasure for me to be present here and share the journey of Read India from the past 50 years. मैं बहुत ही सिंपल शब्दों में ये बोलना चाहूंगी आप सब लोगों से कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो है, पर जब हम अपने टीम के साथ बात कर रहे थे तो मुझे लगा कि इसका नाम महिला सक्षम सम्मान कर देना चाहिए, क्योंकि ऑल वुमेन आर वेरी प्रेशियस, ए बी ऑल वुमेन आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क, थ्री व्हाट दे सेड we have to love ourselves what we are doing. So कहीं पे भी हमारे दिल में ये महसूस नहीं होना चाहिए कि हम वीक हैं, हम हमारे हाथ में कुछ है नहीं, पावर नहीं है हमारे पास. तो ये तो हम पिछले 15 साल से आप लोगों के साथ बात करते आ रहे हैं कि पावर आपके अंदर है, उसको निकालना है, उसको इस तरीके से पॉजिटिव एनर्जी के साथ यूज करना है कि हम एक भारत वर्ष का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकें और अपनी जिंदगी को अपने ही हिसाब से अपने ही पहलू में उसको जीने की कोशिश करें. और हम कर रहे हैं, जितनी भी यहाँ पे महिलाएं बैठी हैं, यंग गर्ल्स बैठी हैं, दे आर ऑलरेडी डूइंग दिस. सो आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन द जर्नी इन थ्री स्टेप्स. 50 इयर्स वी हैव कम्प्लीटेड, दो 60 इयर्स, बट आई वुड फोकस ऑन 50 इयर्स. And 50 years of journey reaching to 500,000 population in rural India, present in 15 states, having 54 centers is just a data. I just want to emphasize why we did this, what we are doing and how we are doing. That is the crux of the matter when we celebrate International Women's Day here today and we are talking about the program Mahila Saksham Samman. The first journey which I would like to highlight here is, I remember when I went to Ulan on 8th June 2007. I joined Read India just 8 days before. And I was just observing and observing. People happy, very together, celebrating within their own culture, dancing, music. Library was not just a room with books. Library was a celebration. And after 16 years, we are having the same power within ourselves to celebrate the libraries. Libraries are not only books. Libraries are the togetherness of human beings. Knowledge is not in books. Yes, books are very important, but knowledge is there within the human beings, which Read India is trying to, you know, explore within its own means, within the invisible efforts we are doing, which are very important. The second thing I would just would like to highlight here, that this year we named our annual report. हमने annual report का नाम रखा है Community First, because we believe in your power, which is very very crucial for us. So community first, libraries, you will drive. We know that. We have full confidence in you. But you are first for us. Wherever we go in the villages, whenever we talk, whenever we meet. I was in Baran last week and met 150 women under one roof in the library. And they were just talking about what they want to do in their life. I was amazed. One village, 150 women, just 10 kilometers away, another village, 150 women again, and they are talking about what they would like to do in their lives. That is library of humanity, I should say that. That's what I understood after meeting them. The third, second thing I just wanted to highlight here is, see, the first 5 years we focused on building like-minded human force so that we can define our existence, and we needed people who not only understand the Read India model but understand us fully, you as in big capitals, because model is on the paper. We have to make people understand who have never thought of libraries in their life. They have never touched the books in their what library means for them. That 5 years took us to go from village to village to make them understand that your togetherness is important. You have to understand the mission which Read India is bringing at your doorsteps. So the first journey was that. And the second journey was imbibe with values, the Read India culture, which was very, very important. And I assure the many faces who are sitting in this room, we imbibe the same culture, which is very important for us to take the organization further. The third point I would like to highlight here is Read mission is not only mission of Read India trustees, Read India Advisory Board, the country director and the team. Read mission is derived by all of you, each one sitting in this room, and those who have not been here because they can't come, the mission is derived by all of you, not by us. So aap apne liye ek taali bajaye. मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ जो रीड के साथ पिछले 10 साल से जुड़े हैं बिल्कुल सीधा हाथ ऊपर करना प्लीज 10 साल से जुड़े दिस इज द वैल्यू यू हैव क्रिएटेड फॉर अस एंड वी आर थैंकफुल टू यू नाउ आई वुड रिक्वेस्ट यू टू रेज हैंड्स जो पिछले 5 साल से जुड़े हैं See the journey. See the journey. So, this is the growth I would like to show to all of you who are not conscious. आप लोग conscious नहीं हैं आप क्या कर रहे हैं? आप ही इस mission को आगे लेके जा रहे हैं. So that is the point I just wanted to highlight. The next point is we first inculcated the habit of understanding the community. Then आपने अपनी समुदाय को समझा आपने अपने समुदाय के लिए काम किया आप एक हमने जो मिशन क्रिएट करा था वन वुमेन वन वन फैमिली वन विलेज एक गांव की औरत एक परिवार से एक विलेज को संभालेगी और आप लोग वो संभाल रहे हैं किसके द्वारा संभाल रहे हैं वी टॉक दैट वी क्रिएट सेफ स्पेसेस फॉर द लाइब्रेरी वो चार दीवारी स्पेस सिक्योर्ड नहीं है आप लोग इसको सिक्योर्ड बना रहे सी द पावर इन यू हम कहते हैं कि लाइब्रेरीज आर द सेफ स्पेसेस बट हू आर मेकिंग देम सेफ यू पीपल आर मेकिंग देम सेफ सो द पावर ऑफ लिसनिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग यू हैव गिवन अस दोज वैल्यूज क्योंकि आप अपने समुदाय को सुनते हैं आप अपने समुदाय को समझते हैं और उसी तरीके से उनके लिए कार्यक्रम करते हैं The second power which you have is the power of listening. The third power which I would like to highlight here is the power of engaging. You people engage with the communities on your own. आप एक और गांव में जाती है, रीड लाइब्रेरी के बारे में बात करती है कि मेरे बच्चे लाइब्रेरी में आते हैं मेरे बच्चे पढ़ रहे हैं और वो कहां से कहां पहुंच गए आप अभी स्टोरीज भी सुनेंगे सो दीज थ्री मेजर पॉइंट्स इन 15 इयर्स इट टुक अस टाइम सर टू डू दिस द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग द पावर ऑफ लिसनिंग एंड द पावर ऑफ एंगेजिंग दैट्स व्हाई वी से वी एंगेज विद द कम्युनिटीज बट वी यूज लाइब्रेरीज एज ए प्लेटफॉर्म for reaching up to this level by these three pillars. Lastly, I would like to say that the model defines community library and resource center. Education comes, ma'am, I would specifically would like to address Kalpana ma'am in this because education apne aap hi aa raha hai ma'am. Hum usko promote nahi kar rahe hain. Because ye jo teen pillars humne khade kiye hain, the power of understanding, the power of listening and the power of engaging, education comes in its own process. आप खड़ा कर हर खड़ा करिए जितनी औरतों ने अपनी हायर एजुकेशन लाइब्रेरी के थ्रू कंटिन्यू करी है प्लीज रेज योर हैंड्स बिग हैंड्स लाइब्रेरी में आके किताब को पढ़ के अपनी हायर एजुकेशन करिए, हमने इनको नहीं बोला कि आप ग्रेजुएट करिए या पोस्ट ग्रेजुएट करिए, बिकॉज दिस केम इन देम देमसेल्फ्स. और सबके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, आप हाथ खड़ा कर दीजिए. सो लास्टली आई वुड लाइक टू से, एजुकेशन तो हो गया बट लाइवलीहुड बाय क्राफ्ट स्केल, बिकॉज ये सब महिलाएं रीड क्वालिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर के लिए इतना कुछ कर रही है, हम इनके लिए क्या कर सकते हैं? तो हमने इनसे पूछा कि हम क्या करें आपके लिए, ये जो हमने सेफ स्पेस क्रिएट करा है, व्हाट वी कैन डू. दे सेड लेट अस ट्राई टू एनहांस आवर ट्रेडिशनल स्किल्स. दैट्स हाउ द लाइवलीहुड कंपोनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड. दैट्स व्हाट दे सेड, लाइवलीहुड टू लाइवलीहुड. So we created a space where they can come, they can talk to each other, no caste, no religion, nothing. We never talk about all these issues in the library. But yes, they all are together, they talk to each other, and 90% of their day-to-day issues are resolved under the roof of library. They find solutions themselves. Very few solutions come in front of us when we address or we guide them to address their common issues. Holistic development. अब आप हाथ खड़ा करिए, this is the leadership decisions हमारे से लिए. Please raise your hands. So you yourself are now the leaders. So this is the power in the lead model. We, through the process, we engaged them and made them leaders of today's world. So congratulations to all of you. I would like to share many things, but due to the time constraint, I will thank all of you. You all have come from your villages, leaving your family behind, and हमारे दिल से आपका धन्यवाद है कि आप लोग सब आए यहाँ पे अपने गांवों से, कोई ट्रेन पे आया, कोई बाय रोड आया, और जैसे भी आए, पर ये ओकेजन आपने इकट्ठे सेलिब्रेट किया, ये बहुत बड़ी, इसी में बहुत बड़ी पावर है. थैंक यू सो मच.
1: नमस्कार, मैं कामिनी आपके सामने एक देशभक्ति सॉन्ग प्रस्तुत करना चाहती हूँ.

त्यार कर के संदूक जब जावे था हाँ, हो ते मार के सल्यूट से दिखावे था हो त्यार करके संदूक जब जावे था हो ते मार के सल्यूट से

रोमना बापू तेरी बेटी की शहीदी बेकार नहीं जावेगी। अरे मेडल कोनी आंदे माई ईब ते बैरी की लाश आवेगी। अरे ईब ते बैरी की लाश आवेगी।

0: खा लिया, थैंक यू।
1: आई वेलकम एवरीबडी। दिस इज सेशन ऑन लाइफ स्किल्स। हमने पहले भी काफी सेशन लाइफ स्किल्स पे करे हुए हैं, लेकिन जो अभी का हमारा कार्यक्रम चल रहा है, एक तो एक्सेंचर का जो चल रहा है स्किल्स टू सक्सीड, उसके अंतर्गत भी और इन जनरल हमारे सभी सेंटर्स में हम लाइफ स्किल के सेशंस लगातार करते आ रहे हैं। तो ये जो सेशन है ये करीबन 10 भाग में बांटा जाएगा, ये जो पूरा सीरीज है। तो आज हमारा फर्स्ट सेशन है। वी विल ट्राई टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव एंड पार्टिसिपेटिव, बिकॉज मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें जहाँ पे मैं सेशन दे सकूँ। इट्स जस्ट दैट कि हम लोग बातचीत के जरिए कुछ ऐसी की स्किल्स को समझेंगे जो कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में, चाहे वो पर्सनल स्किल्स हो चाहे वो प्रोफेशनल हो, उसमें वो काम आती हैं। तो शुरुआत करते हैं लाइफ स्किल्स से। सो व्हाई डू यू थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव लाइफ स्किल्स? लाइफ स्किल्स होती क्या है, कोई बताना चाहेगा हमें? लाइफ स्किल्स क्या होते हैं, जो ये शब्द हम बार बार इस्तेमाल करते हैं कि लाइफ स्किल्स, कोई बताना चाहेगा इसके बारे में? हम कोशिश करते हैं समझने की एक साथ, कोई सही या गलत आंसर नहीं रहेगा।
2: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर फ्रॉम रामपुर।
1: जी अकबर जी, मुझे पता था आप ही जवाब देंगे सबसे पहले।
2: नो एक्चुअली मेरा ये फर्स्ट,
3: आई आल्सो नो दैट,
2: मेरा ये फर्स्ट सेशन है लाइफ स्किल्स पे। मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली है इस पे, लेकिन मुझे इस नाम से थोड़ा सा लगता है कि लाइफ स्किल्स वो स्किल्स हैं जो हम अपने डेली लाइफ में, जो डेली हमारा रूटीन रहता है, हम लोगों से मिलते हैं और जो भी हम इंटरेक्शन रहता है, कल्चरल हैबिट्स हैं हमारी, तो उसमें जो काम आने वाले स्किल्स हैं, लोगों से इंटरेक्ट करना, सोसाइटी से मिलना, उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना, उन तक बात पहुंचाना, तो उसके जो हमारे काम आने वाले स्किल्स हैं, हम उसको लाइफ स्किल्स शायद बोलते हैं।
1: जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत हद तक हम इसी को कहते हैं। कोई और ऐड करना चाहेगा? अकबर ने जो कहा, थैंक यू अकबर,
2: वेलकम मैम।
1: किसी और ने अनम्यूट किया था अभी? तना,
4: हेलो, हाँ जी मैम, मैं चांद खान बोल रहा हूँ।
1: जी चांद बताएं।
4: मैम जैसे कि लाइफ स्किल्स को मैं भी पहली बार सेशन ले रहा हूँ, तो इसमें कि मेरा एडिसिक जैसे कि लाइफ के बारे में कुछ, जैसे कि बॉडी लैंग्वेज है, किस तरीके से सामने वाले से बात करनी है हमें, किस तरीके से अपने आपको मेंटेन करना है, तो उन चीजों के बारे में बताया जाएगा, क्योंकि मेरा पहला सेशन है और इतनी ज्यादा नॉलेज भी नहीं थी इस चीज के बारे में।
1: जी जी, तो बिल्कुल सही आपने कहा, हम इसको बेसिक शब्दों में बांट सकते हैं। लाइफ मतलब जिंदगी, और स्किल मतलब वो कला जो जिंदगी जीने में या जिंदगी को आसानी से जीने में हमें हेल्प कर सके। तो अगर हम बहुत ही सिंपल वे में इसको समझें, तो जिंदगी जीने के लिए हमें कौन कौन सी चीजों की जरूरत होती है, कौन कौन सी चीजें सीखने की जरूरत होती है, तो मोटे मोटे भाग में लाइफ स्किल्स को दो मेजर एरियाज में बांटा गया है। एक है हार्ड लाइफ स्किल्स, खाना खाना, चलना, बोलना, ये जो हम बचपन में सीख लेते हैं, जो बचपन में हम जैसे माइलस्टोन कहते हैं, अगर बच्चे का बर्थ होता है तो एक बर्थ चार्ट बनता है, उसका माइलस्टोन होता है कि अच्छा अब उसने इतनी उम्र में अपने आप खाना खाना सीख लिया है, इतनी उम्र में वो खुद से जाके अपने काम कर सकता है, चलना सीखा है। तो ये जो बेसिक लाइफ स्किल्स होती हैं, ये हम शुरुआत में सीख लेते हैं। और किन चीजों की जरूरत होती है, हम खाना बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, मान लीजिए हम कहीं अकेले हैं, हमें कोई खाना बना के देने वाला नहीं है, तो आज की जिंदगी में तो ये भी, अभी जैसे लॉकडाउन हो गया था, कुछ ऐसे लोग थे जो बिल्कुल अलग रह गए थे। मेरी फैमिली में भी कुछ ऐसे मेल थे, फीमेल्स को तो जनरली हम लोग सिखा देते हैं, बट क्या हम अपने मेल जनरेशन को भी सिखा रहे हैं खाना बनाना कि नहीं? ये है हार्ड लाइफ स्किल, के मतलब बेसिक चीजें, क्या हमें बेसिक क्या कहते हैं, तार लगाना आता है, बल्ब चेंज करना आता है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हमें हेल्प करती हैं, किसी और पे हम निर्भर ना रह सके, बेसिक जो हमारी चीजें हैं हम उन्हें पूरा कर सकें। तो ये हो गई हार्ड लाइफ स्किल। उसके अलावा होती है सॉफ्ट लाइफ स्किल्स, जिनके बारे में हम आज बात करेंगे। ये सॉफ्ट जो स्किल्स होती हैं, इनको कुछ भागों में बांटा गया है, इनके बारे में हम जानेंगे, और फिर हर एक सेशन में एक लाइफ स्किल के ऊपर बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि उसके ऊपर हम खुद से भी पढ़ें। हमारी लाइब्रेरी में अगर कुछ किताबें हैं उस पर्टिकुलर लाइफ स्किल के ऊपर, जिसमें हम आज के दिन पे बात करेंगे। तो अगले सेशन में आने से पहले हम कुछ ना कुछ उसपे नया पढ़ के आएंगे और जो भी चाहें वो लोग शेयर कर सकते हैं। तो लाइफ स्किल्स के बारे में हम आज बात करेंगे। तो अभी हमने बात करी कि लाइफ स्किल्स होती क्या है, अभी उसी का हम एक डेफिनेशन देख लेते हैं, क्योंकि हमारे जो हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स थे उन्होंने हमें हेल्प किया लाइफ स्किल्स समझने के लिए। तो जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि लाइफ स्किल्स आर एबिलिटीज टू अडैप्ट पॉजिटिव बिहेवियर दैट अनेबल्स ह्यूमन बीइंग्स टू डेवलप डील इफेक्टिवली विद डिमांड्स ऑफ द चेंजिंग लाइफ। दिस कॉन्सेप्ट इज ऑल्सो टर्म्ड एज साइकोसोशल कॉम्पिटेंसी, यानी कि जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें हम एक पॉजिटिव बिहेवियर डेवलप कर सकें, और जो चीजें बदलती जा रही हैं, एनवायरमेंट जो रोज बदलता जा रहा है उसमें एक अडैप्टिव बिहेवियर यानी कि एक रेजिलियंट, जो चीजें बदलती जाती हैं उसके साथ हम बैठ न जाएं, अपने आप को चेंज करते रहें, लगातार चेंज करते रहें, ऐसी स्किल्स हमें अपने में डेवलप करनी है, जो हमारे साथ फ्लेक्सिबिलिटी लाएं, हमारे अंदर लीडरशिप लाएं, एक ऐसा सेल्फ इनिशिएटिव लाने का भाव अंदर आए, हम प्रोडक्टिविटी की तरफ काम करते रहें, चाहे वो पर्सनल प्रोडक्टिविटी हो या प्रोफेशनल प्रोडक्टिविटी हो। और सबसे ज्यादा जरूरी है कि पॉजिटिव सोशल स्किल्स डेवलप हो सके, क्योंकि हम अकेले तो कहीं भी कुछ काम नहीं करते, हम जहां भी जाते हैं हमें आसपास लोगों से बातचीत करनी होती है, उनकी बातों को समझना होता है। तो हम कैसे इसको पॉजिटिवली अपने अंदर डेवलप कर सकें कि हमें बेहतर तरीके से अपनी कॉम्पिटेंसीज को बढ़ा सके। बहुत ही सरल शब्दों में ये जो डेफिनेशन है इसको बताया गया है। इसकी आप अगर नेट पर जाएंगे तो कई डेफिनेशंस हैं। तो जिस तरह मुझे लगता है कि जो सबसे सिंपल डेफिनेशन थी वो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट करी, शेयर करी है आप लोगों से। बट अगर आप चाहें, अगर आपको हिंदी में कोई डेफिनेशन मिलती है तो जरूर आप अपनी स्लाइड्स में इसे चेंज कर सकते हैं जब आप अपने बेनिफिशरीज के साथ इस पर चर्चा करेंगे। हमने बात करी लाइफ स्किल्स होती हैं जो हमारे अंदर एक पॉजिटिव बिहेवियर और अडैप्टिव बिहेवियर और रेजिलियंट बिहेवियर लेके आता है। पर हमें ये क्यों चाहिए? क्योंकि हमें हर वक्त जो जो हमारा एनवायरनमेंट है वो चेंज हो रहा है, हर वक्त हम किसी ना किसी सिचुएशन में रहते हैं, अगेन चाहे वो पर्सनल सिचुएशन है, घर की कोई सिचुएशन है, या प्रोफेशनल ऑफिस की कोई सिचुएशन है, कोई नया प्रोजेक्ट आ गया है, उसमें पहले से हमारे पास 3 काम थे, वो प्रोजेक्ट में एक दो काम और आ गए, हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये कैसे करेंगे। तो अब इन सब चीजों को सॉल्व करने की जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो ये लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती हैं, जो हमें मतलब ये जो है एक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे अंदर लाने की कोशिश करती है लाइफ स्किल्स, की जो भी हो रहा है उसके लिए हम खुद कार्य करें, दूसरे को ब्लेम ना करें या सिचुएशन को ब्लेम ना करें। हम जब दूसरों से बात करें तो एक पॉजिटिव वे में बात करें, ग्रुप ग्रुप की कोलैबोरेटिव वे में बात करें और कॉपरेशन में बात करें। तो ये सब चीजें हमें डेवलप करने में लाइफ स्किल्स हेल्प करती हैं, इसलिए हमें ये लाइफ स्किल्स जानना जरूरी है। अभी तक अगर कोई क्वेश्चन है तो हम उसे ले सकते हैं, अदरवाइज हम अब आगे पढ़ेंगे कि लाइफ स्किल्स होती क्या, कौन कौन सी लाइफ स्किल्स को किन भागों में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने बताया कि लाइफ स्किल्स को कई कई डेफिनेशंस दी गई हैं, ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, ये काफी सदियों से चला आ रहा कॉन्सेप्ट है। तो इनको हमने कई अगर आप चाहेंगे, अगर आप अगेन कुछ किताबें पढ़ेंगे या कुछ रिसर्च करेंगे तो कई बहुत अलग अलग डेफिनेशंस आपको मिलेंगी। लेकिन WHO ने 1999 में ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए थे जो लाइफ स्किल्स को, उन्होंने मेजर जो लाइफ स्किल्स आइडेंटिफाइड थी उनको इन 6 की एरियाज में बांट दिया था। तो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी हम इसको लेके चल सकते हैं, कुछ शब्द हमें डिफिकल्ट लगे तो हम उसका आसान वाला शब्द ले सकते हैं। तो फर्स्ट इज कम्युनिकेशन या फिर इंटरपर्सनल स्किल। दिस ब्रॉडली डिस्क्राइब्स द स्किल्स नीडेड टू गेट ऑन एंड वर्क विद अदर पीपल, पर्टिकुलरली टू ट्रांसफर एंड रिसीव मैसेज इधर इन राइटिंग और वर्बली। कहने का मतलब ये है इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल जो है वो है कम्युनिकेशन स्किल या इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेट हम कब करते हैं? जब हम किसी दूसरे इंसान से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे हम वर्बली कर रहे हैं, नॉन वर्बली कर रहे हैं या फिर हम लिखित में कर रहे हैं। जब हम वर्बली करते हैं तो हम डेफिनेटली किसी भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उस भाषा के प्रयोग में किन किन चीजों का ध्यान हमें रखना चाहिए उस पर हम बात बात करेंगे, अगर हम नॉन वर्बली कर रहे हैं तो कुछ ऐसे कौन सी बॉडी लैंग्वेज होती है, जैसे कि अभी हमने बात किया था, कभी भी किसी ने बॉडी लैंग्वेज की बात करी, तो ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जो हमें पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज डेवलप करने में हेल्प करती है, हम उन पे भी चर्चा करते हैं। और तीसरा तरीका है किसी से कम्युनिकेट करने का, रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन आज की टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रह गई है प्रोफेशनली। पर्सनली तो हम ये व्हाट्सएप और इन सब चीजों पे करते हैं, लेकिन हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि जब हम प्रोफेशनली कम्युनिकेट कर रहे हैं तब किन चीजों का ध्यान हमें रखना है। तो ये चीजों को हम एक्वायर कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमारी कम्युनिकेशन स्किल वीक है। इसके इम्पोर्टेंस क्या है वो हम आगे देखेंगे स्लाइड में, बट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है। बोलना तो हम सीख जाते हैं बचपन में, भाषा तो हम सीख जाते हैं, बट भाषा का सही प्रयोग और जो हम कहना चाह रहे हैं सामने वाले को सही तरीके से समझ में आए, जो जो मकसद है हमारा बात करने का वो दूसरे तक पहुंचे, ये बहुत जरूरी है। और किसी और को हर्ट ना करे, किसी की फीलिंग को या किसी के इमोशन को या किसी के बिलीफ को हर्ट ना करे। तो इन सब चीजों को इफेक्टिव कम्युनिकेशन के अंदर डाला जाता है। इसके ऊपर कई किताबें लिखी गई हैं। ये सबसे मुश्किल और यही एक स्किल है जो सबसे आसानी से भी एक्वायर हो सकती है। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग। हमने बात करी कि एनवायरनमेंट जो है हमारा लगातार चेंज हो रहा है। अब लगातार चेंज होने वाले एनवायरनमेंट में तो कुछ ना कुछ हर वक्त हमें लगेगा कि प्रॉब्लम ही चल रही है। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो लाइफ, ये डिस्क्राइब करती है कि प्रॉब्लम को पहले समझें, उसे तोड़े, उसे भागों में तोड़े और उसका सोल्यूशन या तो खुद या तो दूसरों की मदद से निकालें और उस पे हम एक्शन लें। तो ये भी एक कला होती है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारे हमारे पास गीता मैम का। जब कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम के हम अंदर तक जाते हैं कि कोई ऐसा इश्यू क्यों आया। वो इश्यू आने के बाद हम उस पे सोचते हैं कि इसमें कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, और फिर हम सबको साथ में लेके उस पे एक एक्शन प्लान बनाते हैं और वो एक्शन प्लान पे हम अपना एक्शन लेते हैं। तो ये एक कला है जो कि जब आप एक लीडरशिप रोल में आते हैं, जो कि आप काफी लोग हैं जो अपने अपने सेंटर्स में लीडरशिप रोल निभा रहे हैं या निभाना चाहते हैं, तो ये कला सीखना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब आप 10 लोग से ज्यादा लोगों के आसपास आपके लोग काम कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स आएंगी ही आएंगी, चाहे वो आपके एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम हो, इंटरनल हो, एक्सटर्नल हो। कोई भी ऐसी संस्था नहीं है या कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो प्रॉब्लम्स से अपने आप को सेफ करके चल सकता है हमेशा। तो ये भी हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे आगे के आने वाले सेशंस में। क्रिएटिव थिंकिंग। अब क्रिएटिव थिंकिंग जो है वो नए आइडियाज लेके आने में हेल्प करती है। ये हमारे अंदर होता है, हर हर इंसान के अंदर होता है, क्रिएटिविटी सभी के अंदर होती है, बट हम इसे और कैसे निखार सकते हैं ये भी एक कला है। सो क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग, जो न्यू आइडियाज हैं। अभी हम जो सुबह एक कॉल कर रहे थे अब हमारे साउथ के सेंटर्स में, तो हम बात कर रहे थे कि जो रोज बच्चे आ रहे हैं सेंटर पे, ठीक है किताबें पढ़ के चले गए, ठीक है अब कंप्यूटर्स हो गए, ये एक रेगुलर रोजमर्रा की चीजें चल रही हैं। बट व्हाट इज द क्रिएटिविटी, व्हाट न्यू थिंग वी आर ब्रिंगिंग इन। सो अगेन दिस इज अ लाइफ स्किल दैट यू नो वी ऑल शुड हैव, सो दैट हमारा जो काम है वो कभी भी रिडंडेंट नहीं हो, हम न्यू इनोवेटिव आइडियाज लेके आते रहें और हर वक्त कुछ ऐसा नया करें कि जो हमारी ऑडियंसेस हैं, यानी कि जो हमारे बेनिफिशरीज हैं, उनको भी उन न्यू आइडियाज से या न्यू सर्विसेज से फायदा हो। बट अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल्स। कहीं भी आप काम के लिए जाते हैं बाहर या कुछ भी करते हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप ऑन इनोवेटिंग योरसेल्फ सो दैट कि आप एक जगह पे स्थिर ना रह जाए। वो कहते हैं कि खड़ा पानी जो होता है उसमें गंद जल्दी मतलब लग जाता है, गंदगी जल्दी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पानी अगर बेहतर रहेगा तो उसमें कभी भी गंदगी इकट्ठी नहीं होगी। तो हमें हमेशा अपने आप को एक बहते हुए पानी की तरह, कीप मूविंग अहेड, वॉट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं उसमें नयापन लेके आए। अगली लाइफ स्किल्स है सेल्फ अवेयरनेस या फिर एम्पथी। हम अपने आप को समझें, अपने अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस लेके आए और हम ये समझें कि दूसरे कैसा सोच रहे हैं। एम्पैथी बहुत डीप मीनिंग होता है, इसके बारे में हम प्रॉपर एक पूरा सेशन रखेंगे, बट ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है। ये काफी हेल्प करता है कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में, कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं वो क्यों होती हैं। जब एब्सेंस ऑफ एम्पैथी होता है या एब्सेंस ऑफ अवेयरनेस अबाउट सेल्फ, उसके बाद कहते हैं कि असर्टिवनेस, मतलब आप बात कह रहे हैं तो उसमें चिल्लाने की जरूरत नहीं है अपनी बात को सामने वाले के यहाँ रखने के लिए। असर्टिवनेस का मतलब है उन अपनी बात को कहने का, रखने का एक तरीका होता है जिसमें कि आप अपने किन शब्दों का इस्तेमाल करें कि आप अपनी बात सामने रखें भी और आपको गुस्सा या आउट ऑफ कंट्रोल होने की जरूरत भी ना पड़े और सामने वाले को आपकी बात समझ भी आ जाए। क्योंकि जब हम कोई बात अपने सामने वाले के यहाँ रख रहे हैं, उसे नहीं समझ में आ रहा, हम अपनी आवाज तेज करते हैं, वो कॉन्फ्रंटेशन होता है, प्रोवोकेशन होता है, उन सब चीजों की जरूरत नहीं है। स्पेशली कहीं कई हद तक जब हम आपस में बात करते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ है या हम अपने बच्चे से भी बात कर रहे हैं या भाई बहनों से भी बात कर रहे हैं या अपने सुपीरियर से बात कर रहे हैं या अपने सबॉर्डिनेट से बात कर रहे हैं, तो एजर्टिवनेस मतलब बात अगर आपको लगता है आपकी बात सही है तो उन्हें किन शब्दों में लेके आए। इट्स पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन ओनली, बट देन इट इज अ स्टेप अहेड, ये एक स्टेप अहेड है, तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइफ स्किल आज के टाइम में है इज रेजिलियंस। रेजिलियंस का मतलब है कि जो चीजें हमारे हमें सेटबैक्स लेके आ रही हैं या जो हमारे थ्रेड्स हैं के ऊपर कोपिंग अप, मतलब उनको पहले तो समझना कि हाँ ये ऐसा है, दूसरा उसको उसको अपने अंदर लेके आना, ठीक है अब इस सिचुएशन से हम कैसे बाहर निकलेंगे और कैसे हम आगे ग्रो करेंगे। तो दैट इज अ रेजिलियंस एज अ की लाइफ स्किल। तो ये 6 लाइफ स्किल्स हमने आइडेंटिफाई करे हैं, कोई कुछ इस बारे में कहना चाहेगा, किसी का कोई एग्जाम्पल है तो वो शेयर कर सके हैं, किसी भी 6 इनमें से कोई भी 6 में से उठा के हम किसी चीज पे भी बात कर सकते हैं। इफ समबडी वॉन्ट्स टू एड, मैंने पहले भी कहा था आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस, वी आर ऑल लर्निंग अबाउट लाइफ स्किल्स टुगेदर। तो आपके जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो अगर इनमें से कोई भी आप उसमें एग्जाम्पल देना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में, डिसीजन मेकिंग में, क्रिएटिव थिंकिंग में, किस तरह से आपको लगता है ये लाइफ स्किल हेल्प करती है या रेजिलियंस में। जो हमने 6 लाइफ स्किल्स देखी हैं उनको हम अगर चाहें तो इनके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये जो लाइफ स्किल्स हैं ये सोशल स्किल्स हैं, लाइफ स्किल्स तो हम कहते ही हैं इनको, पीपल स्किल भी कहते हैं, पर्सनल स्किल्स भी कहते हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स भी कह सकते हैं, इंटरपर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं और इंट्रा पर्सनल स्किल्स भी कह सकते हैं। सबको देख के आप कंफ्यूज मत होइएगा, अगर आप कहीं फर्दर रीडिंग करते हैं या कुछ और किताबें हैं आपकी लाइब्रेरीज में पढ़ी इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे, और जो हमने पहले देखे थे ये वाले, इट्स वन एंड द सेम थिंग। ये कहीं ना कहीं इन बॉक्सेस में हमें फिट करने में हेल्प करती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अच्छा डिसीजन मेकिंग है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, इसमें हेल्प करेगी, इंटरनल स्किल्स में हेल्प करेगी, सोशल स्किल्स में हेल्प करेगी, पीपल स्किल्स में हेल्प करेगी। अगर हम ब्रिलियंट हैं तो अगेन इंट्रा इंटर पर्सनल करेगी, इमोशंस की हेल्प करेगी, तो ये कहीं ना कहीं रिलेटेड हैं। तो ये शब्दों में कंफ्यूज ना हो कि लाइफ स्किल माध्यम से हम इनको समझने की कोशिश करेंगे। बट लाइफ स्किल्स सीखने से पहले या अपने अंदर लाने से पहले ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमें अपने दिमाग को उसके यू नो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि हाँ हमें अगर लाइफ स्किल एक्वायर करना है तो उसमें की इंग्रेडिएंट्स क्या होने चाहिए। तो कुछ चीजें जो मुझे लगती हैं मैंने यहाँ लिखी हैं, अगर आप लोग करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करिएगा। अगर लाइफ स्किल हमें सीखनी है तो पहले तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, वो जो कांट में से टी है उसे हमें काट के बाहर फेंकना पड़ेगा कि हम कर सकते हैं, हम अच्छी कम्युनिकेशन स्किल एक्वायर कर सकते हैं। इसमें भाषा का नहीं मायने है, हिंदी इंग्लिश तेलुगु तमिल कोई भाषा का मायने उतना नहीं है, मायने है अच्छी कम्युनिकेशन स्किल। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर भाषा में बहुत अच्छा बोल सकते हैं और कुछ जिनको भाषा तो अच्छी आती है लेकिन जब वो बोलते हैं तो मन नहीं करता है उनको सुनने का। सो कम्युनिकेशन स्किल इज अ स्किल विच इज नॉट डिपेंडेंट ऑन द लैंग्वेज बट द वे यू कम्युनिकेट। तो इसी तरीके से हमें आई कांट डू इट में से टी निकाल के पहले तो फेंक देना पड़ेगा, अपने आप को जानना पड़ेगा हु एम आई। इस लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए करने से पहले हमें अपने आप से जरूरी है, पॉजिटिव सेल्फ इमेज होनी बहुत जरूरी है। ये हमें मानना बहुत जरूरी है कि मैं अलग हूं, मैं एक भीड़ का पार्ट नहीं हूं। कोई बात नहीं, ठीक है, मैं ऐसा दिखता हूं या मैं ऐसी दिखती हूं, मैं ऐसा बोलता हूं, मैं ऐसी बोलती हूँ, मैं ये पहनता हूँ, ये पहनती हूँ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं अलग हूं लेकिन मुझे अपने आप से प्यार है। अगर आप खुद से प्यार कर भी, यू विल बी बेटर एबल टू डिवेलप योर स्किल्स कि दूसरे भी आपको एक्सेप्ट करें। क्योंकि लाइफ स्किल्स का मतलब ही यही है कि आप जब लोगों के अंदर हैं तो किस तरह से आप अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं कि लोग आपकी बात को समझें भी, अडाप्ट भी करें आपकी आपके जो आपके जो भाव हैं या जो आपके थॉट्स हैं, और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहे, एक कोई झगड़े का या लड़ाई का एनवायरनमेंट नहीं रहे। ये हमें प्रोफेशनल स्किल्स में बहुत हेल्प करती हैं आगे बढ़ने के लिए, या अपना जॉब रिटेन करके रखने के लिए। हमें ना कहना भी आना चाहिए, लेकिन ना कहने का भी तरीका होता है। तो जरूरी नहीं कि हर जगह हाँ ही कहें। अगर आपके आपकी कोई आगे कोई ऐसी सिचुएशन आई है जो आप नहीं कर सके, टी आपने हटा तो दिया, लेकिन ये नहीं है कि हर वक्त हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकती हूँ। आपको ये एनालाइज करना है कि करंट सिचुएशन में कहाँ पे ना कहना ज्यादा जरूरी है। आपको अपनी राइट्स एज ए इंडिविजुअल या एज ए एम्प्लॉय चाहिए, और आपको राइट्स के साथ साथ ज्यादा जरूरी है कि ड्यूटीज भी पता होना चाहिए। जब आप एक वर्क एनवायरनमेंट में जाएंगे तो आपकी ये लाइफ स्किल आपको हेल्प करेगा कि आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी स्पेसिफिक ड्यूटीज क्या है। मेरे वर्क एनवायरनमेंट में चैलेंजेस आते रहेंगे, हमें उनको फेस करना है और ये स्किल्स डेवलप करनी है कि हम ये चैलेंजेस को फेस कर सके। अब एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। इसके लिए आपको बस एक पेन या पेंसिल चाहिए होगा और पेपर। जो हमने बात करी है पिछली स्लाइड में कि फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड हु वी आर, और अपने आप से अपने आप में जो पॉजिटिव इमेज है वो लेके आना बहुत जरूरी है। तो ये दो मैंने सेंटेंसेस स्टार्ट करे हैं, लेकिन फिल आपको करने हैं। आपके पास ऑप्शन है, आप ऑप्शन वन ले सकते हैं या ऑप्शन टू ले सकते हैं, बट मैं किसी को भी रैंडमली पिक कर लूंगी एंड आई विल आस्क कि उन्होंने ऑप्शन वन लिया है या ऑप्शन टू लिया है, और इस सेंटेंस को कैसे पूरा किया है। ये सेंटेंस इंग्लिश में लिखे हुए हैं, मैं आपको हिंदी में इसके मतलब बता देती हूँ। पहला ऑप्शन है, आई लाइक हु आई एम बिकॉज, मैं अपने आप को अच्छा लगता हूँ, मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि। यहाँ तक लिखा हुआ है, आगे आपने भरना है। ऐसी कौन सी चीज है आपके अंदर जो आपको अच्छी लगती है खुद में, वो आपको यहाँ पे लिख के पूरा करना है। दूसरा ऑप्शन है, आई फील हैप्पी व्हेन, आगे आपको पूरा करना है, मैं खुश होता हूँ या मैं खुश होती हूँ जब, जब के आगे आपको पूरा करना है। तो देन आई विल आस्क रैंडमली एनीबडी, सो आई रिक्वेस्ट, अगर किसी को क्लियर नहीं हुआ है हिंदी या इंग्लिश समझने में, बिकॉज साउथ से भी लोग हैं, सो आई कैन रिपीट माई सेल्फ इन वट एवर लैंग्वेज यू वॉन्ट, बट आफ्टर 5 मिनट्स आई विल बी रैंडमली पिकिंग अप द पार्टिसिपेंट्स। ओके, शैल वी स्टार्ट शेयरिंग आवर फीलिंग्स? कोई वॉलंटियर करना चाहेगा? गुड
0: आफ्टरनून मैम। मैम आविदा कलकर सेंटर से। हेलो मैम।
1: जी बताएं, आपकी आवाज
0: जी। मैम, मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मुझे लगता है कि मेरी मेहनत कामयाब हो रही है और उसको सराहा जा रहा है, और तो मैं जब बहुत खुश होती हूँ, जब मेरी मेहनत कामयाब होती है और जिस मकसद के लिए मैं मेहनत करती हूँ वो मकसद पूरा होता है, तब मैं बहुत खुश होती हूँ।
1: जब आपकी मेहनत कामयाब होती है तब आप खुश होते हैं।
0: जी मैम।
1: अच्छा ठीक है, थैंक यू। और कोई बताना चाहेंगे?
3: मैं आई स्पीक मैम, सीमा बात।
1: हाँ जी सीमा जी।
3: I have written, I like who I am because I give value to relationship, whether it is my professional relations or my personal, both. And I feel happy when I complete my target. Again, वो मेरे घर की कोई चीजों के हों या मेरे काम से रिलेटेड कुछ भी हो, जब मेरी चीजें पूरी हो जाती है तो आई फील सो रिलैक्स्ड एंड आई फील सो हैप्पी फॉर दैट।
1: तो सीमा जी, आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी लाइफ स्किल्स, सॉफ्ट स्किल्स हैं जब जो आप इनमें यूज करते हैं जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है, तो क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है यू नो मेक यू स्ट्रॉन्गर, मेक यू हैप्पी, मेक मेक्स हेल्प्स यू मेक बीइंग हैप्पी और यू नो लाइक योरसेल्फ।
3: हेलो, कैन यू हियर मी?
1: नाउ वी कैन हियर यू।
3: हेलो, एम आई ऑडिबल?
1: हाँ जी, आप ऑडिबल हैं।
3: हेलो, थोड़ा नेटवर्क इश्यूज है मैम इधर थोड़ा।
1: Okay, no problem.
3: I use my presence of mind.
1: Presence of mind, okay. Okay, वहाँ network issue आ रहा है. We'll move on to somebody else. कोई और volunteer करना चाहेगा इन दोनों options में से? इसने क्या लिखा है?
5: Ma'am, Shailaja here, ma'am.
1: जी Shailaja, ma'am.
5: Ma'am, I feel very happy when I'm really with a small kids below 5 years. To listen to their beautiful talk, that baby talk or whatever it is. And I feel very happy when I can do something for somebody. It could be a small help or could be a small advice, whatever it is.
1: What kind of life skill do you think you are using? Aisi kaun si cheez hai jo aapko help? Positive thinking?
5: I didn't get you, ma'am.
1: Aap aisi kaun si life skill use karte hain? Aapko kya lagta hai ki kis tarah ki aisi ek एसेंस है आपके अंदर जो ये चीज आपको हैप्पी करती है?
5: आई थिंक इट इज समथिंग इमोशनल मैम।
1: इट्स इमोशनल, ओके, वेरी गुड, थैंक यू।
6: गुड आफ्टरनून मैम। दैट
3: कैन बी जॉय ऑफ गिविंग मैम।
1: जॉय ऑफ गिविंग, वेरी गुड, यस यस।
6: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून जी।
6: इट्स दिव्या।
1: हां जी दिव्या।
6: आई लाइक हु आई एम बिकॉज आई हैव सम डिफरेंट एबिलिटीज, like I can easily connect with people.
1: Very good, very interpersonal skill hai jo humne sabse pehli skill padhi thi. Aapko ye lagta hai ki wo aapko madad kar rahi hai in isko aapko positive effect dene mein?
6: Yes ma'am, because whenever I talk with, I always use positive behavior, even politeness.
1: Okay,
6: yes ma'am.
1: All right, thank you Divya.
7: Good afternoon ma'am.
1: Ma'am,
7: yes, ma'am. Ma'am, I feel happy when I'm teaching.

0: मैं अपने आप को अच्छी लगती हूँ क्योंकि मैं किसी भी प्रॉब्लम हल ढूंढी लेती हूँ, चाहे पर्सनल हो चाहे ऑफिशियल हो।
1: जो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो तो क्षमता है वो आप अपने अंदर समझते हैं, रखते हैं, यही कहना चाह रहे हैं।
0: जी
1: ये जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि आप जो है एक प्रॉब्लम सॉल्विंग, डिसीजन मेकिंग, ये जो हमने एक स्किल पढ़ी थी, ये आपको लगता है ये सबसे स्ट्रांग है आपके अंदर, इसलिए जब भी आपकी ऐसी कोई सिचुएशन आती है और आप उसे सॉल्व करवाते हैं तब आपको अच्छा लगता है। ऑलराइट, थैंक यू
2: मैम, मैं बोलना चाहूंगा चांद खान।
1: जी, बताएं।
2: मैम, आई फील हैप्पी व्हेन माय टारगेट एंड माय प्रॉब्लम सॉल्व एंड माय ऑफिशियल टारगेट कंप्लीटली।
1: जब आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो
2: जी
1: जाता
2: जी
1: है तब आप
2: यस मैम,
1: खुश हो जाते हैं।
2: जी मैम, जी मैम।
1: ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू। कोई और बोलना चाहेगा कि हम आगे बढ़े?
3: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड
3: हेलो
1: आफ्टरनून। हाँ जी,
3: मैं देव सेंटर औरंगाबाद बिहार से बोल रही हूँ।
1: हाँ जी,
3: मैम मुझे, मैं रीड इंडिया में स्टिचिंग ट्रेनर हूँ
1: जी
3: और मुझे स्टिचिंग सिखलाने में, बच्चे को एडवाइस देने में बहुत बहुत बहुत अच्छा लगता है।
1: जी
3: फर्स्ट टाइम उन लोग बहुत नर्वस रहती हैं, उनको एडवाइस देकर हम बहुत उनका अच्छा फील करवाते।
1: पहले पहले आप कह रहे हैं आप नर्वस रहते थे और अब आपको लगता है आप अच्छे से कर पा रहे हैं,
3: हाँ यस मैम,
1: ऐसा क्यों हुआ? पहले नर्वस लगते थे, अभी अच्छे से कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट
3: बच्चे
1: लाइफ
3: जो
1: स्किल
3: आते
1: आप।
3: हैं मैम, स्टूडेंट जो आते हैं वो बस नर्वस रहते हैं, बट उनको हम समझाते हैं, एज ए फ्रेंडली बात करते हैं, एज ए फ्रेंडली सिखलाते हैं तो अच्छा लगता है। तो मिलजुल कर रहते हैं, वो बहुत खुशी मिलता है मुझे।
1: अच्छा, तो बच्चे जो आते हैं वो नर्वस होते हैं शुरू शुरू में, बट आपके साथ जब मिलजुल के काम करते हैं, सीखते हैं, तो वो कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो आप
3: हाँ
1: उनको
3: यस
1: हेल्प करती हैं कॉन्फिडेंट बिल्ड करने, कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। सो वी स्टॉप हियर टेकिंग मोर, हम यहीं पे रुकते हैं फीडबैक लेने के लिए। तो सभी ने ये बताया कि जब वो कुछ काम करते हैं, कोई पॉजिटिव काम करते हैं, तब वो या तो खुश होते हैं या उनको खुद में एक अच्छी फीलिंग आती है और वो अपने आप को पसंद करते हैं। हमें ये भी देखना है कि कोई काम नहीं होता तब क्या हम अपने आप को हेट करना शुरू कर देंगे? क्या अगर हमारा काम बिगड़ जाता है तो हम अपने आप को बुरा कहना शुरू कर देंगे? क्योंकि जो एग्जाम्पल्स हमने सुने अभी, सभी ने ये बोला कि जब ये मैं कर लेती हूँ तो मुझे अपने आप को अच्छा लगता है, लेकिन जब वो नहीं हो पाएगा तब क्या होगा? कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आएगी तब क्या होगा? कोई प्रॉब्लम आ जाएगी आपके उस काम में तब क्या होगा? तब आप अपनी इमेज, जो आपकी खुद की इमेज है, आई विल नॉट फील हैप्पी देन, आई विल नॉट लाइक हु आई एम देन। तो इन्हीं सब चीजों को हमें अपने अंदर लाना है कि बाहर की सिचुएशन पॉजिटिव है या नेगेटिव है, उससे आपका जो आत्मविश्वास है, जो सेल्फ इमेज है, उस पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उसे हमें ये देखना है कि वो एक सिचुएशन है जिसमें शायद हम और मेहनत करें तो वो सिचुएशन फिर से अच्छी हो सकती है। तो जब सब अच्छा हो रहा होता है तब तो हमें लगता है कि हम अब बहुत अच्छे हैं, जब हमारे मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे होते हैं तो हमारे पेरेंट्स भी कहते हैं हाँ बहुत अच्छे मार्क्स आए, आप तो बहुत मेहनत करते हैं। लेकिन तब क्या है, किसी वजह से मार्क्स अच्छे नहीं आए, तब हम अपने बच्चे से क्या बोलते हैं और कुछ शब्दों का हम यूज करते हैं? कोई काम नहीं होता, बनती बात बिगड़ जाती है, कोई सिचुएशन आ जाती है, तब क्या होता है? उस वक्त भी हमें पॉजिटिव सेल्फ टॉक रखनी है। ये एक सर्कल हमें बनाना है अपने आसपास, हर एक इंसान के लिए, जो आप अपने लिए बनाएंगे, आप अपने आपके जो सर्कल में लोग हैं उनको भी बताएंगे कि एक पॉजिटिव सेल्फ इमेज होना बहुत जरूरी है लाइफ स्किल्स को एक्वायर करने के लिए। अपने आप में ये बोलना कि मैं सक्षम हूँ, आई एम इनफ, मुझसे लोग प्यार करते हैं, आई एम लवेबल, आई एम ब्रेव, मैं हार्ड चीजें कर सकती हूँ, आई कैन डू हार्ड थिंग्स, मैं इन चैलेंजेस के लिए बना हूं या बनी हूं, मैं इन फीलिंग्स को एक्सेप्ट करती हूँ, ऑल माय फीलिंग्स आर ओके, कोई भी अंदर मेरे फीलिंग आ रही है वो ठीक है, मैं इस चीज जगह को बिलोंग करती हूँ, मैं कोई बाहरी नहीं हूं, मैं इस जगह को बिलोंग करती हूँ, मिस्टेक्स मुझे हेल्प करते हैं सीखने में, मैं इंचार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करती हूँ एक सिचुएशन को, मैं इंचार्ज हूँ, कैसे मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ एक सिचुएशन को। ये एक सर्कल ऑफ पॉजिटिव सेल्फ

0: टॉक है जो हमें हर दिन तो करना ही चाहिए, खुद के बारे में खुद को एनालाइज करना चाहिए। क्या मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छी हूँ, क्या मैं टफ हूँ एक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, क्या मैं अलग हूँ, क्या मैं खुश हूँ अपने आप से। क्योंकि जब हम अपने आप से खुश होंगे तब हम पॉजिटिव लाइफ स्किल्स अपने अंदर लेके आएंगे और हम मदद करेंगे दूसरों में भी ये लाइफ स्किल्स इनकलकेट करने के लिए। तो जब हमें लाइफ स्किल्स की इम्पोर्टेंस समझ में आ गई है कि लाइफ स्किल इम्पोर्टेंट क्यों है, और हमने वो 6 लाइफ स्किल्स पढ़ भी लिए हैं कि कौन से 6 लाइफ स्किल्स हैं जो हमें आगे बढ़ने में मदद करते हैं, सो टुडे वी आर टेकिंग फर्स्ट लाइफ स्किल विच इज द कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल स्किल। कम्युनिकेशन स्किल की अगर बुक डेफिनेशन पढ़ी जाए तो बुक डेफिनेशन यही कहती है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है, यानी कि कम से कम 2 लोग चाहिए इस स्किल को यूज करने के लिए। इंटरपर्सनल स्किल दैट रेफर्स टू आवर अबिलिटी टू कम्युनिकेट विद, इंटरैक्ट विद अदर पीपल। कम्युनिकेशन स्किल इन्वॉल्व आवर एबिलिटी टू टेक एन आइडिया और सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड बी एबल टू कन्वे देम टू द अदर्स इन अ मैनर दैट इज कॉम्प्रिहेंसिबल। कहने का मतलब ये है कि ये एक इंटरपर्सनल स्किल है जो हमारी एबिलिटी डिफाइन करती है कि हम कुछ आइडिया को, कुछ इंस्ट्रक्शन को या किसी बात को पहले तो समझें, उसे दूसरे तक तो पहुंचाने में अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करें, और दूसरे को वो समझ में आनी चाहिए। आपने कह दिया और दूसरे को समझ में नहीं आया, या आपने सही तरीके से नहीं कहा उसके बारे में और दूसरे को समझ नहीं आया, तो ये जो कम्युनिकेशन स्किल है ये बिल्कुल फेल हो जाती है। आपका कहना ही, आपका शब्दों का यूज करना ही जरूरी नहीं है, किस तरह से आप कह रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, और आप ये समझ रहे हैं कि सामने वाले को बात समझ में आ रही है, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, वो चीजें कम्युनिकेशन स्किल का पार्ट रहती हैं। इसमें हमने बात करी थी कि कम्युनिकेशन स्किल जो होते हैं वर्बल, नॉन वर्बल एंड रिटन भी हो सकते हैं। जब हम लाइफ स्किल की बात करते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है क्योंकि यही एक स्किल है जो इंसानों के पास है। जो ये हम शब्द शब्द जो हम बातचीत करने की जो एबिलिटी है, ये सिर्फ इंसानों के पास ही है। जो हम एक जगह से, अभी मैं एक जगह से करीबन 70 लोगों से बात कर रही हूँ, तो ये एबिलिटी जो है ये हमें सबसे अलग करती है, चाहे वो कोई स्पीशीज है उससे अलग करती है, और विद इन ह्यूमन बींग्स भी हम सेट अपार्ट हो जाते हैं। कुछ लोग इतना अच्छा बोलते हैं, जैसे कि आपने वीडियोस देखे होंगे, संदीप महेश्वरी के देखे होंगे, या फिर किसी गुरु के देखे होंगे, या फिर शिवानी बहन के देखे होंगे, या फिर किसी ओरेटर के देखे होंगे। कुछ लीडर्स आपको बहुत इंस्पायर करते हैं बोलते हुए, क्यों? क्योंकि उनकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो बहुत स्ट्रांग है। वो हर हर चीज को साथ लेते हुए, चाहे नॉलेज है उनको, एक से ज्यादा सब्जेक्ट की नॉलेज रहती है उनको, और वो उस चीज को कैसे अपनी भाषा में, अपने बोलने के तरीके में उसे लेके आते हैं, वो एक कला है जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, सेल्फ प्रैक्टिस, रीडिंग, जितना आप पढ़ेंगे, जितना शब्दों को समझेंगे, जितना दूसरे लोगों को सुनेंगे। कम्युनिकेशन स्किल में बहुत इंपॉर्टेंस होता है सुनने की शक्ति का। जितना दूसरों को सुनेंगे उतना आप कोशिश करेंगे ऐसी चीजों को पिकअप करने के लिए जो आपके अंदर अडेप्ट हो सकती हैं। ये स्किल बोथ प्रोफेशनल एज वेल एज पर्सनल जगह पे यूज होती हैं। स्पेशली जो रिटन कम्युनिकेशन है, ये तो प्रोफेशनल में बहुत ही काम आती है। तो जब आप अपने बेनिफिशियरी से भी बात करेंगे, जो स्टूडेंट्स रहेंगे, आप उनसे ये कहिए कि ये सेल्फ प्रैक्टिस से बहुत अच्छे से आप इम्प्रूव कर सकते हैं। जितना इसे हम इम्प्रूव करते जाएंगे उतना वो प्रोफेशनली हमें हेल्प करती जाएगी। बहुत सारी किताबें हैं हमारी लाइब्रेरीज में भी, ऑनलाइन ई बुक्स भी अवेलेबल हैं कम्युनिकेशन को बेहतर करने के लिए। बहुत सारे वीडियोज हैं जो कि अवेलेबल हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आप किस तरह से शब्दों का इस्तेमाल करें इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए, किस तरह से हम हाव भाव का, जो हाथ हम हिलाते हैं, आंखों का, हमारा आई कांटेक्ट कैसा है अपने ऑडियंसेस से। ऑडियंस चाहे एक हो, चाहे आप एक ही जन से बात कर रहे हो, बट जब आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो वो कॉम्प्रिहेंड करेगा आपकी बात को, तो किस तरीके से हमें बात करनी, किन शब्दों का, ऐसे कौन से टॉप शब्द होते हैं जो इफेक्टिवली हम कम्युनिकेट करने के लिए उनको यूज कर सकते हैं। बहुत आसान है सेल्फ प्रैक्टिस से इस कम्युनिकेशन स्किल को हर रोज पॉलिश करने का। यहाँ पे जैसे मैंने मेंशन किया है, सेल्फ प्रैक्टिस लिसनिंग टू गुड स्पीकर्स हु इंस्पायर यू, चाहे वो हिंदी में है, इंग्लिश में है, एनी अदर लैंग्वेज, हूसोएवर इंस्पायर्स यू, एंड किताबें पढ़िए। और अगर आपको लगता है कि कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो शीशे के सामने खड़े से 5 मिनट ऊंची आवाज, आदत नहीं डालेंगे, यू विल नॉट बी एबल टू बी अ बेटर कम्युनिकेटर। द मोमेंट यू नो यू स्टार्ट, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए, फोन तो अभी सभी के पास है, आप अपनी वीडियोस रिकॉर्ड करिए और उसमें अपनी आवाज सुनिए कि आप जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ सरल शब्द हैं, जो बात आप कहना चाह रहे हैं वो सही तरीके से रख पा रहे हैं, एक ही बात को 10 बार बोलने की जरूरत पड़ रही है सामने वाले को समझने के लिए। अगेन आई एम स्ट्रेसिंग अपॉन, इट्स वन ऑफ द मोस्ट बेसिक येट मोस्ट इजिली एक्वायर्ड कम्युनिकेशन स्किल, बट इसको जो पॉलिश करना है वो हम सिर्फ और सिर्फ सेल्फ प्रैक्टिस से ही कर सकते हैं, सुनने से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल हमें ओरली, रिटन कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, हम प्रेजेंटेशन जब बनाते हैं या अपने आप में आइडियाज को प्रेजेंट करते हैं, उसमें हमारी मदद करती है। तो जो बच्चे हैं जो जॉब्स के लिए अप्लाई करेंगे, ये एक पहली स्किल होगी। कल मैम ने लीडरशिप सेशन में एक इंटरव्यू के बारे में बात करी थी, जो कि IAS के तैयारी के लिए, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती हैं उसकी तैयारी के लिए हो रही थी। तो जब आपकी पहली बेसिक स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही वीक रहेगी, आप अगला स्टेप नहीं ले पाएंगे। IAS या कोई भी बड़े एग्जाम्स जो होते हैं उसमें रिटन एग्जाम तो होता ही होता है, बट ओरल एग्जाम भी होता है। क्यों? वो आपका कॉन्फिडेंस देखना चाह रहे हैं कि आप किस तरीके से बात रखते हैं। आप अगर कोई भाव को नहीं भी जानते, किसी सब्जेक्ट की नॉलेज नहीं है, तो घबराइए नहीं, ना कहना भी सीखे कि हाँ मुझे इस चीज की नॉलेज नहीं है, मैं पढ़ के या मैं समझ के आपसे इस चीज में बात करूंगा। बट उससे पहले वो कॉन्फिडेंस लेके आना अपने अंदर, यू हैव टू गो बैक टू द पॉजिटिव सेल्फ इमेज कि मैं, जरूरी नहीं है कि मुझे सब चीजों के बारे में पता हो, लेकिन जो मुझे पता है और जो मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ या चाह रही हूँ, उसको मैं सरल भाषा में और साफ शब्दों में दूसरे तक ले जा सकूं। कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो हमें कॉन्फ्लिक्ट, किसी जो सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन होती है, सबसे ज्यादा हेल्प करती है। जो बड़े बड़े कंट्रीज में डिप्लोमैट्स होते हैं, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो बोलते हैं कि ये तो बहुत डिप्लोमेटिक बात करता है। तो डिप्लोमेटिक रॉन्ग शब्द नहीं है, डिप्लोमेटिक मतलब कि दोनों साइड्स को या दो या तीन साइड्स की जो बातें हैं उनको समझना और बिना किसी के भाव को नुकसान पहुंचाए हुए एक एक सेंट्रल पोजीशन पे आना। तो कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत हेल्प करती है, नेगोशिएशंस में बहुत हेल्प करती है। किसी किसी सिचुएशन में जब आप पड़ जाते हैं कि आपको इधर की बात भी सुननी है उधर की बात भी सुननी है, तो ये एक स्किल है जो बार बार काम आती है। कुछ किताबें हैं, मुझे नहीं पता ये लाइब्रेरी में है कि नहीं, बट ये किताबें ऐसा नहीं है कि मैं रिकमेंड कर रही हूँ, मैंने इनके बारे में इनके पढ़े हैं, तो मुझे लगी ये सरल भी है और ये हेल्प कर सकती है कम्युनिकेशन स्किल को, जो कि पहली लाइफ स्किल है एक्वायर करने के लिए और उसको पॉलिश करने के लिए। तो अगर आप चाहें आप ये बुक्स रेफर कर सकते हैं, या फिर आप अपने बेनिफिशरीज को भी कह सकते हैं कि वो ये बुक्स रेफर करें। टेड टॉक्स जो है, बहुत सारे टेड टॉक्स हैं, आप बस उनको सुनिए। जब आपका फ्री टाइम होता है 5 मिनट, एक टेड टॉक को सुनिए, बहुत आपको पॉजिटिविटी आएगी आपके जो सिचुएशंस हैं लाइफ में। ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में, देयर आर मेनी मेनी पीपल हु आर स्ट्रगलिंग, एंड प्रोबेबली उनकी स्ट्रगल हमसे कई कई गुना ज्यादा है, बट वो कैसे उसको ओवरकम करके आए हैं। तो इन सब चीजों से बहुत बहुत हेल्प मिलती है, जो ये चीज जो सेल्फ लोग अपने बारे में बात करते हैं, जो कि टेड टॉक्स में है। तो अभी आज का सेशन हमारा कम्युनिकेशन लाइफ स्किल्स को समझने का था, उसकी इम्पोर्टेंस को समझने का था, और अपने आप से पहले तो अपनी सेल्फ इमेज को क्लियर करना है कि क्या मतलब, अपने आप में सेल्फ डाउट लाने की जरूरत नहीं है, कि अगर मैं किसी से कम हूँ या मैं किसी से कम मतलब मेरी जो अपनी इमेज है, अपनी इमेज को सबसे ऊपर रख के उसको और किस तरह से निखार सकते हैं, वो लाइफ स्किल्स हमें हेल्प करती है। और हमने पढ़ा कि कम्युनिकेशन जो पहली लाइफ स्किल्स है उसके बारे में। सो इफ यू वॉन्ट वी कैन गो डीपर इन टू इट, बट आई वुड लाइक टू लीव इट हियर एंड आई विल रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करूंगी सभी पार्टिसिपेंट्स से कि वो जाएं और कम्युनिकेशन के ऊपर कुछ ना कुछ पढ़ के, नेक्स्ट सेशन हमारा नेक्स्ट फ्राइडे को होगा, हम पहले 5 मिनट कम्युनिकेशन स्किल्स पे बात करेंगे। तो अगर कोई लाइव एग्जाम्पल लाइफ से देना चाहता है या कुछ किसी ने कुछ पढ़ा है उसके बारे में बताना चाहता है, सो वी वुड लव टू हियर फ्रॉम यू, बिकॉज ये सेशंस आपने आगे अपने बेनिफिशरीज को देने हैं। सो द मोर यू लर्न द मोर यू विल बी एबल टू यू नो डू जस्टिस टू द सेशंस। सो वी विल क्लोज द सेशन हियर, बट अभी भी हमारे पास 7 मिनट हैं, और जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं शेयर किया है, आई वुड रिक्वेस्ट इफ समबडी कैन शेयर, उनको कुछ अच्छा लगा इसमें या वो कुछ ऐड करना चाहते हैं। पैम, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? डू यू थिंक?
1: I was listening everything. It's a wonderful session, and I would also like to mention here that life skills are day-to-day life. What we do, how perfect we are, how our behavior is, and how our attitude is. So these
0: Right.
1: all combination of all makes the personality, and that is the wonderful session. I would like to say that. My only request to all everyone is that they must practice it, because this is purposely added into our program activities, because we don't want to focus on only livelihood, beauty and culture, education, because unless and until your personality is evolved, you will not be able to achieve anything. So these were very well thought of and added, and we are not the experts, as Smita has said, but हम इसको कर रहे हैं क्योंकि हम आपस में बातचीत कर रहे हैं और इसको हम अपनी सोच को उस तरफ भी लेकर जा रहे हैं, राइट?
0: थैंक
1: तो
0: यू मैम।
1: ये वैल्यू भी ऐड करता है, हमारे काम में भी वैल्यू ऐड करता है, हमारी पर्सनालिटी में भी वैल्यू ऐड करता है. और एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो सब इसकी बात कम्युनिटी के साथ करें. इसमें ऐसा करने से ऑर्गेनाइजेशन का इमेज बढ़ता है, आपकी अपनी पर्सनालिटी का उनके ऊपर ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंक्रीज होता है, राइट? तो आप प्लीज इसको अपनी रोजमर्रा की बातचीत में भी लेकर आइए, 10 मिनट इसके ऊपर बात करिए और कुछ ऐसे सेंटेंसेस बोलिए जो रिफ्लेक्ट करें कि हाँ, आप एक बहुत ही वैल्यू ओरिएंटेड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं, ठीक है? तो आई थिंक इट वॉज अ वंडरफुल सेशन स्मिता, थैंक यू सो मच.
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर योर वर्क।
1: या टेक केयर, बाय बाय.
0: ऑल राइट, थैंक यू एवरीबॉडी।
1: बाय बाय.

मॉर्निंग फ्रेंड्स, यू आर ऑल वेलकम बाय दिनेश मिगलानी। आज के इस सेशन का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, पहले हम ये समझेंगे कि ट्वेल्थ के बाद क्या किया जाए। ये हमारी सीरीज ऑफ सेशन है और आज इस सेशन के थ्रू हम लॉ एरिया पर फोकस करेंगे कि अगर आप या आपका बच्चा ट्वेल्थ क्लास में है, जो उसका बोर्ड का एग्जाम अभी आगे मार्च के मंथ में होने वाला है, तो कैसे प्लान करें और क्या सोचे कि ट्वेल्थ के बाद में क्या किया जाए। तो दोस्तों, सबसे पहली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स में अभी 5 to 6 months बाकी हैं। वैसे तो बच्चा जब ट्वेल्थ क्लास में होता है तो उसका मेजर ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि ट्वेल्थ में मैक्सिमम मार्क्स लिए जाए, ठीक है। बट इसके साथ साथ, क्योंकि मार्क्स लेना कहीं आपको अच्छे कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, पर अकेडमिक कोर्सेज में। बट अगर आपको किसी प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन चाहिए, तो प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आपको एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा हर जगह पे। अब वो प्रोफेशनल कोर्स चाहे आपका एमबीबीएस है, चाहे आपका इंजीनियरिंग है, राइट, और आपको लॉ फील्ड में जाना है तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम परस्यू करना पड़ेगा। आपको बीबीए या एमबीए करना है 5 ईयर इंटीग्रेटेड तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको बीजेएमसी में जाना है मास कम्युनिकेशन में, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, तो भी आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। आपको एनआईएफटी देना है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, तो भी आपको कोई ना कोई एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। तो इन सीरीज ऑफ सेशन के थ्रू हम अलग अलग डिफरेंट कोर्सेज के बारे में बात करेंगे कि किस कोर्स के लिए कौन सा एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, उसके लिए क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं, इसके साथ साथ उस एंट्रेंस एग्जाम में क्या आता है और कैसे हम अभी से ही अपने बोर्ड एग्जाम्स के साथ साथ उनकी प्रिपरेशन स्टार्ट करें। इसके साथ साथ ये सेशन काफी हेल्पफुल है उन बच्चों के लिए जो अभी क्लास प्लस वन में है, उनके पास एनफ टाइम होता है ये अंडरस्टैंड करने के लिए या अपने करियर को प्लान करने के लिए आगे की ट्वेल्थ एग्जाम होने के बाद कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करके किसी ना किसी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स में उनका एडमिशन हो। दोस्तों, एक बात तो हमारे को बिल्कुल क्लियर है कि अगर किसी बच्चे का एम एमबीबीएस करना है या इंजीनियरिंग करना है तो उसकी लाइन बिल्कुल क्लियर है। रीजन क्या है कि अगर आपने एमबीबीएस में जाना है तो आपने मेडिकल साइड ऑप्ट किया है, ठीक है, जिसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पे फोकस करना है, राइट। जो आप अपने प्लस टू के कोर्स क्यूरिकुलम में पढ़ते हैं उसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नीट का या एमबीबीएस का जो एग्जामिनेशन है आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। वहीं अगर हमें इंजीनियरिंग लाइन में जाना है तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री के साथ साथ मैथमेटिक्स पे अपनी कमांड बनानी है। जो आप प्लस टू बोर्ड प्रिपरेशन करते हैं उसका थोड़ा सा और एडवांस जाके स्टडी किया जाए, थोड़े और मल्टीपल च्वाइस क्वेश्चंस पर प्रैक्टिस किया जाए, तो आप कहीं ना कहीं जेई एग्जाम के लिए भी एप्लीकेबल हो जाते हैं, आईआईटी के लिए ट्राई कर सकते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या आती है कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, यहां हम उन बच्चों की बात करेंगे जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं होता, जिसमें इसके अलावा क्या क्या वो करें और किन किन कोर्सेज की तरफ वो जा सकते हैं। तो आज का जो सेशन रहेगा इसमें हम बात करेंगे कि जिन बच्चों का टारगेट एमबीबीएस या इंजीनियरिंग नहीं है और जो बच्चे फ्यूचर में लो एंट्रेंस या लो एज ए प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाह रहे हैं, हम आज के सेशन में उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, लो एक पैशन है, लो एज ए प्रोफेशन है, एज ए पैशन है। अगर आपका बच्चा या आप लो में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो लो में जो करियर है उसका स्कोप काफी ज्यादा है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि आज के टाइम में भी लीगल प्रैक्टिशनर, एडवोकेट, लॉयर, जज, ये समाज के वो लोग माने जाते हैं जो मनी अर्निंग के साथ साथ पावर भी फील करते हैं। दे ऑल्सो फील देमसेल्व पावरफुल। एक लॉयर है, स्टार्टिंग में हो सकता है कि इनिशियली उसकी अर्निंग कम हो, बट प्रैक्टिकली ही नोज द लॉ, ही नोज हाउ टू यूज द लॉ, ठीक है, वो लॉ की पावर को जानता है और लॉ की पावर अपने अंदर फील करता है। तो अगर आप फ्यूचर में पावर भी चाहते हैं पैसे के साथ साथ, तो लॉ एक आपके या आपके बच्चे के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब प्रॉब्लम ये आती है कि लॉ कैसे किया जाए, कहां से किया जाए और लॉ करने के लिए हमें कौन कौन से एग्जाम देने पड़ेंगे, उन एग्जाम्स की प्रिपरेशन कैसे की जाए,
ताकि बच्चे का 12th के बाद अच्छे लो कॉलेज में एडमिशन हो जाए। देखिए इसमें एक मिथ है हमारे मन में, कई लोग एडवाइस करते हैं कि पहले ग्रेजुएशन किया जाए और ग्रेजुएशन के बाद हम LLB करेंगे। ग्रेजुएशन के बाद अगर आप LLB करते हैं तो इंडिया के अंदर 3 ईयर LLB के जो इंस्टीट्यूट हैं कंपेरेटिवली काफी कम है, जिसमें अगर हम टॉप पे बात करें तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर का नाम आता है, हमारे पास में पंजाब यूनिवर्सिटी है। बट अगर हम 5 ईयर के कंपेयर में जाएंगे तो 5 ईयर LLB में जो आपके इंस्टीट्यूट हैं मच बेटर है 3 ईयर LLB से, ठीक है। और दूसरा क्या है कि अगर आपको लो ही करना है तो बेटर है कि आप 5 ईयर करिए, क्योंकि 1 ईयर आपका सेव होता है अगर आप 3 ईयर LLB में जाते हैं ग्रेजुएशन करने के बाद में। तो सबसे पहला जो एडवांटेज आपको क्या है कि हमारा 1 ईयर सेव हो जाता है, क्योंकि अगर मैं पहले 3 ईयर का ग्रेजुएशन करूंगा और 3 ईयर ग्रेजुएशन करने के बाद में 3 साल में LLB करूंगा तो 6 साल मुझे स्पेंड करने पड़ेंगे। और वहीं अगर मैं 12th के बाद ही, क्योंकि अगर मेरा लाइफ का ऑब्जेक्टिव लॉयर बनना ही है, लो फील्ड में मुझे जाना है, तो बेटर है कि आप 12th के बाद से जाइए ताकि आप 1 साल बचा सकें। सेकंड, मैंने आपको बताया कि 5 ईयर LLB और 3 ईयर LLB में सेकेंड प्लस पॉइंट 5 ईयर LLB में जाने का क्या है, क्योंकि 5 ईयर LLB के लिए जो इंस्टीट्यूट हैं, जिसमें हम बात करते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज NLU की बात की जाती है, इंडिया में एट प्रेजेंट 21 NLUs हैं जिनको हम IIT या IIM से कंपेयर कर सकते हैं। देखिए जैसे आज किसी भी बच्चे का एम अगर इंजीनियरिंग करना है तो बचपन से ही उसके माइंड में बिठा दिया जाता है कि बेटे अगर आपको इंजीनियरिंग करनी है तो आपको IIT में जाना है, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी बच्चे को MBA करना है तो उसके मन में एम बनाया जाता है, उसको सपना दिखाया जाता है कि अगर MBA करनी है तो मुझे IIM अहमदाबाद से करनी है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपको MBBS करना है तो एम्स दिल्ली हमारा मेन टारगेट होता है, AFMC पुणे आपका टारगेट होता है, ठीक है। वहीं अगर आपके बच्चे के मन में कहीं भी ये एक बात है कि मुझे LLB करना है, तो उस बच्चे के लिए सबसे टॉप पे जो कॉलेज आता है नेशनल लॉ स्कूल इंडियन यूनिवर्सिटी, जिसे हम बैंगलोर कहते हैं, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, आप इसे कह सकते हैं NLS बैंगलोर, नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर, एक बच्चे का एकमात्र टारगेट। जैसे नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर है, ऐसे ही नालसार हैदराबाद है, मतलब ये लिस्ट बहुत लंबी है। मैं तो एक टॉप के कॉलेजेस की बात करेंगे, जैसे हमने बात किया व्हेन आई टॉक्ड अबाउट IIT तो मैंने IIT दिल्ली बोला, ऐसे ही अगर हम लॉ की बात करेंगे तो नेशनल लॉ स्कूल बैंगलोर का नाम लिया जाता है, ठीक है। अब देखिये 12th के बाद हमारे पास में इतने अच्छे लॉ कॉलेजेस हैं, इसके साथ साथ OP जिंदल है या काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं जिनमें अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है, आपके बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, तो 5 ईयर के अंदर उसमें काफी चीजें वो गेन करता है, स्टडी करता है, उसका फोकस क्रिएट हो जाता है और 5 ईयर के बाद में प्लेसमेंट हो जाती है अच्छी। प्लेसमेंट के साथ साथ अगर उसे प्रैक्टिस करना है तो 5 ईयर में लॉ का इतना बेस क्लियर हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो जाती है उसकी कि वो प्रैक्टिस कर सकता है, लॉ की अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। हायर स्टडी में अगर उसे जाना है तो LLM कर सकता है, फॉरेन यूनिवर्सिटी से LLM कर सकता है, PhD में जा सकता है। जुडिशियल सर्विसेज में अगर जाना है तो जुडिशियल सर्विसेज के लिए भी, क्योंकि जो NLUs हैं उनके 5 ईयर का क्यूरिकुलम इतना स्ट्रांग है, बच्चे को इतने अच्छे ढंग से पढ़ाया जाता है, इतने अच्छे ढंग से लोगों के साथ मिक्सअप किया जाता है कि एक बच्चा जो NLU से पास आउट है उसकी लीगल अंडरस्टैंडिंग, उसकी एक्सप्रेशन एबिलिटी, सब्जेक्ट की नॉलेज काफी डेप्थ नॉलेज होती है, ठीक है। तो बच्चा लोग के हर करियर में अपने लिए एक निश क्रिएट कर सकता है, या हम ये कह सकते हैं कि लॉ के हर एरिया के अंदर एक अच्छी स्टैंडिंग अपने लिए क्रिएट कर सकता है। अब हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये तो हमने डिसाइड कर लिया कि मुझे लॉ करना है तो NLU से करना है, बट प्रॉब्लम ये आती है कि NLU के लिए आप कौन सा एग्जाम टारगेट करें और उस एग्जाम में ऐसा क्या आता है और कैसे आप उसकी तैयारी करें। जैसे ही हम लॉ की बात करते हैं तो हमारे मन में इंडिया के अंदर 3 एग्जाम्स के नाम आते हैं, एक तो क्लैट, सबसे ऊपर हमारा क्लैट है जिसका नाम होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। क्या नाम होता है? कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, जो इन सभी NLU का एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है।
जितने भी एनएलयूज मैंने यहां लिखी है, इन सभी एनएलयूज का ये कॉमन एंट्रेंस एग्जाम है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्लैट का नाम देते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ एक और एग्जाम आता है जिसे हम AIELT कहते हैं, ऑल इंडिया लो एंट्रेंस टेस्ट, जो आपका एनएलयू दिल्ली कंडक्ट कराती है। देखो एनएलयू दिल्ली जो है ये स्टेट यूनिवर्सिटी हो जाती है, तो एनएलयू दिल्ली जो है ये अपना अलग से एंट्रेंस टेस्ट लेती है, जिसे हम AIELT कहते हैं। इसके अलावा आप एलसेट का एग्जाम दे सकते हैं, अगर आपको फॉरन से लो करना है, ओपी जिंदल से करना है तो एलसेट का एग्जाम दे सकते हैं। सिम्बोसिस से अगर आपको करना है तो SCT का एग्जाम होता है, सिम्बोसिस का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। बट एक बच्चा जिसको LLB करना है 12th के बाद में, टॉप लो कॉलेज से LLB करना है, अपने आप को वो माने कि मैं IIT से भी अच्छी जगह पे बैठा हूं, तो उसका टारगेट होता है नेशनल लॉ स्कूल बेंगलोर। अब देखिए सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है, लॉ के अंदर आपके 12th के मार्क्स की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। एक मिनिमम क्वालिफिकेशन आपको 12th में चाहिए, मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए, इसके अलावा आपके 12th के मार्क्स किसी भी जगह पर किसी भी कॉलेज में एडमिशन में कहीं भी ऐड नहीं होंगे। सेकंड थिंग, कोई इंटरव्यू नहीं है, आपको केवल क्लैट का टेस्ट क्वालिफाई करना है। क्लैट का टेस्ट अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाई भी नहीं, टॉप रैंक आपको लेके आना है। ठीक है, तो क्लैट का जो एग्जामिनेशन होता है पेपर पेंसिल एग्जामिनेशन है, जो 200 मार्क्स का आता है। ठीक है, और इस 200 मार्क्स में क्या क्या आता है, मैथमेटिक्स जो 20 क्वेश्चंस है, 20 क्वेश्चन मतलब जो आप एलिमेंट्री मैथमेटिक्स पढ़ते हैं 10th लेवल तक का, +1 +2 से रिलेटेड मैथमेटिक्स बिल्कुल नहीं आता, 10th लेवल तक का मैथमेटिक्स है। और जनरली मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, काफी साल से हम इस इंडस्ट्री में हैं, क्लैट के बच्चों को टीच करते हैं, बच्चों का जो वो इंडिविजुअल रिएक्शन ये रहता है कि एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स करने के लिए तो उनके पास टाइम ही नहीं बचता। क्यों? क्योंकि बाकी पेपर इतना लेंदी होता है, मैथमेटिक्स में ओनली जो सिटर क्वेश्चन है, सिटर क्वेश्चन मतलब देखते ही आंसर कर दिया, कोई शॉर्ट ट्रिक लग गया सीधा, जहां क्वेश्चन सोल्व करने की नीड पड़ेगी तो बच्चा उससे बजाय वो क्वेश्चन करेगा जो पढ़ के इजिली आंसर कर सकता है। सेकेंड सेक्शन आता है इसके अंदर इंग्लिश। इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपका रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जो बच्चा 10th लेवल तक पढ़ता है +2 लेवल तक, वोकैबुलरी बच्चे की कैसी है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए वोकैब बिल्डिंग, अब ये चीजें ऐसी हैं जो नॉर्मल हैं, मतलब कि अगर आपने अपने बच्चे के लिए स्टार्टिंग से ही उसकी इंग्लिश पे ध्यान दिया है, उसकी बेसिक वोकैबुलरी इंप्रूव है, न्यूज़पेपर पढ़ता है, इंग्लिश न्यूज़पेपर ही स्टडीज, और उसमें से टिपिकल वर्ड्स को नोट्स बनाता है, धीरे धीरे उसे याद हो जाते हैं, तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है इंग्लिश के अंदर। थर्ड सेक्शन आपका रहता है रीजनिंग। थर्ड सेक्शन जो इसमें आता है वो क्या आता है, रीजनिंग। रीजनिंग सेक्शन जो होता है ये आपका लॉजिकल पार्ट है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर लॉजिकल रीजनिंग के अंदर सभी बेसिक टॉपिक्स कवर होते हैं। बेसिक टॉपिक कवर होने से मतलब क्या है, डायरेक्शन, सेंस, ब्लड रिलेशन। बट पिछले कुछ सालों में जो क्लैट का ट्रेंड है, क्लैट का ट्रेंड क्या है कि रीजनिंग में पजल बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, मतलब कि आप कुछ जो बेसिक जो पजल्स हैं उनको सॉल्व करिए। इसके साथ साथ जो वर्बल रीजनिंग है, वर्बल रीजनिंग मतलब कि आपकी लैंग्वेज पे कितनी अच्छी कमांड है, तो 20 क्वेश्चन इसके, 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 40 क्वेश्चन रीजनिंग के, तो ये 100 मार्क्स तो आपके बने इस सेक्शन से। फिर हमारे पास में दो सेक्शन बच जाते हैं, फर्स्ट वन इज लीगल एप्टीट्यूड, ठीक है, और सेकंड सेक्शन जो बचता है हमारे पास में वो हमारा बचता है जनरल नॉलेज। लीगल एप्टीट्यूड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसमें लीगल प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, लॉ के प्रिंसिपल गिवन होते हैं, उसके ऊपर कोई लीगल प्रॉब्लम होती है, आपको पहले लॉ के प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद में जो भी लीगल प्रॉब्लम गिवन है आपको एज ए लॉयर, एज ए जज उस प्रिंसिपल को उस लीगल प्रॉब्लम में अप्लाई करके देखना है, डिसाइड करना है कि अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन व्हाट यू कैन से, राइट। उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, लॉ ऑफ टॉर्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारी चीजें उसमें आती हैं। इसके साथ साथ लॉ के जनरल कॉन्सेप्ट होते हैं, लीगल टर्म्स होती हैं,
कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं जो हम डे टू डे लाइफ में न्यूज़पेपर के अंदर स्टडी करते हैं, कोई लेटेस्ट जजमेंट है, कोई ऐसा लैंडमार्क लीगल जजमेंट है, उससे रिलेटेड सारी चीजें लीगल एप्टीट्यूड के अंदर आपसे पूछी जाती है। फिर हमारा सेक्शन आता है जनरल नॉलेज। लास्ट टू ईयर का एक्सपीरियंस ये है कि करंट अफेयर्स आपके अच्छे होने चाहिए। अब देखिए प्रॉब्लम क्या रहती है कि अगर आप 12th एग्जाम देने के बाद में इन चीजों की प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ही लिस्ट चांसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर प्रिपेरेशन तो कम से कम आपको 6-8 मंथ पहले से स्टार्ट करनी पड़ती है। इसके साथ साथ चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे इंग्लिश का सेक्शन है, वोकैबुलरी है, रीजनिंग है, तो कुछ मंथ पहले से आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। हमें ट्राई करना चाहिए कि जनवरी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए ताकि 12th बोर्ड एग्जाम देते ही हम इमीडिएट टेस्ट सीरीज की तरफ स्टार्ट करें, पेपर सॉल्व करें, जितने ज्यादा से ज्यादा पेपर हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल पैटर्न होता है जो किसी भी लो एडमिशन टेस्ट में पूछा जाता है। AILET जो मैंने आपको बताया, NLU दिल्ली के लिए स्पेशल पेपर रहता है, इसमें 150 मार्क्स का पेपर है। मोर और लेस डिवीजन इसी टाइप से है, मैथमेटिक्स 10 मार्क्स का हो जाएगा, उसी प्रोपोर्शन में चीजें लेस हो जाएंगी। तो अगर कोई भी बच्चा लो को एज ए करियर ऑप्ट करने की प्लानिंग कर रहा है तो हम तो यही एडवाइस करेंगे उसे कि क्लैट की प्रिपरेशन अगर आपको करनी है जितना जल्दी हो सके, और ये सितंबर अक्टूबर का जो टाइम होता है बेस्ट टाइम होता है प्रिपरेशन करने का, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स आपके पास होते हैं बोर्ड एग्जाम से पहले, आप एक बार कोर्स कंप्लीट करिए, उसके बाद जैसे ही आपके बोर्ड एग्जाम कंप्लीट होते हैं साथ साथ आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए, डेली टेस्ट सॉल्व करिए, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इम्प्रूव हो सके। सेकेंड थिंग, हम एज ए दिनेश मिगलानी ट्यूटोरियल्स आपकी कैसे हेल्प कर सकता है, हमारे पेनड्राइव कोर्सेज अवेलेबल हैं क्लैट के लिए स्पेसिफिकली, जिसमें आपको वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। जो वीडियोस है उसमें हमने लो के मतलब हमने मैथमेटिक्स, इंग्लिश, रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड एंड जनरल नॉलेज सभी टाइप के वीडियोस हमने बनाए हैं। अराउंड 400 प्लस वीडियोस हैं उसके अंदर, जिसके थ्रू आप अपने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। इसके साथ साथ पीडीएफ रहते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रहते हैं, और बहुत ही मिनिमम कॉस्ट में पेनड्राइव कोर्सेज हमारे अवेलेबल रहते हैं। क्लैट का जो हमारा पेनड्राइव कोर्स है उसका प्राइस है 4,000 रूपीज। 64 GB पेनड्राइव हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जिस पेनड्राइव की कोई एक्सपायरी नहीं है। मतलब कि अगर आपने अपने लिए पेनड्राइव परचेज किया और आपने 2 या 3-4 महीने तैयारी की, उसके बाद अगर आप अपने किसी जूनियर को, छोटे भाई बहन को गिफ्ट करना चाहते हैं तो आप सेम पेनड्राइव आगे गिफ्ट कर सकते हैं, क्योंकि उस पेनड्राइव की कोई भी एक्सपायरी नहीं है। इसके साथ साथ उस पेनड्राइव में रेगुलर अपडेट्स आते हैं आपके, हम आपको ईमेल आईडी के थ्रू आपको रेगुलर जीके के नोट्स भेजते हैं ताकि आप इन फ्यूचर अपनी प्रिपरेशन कर सके। तो ये सारी सपोर्ट हम प्रोवाइड करते हैं। तो आपसे एक्सपेक्टेड है कि अगर कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है, स्क्रीन पे गिवन नंबर्स पे हमसे बात कर सकता है, या हमारा ऑफिशियल नंबर है 9215514435। यही हमारा एक सिंगल वन नंबर है, 9215514435। आप इस नंबर पे कॉल करके पेमेंट प्रोसीजर कैसे खरीदा जाए उसके बारे में आप बात कर सकते हैं। आई होप आपको ये तो जरूर समझ में आया होगा इस सेशन के एंड में कि हमें अगर लॉ के लिए प्रिपरेशन करनी है, कौन सा एग्जाम हमें टारगेट करना है, और एग्जाम टारगेट करने के बाद में हमें कैसे उसकी तैयारी की जाए, ये हमारे इस सेशन का ऑब्जेक्टिव था। आपसे एक्सपेक्टेड है कि आप हमारे वीडियोस को देखिए, यूट्यूब के ऊपर हमने काफी वीडियोस अपलोड भी किए हुए हैं। ठीक है, आप उनको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसके नीचे शेयर कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन होता है, बेल आइकन पे क्लिक करेंगे तो रेगुलर अपडेट्स जो हमारे वीडियोज के होते हैं वो आप तक पहुंचेंगे। थैंक यू वेरी मच।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: कीचगढ़। दौसा जिला में बसा हुआ एक खूबसूरत गांव, NH 11 से 10 किलोमीटर दूर। इसकी आबादी लगभग 15,000 है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती के लिए आसपास के गांव में बहुत प्रसिद्ध है। गीचगढ़ की अपनी एक छटा है, इसमें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं।
0: कीचगढ़ जो कि खूबसूरत और खुशहाल गांव है, लेकिन रोजगार की समस्या के सामने गांव के लोगों ने यहां से पलायन करना स्टार्ट कर दिया है।
1: गीचगढ़ अपनी खूबसूरती और धार्मिकता के लिए प्रसिद्ध है। लोगों के अनुसार राजा गिद्ध यहां के महाराज थे, उन्हीं राजा के नाम पर इस गांव का नाम गीचगढ़ हुआ है। यहां का किला बहुत ही प्रसिद्ध है।
0: आइए जानते हैं कुछ गीचगढ़ के बारे में। सबसे पहले हम चलते हैं गीचगढ़ के किले की ओर। यहां 280 सीढ़ियां चढ़ने पर हम पहुंचते हैं रामझरोके पर। आगे चलकर हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। दोस्तों, यह किला सुदृढ़ता और सुंदरता के लिए विख्यात है।
1: किले के अंदर चलते हैं। ये हैं किले की बावड़ियां। ये प्राचीन समय में पेयजल का स्रोत रही है। और ये किले के अंदर आप देख रहे हैं शिव मंदिर, ये है रामदेवरा, यहाँ जगदम्बा माता का स्थान है। यहाँ ऊपर इस जगह पर चलने पर पूरे गांव को एक साथ आप देख सकते हैं।
0: ये है किले का दूसरा दरवाजा। यहाँ से निकलकर हम किले के पिछले हिस्से पर पहुँचते हैं। यह तोप प्राचीनता और वीरता की गवाही दे रही है। ये है गीचगढ़ बस स्टैंड। यहाँ पर हम चल रहे हैं बाकली के बालाजी की तरफ। यह मंदिर बहुत ही प्राचीन और प्रसिद्ध है। यहाँ पर दशहरे पर हजारों की संख्या पर भीड़ जुड़ती है।
1: यह है यहाँ का शीतला माता मंदिर। यहाँ पर शीतलाष्टमी पर बहुत ही ज्यादा भीड़ इकट्ठी होती है और होली के अवसर पर होलिका दहन के उत्सव भी यहीं पर मनाया जाता है।
0: आगे आपको ले चलते हैं यहाँ के प्रसिद्ध बावड़ी के बालाजी के मंदिर। इस मंदिर का नाम बावड़ी वाला बालाजी होने का कारण है मंदिर के पीछे बसी हुई बावड़ी। सन 1985 तक इसमें खूब सारा पानी भरा हुआ था। अब लगभग 1995 से यह बावड़ी सूख रही है।
1: इसी क्रम में अब हम आपको लेकर चलते हैं भूतेश्वर महादेव मंदिर। आप यहां पर देख रहे हैं इन छतरियों की शोभा देखते ही बन रही है। इनको यहां के महाराजाओं ने बनाया था। चलिए इसी क्रम में हम आगे चलते हैं।
0: कोटेश्वर महादेव मंदिर, गणेश मंदिर, गोपाल जी का मंदिर, राधा वल्लभ जी का मंदिर, बिहारी जी का मंदिर।
1: यह है रामदेवरा और आप यहां पर देख रहे हैं ये जो घंटाघर यहां पर बनाया गया है, ये बहुत ही प्राचीन समय में बनाया गया था। पहले इस पर बहुत बड़ी घड़ी भी जो है लगी हुई थी, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है। और यह भी गांव के बीच में बसा हुआ गांव की सुंदरता में चार चांद लगा रहा है।
0: गीचगढ़ के लोगों ने बताया कि यहाँ गीचगढ़ चार दीवारियों से घिरा हुआ था। गीचगढ़ के अंदर चार प्रमुख दरवाजे हैं, जिससे कि गीचगढ़ को एक बंद गांव के रूप में देखा जाता है। गीचगढ़ के आसपास गांव और ढाणियां मिलाकर कम से कम यहाँ की आबादी 25,000 है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं गांवों के लोगों की तरफ, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। अभी हमारे साथ है बिजराज सिंह जी। नमस्कार बिजराज सिंह जी।
2: नमस्कार सर।
0: सर, आप इस गांव गीचगढ़ के बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
2: जो गीचगढ़ जो नाम है वो एक गिद्ध राजा के नाम से पड़ा था, जो कि यहाँ पहले राज करते थे। क्या है कि वो पानी मतलब पहले भरा हुआ था गीचगढ़ के अंदर, तो उनका रानी का जो हार गिरा हुआ था वो अपने त्रिवेणी जी के मंदिर में गिरा था, तो उसको हार को निकालने के चक्कर में पानी निकाला गया, मतलब जगह जगह से पहाड़ काट गए, तो ये धीरे धीरे बसावट होती गई गीचगढ़ की। तो राजा ने बसावट कर दी सबकी, धीरे धीरे सब आदमी उन्होंने घर बना लिए, ऐसे करके गांव बसा हुआ है गीचगढ़।
0: बिजराज जी, यहाँ के लोगों के आजीविका का मुख्य स्रोत क्या है?
2: आजीविका का स्रोत है अपने यहाँ पे खेती वगैरह और दुकानें वगैरह। तो अब धीरे धीरे लोग जो पढ़ रहे हैं तो वो यहाँ पे क्या धंधा वगैरह नहीं है, तो वो दुकान पे तो सहमत नहीं है, तो जयपुर वगैरह से मतलब बाहर जाके मतलब काम कर रहे हैं। तो मतलब धीरे धीरे आदमी यार रह नहीं रहे, पलायन कर रहे हैं सब। इसलिए गांव पहले बहुत खूबसूरत था, पर अब क्या है कि मतलब धीरे धीरे पलायन की वजह से मतलब कोई ध्यान नहीं दे रहा गांव के ऊपर। और जो अभी ऐतिहासिक जगह है अपनी देखने की गीचगढ़ में, उन पर भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।
0: जी धन्यवाद। दोस्तों, हमारा गीचगढ़ प्राचीन समय से ही राजस्थान में एक खुशहाली का प्रतीक रहा है, पर मौजूदा परिवेश में पलायन बेरोजगारी और प्राकृतिक समस्याओं के कारण इसका अस्तित्व खतरे में है। अब समय है हम लोगों को मिलजुल कर हमारे गीजगढ़ की बेहतरीन के लिए काम करने का, जिसमें स्थानीय लोग विशेषकर युवा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं, वरना गीजगढ़ सिर्फ इतिहास ही बनकर रह जाएगा।

0: अपने समुदाय की बात नहीं कर रही हूँ, पर पूरे पूरे जहान में मैं सबसे अच्छी हूँ, क्योंकि मैं रोज रात को सोने से पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने अच्छा काम किया क्या। और अगर मैं 10 काम भी रोज अच्छे कर लेती हूँ, तो साल के एंड में अगर मैं अपनी डायरी देखूंगी, जो मैंने पहले कभी बहुत बार ही बोला है कि अपनी डायरी लिखनी चाहिए, तो एंड ऑफ द ईयर मेरे पास इतने अच्छे कामों का खजाना हो जाएगा कि मैं कभी कुछ गलत करना ही नहीं चाहूंगी। मेरी सोच में से ही निकल जाएगा कि मुझे कुछ गलत करना है, तो नेचुरली देन आई एम द बेस्ट इन द होल वर्ल्ड। यू कैन सी हाउ वी कैन गो स्टेप बाय स्टेप फॉरवर्ड टू रीचिंग अप टू दीस पॉइंट्स। दिस इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पैशन। और पैशन क्या है? कंटेजियस है, एक बीमारी है छूत की। मैं आपको बताऊं, अगर मैं आज पैशनेट हूं कुछ करने के लिए, और जब तक मैं उसको कर नहीं लूंगी, मेरे को अंदर इरिटेशन होएगी, मुझे अंदर ये फीलिंग आएगी कि व्हाई आई एम नॉट एबल टू डू। तो ये सारी चीजें भी हमें ध्यान रखनी है। वॉचिंग ए पैशनेट लीडर एनर्जाइजेस द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। जो लीडर होता है वो दूसरों में भी पैशन की वो आग लगा देता है कि यू शुड ऑल्सो बिकम पैशनेट। और जो पैशनेट नहीं है वो उस ऑर्गेनाइजेशन में टिक ही नहीं सकता है, क्योंकि वो जो लीडर है वो इतना एनर्जाइज करता है सबको कि वैल्यूज की बात करेगा, गोल्स की बात करेगा, परफेक्शन की बात करेगा, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने की बात करेगा, अपने ये जो एटीट्यूड्स हैं और जो अपनी वैल्यू सिस्टम है वो सबको बार बार बार बार शेयर करेगा। तो ये क्या है, एक कंटेजियस भी हो जाता है, और वो जो पैशन है वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को, जो लीडरशिप है सारी ऑर्गेनाइजेशन को एनर्जाइज कर देती है। तो लीडर्स सेंस ऑफ पैशन एंड जॉय सेंस इट टिंगल डाउन टू द एंटायर ऑर्गेनाइजेशन। टिंगल डाउन का यहाँ पे क्या मतलब है कि वो हमेशा पोक करता रहता है कि यू जस्ट मूव टुवर्ड्स परफेक्शन, यू जस्ट मूव टुवर्ड्स आई शुड से दैट कीपिंग द ऑर्गेनाइजेशन इन द फ्रंट लाइन। उसकी प्रोग्रेस के लिए हम बात करते रहे, द रिजल्ट इज प्योर मैजिक। व्हेन यू विल डू दिस यू विल नॉट रियलाइज कि आपके रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं। अब आप देख लो, रीड इंडिया को देख लो, अगर हमारे में पैशन नहीं होता, अगर मेरी टीम एनर्जाइज नहीं होती, तो क्या हम 1 करोड़ की बैलेंस शीट से 13 करोड़ तक पहुंच जाते, या 10 करोड़ तक पहुंच जाते 13 साल में? पॉसिबल ही नहीं था, बिकॉज काम ने अपने आप को दिखाया, हमने काम किया, हम एक्सपैंड हुए, हमने इतने सारे सेंटर्स बनाए। तो जो रिजल्ट अभी हमारे सामने आया है, तो हम उसको डॉक्यूमेंट भी नहीं कर पा रहे हैं, वो इतना मैजिक आउटकम आ गया हमारे सामने। हमें जो भी कोई कहता है कि आप इतना काम कैसे कर रहे हो, पर हम कर रहे हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, काम तो नजर आ रहा है ग्राउंड पे, आपके सामने है जो आप काम कर रहे हो। और अगर आप लोग भी डॉक्यूमेंट हमारे लिए, तो इट्स टू लेट टू डॉक्यूमेंट नाउ कि आप मुझे पिछले 13 साल का वो लिखना पड़ेगा, पर आप लोग तो अभी से लिखना शुरू कर दो आप क्या कर रहे हो। लिखना क्या है, आप लोगों के टच में हो, कोई भी स्टोरी आपको अच्छी लगती है आप अपनी डायरी में लिख लो, कोई भी काम आपको अच्छा लगता है आप अपनी डायरी में लिख लो, किसी की भी लाइफ आपने ट्रांसफॉर्म करी है जो आपके सामने आके बता रहे हैं कि हाँ मेरी लाइफ में ये चेंज आ गया, आप उसको लिख लो। आपने जो ट्रेनिंग करी उसके बारे में लिख लो, जो भी आपने काम किया उसका क्या आउटकम आया, अपनी सिंपल लैंग्वेज में आप उसको लिखते जाओ। तो ये क्या होगा, आपका एक इतना बड़ा डॉक्यूमेंट बन जाएगा कि आप किसी भी ऑथर को दोगे वो बोलेगा अच्छा मैं प्रिंट कर देता हूँ इसको, ये तो बड़ी अच्छी स्टोरी है जो ग्रास रूट से उभर के आई है, जो एक्चुअली द नेक्टर ऑफ सोशल डेवलपमेंट, आई शुड से द एसेंस ऑफ सोशल डेवलपमेंट जो है वो आप लोग कर रहे हो। एंड इट्स अ फैक्ट, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों को देखा है जो सोशल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जो काम करते हैं, जो फंड रेज करते हैं, पर मैं उन सबको एक साइड पे रखूंगी, पर जो काम आप लोग कर रहे हो उसको मैं बहुत ही हाइट पे रखूंगी, बिकॉज डायरेक्ट कम्युनिटी के साथ काम करना ही एक सोशल डेवलपमेंट का मकसद है, ठीक है? जो रिजल्ट्स नेचुरली दे विल बी मैजिकल रिजल्ट्स, तो हमें उस सिचुएशन तक अपने आप को लेके जाना है। नेगेटिविटीज आती हैं, गुस्सा मुझे भी आता है, मैं भी बहुत नेगेटिव हो जाती हूँ, पर मैं इमीडिएटली अपने आप को करेक्ट कर लेती हूँ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करके कि नहीं, मुझे राइट स्टेप लेना है, मुझे नेगेटिव नहीं जाना। और अगर इस चीज को मैं डिले कर देती हूँ ना, तो उतना ही जो मैजिकल रिजल्ट्स हैं वो वापस आने शुरू हो जाते हैं। आपको पता है नेगेटिविटी कितनी स्पीड से चलती है, पर पॉजिटिविटी को पकड़ के हाथ में रखने के लिए बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है। ये सबको पता है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड नेगेटिव हाईएस्ट स्पीड से भागता है, पर उसको पॉजिटिव करने के लिए हमें बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये पैशन और जो मैं बात कर रही हूँ, हंगर और डिसिप्लिन, ये बहुत तीनों चीजें लिंक करती हैं। आर यू एमिंग टू बी बेस्ट यू, ठीक है? तो चलो हम हंगर की बात करते हैं। यू वॉन्ट टू विन एंड यू हैव टू विन, ये सबको पता है। ये तो मैं अभी पिछली स्लाइड्स में भी मैंने इनडायरेक्टली बोल दिया है कि हमें विन तो करना ही है। इफ यू वॉन्ट टू विन यू मस्ट फर्स्ट फील हंगरी फॉर यू। हंगर जब तक नहीं आएगी हम कैसे विन करेंगे? When we swim, we keep our mouth out of water to breathe. We cannot put our head in water for long time as we need air to breathe. अगर हम अपना सिर पानी में डुबो के ही तैरते जाएंगे तो हमें सांस कैसे आएगा? इवन फिश भी अपना मुंह थोड़ा सा बाहर करती है पानी से, कभी कभी उसको हवा चाहिए होती है। When you want to win and need wisdom as badly as you need the air when you are underwater, you will get it because you struggle to get the air and relaxed when you got it. तो ये बहुत एग्जाम्पल डायरेक्टली रिलेटेड है आपके विजडम से। जब आपको कुछ चाहिए और आप बैडली उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हो, क्योंकि जब अपना सर आप पानी में डुबा के तैरते हो तो आपको उस समय क्या चाहिए? हवा चाहिए, एयर चाहिए ब्रीथ करने के लिए। तो आप डेस्परेटली अपना सिर बाहर करते हो एयर लेने के लिए। और जब आप चल रहे हो एंड यू वॉन्ट टू विन, यू वॉन्ट टू अकॉम्प्लिश, एंड वेन यू आर स्ट्रगलिंग टू अकॉम्प्लिश एंड यू गेट द रिजल्ट्स, देन यू फील रिलैक्स। उसमें गैप क्या था? जब हम स्विम कर रहे हैं एयर का गैप था, और जब हम अपना काम करते हैं तो हमारे सामने कोई भी गैप आ सकता है, और उस गैप को फिल करने के लिए, उस चीज तक पहुंचने के लिए हमें स्ट्रगल करनी पड़ती है। और जब हम स्ट्रगल करते हैं तो हम रिलैक्स्ड फील करते हैं कि मैंने एक मकाम या दो मकाम या तीन मकाम अपने पार कर लिए अपनी हार्डशिप से, अपने स्टेप से। सिमिलरली व्हेन यू वांट टू रियलाइज योर पैशन यू नीड हंगर, एंड व्हेन यू आर एबल टू गेट द फूड यू रैलिश यू रिलैक्स। अगर सिंपलेस्ट वर्डिंग में मैं बोलूं, हम रोज सुबह उठते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, काम करते हैं, किसके लिए? लेबर को देख लो, हमें देख लो, बड़ों को देख लो, एक्सेप्ट जो माल फंक्शनल है, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। हम सब लोग अपने घर से निकलते हैं एक गोल के लिए कि हमें पैसा चाहिए सर्वाइवल के लिए। पैसे से हमने खाना खरीद है, अपनी फैमिली को चलाना है, अपने परिवार को चलाना है, अपने बच्चों को पढ़ाना है। हम ये सब अचीव कर रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं। किसी को नौकरी नहीं मिलती, वो भी स्ट्रगल करता है। किसी को कुछ और कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, वो उनके लिए स्ट्रगल करता है। पर जब हम उनको अचीव कर लेते हैं तो हम रिलैक्स फील करते हैं। यही पैशन हमें अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी होना चाहिए, ठीक है? तो ये मैं फिर ये मैं पैशन और हंगर को कोरिलेट कर रही हूँ। तो लास्ट में मेरा एक ही पॉइंट है कि डू नॉट गिव अप। कोई भी चैलेंज आता है तो प्लीज डू नॉट गिव अप, जस्ट ट्राई टू रिजॉल्व इट। अब तीसरा पॉइंट क्या है, डिसिप्लिन। हमने हंगर की बात कर ली, पैशन की बात कर ली, द मैजिक इन योर हेड फॉर एक्शन। वंस यू हैव द पैशन एंड हंगर, यू विल सी अ रोड एमर्ज इन फ्रंट ऑफ यू, लीडिंग यू टू योर गोल। ये हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। देयर विल बी ऑब्स्टेकल्स ऑन द वे, देयर विल बी रोड ब्लॉक्स, यू नीड डिसिप्लिन टू डू राइट थिंग्स एट राइट टाइम अगेन एंड अगेन। जितने भी लीडर्स हैं वो हमेशा अपनी लाइफ में एक ही बारी काम करके सक्सेसफुल नहीं हो जाते, उनको बार बार एक्शन लेना पड़ता है, बार बार अपनी स्ट्रैटेजी को चेंज करना पड़ता है, बार बार अपने रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना पड़ता है। पर जब हम राइट एक्शन एट राइट टाइम लेते हैं तो हमारे जो रोड ब्लॉक्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। सो यू नीड डिसिप्लिन टू स्टे ऑन द राइट ट्रैक। दोज हु विन द गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग विद डिसिप्लिन। वो ये तो नहीं कहते अच्छा आज तो नींद नहीं खुल रही, आज हम नहीं जॉगिंग के लिए जाते। वो ये भी नहीं कहते कि आज तो मैं पिक्चर देखने चला जाता हूँ, आज अपने फुटबॉल की क्लास मिस कर देता हूँ। कितना वो डिसिप्लिन रखते हैं अपनी लाइफ में, कितना उनके अंदर पैशन होते है, कितना उनके अंदर हंगर होता है उस गोल्ड मेडल को लेने के लिए। सिमिलरली जो बच्चे ब्राइट हैं, जो स्कूल में स्कॉलरशिप्स और आगे बढ़ते हैं, उनकी मेहनत और जनरल एक किसी भी बच्चे की मेहनत को हम कंपेयर करें तो फर्क होता है। बिकम अ पैशनेट हंगरी एंड डिसिप्लिन पर्सन, सक्सेस इज कॉलिंग। आर यू रेडी? यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ। तो ये तीनों पॉइंट्स पे, पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में कोई कोई सुझाव और देना चाहते हैं? किसी के दिमाग में कोई और बात आ रही है या कोई सजेशन देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं? हम ऐसा करते हैं, 5 मिनट डिवोट करते हैं इस पे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है? तो आप अपना माइक ऑन करके बोल सकते हैं।
1: गुड आफ्टरनून मैम, अकबर बोल रहा हूँ रामपुर से। मैम पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, आपका जो ये प्रेजेंटेशन थी जो आपने हमें समझाया, एक बहुत ही ज्यादा मोटिवेशनल थी, इनलाइटनिंग थी। हमें बहुत ज्यादा मतलब एक मोटिवेशन फील हो रहा है कि डिसिप्लिन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज है और इसको मेंटेन करना आदमी के लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रहा हूँ डिसिप्लिन में अपनी लाइफ लाने की, लेकिन कभी ना कभी ऐसा मुझे हो जाता है कि वो फिर ब्रेक हो जाता है और फिर उसको रीगेन करने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैक पे वापस आने के लिए। अब वो कुछ भी हो सकता है, मतलब अगर मैं चाहूँ कि मैं प्रे करूँ, मैं नमाज के लिए अगर बोलता हूँ कि मैं अपनी एक स्पेसिफिक टाइम से नमाज पढ़ता रहूँ, वो नहीं होता है, बीच बीच में छूट जाता है, तो ये बहुत मुश्किल होता है। लेकिन आपने जैसा बोला कि इसको कंटिन्यू रखो, एक कंसिस्टेंसी में अगर लाना है तो उसको मेंटेन रखना पड़ेगा। लेकिन मेरा एक आपसे सवाल भी है, अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारे पास पैशन भी है, हंगर भी है, हम डिसिप्लिन में मेंटेन आने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम अपने ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं, तो हम फिर

0: है और वो गलती मैं अपने ऊपर लेती हूँ और मैं इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ। और इंट्रोस्पेक्ट करके अगले दिन सुबह ही 6 बजे या 7 बजे ऑफिस आने से पहले उसके ऊपर मेल लिखती हूँ और मैं डिस्कस करती हूँ स्मिता से, शिवम से, और मैं इनको भी बोलती हूँ कि हमें इंट्रोस्पेक्ट करना। इंट्रोस्पेक्ट मतलब कि खुद सोचना है कि हम कहाँ गलत थे, इंस्टेड ऑफ टेलिंग कि द अदर्स वर रॉन्ग। आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल, नॉट सेइंग दैट यू कोरिलेट विद योर थिंग, बट दिस
1: जी
0: इज द प्रैक्टिस आई डू एवरी डे, ऑलमोस्ट एवरी डे। और जो मैं बात करती हूँ ऑफिस में वो कोई इलॉजिकल नहीं होती है, उसके पीछे बहुत बड़े लॉजिक होते हैं। और मैं कभी ये नहीं कहती हूँ कि मैं ठीक हूँ, मैं ये कहती हूँ कि मैं ये आपके सामने रख रही हूँ, आप बताओ कि ये ठीक है कि। तो व्हाट आई एम डूइंग, ए आई एम रियलाइजिंग वेयर आई हैव गॉन रॉन्ग, दैट्स व्हाई आई से दैट वी शुड रन राइट। सेकेंड पॉइंट, आई एम डिस्कसिंग माई मिस्टेक विद एवरी वन, प्लीज टेल मी वेदर आई वॉज रॉन्ग और नॉट। और क्या मैं अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए मैं दूसरों को भी इन्वॉल्व कर रही हूँ अपने साथ, फिर मैं उनसे पूछती हूँ, फिर हम कलेक्टिवली एनालाइज करते हैं कि हम ठीक है या गलत है, फिर उसके ऊपर जो कलेक्टिव डिसीजन आता है हम उसको आगे लेके जाते हैं। नाउ इन योर केस, पैशन इज देयर, हंगर इज देयर, डिसिप्लिन इज देयर, बट समवेयर वी आर पुशिंग आर सेल्स बैक। और वो क्या चीज है, हमारा ब्रेन, हमारा माइंड, क्योंकि हम ये पैशन, हंगर और डिसिप्लिन को अपने माइंड और ब्रेन के साथ सिंक्रोनाइज नहीं कर पाते हैं राइट। मैं भी ये गलत करती हूँ, मैं बहुत बारी सोचती हूँ कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, मैं नहीं कर पाती हूँ, मे बी बिकॉज लैक ऑफ टाइम, मे बी आई एम नॉट एबल टू सिंक्रोनाइज ऑल दीज थ्री थिंग्स विथ माई ब्रेन एज वेल एज माई माइंड। और मैंने अभी बोला है ब्रेन और माइंड नेगेटिव बहुत स्पीड से भागता है, पॉजिटिव की लेस स्पीड होती है, और इसकी रेशियो होती है 80:20। 80% तो नेगेटिव चला जाता है, हमारा माइंड सेकेंड्स में नेगेटिव चला जाता है। पर हमें साथ साथ वो भी प्रैक्टिस अपनानी है कि हम अपने नेगेटिव माइंड को कैसे कंट्रोल करके रखें, और ये प्रैक्टिस से आता है, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं है। मैं आपको इसके ऊपर बता भी नहीं सकती कुछ, क्योंकि आपका अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना माइंड है, हर एक का अपना अपना ब्रेन है, तो उसको कैसे सिंक्रोनाइज करना है इन तीनों चीजों के साथ और कैसे उसको डिसिप्लिन में लाना है ये आपके हाथ। Am I able to answer your question?
1: यस मैम, वेरी राइट, मतलब बहुत ज्यादा यूजफुल,
0: तो
1: थैंक
0: ये
1: यू।
0: प्रैक्टिस से आएगा अकबर। ये अभी तो 3 हफ्ते हुए आपको ये सेशंस अटेंड करते हुए, और आपको ये चीजें शायद पहले, हम अपनी रूटीन में इतने बिजी होते हैं कि इन चीजों के ऊपर हम बात भी नहीं करते हैं, तो ये इसीलिए हफ्ते में 2 सेशन रखे गए हैं। ये आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, ये मेरे लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि मेरा थॉट प्रोसेस भी सिंक्रोनाइज हो रहा है हर एक चीज के साथ राइट। तो
1: यस मैम,
0: मैं, और किसी का कोई क्वेश्चन, और जो मैंने अभी बताया है आप लोग सहमत हैं उस चीज के साथ या हवा में लग रहा है कुछ? गीता मैम हवा में बात कर रही है कि आपका लिंक इतना स्ट्रांग बन जाए कि हर एक से लिंक आपके साथ आगे बढ़ता जाए, तो ये मेरी कोशिश होती है, तो इसलिए मैं इधर रुक गई पैशन, हंगर और डिसिप्लिन में। अब आगे मैं आपको एक बहुत अच्छी स्टोरी सुनाने वाली हूँ, ठीक है? जैसे आप टी बैग नहीं भूल पाए, जैसे माउंटेन की क्लाइंबिंग नहीं भूल पाए, ऐसे आप ये स्टोरी रखेंगे और बहुत सारे लोगों को सुनाएंगे, और सबसे पहले घर के लोगों को भी सुनाएंगे, तो हम ये स्टोरी सुनते हैं, ठीक है? मैं क्यों ये स्टोरी हाईलाइट कर रही हूँ कि वी आर पार्ट ऑफ द सोसाइटी, बींग अ मदर आई कैन वेरी वेल को रिलेट माई सेल्फ विद दिस स्टोरी, एंड बींग अ फादर ऑल्सो इन फ्यूचर यू कैन ऑल्सो वेरी वेल को रिलेट विद दिस स्टोरी। तो एक जो बेबी जिराफ होता है

में सीमा कैन वेरी वेल कोरिलेट, क्योंकि वो एक फॉरेस्ट के साथ रहती है। तो हम एक बेबी जिराफ की मदर से ये स्टोरी सुनते हैं, और जब बेबी जिराफ पैदा होता है ना, तो जिराफ तो बहुत ऊंचा होता है, तो जब बेबी वूम से निकलता है तो वो पटैक करके जमीन पे गिरता है। चोट तो उसको तब लगती है जब वो पटैक करके जमीन पे गिरता है। उसकी मदर उसको प्यार करती है, उसके फोरहेड पे अपनी गर्दन नीचे करके किस करती है, पर इमीडिएटली वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लेती है और वो उसको जोर से नीचे उठा के ऊपर हवा में फेंकती है न्यू बॉर्न बेबी को, और वो फिर पटाक से गिरता है। और वो कांपता हुआ जब जमीन पे गिरता है, उसकी मदर को अंदर बहुत पीड़ा होती है, पर वो उसको बार बार रिपीट करती है, बार बार रिपीट करती है, जब तक उसके हाथ और टांगे उसके वो जो गोल बॉडी, जैसे वो गिरता है बच्चा जब पैदा होता है, एवरीबॉडी नोज कि वो जब उसके हाथ और पैर खुल नहीं जाते, तब तो वो इतनी खुश होती है कि मैंने अपनी एक सीढ़ी क्लाइम कर ली, अपने बच्चे को पैदा करके उसको उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। सीइंग द चाइल्ड स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, अनदर किक इज गिवन टिल द चाइल्ड स्टार्ट्स रनिंग। फिर वो उसको दोबारा से किक करती है ऊपर उठा के, यू कैन इमेजिन द जिराफ हाइट, वो इतना ऊपर हवा में फेंक के वो फिर न्यू बॉर्न बेबी को नीचे फेंकती है, जिससे वो बच्चा दौड़ना नहीं शुरू कर देता। पर उसके पीछे उसका एक बहुत बड़ी सोच होती है जो हम अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। और हम क्या करते हैं कंट्रारेरी, जब हमारा बच्चा पैदा होता है और जब तक बड़ा नहीं हो जाता, हम उसको इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं, इतना प्रोटेक्टेड रखते हैं हर एक चीज से, कि उसकी जो सेल्फ लर्निंग है हम कहीं ना कहीं उसको किल कर रहे हैं। यही एक लीडरशिप क्वालिटी को जब मैं कोरिलेट करती हूँ, तो हमें सबको ग्राउंड पे काम कैसे करना है उसकी एक सेक्रीफाइसिंग नेचर होनी चाहिए। कैसे हमने ग्राउंड में लोगों को एम्पावर करके आगे लेके जाना है, और इस स्लाइड से मैं आपको एक स्टेप आगे लेके जाऊंगी कि अगर हमें मुश्किलों में भी काम करना हो और दूसरों को भी मुश्किल में डाल के काम करवाना हो, उसमें हिचकना नहीं चाहिए, आप हमेशा उनको जिराफ की स्टोरी सुनाएं, ठीक है। और वो क्यों ऐसे करती है, उसके पीछे उसकी कोई गलत इंटेंशंस नहीं होती है, उसकी कोई गलत भावना नहीं होती है। नेक्स्ट स्टोरी में हम ये देख रहे हैं कि व्हाट इज द गोल ऑफ मदर जिराफ। मदर जिराफ कहती है कि वो सोचती है कि मेरा बच्चा पैदा हो रहा है, ये जैसे ही पैदा होगा अगर ये भागा नहीं, अगर ये चला नहीं, तो इसको लायन या लेपर्ड्स खा जाएंगे, क्योंकि सॉफ्ट मीट है, मीट बहुत डिलीशियस है, और मैं अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां से भाग जाऊंगी। पर वो अगर कंपैरिजन करेंगे, मैं अगर लायन को कहती हूँ या लिपट को कहती हूँ तो मेरे बच्चे को छोड़ दे तो मेरा मीट खा ले, तो वो बच्चे का मीट ही प्रेफर करेगा, बिकॉज दैट इज सॉफ्ट, दैट इज फ्रेश, एंड उसको वो टेस्टी लगता है। तो मदर जिराफ कंसीव करने से पहले ही ये हैबिट डाल लेती है कि जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा उसको मैंने कैसे सड़क पे दौड़ाना है, कैसे जंगल में दौड़ाना है। तो अनलेस द बेबी जिराफ क्विकली लर्न्स टू स्टैंड एंड रन, इट हैज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। जिराफ की पॉपुलेशन ही खत्म हो जाएगी, बिकॉज ये सब लोग आपको पता है फॉरेस्ट में इकट्ठे रहते हैं, और ये जिराफ जो है मदर जिराफ का एक कमिटमेंट होता है अपने बेबी की तरफ कि जैसे ही पैदा होगा मुझे इसको दौड़ाना है, राइट। सो द टेक अवे फ्रॉम द स्टोरी इज द लेसन्स वी लर्न अर्ली बिकम पार्ट ऑफ आवर हैबिट, आउट इंस्टिंक्ट एंड हेल्प अस स्टैंड इन बेटर पोजीशन ऑल थ्रू आवर लाइफ्स। तभी कहते हैं ना कि बच्चे का 8 साल तक ब्रेन चलता है, हम अपने मॉन्टेसरी स्कूल्स में भी कहते हैं कि अगर हम बच्चे को 8 साल तक अच्छा अच्छा पढ़ा दें, अच्छा सिखा दें, उसकी हैबिट्स बना दें, तो उसका ब्रेन नई चीजें एडॉप्ट करने के लिए तैयार रहता है, और 8 साल के बाद जब वो बुकिश नॉलेज, तो वो उसी को ग्रहण करता है।
तो ये हमारा लेसन है कि हम दूसरों के साथ जब काम कर रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम उनको उनके पैरों पे खड़े होने के लिए, आगे बढ़ने के लिए ये सब ट्रेनिंग दे रहे हैं। रीड का मॉडल यही है। अगर उनको सेटबैक्स लगते हैं, उनको मेहनत करनी पड़ती है, हमें औरतों को उनके जो ककून्स में है, जो अपने आप को कोजीनेस में रखती हैं, उनको हमेशा पहले यही, तभी ये क्वेश्चनर क्यों बनाया था कि आप उनसे पूछो कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहो, तभी आप ज्वाइन करो, उसको हॉबी नहीं समझो। तो ये कितनी स्टोरी को रिलेट करती है इन सब बातों से। आप प्लीज ये सबको सुनाइए स्टोरी। वी नीड टू लर्न टू गेट बैक टू ऑन आवर फीट। वी लिव सच प्रोटेक्टेड कोकून लो रिस्क लाइफ इन आवर अर्ली ईयर्स दैट वी आर नॉट क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर द बिग बैड वर्ल्ड देन वी एंटर इट। आप समझ के, हमने एज रखी हुई है लड़कियों के 20 से 45 साल तक। अब गांव की औरत जो है, लड़की जो है, वो 20 साल तक तो इतनी प्रोटेक्टेड रहती है कि उसके घर वाले भी उसको बाहर नहीं जाने देते। और रीड क्या कोशिश कर रहा है कि उनको घर में ही रख के उनको ट्रेनिंग दे रहा है कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाए। हम उनके कल्चर को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, हम उनको स्लोली एंड स्टेडीली बाहर आने की कोशिश करवा रहे हैं, और हम उनको फैमिली से अलग भी नहीं कर रहे हैं। हम उनके कल्चर को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनके डायनामिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, हम उनकी डिग्निटी को रिस्पेक्ट करते हैं। तभी तो हम उनके पास जाके आप लोगों को सबको सेंटर्स खोल के दिए कि आप उनकी लाइफ में बदलाव लाइए। यू हैव टू एक्ट एज अ जिराफ मदर। उनको किक करिए, किक इन द सेंस नहीं, उनको मारना नहीं है, पर उनको बोलो कि आपको टाइम निकालना है, ये आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। शायद सीमा जी की किस्मत में वापस जाना इसलिए लिखा था गुड़गांव से कि आपने बहुत सारे लोगों की लाइफ्स को बदलना था, राइट? आप इस तरीके से अपनी अपॉर्चुनिटी को ढूंढिए, अपने अंदर जो वो मैं पैशन की बात कर रही हूँ, हंगर की बात कर रही हूँ, आप उसको लिखिए कि आप क्यों गए। सीमा जी, यू विल डू द बेस्ट वर्क व्हेन यू विल राइट द डे यू वेंट बैक टू योर विलेज, द डे यू ओपन द सेंटर, द डे यू स्टार्टेड वर्किंग विद दिस वुमन एंड यू ट्रांसफॉर्म देयर लाइव्स। सो वी नीड टू कन्वर्ट आवर हैबिट्स टू आवर स्ट्रॉन्ग कल्चर एंड वैल्यूज। अकबर, दिस सेंटेंस इज फॉर यू, दिस इज द आंसर फॉर योर क्वेश्चन। हमारा जो 80% माइंड नेगेटिव चला जाता है, उसको हम पॉजिटिव कैसे करें, उसको वैल्यूज के साथ कैसे कन्वर्ट करें, और अपने विद इन आवर कल्चर हाउ वी कैन फोकस ऑन वैल्यूज, कीपिंग इन व्यू द पैशन, हंगर एंड डिसिप्लिन। इज इट ओके? आगे बढ़े। ये मेरी लास्ट स्लाइड है। लेसन्स लर्न फ्रॉम द स्टोरी को रिलेटेड विद लीडर्स। स्टडी द लाइव्स ऑफ सक्सेसफुल पीपल। अब वो जिराफ मदर तो सक्सेसफुल हो गई ना, उसने अपने बच्चे को दौड़ना पहले दिन ही, विद इन 1 आवर ऑफ हिज और हर बर्थ, उसने सिखा दिया कि चलो भाई दौड़ना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। तो कितना बड़ा रिस्क से वो अपने बच्चे को दौड़ना सिखा रही है। और जो हम अगर सक्सेसफुल लोगों की लाइफ पढ़े, तो वो भी ऐसे ही एडवर्सिटी में आगे बढ़े हैं। अगर मैं अपनी लाइफ का एग्जाम्पल दूं, मैं बहुत प्रोटेक्टेड थी जब मैंने 23 साल तक, 24 साल तक पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया में काम करा था। बहुत सारे स्टालवर्ट्स, जेआरडी टाटा, एसपी गोदरेज, सिंघानिया, ये वो सब बहुत लीडर्स, मेन भी वुमेन भी, वी वर जस्ट प्रोटेक्टेड चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ देम। बहुत हमें प्यार करते थे, नर्चर करते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन आई वाज 30s। शादी में मेरी शायद PFI से पहले हो गई थी, उषा इंटरनेशनल, नहीं PFI में, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर दैट इयर्स नाउ। बट मैं जब दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में मैंने ज्वाइन किया, इवन PFI में भी मैं ट्रैवल करती थी, पर हम इकट्ठे करते थे, पर जब मैंने वनवर्ड साउथ एशिया में ज्वाइन किया, तो मुझे अकेले ट्रैवल करना था। एंड माय फर्स्ट ट्रैवल वाज टू नेपाल। फाइन, नेपाल में कंट्री ऑफिस था, बट श्रीलंका
हमारी वो कंट्री डायरेक्टर थी, पर कोई ऑफिस नहीं था। अब रात को 12:30 बजे यहाँ से फ्लाइट जा रही है, मैं अकेले जा रही हूँ, कभी अकेले ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है एयरपोर्ट पे भी। फ्लाइट 2:30 बजे श्रीलंका पहुंचती है, और श्रीलंका एयरपोर्ट से जो सिटी है वो 2.5 घंटे का डिस्टेंस है। मैं अकेली टैक्सी में रात को ड्राइव कर रही हूँ। यू कैन इमेजिन द स्टेट ऑफ माई माइंड। आई वॉज सो स्केर्ड, पर भगवान को याद कर करके मैंने अपने ऑफिस में, मैं अपने आप को वीक भी नहीं शो करना चाह रही थी, ठीक है भाई अब पोजीशन लिया है तो ट्रैवल तो करना ही है, ट्रैवल कर रहा। और वहां पे मैंने बोला मुझे ना होटल नहीं चाहिए, मुझे कोई गेस्ट हाउस बुक कर दो, जो कम्युनिटी स्टे वाले गेस्ट हाउस श्रीलंका में बहुत हैं बिकॉज इट्स अ टूरिस्ट प्लेस। एंड दे बुक मी इन अ हाउस ऑफ ए तमिलियन फैमिली वेयर वन लेडी वॉज स्टेइंग अलोन, दैट लेडी वॉज ओल्ड ओल्ड लेडी। ओके फाइन, आई रीच देयर बाय 3:34 अर्ली मॉर्निंग, वेरी अर्ली मॉर्निंग। खोला दरवाजा, सामने इतना बड़ा शेर बब्बर जैसे डॉग, और मैं तो डॉग से इतना डरती हूँ कि ओ गॉड, मैं तो पूरी रात अपनी खिड़कियां दरवाजे सब कुछ बार बार देख रही थी कहीं खुला तो नहीं है, कोई पक्का दरवाजा है या वो डॉग टांग मारेगा तो दरवाजा खुल जाएगा, कुंडी मजबूत है या नहीं है। तो दीज वर एडवर्सिटीज फॉर मी, आई एम शेयरिंग द लाइव एग्जाम्पल विद यू। वो औरत, मैं सुबह 6 बजे उठने वाली लड़की, अपने कमरे से 8 बजे तक बाहर नहीं निकली क्योंकि मुझे यही डर था कि मेरे दरवाजे के बाहर ही वो डॉग बैठा होगा। देन आई कॉल माई डायरेक्टर देयर कि सी आई एम स्टक इन दिस सिचुएशन, आई एम स्केर्ड ऑफ द डॉग, सो प्लीज कॉल द ओनर ऑफ द हाउस एंड टेल हर टू कीप द डॉग इन द बैकयार्ड सो दैट आई कैन हैव माई ब्रेकफास्ट एंड लीव दिस प्लेस। दैट्स हाउ आई सॉल्व माई एडवर्सिटीज। और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन, ये तो एक एग्जाम्पल, मैंने बहुत लाइट एग्जाम्पल दिया है। टू रीच टू दिस लेवल टू मैनेज एन ऑर्गेनाइजेशन, आई कैन राइट बुक्स एंड बुक्स ऑन द एडवर्सिटीज आई फेस्ड, मेनी एडवर्सिटीज, मेनी मेनी एडवर्सिटीज, इंक्लूडिंग सब पॉलिटिक्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो। सो इट्स नॉट, द जर्नी इज नॉट ईजी। सो वर दे ऑलवेज सक्सेसफुल इन ऑल दे डिड? नो, बिग नो कैपिटल्स। हमेशा तुम गलतियां करके ही सीखते हो। डिड सक्सेस कम टू देम क्विक एंड इजी? नो, नॉट एट ऑल। आज मैं क्यों मैनेज कर पा रही हूँ ऑर्गेनाइजेशन? क्योंकि मेरे पीछे कोई थ्योरी की नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है कम्बिनेशन विद कम्बिनेशन ऑफ माई एकेडेमिक नॉलेज, तभी मैं कर पा रही हूँ। तो एक्सपीरियंस, सेटबैक्स हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, तो हमें कभी भी हारना नहीं है। सो देर इज अनदर फेदर इन योर कैप दैट यू आर गोइंग टू रजिस्टर योर एनजीओस, फ्यू ऑफ द सेंटर्स, दोज हु हैव कंप्लीटेड बियॉन्ड 5 years, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटर्स वी विल डिस्कस 1-to-1। तो यू आर गोइंग टू फेस मैनी मैनी चैलेंजेस, बट थिंक ऑफ योर सेल्फ आफ्टर 10 years, यू विल बी द लीडर्स। मुझे तो ये ट्रेनिंग किसी ने दी नहीं जो मैं आप लोगों को दे रही हूँ, फिर भी हमने सीखा, पर आप तो आधे सीख के चले हो आगे बिकॉज आप यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द कम्युनिटी, आधा आप सीख रहे हो, और आपके लिए जर्नी तो बहुत इजी है क्लेम करना कि आप लीडर बन गए, राइट? व्हाट मेड देम सक्सेस इज देयर एबिलिटी टू स्टैंड अप एवरी टाइम दे फॉल। ये सेंटेंस बहुत, आप अपने इसको बिल्कुल माइंड में बिठा लो कि गिरना तो है ही है, पर गिर के कैसे खड़े होना है, ये लीडरशिप की क्वालिटी है। द एबिलिटी दैट द बेबी जिराफ एक्वायर्स। द रोड ऑफ सक्सेस इज नेवर एन इजी वन, देयर आर रोड ब्लॉक्स, यू बाउंड टू फॉल, ठोकर तो लगेगी लगेगी, इसको तो आप समझ लो, बट सक्सेस लाइज इन बीइंग एबल टू गेट अप एवरी टाइम यू फॉल। किसी के ऊपर भी इतना निर्भर नहीं रहो कि कल को अगर आप गिरो तो आप इधर उधर देखो कि मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे उठा ले। वो सिचुएशन
ना तो आप अपनी पर्सनल लाइफ में लाओ और ना ही आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में लाओ। लीडर खाली प्रोफेशनल नहीं होता, लीडर सारे स्फेयर्स में होता है, ऑल ओवर होता है। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट टू फैमिली मेंबर्स, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू हस्बैंड्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स, विद ड्यू लव विद ऑल ऑफ देम, ऑलवेज ट्राई कि हमारा हाथ हमें किसी की तरफ नजर जो उठा के ना देखना पड़े कि मैं गिर गया हूं या गिर गई हूं, मुझे प्लीज कोई उठाने आ जाए। अपने में इतनी हिम्मत रखो कि आप अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, तभी नेचर भी हेल्प करती है, तभी जो एनवायरनमेंट में पॉजिटिविटी है वो भी हेल्प करती है। दैट इज द क्रिटिकल लाइफ स्किल दैट ऑल सक्सेसफुल पीपल हैव इंटरनलाइज्ड। और जो ये सेशन ले रहा है उसने तो बहुत ज्यादा इंटरनलाइज की हुई है ये बात कि किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहना पूरी लाइफ। अपनी अपनी लाइफ को ऐसे आगे बढ़ाओ कि हम इतने सेल्फ सफिशिएंट हो। बहुत ही किस्मत खराब होगी तो यू कांट हेल्प इट, मैंने लक वर्ड भी यूज किया था पहली स्लाइड में, पर अगर हम पैशनेट हैं, हम स्किलफुल हैं, हम हंगर है हमारे में, हम डिसिप्लिन हैं कुछ हद तक। मैं भी डिसिप्लिन नहीं हूँ, मैं बिल्कुल क्लेम नहीं करूंगी कि मैं डिसिप्लिन हूँ, बट यस मैं एडवर्सिटीज को रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करती हूँ। मैं इमीडिएटली इंट्रोस्पेक्ट करती हूँ अपने आप को और क्रिटिकल सिचुएशन से ऐसे एक एक को रिजॉल्व करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ी हूँ, तभी मैं इन सब चीजों को इंटरनलाइज भी कर सकती हूँ, कर रही हूँ और आगे भी कोशिश करूंगी। और जितने लोग मेरे साथ जुड़े हैं मैं उनको भी ये लेसन दूंगी। दैट्स ऑल आई जस्ट वांटेड टू से। आई एम लुकिंग एट द वॉच और मेरा ये टाइम का एक थोड़ा सा है कि मैं सेशन को टाइमली कंक्लूड करती हूँ। और मैं आप सबको ये बोलूंगी कि जिराफ की स्टोरी याद रखना अपनी लाइफ में हमेशा।

0: आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम चांद खान है। मैं राजस्थान के दौसा जिले के सिकराय तहसील के गिजगढ़ गांव का रहने वाला हूँ, जहाँ पर रेड इंडिया का सेंटर है, गिजगढ़ ज्ञान केंद्र के नाम से है। सबसे पहले मैं आपको गिजगढ़ के बारे में बताता हूँ कि यह गांव पहाड़ियों से चारों तरफ से घिरा हुआ है। 100 से अधिक पुराने मंदिर हैं। इसकी आबादी करीब 15,000 के करीब है। यहाँ के लोग गाँव से शहरों की ओर पलायन कर रहे थे रोजगार के लिए। तभी एक गिजगढ़ गांव में रेड इंडिया संस्था आई, जो 8 मार्च को आई थी, जिससे लोगों को रोजगार में काफ़ी सहायक रही, क्योंकि लोगों ने वहां पर उनको हुनर सिखाया गया, स्किल सिखाया गया। सबसे पहले मैं अपने बारे में बताता हूं आप लोगों को कि मैं कहीं भी नहीं जाता था, ना ही मैं किसी से बात किया करता था। आज मेरे अंदर, इस संस्था के अंदर, मुझे काफ़ी सीखने को मिला। मैंने काफ़ी ट्रेनिंग्स में, जैसे हेल्थ कैंप है, रेडियो ट्रेनिंग है, मोबाइल वाणी है, ताराक्षर है, इनमें काफ़ी पार्टिसिपेट किया मैंने और यूथ ने। तो मैंने बहुत कुछ सीखा और आज मैं इस संस्था में काम कर रहा हूँ। पहले मैं यहाँ पर एक वॉलंटियर था और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। इस संस्था के कार्य में हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का भी बहुत सहयोग रहा है। उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इस संस्था के अंदर। उसके बाद हम यहाँ पर जो स्किल वगैरह है उनके बारे में बताता हूँ मैं आपको। लाइब्रेरी के अंदर हमारा सबसे पहला पार्ट आता है लाइब्रेरी सेक्शन। लाइब्रेरी के अंदर काफ़ी यूथ, काफ़ी बच्चे आया करते थे पढ़ने के लिए, तो उन्होंने यहाँ पर पढ़ाई की और आज वो सरकारी नौकरी कर रहे हैं। कंप्यूटर सेक्शन के अंदर बच्चों ने कंप्यूटर सीखा, स्किल सीखा कंप्यूटर का, आज वो प्राइवेट जॉब कहीं पर कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हैं। ब्यूटी पार्लर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, ECD है, तो इन सब के अंदर काफ़ी हुनर सीखा और आज वो खुद कमा रहे हैं। ECD सेक्शन में बच्चों को पढ़ाया जाता था, सिखाया जाता था, फ्री सिखाया जाता था उन बच्चों को, उसके बाद में स्कूल में एडमिशन दिलाया जाता था। जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम थे, जैसे कि ऑर्गेनाइज किए गए थे रेड इंडिया द्वारा गिजगढ़ गाँव में, हेल्थ कैंप है, रेडियो प्रोग्राम है, होटल मैनेजमेंट है, ताराक्षर है, किसान मोबाइल है, हैंडीक्राफ्ट है और हैंडलूम ट्रेनिंग है। जैसे हेल्थ कैंप के अंदर गांव में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जो हेल्थ कैंप लगाया गया था। रेडियो प्रोग्राम के अंदर काफ़ी यूथ ने पार्टिसिपेट किया। होटल मैनेजमेंट में काफ़ी बच्चों ने सीखा और आज वो वर्क कर रहे हैं। तारा अक्षर में जो महिलाएँ साइन सिग्नेचर करना तक नहीं जानती थी, अंगूठा लगाती थी, उन महिलाओं को पढ़ाया और उन महिलाओं को सिखाया। किसान भाइयों के लिए किसान मोबाइल वाणी का एक प्रोग्राम चलाया गया था। हैंडीक्राफ्ट का प्रोग्राम महिलाओं को ट्रेनिंग दी गई थी और आज महिलाएं जॉब वर्क कर रही हैं और काफ़ी इनकम भी कर रही हैं। हैंडीक्राफ्ट है तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर जॉब वर्क करके ही कमा रही हैं। हैंडलूम ट्रेनिंग दी गई थी औरतों को, तो हैंडलूम के अंदर कपड़ा बनना सिखाया गया था, तो औरतों ने कपड़ा बनना सीखा और खुद इनकम जनरेट कर रही है। स्टिचिंग, ब्यूटी पार्लर, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, इनके अंदर काफ़ी स्किल सीखा औरतों ने और आज औरतें खुद कमा रही हैं, खुद की इनकम जनरेट कर रही हैं, खुद का घर खर्च चला रही हैं। जो हमारा रोज़गार का प्रोग्राम था, वो गाँव से शहरों की ओर लोग जा रहे थे रोज़गार के लिए, वो रुक गए और काफ़ी लोगों को रोज़गार मिला और इसमें काफ़ी गरीब परिवारों को सहायता मिली। उसके बाद हमारे पास भारती वॉलमार्ट के वर्क आया था बैग्स का, तो जिन औरतों ने हमारे पास स्किल सीखा था उन लोगों को वह वर्क दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी पैसा किया, इनकम किया इस भारती वॉलमार्ट में। 10,000 से अधिक लोगों को ट्रेनिंग रेड इंडिया संस्था द्वारा दी गई है। रेड इंडिया संस्था द्वारा स्किल सिखाया गया था औरतों को, औरतों में काफ़ी स्किल हुआ। जो औरतें घर से नहीं निकलती थी, जो औरतें घर तक ही सीमित थी, उन औरतों ने ट्रेनिंग ली और आज खुद की शॉप खोल रखी है घर के अंदर मार्केट में। जो औरतें शॉप नहीं खोल पा रही, वो औरतें आस पड़ोस के कपड़े सिलकर इनकम जनरेट कर रही है। जैसे मैं कुछ नहीं जानता था और मैंने बहुत कुछ सीखा यहाँ आकर और आज मैं यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ। हमारे सेंटर कोऑर्डिनेटर चंद्र प्रकाश जी का इसमें बहुत सहयोग रहा। धन्यवाद रेड इंडिया, धन्यवाद गीता मैम।
1: राजीव जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में।
2: धन्यवाद शाहिल जी।
1: तो सर, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं शिक्षा दिवस के ऊपर, तो आपके जीवन में शिक्षक या फिर शिक्षा दिवस क्या महत्व रखता है?
2: साहिल जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि आज अगर मैं शिक्षक हूँ तो मुझे भी किसी मेरे शिक्षक ने मुझे शिक्षक बनाया है। मैं भी एक टाइम में एक विद्यार्थी रह चुका हूँ और आज मैं एक अध्यापक हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं वो चीज़ें जो मेरा जीवन का अनुभव है या जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपने गुरुओं से, वो मैं अपने बच्चों को बता सकूँ या उनको वो अपना अनुभव शेयर कर सकूँ। शिक्षा एक मतलब त्रिवेणी की तरह है, तीन पैरों पे खड़ी हुई एक इमारत है जिसमें एक शिक्षक होता है, एक विद्यार्थी होता है, एक पढ़ने लिखने की सामग्री होती है जिसको आप पढ़ते हो। शिक्षक आपको एक मार्गदर्शन देता है कि किस तरीके से आप इस पथ पे चल करके, इस रास्ते पे चल करके अपने जीवन के उद्देश्य को अचीव करो या अपने गोल को जो है प्राप्त कर लो। तो मैं मानता हूं कि हमारे जीवन के अंदर एक शिक्षक का जो है, चाहे वो अर्ली एज में माँ बाप बच्चे के शिक्षक हैं, चाहे वो कम्युनिटी के लोग हमारे शिक्षक हैं, हर एक व्यक्ति जिससे आप सीखते हो वो आपका शिक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल है, सबसे महत्वपूर्ण जो हिस्सा रहता है हमारे पूरे जीवन में, वो एक स्कूल टीचर का रहता है। मैंने कल अपने गुरु को फोन किया जो मुझे संस्कृत पढ़ाते थे, उसके बाद मैंने एक दो मेरे और जो बहुत करीब हैं, जो आज भी मेरे संपर्क में रहते हैं, जो शिक्षक मेरे, जिनसे मैं टाइम टू टाइम गाइडलाइन लेता रहता हूँ कि आगे मैं क्या करूँ। तो हम अपने गुरु को अपने साथ जोड़े रखेंगे तो हमारा जो जीवन है वो कहीं ना कहीं और अच्छा दिन ब दिन निखरता जाएगा।
1: तो जैसे कि शिक्षक दो प्रकार के होते हैं, एक तो साधारण बच्चे को पढ़ाने वाले साधारण टीचर और स्पेशल टीचर। तो जैसे कि आप एक स्पेशल टीचर हैं जो स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते हैं, पढ़ाते हैं, तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको स्पेशल बच्चों को ट्रेंड करते या फिर पढ़ाते समय?
2: बहुत अच्छी बात आपने कही कि दो तरह के अध्यापक होते हैं, और आज जो है हमारे विश्व भर में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ना कहीं हमारे समाज की कुछ कमियां हैं, ये कह लो कि कुछ मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीजें जो हैं जिनकी वजह से इन बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है, कि कुछ कुछ ऐसे इश्यूज हैं हमारे समाज में, जैसे कि चाहे वो लोगों का अवेयर ना होना, बहुत ज्यादा कम उम्र में शादी कर देना, पहले बाल विवाह होते थे, कहीं ना कहीं बंद हुए हैं, लेकिन फिर भी आज जो है एक और नई चीज है कि लोग 35 प्लस होकर के शादियां कर रहे हैं, वो भी एक चैलेंज है। दवाई है, नशा है, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ऐसे एबनॉर्मल बच्चों को जन्म दे रही है। तो आपने कहा कि आप स्पेशल अध्यापक हैं तो किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। पहले जब मैं इस विशेष शिक्षा के अंदर आया था तो मुझे लगा था कि यार क्या मैं इसमें कभी कुछ कर पाऊंगा, लेकिन इसके अंदर धैर्य, संयम और आप ये कह लो कि बहुत ज्यादा लगन अपने अंदर भी होनी चाहिए और बच्चे में भी वो लगन जगाने की कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक प्रेरणा होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को करवा पाऊंगा। मैं अर्ली एज के बच्चों के साथ काम करता हूँ, जैसे कि एक ऑटिज्म डिसेबिलिटी होती है, वो ऑटिज्म के अंदर जो बच्चा है, स्वालीनता जिसको कहते हैं, कि बच्चा अपने अंदर लीन रहता है, कि वो समाज के अंदर नहीं आता है, समाज का हिस्सा नहीं बनना चाहता है, वो अपने अंदर रहता है, कम्युनिकेशन नहीं करता है, एबनॉर्मल बिहेवियर करता है, कि और जो है बोलना उसका बहुत लिमिटेड होता है, कि वो कम्युनिकेशन बहुत कम करता है, बातचीत का बहुत कम करता है। तो ऑटिज्म के ये लक्षण हैं काफी सारे, जो हम किसी दिन डिटेल में बाद में बात करेंगे, लेकिन मैं जिन छोटे बच्चों के साथ काम करता हूँ वहां पे मेरा काम रहता है कि बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट, वृद्धि और विकास को देखना। विकास तभी होगा जब हम एक बच्चे को उस तरह का माहौल देंगे। आप चुनौतियों की बात करें, चुनौती तो हम एक साधारण बच्चे को पढ़ाते हैं तो भी आती है, क्योंकि बच्चा एक एज के बाद जो है पर्सन पूछने की जो तादा वो पर्सन पूछने का जो उसका दायरा है वो बढ़ता जाता है, कि बच्चा जो है जैसे जैसे बड़ा होगा, जितना समझदार बच्चा होगा वो आपको हर एक चीज के बारे में पूछेगा कि माइक क्या है, इससे कैसे बात करते हैं, कैसे बनता है, ये है ये, तो चैलेंज आपको आता है, आपकी नॉलेज होनी चाहिए। एक बच्चा मैंने मेट्रो में देखा, अपनी मम्मी को बोल रहा है, पॉइंट कर रहा है, ये नॉर्मल बच्चा, साधारण जिसको आप कह रहे हो कि किसी तरह की कोई भी उसके अंदर मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांगता नहीं थी, तो वो बच्चा जो है एक मेट्रो के अंदर इतना चंचल और इतना शातिर बच्चा, जिसको हम कहते हैं इतना इंटेलिजेंट बच्चा, कि वो हर एक चीज के बारे में पूछ रहा है, और उसकी मम्मी पापा इतने परेशान हो गए थे कि उन्होंने जिस तरीके से बात किया तो मैंने उनको रोका कि नहीं, ये आपकी कम जानकारी है जिसकी वजह से आप इरिटेट हो रहे हो, बल्कि बच्चा आपका बिल्कुल सही है, आप इसकी मन की इच्छाएं पूरी नहीं कर पा रहे हो, उनके जो पर्सनों के उत्तर है वो नहीं दे पा रहे हो, इसलिए आप परेशान होकर के आपने इस तरह का व्यवहार किया, ये बच्चे के ऊपर कहीं ना कहीं एक नकारात्मक प्रभाव छोड़ेगा। अब आप स्पेशल बच्चों की बात करें तो अभी हमारा जो रीड इंडिया है वो एक प्रोजेक्ट लेके आया है PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो मुझे जब इस प्रोजेक्ट में लाया गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम यहाँ पे गांव के अंदर उस स्तर पे काम कर रहे हैं जहाँ पे लोगों की पहुंच बहुत कम है। बहुत अच्छा आपने बोला कि बहुत कम है। कम तो होता है कि कोई चीज नहीं है, मतलब बहुत कम है, लिमिटेड। यहाँ पे बिल्कुल वो सोर्सेज है ही नहीं, बल्कि जो हमारे सेंटर है वहाँ पे ऑलरेडी वो NCR के टच में है। लेकिन फिर भी जब मैं लोगों घरों में जाता हूँ, लोगों से मिलता हूँ, उनके उनसे बात करता हूँ, जब मैं उनके घरों को देखता हूँ, उनके माँ बाप से बात करते, तो हमें ये लगता है कि इस NCR के अंदर रह करके भी माँ बाप जो है कहीं ना कहीं आज जो हम मानते हैं कि ग्रामीण स्तर में क्षेत्र में लोग कम पढ़े लिखे होते हैं, लेकिन यहाँ पे वही हालात है कि एक किसी विशेष गांव या शहर को हम ये नहीं कहेंगे वो पढ़े लिखे हैं वह अनपढ़ है, नहीं, लेकिन जहाँ पे जागरूकता नहीं है लोगों के अंदर, चाहे वो शहर है चाहे गांव है, एक जैसा ही हाल है। तो मैं जब द्वारका, गुड़गांव, नोएडा के गांव में जाता हूँ, जब मुझे बोला जाता है कि हम आज मोबिलाइज करने जा रहे हैं, लोगों को अवेयर करने जा रहे हैं, तो मैं देखता हूँ कि लोगों को सच्ची में नहीं पता है। बच्चे हैं उनके पास, लेकिन उनकी अपने बच्चों के प्रति काफी माँ बाप जो हमें पॉजिटिव मिलते हैं कि अच्छा सोचते हैं कि हाँ ये कोशिश कर रहे हैं, काफी माँ बाप जो है वो कोशिश ही नहीं करते हैं या फिर उनको कोशिश करने की प्रेरणा ही नहीं मिलती है, क्योंकि हर जगह पे विशेष शिक्षक अवेलेबल नहीं है। सरकार कोशिश कर रही है और हो सकता है कि टाइम लगे उसके अंदर, बट हमारे NGO ने जो अभी ये PWD का अभी शुरू किया हमने, पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो हम चाहते हैं कि हम तीनों सेंटरों के अंदर हर एक डोर टू डोर जाकर के लोगों को अवेयर करें, उनको हमारे सेंटर तक लेके आए, चाहे वो किसी भी तरह से हमें उसको उनको बुलाना पड़े कि चाहे आप लेकर के आओ बैठो या फिर हमें काम करने का एक मौका दो। तो हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं, हम आप भी देखते होंगे, आप एक विद्यार्थी हैं, आप देखते हो ज्योति एक लड़की है और उसके साथ दो शाइना एक गुड़िया है और एक और दो तीन लड़कियां और भी हैं, तो आप देखते होंगे वो बच्चे भी आपके साथ बैठ के कंप्यूटर सीख रहे हैं, वो बच्चे भी लाइब्रेरी में आ रहे हैं, वो बच्चे भी एक क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, वो बच्चे भी ब्लैक बोर्ड पर लिखना चाह रहे हैं, सब चीजें वो बच्चे कर रहे हैं। तो आप उनको कैसे कह सकते हो कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं? चैलेंज आते हैं, बच्चे को लाना सबसे बड़ा चैलेंज है, उनके माँ बाप को ये समझा पाना कि नहीं ये कोई रोग या किसी पिछले जन्मों का कर्म पाप नहीं है, ये एक हमारी ही गलतियां हैं जो कहीं ना कहीं हमसे हुई है, चाहे वो बच्चे के जन्म से पहले है, चाहे वो बच्चे के जन्म के दौरान है या जन्म के बाद है, तो ये गलतियां हमारी हैं, लेकिन हम उनके अंदर दवाइयों से सुधार नहीं कर सकते, लेकिन हम एक थेरेपी एक स्कूल सेटअप के अंदर डाल करके बच्चे को पढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। और कई सारी टेक्निक हम इसमें यूज करते हैं बच्चे को पढ़ाने के लिए, वो तो डिपेंड करता है कि बच्चा कौन से स्तर का है, क्या बच्चा डिसेबिलिटियों के साथ आ रहा है, क्या क्या वो इश्यूज अपने साथ लेके आ रहा है, तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग उसकी गोल सेट करते हैं, फिर उनके ऊपर हम काम करते हैं।
1: तो जैसे कि मैं भी एक विद्यार्थी हूँ, अगर इस प्रकार की सिचुएशन मेरी क्लास में किसी बच्चे को है कि वो पढ़ने में असक्षम है, तो मैं किस प्रकार से उसकी सहायता कर सकता हूँ?
2: आप कह रहे हो कि पढ़ने लिखने में बच्चे को समस्या आ रही है, वो समझ नहीं पाता है, मैं उसको कैसे पहचानूं? तो पहली बात तो ये है कि एक विद्यार्थी अपने सहपाठी को एक सहयोग दे सकता है, लेकिन आपको लग रहा है तो आप, मैं मानता हूं कि आप पढ़ने, अगर आप लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करें तो उसमें होता है कि आप लिखना पढ़ना गणित को समझना या भाषा के अंदर किसी तरह की असमानता ना हो, तो आप लर्निंग डिसेबिलिटी के बच्चे को पहचान सकते हैं। आप उसकी नोटबुक देखो, क्या उसका लिखता है वो सही लिखता है, आपके आपका सहपाठी है क्या वो बोर्ड से देख करके लिख पाता है, लिख पाता है तो क्या वो कितनी गलतियां करता है, वो टै को ठै तो नहीं लिख रहा, ए को आ तो नहीं लिख रहा, कि आप ये समझो कि मेरा नाम राजीव है तो वो खाजीव बोल दे, रा को खै बोल रहा है, मतलब उसको शब्दों की पहचान नहीं है, बिना देखे लिख नहीं पा रहा है। आप देखते हो कि क्लास के अंदर एक अध्यापक ने एक पाठ पढ़ाया लेकिन उसको याद नहीं रह पा रहा है, तो आप ये मान सकते हो कि किसी तरह की उसके अंदर अक्षमता है, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकती है, लेकिन आप पहले अध्यापक को बताओ कि कभी कोई बच्चा खुल करके नहीं बता पाता है। अध्यापक का काम ही होता है कि जैसे आप जिस स्कूल में पढ़ते हो वहां पे एक काउंसलर है आपके स्कूल में,
1: जी हाँ,
2: आप काउंसलर को बता सकते हो, क्योंकि आपका काम पहचानना नहीं है, आप एक विद्यार्थी हो, आप एक अपने साथी का या अपने सहपाठी का जो वीक पॉइंट है उसको आप सबके सामने उजागर मत करो, आप जाके डायरेक्ट अपने काउंसलर को बताओ, अपने टीचर को बताओ, ताकि उसकी उसकी भावनाओं को ठेस ना पहुंचे। अब काउंसलर जो है एक प्रोसीजर में आएगा, एक प्रक्रिया में आएगा, वो क्या करेगा, वो बच्चे से मिलेगा। देखो हम किसी को चे आपने देखा ज्योति इतना अच्छा कर रही है, अगर वो एक किसी स्पेशल स्कूल में जा रही होती तो उसे इतना अच्छा ना कर पाती, क्योंकि उसको सब डिसेबल्ड बच्चे अपने सराउंडिंग दिखते, यहाँ पे वो नॉर्मल बच्चों को देखती है, आपको देख के भी सीखती है और वो दूसरे बच्चों को देख के भी सीखती है, उसके पहनने में, ओढ़ने में, खाने में, हर चीज में। आप, मैंने 2 महीने में इतने बदलाव देखे हैं जो शायद एक विशेष आवश्यकता वाले विद्यालय के अंदर जाके बच्ची लर्न नहीं कर पाती जितना वो यहाँ कर पाती है। सरकार भी चाहती है कि हमारा जो समाज है वो समेकित शिक्षा होना चाहिए, मतलब हमारे जो विद्यालय हैं जो इंक्लूसिव एजुकेशन होनी चाहिए कि जहाँ पे सब बच्चों को एक समान भागीदारिता मिले। आपने सबको शिक्षा का अधिकार है, ठीक है, उसी तरीके से इन बच्चों का भी अधिकार है। तो आपने कहा कि मैं क्या करूं, आपका सबसे जो महत्वपूर्ण रोल है वो यही था कि आपने बच्चे को देखा, अब आपने विशेष शिक्षा का टॉपिक आपने लिया है, इस पे आपने मुझसे बात की है, तो आपकी कुछ न कुछ जानकारी बढ़ी है, तो आपको इस तरह के बच्चे लगते, तो आप उनको, आप पहले अपने लेवल पे देखो कि क्या उनको सच्ची में इस तरह की दिक्कत है, कोई और है। आप एक दोस्त हो तो कभी कभी बच्चा जो है ना, माँ बाप या घर के हालात ऐसे हो जाते हैं कि बच्चा जो है घर से इतना सारा बर्डन लेके आता है, कभी कभी होता है ना कि माँ बाप के झगड़े, बाप का शराब पीना या इस तरह की घर की कई सारी समस्याएं होती है जो बच्चे को पढ़ने में बाधाएं डालती हैं। तो क्या आप उससे बात करके देखो, अगर आपके गली मोहल्ले का, तो आपका, आप उसके घर का सिचुएशन देखो कैसी है, ये चीज अपने तक रखो, गुप्त रखो। उससे क्या होगा कि आप जो है पहले बच्चे का जो स्तर है क्या वो डिसेबिलिटी में आता है या फिर कोई और समस्याओं के साथ वो ये इन सब चीजों से संघर्ष कर रहा है, अगर ये सब चीज नहीं है तो आप एक काउंसलर को बता सकते हो जो आपके स्कूल में है, आप उनको बताओ कि मैं उस बच्चे को, मुझे लग रहा है किस तरह की कोई समस्या है, मैं उसको परेशान देखता हूँ, उसको पढ़ने में भी समस्या आ रही, तो आप एक काउंसलर जो है फिर उसका असेस करेगा, उसको देखेगा, उसके माँ बाप को बुलाएगा, उनसे बातें करेगा, तो फिर एक प्रोसीजर आएगा। फिर आपके स्कूलों में स्पेशल एजुकेटर भी होते हैं आजकल, जो एनसीआर के स्कूल है उनके अंदर ज्यादातर स्पेशल एजुकेटर हैं, तो फिर धीरे धीरे एक प्रोसीजर शुरू होगा, फिर काउंसलर जो है स्पेशल एजुकेटर के पास भेजेगा, फिर वो आइडेंटिफाई करेगा, असेसमेंट करेगा, देखेगा बच्चा कहाँ अटका हुआ है। तो एक थोड़ा लंबा प्रोसीजर है लेकिन इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी बहुत जरूरी है।
1: तो ये बात तो जैसे कि हम स्कूल में पढ़ने जा रहे हैं, फिर आसपास में हम जहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वहाँ पे बच्चे के बारे में, आज भी हमारे आस पड़ोस में जैसे मजदूर भाई होते हैं उनके बच्चे भी पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाते हैं, तो हम उन बच्चों की किस प्रकार से सहायता कर सकते हैं, क्योंकि उनके मम्मी पापा जो होते हैं इस बारे में ध्यान नहीं देते हैं कि वो बच्चा किस प्रकार से विकसित हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, और उनको ये पता भी नहीं रहता कि हम अपने बच्चे को किस प्रकार से ट्रेंड करें या फिर हम उसको कहाँ भेजें कि उसका मानसिक विकास हो सके।
2: आपने जो बात बड़ी अच्छी बोली है, क्योंकि आप बहुत होशियार हो और आप चीजों को पकड़ पा रहे हो, और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है, पर्सन बहुत अच्छा है ये कि उनको हम कहाँ भेजें। देखो वो स्कूल नहीं जा रहे हैं
1: जी,
2: तो मैं आपके इस गांव की बात करूं शाहबाद की, तो वहां पे हमारे पास अभी रीड इंडिया के जरिए प्रोजेक्ट है, और ये प्रोजेक्ट जो जो हमारे डायरेक्टर है गीता मैम, उन्होंने बोला था कि अगर ये रहे ना रहे लेकिन पीडब्ल्यूडी हमेशा रहेगा, कि ये हमने रीड इंडिया के साथ जोड़ दिया है। तो अगर आपके गांव के अंदर आपको ऐसा बच्चा दिखता है तो आप उसके माँ बाप को बात नहीं कर पाते हो, कोई बात नहीं, आप हमें बताओ, हम उनसे जाके बात करेंगे, हम हमारे सेंटर के अंदर उस बच्चे के साथ काम करेंगे। यहाँ पे स्पेशल एजुकेटर भी है, काउंसलर भी है, स्पीच थेरेपिस्ट भी है, हमारी एक पूरी टीम है, जैसे कि आप भी हो। अगर मैं आपको कहूंगा कि बेटा इस बच्चे को आप कंप्यूटर का कुछ सिखा दो या इसको कुछ कलरिंग करा दो, तो आप मना नहीं करोगे, क्योंकि आप इंक्लूसिव एजुकेशन की बात कर रहा था ना, वो हमने पार्ट शुरू कर दिया ऑलरेडी। भारत सरकार की जो नई नई शिक्षा नीतियां आ रही हैं या फिर पुरानी जो शिक्षा नीति है वो स्कूलों तक है, लेकिन कहीं अच्छे तरीके से काम हो रहा है, कहीं नहीं हो रहा है। जो आपने कहा कि उन बच्चों को हम कहाँ पहुंचाएं, तो अभी तो मैं ये कहूंगा कि आपके आसपास अगर कोई स्पेशल स्कूल है तो वहां बता सकते हो, अगर जैसे कि हमारा रीड इंडिया है तो आप यहाँ पे हमें बताओ, हम उनसे मिलेंगे, उनके माँ बाप से बात करेंगे और उनको हमारे सेंटर में लेके आएंगे, और जब वो बच्चे हमारे सेंटर में आएंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा कि हाँ मैंने इस बच्चे को पहचाना और ये आज यहाँ पे आ रहा है, और जब वो चीज़ सीखेगा तो आपको और ज़्यादा खुशी मिलेगी। तो ज़रूरत है आज के युवा को विशेष शिक्षा से जुड़ने का, विशेष शिक्षा वाले, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पहचानने का और उनके साथ एक प्रेम से रहने का, कि ये ना हो कि आप उनसे नफरत करें। आप जिस तरीके से, मैं आपके अंदर ये एक उमंग देख रहा हूँ कि आप इस मतलब स्पेशल एजुकेशन या विशेष शिक्षा के बारे में जानने के लिए उत्तेजित हैं या इतने भावुक हैं, तो मैं चाहता हूं कि आपकी क्लास के 30 और बच्चे भी इस चीज को जानने की कोशिश करें और आप उनको भी मोटिवेट करो, क्योंकि आपके अंदर जो है मुझे भी वो शिक्षक वाली चीजें नजर आ रही है कि आप चीजों को जल्दी पकड़ पा रहे हो। और एक अच्छे शिक्षक की ये खास बात होती है कि वो वातावरण के अंदर अपने आप को या वातावरण के अंदर जो समस्याएं हैं उनको निपटने के लिए उसी वातावरण के अंदर सोर्सेज ढूंढता है, मतलब स्रोत ढूंढता है कि किस तरीके से मैं इस समस्या को इसी वातावरण के अंदर खत्म कर दूं या इसको सॉल्व कर दूं।
1: तो अंत में आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: तो मैं श्रोताओं से यही कहना चाहूंगा कि हमारे हर घर के आस पड़ोस में, हर गली में लोगों को बच्चों की समस्याओं के बारे में नहीं पता है कि विशेष आवश्यकता है या बच्चे के विकास में देरी हो रही है या बोल नहीं पा रहा या किसी तरीके से वो जो है अनजान है। जिन जिन श्रोताओं ने आज हमें सुना है, मैं चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा भी उनको समझ में आया है, अगर उनके आस पड़ोस में ऐसे बच्चे हैं, तो अपने नजदीकी किसी भी एनजीओ में या उन माँ बाप को उस एनजीओ का पता बताए या फिर ये देखें कि इन बच्चों के लिए समाज की कौन सी संस्था, कौन सी इकाई, कौन लोग जो काम कर रहे हैं। समाज सेवी भी होते हैं, बहुत सारे एनजीओ काम कर रहे हैं, जैसे रीड इंडिया जो इस प्रोजेक्ट को लेकर के आया है और वो इस पे काम कर रहा है। तो जैसे कि अगर शाहबाद, वजीराबाद और नोएडा के एक गांव की बात करूं, तो हम अगर वहां के श्रोता सुन रहे हैं तो हमारा सेंटर है जहां पे आप वहां पे बच्चों को भेज सकते हैं। और अगर जो जहां पे अभी हमने शुरू नहीं किया है, आगे चल करके हम करेंगे, तो वहां के जो लोग हैं वो अपने आस पास ऐसे स्रोत ढूंढे कि जहां पे इन बच्चों के लिए कुछ हो रहा है, जैसे स्कूल है, स्पेशल स्कूल है, या फिर कोई एनजीओ है, अभी तो बहुत सारे एनजीओ वगैरह काम कर रहे हैं, या फिर एक सरकार ने एक ना शिक्षक रखा हुआ है, घुमक्कड़ जिनको कहते हैं, वो सरकारी स्कूलों के अंदर आते हैं वीक में 3 दिन 4 दिन, आपके स्कूल में स्पेशल एजुकेटर है
1: जी।
2: हाँ, तो वो कभी कभी आते हैं इन बच्चों को एक रिसोर्स रूम, मतलब एक संसाधन कक्ष जिसको बोलते हैं, जहाँ पे इन बच्चों के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिनसे कि बच्चा पढ़ता है, जिनसे सीखता है,
1: विकास
2: हो जल्दी। हाँ हाँ, तो वो एक रूम होता है हर स्कूल के अंदर, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो। और ज्यादा ज्यादा जो है जागरूकता की कमा जरूरत है हमें आज समाज के अंदर, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए, उनके माँ बाप के लिए और समाज के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन अगर हम सब मिलकर के इससे लड़ेंगे और इसको डट के इसका मुकाबला करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये मुश्किल नहीं है। और हम अकेले से नहीं होता है, किसी एक व्यक्ति विशेष का काम नहीं है, ये पूरे समाज का काम है। तो मैं ये कहूंगा कि पूरे समाज को एकजुट होना चाहिए, एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, और इस चीज को जागरूकता के लिए हर स्कूल के अंदर एक एजुकेटर जो है होना चाहिए, और उसको भी गांव के अंदर जागरूकता बढ़ानी चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए कि हाँ इस तरीके के बच्चे हैं तो आप हमारे पास लेके आइए, चाहे आप उनको गृह आधारित काम दे दो या फिर उनको आप रेगुलर क्लासें लो या जो भी है, लेकिन हमारे समाज के लोगों को ऐसे स्रोत ढूंढने पड़ेंगे जहाँ पे अवेलेबल नहीं है कि हम इन बच्चों को कैसे और कहाँ भेज सकें।
1: तो राजीव जी, आप हमारे कार्यक्रम शाहबाद की आवाज में आए, आपने हमें स्पेशल बच्चों के बारे में बताया कि आप उनको कैसे ट्रेन करते हैं। धन्यवाद।
2: धन्यवाद शाहिल जी।
3: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: ज्ञानवाणी लखनऊ प्रस्तुत करता है कार्यक्रम जीवी ऑनलाइन।
1: स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का एफएम 105.6 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी ज्ञानवाणी लखनऊ पर, और आज मैं ज्योत्सना हूं आपके साथ लेकर आपका अपना फोन इन कार्यक्रम बात पते की। श्रोताओं, युग परिवर्तन के साथ विचारों के मापदंड ही नहीं बदलते बल्कि रीति और नीतियां भी करवट ले जाती हैं। एक समय था जब स्त्रियों के विषय में कहा जाता था, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं। लेकिन श्रोताओं, आज का युग ऐसा नहीं है। विधि की ये कैसी विडंबना है कि एक ही वृक्ष पर लगे दो पुष्पों में से जो एक अधिक सुरभित और सुरम्य होता है उसको अभिशाप समझ लिया जाता है, वहीं दूसरी ओर दूसरे को कष्टमय होते हुए भी वरदान। पुत्र के जन्म पर घर में तवे ढोलक और नपीरी बजने लगती है, लेकिन वहीं जब एक कन्या का जन्म होता है तो माता पिता के चेहरे पर उदासी की छाया क्यों छा जाती है। आज इन्हीं सब प्रश्नों को अपने मन में रखते हुए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है रीड इंडिया की कंट्री डायरेक्टर डॉक्टर गीता मेहरोत्रा को, और साथ ही साथ हमारे साथ हैं इग्नू के असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर डॉक्टर कीर्ति विक्रम सिंह जी। तो मैम, हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपनी ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे ज्ञानवाणी के स्टूडियो में। और अपने श्रोताओं को एक बार हम अपना विषय फिर से बता दें, हमारा आज का विषय है महिला सशक्तिकरण। तो अगर आप इस विषय से संबंधित कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें फोन कॉल कर सकते हैं। हमारे फोन इन नंबर्स हैं 0522-2987-847 यानी 0522-2987-847। और मैम, आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर। तो सबसे पहला जो हमारा प्रश्न आपसे है वो ये है कि महिला सशक्तिकरण क्या है।
2: महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई फॉर्मूला नहीं लगता है महिला सशक्तिकरण का नापदंड करने के लिए। ये सबसे बड़ी बात जो इसके पीछे है, और मैं बहुत बार इस बात के ऊपर चर्चा भी करती हूँ कि ये हमारा अपनी सोच है, अपना एटीट्यूड है जो हमारे बिहेवियर में बदल जाता है, और हम अपने बिहेवियर को थोपने की कोशिश करते हैं समाज पे। तो अगर हमारी सोच बदल जाए, हमारा एटीट्यूड बदल जाए, हमारे एक्शंस बदल जाए और हमारा बिहेवियर बदल जाए तो हम इक्विटी की बात कर सकते हैं, हम बराबरी की बात कर सकते हैं, हम महिलाओं को उतना ही दर्जा दे सकते हैं जितना हम पुरुषों को देते हैं।
1: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। और मैम, जैसा कि हम महिलाओं को ढेर सारे नाम देते हैं, देवी, सती, सीता, दुर्गा, है ना, न जाने कितने सारे नाम दिए गए हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि वर्तमान परिवेश में ये कहाँ तक चरितार्थ होता है?
2: माने तो भगवान, नहीं माने तो मिट्टी, है ना।
1: बिल्कुल,
2: ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं। तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि अगर इंसान को दूसरे इंसान की इज्जत करनी आ जाए और उसकी रिस्पेक्ट करनी आ जाए तो ये जो अंतर है महिला और पुरुष में ये एकदम खत्म हो जाएगा।
1: बिल्कुल मैम, और जैसे प्राचीन काल में तो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी और महिलाएं शास्त्रार्थ भी करती थी, हर क्षेत्र में वो थी, लेकिन वर्तमान समय में महिलाओं की स्थिति कह सकते हैं कि उसमें बहुत अंतर अब आ गया है, तो ऐसा क्यों हुआ है?
2: देखिए, मैं यहाँ पे पॉलिटिक्स की बात भी नहीं करूंगी और बहुत रिसर्च की बात भी नहीं करूंगी। जो हम कहते हैं कि प्राचीन काल में स्त्रियों के हाथ में शस्त्र थे, या जैसे झांसी की रानी की बात करें या कुछ और महिलाओं की बात करें, पर आप देखिए कि मदर टेरेसा भी थी। मदर टेरेसा के हाथ में कोई शस्त्र नहीं थे, पर मदर टेरेसा ने साइलेंटली कैसे औरतों को सपोर्ट किया और अपने कार्यक्रम करते हुए दिखाया, अपने जीवन की पूरी रचना के बारे में लोगों को बताते हुए बताया कि एक महिला भी इस लेवल तक पहुंच सकती है। तो मैं उसमें कहूंगी कि महिलाओं को अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है और अगर रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती तो स्काई इज द लिमिट फॉर अ वुमेन, बहुत ऊंचा उठ सकती हैं वो। और अगर परिवार उनको सपोर्ट करे तो समाज भी कहीं पीछे हट जाता है।
1: बिल्कुल मैम। और लेकिन ऐसा क्यों हुआ कि हमें महिला सशक्तिकरण जैसे दिवस मनाने की जरूरत पड़ी?
2: महिला सशक्तिकरण का दिवस इसलिए मनाया जाता है कि हम अपने समाज को बार बार बार बार रिमाइंड करें कि जो आपका इक्वल पार्टनर है, हकदार है इस समाज का, उनका राइट है अपनी जिंदगी जीने का, अपना इवन जन्म लेने का, जिंदगी जीने का, माँ बाप से उतना ही प्यार लेने का जितना हम बेटों को करते हैं, उनको भी उतनी ही एजुकेशन चाहिए जितना हम बेटों को देते हैं, उनको भी उतने अधिकार चाहिए। अगर मैं यहाँ पे रिसर्च की बात करती हूँ तो आज का युग जो है वो टेक्नोलॉजी का युग है, टेक्नोलॉजी का युग है और महिलाओं को वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती हैं। और आप देखिए अभी समय में महिलाएं आगे बढ़ रही हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी, इंजीनियरिंग भी कर रही हैं और बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जिनमें वो काम करती हैं, पर स्टिल अगर हम रूरल इंडिया की बात करें तो 48% जो हमारा पोर्शन है महिलाओं का, उसमें से मैं कहूंगी कि 40% भी उस लेवल तक नहीं है जो फुल्ली एजुकेटेड है और टेक्नोलॉजी में आगे अपने कदम बढ़ा रही हैं। तो ये जो फर्क हम देख रहे हैं आधुनिक समाज में और पिछड़े समाज में, इस गैप को भरने की जरूरत है। और जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और अगर हम इस गैप को नहीं समझेंगे, ये जो इतनी बड़ी विडंबना हमारे सामने आके खड़ी हुई है कि हम जब भी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो हम खाली शहरों की बात करते हैं, हम गांव को भूल जाते हैं। और गांव में अगर महिला से आप चर्चा करें तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितनी शक्ति है, कितनी उसकी सोच बड़ी है, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। तो जब हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं और दिवस मनाने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक रिमाइंडर देने की जरूरत है समाज को कि उन महिलाओं की तरफ भी देखिए जिनको कुछ अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिलती हैं। तो सोच और अपॉर्चुनिटी का आपस में बहुत गहरा तालमेल है, इस तालमेल को समझने की जरूरत है।
1: और मैम, महिला सशक्तिकरण में शिक्षा की क्या भूमिका है?
2: ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और शिक्षा अपने में ही एक संपूर्ण, मैं बोलूंगी कि एक टॉपिक है, और सशक्तिकरण एक अलग है। हम कहते हैं कि महिला पढ़ जाएगी तो वो एम्पावर्ड हो जाएगी, पर ये बात नहीं है। बहुत सारी महिलाएं पढ़ के भी अपने परिवार में बहुत ही डिफरेंस महसूस करती हैं। और जब हम चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि सेक्स रेशियो महिलाओं की बच्चों की, जो गर्ल चाइल्ड है उसकी बहुत कम है, और 2011 के जो आंकड़े हैं, आज हमारा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है और मैं आंकड़ों के ऊपर अभी थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ कि जो हमारे देश में अलर्ट हुआ था कि 2011 में जब हमारी सेंसस हुआ और हमें पता चला कि चाइल्ड सेक्स रेशियो हमारा, जो गर्ल चाइल्ड सेक्स रेशियो है, वो बहुत ही डाउन है। और बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हमारे सामने आए थे जैसे हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात एंड देवर अदर स्टेट्स ऑल्सो, पर उसमें क्यों गिरा हमारा सेक्स रेशियो? क्योंकि ये अर्बन एरिया में जो बहुत ही सक्षम थे, पैसे वाले थे और पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने एबॉर्शन अपना एक राइट समझ लिया था, जो बहुत ही गलत था। इसीलिए चाइल्ड सेक्स एबॉर्शन पे भी सरकार ने कानून बनाया था। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये जो गैप है ये पढ़ाई की वजह से आया। पढ़े लिखे लोगों ने भी बहुत सारे ऐसे ब्लंडर्स किए हैं जिसमें लड़कियों की जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही कम हो गई और उनको वो राइट भी नहीं मिला कि वो इस समाज में अपना जीवन व्यतीत कर सके, और उनके पैदा होने से पहले ही उनको एबॉर्शन से खत्म कर दिया गया।
1: बिल्कुल। और जैसा कि हमारे साथ सर भी हैं, तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे इग्नू से जुड़ी हुई कुछ जानकारी कि इग्नू का एडमिशन सत्र कब से शुरू हो रहा है?
3: जी मैडम, इग्नू के अगर हम जुलाई 2021 सेशन की बात करें तो एट प्रेजेंट हमारे एडमिशन इस साइकिल के लिए ओपन है और जिन लर्नर्स को इग्नू से यूजी प्रोग्राम, पीजी प्रोग्राम, सर्टिफिकेट या डिप्लोमा प्रोग्राम ज्वाइन करना हो तो उनके पास अवसर है कि वो 15th ऑफ जुलाई तक ऑनलाइन मोड से फॉर्म्स भर सकते हैं। जो विश्वविद्यालय का लिंक है एडमिशन का, वो विश्वविद्यालय की वेबसाइट पे है। तो कोई भी स्टूडेंट, अगर उसको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है या अपनी स्किल्स को बढ़ाना है, नॉलेज को अपग्रेड करना है, तो वो इग्नू के प्रोग्राम्स को ज्वाइन कर सकता है। और अभी बहुत सारे नए प्रोग्राम्स विश्वविद्यालय ने लॉन्च किए हैं, जैसे एमए इन उर्दू, एमए इन ज्योतिष और जेंडर एंड डेवलपमेंट स्टडीज पे तमाम कोर्सेज लॉन्च हुए हैं। फिर डेवलपमेंटल स्टडीज पे पीजी डिप्लोमा इग्नू ऑफर कर रहा है। सीएसआर में इग्नू कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में नया कोर्स हमारा लॉन्च हुआ है डिप्लोमा लेवल पे। और उर्दू लैंग्वेज में पीजी हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो तमाम ऐसे कोर्सेज हैं जो मैं समझता हूं कि लर्नर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होंगे, और जो डिस्टेंस मोड में अभी तक नहीं ऑफर हो रहे थे उनको विश्वविद्यालय डिस्टेंस मोड में ऑफर कर रहा है। कुछ पाठ्यक्रम हमारे खास तौर से सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स जो हैं वो ऑनलाइन मोड में भी इस समय ऑफर हो रहे हैं। तो जिन लर्नर्स के पास समस्या है कि वो डिस्टेंस से भी नहीं कर पाते हैं, वो ये चाहते हैं कि हम घर बैठे अपनी पढ़ाई करें अपने स्मार्टफोन को यूज करते हुए, अपने लैपटॉप्स को यूज करते हुए, तो उनके लिए ऑनलाइन कोर्सेज जो इग्नू के हैं वो काफी अच्छा ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि लर्नर्स को समय नहीं गंवाना चाहिए और एडमिशन के लिए जो लिंक हमारा खुला है उसमें उसका लाभ उठाना चाहिए और अपना एडमिशन लेना चाहिए।
1: बिल्कुल सर। और टर्म एंड एग्जामिनेशंस जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गए थे
3: जी,
1: तो उसके बारे में सर।
3: जी, टर्म एंड एग्जामिनेशन हमारा जो कोविड की वजह से पोस्टपोन हो गया था वो 3rd ऑफ अगस्त से

0: ऑफ ऑल बैन क्यों हुआ कि हमें स्क्रीनिंग नहीं करानी बच्चे की कि वो लड़की है या लड़का, जो सेक्स सेलेक्टिव स्क्रीनिंग है वो भी नहीं करानी, अबॉर्शन भी नहीं कराने। और जब परिवार में जो बड़े बुजुर्ग हैं अगर उनकी सोच अभी नहीं बदली है, तो एक हस्बैंड और वाइफ मिलके अगर स्टैंड लेते हैं तो ये बहुत बड़ा स्टैंड है माइंडसेट को चेंज करने का। क्योंकि हम बहुत सारे अपनी लाइफ में ऐसे डिसीजंस होते हैं जो हस्बैंड वाइफ मिलके डिसाइड करते हैं कि नहीं, हमें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और हमें ये स्टेप्स लेने हैं, तो क्यों नहीं इस संदर्भ में भी। और जब शिक्षा की बात है तो अब बहुत समय बदल गया है, बहुत परिवारों की सोच बदल गई है, यंग कपल्स की सोच बदल गई है। वो डिफरेंस है जो लड़की और लड़के की शिक्षा में, अभी मुझे शहरों में तो इतना नजर नहीं आता है, पर हाँ उसका बहुत बुरा हाल है गांवों में। गांवों में अगर हमने अभी भी इस चीज को नहीं पकड़ा और नहीं शिक्षा की तरफ पेरेंट्स की सोच बदली, तो ये गैप इतना ज्यादा बढ़ जाएगा। क्योंकि अब टेक्नोलॉजी के आने से, टेक्नोलॉजी उनके लिए एक ड्रीम है, एक सपना है, उसको हाथ से छूना भी उनके लिए बहुत दूर की बात है, और टेक्नोलॉजी को यूज करना तो आई थिंक मैं इसके बारे में पिछले 15 साल से चर्चा कर रही हूं, और अभी भी वो गैप एक ड्रॉप इन द ओशियन के लेवल पे फिल हुआ है। और उसमें भी ड्रॉप का जो साइज है वो डिफाइन करना मेरे लिए इतना मुश्किल है कि जस्ट अ सिंपल ड्रॉप। तो अगेन आई वुड से कि ये सब माइंडसेट की बात है। और जो पढ़ी लिखी महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हैं आज, और अपने पैरों पे खड़े होके जब उनको मौका मिलता है कि वो अपने आप को इतना सक्षम समझती हैं कि वो अपने परिवार की देखभाल कर सकती हैं और उनके जो हस्बैंड्स हैं वो भी इस बात को समझते हैं, तो द ओनली थिंग इज दैट कि कैसे हम जो एक्सपीरियंसेस हैं, देखिए पीयर लर्निंग भी बहुत बड़ी एजुकेशन है हमारे देश में, और अगर एक महिला अपने एक्सपीरियंसेस दूसरी महिला के सामने शेयर करती है कि कैसे उसने अपने बच्चों की देखभाल की और अपने गर्ल चाइल्ड को उन्होंने हायर एजुकेशन दी, और उसको हायर एजुकेशन का ये मतलब नहीं है कि 12th पास करा दी, हायर एजुकेशन की पोस्ट ग्रेजुएशन, इंजीनियरिंग, डॉक्टर, तो ये सोच आस्ता आस्ता शहरों में तो बहुत सीख आ रही है, पर गांवों में सोच है, सपना है, पर उस सपना को पूरा करने के लिए अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो यहां तक तो हम पहुंच गए हैं।
1: बहुत अच्छी बात। और जैसे आपने कहा कि गांव में अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो इसी तरह महिला सशक्तिकरण में स्किल डेवलपमेंट के लिए कुछ आप बताइए।
0: बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम सरकार भी चला रही है जहां पे वो स्किल डेवलपमेंट की बात करती है, और गुड़गांव में तो मैंने एक यूनिवर्सिटी भी देखी है जिस यूनिवर्सिटी का नाम ही स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी है, और इग्नू जैसे भी ऐसे बहुत सारे और भी इंस्टीट्यूशंस हैं जो स्किल डेवलपमेंट की बात करते हैं। और अगर मेरा आप एक्सपीरियंस जाने तो जिस संस्था की मैं कंट्री डायरेक्टर हूं, रीट इंडिया, हमने 30,000 से ज्यादा औरतों को सक्षम बनाया है लाइवलीहुड ट्रेनिंग पे, जो वो आज अपने पैरों पे खड़ी हो सके। और इससे आज वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के दिन मैं ये जो भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनको बताना चाह रही हूं कि लड़कियां, क्योंकि ये महिलाओं के लिए कार्यक्रम था, और मैं दावे से इस बात को कह सकती हूं कि 30,000 औरतों को अगर हमने सक्षम बनाया है तो 15,000 औरतें तो अपने पैरों पे आज खड़ी हैं, जिनका डिले इन मैरिज भी हुआ है। अभी 25 साल की लड़कियों ने भी शादी करने की थोड़ी सी रोक लगाई है, अपने पेरेंट्स का माइंडसेट चेंज किया है, क्योंकि पहले हमने अपनी जिंदगी में कुछ करके दिखाना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, तभी हम शादी करेंगे। तो डिले इन मैरिज इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द फर्टिलिटी ऑफ अ वुमेन, कि वो बच्चे नेचुरली सोच बनेगी कि कम पैदा करने हैं, और इतना प्रेशर नहीं होगा कि अगर कम बच्चे करने हैं, और लड़की भी चाहिए और लड़का भी चाहिए एक बैलेंस्ड परिवार के लिए, तो ये सोच अपने आप बदल जाएगी। तो शिक्षा का और रिलेशन जो है, जब हम एम्पावरमेंट का करते हैं तो इस तरह से हमें उनको कंपेयर करना है और लोगों को समझाना है।
1: बिल्कुल मैम। और जैसे कि भारतीय समाज

0: समाज में स्त्रियों की जो घटी संख्या है इस समय, उसके क्या दुष्परिणाम है?
1: देखिए, हमारे यहाँ पे हर 10 साल के बाद सेंसस होता है, तो 2011 का जो सेंसस था उन्होंने हमारे सामने अलार्म खड़ा किया कि सेक्स रेशियो में बहुत डिफरेंस आ रहा है। और अभी 2021 में सेंसस होना चाहिए और मुझे नहीं पता कि कोविड की वजह से सरकार इसको कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, पर चाहे सेंसस हो या ना हो, सरकार को नॉन गैर सरकारी संस्थाओं का साथ देकर लोगों का माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है, जहां पे हम कहें कि लड़की भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना लड़का। और मैं हरियाणा में रहती हूँ, हालांकि मैं पैदा और पढ़ी और बड़ी तो दिल्ली में हुई हूँ, पर आज के समय मैं हरियाणा में रहती हूँ और हरियाणा में अभी भी सोच बदलने की बहुत बहुत जरूरत है, और उत्तर प्रदेश और हरियाणा में कोई ज्यादा फर्क नहीं है।
0: बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात। लेकिन अगर देखा जाए तो जैसा कि आपने कहा कि शिक्षा बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, सही बात है, लेकिन शिक्षा बहुत ज्यादा रिलेटेड है इन सारी चीजों से, क्योंकि केरला में देखिए ज्यादातर लोग जो हैं एजुकेटेड हैं, तो वहां पे मतलब गर्ल चाइल्ड का रेशियो भी ज्यादा है ना, तो शिक्षा तो मैटर बहुत ज्यादा करती है। लेकिन आपको क्या लगता है कि लोगों की जो सोच है ये कैसे, क्योंकि परिवेश, जो हमारा माहौल होता है, परिवेश होता है, वो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा असर करता है। मान लीजिए आप किसी ऐसे परिवार में रह रहे हैं जो बहुत कंजर्वेटिव माइंड है, और लोग सोचते हैं कि नहीं, हमारे लिए बेटा इम्पोर्टेंट है, और पहले ये चाहिए, लड़की बहुत ज्यादा एजुकेटेड है लेकिन उसके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लड़की को या एक स्त्री को क्या करना चाहिए?
1: मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको मैं दोबारा से ये रिट्रेट कर दूं बात, क्योंकि शिक्षा का अपना महत्व है, और जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं और हम उस एज ग्रुप को लेते हैं जो 35 to 55 है महिलाओं का, या हम 40 से 65 तक की महिलाओं की बात करते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में एम्पावरमेंट का मतलब भी नहीं समझा, उनको जो महिला सशक्तिकरण है उसके बारे में किसी ने बात भी नहीं करी, और ये मैं रूरल एरियाज की बात कर रही हूं, तो उस संदर्भ में मैं कह रही हूं कि अगर हम उनको इस बात के, उनके साथ बैठ के इस बात की चर्चा करें, और वो तो अब स्कूल भी नहीं गई हैं, एजुकेटेड ही नहीं है, तो मेरा ये कहने का मतलब है जो वर्ग एजुकेटेड नहीं है उनके साथ हम कैसे उनका माइंडसेट बदलें कि महिला को उतना ही दर्जा अपने परिवार में देना है जितना हम पुरुष को दे रहे हैं, तो वो चीज बातचीत करने पे आएगी, पीयर लर्निंग पे आएगी, और समाज में जब हम एक दूसरे को समझाने की कोशिश करेंगे तभी आएगी। और यहाँ पे गैर सरकारी संस्थाएं बहुत ज्यादा काम कर रही हैं गांव में जाके लोगों के माइंडसेट चेंज करने के लिए। जहां पे मैं शिक्षा की बात कर रही हूँ, जब शिक्षा बहुत जरूरी है, ये तो मैं नहीं कह रही हूँ कि शिक्षा जरूरी नहीं है, पर शिक्षा अभी जो हमारी यंग जनरेशन आ रही है, जो आप कह रहे हैं कि चाइल्ड सेक्स रेशियो पढ़े लिखे लोग नहीं करते हैं, उसमें मैंने बोला कि वो भी करते हैं, पर जो माइंडसेट वुमेन एम्पावरमेंट की बात है वो एजुकेशन का उसका डायरेक्ट लिंक है, वो तो है ही है, तभी समाज बदलेगा। पर हमारा समाज बटा हुआ है जहां पे 70% ऑफ, और हमारा जो पॉपुलेशन है अभी यूथ है, क्योंकि हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन से निकल रहे हैं, जहां पे 65% यूथ है और हमारी 70% पॉपुलेशन गांवों में रह रही है, और जब तक हम यूथ का माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, यूथ को एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज नहीं देंगे, यूथ के बिहेवियर में चेंज नहीं लाएंगे, तभी हमारा ये जो गैप है महिला सशक्तिकरण का, ये कम नहीं होगा।
2: जी मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, और आपकी जानकारी के माध्यम से हमारे श्रोता लाभान्वित हुए और उन्होंने ये समझा कि हमें एक बैलेंस्ड अप्रोच की आवश्यकता है, चाहे वो शिक्षा की अगर हम बात करें तो शिक्षा भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, जागरूकता की बात करें तो जागरूकता भी इम्पॉर्टेंट है, और इसी तरह हमें समाज को भी सशक्त बनाना पड़ेगा, समाज में ये मैसेज देना पड़ेगा कि महिलाएं इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उनके भी अपने अधिकार हैं, खासतौर से अगर हम रूरल सोसाइटी की बात करते हैं, और हमें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक होना पड़ेगा। और जहां तक रीड इंडिया के विषय में मैं जानता हूं, तो रीड इंडिया की जो अप्रोच है वो काफी मैं समझता हूं कि एक बैलेंस्ड अप्रोच है, जिसमें आप विभिन्न आयामों पर काम कर रहे हैं और विमेन एम्पावरमेंट के लिए प्रयासरत हैं। तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट आयाम रीड का जो है, रीड महिलाओं, जहां भी महिलाओं से रिलेटेड सेंटर्स हैं या स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज करा रहा है, वहां पर लाइफ स्किल्स की चर्चा जरूर होती है। लाइफ स्किल्स के बारे में महिलाओं को बताया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं चाहता हूं कि श्रोताओं को आप बताएं कि लाइफ स्किल्स क्या हैं और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।
1: लाइफ स्किल्स तो एक जीवन को व्यतीत करने की शिक्षा है, और जब हम आम जिंदगी में, ये जो आपने आज महिला सशक्तिकरण की बात करी है या एजुकेशन की बात करी है, ये लाइफ स्किल्स के एक आई शुड से दैट एक कॉइन के दो साइड्स हैं। हम एजुकेट तो कर देते हैं, एकेडमिक एजुकेशन दे देते हैं, पर बच्चों को कभी लाइफ स्किल्स के बारे में नहीं सिखाते हैं। जो संस्कार हैं, जो वैल्यूज हैं, वो उनको फैमिली से मिलती हैं, और फैमिली अगर उन संस्कारों को, उन कल्चर को पीछे ही छोड़ देती है, तो वो लाइफ स्किल्स की बात समझते नहीं हैं दूर दूर तक। तो आज हमारे देश में जहां पे कल्चर इतना रिच है, आप कह रहे हैं कि औरतों के हाथ में शस्त्र थे और हमारी हिस्ट्री ये कहती है,
2: शास्त्र दोनों
1: थे, और अभी हमारी हिस्ट्री ये कह रही है, और पर आज के टाइम पे अगर हमारा कल्चर ही हमारी वैल्यू सिस्टम बनता है और वैल्यू सिस्टम ही हमारी लाइफ स्किल्स बनती है, तो कहीं ना कहीं हम अपने कल्चर को पीछे छोड़ते आ रहे हैं, अपनी लाइफ स्किल्स को भूलते आ रहे हैं। तो आज स्कूल्स में, कॉलेजेस में क्यों हमें जरूरत पड़ रही है कि हम लाइफ स्किल्स के बारे में बात करें? और लाइफ स्किल्स क्या है? आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी क्या होती है उसके बारे में जानना भी बहुत जरूरी है, और वो जानना, होलिस्टिक डेवलपमेंट कोई साइंस नहीं है, उसके पीछे लाइफ की, जिंदगी को, अपनी जिंदगी को कैसे जीना है उसकी शिक्षा दी जाती है। कैसे माँ बाप की इज्जत करनी है, कैसे एक महिला की इज्जत करनी है, कैसे अपनी बहन की इज्जत करनी है, कैसे अपनी पहचान बनानी है सोसाइटी में, कैसे अपने आप को सक्षम बनाना है शिक्षा के द्वारा और स्किल्स के द्वारा कि आप अपनी लाइफ को अच्छे से जी सकें। और इसके संदर्भ में मैं एक युवा पीढ़ी को ये भी मैसेज देना चाहूंगी कि उड़ान भरना तो बहुत आसान है, पर उड़ान की अगर डोर मजबूत नहीं है तो गिरना उससे भी आसान है।
2: जी, बिल्कुल
1: तो
2: सही।
1: इस चीज को, अपनी जिंदगी की उड़ान संभाल के चलने से, संभाल के उड़ने से, वैल्यू सिस्टम से, स्किल से अगर हम चलें, तो मुझे लगता है कि हम अपने देश को सोने की चिड़िया कहने में बहुत दूर नहीं रहेंगे।
2: जी मैम, बहुत अच्छी बात कही आपने, और इस समय भारत सरकार इस विषय पे काम कर भी रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है, और बहुत ही मतलब प्राइमरी सेक्शन से ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इम्पार्ट करने की बात है, और मैं समझता हूं कि आगामी एकेडमिक सत्र से ये चीजें शुरू भी हो जाएंगी। तो ये बहुत शुभ संकेत है। मुझे लगता है कि हमारी जो आने वाली पीढ़ी होगी उसके मन में ये सारी चीजें नहीं होंगी और महिलाओं को वो समान मतलब बराबर का दर्जा देगी। मैडम, आपकी ऑर्गेनाइजेशन फील्ड पे काम करती है, आपने महिलाओं को विभिन्न तरह की ट्रेनिंग्स दिलाई, उनको लाइफ स्किल्स के विषय में अवगत कराया है, और खास तौर से आपका जो मॉडल है रीड का, कम्युनिटी लाइब्रेरी रिसोर्स सेंटर का, तो वो भी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट को फोकस करता है। तो मैम, मैं कुछ जानना चाहूंगा आपसे कि जो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है महिलाओं का, कहीं ना कहीं ये ट्रेनिंग्स जो आप लोग दिलवाते हैं या सरकार दिलवा रही है, कहीं ना कहीं बहुत यूजफुल साबित होती है। तो आप अपने कुछ एक्सपीरियंस ऐसे शेयर करना चाहेंगी जहां पर आपने कुछ ट्रेनिंग्स ऐसी दिलवाई और महिलाओं ने समाज में एक अच्छा काम किया, अपना एंटरप्राइज शुरू किया, तो इसके बारे में थोड़ा सा हमें बताएं।
1: जो रीड का मॉडल है, हम एक गांव में जाते हैं, बात करते हैं, सीधा कम्युनिटी के साथ बात करते हैं और कहते हैं कि रीड आपके लिए किताबें लेकर आ रहा है, कंप्यूटर्स लेकर आ रहा है, आपकी महिलाओं को कुछ स्किल्स की ट्रेनिंग देना चाह रहा है, क्या आप हमारी बात से सहमत हैं? तो हम यहां पे एक कम्युनिटी लाइब्रेरी एंड रिसोर्स सेंटर बना देते हैं। जो लोग संस्कारी हैं और इसके वैल्यू समझते हैं, विजनरी हैं, वो हमें कहते हैं ये हमारा घर खाली पड़ा है, आप इसमें बना दीजिए। और यहाँ पे हम सारे समाज को बुला के, जो हमारे गांव के लोग हैं, वो यहाँ पे आके सेंटर को चलाएंगे, लाइब्रेरी को चलाएंगे। तो ये प्रयास मैंने 2007 में शुरू किया था और आज 2021 है, अभी तक तो मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा है। मैं जिस गांव में जाती हूँ उस गांव में मुझे बहुत ही सहानुभूति कह लीजिए या इज्जत कह लीजिए या रिस्पेक्ट कह लीजिए, वो मिलता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं यहाँ पे एग्जांपल भी देना चाहूंगी, रिटायर्ड पुलिस कमिश्नर हैं हरियाणा के, उन्होंने जब देखा कि मैं मेवात में काम कर रही हूँ और मैंने 2012 में या 2013 में उनको बुलाया एक हमारी लाइब्रेरी को इनॉग्रेट करने के लिए, तो उन्होंने तब से मुझे बोला कि मेरी हवेली खाली पड़ी है मेहंदीपुर गांव में, हरियाणा में झज्जर में, तो आप उसको सेंटर बना दीजिए। और 2014 से उस हवेली में हम काम कर रहे हैं। तो जो विजनरी लोग हैं, जिनको पता है कि हाँ अगर समाज ने हमें कुछ दिया है तो हमें, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज को कुछ वापस करें, तो वो लोग बहुत आगे बढ़कर आते हैं। और जहां तक कीर्ति जी आपने पूछा है कि महिलाओं ने कुछ किया है या नहीं किया, तो उत्तर प्रदेश का ही मैं एग्जांपल देती हूँ। हम एक कार्यक्रम चलाते हैं जो हम कहते हैं एम्बाइबिंग ग्रास वुमेन लीडर्स फ्रॉम द ग्रास रूट्स। वो हर हफ्ते हमारा कार्यक्रम आता है, आज भी 4 से 5 था। हमने महाराष्ट्र की एक लड़की को उस कार्यक्रम में बुलाया था और यूपी से पिछले हफ्ते और उससे पिछले हफ्ते में 2 महिलाओं को हमने प्रोग्राम में बुलाया था। और एक लड़की जो मुस्लिम लड़की है, फर्रा उसका नाम है, और आज वो 25 साल की है और वो कहती है मैंने अभी भी शादी नहीं करनी है। इट्स अ वेरी बिग अचीवमेंट। जहां वो 16 साल की थी, उसके पेरेंट्स शादी करना चाह रहे थे उसकी, आज वो 10वीं पास होने के बाद उसने कहा कि मैं ये कम्युनिटी लाइब्रेरी को चलाऊंगी और अपने गांव वालों को शिक्षित करूंगी। और उसने एक प्री स्कूल भी चलाया जिसमें 300 से ज्यादा छोटे बच्चे पढ़ते हैं, और सेंटर भी चलाती हैं जिसमें महिलाएं सिलाई सीखती हैं, ब्यूटी एंड वेलनेस का कार्यक्रम करती हैं, कंप्यूटर्स सीखते हैं बच्चे, और प्रोफेशनल कोर्सेस भी करते हैं। और जब पिछले हफ्ते मैं उससे चर्चा कर रही थी तो उसने कहा कि मैंने अपनी कमाई से अपने माँ बाप के लिए घर भी बनाया है, क्योंकि मुझे मेरे पेरेंट्स कहते थे, जो समाज के लोग थे, कहते थे कि आप अपनी बेटी की शादी नहीं कर रहे हैं। तो हमारा घर इतना टूटा फूटा था कि हम रात को सोते थे तो पानी छत से गिरता था। तो मैंने अपने माँ बाप को समझाया कि आपका अगर दामाद घर में आएगा और पानी गिरेगा छत से तो आपकी क्या इज्जत रहेगी। आज आपकी बेटी इतनी सक्षम है कि आपको घर बना के दे रही है, और कल को मैं शादी करती हूँ और दामाद आएगा तो आपको इज्जत की नजर से देखेगा। तो पहले मैं खुद सक्षम हूँ, फिर मैंने अपने परिवार को सक्षम किया, फिर मैंने अपने छोटे बहन भाइयों को सक्षम किया, आज मैं शादी के लायक हूँ और मैं शादी कर सकती हूँ।
2: बहुत अच्छी बात मैम आपने बताई, और ये जो आपने एग्जाम्पल दिया, मैं समझता हूँ कि हमारे युवा साथी इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे, तमाम महिलाएं सुन रही होंगी, तो उनके लिए भी बहुत मोटिवेटिंग रहेगा ये। हाँ, और मैडम इसी क्रम में मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जैसे आपने कुछ सक्सेस स्टोरीज हमसे शेयर करी, आपने कमिश्नर साहब का एग्जाम्पल बताया, तो ये मॉडल रेप्लीकेट करें और महिलाओं के जो अधिकार हैं या महिलाओं से रिलेटेड जो तमाम सरकार द्वारा कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं या आपका ऑर्गेनाइजेशन जो कार्यक्रम चला रहा है वो जनमानस तक पहुंचे, इसके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए?
1: हम ये जितनी भी महिलाओं के प्रति स्कीम्स हैं
2: जी,
1: हम सारा अपने सेंटर के थ्रू महिलाओं को इन्फॉर्मेशन देते हैं। मैं बात का एक एग्जांपल देती हूँ कि महिलाएं तो खुद इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, उनके बच्चों की हायर शिक्षा के लिए सरकार पैसा देती है और 70 महिलाओं के अकाउंट में वो पैसे डाले कि वो अपने बच्चों को हायर एजुकेशन दें, और 70 से ज्यादा महिलाओं को सिलाई मशीन लेके दी सरकार के पैसे से कि वो अपने घर का कार्यक्रम चलाएं, और बहुत सारे ऐसे महिलाओं को पैसा भी दिया गया कि वो अपनी बेटियों की शादी करें
2: जी।
1: तो स्कीम बताना एक बात है, पर स्कीम को प्रैक्टिकली लागू करके उनको बेनिफिट दिलाना ये अलग बात है। और बेनिफिट कौन दिलाएगा? वो समाज में जो लीडर्स हैं वो ही दिला सकते हैं। अगर हम सरकार के अगेंस्ट ही चलते रहेंगे तो हम कैसे महिलाओं को सक्षम बनाएंगे और कैसे हम उन तक ये जो कार्यक्रम है लेके जाएंगे? तो बहुत सारी ऐसी गैर सरकारी संस्थाएं हैं जो बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और मैं कहती हूँ आज का ये युग है, आप सरकार जो भी कर रही है अच्छा कर रही है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस भी अच्छा कर रही हैं, बट आज का समय हमें फिर हिस्ट्री रिपीट कर रहा है। हमें एक गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान पहचान, जो जान पहचान है उनकी पूरे गांव के साथ होनी चाहिए, और गांव की जान पहचान एक परिवार के साथ होनी चाहिए। अगर वो उनके साथ खड़े हैं, उनकी सहानुभूति उनके साथ है और उनको सक्षम बनाते हैं, यही एक मैसेज है आज के युग में सक्षमता की बात करने का। कोई भी इंडिविजुअल लीडर, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ये रोल प्ले नहीं कर सकती है उस हद तक जहां हम पहुंचना चाहते हैं। हम इतनी स्कीम्स लॉन्च कर रहे हैं, पर जो ज्ञानी हैं, जिनको नॉलेज है, जिनको टेक्नोलॉजी आती है, वो हैंड टू हैंड अपनी कम्युनिटी में, अपने समुदाय में उनका हाथ पकड़ के चलें, तभी इंडिया प्रोग्रेस कर सकता है।
2: जी मैम, और इस क्षेत्र में भी मैं समझता हूं कि सरकार काफी काम कर रही है। डिजिटल इंडिया की जो रूपरेखा है वो कहीं ना कहीं आपके इस विजन को सपोर्ट करती है। मैम, इसी क्रम में ये जानना चाहूंगा मैम कि जैसे अभी कोविड का समय आया और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो टेक्नोलॉजी फ्रेंडली नहीं थे, मगर उन्होंने वेबिनार्स आयोजित करनी शुरू कर दी, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स आयोजित करनी शुरू कर दी, जूम ऐप और तमाम बहुत सारी एप्स ऐसी हुई जिसका ऊपर यूज करना शुरू कर दिया गया। तो टेक्नोलॉजी का कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट बहुत बढ़ा और बहुत अच्छे से यूज किया जाने लगा। तो मैम, रूरल डेवलपमेंट के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी और उपयोगी कैसे साबित हो सकती है हम सभी लोगों के लिए, इसकी जानकारी हमें दो।
1: पांच चीजें हैं जो मैं पिछले बहुत सारे सालों से ये बोलती हूँ सबको। एक तो एक्सेसिबिलिटी इज अ बिग गैप, क्योंकि एक्सेस नहीं होगा टेक्नोलॉजी को तो वो समझेंगे कैसे। फोन खरीदने के लिए भी अगर पैसे नहीं है तो हम कैसे बात करेंगे कि हम टेक्नोलॉजी को लेके जा रहे हैं गांव में? और शहरों में तो लोगों के पास पांच पांच फोन है बिकॉज दे कैन अफोर्ड। और अफोर्डेबिलिटी दूसरी बात है कि पैसा होना चाहिए खरीदने के लिए। तीसरी बात है एडेप्टेबिलिटी, जो हम पॉपुलेशन के वर्ग को अगर हम डिवाइड करें, यूथ के पास फोन है पर 30-40 उम्र से लेके 60 साल की उम्र तक टेक्नोलॉजी को यूज करना भी आना चाहिए। मैं यहाँ पे अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं मलेशिया की कम्युनिटी लाइब्रेरीज में गई थी जहां पे ओल्ड पॉपुलेशन के लिए अलग से एक सेक्शन है, जहां पे वो ओल्ड पॉपुलेशन आती है, उनको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता पर वो सीखना चाहते हैं। और वहां पे टाइम डेडिकेटेड किया हुआ है कि आप 2 घंटे आइए, हम आपकी क्लास लेंगे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान देंगे और कैसे मोबाइल को यूज करना है, कैसे मोबाइल बैंकिंग को यूज करना है, ये सारी जानकारी भी हम उनको देंगे। तो कौन कर रहा है ये? लर्नेड पीपल आर डिवोटिंग देयर टाइम कि वो दूसरे लोगों को सिखाएं। तो टेक्नोलॉजी की लर्निंग भी एक बहुत बड़ी बात है इसमें। और पांचवा जो पॉइंट है जो मैं यहां पे सबसे जरूरी कहना चाहूंगी, एक्सेसिबिलिटी, अफोर्डेबिलिटी, एडेप्टेबिलिटी, लर्निंग स्किल्स और उसकी कॉन्टिन्यूटी। उसकी कॉन्टिन्यूटी भी बहुत जरूरी है। टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट चेंज हो रही है कि पिछली टेक्नोलॉजी को सीखते ही वो डिप्लीट हो जाती है, और जब नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, क्योंकि इट्स अ मार्केट ट्रेंड, अगर हम मार्केट ट्रेंड को अलग कर लें और सिखाने की कला को अलग कर लें, तो मुझे लगता है कि जो मैंने 5 पॉइंट्स यहां पे बताए हैं हम उनको बहुत अच्छे से लागू कर सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और क्योंकि आज हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो क्या उससे जुड़े कुछ कानून हैं ऐसे जो आप हमारे श्रोताओं को बताएं। और जैसा कि समय भी है, बहुत कम रह गया है, तो एक बार अपने श्रोताओं को हम पुनः बता दें कि आज हम बात कर रहे हैं महिला सशक्तिकरण पर, और इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर गीता मल्होत्रा को। तो श्रोताओं, ये कार्यक्रम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ध्यान से सुनिए, और अब तक जितने भी श्रोताओं ने सुना होगा वो अवश्य ही बहुत ही लाभान्वित हुए होंगे। तो अब
2: मैं, आपने जो सवाल पूछा उसमें एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि अगर जैसे अगर अपने प्रदेश सरकार की हम बात करते हैं तो महिलाओं के लिए जो यूपी पुलिस है उसने काफी काम किए हैं, जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो विंग है, महिलाओं के लिए तमाम हेल्पलाइंस उन्होंने लॉन्च करी है, डायल 112, विमेन पावर लाइन 1090, तो इस तरह की हेल्पलाइंस हर स्टेट में है। तो अगर महिला इन हेल्पलाइंस को यूज करती है तो मैं समझता हूं कहीं भी जो क्राइम है उनके अगेंस्ट वो अगर हो रहा है या नहीं, मतलब उन्हें ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति बन रही है, तो ये हेल्पलाइंस कहीं ना कहीं उनके लिए उपयोगी साबित होंगी। और जो लीगल लिटरेसी की बात कर रही हैं आप या कानून से रिलेटेड जो भी सवाल आपने पूछा, तो मैं समझता हूं बहुत कम समय में इसका जवाब दे पाना मुश्किल है। तो वो लोग इस हेल्पलाइन से अगर हेल्प लेते हैं तो उनकी जो कानून के प्रति जो जिज्ञासा है या जानकारी वो करना चाहते हैं उनको जरूर मदद मिलेगी।
0: बिल्कुल सर, बहुत ही अच्छी आपने बात बताई।
1: ज्योत्सना जी, जब आपने कानून की बात करी है तो मैं एक मैसेज देना चाहूंगी।
0: जी मैम,
1: हम कानून की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं? मैंने सबसे पहले कार्यक्रम में यह बोला है कि हमारा एटीट्यूड, हमारी सोच, एक महिला रात के 10 बजे के बाद सड़क पे अपने आप को सुरक्षित नहीं समझती है। क्यों? कौन है समुदाय कौन बना रहा है, एक महिला और एक पुरुष? अगर पुरुष की सोच ठीक है तो महिला को डर की बात नहीं है। तो हमें सबसे पहले अपनी सोच बदलनी है। हमने समुदाय में ऐसी सुरक्षा लानी है महिलाओं के लिए कि उनको कानून की जरूरत ही नहीं पड़े। अगर हम कानून के पीछे भागते रहेंगे तो हम कानूनी शिक्षा के बारे में ही जानकारी दे पाएंगे, जो लाइफ स्किल्स हैं, जो हमने वैल्यू सिस्टम की बात करी है, जो कल्चर की बात करी है। मुझे लगता है कि मदर इज द फर्स्ट टीचर ऑफ ए चाइल्ड, और जो शिक्षा शुरू होती है वो परिवार से शुरू होती है। और अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा दें कि एक लड़की और लड़का समान है, और अगर आपको समाज में इसका कहीं पे ये नजर आता है कि रिलेशनशिप क्या है, अगर उसको संभाल के आगे चलना है, तो उतनी नॉलेज तो पेरेंट्स भी दे सकते हैं।
0: बिल्कुल मैम, बहुत ही अच्छी आपने बात कही, और कुल मिला के बस यही है कि अगर हमें सशक्त होना है तो शिक्षित होना जरूरी है, लेकिन उसके साथ ही साथ जरूरी है कि हमारे अंदर मानवीय मूल्यों का संचार हो, हमारे अंदर सभी सद्गुणों का संचार हो। और जैसा कि कहा, माँ पहली पाठशाला होती है बच्चों की, तो बिल्कुल ये एक माँ की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों में अच्छे संस्कार डाले। और सर, जैसा कि हम आज वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो इसमें इग्नू का क्या रोल है, इसके बारे में आप हमारे श्रोताओं को कुछ
2: जी इस, क्योंकि समय कम बचा है तो मैं बहुत संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा। ये जानकारी मैं खास तौर से अपने लर्नर्स को देना चाहूंगा जिन्हें एडमिशन लेना है, जो ऑलरेडी जिन्होंने एडमिशन ले रखा है। जैसा कि डॉक्टर गीता जी ने भी अपने फीडबैक के दौरान, अपने सेशन के दौरान बताया कि सबसे जरूरी है कि महिलाओं को उनके विषय में जो भी कदम उठाए गए हैं उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो विश्वविद्यालय का भी ये प्रयास है कि जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो महिलाओं को तमाम सहूलियतें दे रही हैं, तमाम योजनाएं उनके बेटरमेंट के लिए लागू हो रही हैं, उनके विषय में हम लोग बताएं। तो इसके लिए हम लोग तमाम अवेयरनेस कार्यक्रम आयोजित करते हैं, उसमें ग्रामीण महिलाओं को सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वो इग्नू के कार्यक्रमों में जुड़ें। इसके लिए हम लोग कम्युनिटी मीटिंग्स आयोजित करते हैं, और वहां पर हम लोग जो वहां उस समुदाय के जो नॉलेजेबल्स हैं, जो लीडर्स हैं, उनको आमंत्रित करते हैं, और उनके द्वारा ये मैसेज देने का प्रयास किया जाता है कि शिक्षा एक बहुत इम्पॉर्टेंट टूल है जिससे जो है सोशल डेवलपमेंट किया जा सकता है, महिलाओं का उत्थान हो सकता है, महिला पुरुष मिलजुल के देश की उन्नति में, देश के प्रोग्रेस में समान रूप से भागीदार हो सकते हैं। तो ये हम लोग बताते हैं, और उसके बाद जो इग्नू द्वारा जो महिलाओं से संबंधित जो कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं, जो उनके स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज हमारे जो महिलाओं के लिए यूजफुल हैं उनके बारे में जानकारी दी जाती है, और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज इग्नू फ्री ऑफ कॉस्ट संचालित कर रहा है उसके विषय में जानकारी दी जाती है। और मैं समझता हूं 50-60% केसेज में लोग कन्विंस होते हैं और एडमिशन लेते हैं। महिलाओं के लिए हम लोगों ने स्पेसिफिक सेंटर्स भी बना रखे हैं जहां पर केवल महिलाएं ही पढ़ाई करती हैं, और उनसे संबंधित कोर्सेज लॉन्च किए गए हैं जिसमें जिससे उनका अध्ययन और जो उनके नॉलेज का लेवल है हम लोग उसको बढ़ा सकें। और जो वर्क प्लेस पे महिलाएं काम कर रही हैं, जो हमारी विमेन स्टूडेंट्स हैं उनको सहूलियत मिले। तो जो भारत सरकार ने जो गाइडलाइंस इस समय इम्प्लीमेंट कर रखी है इग्नू उसको पूरा फॉलो करता है, वैसे ही सारे कानून जो है हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं अपने क्षेत्रीय केंद्र के माध्यम से। तो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों का ये प्रयास है कि महिलाओं को हम लोग ज्यादा से ज्यादा अवसर प्रदान करें जैसे कि वो शिक्षित हो सकें और सशक्त हो सकें।
0: बिल्कुल सर, आपने आज बहुत ही अच्छी जानकारी दी, और मैम हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे श्रोताओं को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: मैं आपके कार्यक्रम का बहुत बहुत आई शुड से कि थैंक्स टू यू एंड डॉक्टर कीर्ति की जिन्होंने मुझे बुलाया, और मैं वैसे तो गुड़गांव में रहती हूँ, आज मैं लखनऊ में थी तो एक अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए अपनी बात कहने की। और मुझे लगता है कि जितने भी श्रोता इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जो भी मैंने छोटी बात बोली अगर उसका अमल करेंगे तो मुझे लगता है कि इसका रिजल्ट उनको जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बिल्कुल मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो श्रोताओं, आज जो बात निकलकर सामने आई है वो यही है कि शिक्षा हमारे जीवन में सबसे बड़ा हथियार है, तो अगर आप शिक्षित होते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सब के साथ जैसा कि मैम ने बताया मानवीय गुणों का होना बहुत जरूरी है। तो अपने बच्चों में ये संस्कार आप बचपन से डेवलप करिए कि बच्चे सुबह उठते ही करें सबसे पहले अपने ईश्वर का ध्यान, साथ ही साथ बड़ों का सम्मान करें और अपने बच्चों को एक अच्छा और नेक और सच्चा इंसान बनाएं, तो जीवन में हम सब प्रगति की ओर जरूर अग्रसर होंगे। और इसी के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करने की अनुमति दीजिए अपनी दोस्त ज्योत्सना को, लेकिन सुनते रहिए ज्ञानवाणी लखनऊ FM 105.6 मेगाहर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर, जहां कार्यक्रमों का सिलसिला रहेगा जारी रात्रि 10 बजे तक।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: नमस्कार श्रोताओं, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं महिपाल और मेरे साथ हैं आज आशा।
1: श्रोताओं, मेरा भी आपको प्यार भरा नमस्कार।
0: हम अपने कार्यक्रम से नए जुड़े दोस्तों को भी बता दें कि इस कार्यक्रम में हम खासकर उन विषयों पर बात करते हैं
1: जो हमारे समाज और स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं।
0: तो आशा, आज हम कौन से विषय पर चर्चा करने वाले हैं?
1: महिपाल, हमारे देश में ऐसे कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं जिनके सपने भी बहुत हैं, वह रिश्ते भी बनाना चाहते हैं पर बना नहीं पाते। उनका दुनिया को देखने का अपना ही तरीका है।
0: आज हम अपने कार्यक्रम में ऑटिज्म विषय पर ही बात करेंगे।

0: दोस्तों, ऑटिज्म एक ऐसी मानसिक स्थिति है जिसमें बच्चे अलग ढंग से अपने आप में खोए रहते हैं और चीजों के प्रति उनका अलग तरह का लगाव होता है। कई बार पास बुलाए जाने पर भी वे कोई प्रतिक्रिया नहीं करते हैं।
1: साथ ही वे दूसरे बच्चों के साथ मेलजोल और खेलने में कठिनाई महसूस करते हैं। भय, संकट या वास्तविक खतरों की समझ से अनजान होते हैं।
0: आशा, ऑटिज्म की अक्सर मानसिक असंतुलन या बीमारी से तुलना की जाती है, लेकिन ऑटिज्म के लक्षण और इलाज पूरी तरह से अलग होते हैं।
1: दोस्तों, यह लक्षण बचपन में ही दिखने शुरू हो जाते हैं और फिर यह सारी जिंदगी रहते हैं, लेकिन बच्चा देखने में आम बच्चों की तरह ही दिखता है।
0: आशा, कई बार देखा जाता है कि ऑटिस्टिक बच्चे और उनके परिवार वालों को कई सामाजिक मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हो महिपाल। ऑटिस्टिक बच्चों को आम बच्चों से अलग रखा जाता है, क्योंकि इन बच्चों के विकास का मापदंड दूसरे बच्चों से अलग होता है और इनकी विकासात्मक असमर्थता के कारण ही इन्हें समाज हीन दृष्टि से देखता है
0: और इस कारण उनके परिवार वाले काफी चिंतित और मायूस हो जाते हैं।
1: ऐसे में ऑटिज्म से ग्रस्त बच्चे के माता पिता के सामने चुनौतियों की कमी नहीं होती।
0: दोस्तों, ऐसे ही एक माँ से हमने बात करी जिनका नाम है पूनम।
2: मेरे बेटे को बहुत थोड़ा सा है ऑटिज्म, मतलब उसका ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है माइल्ड ऑटिज्म, तो इसलिए उसका सिर्फ स्पीच इफेक्ट हुआ है और कुछ एक उसका व्यवहार में जो कुछ अलग है दूसरों से। तो इसके लिए क्या होता है, कई बार जैसे लोग हैं सोचते हैं कि ये बच्चा ऐसे है और ठीक दिख रहा है, लेकिन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, इस तरह से इसका व्यवहार अलग सा क्यों है, तो उनको समझाना बहुत मुश्किल होता है उस टाइम पर कि इस बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम है। लेकिन और मेरे बच्चे का जो सामाजिक व्यवहार है वो उसको सिखाने में मुझे काफी वक्त लगा उसको।
1: दोस्तों, हमारे साथ शिखा जी भी हैं, तो आइए उनसे बात करते हैं।
2: मेरे बेटे को जब डायग्नोसिस मिला था वो 4 साल का था, वो स्कूल जाता था, तो वो स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुझे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। टीचर्स की लगातार कंप्लेंट्स आती थी, प्रिंसिपल ने मुझे कई बार बुलाया कि आपका बेटा ये नहीं करता, उसका जॉइंट अटेंशन में प्रॉब्लम है, क्लास में लेट जाता है और दूसरे बच्चों को पुश करता है, इस तरह की दिक्कतें थी। वो उसको समझ नहीं पा रहे थे कि वो इस तरह क्यों करता है। जैसे ही उसका जब डायग्नोसिस मिला मुझे, तो मैंने बिल्कुल भी देर नहीं करी और मैंने खुद को अपने आप को ट्रेन करना शुरू करा और उसको समझने के लिए मैंने काफी बुक्स पढ़नी शुरू करी ऑटिज्म रिलेटेड, और काफी लोगों से मिलके और जो लोग इसके बारे में ज्यादा जानते हैं उनसे बात करना शुरू किया, ट्रेनिंग करना शुरू करा। और उसके बाद मैंने देखा, जब मैंने स्कूल वालों से जाके मिली, उनको बताया, उनको डिस्क्लोज करा कि ये प्रॉब्लम है, इसीलिए मेरे बेटे को ये चीजें फेस करनी पड़ी है, तो फिर मुझे जो पॉजिटिव रिस्पांस मिला स्कूल वालों की तरफ से, वो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तो इसलिए जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है, डायग्नोसिस बहुत जरूरी है और एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। जिस दिन आप अपना बच्चे को जैसा है उसी तरीके से एक्सेप्ट कर पाएंगे, सोसाइटी भी एक्सेप्ट करने में कोई देर नहीं करेगी। जरूरत सिर्फ ये है कि आपको भी कदम बढ़ाना है, और आप कदम बढ़ाएंगे तो सोसाइटी अपने आप रिस्पॉन्स पॉजिटिव देना शुरू करेगी।

0: ऑटिस्टिक बच्चे का अभिभावक होना अपने आप में एक चुनौती है।
1: श्रोताओं, इस बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है शुभांगी वैद्य।
2: मेरा खुद का बच्चा ऑटिस्टिक है और मैंने अपने शोध के दौरान कई ऐसे परिवारों से बात की है जिनके बच्चों को ऑटिज्म डायग्नोज हुआ है, और इन सारे अनुभवों के दौरान मुझे ये बात देखने को मिली है कि ऑटिज्म के बारे में लोगों की जानकारी बहुत सीमित है। हमारे बच्चों के कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, कुछ ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जो लोगों को बहुत विचित्र टाइप के लगते हैं। मिसाल के तौर पर हाथ फड़फड़ाना, एक जगह पे गोल गोल घूमना, खुद से बातें करना, बिना किसी वजह हंसना या रोना, और इसकी वजह से पेरेंट्स भी काफी हद तक मायूस हो जाते हैं। वो अपने बच्चों को कहीं पब्लिक प्लेसेस में लेके जाना ही पसंद करते हैं क्योंकि उनके अंदर ये एक एहसास होता है कि लोग हमारे बच्चे को देख रहे हैं, हंस रहे हैं, जजमेंट पास कर रहे हैं, उसको पागल के नाम से मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और ये पेरेंट्स के लिए बहुत अधिक डिप्रेसिंग एक्सपीरियंस होता है। और जब तक पेरेंट्स और बच्चों के साथ रहने वाले लोग ये समझ नहीं पाएंगे कि जो हमारा बच्चा है वो जैसा भी है वो पहले हमारा बच्चा है, इस एक्सेप्टेंस तक आने में नेचुरली टाइम लगता है। ये कहना बहुत आसान है लेकिन इस बात को अपने डे टू डे लाइफ में इसका अनुकरण करना ये बहुत मुश्किल होता है। एक और बहुत अहम मुद्दा जो ये है कि बच्चे का जो केयर है, बच्चे की परवरिश, और सिर्फ बचपन में नहीं उम्र भर, जीवन भर जो बच्चे का केयर है ये पूरी तरह से परिवार के ऊपर निर्भर है, और परिवार के अलावा और ऐसी कोई भी संस्था नहीं है जो ऐसे मतलब डिसेबल लोगों की सहायता करता है या उन्हें सपोर्ट देता है। हम लोगों के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, इसका जिम्मा कौन लेगा?

0: आशा, कल मैं एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें लिखा था कि पेरेंट्स अपने बच्चे के साथ कैसे समझौता करते हैं। उस किताब में एक माँ ने लिखा है कि साज की अगर एक तार भी टूट जाए तो संगीतकार उसे छोड़ता नहीं, बल्कि उसे और भी सुंदर तरीके से बजाता है।
1: इसी संदर्भ में मुझे एक पिता द्वारा अपने बेटे के लिए लिखी बात याद आ गई है। उन्होंने अपने बेटे पर लिखा है कि बेशक मेरा बेटा कुछ दूसरे बच्चों की तरह नहीं कर पाता, पर वो मुझे पूरी सहानुभूति प्यार देता है और अपनी जिंदगी की परिस्थिति से जूझता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि मेरा बेटा ही मेरा हीरो है।
0: श्रोताओं, ऑटिज्म एक ऐसी आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है जिससे आज भारत में लगभग 20 लाख लोग प्रभावित हैं।
1: और महिपाल, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑटिज्म लड़कियों की अपेक्षा लड़कों में 4 गुना ज्यादा पाया जाता है।
0: दोस्तों, इस विषय पर और अधिक बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इंदु चेसवाल, जो एक्शन फॉर ऑटिज्म ओपन डोर स्कूल के एजुकेशन डायरेक्टर हैं। इंदु चेसवाल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
0: सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, इसका क्या उद्देश्य है?
2: ऑटिज्म जो है ये एक काफी कॉमन विकार है, परंतु इसके बारे में सिर्फ इंडिया में ही नहीं, सारे विश्व में देखा जाए तो ज्यादा जानकारी नहीं है। तो इसीलिए हम मनाते हैं वर्ल्ड डिसेबिलिटी डे, लेकिन इसको डे न कह के इसको वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे का नाम दिया है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आज के दिन हम ज्यादा से ज्यादा जागरूकता जो है, अवेयरनेस जो है ऑटिज्म की क्रिएट कर सके, क्योंकि इसकी बहुत जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन कंडीशन है, परंतु इसके बारे में नॉलेज बहुत कम है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म वंशागत है, यानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है?
2: कई परिवार हैं जिनमें एक से अधिक बच्चे पाए जाते हैं जिनमें ऑटिज्म है, या कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जिनमें कुछ लक्षण ऑटिज्म से मिलते जुलते हों, परंतु आज तक ये सिद्ध नहीं हुआ कि ये पारिवारिक है। बहुत अनुसंधान चल रहा है, रिसर्च बहुत चल रही है, और ये माना जा रहा है कि ऑटिज्म जो है किसी एक कारण से नहीं होता, ये कॉम्बिनेशन होते हैं, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, और हाँ, शायद उनमें से एक कारण पारिवारिक भी हो सकता है।
0: इंदु जी, माता पिता को कैसे पता लगेगा कि उनके बच्चे को ऑटिज्म है?
2: ये कई बार बहुत कठिन होता है। जब बच्चा छोटा होता है तो वो सामान्य बच्चों की तरह लगता है, क्योंकि उसमें कोई, उसको देखने में कुछ अटपटापन दिखता नहीं है, उसकी फिजिकल अपीयरेंस आम बच्चों की तरह होती है। जब बच्चों की उम्र होती है बात करने की, लोगों से संपर्क बनाने की, रिलेशनशिप्स बनाने की, तब पेरेंट्स नोटिस करते हैं, माता पिता ये देखते हैं कि उनके बच्चों के व्यवहार कुछ अजीब से हैं। जैसे जब उसे नाम से पुकारा जाए तो वह कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाता, माता पिता को ऐसा लगता है कि वो सुन ही नहीं रहा, परंतु वो म्यूजिक तो सुनता है और दूसरी आवाजों के प्रति भी वो संवेदनशील होता है। फिर अपना नाम सुन के वो एक रिएक्शन या एक रिस्पॉन्स क्यों नहीं देता? उसके बाद आंख मिलाकर संपर्क बनाने में, जिसे हम आई कॉन्टैक्ट कहते हैं, उसमें इन बच्चों को दिक्कत आती है। अपनी उम्र के दूसरे बच्चों के साथ घुलने मिलने में, उनके साथ खेल में उनको परेशानी होती है, और माता पिता देखते हैं कि 1-1.5 साल का बच्चा हो गया, 2 साल का भी हो गया, खिलौनों से वो नए नए खेल नहीं रचा पा रहा, वो एक बहुत ही, जिसको हम बोलते हैं रूढ़िबद्ध, एक स्टीरियोटाइप्ड मैनर में खेल रहा है। तो ये कुछ चीजें हैं जिनसे माता पिता थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, और इस उम्र तक हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा बोलने भी लगेगा, और यहाँ पे वो बोल भी नहीं पाता, या बोलता है तो बहुत अटपटे ढंग से बोलता है। तो लगभग 2 साल की एज पे आकर माता पिता थोड़े से अवेयर होते हैं कि शायद बच्चा थोड़ा अलग है।
0: इंदु जी, क्या ऑटिज्म को रोका जा सकता है?
2: ऑटिज्म कोई बीमारी नहीं है, तो इसीलिए इसका कोई रोकथाम भी नहीं है। बच्चा इस दुनिया में ऑटिज्म के साथ ही आता है, और ये लाइफ लॉन्ग कंडीशन है। कोई दवा ऐसी नहीं है जो इसका उपचार हो। हाँ, कई बार ऑटिज्म के लक्षण बहुत तीव्र हो जाते हैं और माता पिता को और दूसरे लोगों को काफी दिक्कतें आने लगती हैं, तो कुछ ऐसी दवाएं हैं जो उन लक्षणों को कुछ कम कर देंगी, लेकिन ऑटिज्म हमेशा रहेगा।
0: इंदु जी, ऑटिज्म और मंदबुद्धिता में क्या अंतर है?
2: ऑटिज्म और मंदबुद्धि में काफी अंतर है। पहली चीज तो ये है कि ये कोई जरूरी नहीं है कि जिस व्यक्ति को ऑटिज्म है उसकी उसे मंद बुद्धि भी होगी। हो सकता है कि उसकी जो इंटेलिजेंस है वो उसकी उम्र के और लोगों की तरह हो। जो मुख्य दोनों चीजों में फर्क है वो ये है कि जब किसी को मंद बुद्धि होती है तो उसका जो इंटेलिजेंस होता है और यहां बोल सकते हैं उसकी जो डेवलपमेंट होती है उसका विकास हर एरिया में एक ही तरह से अफेक्टेड होगा। आपके पास एक 10 साल का बच्चा है और जिसका मानसिक विकास अभी 4 साल पर चल रहा है तो उसका सभी कुछ, उसका उठना बैठना, बात करना, अपने शरीर का इस्तेमाल करना, बोलना, उसका सामाजिक व्यवहार, सब कुछ 4 साल के लगभग होगा। परंतु ऑटिज्म में हम कहते हैं एक बहुत ही उतार चढ़ाव वाली डेवलपमेंट होती है। बच्चे के विकास में हम देखते हैं कि कई बार ये देख कि उसकी बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो उसकी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह ही होती हैं, जैसे कि उसने उठना बैठना चलना सही एज में स्टार्ट किया है और वो अपना शरीर सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कुछ उसके कौशल ऐसे भी हो सकते हैं जो उसकी उम्र से बहुत अधिक भी हो। बहुत से ऐसे ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं कि जिनमें बहुत ही गणित के बहुत ही गुण होते हैं, वो मल्टीप्लिकेशंस और नंबर्स में बहुत स्किल होती है उनकी। तो कुछ उनके ऐसे स्पेशल स्किल भी हो सकते हैं जो उनकी एज से बढ़कर हों। और जैसे हमें मालूम ही है कि कम्युनिकेशन में और सामाजिक व्यवहार में उनके जो कौशल हैं वो बहुत कम रहते हैं अपनी एज से। तो मेन फर्क दोनों चीजों में ये है कि जहां मानसिक मंदता होने से बच्चे का विकास एक ही तरह से, हम बोलते हैं एक इवन तरह से वो अफेक्टेड है, लेकिन ऑटिज्म में उसकी डेवलपमेंट ऊपर नीचे होती है और इससे कई बार उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं, उनके जो माता पिता हैं, वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि इसका लेवल है क्या।
0: इंदु जी, ऑटिस्टिक बच्चों को जीवन की मुख्य धारा में किस हद तक शामिल किया जा सकता है और उनके लिए कौन से विशेष प्रावधान हैं?
2: कोई भी बच्चा हो जिसे किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो ऑटिज्म हो या कुछ और हो, हम जानते हैं कि आजकल UNCRPD और सर्व शिक्षा अभियान और इन सभी चीजों के अंतर्गत पूरी कोशिश की जा रही है कि इन्हें मुख्य धारा में जितना शामिल किया जा सके कोशिश करनी है। परंतु ये स्थिति हम लोग पूरी तरह यहाँ पहुंचने में काफी समय लगाएंगे और हर एक बच्चा जिसे ऑटिज्म है वो बहुत ज्यादा प्रोग्रेस दिखा सकता है और उसे मुख्य धारा में हम लोग शामिल कर सकते हैं, लेकिन उसे कुछ सपोर्ट जरूर चाहिए होगा इस समाज में एडजस्ट करने के लिए। हम जानते हैं कि कितना कठिन है समाज में एडजस्ट करना। जो चीजें हम लोग इतनी आराम से कर लेते हैं वो बुनियादी चीजें भी इन बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। तो उनको एक, हम जो बोलते हैं कि साथ साथ एक और प्रोग्राम चाहिए होता है जो उन्हें हेल्प करता है मुख्य धारा में बने रहने के लिए। और स्पेशल प्रावधान इन बच्चों के लिए है। ये बड़े दुख की बात है कि अभी ये खाली मेट्रोज में ही उपलब्ध हैं और छोटे शहरों में अभी भी ऑटिज्म की जानकारी नहीं है। इन बच्चों को सिखाने के तरीके अलग होते हैं। इनको हम लोग जितना ज्यादा से ज्यादा विजुअल्स की हेल्प से सिखा सके और इनकी ट्रेनिंग में जितना हम भाषा लैंग्वेज प्रोग्राम इंट्रोड्यूस कर सके उतना अच्छा होगा।
0: इंदु जी, सरकार की ओर से क्या इस दिशा में कोई प्रयास किए जा रहे हैं?
2: जी हाँ, हाल ही में ऑटिज्म से प्रभावित व्यक्तियों के लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, पहले काफी दिक्कत थी सर्टिफिकेट कोई बना नहीं पा रहे थे कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए असेसमेंट का, तो अब पिछले साल इनके लिए एक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और उस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के आधार पर काफी जो ऑटिस्टिक व्यक्ति हैं उनको सुविधाएं भी मिल रही हैं, जैसे कि इनकम टैक्स में रिबेट मिलना। और दूसरी चीज है कि अगर ये कोई लाइक यात्रा पे जा रहे हैं, रेल यात्रा पे जा रहे हैं, तो उसमें कंसेशन मिल पाना। नेशनल ट्रस्ट में ऑटिज्म एक डिसेबिलिटी के रूप में इसको रिकग्निशन मिला है। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया ऑटिज्म के लिए टीचर ट्रेनिंग का कोर्स चला रही है। तो इस प्रकार से काफी कुछ हो रहा है। कुछ संस्थाएं जो ऑटिस्टिक बच्चों के लिए स्कूल चला रहे हैं उनके प्रोग्राम्स को थोड़ी बहुत सहायता भी मिलती है सरकार से। तो इस दिशा में कार्य शुरू तो हुआ है, लेकिन क्योंकि हम देखते हैं कि नंबर्स बहुत हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें ऑटिज्म है, तो और भी सुविधाओं की जरूरत है, लेकिन प्रयास अभी आरंभ हुए हैं।
0: इंदु जी, ऑटिज्म के लिए कोई हेल्पलाइन है जिनसे लोग जानकारी प्राप्त कर सकें?
2: ये जो अर्थ आस्था नाम से एनजीओ है, नेशनल ट्रस्ट की हेल्पलाइन इनके संस्था से चलती है। इसका नंबर है 011-264-6650। और एक बार और दोहराती हूँ, 011-264-6650। ये है नंबर अर्थ आस्था का। इसके अलावा और भी कई संस्थाएं हैं जो ऑटिज्म के लिए काम कर रही हैं। एक्शन फॉर ऑटिज्म का नंबर लिया जा सकता है, ये दिल्ली में है, और इनका फोन नंबर है 011-40-54-0991। और इन नंबर्स पे फोन करें तो जरूर सही इन्फॉर्मेशन मिलेगी।
0: इंदु जी, जाते जाते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
2: मैं ये कहना चाहूंगी कि ऑटिज्म जो है ये एक काफी, जो हम बोलते हैं कि व्यापक स्थिति है, कि बहुत हम लोग देखते हैं कि हर 150 में से एक व्यक्ति में कुछ न कुछ ऑटिज्म के लक्षण होते हैं। हालांकि ये जो आंकड़े हैं ये हिंदुस्तान से नहीं, हमारी कंट्री में नहीं मिले हैं, क्योंकि कभी कोई ऐसा सर्वे ही नहीं हुआ, कोई डेटा ही नहीं कलेक्ट हुआ, अब ये सब काम शुरू हो रहे हैं। तो जब ये कॉमन डिसऑर्डर है तो बहुत जरूरी है कि लोगों में इसकी जागरूकता हो, ताकि जिन लोगों को ऑटिज्म है वो भी हमारी सोसाइटी में आराम का जीवन व्यतीत कर सके और दूसरे लोगों की तरह इसकी, इसमें हर चीज में शामिल हो सके, और जो उनकी कैपेबिलिटीज हैं, जो वो कर सकते हैं, उसका वो पूरा योगदान हमारे समाज को दें और उस समाज का एक हिस्सा बन के रहें। तो वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे के दिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम जितनी अवेयरनेस, जितनी जानकारी ऑटिज्म की दे सके हम दें।
0: इंदु जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी, हमें और हमारे श्रोताओं को बहुत उपयोगी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।

0: दोस्तों, इंदु जी से हमने ऑटिज्म के बारे में जाना कि यह क्या है और किस तरह से ऑटिस्टिक लोग भी जिंदगी की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं।
1: आशा सरकार के साथ बहुत सी गैर सरकारी संस्थाएं भी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं, जैसे एक्शन फॉर ऑटिज्म, तमन्ना, राजकुमारी अमृत कौर चाइल्ड स्टडी सेंटर, स्कूल ऑफ होप, आसमान आदि। ऐसी बहुत सी संस्थाएं हैं जो इस विषय पर कार्य कर रही हैं।
0: दोस्तों, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि ऑटिज्म एक आजीवन रहने वाली जटिल विकासात्मक असमर्थता है,
1: पर प्रारंभिक निदान और उचित प्रशिक्षण द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति और विकास देखे जा सकते हैं।
0: ऑटिस्टिक बच्चे भी अपने आप में बहुत सारी काबिलियत रखते हैं।

0: कैसे हैं सभी लोग?
1: अच्छी हूँ मैं।
0: सब अच्छे हैं? सब सब सबकी फैमिलीज ठीक हैं? एवरीबडी इज डूइंग वेल। तो अभी का जो सेशन है ये सेवेंथ सेशन है। हमने अभी तक 7 सेशन करे हैं। हालांकि जो हमने सीरीज शुरू करी थी उसमें एक एक टॉपिक अभी बाकी है। बट व्हाट आई थॉट वाज कि प्रोबेबली वी कैन डू समथिंग व्हिच इज आल्सो रिलेटेड, व्हिच इज अ प्रिपरेशन फॉर अ जॉब इंटरव्यू। तो आज का सेशन मैंने उस तरीके से डिजाइन किया है। होपफुली ये हम सभी के लिए और हमारे जो बेनिफिशरीज जो इस ट्रेनिंग में आगे हमारे साथ जुड़ेंगे उनके लिए बेनिफिशियल हो। अभी तक जो हमने बात करी थी लाइफ स्किल्स की, आई एम श्योर आप अपने आगे बेनिफिशरीज के साथ वो सेशंस होस्ट कर रहे हैं। अगर कोई चैलेंज है, अगर कोई इश्यूज हैं, तो हम अलग से एक दिन एक सेशन कर सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था, जिसमें कि हम कुछ क्वेरी है तो आपस में मिलके उसे सॉल्व कर सकते हैं। सो नॉट टेकिंग मोर टाइम ऑन दिस, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। अगेन एज आई सेड कि दिस इज अ लाइफ स्किल सेशन फॉर प्रोफेशनल्स, मतलब कि कोई जॉब करना चाहता है या कोई अपना काम करना चाहता है, तो ये लाइफ स्किल के सेशंस उन बेनिफिशरीज के लिए हैं जो कि जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, हायर स्टडीज के लिए तैयारी कर रहे हैं या इवन अपना कोई काम करना चाहते हैं। तो कुछ ऐसी स्किल्स हैं जिससे कि उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, जिससे कि हम लोग दूसरे से अलग दिख सकते हैं। ये सेशंस उसके बारे में है। आज का जो सेशन है, आई जस्ट शेयर माय स्लाइड्स। जैसे कि हमने बताया कि आज का ये सेशन हमने ये रखा है कि अगर हमें सब आ गया, हम कॉन्फिडेंट भी हैं, हमें अपने बारे में पूरा पता भी है कि हमारी क्या क्या चीज हमें है और किस तरह के जॉब के लिए हम जा सकते हैं, क्या हमें कोई कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स का जॉब के लिए अप्लाई करना है या टेक्नोलॉजी में कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या जो ट्रेनिंग हम हॉस्पिटैलिटी में दे रहे हैं उसका कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है या हम जो रेडियो और ऑडियो वीडियो एडिटिंग की जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसमें हमें कोई जॉब के लिए अप्लाई करना है, टैली की ट्रेनिंग है, टैली में जॉब के लिए अप्लाई करना है। तो हमारे बेनिफिशरीज को अभी तक कुछ ना कुछ स्किल्स तो आई है, या तो हमारे सेंटर से उन्होंने वो स्किल ली है या फिर उनको पहले से वो आती थी या किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से उन्होंने वो स्किल को एक्वायर कर लिया। तो ये हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बेनिफिशियरी है उसको या तो आता है या वो सीख रहा है या सीख रही है या सीखना चाहता है या सीखना चाहती है। लेकिन
1: हाँ
0: कई बार क्या होता है, स्किल आते हुए भी जो हमें आता है वो आते हुए भी हम अपनी बात कहने में हम डिलीवर नहीं कर पाते जब हम एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाते हैं। इंटरव्यू के लिए जब हम जाते हैं तो हमारे दिमाग में एक हवा बना रहता है कि कोई सामने वाला मुझे इवैल्यूएट करेगा और मुझे इवैल्यूएट करेगा तो मुझे अपना बेस्ट प्रेजेंट करना है। तो वो एक जो डर बैठ जाता है हमारे दिमाग में या एक खौफ बैठ जाता है, उसकी वजह से कई बार हम लोग उतने अच्छे से अपना इंटरव्यू नहीं दे पाते।

0: होगी कि नहीं वो आपकी डिलीवरी और इंटरव्यू पे डिपेंड करता है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। अगर कोई एक जॉब इंटरव्यू के लिए जाता है तो मार्किंग सिस्टम होता है, मान लीजिए उसी जॉब के लिए 100 लोग अपियर कर रहे हैं, 200 लोग अपियर कर रहे हैं, 10 लोग अपियर कर रहे हैं, तो किस किन पॉइंट्स पे आपको बेटर मार्क्स मिल सकते हैं, या एटलीस्ट आपके मार्क्स कट ना हो जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं, या आपका इम्प्रेशन डाउन ना हो जब आप एक इंटरव्यू पैनल में जाते हैं या वन टू वन जाते हैं। तो जॉब इंटरव्यू क्या होता है, कोई कोई बता सकते हैं? आज हमारे साथ जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से कभी किसी ने कोई इंटरव्यू दिया है? कोई मुझे वॉलंटियर कर सकता है कि इंटरव्यू क्या होता है? जॉब इंटरव्यू बहुत सिंपल सी चीज है, हम लोगों ने सभी ने जॉब इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू के बिना तो शायद किसी को भी जॉब नहीं मिला होगा। आई हैव नेवर सीन एनीबडी, इवन टॉप पोजिशंस में तो मल्टीपल इंटरव्यू होते हैं, आठ आठ नौ नौ लेयर्स ऑफ इंटरव्यू होती है अगर एक टॉप पोजिशन पे किसी को रखा जा रहा है। तो कैसा है जॉब इंटरव्यू क्या होता है
1: मैम?
0: जी कौन बोल रहे हैं?
1: आकांक्षा।
0: जी आकांक्षा, आप कौन से सेंटर से हैं?
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, आप कौन से सेंटर से हैं आकांक्षा?
1: महाराष्ट्र।
0: महाराष्ट्र
1: मैम
0: बोलिए।
1: जॉब इंटरव्यू में इंटरव्यू भी रहते हैं, और वो बहुत से मतलब उस इंटरव्यू देने के लिए बहुत से लोग जाते हैं, वो इंटरव्यू हर एक से कुछ क्वेश्चन करते हैं, और वो जो इंटरव्यू होते हैं अपने क्वेश्चन के बेस पे जैसा उनको आंसर मिलता है वो उनमें से सेलेक्ट करते हैं कि किसको ये जॉब प्रोवाइड करना चाहिए, कौन इस जॉब के लायक है।
0: तो वो इंटरव्यू में क्या देखते हैं? जैसे अगर आप कोई इंटरव्यू ले रही हैं और मैं अपीयर कर रही हूँ एक इंटरव्यू में, तो आप मेरे में क्या देखना चाहेंगे आकांक्षा?
1: मैम मैं ये देखना चाहूंगी कि जो जॉब मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ, क्या आप उस जॉब को कर सकती हो, उस लायक हो या नहीं।
0: तो आप
1: अगर कोई फाइनेंशियल चीज हुआ तो मैं आपसे फाइनेंस के बारे में करके कुछ क्वेश्चन करूंगी एंड ऑल।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आप मुझे इवैल्यूएट करेंगी कि जो पोस्ट निकाली है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, मैं या मेरे साथ जो 10 लोग आए हैं उनमें से कौन इस पोजीशन के लिए बेस्ट सूटेड है, तो उस पोजीशन के लिए आप क्या क्या इवैल्यूएट करेंगे? आकांक्षा के अलावा कोई और भी बता सकता है? अब हमारे सामने केस है कि हम एक पोजीशन के लिए कैंडिडेट को इवैल्यूएट कर रहे हैं, ये जॉब इंटरव्यू होता है, ये जॉब इंटरव्यू का मकसद होता है। तो अब कोई बता सकता है कि as a evaluator आप क्या evaluate करेंगे? आपके सामने मेरा CV रखा है, आप CV में पढ़ लीजिए कि मुझे मुझे क्या आता है, मैंने क्या किया है, क्या नहीं करा। आप फिर जॉब इंटरव्यू क्यों कर रहे हैं?
2: गुड आफ्टरनून मैम।
0: गुड आफ्टरनून जी।
2: मैम दिस इज निशा फ्रॉम वजीराबाद सेंटर।
0: नमस्ते निशा जी, कैसे हैं?
2: मैम बिल्कुल ठीक है, आप कैसे हैं?
0: सब ठीक है, सब ठीक है। हाँ जी बताइए।
2: तो मैम आई थिंक जब जॉब इंटरव्यूज होते हैं तो सबसे पहले ना कॉन्फिडेंट लेवल चेक किया जाता है।
0: तो हमारे पास कॉन्फिडेंस है कि नहीं कि हम ये जॉब कर पाएंगे, हम कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, ये एक मकसद होता है, क्योंकि सीवी में जो लिखा हुआ है वो एक्चुअली में आप कर भी पाएंगे कि नहीं, वो जज करने के लिए या वो इवैल्यूएट करने के लिए इंटरव्यू किया जाता है। और कोई और किसी का कोई और पॉइंट निशा के अलावा?
3: हेलो मैम, रेनू बोल रही हूँ ग्रेटर नोएडा सेंटर से।
0: नमस्ते रेनू जी, बताइए।
3: नमस्ते मैम। मैम अगर हम कभी भी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, मीन्स जो दो बातें भी हमने डिस्कस कर ली कि एक तो हम कॉन्फिडेंस देखते हैं, या आप एक कह रहे हैं कि एक रिज्यूमे में सब कुछ लिखा होता है, बट कभी जब हम लोग जाते हैं तो हमें क्या नॉलेज है, तो हम इंटरव्यूअर हमसे कहता है कि आप अपने आप मतलब अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में थोड़ा समरी या समराइज करके बताइए कि आप कैसे अपना ऑफिस को रन करते हैं, या हमने बताया जो भी हम इनको सिचुएशन देते हैं, कोई भी सिचुएशन दे सकते हैं हम उसमें कि हम ये है, हम ये है, ये है, तो फिर वो ये कह सकते हैं कि यार ठीक है आप हमारा ये पढ़ा है, हमारा बिल्कुल बेकार मैसेज आया, अब आप इसमें क्या नया कर सकते हो। तो एक यहाँ पर भी एक क्वालिटी जज की जा सकती है कि आपके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, या आपके पास आप आइडिया इनोवेटिव आइडियाज आपके पास हैं कि नहीं है।
0: वेरी गुड।
3: और
0: तो हमारी दो या तीन चीजें आ गई, पहला कि इवैल्यूएट करते हैं कि जो हमने सीवी में लिखा है वो हम कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, कॉन्फिडेंस लेवल हमारा चेक करते हैं, और अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे इनोवेशन की जरूरत है, आप इनोवेटिव है कि नहीं, वो आपको अलग अलग सिचुएशंस में डाल के आपसे अलग अलग तरीके के सवाल पूछ सकते हैं और जज कर सकते हैं कि आप अगर एक सिचुएशन दी जाए तो उसमें आप किस तरीके से आप रिएक्ट करेंगे या

0: काम करेंगे. वेरी गुड. सो नीता जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं?
1: यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम.
0: गुड आफ्टरनून जी, कैसे हैं?
1: जैसे मैम ने बताया कि कॉन्फिडेंस लेवल भी चेक करते हैं, इसके अलावा मैम पर्सनालिटी इंटरव्यू के द्वारा हम पर्सनालिटी भी सामने वाले की देख सकते हैं और अवेयरनेस अबाउट द, जैसे कि सामने अपॉर्चुनिटी है उसके बारे में कितना अवेयर है, स्पीकिंग एज वेल एज राइटिंग, रिटर्न भी हम देख सकते हैं.
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली. मुझे याद है हम दोनों ने मिलके ही हमारे जो स्कूल था, प्री स्कूल का, उसका एक इंटरव्यू किया था. तो हमने किन किन कैटेगरीज पे अपनी टीचर्स को इवैल्यूएट किया था. एब्सोल्युटली राइट, बच्चों के साथ काम करना है, उनकी राइटिंग स्किल कैसी है, उनकी पर्सनैलिटी प्लीजिंग है कि नहीं, और ये सब चीजें हम इंटरव्यू में ही जज कर सकते हैं. हम सीवी देख के नहीं जज कर पाते या फोन पे बात करके ज्यादातर नहीं जज कर पाते. तो इन सब पॉइंट्स जो सभी मेरे साथी हैं उन्होंने जो पॉइंट्स दिए हैं, एब्सोल्युटली वैलिड पॉइंट्स. और भी बहुत लोग बहुत कुछ कहना चाह रहे होंगे, बट कहने का मकसद ये था कि इंटरव्यू एक बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव होता है. आप जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने जा रहे हैं या जो ऑर्गेनाइजेशन आपको हायर करता है, आप दोनों इवैल्यूएट कर सकते हैं. अभी तक हमने जितने पॉइंट सुने हैं वो हमने यही सुने हैं कि एज अ कैंडिडेट आप में क्या क्या चीजें हैं, बट कैंडिडेट का भी ये राइट है कि वो पूछ सकता है या वो देख सकता है या वो देख सकती है, जज कर सकती है कि जिस एनवायरनमेंट में वो काम करने जाने वाला है या जाने वाली है, वो एनवायरनमेंट उसको सूट करता है, उसकी पर्सनालिटी को सूट करता है कि नहीं करता. इट्स अ टू वे प्रोसेस. तो जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप भी सिर्फ इवैल्यूएट नहीं होंगे, आप भी इवैल्यूएट कर सकते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें कि आप अप्लाई करने जा रहे हैं. कॉल सेंटर का जॉब है क्या, रात की ड्यूटीज लगेंगी, रात की ड्यूटीज क्या आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, अच्छा कैसा एनवायरमेंट है वहां पे, सेफ्टी सिक्योरिटी है कि नहीं, अगर गर्ल्स जा रही हैं, लेडीज जा रही हैं, उनकी क्या सेफ्टी मेजर्स हैं, आपका भी पूरा हक बनता है कि आप देखें, इवैल्यूएट करें अपनी सूझबूझ से. सो इंटरव्यू इट्स अ मीडियम कि जो एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म मतलब 6 महीने हो सकता है, साल हो सकता है, मेरे और मैम के जैसे जैसे 14-14 साल से हम एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करें तो एक लाइफ टाइम हो सकता है, बट यू हैव टू इवैल्यूएट दैट दिस रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल कंफर्ट, कि आप एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉई और सामने वाला एज एन एम्प्लॉई, आप दोनों का मेल बैठता है एक पोजीशन के लिए जिसके लिए उन्होंने एडवर्टाइज किया. ये कहना बहुत आसान है, कहने में बहुत अच्छा लगता है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट प्रैक्टिकली ये होता नहीं है. हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं, हम इंटरव्यू करने जाते हैं, हम ज्यादातर सवाल नहीं पूछ पाते हैं ये सोच के कि सामने वाला हमें बोलेगा कि रूड है या अपने आप को बताने क्या समझता है, इतने सवाल पूछ रहे हैं. आप सवाल मत पूछिए, लेकिन ऑब्जर्व तो कर सकते हैं कि एनवायरमेंट कैसा है, लोग कैसे हैं, आप ऑब्जर्व करिए. बिकॉज अगर आप सेटिस्फाइड होंगे तभी आप लॉन्ग टर्म अपने आप को उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ रख पाएंगे और आप अच्छा काम करेंगे जिसकी वजह से आपका एम्प्लॉयर भी खुश होगा और वो भी लॉन्ग टर्म आपको एसोसिएट कर पाएगा. वेरी वेरी बेसिक थिंग, बहुत ही बेसिक थिंग था. लेकिन जब हम जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तब हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले कुछ वेरी बेसिक पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी कि जब जॉब डिस्क्रिप्शन एडवर्टीजमेंट में दिया हुआ है उसे अच्छे तरीके से, एक जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, कोई एडवर्टीजमेंट होती है ना, कोई आपकी सहेली या आपकी कोई फ्रेंड है उन्होंने बताया होगा कि इस कंपनी में जॉब निकला है, इसमें अप्लाई कर दो, या आपने न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा, मोबाइल पे आपके पास कोई अलर्ट आया होगा कि जॉब्स के लिए है, लेकिन वो उस जॉब की डिस्क्रिप्शन भी होती है, उस डिस्क्रिप्शन को पूरा डिटेल में पढ़िए. बहुत सारी कंपनीज काफी डिटेल में वो डिस्क्रिप्शन देती है कि किस तरह का जॉब होगा, कितने वर्किंग आवर्स होंगे, ट्रैवल रहेगा कि नहीं रहेगा, सेल्फ व्हीकल चाहिए कि नहीं चाहिए. कई कई जॉब्स ऐसे होते हैं जैसे कि कोई कुरियर कंपनी है या लॉजिस्टिक्स कंपनी है, वो पहले ही एडवर्टाइज करते हैं कि आपका सेल्फ व्हीकल होना बहुत जरूरी है. जैसे कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रॉब्ली रिटेल में है, तो वो वर्किंग आवर्स पहले ही एडवर्टाइज कर देते हैं कि वर्किंग आवर्स हमारे 11 o'clock से 8 o'clock तक रहेंगे. जैसे कि मॉल हो गए या फिर कोई कोई ऐसी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं जिसमें कि उन्हें पर्टिकुलर स्किल चाहिए, तो आप अच्छे से जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़िए और इवैल्यूएट करिए कि आप उस क्राइटेरिया पे फुलफिल होते हैं कि नहीं होते हैं, और प्रिपेयर करिए अपने आप को कि जो जो क्राइटेरिया दे रखा है उसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे आंसर करेंगे। अगर क्वेश्चन है कि क्या आप एमएस एक्सेल जानते हैं, तो हाँ आप जानते हैं कि नहीं जानते, उस क्वेश्चन के ऊपर प्रिपेयर करिए। तो जब जॉब डिस्क्रिप्शन आप पढ़ेंगे उससे आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि आपकी वो स्किल जो है आपके अंदर है कि नहीं, और जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो आपसे जब क्वेश्चन किया जाएगा आप आराम से उसका आंसर दे सकते हैं। आप हिंदी में, इंग्लिश में, जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं उसमें अपना आंसर दीजिए। बहुत जरूरी नहीं है आजकल की जॉब मार्केट में कि सिर्फ स्पोकन इंग्लिश स्पीकिंग को ही जॉब मिलेगा। कुछ तो जॉब्स ऐसी हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश की जरूरत है, आप खुद ही इवेल्युएट कर सकते हैं कि वो उसमें अभी आप एलिजिबल हैं कि नहीं। बट जो भी बात कहें उसे अपने कॉन्फिडेंस से रखिए। जो पहला शब्द हमने इस सेशन में सुना था, कॉन्फिडेंस, बिकॉज इंटरव्यू में वो आपका कॉन्फिडेंस जज करना चाह रहे हैं और उनको फटाफट पता चल जाएगा ये रियल कॉन्फिडेंस है या ये मतलब एक शो, आप शो पुट अप कर रहे हैं या रियल में आप कॉन्फिडेंट है, ये हर किसी को आपके बात करने के तरीके से पता चल जाता है। उनकी वेबसाइट पे जाइए, मान लीजिए अमेजोन ने कोई जॉब निकाली है या फ्लिपकार्ट ने कोई जॉब निकाली है या सम वोडाफोन ने कोई जॉब निकाली, एयरटेल ने कोई जॉब निकाली, आप उनकी वेबसाइट पे जाइए, जो जॉब लिखा हुआ है उसके बारे में पढ़िए कि जो लोग इन जॉब में ऑलरेडी काम कर रहे हैं उनको कैसे, उनका कोई कभी कभी रिव्यूज होते हैं, स्टोरीज होती हैं, आजकल ब्लॉग्स भी बहुत सारे होते हैं। तो कहने का मतलब है थरो रिसर्च करिए। अगर आपको कोई बोलता है बस जाके अपना सीवी मत भेजिए, हाँ भाई तू जा रहा है ठीक है मेरा सीवी भी भेज दे उसमें, ऐसे नहीं, आपको प्रॉपरली उसके लिए प्रिपेयर करना होगा अगर आप रियल में चाहते हैं कि उस इंटरव्यू में आपको सक्सेस मिले। कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चन होते हैं ये आपको कई साइट्स पे मिल जाएंगे, आप चाहें तो हम एक सेशन भी कर सकते हैं टिपिकल क्वेश्चंस जो एक जॉब इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। टेल मी अबाउट योर सेल्फ। अब टेल मी अबाउट योर सेल्फ में कुछ लोग ना कहानी गढ़ने शुरू करते हैं, मैं छोटा था तो ये था मैं वो था। आपको प्रिस्ट में बताना है। गीता मैम ने कई बार वो एलिवेटर पिच के बारे में बात किया कि 1 मिनट में हमें अपने बारे में बताना है कि मैं क्या हूँ, मेरा बैकग्राउंड क्या है। कहानियां सुनने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है क्योंकि किसी को याद ही नहीं रहेगा। अगर 100 लोग बैठे हैं यू कांट एक्सपेक्ट द अदर पर्सन टू रिमेम्बर, बट वो एक ऐसी क्वालिटी जो आप में है जो आप बताना चाहते हैं आप उस पर फोकस करें जो उस इंटरव्यू से रिलेटेड हो सकती है। कोई ऐसा एक्सपीरियंस है आप अपने बारे में शॉर्ट में बताइए। इसको बार बार प्रिपेयर करिए, रिटन में लिखिए टेल मी अबाउट योर सेल्फ को, और इसको प्रैक्टिस करिए शीशे के सामने कि कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस के बारे में। आप ये जॉब क्यों करना चाहते हैं, क्या ऐसी मोटिवेशन है जो ये जॉब आप करना चाहते हैं, ये बहुत टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। आप अपने आप को यहाँ से 3 साल के बाद कहाँ देखते हैं, वेयर डू यू सी योर सेल्फ 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ। किसी भी जॉब में आप जाएंगे ये जरूर पूछा जाता है, सैलरी कितनी लेंगे। हम लोग हिचकिचा जाते हैं, कई कई जॉब में तो ऑलरेडी फिक्स्ड होता है पर फिर भी पूछते हैं कि आप सैलरी कितना लेना चाहेंगे। तो आप जब तक रिसर्च नहीं करेंगे कि इस तरीके की जॉब इंटरव्यू के लिए क्या क्या सैलरी है, क्या क्या पर्क्स हैं। कई बार क्या होता है जैसे कि कुरियर कंपनीज हैं, लॉजिस्टिक्स कंपनीज हैं, सैलरी कम होती है बट पर्क्स या रिलेटेड अलाउंसेस बहुत होते हैं, ट्रैवल का दे देते हैं या टेलीफोन का दे देते हैं क्योंकि कुरियर से रिलेटेड है, तो आपको ये पता होना चाहिए। इंश्योरेंस होती है, तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप फ्रेशर हैं तो हो सकता है वो सारी चीजें फ्रेशर लेवल पे शायद ना हो क्योंकि आपको शायद प्रोबेशन दिया जाएगा, 3 मंथ्स का प्रोबेशन होगा, 6 मंथ्स का प्रोबेशन होगा। जैसे मैंने बैंकिंग सेक्टर में स्टार्ट किया था तो मुझे 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद उसी बैंक में 3 मंथ्स की इंटर्नशिप करने के बाद 6 मंथ्स का प्रोबेशन था, तो इफेक्टिवली मेरा प्रोबेशन 9 मंथ्स का हो गया था। बट दैट्स देयर रूल, किसी भी फ्रेशर को वो बहुत अच्छे से इवेल्युएट करके ही परमानेंट करते हैं। बट डोंट गिव अप। हमारी प्रोफेशनल जर्नी अगर हम 24 या 25 साल में शुरू करते हैं और हम 60 साल तक अगर काम कर रहे हैं, 70 साल तक काम कर रहे हैं, तो बहुत लंबी प्रोफेशनल जर्नी है। इसमें आप धीरे धीरे धीरे धीरे करके ही अपनी स्किल्स को ऊपर बढ़ा सकते हैं। अगर आप एकदम से चाहेंगे कि आपको सारी पर्क, सारे सारे बेनिफिट्स मिल जाए तो आप हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेंगे। सो नो अबाउट द जॉब, प्रिपेयर योर सेल्फ, प्रिपेयर द बेसिक क्वेश्चन. और लेकिन बेसिक क्वेश्चन प्रिपेयर करके जाइए, लेकिन उसे जल्दबाजी में डिलीवर मत करिए. अपनी पिच को, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को, जो फर्स्ट सेशन हमने पढ़ा था कि कम्युनिकेशन स्किल, उस पे प्रैक्टिस, उस पे फोकस करिए कि आपको क्रिस्प रहना है, कंसाइज रहना है, क्लियर रहना है, फिर भी अपनी बात कहनी है. हो सके तो अपने किसी फ्रेंड के साथ, या अपने छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन के साथ, या फिर सेंटर में अगर कोई लोग हैं, या कोऑर्डिनेटर्स के साथ आप मॉक इंटरव्यू करिए. अगर जो भी आपका सबसे नियर एंड डियर वाले, उसके साथ आप मॉक इंटरव्यू. मॉक इंटरव्यू मतलब ये जो 5-10 क्वेश्चन हमने बोले, एक इंटरव्यू और बन जाए, एक इंटरव्यू ही बन जाए. कोशिश करिए, आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आप इंटरव्यू ही बनिए, आप इंटरव्यूअर मत बन जाइएगा. आप प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चन को, क्योंकि जब आप ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप खुद सोचेंगे कि शायद मैं इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, मैं इसमें और क्या बेहतर कर सकता हूँ, मैं क्या ऐड करूँ कि मेरा कहने का तरीका या मेरे कहने कहने कहना जो चाह रहा हूँ वो बेटर हो जाए. आप उसे रिकॉर्ड करिए, अपनी आवाज को सुनने की आदत डालिए, क्योंकि जब हम बोलते नहीं है, अपनी आवाज नहीं सुनते, तो हमारा कॉन्फिडेंस नीचे नीचे ही रहता है. कभी आपने देखा टीचर्स में क्या कॉन्फिडेंस होता है? क्योंकि वो हर वक्त अपनी आवाज सुनने की आदि होते हैं, क्योंकि वो अपना प्रिपेयर करते हैं, लेसन प्लान्स प्रिपेयर करते हैं, वो अपने आप को हमेशा प्रिपेयर करके चलते हैं. उनके लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट काफी कम रहता है. जब हम स्कूल्स में थे, कॉलेजेस में थे, हमने देखा हमारी टीचर्स क्या एकदम स्मार्ट और एकदम डिलीवरी करती हैं उसकी लेक्चर की, जो भी टॉपिक होता है प्रिपेयर होते हैं. क्यों? क्योंकि वो प्रिपेयर करके आते हैं. तो आप अपने आप को शीशे के सामने, किसी फ्रेंड के साथ, मोबाइल, आजकल तो आप रिकॉर्ड कर सकते हैं सेल्फ कैमरा से, या कैमरा खड़ा करके किसी जगह पे आप आराम से उसे रिकॉर्ड करके खुद सुन सकते हैं, खुद देख सकते हैं कि कैसे आप बोल रहे हैं और वो कैसा दिख रहा है, कैसा लग रहा है. बहुत जरूरी है कि आप जहां इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं उसका लोकेशन पहले से ही ध्यान में रखें. अगर इंटरव्यू का टाइम 9 बजे है, तो आप कोशिश करिए कि आप अपना घर से इंटरव्यू तक पहुंचने का डिस्टेंस पहले ही जान लें, ताकि आप टाइम से पहुंच पाए, ना टाइम से ज्यादा देर से, ना टाइम से बहुत पहले. अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल कर रहे हैं, तो ये ध्यान में रखिएगा, साथ में एक हैंकी या एक टॉवल साथ में रखिएगा, ताकि जब आप जाते हैं, गर्मी का टाइम में पसीना आ जाता है, तो आप 10 मिनट पहले ही पहुंच जा सकते हैं वहां पे. अपने आप को प्रिपेयर करिए, वहां पे कहाँ रेस्ट रूम्स है उनसे बात करिए, जो भी वहां पे सपोर्ट स्टाफ है उनसे पूछिए रेस्ट रूम्स कहाँ पे हैं. आप जाके अपने आप को क्लीन अप करिए, कोट करिए अच्छे से. और बहुत जरूरी है कि आप अपने क्लोथ्स, आप क्या पहनने वाले हैं इंटरव्यू के दौरान, हम इस पे भी आएंगे कि क्या पहनना चाहिए. जस्ट अ सजेशन, नो There is no right or wrong, but as a mature person, हमें किस तरीके से अपने आप को professionally show करना चाहिए या conduct करना चाहिए, उसके बारे में हम बात करेंगे. But पहले से आप तैयार करके रखिए, अगर उसे iron करना है iron करके रखिए, देखिए उसमें कोई button तो नहीं टूटा हुआ, कौन से चप्पलें पहनना है, shoes पहनना है, पूरा एक दिन पहले prepare करके रखिए, ताकि आप mentally और physically prepared हो. आप जब जाते हैं इंटरव्यू के लिए, सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी बॉडी लैंग्वेज. इसके ऊपर भी अभी हम आगे स्लाइड्स पे बात करेंगे. हम बॉडी लैंग्वेज पे पहले कम्युनिकेशन के टाइम पे भी बात कर चुके हैं. सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है इस दौरान में, जब हम इंटरव्यू के लिए जाते हैं, बॉडी लैंग्वेज. अब जो भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर रहे हैं, ये मत करिएगा कि उसमें कुछ अपनी तरफ से ऐड कर दी. जो ऑनेस्ट आंसर है, जो आप कर सकते हैं, उसी को आंसर करिएगा, क्योंकि सामने वाले बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो इंटरव्यूअर है, वो बहुत सालों से शायद उस पोस्ट पे बैठे हैं, और वो फट से समझ जाएंगे कि आप सही कह रहे हैं या आप सिर्फ गप मार रहे हैं, और ये चीज आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगी. तभी ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी फॉर अ लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल कमिटमेंट. आपको आता है, नहीं आता है, आप सीख सकते हैं, आपके अंदर सीखने की कैपेबिलिटी है. बी वेरी ऑनेस्ट, वेरी वेरी ऑनेस्ट इन द इंटरव्यू. तो हम अभी तक किसी का कोई सवाल, या हम आगे बढ़ सकते हैं? ठीक है, सवाल हम एंड में भी ले सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है. हमने बॉडी लैंग्वेज की बात करी। अब बॉडी लैंग्वेज एक ऐसी चीज होती है जिसमें हम ना बोलते हुए भी, अभी तक तो हमने बात करी पिछले की 2 स्लाइड्स में कि आप जब बोले तो सही बोले, कॉन्फिडेंस से बोले, अपनी कम्युनिकेशन में जो पिच है उस पे ध्यान रखिए, अपने जो भी आप कहना चाह रहे हैं उसे प्रिपेयर करिए। लेकिन इंटरव्यू में जब हम जाते हैं, जब हम वेटिंग एरिया में बैठे होते हैं ना, तभी भी कई बार हम इवेल्युएट हो रहे होते हैं या हो सकता है कि लोग हमें देख रहे हो कि हम कैसे बैठे हैं, हम कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं दूसरे लोगों से जो हमारे साथ इंटरव्यू देने आए हैं। तो जो हमारी बॉडी लैंग्वेज है या जो हमारे जेस्चर्स हैं जब आप इंटरव्यू के लिए देने जाते हैं, वो बहुत बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस की हमने बात करी, लेकिन कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? हम जब नर्वसनेस अपने अंदर कम कर देंगे, नर्वसनेस कैसे कम करेंगे? जब हम प्रिपेयर करके जाएंगे, और प्रिपेयर कैसे करेंगे उसकी बात हमने ऑलरेडी करी है। आप कॉन्फिडेंस रखिए कि आप उस इंटरव्यू के लिए सही कैंडिडेट हैं कि नहीं, रिसर्च करिए, अपने बारे में पॉइंट्स लिखिए, आपकी क्या स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस हैं, आप क्यों, आप ही क्यों वो कैंडिडेट हैं जो इस जॉब के लिए अप्रोप्रिएट है, ये सब चीजें, तो ऑलरेडी आपकी नर्वसनेस काफी कम हो जाएगी। बट ये मत सोचिए कि यही 5 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, बट जब आपने इन 5-6 क्वेश्चन का आंसर दिया, कहीं ना कहीं आंसर इसी में ही छुपा होगा। आप एक पीसफुल माइंड से जाइए, एक इंटरव्यू है, कुछ नहीं होगा तो कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस तो आप गेन करके बाहर निकलेंगे, कुछ नए लोगों से आप बातचीत करके निकलेंगे, उनको ऑब्जर्व करिए कि और कैंडिडेट्स कैसे जो आए हैं वो कैसे अपने आप को कंडक्ट कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नर्वस होने का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि आपकी नर्वसनेस आपके हाव भाव में साफ दिख जाएगी, क्योंकि सामने वाले बहुत एक्सपीरियंस लोग बैठे हैं। मैंने पहले भी बताया कि जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस हैं उनको प्रैक्टिस करिए, कई वीडियोस हैं ऑनलाइन, उन वीडियोस पे आप प्रैक्टिस देख सकते हैं कि हम जो क्वेश्चन को पूछते हैं उनका आंसर किस तरीके से तैयार करें। मैंने कहा कि हम इस पे भी एक सेशन कर सकते हैं अगर हम सबका इंटरेस्ट होगा तो। कोई बता सकता है कि ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं, इनमें मैंने ऑलरेडी वैसे कुछ इंडिकेशन दे दिया है, बट कोई डिस्क्राइब कर सकता है कि क्यों मैंने क्रॉस लगाया है? ये जो ब्लू शर्ट में जेंटलमैन बैठे हैं, इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है उसके ऊपर मैंने क्यों एक बड़ा सा रेड क्रॉस लगाया है? ऐसा क्या गलत है? उनके उनके चारों फोटोज हैं, एक एक करके अगर आप बता सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है इन चारों फोटो में, मुझे क्या, क्यों मैंने क्रॉस लगाया है इसके ऊपर, या अगर आपको सही लग।
2: हाँ जी मैम, आई थिंक इनकी सिटिंग पोजीशन ना करेक्ट नहीं है।
0: इनकी करेक्ट क्या होता है? व्हाट इज करेक्ट?
2: मैम, अपना बैक स्ट्रेट करके बैठना, अपने दोनों आर्म्स अपने लैप में रखना, अपने लेग्स दोनों बिल्कुल स्ट्रेट और पास में रखना, इस तरह से आई थिंक दीज काइंड्स ऑफ सीटिंग सिचुएशंस और पोजीशंस आर करेक्ट।
0: करेक्ट। हो सकता है, क्या होता है कि कई बार ही ना, जैसे आप जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, 200 लोग आए हैं, 100 लोग आए हैं, वॉक इन इंटरव्यू है, आप कभी अगर गए हैं वॉक इन इंटरव्यू के लिए, मैं खुद गई हूँ वॉक इन इंटरव्यूज के लिए, तो 100 100 लोग होते हैं और वो टाइम दे देते हैं सुबह 9 बजे से, और सभी लोग पहुंच जाते हैं। वॉक इन इंटरव्यू का मतलब है जो पहले पहुंचा उसका इंटरव्यू होगा, उसमें आपको कोई टाइम नहीं दिया जाएगा। जैसे रीड में अगर आते हैं तो आपको टाइम दिया जाता है, मैम आपको पर्सनली मिलती है, ऐसा नहीं होता हर जगह पे। ये होता है कि 100 पीपल आ गए, ठीक है, उनको 20-20 के बैच में डिवाइड कर देते हैं और फिर उनका एक ग्रुप डिस्कशन करवाते हैं। ग्रुप डिस्कशन में से वो 5-6 लोग निकालेंगे हर एक ग्रुप में से, और 5-6 लोगों में से वो पर्सनल इंटरव्यू करेंगे और फिर पैनल डिस्कशन होगा। तो कई बार ऐसे लेयर्स क्रिएट कर देते हैं, क्योंकि ये एचआर वालों का काम होता है। तो अब बहुत टाइम से आप बैठे हैं, आपको उबासी आ रही है और आप बोर हो रहे हैं, आप अपने पैरों के साथ फिडल करना शुरू कर रहे हैं, तो ये एक एक ह्यूमन टेंडेंसी। आप कितनी देर आराम से एक कॉन्फिडेंट नर्वस ना होके बैठे रह सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप जा रहे हैं ग्रुप डिस्कशन के लिए या कुछ है, तो आप इंटरेस्टेड लगिए। अब ये जो लास्ट में फोटो है, ये कुछ फेक स्माइल लग रही है कि ये फेक दिखा रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ। ये देखने वाले को साफ पता चल जाएगा कि ये फेक स्माइल है, उबासी ले रहे हैं, बोर ऐसे करके बैठे हैं तो बोर हो गए, यानी कि वो इंटरव्यू देने आए हैं लेकिन वो बोर हो गया है। तो ये सब चीजें ना नेगेटिव इम्प्रेशन देती हैं। हो सकता है आते जाते आपका इंटरव्यू देख रहे हो, आप सीसीटीवी लगा है उसमें वो लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, हो सकता है आप कस्टमर सर्विस में हो तो वो चाहते हैं कि वो ये देखें कि आपकी बॉडी लैंग्वेज कितनी पॉजिटिव है कितनी नेगेटिव है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप वेटिंग एरिया में बैठे हैं, चाहे आप इंटरव्यूअर के सामने बैठे हैं, आप पैनल डिस्कशन में बैठे हैं, अपनी बॉडी को पॉजिटिव रखिए। पॉजिटिव कैसे रखते हैं, ना तो बहुत ही खुश, ऐसे खुश दिखाने की भी बहुत जरूरत नहीं है जो हम लास्ट फोटो में देख रहे हैं, ना तो ऐसे दिखाने की कोई जरूरत, नॉर्मल जैसे आप कॉन्फिडेंटली बैठेंगे एक प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में वैसे आप बैठिए। कई लोगों को आदत होती है अपना पूरा पैर फैला के एकदम, मतलब बिल्कुल पैर आगे करके या पैर को फिडल करके ऐसे ऐसे पैर चलाते हैं कई लोग, कोशिश करिए ये ना हो, ये ना करे जब हम किसी वेटिंग एरिया में या जॉब इंटरव्यू के लिए या इंटरव्यू के सामने बैठे हैं। पेंसिल को कभी कभी मुंह में डाल लेते हैं, पेन पेंसिल को, ये सब चीजें अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्चर, यानी कि जहां हम बैठे हैं हमारा पोस्चर प्रोफेशनल दिखना चाहिए। सो सिट स्मार्ट, सिट कॉन्फिडेंटली, एंड दिस कॉन्फिडेंस विल शो इन योर किसी ने चैट में कुछ लिखा है, जस्ट ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, ये लेडी की 8th रैंक आई थी, ये IAS का इंटरव्यू दे रहे हैं। इंटरव्यू पैनल में 4 लोग बैठे हैं, ये IAS का इंटरव्यू चल रहा है। आप इस लेडी की पोजीशन देखिए कैसे वो बैठी है, ना तो ज्यादा झुक के बैठी है, ना तो ज्यादा ही अलर्ट बैठी है, कि एकदम अलर्ट भी नहीं बैठी है, बहुत कॉन्फिडेंस से। मैं जानती हूँ कि इनको बहुत प्रैक्टिस कराई जाती है, बट मैं ये दिखाना इसलिए चाहती थी कि इस तरीके का भी अगर प्रोफेशनल इंटरव्यू चल रहा है तो उसमें भी किस तरीके से वो अपने आप को तैयार करके गई होंगी, क्या उन्होंने पहना है, किस सिंप्लिसिटी से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रही हैं। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब हम किसी पैनल ऑफ इंटरव्यू में जाते हैं या इवन पर्सनल इंटरव्यू में जाते हैं। कई बार क्या होता है कि हम जो क्लोथ्स, मैंने कहा था कि आप अपना जो क्लोथ्स है जो आप पहनने वाले हैं आप पहले से डिसाइड करके रखिए, थोड़ा टाइम हम इस पे देना चाहेंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आजकल हम लोग कई चीजें फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि प्रोफेशनल और पर्सनल थोड़ा डिफरेंट है। हम डोंट टेक मी रॉन्ग, बट कई बारी हम जिस तरीके के कपड़े पहन, चॉइस ऑफ क्लोथ्स कैन ऑल्सो डिटरमाइन समटाइम्स द काइंड ऑफ पर्सन वी आर। कंप्लीटली डू नॉट टेक मी रॉन्ग, सबको फ्री चॉइस है, फ्रीडम है, बट वो हमारी पर्सनल लाइफ में वो फ्रीडम है। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा प्रोफेशनली ड्रेस्ड अप होंगे तो चांसेस ये हैं कि एटलीस्ट इन द इंटरव्यू स्टेज आप अपने जो सिलेक्शन होगा वो आपके स्किल के बेसिस पे होगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई मेल है, कोई आदमी या बॉय इंटरव्यू के लिए जा रहा है, तो एक प्लेन टी शर्ट, चेक टी शर्ट, सॉरी प्लेन शर्ट, चेक शर्ट, अच्छी कलर में, नॉट वेरी ब्राइट येलो रेड, इन सबको अवॉइड करते हुए। हमने कलर थेरेपी पे कई सेशन करे हैं, कलर थेरेपी में भी बोला जाता है कि व्हाइट कलर, ब्लू कलर, अर्दी कलर्स जो है वो पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट करते हैं। कुछ जो बहुत ब्राइट कलर्स होते हैं ज्यादातर वो इन द आई लगते हैं और वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी अट्रैक्ट नहीं करते हैं। तो आई स्ट्रांगली बिलीव इन दैट। तो अगर आप चाह रहे हैं कि यू डोंट हैव टू बी फ्लैशी, आप में जो क्वालिटी है वो आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगा, ना कि आपने जो पहना है, आपने क्या हेयर स्टाइल बनाया है वो डिसाइड नहीं करेगा। तो अगर कोई मेल मेंबर जा रहे हैं, साफ प्रेस हुई हुई है, नहीं प्रेस हुई हुई लेकिन साफ शर्ट, डिसेंट कलर में, बहुत ब्राइट ना हो, मतलब बहुत कुछ उस पर ज्यादा कुछ ना बना हो, क्योंकि आजकल तो फैशन की दुनिया में एवरीथिंग सेल्स। बेसिक ट्राउजर, कार्गोज मत पहन के जाइए, जीन्स मत पहन के जाइए। इट्स जस्ट अ सजेशन फ्रॉम माई साइड एज अ लिटिल बिट मोर मेच्योर पर्सन, जस्ट अ सजेशन। फ्लिप फ्लॉप्स मत पहन के जाइए, ओपन जो हमारे आते हैं आजकल, फ्लिप फ्लॉप्स आप जानते होंगे, चप्पलें जो होती, चप्पलें तो बिल्कुल ही नहीं, क्या बोलते हैं उसको, सैंडल बोलते हैं, वो जो एक बकल के साथ आता है जिसमें आपका थोड़ा पैर दिखता है। तो मेल मेंबर्स के लिए होता है कि बारिश बहुत हो रही है, हम शूज नहीं पहन के जा सकते, अंडरस्टैंडेबल, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, दैट इज वेरी अंडरस्टैंडेबल। बट नॉर्मल सिनेरियो में कोशिश करिए कि बंद जूते पहन के जाए, साफ हो जूते, चमकने नहीं बट साफ तो हो कम से कम। कंघी करके जाइए, तेल मत लगाइए, कुछ लोगों को तेल लगाने का आदत होता है तो मत लगाइए, कई बार सामने वाले को किसी चीज से एलर्जी होती है, इरिटेशन हो सकती है। आप अपनी नेल्स क्लिप करके रखिए, साफ रखिए, क्योंकि जब आप बात करेंगे आपके हाथ जरूर दिखेंगे। जैसे मेरी बहुत आदत है हाथ को यूज करने की, ऐसे अगर किसी की आदत है तो प्लीज आप अपने नेल्स का साफ रखिए ध्यान से। तो ये हुई मेल मेंबर्स की बात, जस्ट अ सजेशन अगेन, प्लीज डू नॉट टेक मी रॉन्ग। फीमेल के केस में कोशिश ये करिए कि जो आप कपड़े पहन के जा रहे हैं, आप अगेन यू रिसर्च अबाउट द कंपनी, उनका कल्चर कैसा है, ट्राई एंड स्टिक टू क्लोथ्स दैट यू आर मोस्ट कंफर्टेबल इन। कुर्ता है, साड़ी है, इवन अगर स्कर्ट्स आप पहन के जा रहे हैं उसकी लेंथ का ध्यान रखिए। कोशिश करिए बड़े बड़े झुमके नहीं पहन के जाने, बड़े बड़े झुमके हो, बहुत सूट भी अगर आप पहन रहे हैं तो प्लेन कॉटन का। आप देखिए वो आईएएस के इंटरव्यू के लिए आई है, उसने एक बेज कलर का सूट पहना है, मरून कलर का दुपट्टा है, ना तो कोई बड़े झुमके हैं, ना तो कोई ज्वेलरी उसने पहनी है, क्योंकि वो चाहती थी, ये जो फोटो है इसकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि वो चाहती थी कि वो जो बोल रही है, जो उन्होंने सीवी में लिखा है उस पे एम्फेसिस हो उन चारों लोगों का जो इंटरव्यू करने उसको उनको बैठेंगे। अब देखिए चारों का ध्यान उसी तरफ है जो वो बोल रही है, किसी का भी ध्यान इधर उधर नहीं है। आपका हेयर स्टाइल जो है, मेन वुमेन गर्ल बॉय सभी का क्लीन एंड नीट होना चाहिए, बहुत बड़ा हेयर डू नहीं चाहिए, और मतलब बेसिक नीट एंड क्लीन आपका अटायर होना चाहिए। कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, कई बार क्या होता है डिस्ट्रैक्शन से ज्यादा आप खुद ही कभी फंस जाएगा कुछ कान में और आप खुद ही परेशान हो जाते हैं। अगर कंफर्टेबल क्लोथ्स नहीं है तो हो सकता है गर्मी लग रही हो बहुत ज्यादा। ट्राई नॉट टू वियर एनीथिंग लाइक अ पार्टी, आप किसी पार्टी में नहीं जा रहे, आप किसी प्रोफेशनल कंडक्ट में जा रहे हैं तो उसी तरह बहुत ज्यादा मेकअप मत करके जाइए। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं, आप लिप ग्लॉस लगा सकते हैं, बेसिक आप आई लाइनर लगा सकते हैं, बट बहुत मेकअप करके मत जाइए। इट डिस्ट्रैक्ट्स द अदर पर्सन फ्रॉम व्हाट यू आर सेइंग। दिस इज जस्ट सम टिप्स अबाउट दैट, अबाउट व्हाट यू कैन वियर। किसी और का कोई पॉइंट है तो वो आप लिख लीजिए, हम जरूर डिस्कस करेंगे, वी कैन कम बैक टू इट इन फ्यू मिनट्स। मैं टाइम देख रही थी कहीं मैं ज्यादा टाइम तो नहीं ले रही हूँ। अपना फोन जरूर से जरूर साइलेंट पे रखिएगा, बहुत सारा डिस्ट्रैक्शन रहता है। जैसे मैंने अभी अपना फोन चेक किया टाइम के लिए, तो ये जरूर करिएगा कि आप अपना फोन को डिस्ट्रैक्ट करें। सोशल मीडिया पिंग पिंग पिंग पिंग पिंग करता रहता है, कभी कभी हम बात कुछ करें टिंग टिंग की आवाज पीछे से आती है, प्लीज अवॉइड दैट। जब आप बात कर रहे हैं तो आप रिलैक्स्ड मैनर में डीप ब्रीदिंग के साथ पेशेंटली आप बात करेंगे, और अपनी पाम्स को हमेशा ओपन रहेंगे, क्योंकि अगर आप बात करते हुए ऐसे ऐसे करेंगे ना तो ऐसे लगेगा कि आप थोड़ा नर्वस हो रहे हैं, या कभी कभी हम ऐसे हाथ दबा के बात करते हैं, या दुपट्टा है तो दुपट्टे को दबा लेते हैं अपने हाथ में कि पीछे से कॉन्फिडेंस आ रहा है, हाँ आ रहा है आ रहा है, अवॉइड करिए। अगर पेन पेंसिल हमारे हाथ में होती है कभी कभी हम अनकॉन्शियसली उसको चबाने लग जाते हैं। हो सकता है हम पैनल में बैठे हैं, 10 लोग हैं और आपसे सवाल नहीं पूछा जा रहा, सवाल किसी और से पूछा जा रहा है, तो आप पेन चबा रहे हैं उतनी देर या पेंसिल चबा रहे हैं उतनी देर, या फिर आपके हाथ में कोई पेपर है उससे आप वो, मेरी बहुत आदत है कि पेपर पे मैं वो छोटे छोटे छोटे छोटे कुछ ड्रॉइंग ऐसे करने लग जाती हूँ। तो इंटरव्यू के टाइम पे प्लीज वो अवॉइड करिए, ये सारी चीजें डिस्ट्रैक्शन रहती है। अपना पैर मत हिलाइए, पैर हिलाना या फुट हिलाना, नोज पिकिंग करना कंप्लीटली नो, हम सभी को ये बातें पता है, बट कहीं ना कहीं जब हम नर्वस होते हैं तो ये एक नर्वस रिएक्शन हमारे हमारे पीछे से वो माइंड उसको कोशिश करता है कि हम किस तरह से वो नर्वसनेस को, कभी कभी बहुत लोग पानी बहुत पीते हैं इंटरव्यू में, पानी बहुत पियेंगे तो वो भी एक शो है कि नर्वसनेस आ रही है। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपने आप को कॉन्फिडेंस शो कर सकते हैं। बिलीव इन योर सेल्फ, आपको वो स्किल आती है क्योंकि आपने वो रिसर्च करी है कि इस जॉब को किस स्किल की जरूरत है, तभी आपने अपने आप को जॉब के लिए अप्लाई किया है। ड्रेस योर सेल्फ प्रॉपरली फॉर द प्रोफेशनल थिंग दैट यू आर गोइंग, यू आर नॉट गोइंग फॉर अ कल्चरल इवेंट, आप किसी शादी के लिए या किसी पार्टी के लिए नहीं जा रहे हैं। डोंट ड्रेस लाइक यू आर गोइंग फॉर अ मैरिज, पर्सनल लाइफ में आप कैसे भी ड्रेस करें, प्रोफेशनल में सर्टन बेसिक एटिकेट्स आर देयर, वी शुड फॉलो दोज थिंग्स। कई कई ऑर्गेनाइजेशन में यूनिफॉर्म भी होती है. आप ये आप तो सोचिए कि बहुत सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जो जैसे मारुति में काम कर रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी होटल्स हैं जिनमें अपनी यूनिफॉर्म होती है. तो आप ये सोचिए कि उनका तो प्रोफेशनल, उनको अटायर मिलता है, उनको साड़ी ही पहनना होता है, मंडे को अलग, ट्यूजडे ऐसे अलग अलग कलर्स की साड़ीज मिलती है. तो आप ये देखिए जो वो इतना प्रोफेशनल अटायर को सीरियसली ले रहे हैं, तो आपको भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश करना है. हम ये नहीं कह रहे कि बहुत अच्छे ब्रांड का शर्ट लेके जाओ या बहुत अच्छा क्वालिटी का सूट पहन के जाओ. बेसिक, साफ, नीट एंड क्लीन अपने आप को, क्योंकि ड्रेसिंग को मैंने देखा है बहुत लोग बहुत कैजुअली लेते हैं, इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा टाइम इस पे स्पेंड कर रही हूँ. अगर अगर आपकी कम्युनिकेशन है वर्बली आप कर रहे हैं, रिटन में भी कभी कभी लिखने को बोलते हैं. हम कभी कभी ना कुछ जब इंटरव्यू चल रहे होते हैं हम बोलते हैं कि ठीक है आप एक पैराग्राफ लिख के दे दीजिए. आप जिस भी भाषा में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तेलुगु, आप उसमें लिख के दीजिए, बट क्लियर और क्रिस्प में लिख के दीजिए. ऐसे मत लिखिए, शॉर्ट में लिखिए क्या कहना चाह रहे हैं. प्रैक्टिस करके जाइए उस चीज के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है. फिर से मैं कह रही हूँ, कंपनी के बारे में एडवांस रिसर्च करके जाइए, वो कौन इंटरव्यू ले रहा है. कई बार HR के नाम दिए होते हैं वेबसाइट पे, तो आपको थोड़ा फेमिलियर हो सकते हैं. आप देख सकते हैं कि सारे जो HR के लोग हैं वो कभी कभी वेबसाइट पे लिखा होता है कि इंटरव्यू कौन लेंगे. तो जितना ज्यादा आप कंपनी के बारे में जानेंगे आपका कॉन्फिडेंस उतना बढ़ेगा. ट्राई एंड रिमेन काम, प्रैक्टिस पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, बी पोलाइट, बी कर्टियस टू द इंटरव्यूअर, क्योंकि उसका ये काम है. अगर वो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ रहा है, जैसे कि अभी सुनी किसी ने बताया था कि वो ऐसी सिचुएशन में आपको डालने की कोशिश करेंगे कि वो जज करेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में अगर हम आपको डालते हैं तो आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे. तो आप पोलाइट रहिए, कर्टियस रहिए. अगर कुछ नहीं आता तो आप कह सकते हैं आई एम अ गुड लर्नर, मैं जल्दी सीख लेता हूँ, ये मैं जल्दी सीख लेती हूँ. अगर आप सिखाएंगे, अगर मुझे कोई सिखाएगा तो मैं सीख लूंगा. बट आप हर क्वेश्चन के लिए ये नहीं बोल सकते. कोई ऐसी स्पेसिफिक स्किल जो आपको लगता है इस जॉब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये अगर आप कमिट कर रहे हैं कि आप सीख लेंगे तो जरूर सीखिए. ये नहीं कि सिर्फ कहने के लिए, जॉब एक्वायर करने के लिए नहीं. अगर आपने एक बार कमिटमेंट करिए तो आपको सीखना भी पड़ेगा. So if you don't know the answer, you can say that I do not know about this particular thing, but I can do the research and get back to you. उसमें कोई दिक्कत नहीं है. वो समझ जाएंगे कि आप फिडल कर रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं, या आपको वाकई में पता है इस बारे में कि नहीं पता है. अपनी रिज्यूमे की कॉपीज हैंडी रखिए जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं. अगर आपने ईमेल से भेज भी दिया है तभी भी आप अपनी इंटरव्यू की एक या दो कॉपीज करा के जाइए. आपके सर्टिफिकेट्स हैं, उन सर्टिफिकेट के ओरिजिनल भी कई बार लोग देखना चाहते हैं. एक अच्छा सा, महंगा नहीं, अच्छा सा फोल्डर खरीद लीजिए. फोल्डर में पॉकेट्स होती हैं, अपने सारे सर्टिफिकेट्स नीटली उन पॉकेट्स में रखिए. कोई पूछता है, कोई मांगता है, तभी उसे दिखाइए. बिकॉज आपने सीवी में ऑलरेडी लिख दिया है कि आपने कौन कौन से कोर्सेस करे हैं, आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है, कहीं पे वॉलंटियर किया है कि नहीं, वो आपने सीवी में ऑलरेडी कर दिया है. आप चाहें तो रेज्यूमे राइटिंग पे भी हम एक सेशन कर सकते हैं, बट ये चीजें आपने ऑलरेडी सीवी में लिख दी है. तो कोई सर्टिफिकेट अगर मांगते हैं या कभी कभी HR में जमा कराने पड़ते हैं, तो आप कहेंगे अच्छा आज तो है नहीं, मैं कल दे जाऊंगा या दे जाऊंगी, तो वो अवॉइड करिए. अननेसेसरली कोई जरूरत ही नहीं है, कौन फॉलो अप करेगा, नहीं करेगा. हैंडी रखिए, कोई पूछता है तो वहीं पर उसकी कॉपी सबमिट करके आइए. अपना आई कांटेक्ट कभी भी लूज मत करिएगा अपने इंटरव्यूअर के साथ. हमेशा पोलाइटली चीयर, मतलब बहुत खुश नहीं, अभी हमने फोटो में देखा था कि वो आदमी कुछ ज्यादा ही खुश लग रहा था. इस तरीके का फेस नहीं रखना, उदास नहीं रखना, खुश और कॉन्फिडेंट फेस रखना है. बट इन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंटली अपनी जो स्किल है जिस इंटरव्यू के लिए हम अप्लाई करने जा रहे हैं, हॉस्पिटैलिटी का है तो आप अपनी स्किल्स जो है ब्रश अप करके जाएंगे. टैली का इंटरव्यू है, आप टैली की लेटेस्ट क्या क्या टेक्नोलॉजी चल रही है उसके बारे में रिसर्च करके जाएंगे. हेल्थ वर्कर्स की कोई नर्सिंग का कोई अपॉइंटमेंट निकला है, आप नर्सिंग की अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं. आप आजकल कौन कौन सी बीमारियां चल रही हैं, उनमें क्या क्या चीजें, अगर कोविड का टाइम अभी जैसे चल रहा है, आप पूरी रिसर्च करके जाएंगे कि फर्स्ट वेव में क्या हुआ, सेकंड वेव में क्या हुआ. आपको कोई डॉक्टर बनने को नहीं कह रहा, बट जो एज ए नर्स, एज ए असिस्टेंट आपको पता होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, बेसिक दवाइयों के बारे में. आपको वो चीजें रिवाइज करके जानी है, तभी आप कॉन्फिडेंटली बात कर पाएंगे और तभी आपका नर्वसनेस कम होगा. आप टीचर हैं, आप ब्यूटिशियन हैं, आप एक्सपर्ट अपेरल, किसी अपेरल कंपनी में आप जा रही हैं, आपको सिलाई आती है, आप बढ़िया एकदम फर्स्ट क्वालिटी की सिलाई करते हैं, आप अपने सैंपल साथ लेके जाइए. जो हम सैंपल वो बनाते हैं आपका रजिस्टर, उसको साथ लेके जाइए. अगर जैसे कि मैंने बताया वो कुछ नहीं आता, यू कैन ऑलवेज से कि मुझे अभी नहीं आता, मैंने इस चीज की कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं लिया, लेकिन मैं एक फास्ट लर्नर हूँ, मैं ये सीख सकता हूँ, सीख सकती हूँ अगर मुझे सिखाया जाए. अपनी रेफरेंसेस, चाहे रेफरेंसेस का मतलब जो लोग आपके बारे में आपसे हटके, क्योंकि मैं अपने बारे में बताऊं और मेरे बारे में कोई और बताए थोड़ा फर्क पड़ता है. रेफरेंसेस उसको बोलते हैं जो आपके बारे में फीडबैक दे सके. अगर आप फ्रेशर हैं तो आपके टीचर्स हो सकते हैं. ज्यादातर फ्रेंड्स के रेफरेंसेस मत दिया करिए, कोई भी मेरे दोस्त से पूछ लीजिए, ऐसा नहीं होता. रेफरेंसेस की भी अपनी एक क्वालिटी होनी चाहिए, या तो वो आपके टीचर्स हो सकते हैं अगर आपने, या फिर कोई ऐसा प्रोफेशनल हो सकता है जो आपकी फैमिली में है. आप फ्रेशर हैं लेकिन कोई प्रोफेशनल आपकी फैमिली में, फादर मदर को छोड़ के, इमीडिएट फैमिली को छोड़ के, आप उनका रेफरेंस दे सकते हैं. अगर आपने कहीं ऑलरेडी काम करा हुआ है, अगर आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ जॉब, टेंथ जॉब के लिए जा रहे हैं, तो उस इंसान का रेफरेंस दीजिए जो आपको, जिसके साथ आपका कंडक्ट अच्छा है और वो आपके बारे में अच्छे रेफरेंस देंगे, और उनकी खुद की भी एक स्टैंडिंग होनी चाहिए. उन रेफरेंसेस को आप पहले से बता दीजिए कि आप इस जॉब के लिए जा रहे हैं, हो सकता है आपको इनसे फोन आएगा मेरे बारे में चेक करने के लिए. अगर आप फाइनल पोजीशन के लिए नहीं भी सिलेक्ट होते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. आपको एक एक्सपीरियंस हुआ, आप जॉब इंटरव्यू में गए, आपको एक एनवायरमेंट में पता चला कि आप किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप वापस घर आइए. आप नहीं सिलेक्ट होते तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर करिए. डोंट लूज योर हार्ट कि अगर एक इंटरव्यू में नहीं हुआ, 10 इंटरव्यू में नहीं हुआ, लेकिन एनालाइज जरूर करिए कि क्यों, मेरा क्यों नहीं हुआ. वो एनालाइज आप तभी कर पाएंगे जब आप पहले ही जितने स्टेप्स थे आप उन पे काम करेंगे. आप कंपनी के बारे में जानकारी लेंगे, आप अपनी स्किल्स को ब्रश अप करके चलेंगे, आप कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू में अपियर होंगे, एंड योर रेफरेंसेज आर गुड, आपकी अच्छी रेफरेंसेज होंगी, और आप मतलब बिल्कुल पोजीशन से अप्रोप्रिएट आपका स्किल होगा. ऐसा नहीं कि पोजीशन हेल्थ वर्कर्स के लिए आती है आपको सुइंग है और आप हेल्थ वर्कर्स के लिए देने चले गए, आती आपको स्टिचिंग एंड सुइंग है, या स्टिचिंग एंड सुइंग अपेरल का कोई है, आता आपको ब्यूटिशियन का कोर्स है और देने चले गए आप स्टिचिंग एंड सुइंग के उसके लिए, तो वो मिसमैच हो जाएगा. टैली आपको आता ही नहीं, कभी आपने सीखा ही नहीं, तो आप इंटरव्यू देने चले गए, आप कभी भी सिलेक्ट नहीं हो सकते. चाहे आप कितना भी कॉन्फिडेंट हो जाएं, जितना भी अच्छे आप ढंग से अपने कपड़े पहन के चले जाएं, कितने भी अच्छे से आप इंटरव्यू से, आप ये नहीं कह सकते आई विल लर्न ऑन द जॉब, आई एम अ फास्ट लर्नर. नो, दैट वाज द स्किल रिक्वायर्ड फॉर द जॉब. हाँ, उसमें वो बोले कि अच्छा आप टैली में कर लेते, क्या आप ईमेल राइटिंग आती है? अगर आपको ईमेल राइटिंग नहीं आती लेकिन टैली आता है, तो आप बोल सकते हैं कि देखो बेसिक इंग्लिश आती है, ईमेल राइटिंग भी सीख लूंगा. लेकिन मेरा ये सजेशन है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हम एज अ प्रोफेशनल, चाहे हमें 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, 0 साल का एक्सपीरियंस है, कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो हमें लगातार सीखते रहना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट होता है. वो ऐसी स्किल्स हैं कि जैसे एमएस ऑफिस हो गया. एमएस ऑफिस क्यों हमेशा, क्योंकि इसमें नए नए वर्जन आते हैं, हर वर्जन के साथ कुछ ना कुछ नया टेक्नोलॉजी एड ऑन हो जाता है. ईमेल राइटिंग इज एन आर्ट, मतलब इसमें कितने कोर्सेज लोग करते हैं, क्योंकि किस तरीके से आप ईमेल लिख सकते हैं जो दूसरे को कन्विंस कर सकता है आपकी बात को मानने के लिए. बेसिक इंग्लिश में ना डरना नहीं चाहिए. बेसिक इंग्लिश के कुछ वर्ड्स होते हैं, आप देखिए ज्यादातर लोग वही 50-60 वर्ड्स के अंदर अंदर ही बेसिक कॉन्वर्सेशन कर लेते हैं. हम रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत, जैसे कि वो कहते हैं ना, जैसे कि जैसे शशि थरूर को आपने कभी अगर तो इंटरव्यू किसी ने देखा होगा, वो जिस लेवल की इंग्लिश या सुधा मूर्ति जिस तरह की इंग्लिश यूज करते हैं, हमने उस इंग्लिश में बात नहीं करनी। बेसिक चीज मैंने बोली आपकी समझ में आए, आपने बोली मेरी समझ में आई, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन, उस शब्द को कहाँ यूज करना है वो हम प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियोस ऐसी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन है और फ्री है, और आपको जॉब में हेल्प करेगी। ये जैसे ही आप अपने सीवी में डालते हैं, आपका आपका लेवल थोड़ा हाई हो जाता है एज अ कैंडिडेट। सो दिस वॉज इट। I don't know if this is useful or not, but I thought, बहुत सोचा कि बहुत heavy हो रहे थे वो sessions, तो हम कौन सा ऐसा कुछ topic पकड़ सकते हैं जो सबके सबके लिए जरूरी है। आप basic communication skill अगर ले लेते हैं और interviews की ले लेते हैं तो भी हम at least किसी level पे पहुंच सकते हैं। Bye, सब अपना ध्यान रखेंगे, कोरोना से बच के रहेंगे।
3: Thank you so much, ma'am.
0: Bye, bye, bye.

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: गुड आफ्टरनून मैम।
1: गुड आफ्टरनून। सेशन के लिए सब तैयार हैं?
0: यस मैम।
1: आज का जो सेशन है बहुत ही सिंपल थॉट प्रोसेस मैंने लिया है। थोड़ा हटके मैं बात करूंगी आज काम के बारे में, तो लिंक करूंगी करूंगी, बट हम बेसिक्स ऑफ लाइफ से शुरू करेंगे कि हमारी लाइफ क्या है और हमें लाइफ के साथ कैसे डील करना होता है। तो गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप एवरीबॉडी इज एबल टू जॉइन द सेशन वेल इन टाइम। मैं शुरू कर लेती हूँ, फिर बीच में कोई भी ज्वाइन करेंगे तो अपना हाथ खड़ा कर दें, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी कुछ पॉइंट्स, ठीक है? तो आज हम शुरू करते हैं बहुत ही एक बेसिक चीज से कि हम लोग सब, बर्थ होता है हमारा, है ना, और हम आज जो भी है यहाँ पे सबका किसी ना किसी टाइम पे बर्थ हुआ है और हमारी एक डेट ऑफ बर्थ भी है और ईश्वर ने हमें एक लाइफ दी है, राइट? और जो हमें लाइफ दी है ईश्वर ने, वो ही डिसाइड करता है कि हमें किस फैमिली में बर्थ लेना है, कौन सी फैमिली, कौन से पेरेंट्स हमें मिलेंगे, कौन से पेरेंट्स हमें पालेंगे, हम किस घर में रहेंगे, ये सब कुछ ऊपर से डिसाइड होकर आता है। पर भगवान हमें क्या देता है? एक जिंदगी, एक लाइफ। वो लाइफ को कैसे जीना है वो हमारे हाथ में होता है, बर्थ हमारे हाथ में नहीं है। अगर आप अच्छे से समझे इस बात को, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बर्थ हमारे हाथ में नहीं है पर लाइफ हमारे हाथ में है, और जिस तरीके से हमें अपनी लाइफ जीनी है वो हमें डिसाइड करना है। हमारे पेरेंट्स, कोई भी ऐसा पेरेंट नहीं है जो अपना बेस्ट अपने बच्चों को नहीं देता है ना। जो पेरेंट्स, और हर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को बेस्ट देते हैं और एक लाइफ की डायरेक्शन भी दिखाते हैं कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को जाना है, बट खाली 3% लोग हैं जो बर्थ के बाद अपनी लाइफ को बना सकते हैं। वो 3% जो लोग हैं, उन्होंने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपनी लाइफ में किया होता है, तभी वो अपनी लाइफ को अच्छे ढंग से बना पाते हैं। 97% ऑफ द पीपल लिव अ कॉमन रूटीन लाइफ। हम लोग भी कॉमन रूटीन लाइफ ही जीते हैं। सुबह उठते हैं, दिनचर्या करते हैं, खाना बनाते हैं, ऑफिस आते हैं, ऑफिस का रूटीन का काम करते हैं। ज्योति, आपकी बहुत डिस्टरबेंस आ रही है, मेरी स्क्रीन में आपके डिस्टरबेंस आ रही है। आप कभी आगे देखते हो, कभी पीछे, कभी इधर कभी उधर, तो मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो रही है। नहीं
2: सॉरी मैम, वो थोड़ा सा ना बच्चे सिटिंग कर रहे थे 2 मिनट की, बस अब नहीं करेंगे
0: वो मेरी
2: बिल्कुल
0: मेरी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, जो
2: जी
0: मैं
2: मैम।
0: थॉट प्रोसेस लेके बोलना चाह रही हूँ वो फिर हट जाता है दिमाग से, ठीक
2: नहीं मैम सॉरी
0: है? हाँ,
2: जी।
0: तो 97% लोग जो हैं इस दुनिया में कॉमन रूटीन लाइफ जीते हैं, जो एक एक रूटीन है कि सुबह उठना है, रात को रात होती है, हम सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं। कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स हम नहीं दे पाते हैं। हमें एक सेटिस्फेक्शन भी मिल जाती है अपनी रूटीन लाइफ से और हम बहुत प्राउड फील करते हैं कि हाँ, हमने आज बहुत कुछ कर लिया अपनी लाइफ में। एट द एंड ऑफ द डे वी डिराइव अ सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन ऑन व्हाट वी डू नॉर्मली, जो हमारी लाइफ इस पे डिपेंडेंट रहती है और इसके ऊपर आसपास घूमती है। क्लीनिंग हो गया, ईटिंग हो गया, अर्निंग लाइवलीहुड हो गया, स्लीपिंग हो गया, मेडिटेटिंग हो गया, एंड वी ऑल्सो टेक केयर ऑफ आर गुड हेल्थ एंड फैमिली रिलेशनशिप्स। तो मेरे हिसाब से ये एक रूटीन लाइफ है। जब तक हम इस रूटीन लाइफ में रहते हैं, हम सेटिस्फेक्शन डिराइव करते हैं अपनी लाइफ से, बट अगर हम कुछ हटके करने की सोचें तो हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में कर सकते हैं।
1: तो हम रूटीन लाइफ तो हर कोई जी रहे हैं, पर अगर हम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स लेते हैं अपनी लाइफ में तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। सो एक स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। जो विनर्स होते हैं, जो सक्सेसफुल लोग हैं, वो कोई डिफरेंट चीजें नहीं करते हैं, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वो डिफरेंटली करते हैं, चीजें सेम होती हैं लाइफ की। सबको पैसा चाहिए, सबको नॉलेज चाहिए, सबको एजुकेशन चाहिए, सबको बिजनेस चाहिए। एवरीथिंग इज द सेम, ऑलमोस्ट द सेम, बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो ये शिव खेरा की स्टेटमेंट है, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स। वो कोई आसमान से कोई चीज तो उतरती नहीं है कि वो जो अलग से करते हैं, बट वो उन्हीं चीजों को डिफरेंट तरीके से करते हैं, तभी वो सक्सेसफुल हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स डालते हैं। हाउ यू डू थिंग्स डिफरेंटली, हम क्यों कैसे कर सकते हैं अलग से चीजें, वो कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। अभी तक सबको समझ में आ गया मैंने क्या बोला है?
2: यस मैम,
1: शिव खेरा की स्टेटमेंट मैं रिपीट कर रही हूँ, विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। एंड हाउ दे डू थिंग्स डिफरेंटली, वो अपनी जो पावर्स हैं उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करते हैं। नॉर्मली जो हम रूटीन में काम करते हैं, हम अपने पावर्स को अंडर एस्टिमेट करते हैं कि शायद हम ये नहीं कर पाएंगे, शायद ये मेरे बस का नहीं है, इट्स बियॉन्ड माई फैमिलीज डिसीजन, मैं शायद ये नहीं कर पाऊंगी। तो हम अपनी जो पावर्स हैं, जो इंटरनल पावर्स हैं, हम उनको अंडर एस्टिमेट करते हैं। द क्वेश्चन इज नॉट व्हाट यू डू, बट आर फोकस शुड ऑलवेज बी व्हाट यू कैन डू। मतलब कि हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम ये करना चाहते हैं और हम ये कर रहे हैं, बट हम इसको कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो हमारे थॉट प्रोसेस में कभी कभी डेविएट हो जाता है। तो हमें छोटे छोटे स्टेप्स, मैं ये कोई बड़ी बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये मैं कॉमन स्टेटमेंट बोल रही हूँ, तो हम बेबी स्टेप्स लेते हैं जब, तो हम बहुत बड़े अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते हैं। हम क्या सोचते हैं, फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एग्जाम्पल भी देना चाहूंगी कि हम सोचते हैं अच्छा आज मेरी सैलरी 5,000 है, अगर मैं 10,000 कमाना शुरू कर दूं तो आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड। बट हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर मैं 50,000 या 1,00,000 रुपया कमाने की अपना गोल सेट कर लूं और उसके वो गोल अचीव करने के लिए मैं कैसे चीजों को डिफरेंटली कर लूं, अगर वो प्लानिंग हम नहीं करते हैं, वो गोल सेटिंग हम अपनी लाइफ में नहीं करते हैं, तो हम एक रूटीन में ही रह जाते हैं। उस रूटीन से हटके हम अपने बड़े ड्रीम्स जो हम लेते हैं कभी कभी, हम उनको रियलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे पास, सबके पास नॉलेज है, हम सब लोग नॉलेज गेन करते हैं, हमें इंफॉर्मेशन मिलती है, और जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हैं वो सब रीड सेंटर से जुड़े हैं, और सबको नॉलेज दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है, मेंटरशिप रोल प्ले करते हैं कोऑर्डिनेटर्स, और हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन भी शेयर करते हैं। बट अगर हमारे पास नॉलेज है और अगर हम उसको सही ढंग से यूज नहीं कर रहे हैं, तो फिर भी हम अपने लिए रोड ब्लॉक्स बना रहे हैं, हम सक्सेसफुल बनने की सीढ़ी से कहीं अपने आप को पीछे लेके जा रहे हैं। और ये नॉलेज, इंफॉर्मेशन और गोल सेटिंग के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है जो है करेज। अगर मैं करेज नहीं रखती हूँ कुछ भी करने का, जो मैं अपनी नॉलेज को डिफरेंटली यूटिलाइज नहीं कर पाती हूँ और अपने पोटेंशियल को मैं हार्नेस नहीं कर पाती हूँ, तो मैं कहीं ना कहीं अपने रूटीन वर्क से ऊपर नहीं उठ पाती। यहां तक सबको समझ में आ गया मैंने जो बोला कि हमें जीवन मिलता है, पर जीवन और जिंदगी में बहुत फर्क है। हम जीवन तो जीते हैं, पर जिंदगी को कैसे शेप देनी है वो हम नहीं सोच पाते हैं। हम एक छोटी सोच लेकर ही अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हैं, पर हम अगर अपनी लाइफ में बड़े गोल्स बनाएं, बड़ी सोच रखें, जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिया है कि 5,000 से 50,000 का सैलरी कैसे हमने कमानी है, या कैसे अपने बिजनेस में 5,000 से 50,000 कमाने हैं, अगर उसमें हम नॉलेज के साथ साथ हम अपना करेज भी मेंटेन रखें और अपने पोटेंशियल को भी हार्नेस करें, तो मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पीछे हट सकते हैं। हमारे पास जो डेटा आया है पिछले साल का, जो हमने रियलाइज करा आज ये प्रेजेंटेशन, ये सेशन मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, मोर देन 50% ऑफ द कम्युनिटीज विद होम वी हैव वर्कड और हमने उनको ट्रेन करा है, उनकी मंथली इनकम है 2,000 से 5,000 तक। अगर उनमें से कोई भी ये सेशन सुन रहा है तो उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि 2,000 और 4,000 की रेंज में कमाने से मुझे 20,000 और 25,000 की रेंज में कैसे पहुंचना है। कोई फर्क नहीं है, आपके पास सेंटर है, आपके पास सुइंग मशीन है, आपके पास ट्रेनर है, आपके पास आपने टाइम भी निकाला है सीखने के लिए, पर आपने वो जो मोटिवेशन है, जो करेज है, नॉलेज को इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है, कहीं ना कहीं वहां गैप। आप लोग सहमत है मेरी बात से, है ना? क्योंकि
2: जी
1: हम
2: मैम,
1: आपको सेटिस्फाई कर लेते हैं कि हाँ मेरी जरूरत जो है वो 4,000 में पूरी हो रही है, मेरे को ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं है, यही सोच है सब लोगों की। कोई हाथ खड़ा करेगा? सो देट आई गेट द रिस्पॉन्स कि कितने लोग ये सोचते हैं और कितने लोग ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है जिससे मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मुझे कुछ हटके करना है, मुझे कुछ डिफरेंटली करना है, तो हम अपनी लाइफ में नॉलेज, विजडम, करेज और पोटेंशियल का बैलेंस बना के रखते हैं तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सारी लड़कियों के एग्जाम्पल दूंगी, मैं नाम नहीं लूंगी, जिन्होंने अपने लाइफ में रीड सेंटर के थ्रू बहुत आगे बढ़े हैं, अपनी एजुकेशन को भी आगे किया है, अपने मोटिवेशनल लेवल को भी आगे किया है, अपने

पे, सोसाइटी पे, अपने ऑफिस पे, अपने नेटवर्क पे, अपनी फैमिली पे, अपने रिलेटिव्स पे ही फोकस रहते हैं। और हमारा जो छोटा सा दायरा बना हुआ है, हम उस दायरे से कभी बाहर सोचने के लिए, हिम्मत करने के लिए नहीं निकल पाते हैं। मोस्टली लोगों के साथ ऐसे होता है। बहुत एग्जाम्पल्स और भी हैं जो अपने दायरे से बाहर निकल के मेहनत करके आगे बढ़ते हैं, पर नॉर्मली 70%, जो मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट में बोला था, 3% आगे बढ़ते हैं, 97% अपनी रूटीन में रह जाते हैं। वो इसलिए रह जाते हैं कि वो अपने घर की जिम्मेदारियों से, अपने समाज की जिम्मेदारियों से, अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों से वो अपने दायरे से बाहर नहीं आ सकते हैं, और वो ही उनकी एक दुनिया बन के रह जाते हैं। और जब तक हम उस दुनिया से, उस वर्ल्ड से बाहर नहीं निकलेंगे, हम एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट्स नहीं डालेंगे, हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज करने में कहीं ना कहीं पीछे हट जाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि आपके ड्रीम्स ऐसे होने चाहिए कि आप आसमान में उड़े उड़े तो बहुत अच्छी बात है, पर हाँ, अपनी रूटीन के दायरे से बाहर आने के लिए अपने ड्रीम्स को प्लान करना चाहिए, अपने गोल सेट करने चाहिए। और कोई बुरी बात नहीं है अगर हम ड्रीम्स देखें कि आज अगर मैं इस जगह पे हूँ तो मुझे 15 साल बाद किस जगह पे होना है, और अगर 15 साल बाद हमें किस जगह पे होना है, अगर आज हम नहीं सोचते हैं तो ये 15 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। आपके गोल्स वहीं के वहीं रहेंगे, 15 साल बाद आप उसी पोजीशन पे रहेंगे, उसी दायरे में रहेंगे, उससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये मैं आपको बहुत क्लियरली, बहुत साइंटिफिक स्टेटमेंट बता रही हूँ। मैं अपना भी एग्जाम्पल दे सकती हूँ। 30 साल पहले मैं पीएचडी नहीं थी, मैं बहुत लोअर पोजीशन से डायरेक्टर की पोजीशन पे आई हूँ, क्योंकि 30 साल पहले मैंने विजुअलाइज कर लिया था, जब मैं टेबल के दूसरी साइड पे बैठी थी और मैंने कहा था मुझे तो इसी कुर्सी पे बैठना है जहां पे मेरे सामने बैठे, और वो सामने वाली कुर्सी पे आने के लिए मुझे जो मेहनत करनी थी मैंने वो करी। और ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी फैमिली को छोड़ा, मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को छोड़ा, मैंने अपनी एजुकेशन को छोड़ा, मैंने अपनी नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, बट द ओनली थिंग विच मेड मी सिट ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल वॉज करेज। करेज बहुत जरूरी है हमारे में आना, जिससे हम अपने ड्रीम्स को रियलाइज कर सकते। और हमें बहुत ये पहचान भी होनी चाहिए, सोच भी होनी चाहिए कि हम अपनी लाइफ कंडीशंस कैसे क्रिएट करते हैं अपने लिए। लाइफ कंडीशंस क्या होती हैं, आज मैं आपको ये भी समझाऊंगी। लाइफ कंडीशंस होती हैं कि हमारे आसपास का एनवायरनमेंट, हमारे आसपास के लोगों की सोच, हमारे आसपास जो लोग हमें रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं आगे बढ़ने के लिए वो, और हमारी अपॉर्चुनिटीज जिनको हम ग्रैब नहीं कर पाते हैं, मे बी एनी ऑफ द रीजन। तो वो जो हमारी अपनी सोच है और जो हमारा अपना एनवायरनमेंट क्रिएट किया हुआ है, आज मैं पहले उसकी बात करूं। एक वर्ड है, आपने सुना होगा, हेल्प। हम बहुत यूज करते हैं इस वर्ड को। आई एम लिविंग इन अ हेल, माई एनवायरमेंट इज वेरी नेगेटिव, मेरे आसपास लोग वो सोच ही नहीं रखते जो मैं अपनी सोच रखती हूँ। ये जो हेल वर्ड है, जो हम अपने ही दायरे में, अपने ही कुएं में गिरते हैं, वो किस तरीके से गिरते हैं, सिर्फ अपनी सोच से। हम एक नॉर्मल सोच से हम ऊपर नहीं उठ पाते हैं, अपने आप को ऊपर नहीं उठा पाते हैं। सबके साथ बहुत सारे हालात ऐसे होते हैं जिनसे हमें कंप्रोमाइज करना पड़ता है। जो हमारे एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स, पर हमारे अंदर की सोच वो क्या है, वो हमारी है। वो सोच पे किसी का कोई अधिकार नहीं है। मेरे

0: पे आप जरूर एम्फेसाइज करें। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो हमें कहता है, हमारे डायलेक्ट्स, हमारी लैंग्वेज, हमारी सोच को बदलता है। पर अगर हम अपनी सोच पे कंट्रोल रखें, कीपिंग इन व्यू द पॉइंट्स आई शेयर्ड इन माय फर्स्ट लाइफ, तो हम अपनी सोच के ऊपर कंट्रोल रख सकते हैं। 97% ऑफ द पीपल जो अपनी लाइफ में रूटीन से आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो हमेशा एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं उनको ब्लेम करते हैं। माय मदर इन लॉ इज लाइक दिस, माय हस्बैंड डजंट लिसन टू मी, मेरे घर का काम खत्म नहीं होता, मेरे पे बहुत प्रेशर है, मेरे पे बहुत टेंशन है। वो किसकी सोच है? वो हमारी सोच है। हमने वो सोच अपने ऊपर इतनी जबरदस्त उसको हावी होने दिया है, उस हावी होने के कारण हम अपना करेज लूज कर सकते हैं, हम अपनी नॉलेज के ऊपर धूल छोड़ देते हैं, हम अपने जो एक्शंस लेने हैं अपने गोल तक पहुंचने के लिए उनको डाइल्यूट कर देते हैं। वो एक ही बहुत बड़ी चीज है जो हमारी सोच है, जो हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हमारी सोच के ऊपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। ये सबके साथ होता है, ये मेरे साथ भी होता है, मैं कोई अलग से नहीं हूँ। बट हाँ, ये हमारे अपनी लाइफ में रूटीन में प्रैक्टिस करना है कि हम जितना अपने एक्सटर्नल फैक्टर्स को अपने ऊपर प्रेशर ना क्रिएट करने दें, उतना ही हम हमारे लिए अच्छा है। तो ये हेल वर्ड आपको समझ में आ गया, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी फैक्टर्स जो हमारी लाइफ में हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। दूसरा है हंगर। हंगर क्या होता है? ग्रीन। हम हमेशा एक्सटर्नल फैक्टर्स में कंपेयर करना शुरू कर देते हैं कि उसके पास ये चीज है, मेरे पास नहीं है। वी डोंट ट्राई टू लिव विद इन द मीन्स वी हैव, और हम कंपैरिजंस में उन सब चीजों को लेने की एक जिज्ञासा रखते हैं, हंगर रखते हैं, और उस जिज्ञासा को पूरा करने के लिए हम गलत काम भी कर लेते हैं। हम अपनी ट्रांसपेरेंसी पे, अपना जो ट्रूथफुलनेस है इनसाइड आउट, उसके साथ कंप्रोमाइज कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर है हमारी लाइफ में, और हर कोई करता है ये। आई एम जस्ट ओपनिंग योर आईज ऑन दिस। हम कहते हैं कि हमें कोई नहीं देख, हम ये कर सकते हैं, बट अगर हम इनसाइड आउट एक ही हैं, हम फर्क नहीं हैं, तो हम इस जिज्ञासा से बाहर आ सकते हैं। तीसरा बहुत ही नेगेटिव पॉइंट जो मैं रूटीन लाइफ की बात कर रही हूँ, वो एक और जो नेगेटिव पॉइंट है वो है एनिमैलिटी। एनिमैलिटी का मतलब होता है कि हम इतने सेल्फिश हो जाते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरों को प्रॉब्लम में देख के वी आर सेटिस्फाइड। चाहे हमारे से छोटे ऑफिसेस में भी यही होता है, रूटीन होता है कि मैनेजर अपनी जूनियर टीम के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट करता है कि वो फ्रस्ट्रेशन में इतना आ जाता है कि वो अपने करेज को भी डाउन कर लेते हैं, अपने एम्बिशंस को भी किल कर लेते हैं, अपने पोटेंशियल को भी रियलाइज नहीं कर पाता है। तो ये जो एनिमैलिटी है, एनिमैलिटी मीन्स नॉट गिविंग स्पेस टू एनीवन, और अपने जूनियर्स को जूनियर समझना और अपने आप को बड़ा समझना, ये जो रोल होता है जो मेंटरशिप के आगे बिल्कुल उसको धुआं डाल देता है, उसको किल कर देता है, जो हम लीडरशिप की बात कर रहे हैं, वो चीज हमें कहीं ना कहीं आगे बढ़ने से रोकती है। वो हमारी एक नेगेटिव पर्सनालिटी हो जाती है। चौथा पॉइंट है एंगर। हमें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, हमारी लैंग्वेज फर्क हो जाती है, हम स्कोल्ड करना शुरू कर देते हैं दूसरों को, हम इतना नेगेटिव हो जाते हैं, हम इतना नेगेटिव लैंग्वेज यूज करनी शुरू कर देते हैं गुस्से में, और बहुत कुछ हम बोल जाते हैं जो असल में हमें नहीं बोलना चाहिए। तो वही होते हैं ना गिव एंड टेक प्रोसेस। अगर हम नेगेटिविटी को एम्बाइब कर रहे हैं, हमारी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है, हम एनिमैलिटी की पर्सनालिटी में जाते जा रहे हैं कि हम दूसरों को छोटा समझते हैं और अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं, और हमें छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, तो ये सारा कुछ मिला के हमारी पर्सनालिटी को नेगेटिव कर देता है। तो अगर हम ये छोटी छोटी चीजों को समझना शुरू करते हैं, अपने आप को रिफाइन करना शुरू कर दें, अपने आप को हम इस दायरे से बाहर ले आए, तभी हम करेज जो है हमारा वो हमें अलाउ करेगा कि हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ के कुछ कर सकें। तो ये जो चार पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, और दो और हैं जो ह्यूमैनिटी है, ह्यूमैनिटी इन द सेंस ऑफ नेगेटिव अप्रोच, और दूसरा रैप्चर है, ये भी ऑलमोस्ट सेम चीज है जो मैं आपको बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी। बेसिकली मैं आपको ये समझाना चाह रही थी कि अगर हमारी सोच ही नेगेटिव है, हम अपने आप को बेचारा समझते हैं कि ये बेचारी है, इस वर्ड से मुझे बहुत ही नफरत, कोई बेचारा नहीं है इस दुनिया में, कोई बेचारी नहीं है, सिर्फ ये हमारी सोच है जो हमें एक पॉजिटिव दायरे में रहने से बाहर खींचती है, और ये एक यूनिवर्सल नेचर एनवायरनमेंट ही ऐसा होता है, पर हमें अपने आप को स्थिर रखना है, हमें अपने आप को स्ट्रांग रखना है, हमें अपनी लाइफ को अपने हाथों में रखना है, चाहे हम जिस जरूरी नहीं है कि हम एक महीने में स्काई लिमिट तक पहुंच जाएंगे, नहीं, पर अगर हम ये अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे तो कहीं ना कहीं तो हमारे ये जो वैल्यूज हैं हमें लेकर जाएंगे, और अगर हम इन वैल्यूज को एक्सटर्नल सराउंडिंग से दबने नहीं दें तो हम अपनी लाइफ में राइज कर सकते हैं। और वो पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं? लर्निंग, जो आप लोगों को सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, रियलाइजेशन कि आप क्या अपनी लाइफ में कर सकते हैं, ट्रू इनसाइड आउट जो मैंने ह्यूमैनिटी के साथ लिंक करा था, अगर वो है और हम इसको अपनी लाइफ के एक पहलू बना लेते हैं, अपने मंत्रा बना लेते हैं, और हम डिस्कवर करते हैं कि हम क्या अपनी लाइफ में अच्छा कर सकते हैं, हम वी आर ऑलवेज एस्पायर्ड दूसरों को देख के जो अच्छा कर रहे हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन की भावना हमारे में आ जाती है, विद प्योर प्योर मतलब कि हमारी सोच बिल्कुल सही, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है हमें, इनडिस्ट्रक्टिबल हैप्पीनेस हम अपनी लाइफ में एंजॉय कर सकते। तो मैंने शुरू कहाँ से किया? अपनी बर्थ से। लाइफ को कैसे हमने सही रास्ते पे लेके जाना है, और सही रास्ते पे हमने अपनी नेगेटिविटी को कैसे रिमूव करना है क्योंकि हमारा स्मूथ पाथ रहे लाइफ का, और लर्निंग से, रियलाइजेशन से, ट्रूथफुलनेस से हमने अपनी लाइफ को कैसे हैप्पीनेस की तरफ टर्न करना है, मैं ये पॉइंट्स आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जब तक हैप्पीनेस नहीं है विद इन योर सेल्फ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, बहुत सारे डिस्ट्रक्शंस आते हैं, बट अगर आपके करेक्टरिस्टिक्स इन पांच छह मुद्दों पे डिपेंडेंट हैं, तो आप बहुत जल्दी अपने आप को डेविएट कर लोगे दूसरी तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ, और जैसे ही आप पॉजिटिविटी की तरफ टर्न करोगे, आपको करेज आएगा, आपको एहसास होगा कि हाँ मेरा लाइफ का गोल तो फर्क है, मैं क्यों इन सब चीजों में उलझी हूँ, मुझे इस उलझन से बाहर आना है, और मैंने आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए हैं। दो पॉइंट्स मैं और एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे कि हमें बहुत आदत होती है, हम सेल्फ बूस्टिंग करते। मैं भी करती, मैं बहुत कभी कभी बोल देती हूँ, मैं अपनी फेस कर लेती हूँ, मैं अपने आप के बारे में दूसरों से कंपेयर करके अपने आप को अच्छा साबित करती हूँ, जो नहीं करना चाहिए। हमें दूसरों को भी उसी दायरे में देखना चाहिए जिस दायरे में हम हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस ले लेते हैं, अपनी लाइफ का एक पैटर्न बना लेते हैं, तो हम अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी बहुत ही आसानी से लेकर आ सकते हैं। हम कितने सच्चे हैं अपने लिए, ये एक एग्जामिनेशन है, सेल्फ एग्जामिनेशन है, जो हमें हर रोज अपने लिए करना चाहिए। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आते हैं अपनी लाइफ में कि हम दूसरे के मुंह के ऊपर जो हम बात कर रहे हैं, इन फ्रंट ऑफ हिम और हर वी आर हैविंग डिफरेंट फेस, बट अंदर से हम उसके लिए नेगेटिव। तो ये ट्रूथफुलनेस जो है, ये एक बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है अपनी अचीवमेंट्स में। इनविजिबली वो ब्लॉकेट क्रिएट कर देते। हम कितने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं अपनी ही लाइफ की। हम अपनी लाइफ में बहुत सारे लोगों पे डिपेंडेंट हो जाते हैं कि उसने ये नहीं किया मेरे लिए, इसलिए मैं आज नहीं इस लेवल पर पहुंच पाई। मेरी फैमिली ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मेरे को बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हम आम वुमेन से बात करते हैं अपने सेंटर्स पे, जो हमारे सामने आती हैं, पर हमने कभी उनको समझाया नहीं इस लेवल पे आके कि ये मुश्किलें तो सबके साथ हैं। अगर हम इन मुश्किलों से अपने आप को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे, तभी हम कुछ कर पाएंगे। और उसके लिए क्या जरूरी है? अपना आत्मविश्वास, अपने पे बिलीव करना कि यस आई कैन डू। अपने जो अंदर अंदरूनी पोटेंशियल है, उसको हम हिलने नहीं दें, उसको डगमगाने नहीं दें, और अपनी पॉजिटिव थॉट प्रोसेस रखें और पॉजिटिव स्पिरिट्स रखें, तो हम हमारा जो आगे का रास्ता है वो बहुत ही रोशनी वाला हो जाएगा, और हम अपने लाइफ के गोल तक पहुंच सकते हैं। गोल कोई भी हो, मैं पैसे का गोल नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे, पर यस पैसा सबको चाहिए, पैसा सबको कमाना चाहिए, और हमारा रीड इंडिया का मिशन यही है कि हम सबको इस लेवल तक ले आए कि वो किसी के आगे भी औरत हाथ नहीं फैलाए और वो डिपेंडेंट नहीं हो। यही हमारा बेसिक मुद्दा है जिसको हम सपोर्ट करते हैं नॉलेज से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, विजडम से, और उसको हम ये सेशंस लेके मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में कुछ करना है। हमें नॉर्मली सपोर्ट नहीं मिलता है। आपको ये लगेगा कि मैम हवा में बातें कर रही है। मैं इसको फिर से दोहराना चाहूंगी कि हमें अपनी फैमिली से, अपनी फ्रेंड से सपोर्ट नहीं मिलता और हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उस सिचुएशन में हमें क्या करना है? उस सिचुएशन में जो इनविजिबल पावर है, उसके ऊपर फेथ रखनी है, उसके ऊपर विश्वास रखना है, और वो इनविजिबल पावर ही जो है, अगर आप सच्चाई के रास्ते में चल रहे हैं, और जो मैंने सिक्स डेविल्स की बात करी है जो आपकी पर्सनालिटी को अटैक करते हैं, अगर आप उनमें ट्रुथफुल हैं, तो आपके रास्ते, मैं गारंटी से कहती हूँ, मैंने अपनी लाइफ में ये एक्सपीरियंस किया है, कि बहुत खुल जाएंगे और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो स्ट्रगल्स सबकी लाइफ में है, पर अपनी लाइफ को कैसे हमने डायरेक्शन देनी है वो हमारे हाथ में। मैं अपना ये सेशन बाद में हम डिस्कशन करेंगे, मैं हाफ एन आवर का सेशन रखती हूँ, और हाफ एन आवर आई वुड लाइक टू डिस्कस विद यू आल्सो। मैं एक छोटी सी स्टोरी से कंक्लूड करूंगी और फिर आप लोग कन्वर्सेशन करेंगे मेरे साथ। मैं कोशिश करूंगी आपके जो क्वेरीज हैं उनको आंसर करने के लिए। एक फिशरमैन था, वो सुबह सुबह अंधेरे में ही उठ के सी के शोर पे चला गया और वो अपनी तैयारी करने लगा कि आज उसने कहा कि मैं रोज जितनी मछलियां पकड़ता हूँ उससे मैं ज्यादा मछलियां पकड़ूंगा और मेरे परिवार के लिए मैं ज्यादा पैसे कमा पाऊंगा। अब वो अंधेरे में जब चला गया और उसको रेत में एक पैर के साथ टक्कर हुई किसी लिफाफे की, उसने वो लिफाफा अपने हाथ में उठा लिया और वो जाके शोर पे बैठ जाता है सी के। और अंधेरा होता है क्योंकि सूरज अभी रोशनी नहीं निकली होती, तो वो उसमें से उस पत्थर को एक एक को लेके वो सी में फेंकता जाता है। बाय द टाइम जब लास्ट पत्थर उसके हाथ में आता है तो सूरज की पहली रोशनी पड़ती है उस पत्थर के ऊपर, तो वो देखता है ये तो हीरा है, ये पत्थर नहीं है। तो वो रियलाइज करता है कि मैंने बहुत सारे पत्थर आधा घंटा बैठ के यहाँ पे सी में फेंक दिए जो हीरे थे, और मैंने उन हीरों को अपने हाथ से, अपने ही हाथों से उनको किल कर दिया, मैंने उनको पानी में फेंक दिया। तो वो अफसोस करता है कि मैंने ये जेम्स जो थे मेरे, मैंने पानी में फेंक दिए। पर मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप अपने जो जेम्स हैं, जेम्स ऑफ थॉट्स, आपकी सोच, आपकी विजडम, आपकी नॉलेज, आपका रिलेशनशिप, आप इनकी इम्पोर्टेंस रियलाइज किए बिना आप उनको अपनी लाइफ से दूर मत करिए। जैसे ही ये आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपकी पॉजिटिव सोच बनी रहेगी और आप भी हीरे की तरह शाइन करेंगे, और ये जो जेम्स हैं आपकी लाइफ के, आपको आपकी लाइफ के गोल तक पहुंचाने में बहुत मदद करें। थैंक यू सो मच। किसी का कोई प्रश्न?
1: मैम क्वेश्चन नहीं, लेकिन मैम बहुत बहुत मोटिवेशन है। सीरियसली इस टाइम हम लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। आई रियली फील वेरी हैप्पी। बहुत सारी चीजें ऐसे जो बीच बीच में छूटने लग जाती हैं, वो रिवाइज होने के बाद हमें थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाता है।
0: तो ये बहुत एक सच्चाई है, बहुत कड़वी सच्चाई है जिंदगी की, और अगर हम इस कड़वे घूंट को पी लेते हैं तो हमारी लाइफ बहुत ही एक डायरेक्शन वाली हो जाती है और हम भटकते नहीं हैं इधर उधर। किसी के कोई प्रश्न प्लीज?
1: मैम आपसे एक पर्सनली क्वेश्चन था कि आपने पीएचडी साइकोलॉजी में की हुई है।
0: नहीं, मैंने पीएचडी तो फैमिली वेलफेयर में की है, साइकोलॉजी में नहीं की है।
1: मैम अच्छा समझाते हैं आप लाइफ के बारे में।
0: अच्छा, ये एक्सपीरियंस से आता है और जितना हम पढ़ेंगे, जितना हम ऐसे माहौल में रहेंगे, जो मैं भी किसी से सीखी, हर कुछ तो आदमी लेके पैदा नहीं होता। तभी मैंने बर्थ और लाइफ के बारे में आपको डिफरेंस बताया है कि बर्थ इज समथिंग एल्स बट लाइफ इज समथिंग एल्स। ये सब कुछ जो है ये लाइफ की एक्सपीरियंस ही है। कैंडिडेट
1: मैम हमारे सेंटर से ये कैंडिडेट है, ये कुछ शेयर करना चाहते
0: हाँ बोलिए।
2: हैं। गुड इवनिंग, माय नेम इज हाफिजा और हम यहाँ कंप्यूटर सीखने आते हैं। की मीटिंग हमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगी। आपने जो भी शेयर किया, जो बताया, वो सब बहुत अच्छा लगा। और आपने जो पॉइंट बताया मेरे को बहुत ज्यादा ही अच्छे लगे। एक तो अपना गोल सेट करना चाहिए और मतलब जो एनवायरमेंट एक्सक्यूज होते हैं वो नहीं बनाना चाहिए कि हमारे आसपास के लोग हमें मतलब माहौल अच्छा नहीं है या कुछ भी। मतलब अपना गोल सेट करना चाहिए, उस पर वर्क करना चाहिए और एक्सक्यूज नहीं बनाना चाहिए, अपने गोल पर काम करते रहना चाहिए।
1: जैसे पढ़ाई वाला
2: जैसे पढ़ाई, मतलब पढ़ाई कर रहे हैं हम तो कुछ करते ही रहे हैं, उसपे ये नहीं सोचे कि हमें आगे करना क्या है या हम बनना क्या चाहते हैं, ये सब सोच कर रखना चाहिए, अपना गोल सेट करना चाहिए।
1: जवाब देते हैं।
0: बिल्कुल, एक जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज मैंने बताई थी कि जो विनर्स होते हैं, जो जीतते हैं, वो चीजें अलग नहीं करते हैं, चीजें वही हैं पर वो डिफरेंट तरीके से करते हैं। कि अगर आपको पढ़ना है तो आम लोग 1 घंटा पढ़ते हैं, पर आपको 3 घंटे पढ़ना है। अगर कंप्यूटर कोई 1 घंटा आपको अगर सेंटर में मिल रहा है, तो उस 1 घंटे को कैसे जुडिशियली अच्छे से यूज करना है सीखने के लिए, है ना। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं अपनी लाइफ में, हम भटक जाते हैं। और अगर हम हमेशा हमारी अलार्म बजता रहे कि हाँ हमें ठीक ढंग से अपनी लाइफ को जीना है, तो ये जो छोटी छोटी गलतियां हम अनजाने में भी करते हैं ना, उन पे भी हम कंट्रोल कर पाते। अब सब लोग ये अपनी कॉपी में नोट करेंगे, मैंने आज जो बताया है कि मैं अपनी लाइफ में इन सब चीजों के ऊपर कंट्रोल कैसे करूं। ठीक है, जब आप लिखना शुरू कर देंगे ना, तो आधी चिंता आपकी किस पे आ जाएगी, पेपर पे। अब जब आधी चिंता आपकी पेपर पे आ जाएगी, तो आपका माइंड फ्री हो जाएगा कुछ अच्छा सोचने के लिए, कुछ अच्छा करने।
1: नमस्ते मैम, जय गुरु जी मैम।
0: बस कुछ जी,
1: हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप एक खुद मोटिवेशन है, आपको देख के अपने आप ही एक अंदर से निकलता है उस चीज के लिए। सेशन तो है ही बहुत जरूरी, पर आपको देखो शक्ल अगर याद भी कर लेते हैं या सामने भी आ जाती है, हम सोच भी लेना, तो आपसे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। आपको देख के ही सोच के ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई, कहाँ से होगी, और अपने लिए नहीं लोगों के लिए जो किया, एक अपना तो चलाया गया, लोगों के साथ इतने लोगों को चला रहे हो, साथ में इतने लोगों की फैमिली चला रहे हो, तो कैसे चला रहे हो, वो चीज बहुत बढ़िया है मैम सोचने के लिए। तो वही चीज एक छोटी सी कोशिश है।
0: वो ऑर्गेनाइजेशन चला रही है, वो मैं नहीं चला रही हूँ। पर हाँ, मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को, मैं कभी सोचती भी हूँ ना कि मुझे छोड़ के जाना है, तो आप सब लोगों की शक्लें मेरे सामने आ जाती है, मैं फिर कहती हूँ नहीं, मैं कंटिन्यू करूंगी।
1: मैम ऑर्गेनाइजेशन ठीक है चला रही है, पर आपके बिना जब तक एक घर तब तक नहीं चल सकता जिसमें जो कोई पावरफुल बंदा वहां पे ना हो, कोई भी चीज हो, तब तक कोई भी संस्था हो या कोई भी समाज हो आगे नहीं जा सकता। और वही मैं चीज मैं बहुत बार सोचती हूँ कि जब मैडम छोटे से लेके यहाँ तक ला सकती है, तो हम थोड़ा थोड़ा करें तो हम लोग कहाँ तक भी जा सकते हैं उस चीज के लिए जो आप लोग सोच
0: जो मैंने वैल्यूज की बात करी है ना,
1: रहे।
0: नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की, वो क्रक्स है, वो एक
1: जी
0: दर्पण है हमारे लिए। अगर हम उस दर्पण पे और हम उसको रोज साफ नहीं करेंगे, तो ये जो हमारे लाइफ के गोल्स हैं, हम उनको अचीव,
1: अचीव नहीं कर सकते मैम हम लोग।
0: बल्कि अगर जो जैसे मैंने अपनी जॉब शुरू करी थी पहले, मैं वहीं पे रहती अगर मेरे गोल डिफाइन नहीं होते, है ना।
1: मैम
0: हाँ, तो ये बहुत जरूरी।
1: थैंक यू मैम।
0: नमस्ते मैडम। नमस्ते
1: मैडम आपको तो हम हमेशा सुनते हैं, आपके विचार भी बहुत अच्छे रहते हैं और समझते भी बहुत है। हम अपने जीवन में उसका इस्तेमाल भी बहुत करते हैं, इसी वजह से हम सक्सेस भी है। मगर मैं अपने महिलाओं को जब समझाना चाहती हूँ तो समझ नहीं पा रही है। अगर आप एक बार भी सेशन ऐसा महिलाओं के लिए ले तो बहुत अच्छा रहेगा।
0: तो आप महिलाओं को ज्वाइन कराइए, उनको सुनने दीजिए, और मैं ये रिकॉर्डिंग भी भेज दूंगी सब सब सेंटर्स पे, जो आप जब महिलाएं काम कर रही होती है मशीन पे, आप ये रिकॉर्डिंग चला दें तो उनको सुनने दें। क्योंकि ये एक बार ही सुनने से नहीं आता, ये जो
1: नहीं
0: मैंने आपके साथ शेयर करा है, मैंने कम से कम 100 बारी अपनी लाइफ में पढ़ा होगा, और
1: यस
0: उसको ये आधे घंटे में एक्सप्लेन करना और वो लैंग्वेज को चुनना, दिस इज एन आर्ट। तो आप लोग भी उनको बार बार सुनाइए, बार बार सुनाइए, और देखिए फिर आपको अपने सामने ही बदलाव नजर आएगा।
1: 100% थैंक
0: हाँ,
1: यू मैम,
0: रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम सबको, और
1: थैंक यू मैम।
0: आप मराठी में ट्रांसलेट कर लीजिए उसको और मराठी में बताएं। ठीक है,
1: हिंदी भी समझती है महिलाओं को, लेकिन क्या होता है जो आपकी लैंग्वेज, आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो हम लोग नहीं उसमें पिरो सकते अपने शब्द को, तो इसीलिए ऐसे थोड़ा सा अलग रहता है। आपका जो बोलने का तरीका है ना, वो बहुत ही अच्छा रहा, अट्रैक्टिव रहता है मैडम, रियली। थैंक
0: आप प्रैक्टिस करेंगे तो आ जाएगा।
1: यू मैम।
2: हेलो मैम,
0: हाँ जी, हेलो।
3: मैम नमस्ते, कैसे
0: नमस्ते। मैं
3: हो आप?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
3: मैम आपका मोटिवेशन बहुत बहुत अच्छा है। मेरी लाइफ में बहुत कभी कभी बहुत प्रॉब्लम आ जाती है, घर की प्रॉब्लम भी होती है। यहाँ पे मैं जॉब करती हूँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम, कॉलेज में पढ़ाई चल रही है उसका बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है। मोटिवेशन इंसान का होना बहुत जरूरी होता है, पढ़ाई भी बहुत ज्यादा डिवाइड हो जाती, पढ़ नहीं पाते हैं। मैम आपने इतना अच्छा मोटिवेट किया है, थैंक यू सो मच सच में।
0: तो आप अब अपनी पढ़ाई खूबसूरती से अच्छे से करिए और आगे बढ़िए। ठीक है, प्रॉब्लम्स
3: ओके, थैंक यू मैम।
0: तो आएंगी, आप प्रॉब्लम्स को नहीं रोक सकते हैं, पर प्रॉब्लम्स से बाहर कैसे निकलना है वो आपके हाथ में।
1: पर मैम
0: इतनी सच
1: सीरियसली, आपकी मोटिवेशन की ना हमें सच में बहुत जरूरत होती है। ऑनेस्टली मैम ऐसे लगता है, जैसे आपने भी हमें बताया ना कि हमें कभी कभी, मैं भी इतनी बार पढ़ी तो मुझे आज फर्स्ट टाइम फिर ऐसे फील आ रहा है। मैंने पहले आपका सेशन लिया था, उसके टाइम हम बहुत टाइम मोटिवेट रहे, एक्टिवली वर्क किया। उसके बाद फिर थोड़ा टाइम ऐसे हो जाता है कि आज ऐसा लग रहा था कि सीरियसली मैम लग के फिर दोबारा से री एनर्जाइज हो गए हम लोग। बहुत अच्छे से आगे इस पे कोशिश करेंगे।
0: मैं कोशिश करूंगी हर हफ्ते एक सेशन लेने का, तो
1: जी मैम,
0: ना
1: जी मैम,
0: वो जो मोटिवेशनल लेवल है वो बने रहना चाहिए। प्लीज
1: जी मैम, जी मैम, जी
0: बनाओ।
1: मैम, जी मैम, थैंक यू सो मच मैम।
4: नमस्ते
0: नमस्ते।
4: फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने हमारे लिए जो कीमती वक्त निकाले है इसलिए हम आपका आभारी है। और आपने जो हमें लास्ट में जो स्टोरी कही कि जो हीरे थे वो पानी में बहा दिए और लास्ट में उसे जब रियलाइज हुआ कि एक ही हीरा बच गए। हमारे लाइफ में ऐसी अपॉर्चुनिटी आती रहती है, हमें उसको समझना चाहिए। लेकिन जब उसके पास एक ही हीरा बचा तो आपसे हमें ये सीख मिली कि एक उस हीरे से भी हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ थैंक यू मैम, और आप बहुत मोटिवेट करती है हमारे काम करने के लिए, इसके लिए आपको थैंक यू कहते हैं। ऐसा सेशन आप ऑर्गेनाइज कर दीजिएगा जो हमें मोटिवेट करता है और कितना भी काम करने के लिए प्रेरित होता रहता है। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सो मच तुषार। और मुझे पता है कि पुणे का सेंटर बहुत अच्छा काम कर रहा है और आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं सब लोगों को, खाली मैं नहीं करती हूँ, आप लोग भी बहुत मोटिवेट करते हैं।
1: थैंक यू मैम, इतना आगे तक लाने के लिए, उस चीज के लिए और एक बढ़ावे के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कोशिश है जो प्रॉमिस आपसे किया है उसको बिल्कुल पूरा करने की। बिल्कुल गुरुजी ने चाहा तो बहुत जल्दी। थैंक यू मैम।
0: थैंक यू सुमन। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर स्पेयरिंग योर टाइम एंड लिसनिंग टू मी।
5: नमस्ते मैम, आप जब जब ट्रेनिंग देते हैं तब तक तो हम बहुत ज्यादा मोटिवेट होते ही हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, कहने की बात नहीं है। बट जब ये ट्रेनिंग खत्म हो जाती है तो हम थोड़े से नीचे आ जाते हैं, लगता ही नहीं है कि कोई हमारे ऊपर है, या फिर हम ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, या फिर कोई देख रहा है हमारे काम को। तो जब जब आप हमें ट्रेनिंग देते हो तो फिर एनर्जी आ जाती है हमें काम करने के लिए। थैंक यू सो मच, और आप हर हफ्ते ये लीडरशिप का एक सेशन रखिए।
0: ठीक है सर, सर
6: गुड आफ्टरनून,
0: गुड आफ्टरनून, कैसी हो? ठीक है।
6: अच्छा आप कैसे मैम? मैम आपका सेशन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, लीडरशिप का, और आप बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हो मैम।
0: आप बस फिर उसको याद रखना है अपनी जिंदगी में, देखो कहाँ से कहाँ पहुंच गई तुम मोटिवेशन से, है ना?
6: जी मैम, मैं और आगे पहुंचना चाहती हूँ मैम।
0: आप पहुंचोगी, तुम 100% पहुंचेगी। ठीक है। गुड
6: थैंक यू मैम।
2: इवनिंग मैम।
0: इवनिंग जी, क्या हाल है मीना? मैं
7: मैं ठीक हूँ मैम, आप कैसे हो?
0: बिल्कुल ठीक हूँ।
7: आज मैं जो कुछ भी हूँ तो सब आपका ही सपोर्ट है, वरना मैंने सोचा नहीं कि मैं मेरी लाइफ में तीसरी बार भी घर बना लूंगी।
0: देखो बहुत अच्छी बात है, बहुत आगे बढ़ोगी तुम मीना, पीछे मुड़ के तुम देखने वाली नहीं हो अब, मुझे पक्का विश्वास
7: जी
0: है
7: मैम,
0: ना? हाँ, और गुंजन के आगे बढ़ेगी बहुत।
7: जी मैम, अभी वैकेंसी निकली है तो गुंजन ने उसमें अप्लाई भी किया है अभी नर्सिंग की।
0: बहुत अच्छी बात, बहुत
7: जी,
0: अच्छी।
7: और मैं कोशिश भी करती हूँ, जो आप सेशन ले रही हो तो जो महिला ट्रेनिंग में आती हैं उनको भी मैं लीडरशिप के बारे में कोशिश कर रही हूँ सेशन देने की भी।
0: बहुत अच्छी बात है, सब लोग करिए, जो मीना कर रही है, जो जितने भी कोऑर्डिनेटर्स हैं वो अगले हफ्ते बिफोर आई टेक अनदर सेशन, आप प्लीज इस सेशन को रिपीट करिए अपने बेनिफिशियरीज के साथ,
7: जी मैम,
0: तभी सेशन का फायदा है, नहीं तो आप मोटिवेट होते जाएंगे वो बेचारे पीछे रहते जाएंगे, उनको अपने साथ लेके चलना है। ठीक है, थैंक यू सो मच।

0: आज जो मैं आप लोगों के साथ सेशन लूंगा वो है एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स का। तो आई थिंक ये मॉड्यूल जो है आप सबके पास ऑलरेडी है, एंड इसी से हम स्टार्ट करेंगे। एंड टोटल 10 सेशन हम लेंगे। आज इसका फर्स्ट सेशन है, एंड प्लीज़ इसको इंटरेक्टिव बनाइएगा। क्वेश्चंस पूछिएगा, मैं भी पूछूंगा, और अगर कोई आंसर नहीं करेगा तो फिर मैं किसी को भी पूछ बोल दूंगा अनम्यूट करके बोलने के लिए। तो इसमें सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं कि पार्ट वन से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट डज बिजनेस मीन्स टू यू। बिजनेस का मतलब क्या होता है? आप लोग एक सिंपल हिंदी में या जैसे भी लेमन टर्म्स में क्या बोलोगे? बिजनेस क्या होता है? बिजनेस का मतलब होता है धंधा, यही कहते हैं ना,
1: हाँ सर, बिजनेस मतलब धंधा व्यापार।
0: व्यापार करना, धंधा करना। तो उसमें इसका इसका ये होता है, या तो आप कोई चीज खुद बना रहे हो, खुद बना के उसको एंड यूजर तक बेच रहे हो, जितनी आपकी लागत लगी है उससे थोड़ा सा ऊपर मार्जिन रख के आप उसको बेचते हो, जिससे आपको एक मुनाफा मिलता है, प्रॉफिट मिलता है। या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप कोई चीज ऑलरेडी जो बना हुआ प्रोजेक्ट प्रोडक्ट है उसको आप कहीं से खरीद रहे हो, होलसेल पे खरीद रहे हो, क्योंकि आप जब एक बल्क क्वांटिटी खरीदोगे तो वो आपको कम रेटों में मिलती है, और फिर उस चीज को आप रिटेल करते हो, मार्केट करते हो और एंड यूजर तक पहुंचाते हो। जो एंड यूजर मतलब जो लोग होते हैं जो उसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। समझ आ गई आप लोगों सबको या नहीं आई?
2: यस सर,
0: इजी इजी लैंग्वेज थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को? अच्छा
2: ना सर।
0: चलो अब इसको पढ़ भी लेते हैं। द एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी बाय प्रोड्यूसिंग और बाइंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड सेलिंग प्रोडक्ट एंड सर्विस। तो जो मैंने आपको बताया वही लिखा हुआ है इसमें भी, कि एक एक्टिविटी ऑफ मेकिंग मनी जिसमें हम या तो कोई गुड है या कोई सामान है या कोई ऑब्जेक्ट है या कोई थिंग है जिसको हम खुद प्रोड्यूस करते हैं, या फिर कहीं से उस प्रोडक्ट को ऑलरेडी खरीदते हैं और उसको थोड़ा सा रेट बढ़ा के बाहर बेचते हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल अगर एक एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी जैसे दिवाली का टाइम चल रहा है, तो या तो आप क्या करोगे, दिए सारे जो दिए हैं अगर आप मार्केट में बेचोगे, या तो आप उसको खुद बनाओगे, खुद बना के मोम लगा के उसमें बत्ती ऐड करके, वो आपका खुद का बना हुआ हो गया, आपने खुद प्रोड्यूस करा है उसको और फिर उसको आप मार्केट करो। या फिर आप क्या करोगे, किसी से ऑलरेडी दिए जहाँ पे बने हुए हैं उस दिए को आप उठाओगे, बहुत बल्क क्वांटिटी में उठाओगे, कम रेट। जब आप ऑब्वियसली बल्क क्वांटिटी में लोगे तो क्या होगा, आपको रेट कम मिलेगा, कम आप सस्ते में खरीद लोगे, और उसको जब आप सस्ते में खरीदोगे उसको बाहर आप मार्केट करोगे तो क्या होगा, उससे आप प्रॉफिट कमा सकते हो। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसमें लिखा है इट इज नॉट नेसेसरी टू बी अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन और पार्टनरशिप। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है, जो कम्युनिटी में हम जैसे हम काम करते हैं, जिस स्तर पे आप लोगों को काम करना है उसके लिए आपको बिल्कुल भी ये जरूरी नहीं है या सोचने की जरूरत नहीं है या परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपको एक कंपनी ही फॉर्म करनी पड़ेगी या एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ेगी या एक पार्टनरशिप किसी के साथ करना पड़ेगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छी चीज है। जो आपको अगर आप एक कंपनी बनाते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं या पार्टनरशिप के साथ करते हैं तो ये अच्छी चीज़ है, इसके बेनिफिट भी बहुत सारे हैं। एक आपको लीगल एड मिल जाती है, आप लोन ले सकते हो, और अगर आप पार्टनरशिप में काम करते हो तो आपको जो लागत लगानी है वो भी आप लोगों का डिवाइड हो जाता है, तो ये अच्छी चीज़ है। बट ऐसा कहीं पर भी नहीं है कि अगर आप जिस स्तर पर काम कर रहे हो उस स्तर पर आपको इन चीज़ों को करने की ज़रूरत है। आप एक सोल प्रोपराइटर जैसे होता है अपना, अलग से अपने आप भी ये काम स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, वो अलग बात है कि जब आप एक अच्छे स्तर पे पहुंच जाओगे, धीरे धीरे आपका काम चलने लगेगा, मार्केट होने लगेगा, लोग आपको जानने लगेंगे, तो आप इसको एक चैनलाइज वे में, कि उसको एक पूरा फ्रेमवर्क देके कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू आप इसको चला सकते हो। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है?
1: नो
0: अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप लोग चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है। इतना कष्ट अगर आपको लग रहा है अनम्यूट करने में तो आप प्लीज चैट में भी लिख सकते हो।
1: अभी जो आपने समझा एकदम मतलब आसान भाषा में तो सबको क्लियर हो गया मतलब।
0: अच्छा, थैंक यू।
3: जी
0: अच्छा
3: पहचान जी, नमस्ते सर।
0: जी, नमस्ते।
3: वैसे आपके जो समझाने का तरीका बिल्कुल ठीक है सर, और सरल भाषा में है, तो अगर लगेगा कहीं समझ में नहीं आएगी तो हम आपसे बात कर लेंगे।
0: ठीक है, वही मैं कह रहा हूँ, अगर आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे तो आप चैट बॉक्स में लिख देना येस, जब भी मैं कुछ
3: बिल्कुल
0: पूछूंगा तो।
3: बिल्कुल सर।
0: ठीक है, अच्छा, इसमें एक एक एक लाइन और ऐड हुई हुई है, इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। तो इस लाइन का भी वही मतलब है जो मैंने अभी तक वो समझाया, अल्टीमेटली जो आदमी बिजनेस कर रहा है वो इसीलिए कर रहा है कि उसको प्रॉफिट कमाना है, तो इसीलिए उसमें एक लाइन ऐड हुई है कि इट इज एन एक्टिविटी विच जनरेट्स प्रॉफिट बाय एक्सचेंज ऑफ गुड एंड सर्विस। कोई भी चीज आप खरीद रहे हो या बना रहे हो, उसकी लागत निकाल के उसके ऊपर की जो कमाई है वो आपकी प्रॉफिट होती है, जिससे आप अपना घर चलाते हो। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस किस प्रकार के बिजनेस होते हैं, हम उस पर बात करते हैं। अभी तक आप लोगों के सब सबने यही बोला है कि ये होता है बिजनेस, उसके बारे में आप लोगों को पता लग गया है। तो अब हम बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ बिजनेस, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है सर्विस बिजनेस, एज द नेम सजेस्ट, जो नाम ऑलरेडी इसमें लिखा है सर्विस बिजनेस, उसको मैं पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों के लिए एक्सप्लेन भी कर दूंगा। इट इज अ बिजनेस वेयर प्रोडक्ट हैव नो फिजिकल फॉर्म एंड दे आर प्रोड्यूस एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली। ये वो बिजनेस है जिसमें आप कोई चीज या कोई सामान का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप कुछ उसमें बना नहीं रहे हो और बना के बेच नहीं रहे हो, ना कि कोई चीज आप किसी से होलसेल में खरीद के सामान और आगे बेच रहे हो, ये प्योरली एक सर्विस का बिजनेस है। एक आपको बड़ा अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जैसे अब मुझे, चलो अगर ये मुश्किल होगा तो मैं चेंज भी कर दूंगा। अभी फिलहाल क्या है, कुछ लोग जैसे फ्रिज होता है या एसी होता है, लोगों के लगे हुए हैं, टीवी लगे हुए हैं लोगों के, तो जब आप नया नया कोई टीवी खरीदते हो तो 1 साल के बाद जब उसकी वारंटी एक्सपायर हो जाती है तो कंपनी आपको फोन करती है कि सर हमसे एएमसी ले लो। एएमसी क्या होता है, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें क्या हो रहा है, आपको वो बार बार फ्रिज नहीं दे रहा है, लेकिन आपको वो कुछ पैसे लेते हैं कि भाई हमारे साल के 1,000 रुपए हैं, आप 1,000 रुपए हमें दो, और इस दौरान, इस पूरे 1 साल के दौरान आपके फ्रिज में कोई भी दिक्कत आएगी, कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो हम आपको फ्री में फ्रिज या एसी या टीवी वो सब आपको ठीक करके देंगे। होता है कुछ लोग हैं ऐसे जो एग्री करेंगे इस चीज के लिए। एएमसी पता है, इवन ये मशीन्स में भी होता है, जो आप सिलाई मशीन जो हम सेंट्रो पे यूज करते हैं, कंपनी जो होती है वो आपको ऐसा एक वो बोलती है कि आप हमें मशीनों के इतने पैसे दे दो साल में, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी 500-1,000 रुपए, और इस पूरे 1 साल में कोई भी प्रॉब्लम आएगी मशीनों में तो वो हमारी जिम्मेदारी है, हम उसको ठीक करके देंगे। आप प्लीज कुछ, कोई अनम्यूट करके बताएगा, ऐसा कुछ है?
3: इसमें सर एडवांस जमा का तो नहीं करवाया, बाकी जैसे फ्रिज की सर्विस करवानी है तो उनको फोन करके और वो घर पे सर्विस करके तो
0: हाँ
3: जाते हैं। ये तो 2-4 बार मैंने भी बुलवाया टीवी का और फ्रिज के लिए, तो वो जो सर्विस की बात है ना, तो वो मतलब अपन ने कॉल किया उनको और वो अपने घर पे आके और जो भी वो
0: राइट
3: पे कर देती हैं
0: चलो
3: एडवांस
0: ठीक है।
3: वाला।
0: हाँ वही
3: जी
0: वही मैंने आपको बोला कि शायद ये गांव के स्तर पे इतना नोन नहीं होगा, तो मैं वो बता देता हूँ। जैसे आप एसी लेते हो, मान लो एसी या फ्रिज ले सकते हो, तो उसके बाद आपको
3: बिल्कुल
0: कुछ सर्विस दी जाती है। अगर एसी का सीजन खत्म हो गया तो वो ठंड के टाइम या गर्मी के टाइम पे जब दोबारा हमें स्टार्ट करना होता है तो वो दोबारा आके उसकी सर्विस करते हैं। तो शुरू में कुछ सर्विस क्या रहती है, फ्री रहती है। उसके बाद क्या है, एसी आपका सेम है लेकिन 1 साल बाद भी जब आप उसकी सर्विस कराते हो तो थोड़े बहुत पैसे लेते हैं और आपको वो सर्विस देते हैं कि आपके फ्रिज को, ये एसी या फ्रिज को, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, उसको दोबारा से बढ़िया से वो चालू करके देते हैं कि दोबारा से वो काम करने लग जाए। ऐसा तो सबने करा होगा ना।
3: जी हाँ
2: जी सर
0: इसमें देखो एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, रिपेयर शॉप, स्कूल, बैंक और रेस्टोरेंट। तो इवन ये रिपेयर शॉप का वही हो गया, मान लो चलो कोई चीज आपकी खराब हो गई तो उसके लिए आपको कुछ मिल नहीं रहा, कुछ आपको वो, आप पैसे दे रहे हो तो आपको कुछ वो सामान नहीं दे रहा लेकिन आपको सर्विस दे रहा है। मान लो आपकी बाइक ही खराब हो गई, स्कूटी खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, तो वो क्या कर रहा है उसमें, उस चीज को वो आपको सर्विस दे रहा है, आपकी बाइक ठीक करके दे रहा है। ये हो गया, इसमें समझ आ गया सबको?
2: यस सर
0: ठीक है,
2: यस सर
0: ठीक है। मूविंग ऑन टू द सेकंड पॉइंट, इसमें क्या लिखा है, मर्चेंडाइजिंग बिजनेस। तो इसके बारे में पहले मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बारे में हम प्लेन करेंगे अच्छे से। इट इज अ बिजनेस विच बाइज प्रोडक्ट एट अ होलसेल प्राइस एंड सेल इट एट रिटेल प्राइस, इट इज कॉल्ड एज बाय एंड सेल अ बिजनेस। तो जैसे हम जब बिजनेस को डिफाइन कर रहे थे स्टार्टिंग में, तभी हमने शायद इसके बारे में थोड़ी सी बात कर ली थी, तो थोड़ा सा हम इसको इन डिटेल फिर से बात कर लेते हैं। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस जो होता है उसमें क्या होता है कि आप सामान जो उठाते हो वो बल्क में उठाते हो, किसी होलसेलर से या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे आप सीधे चले जाते हो, वहां से आप सामान उठा लेते हो। जो चीज मान लो मार्केट में आपको 100 रुपए की बिकती है, आप अगर होलसेल से भी लोगे तो वो आपको पड़ेगी 60 रुपए 70 रुपए में। तो आप क्या करते हो, उसको बल्क क्वांटिटी में बहुत सारा सामान एक ही बार जो होलसेलर होता है उससे खरीद लेते हो कि हाँ भाई मैं तो बल्क में क्वांटिटी में खरीद लूंगा और इसको अपने इलाके में जाके, कम्युनिटी में जाके, बाजार में जाके इसको बेचूंगा क्योंकि इसका रेट तो 100 रुपए है। तो आराम से आपका उस एक प्रोडक्ट पे 30 से 40 रुपए बचेगा। होता है, करते हैं लोग या नहीं करते? और अगर आप एज अ कस्टमर भी देखोगे तो कभी कभी क्या होता है, जब हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है या हमें कोई चीज ज्यादा चाहिए होती है, मैं अभी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, तो आप क्या करते हो, आप ऐसे मार्केट जाते हो, होलसेल मार्केट जाते हो ताकि आपको वो चीज सस्ती मिले। ये एग्री करेंगे सब लोग इस चीज के बारे में?
1: करते हैं सर, ज्यादा सामान के लिए तो भी बड़े मार्केट में ही जाते हैं होलसेलर।
0: हाँ, तो जैसे आप जाते हो, ऐसे ही जब आप एक धंधा करोगे या बिजनेस करोगे तो आपका वो रेगुलर बन जाएगा जाना, क्योंकि आपका और कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर आपको सर्वाइव करना है, बिजनेस करना है, प्रॉफिट कमाना है, तो आपको बड़े मार्केट या होलसेल मार्केट ही जाना पड़ेगा। वहां से आप सामान लाके जब मार्केट में बेचोगे अपने कम्युनिटी में तो आपको अच्छा रेट मिलेगा। लेकिन यही मैंने कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से बोला, इसलिए बोला ताकि आप लोग समझ जाओ कि जब आपके यहाँ कोई फंक्शन होता है, शादी भी होते हैं, जब आपको बहुत सारी चीजें बल्क में लेनी होती है, तो आप खुद भी बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के से नहीं, लेकिन खुद अपने यूज के लिए भी उसी मार्केट में जाते हो क्योंकि वहां पे आपको चीजें सस्ती मिलती है। ठीक है, सबको समझ आ गया? अभी हम
1: यस सर,
0: थर्ड पॉइंट पे चलते हैं, जिसमें है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। इसमें इसमें पहले पढ़ देता हूँ, फिर आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा। इट कंसिस्ट ऑफ बाइंग अ रॉ मटेरियल फ्रॉम द मार्केट, प्रोसेसिंग इट विद द हेल्प ऑफ लेबर मशीन एंड प्रोड्यूसिंग फिनिश प्रोडक्ट। तो अब ये जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस लिखा है, इसका आप नाम से ही देखेंगे तो आपको नाम से ही पता लग जाएगा कि इसमें एंड टू एंड चीजें जो हो रही हैं, ये भी शायद स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत मैंने एक्सप्लेन करा था, एंड टू एंड चीजें जो है वो आप ही कर रहे हो। मान लो आप एक बिजनेस कर रहे हो, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस अगर आप कर रहे हो तो उसमें आप क्या करोगे, एंड टू एंड चीजें आप ही कर रहे हो। मतलब कोई भी चीज ले लो, जैसे इसमें एग्जांपल लिखा है व्हीकल, स्टील, मशीनरी, क्लोथ। गीजगढ़ से है कोई यहाँ पर? गीजगढ़ से किसी ने ज्वाइन करा हुआ है?
3: नहीं फैजान, कहीं कोई ज्वाइन नहीं किया गीजर से।
0: ठीक है, कोई बात नहीं। जैसे अगर मैं गीजगढ़ का एग्जांपल ले रहा हूँ क्योंकि बाकियों को भी पता होगा, जैसे गीजगढ़ में हमारे पास पूरा एक यूनिट सेट हुआ है जिसमें हम रुई से धागा बनाते हैं, धागे से कपड़ा बनाते हैं, फिर कपड़े से उसको, अगर हमारा ही कोई डिजाइनर है तो उससे शर्ट भी बन रही है, जवाहर कट भी बन रही है, वेस्ट कोट भी बन रही है, पैंट भी बन रही है। तो इसका ये है कि एक तरह से सारी चीजें जो है वो हम ही कर रहे हैं, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे वो रुई से धागा बनाना हो, धागे से कपड़ा बनाना हो, और कपड़े से उसको एक फिनिश प्रोडक्ट में तैयार करना हो जो कि हम लोग नॉर्मली आम दिनों में पहनते हैं। तो ये हो गया आपका मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस। अब समझ आ गया सबको?
2: यस
0: ठीक है, तो अब कौन मुझे टाइप्स ऑफ बिजनेस के बारे में एक बार नाम बताएगा सारे?
2: सर। सर मैं रिया बंसल फ्रॉम भवदड़।
0: ठीक है, पहला मैंने क्या बताया था आपको?
2: सर आपने फर्स्ट सर्विस बिजनेस बताया था।
0: ठीक है, सर्विस बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताइए।
2: सर इसमें हम कोई भी, जैसे हमें कोई भी, जैसे हम कोई मशीन वगैरह खरीदते हैं तो वो हमें पैसे देने की जगह कोई सर्विस देता है जिससे कि वो हमें प्रॉफिट हो सके, उसको
0: नहीं
2: भी
0: पैसे,
2: प्रॉफिट
0: हाँ
2: हो सके हमें भी।
0: मतलब बेसिकली क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट उसमें नहीं खरीद रहे, उसमें ऑलरेडी आपने एक प्रोडक्ट खरीदा हुआ है, आप जो पैसे दे रहे हो उससे कुछ सामान नहीं मिल रहा आपको, लेकिन उसकी सर्विस मिल रही है। ठीक
2: हाँ
0: है,
2: सर, जैसे कि अभी गांव लेवल पे, जैसे सर हम गैस वगैरह खरीदते हैं तो उसमें क्या है, मतलब वो गैस देते ही नहीं है लेकिन उसकी सर्विस कर देते हैं वो लोग।
0: बिल्कुल बिल्कुल, राइट राइट राइट।
2: जैसे कि मैचिंग डायनेस बिजनेस, जिसमें हम
0: चलो
2: बना हुआ सामान खरीदते हैं
0: हाँ
2: और उसकी मार्केटिंग करते हैं।
0: हाँ बिल्कुल सही, बना हुआ सामान हम लेते हैं, बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं, जिसमें हमें जो मार्केट प्राइस उसका हो है उससे कम पैसों में मिलता है, एंड जब हम उसको मार्केट करते हैं तो हमें जो मार्केट प्राइस है उस हिसाब से पैसे मिलते हैं। मान लो
2: हाँ
0: कोई
2: सर,
0: चीज़ 10 रुपए की है तो हम उसको बड़े
2: तीस
0: बाजार से, जैसे
2: या
0: आपने
2: फिर
0: बोला,
2: फिफ्टी, हाँ हम उससे पैसे अर्न कर सकते हैं।
0: राइट राइट राइट, बिल्कुल बिल्कुल। थर्ड क्या है? अच्छा कोई और बताओ, आपने तो बोल दिया, बाकी आप कोई और बताओ,
2: ओके सर, थैंक यू।
0: कौन बताएगा?
2: मैन्युफैक्चरिंग, इसमें हम रॉ मटेरियल्स किसी भी मार्केट से जहाँ पे हमको सस्ता मिल रहा है वहां से उठाते हैं, फिर अपने यहाँ पे मशीन वगैरह लेबर की मदद से हम उसे तैयार करते हैं, और फिर फाइनली जब वो हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है तो हम उसे मार्केट में उसके उस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितना हमारा खर्च हुआ है और उसके इनकम यानी हमारी जो प्रॉफिट आएगी उसको लगा करके फिर हम मार्केट में सेल करते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में जो, अगर आपको बिल्कुल एक शॉर्ट नोट में उसको याद रखना है, तो आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस का मतलब क्या है कि सब चीजें जो भी वो आपको प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसको पूरा एंड टू एंड जो है वो आप ही ने बनाया है, चाहे वो लेबर की मदद से बनाया हो, मशीन की मदद से बनाया हो, जो भी है, मतलब सारा, मतलब छोट आपको कोई चीज शर्ट बनानी है तो आपका उसका कपड़ा वपड़ा जो भी चीज है वो सब आपने ही अरेंज कराए और फिर उसको एक कंप्लीट फिनिश प्रोडक्ट में उसको तैयार करा और फिर उसको बेचा है आपने। ठीक है जी, और किसी को कोई प्रॉब्लम या किसी को समझ नहीं आया तो पूछ सकते हैं अभी। अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ ली, उसकी टाइप्स ऑफ बिजनेस पढ़ ली है, उसमें हमने एक चीज देखी होगी, सब चीजें जो कॉमन है वो ये है कि चाहे आप मर्चेंडाइजिंग बिजनेस कर लो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर लो या सर्विस बिजनेस कर लो, अल्टीमेट एम जो होता है एंटरप्रेन्योर का इन सब बिजनेस में वो क्या है, मुनाफा कमाना, प्रॉफिट कमाना। ठीक है, अभी तक ये सबको समझ आ गया?
1: यस सर,
0: ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, जिसमें लिखा है व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस। अच्छा, एक चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए कि मिशन जो है वो एज कंपेयर टू विजन, मतलब लेमेन टर्म में बता रहा हूँ, मिशन छोटा है और विजन बड़ा होता है। मिशन क्या है, मिशन एक कंटिन्यूस चीज है ताकि आप अपने विजन तक पहुंच सको। तो व्हाट इज द मिशन एंड विजन ऑफ अ बिजनेस में हम मिशन के बारे में पहले पढ़ते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूंगा। इट इज अ शॉर्ट टर्म गोल ऑफ बिजनेस, इट आउटलाइंस व्हाट बिजनेस वांट्स टू एंड हाउ इट वांट्स टू अचीव इन शॉर्ट स्पैन। मतलब फॉर एग्जाम्पल, आप ही की ट्रेनिंग जैसे होती है, अभी एक फूड प्रोसेसिंग की ट्रेनिंग होती है, उसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। अगर आप एक बेकरी शॉप सेटअप करना चाहते हो, तो बेकरी शॉप अगर आप सेटअप करते हो तो उसका एक मिशन ये रहेगा कि भाई जिस भी कम्युनिटी मैंने खोला है मेरी बेकरी बहुत अच्छी चले, और अच्छी कैसे चलेगी, जिसमें आप एक क्वालिटी प्रोडक्ट दोगे, आपकी जो पेस्ट्रीज हैं, केक्स हैं, जो बिस्किट्स हैं, जो भी आप उस बेकरी में सामान रख रहे हो वो सारा फ्रेश रहे। ये जो भी चला रहा है प्लीज दीपाली दोखले प्लीज को नहीं करें ये। तो मिशन में अगर आप, मैंने जैसे अभी बेकरी का एग्जांपल ले रहा था, तो अगर आप अपनी कम्युनिटी में, अपने एरिया में वो बेकरी खोल रहे हैं, तो आपका मिशन यही रहेगा हमेशा कि डेली मेरा जो सामान है वो एक तो बिक जाए और वो जो भी मैं बनाऊं वो क्वालिटी प्रोडक्ट रहे, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप क्वालिटी दोगे तभी आपके पास लोग आएंगे, वरना कोई भी नहीं आएगा। तो ये तो आपका एक डेली एम रहेगा, क्योंकि एंटरप्रेन्योर का क्या है कि 24 घंटे का बिजनेस रहता है, ऐसा नहीं है कि आपकी एक छुट्टी है, आपको तो काम करना ही करना है, और एक साइकिल सी बन जाती है, रोज काम करना है, कमाना है, काम करना है, कमाना है। तो अगर हम बेकरी के एग्जाम्पल में आए तो उसका काम यही रहेगा कि आप जो भी अपने प्रोडक्ट बना रहे हो वो एक तो फ्रेश बनाओ, अच्छे बनाओ, खाने में अच्छे लगे, लोग उस पे उसके टेस्ट से अट्रैक्ट हो, तभी आपकी चीज बिकेगी। अब अगर हम विजन पे आते हैं, तो विजन के बारे में पढ़ता हूँ। इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस। जैसे मैंने बताया, विजन आपको कंटिन्यूस अपने विजन पे, मिशन पे रहना होगा, तभी आप अपना विजन अचीव कर पाओगे। तो विजन की बात करते हैं, तो इट इज अ लॉन्ग टर्म गोल ऑफ अ बिजनेस, इट आउटलाइंस द पर्पस, गोल, वैल्यू एंड ड्रीम स्टेट ऑफ द बिजनेस। अब इस ये दोनों चीजें इंटरकनेक्टेड इसलिए क्योंकि मिशन में जब मैंने बोला कि आपका एक मिशन बन जाता है, आपको अपनी कम्युनिटी में अच्छा से अच्छा सामान सर्व करना है कम्युनिटी को, और विजन क्या है, जब आपको बड़ा बनना है बिजनेस, हमेशा आप जो भी एक मुनाफा कमा रहा है, काम कर रहा है, वो यही चाहेगा ना कि आज अगर मैं 10 रुपए कमा रहा हूँ तो कुछ टाइम बाद मैं इतनी मेहनत करूँ कि वो उसको मैं 20 कर सकूँ, फिर उसको मैं 40 कर सकूं, फिर उसको मैं 80 कर सकूं, या जो भी है एक एक रेट पे आप अपना चाहोगे आपका प्रॉफिट बढ़ता रहे, तो उसके लिए वहां पर आपका विजन आ जाता है। जब आप अपनी कम्युनिटी में अच्छा काम करोगे तो आपका अपने आप, और वो नेटवर्क से जब आपकी चीजें फैलेंगी, तो आपका विजन एक तरह से आप अपने विजन पे चलने लोगे कि आपको अब एक कम्युनिटी के अलावा आपको दूसरे कस्बे में भी या दूसरे एरिया में भी अपना एक ब्रांच खोलनी है, आपको और बढ़ना है। यही चीजें होती हैं विजन के अंदर। अब अभी यहां तक सबको समझ आ गया?
1: जी सर,
0: बाकी लोग कम से कम चैट बॉक्स में तो लिख दिए कि हाँ समझ आ गया, यस नो कुछ नहीं। अगर नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कोई भी अभी तक कोई भी चीज है अगर समझ नहीं आई है तो।
3: यस सर, समझ में आ गया सर।
0: आ गया समझ सबको? ठीक है, तो अभी हमने पार्ट वन कवर कर लिया है, तो अब हम पार्ट टू पे चलते हैं। पार्ट टू में सबसे पहले जो लिखा है वो लिखा है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। अब ये क्या कह रहा है कि पूछ रहा है कि प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस जो होते हैं उसके बारे में आप क्या समझते हो। कोई बोलेगा कुछ? लिखा हुआ तो है ही आगे, कुछ बोलना चाहेंगे कि क्या होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस?
3: सर, इसमें
0: कोई
3: प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में हम रॉ मटेरियल लेके एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको मार्केट में या फिर अपने लोकल स्तर पर उस प्रोडक्ट में जो मटेरियल लगाया है वो लोकल ही होगा और उस प्रोडक्ट को हम सेल करते हैं। प्रोडक्ट बेस्ड कोई भी एक प्रोडक्ट फिक्स कर लें, एक मिशन फिक्स कर, ये हमारा प्रोडक्ट हमको सेल करना है।
0: ठीक है, सो पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा इसके बारे में। द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल टेंजिबल प्रोडक्ट्स टू द कस्टमर। इट इंश्योर्स दैट द कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट प्रोडक्ट दैट देन टेक अ डिसीजन अबाउट बाइंग इट। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो अभी जैसे अभी कुछ टाइम पहले, 5-10 मिनट पहले, जब हमने एक सर्विस बिजनेस के बारे में बात करा था, तो उसमें ये लिखा था कि जब कस्टमर कोई सर्विस बिजनेस अवेल करता है तो वो कुछ सामान नहीं खरीदता, उसको आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, आप सिर्फ सर्विस लेते हो। अब जो प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस है वो ये है कि द प्रोडक्ट बिजनेस सेल्स फिजिकल, मतलब कोई सामान आप ले रहे हो। मान लो फॉर एग्जाम्पल दिया ही हो गया, अगर आप एक दिवाली का जैसे टाइम है तो एग्जाम्पल दिए का ले लेते हैं। आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप दिया लोगे तो दिए को आप एक वो फिजिकल फॉर्म में है, टेंजिबल चीज है, उसको अगर आप छुओगे आप फील कर सकते हो, हाँ ये कोई चीज है, हार्ड सरफेस पे बनी हुई है। तो उससे उसका मतलब हो गया टेंजिबल भी हो गया, और फिजिकल मतलब जिसको आप फील कर सकते हो, टच कर सकते हो। तो इसको कहते हैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। इट एंश्योर्स कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोजेक्ट, मतलब जिस चीज को भी आप टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, वो है आपके हो गए प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। एंड देन डिसाइड, अब आप अगर मार्केट में जाओगे तो मार्केट में आप दसियों तरीके की वैरायटी की चीजें देखोगे। ऐसा तो है नहीं कि अगर आप दिए लेने जा रहे हो तो हर दुकान पे आपको सेम दिए मिलेंगे, ऐसा तो नहीं होता ना।
2: नो सर,
0: हाँ, तो आप जब भी कभी दुकान पे जाओगे तो आपको दिए भी 10-10 तरीके के मिलेंगे, अलग अलग वैरायटी के मिलेंगे। सिंगल सिंगल 4 दिए रखे होंगे, सिंगल सिंगल 2 का पैक रखा होगा, कहीं कहीं पे 4, 5, 6 दिए एक साथ जुड़े हुए होंगे। अब उसमें क्या लिखा है, इसीलिए उसने एक लिखी है ये चीज कि इट एश्योर्स दैट कस्टमर कैन फील एंड टच द प्रोडक्ट एंड देन डिसाइड अबाउट बाइंग। अब उसमें से आप उसको टच करोगे, फील करोगे, उसकी क्वालिटी देखोगे, मटेरियल देखोगे किस तरीके का लगा, उसके बाद आप डिसाइड करोगे कि मुझे क्या चीज बाय करनी चाहिए। इट कैन बी एडवर्टाइज इजिली इन द मार्केट। तो यहां तक अभी सबको समझ आ गया या नहीं आया?
2: यस सर,
1: यस सर,
0: चलो ठीक है, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के बारे में कौन बताएगा मुझे जो मैंने अभी समझाया? एक और
1: मैं
0: कौन?
1: दयाराम बोल रहा
0: दयाराम,
1: हूँ।
0: दयाराम तुमको छोड़ करके, मैं देख रहा हूँ कि दो ही लोग बोल रहे हैं, बाकी भी बोले। दयाराम तुमको छोड़ करके कोई और बोलना चाहे तो बोले, बहुत सारे लोग हैं। अगर समझ नहीं आ रहा तो बता दिए आप लोग, मैं दोबारा समझा दूंगा।
2: सर मैं खुशी जैन।
0: हाँ
2: सर प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में ये होता है कि किसी
0: कहाँ
2: भी
0: से हो आप,
2: चीज
0: कहाँ
2: को
0: से हो?
2: अपन सर समरानी

0: या नहीं लेना चाहिए, तो उसका वो होता है प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस। ठीक है, और कोई कोई बोलना चाहेगा प्लीज? अब बारह के अलावा प्लीज और लोग भी हैं यहाँ पर, वो बताएं। सेम चीज अभी उन्होंने आपके सामने बोली भी है, मैंने भी आपको समझाई है। कौन प्लीज, प्लीज कोई अनम्यूट करके बोली।
1: महाराष्ट्र से भी लोग हैं, तो महाराष्ट्र से कोई बोलना चाहे तो।
0: जब हम ये आपको सेशन देंगे तो हम ये चाहते ही नहीं कहीं पे भी आप लोगों को कोई डाउट रहे। हम ये चाहते हैं कि जो भी चीज़ हम आपको यहाँ पे बताएंगे वो प्लीज़ आप अच्छे से समझ के आगे कम्युनिटी में बताइए। इसीलिए हम लोग ये सब सेशन ले रहे हैं आप लोगों के साथ।
2: हेलो सर,
0: जी
2: मैं
0: जी
2: रत्नावली महाराष्ट्र से बात कर रही हूँ।
0: हाँ जी, हाँ जी,
2: सर, हमें काफी मतलब आप काफी अच्छे से समझा रहे हैं, सारी चीजें समझ में आ रही है, जैसे बिजनेस
0: चलिए। अच्छा,
2: क्या
0: आपको
2: क्या
0: समझ आ गया सारा?
2: है,
0: एक
2: सर्विस
0: बार
2: बिजनेस। यस सर,
0: जो मैंने स्टार्टिंग
2: लेकिन
0: में बताया था टाइप्स ऑफ बिजनेस, एक बार वो बताएंगे कौन कौन से होते हैं? दो तो देखो सामने लिखे हैं।
2: एक सर्विस बिजनेस था, एक
0: हाँ
2: मर्चेंडाइजिंग बिजनेस था, मर्चेंट डिजाइनिंग, और एक
0: हाँ
2: मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस
0: ठीक है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिए, थोड़ा सा बस, जल्दी जल्दी।
2: जी सर।
0: हाँ
2: सर्विस बिजनेस वो होता है जिसमें हम सर्विस देते हैं, जैसे फ्रिज रिपेयरिंग का हो या फिर ब्यूटी पार्लर का भी हम बोल सकते हैं, तो
0: हाँ बिल्कुल
2: हम
0: बिल्कुल राइट,
2: होम सर्विस भी दे सकते हैं, और जो हमारे पास आते हैं कस्टमर उनको हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं,
0: ठीक है, थैंक यू
2: और
0: सो
2: जो
0: मच। ऐसे ही
2: मर्चेंट
0: थोड़ा सा
2: डिजाइनिंग है
0: बस बस
2: जी
0: बस
2: सर।
0: आप बस बस ठीक है ठीक है, आप बाकी बाकियों को भी मौका देते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग प्लीज अनम्यूट करके थोड़ा सा बोलेंगे, अच्छा लगेगा, हमें भी पता लगेगा कि आपको समझ आ रही हैं चीजें, क्योंकि ये आपको मॉड्यूल शेयर कर दिया जाएगा, आप लोगों को ये सेशन आगे लेने होंगे बेनिफिशरीज के साथ। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अभी हम लोगों ने पार्ट टू में प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस कवर करा है, अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब अगर आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, आप लोग आगे जब इस चीज़ को बताएंगे बेनिफिशरीज को, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि व्हाट स्किल्स विल बी रिक्वायर्ड इन योर बिजनेस। मतलब आपको कौन कौन सी स्किल की जरूरत पड़ेगी जब आप एक बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और कोई भी आप काम शुरू करते हैं या कोई जॉब भी करते हैं, तो कहीं ना कहीं स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। आपकी जो स्किल होगी वो अगर आपकी जॉब प्रोफाइल से मैच होगी, या आपकी जो स्किल होगी वो जिस बिजनेस में काम आएगी आप वही काम करेंगे, आप वही जॉब करेंगे, अदरवाइज कोई पॉइंट नहीं बनता कोई जॉब भी करने का या बिजनेस करने का। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ है वो लिखा है लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल्स। अब कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे इसलिए लिखा है क्योंकि कम्युनिकेशन, एक एंटरप्रेन्योर के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज़रूरी चीज़ होती है, क्योंकि आपकी जो डीलिंग होती है वो इंट्रैक्शन जो होता है वो आपका लोगों से होता है, कस्टमर से होता है, एंड यूज़र से होता है, जो आपकी सर्विस या आपका प्रोडक्ट यूज़ करेंगे। तो यहाँ कम्युनिकेशन स्किल इसलिए लिखा है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में उन लोगों के साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताएंगे नहीं, उसकी क्वालिटी के बारे में नहीं बताएंगे, ड्यूरेबिलिटी के बारे में नहीं बताएंगे, उनको ये नहीं बताएंगे कि वो प्रोडक्ट उनसे आप वो लोग आप लोगों से ये प्रोडक्ट क्यों लें, तब तक आपका प्रोडक्ट बिकेगा नहीं। तो इसलिए यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल बहुत एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं तो मानता हूँ ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। और उसके बाद सेकंड पॉइंट जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है, देखो इम्पॉर्टेंट सारे ही होते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप उसको किस किस जगह पे फिट करते हैं। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इसलिए ज़रूरी होता है, जैसे अभी हम इतने टाइम से बात करते हुए आ रहे हैं इतनी देर से, कि आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपको अगर कोई प्रोडक्ट बनाना होता है तो उसमें एक लागत लगती है। अब आपको जो समझ आ रहा है कि भाई हमने एक एक प्रोडक्ट बनाया जिसमें 6 रुपए की लागत आई है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना मुनाफा भी कमाना है, तो उसमें आप 2-4 रुपए ऐड करके तब उसका एक मार्केट प्राइस निकालोगे। अगर आपने मान लो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम उस चीज़ को करा ही नहीं, आपने मान लो लागत तो लगा ली, लेबर कॉस्ट लगा ली, लेकिन जहाँ पे आप काम कर रहे हो उसका रेंट नहीं लगाया बिल्डिंग का, या उस जगह का रेंट नहीं लगाया, तो वो क्या है? आपका आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट फेल हो गया ना, क्योंकि आपने उस रेंट को, एक एक चीज़ जब आप एक प्रोडक्ट बनाओगे तो इसीलिए कॉस्ट अकाउंटिंग होती है कि एक एक चीज़ आपको उसमें डालनी पड़ेगी। आप जो एक रॉ मटेरियल लेकर आए उसका जब कहीं से तो रॉ मटेरियल लेकर आओगे ना, जब वो आएगा तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू आएगा, आपको उस ट्रांसपोर्टेशन जितना भी आप प्रोडक्ट बनाओगे उसको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी उस चीज़ में आपको डिवाइड करनी पड़ेगी, लेबर की कॉस्ट हो गई, लेबर का टाइम हो गया जो आपका

0: इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रहा है वो भी आप उसमें डालोगे, रेंट भी हो गया। तो आपको इसीलिए आपको हर चीज को बहुत ही ध्यान से लेके चलना पड़ेगा। इसीलिए ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ तक ये दो पॉइंट सबको समझ आ गए? ठीक
1: यस सर।
0: है, तो अभी तक कोई डाउट? आप लोग, अगर मैं आप लोगों को कोई चीज बता रहा हूँ आपको लगता है कि हाँ ये पॉइंट भी है इसमें, तो वो आप लोग भी ऐड कर सकते हो। आपके इनपुट भी बहुत अच्छे रहेंगे अगर आप इस सेशन में दोगे। इसीलिए मैंने बोला कि हम एक इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ मैंने जो चीज बताई है उसका और कोई और तरीके से भी मतलब आ सकता है, तो आप भी उस चीज को शेयर करिए। मुझे भी अच्छा लगेगा कि मुझे भी वो चीज पता लगेगी, और इवन और बाकी लोग जो बैठे हैं यहाँ पे 20-22, उनको भी ये चीज पता लग जाएगी। सिर्फ मेरी नॉलेज इस चीज में काम नहीं आनी चाहिए। आप लोगों को अगर लगता है कि हाँ फाइनेंशियल मैनेजमेंट में या कम्युनिकेशन स्किल में मैं ये भी चीज ऐड कर सकते हैं, तो आप वो भी बताइए प्लीज। तो अभी हमने दो चीजें कवर करी हैं, व्हाट आर द स्किल्स रिक्वायर्ड टू स्टार्ट योर बिजनेस। उसमें हमने कवर करा है अभी कम्युनिकेशन स्किल एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सेकंड आ गया प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। जब भी आप कोई चीज करोगे तो उसकी प्लानिंग बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों क्यों होता है, एक बार कोई एक्सप्लेन करेगा इस चीज को? प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट होती है?
1: सर, अगर हम अगर अच्छी तरह से प्लानिंग नहीं करेंगे ना, तो हमारा बिजनेस फेल हो सकता है। सर,
0: हाँ मतलब कोई, मैं पूछ रहा हूँ ना, क्या क्या ऐसा और क्या करना है, और क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं?
1: पहले सर मार्केट रिसर्च वगैरह सारा कुछ करना चाहिए। जैसे हम कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ना, तो
0: हाँ
1: पहले उस चीज का जैसे लोकल लेवल पे या बड़े लेवल पे उसको देखना चाहिए कि ये हमारा प्रोडक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और
0: राइट,
1: इसकी डिमांड कितनी है मार्केट में, कितनी नहीं है। ये सारी चीजें हमें क्या पहले सर्च करनी पड़ेगी, प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनाना पड़ेगा।
0: बिल्कुल। और क्या ऐड कर सकते हैं इसमें?
1: इसके
0: और
1: साथ
0: सर
1: जैसे
0: जैसे
1: ट्रांसपोर्टेशन
0: ट्रांसपोर्टेशन का
1: का खर्चा
0: खर्चा
1: क्या
0: था,
1: है,
0: भंडारण
1: इंडस्ट्री
0: का,
1: का।
0: सर ये देखना पड़ता पड़ेगा, लोडिंग बोर्डिंग पर कितना बैन होगा, किस जगह पर आएगा, उसके भंडारण की क्या व्यवस्था होगी। सही बात है।
1: सर, इसमें एक और पॉइंट है सर, हम ऐड कर सकते हैं सर इसमें,
0: क्या सर? क्या
1: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट सर, ये बहुत नेसेसरी है सर बिजनेस ग्रोथ ग्रोथ के लिए। सर,
0: कर सकते हैं?
1: एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं सर इसमें जो
0: बिल्कुल
1: बिजनेस।
0: बिल्कुल कर सकते हैं। अभी हमने उसको इसलिए ऐड नहीं कर रखा क्योंकि अभी जो हम फिलहाल जिस लेवल पे बात कर रहे हैं वो एक छोटे स्तर पे काम शुरू करने की बात कर रहे हैं इसलिए। लेकिन अगर आप इसका एडवांस मॉड्यूल देखेंगे तो उसमें हर चीज लिखी रहती है, ये वाली चीज होती है। ठीक है, और अगर आप एक
1: ये
0: प्लानिंग कर लोगे तो मैं एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ कि एफिशिएंसी एफिशिएंसी भी बहुत जरूरी होती है। अगर आप प्लानिंग करके रखोगे तो आपकी एफिशिएंसी भी बहुत बढ़ जाती है।
1: और
0: आप
1: प्रोडक्ट
0: इस
1: की
0: चीजों
1: एक्यूरेसी भी सर।
0: बिल्कुल बिल्कुल एफिशिएंसी एंड एक्यूरेसी दोनों चीजें अच्छी हो जाती हैं। और किसी को कोई चीज ऐड करनी है?
1: जी सर, एक
0: हेलो,
1: इसमें ये है, जैसे हम मान लो फूड प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो ये भी जरूरी होता है कि जैसे हमारे पास लाइसेंस है उसका है नहीं है, सारी कुछ ऐसे भी प्लानिंग करना पड़ता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल बहुत जरूरी है। मीना जी आप कुछ बोल रही थी?
2: जी, नमस्ते सर।
0: नमस्ते।
2: हाँ, जैसे हम कोई भी बिजनेस जब स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले उसमें काम कौन करेगा, कितनी
0: राइट
2: महिलाएं उस काम को करने के लिए होंगी, फिर उसमें जो भी चीज हम बना रहे हैं
0: राइट
2: उसमें कितनी लागत आएगी, कितना फिर उस चीज से हमको प्रॉफिट होगा,
0: राइट
2: ये भी
0: तो
2: देखना
0: ये
2: पड़ेगा हमको भी, क्योंकि अभी हम जो भी काम कर रहे हैं तो कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो कौन सी उसमें ऐसी महिलाएं होंगी जो इस बिजनेस को करेंगी,
0: बहुत
2: तो
0: बढ़िया। तो
2: वो
0: मतलब आप
2: सारा।
0: ये कहना चाह रहे हैं कि प्लानिंग में हमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्योंकि कभी पता
1: जी
0: लगा डिमांड एकदम से बढ़ जाए। फॉर एग्जाम्पल, क्यों मैं बार बार दिए का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, दिवाली के टाइम पे दिए की बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होती है, खपत होती है। तो मान लिया आपका पूरे साल का दिए का काम है, लेकिन दिवाली पे ऑब्वियसली आप क्या करोगे, उस 1-2 महीने पहले से आप ह्यूमन रिसोर्स बढ़ा दोगे, क्योंकि आपको भी पता है कि अगर मेरे पास महीने में 1,000 दिए का ऑर्डर आता है तो दिवाली पे वो ऑटोमेटिकली 10 टाइम्स हो जाएगा। सही बोल रहा हूँ ना अमीना जी? ठीक
2: जी जी सर।
0: है जी। और फिर हम आगे बढ़े हैं इसमें, कुछ आप लोगों को और ऐड करना है?
2: नहीं सर, बढ़ सकते हैं आगे।
3: सर इसमें टाइमिंग का, सर वो समय अवधि का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो हमारे
0: बिल्कुल
3: दिवाली नजदीक और हम उस प्रोडक्ट को बनाते बनाते दिवाली निकल जाए, तो एक टाइमिंग का
0: बिल्कुल
3: भी बहुत सर बहुत इम्पोर्टेंट है।
0: राइट राइट बिल्कुल सही बात कही आपने। तो ये सब फैक्टर्स जो हैं ये आपके मैनेजमेंट में आ जाते हैं। चाहे आप फाइनेंशियल लें या प्रोजेक्ट मैनेजमेंट लें, दोनों को ऑलमोस्ट ये दोनों इंटीग्रेटेड ही रहते हैं। अच्छा, सेकंड फोर्थ पॉइंट जो है वो है डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो क्यों आपके अंदर ये डिसीजन मेकिंग की स्किल होनी चाहिए, इसके बारे में कोई कुछ बोलेगा? मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। जैसे डिसीजन बहुत सही टाइम पे और सही तरीके से डिसीजन लेना भी बहुत एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके बिजनेस को नीचे भी ले जा सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये सब जो है सारा का सारा रिस्क पे होता है। बिजनेस में बहुत ज्यादा रिस्क होता है, इसीलिए लोग कहते हैं कि रिस्क जरूर होता है, लेकिन इसीलिए फिर उसमें प्रॉफिट भी उसी हिसाब से होता है। तो अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो उसमें क्यों डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपके अंदर ये स्किल होनी चाहिए, क्योंकि डिसीजन जो होते हैं वो आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि आपको जो अपना मिशन विजन है, जो आपका गोल है, आप वो तभी अचीव कर सकते हैं जब आप उसके जो डिसीजन है वो बहुत टाइमली लें और बहुत सोच समझ के लें। ऐसा एग्री करेंगे इससे या नहीं करेंगे? एंड डिसीजन मेकिंग ही चीज होती है जिससे आपके सारे फाइनेंस या लोग कब रखने हैं, कब हटाने हैं, क्या करना है, कितने लोगों को क्या काम देना है और टाइम सारे एलोकेटेड, इसको हम उसी हिसाब से फिर अगर आप करेक्ट डिसीजन लोगे तो वो इसी में आता है। आपका रिसोर्स एलोकेशन जिसे कह सकते हैं वो चीज होती है कि कोई भी बिजनेस है, कोई स्टार्ट आप कुछ कर रहे हो, आप अगर डिसीजन लोगे वो आपका ही इसी इसीलिए लिया जाता है कि जो आपके सारी पेमेंट हैं, फाइनेंसेस हैं, लोग कितने काम करेंगे या नहीं करेंगे, किस टाइम पे कितने लोग होंगे, क्या टाइम रखना है, तो वो आपका इफेक्टिव डिसीजन से ही निकल कर आता है। लास्ट पॉइंट इसका है जो स्किल्स में हम लेते हैं वो आता है आपका नेटवर्किंग का। ये आपकी बिजनेस में इसलिए जरूरी होती है क्योंकि भाई आपका बिजनेस तभी बढ़ सकता है जब आपका नेटवर्क स्ट्रांग है, और क्योंकि जब तक आपको लोग जानेंगे नहीं तो आप लोगों से कोई चीज खरीदेंगे कैसे, या आपके बिजनेस को नहीं जानेंगे तो लोग आपके पास आएंगे कैसे, कस्टमर कैसे आएगा, क्वेरी तक नहीं लेंगे लोग अगर आपका नेटवर्क बड़ा नहीं होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, बहुत जरूरी होता है कि जब भी आपके कोई चीज आप स्टार्ट करो तो कस्टमर को जो है वो आपको बहुत अच्छे से ट्रीट करना होता है, ताकि अगर आपसे कोई सामान ले, प्रोडक्ट ले, या आप कोई सर्विस का काम कर रहे हैं, सर्विस का बिजनेस है, अगर कोई सर्विस ले तो वो चीज आपसे इतना खुश हो जाए कि जब नेक्स्ट टाइम कहीं बात हो या कुछ आपके बिजनेस को वो जरूर लोगों में रेकमेंड करें। इस पे कोई और कुछ बोलना चाहेगा नेटवर्किंग पे? क्योंकि हम तो ये काम करते ही है ना, आपके पास अगर एक बैच बनता है ट्रेनिंग का तो कितने हम स्टोरीज देखते हैं जिसमें बेनिफिशियरीज हमें सक्सेस स्टोरीज में ये बोलते हैं कि हमें इस ट्रेनिंग रीड सेंटर के बारे में, रीड लाइब्रेरी के बारे में अपने दोस्तों से पता लगा कि वो वहां जाते थे। तो इस पे कोई कुछ बोलना चाहेगा?
3: जैसे सर कि हम नेटवर्किंग में इम्प्रूवमेंट लाने के सर सोशल मीडिया का यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को लेकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं। अभी जो मॉड्यूल का नाम है वो यही है, एंटरप्रेन्योरशिप इंटीग्रेटेड विद टेक्नोलॉजी। तो क्योंकि फर्स्ट सेशन था, हम बिल्कुल इसके बारे में भी आगे बात करेंगे, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स चल गए हैं। आपने देखा होगा हर कोई आजकल घर से भी अगर काम कर रहा है तो उसने फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है, इंस्टाग्राम आजकल बहुत ज़्यादा ऊपर चल रहा है, इन सब चीज़ों में लोग रील्स बना बना के डालते हैं। तो हम इसको नेटवर्क को सोशल मीडिया के थ्रू भी हम बिल्कुल प्रमोट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं कि वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, वाई इज कम्युनिकेशन इम्पोर्टेंट, इसके बारे में पहले पढ़ता हूँ फिर आप लोगों को इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट बिकॉज द क्लाइंट एंड कस्टमर नीड्स टू अंडरस्टैंड वॉट यू आर ट्राइंग टू बाय और सेल। इट इन्फॉर्म्स कस्टमर अबाउट द प्रोडक्ट सर्विस यू आर सेलिंग टू देम एंड हाउ इट विल सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वॉन्ट्स। तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी ये शॉर्ट में थोड़ा सा एक्सप्लेन करा हुआ है कि क्यों कम्युनिकेशन, क्योंकि जब हम स्किल्स की बात कर रहे थे तो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा था वो यही है कि लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन जैसे मैंने आपको बताया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब तक आप अपने प्रोडक्ट के बारे में बताओगे नहीं, क्योंकि 10 क्वेश्चन आपसे कस्टमर पूछेगा कि मैं ये चीज़ क्यों खरीदूं, तो तो आपके पास उसके आंसर आने होने चाहिए, क्योंकि आजकल एक ही प्रोडक्ट के सिर्फ आप ही नहीं बैठे मार्केट में कि आप ही एक चीज बना रहे हो, मार्केट में उसी प्रोडक्ट को लेके सौयो व्यापारी बैठे होंगे। इवन अगर आप जिस जैसे आप विलेज लेवल के स्तर की बात करोगे, तो आप जो चीज बेच रहे हो बराबर वाला भी आपकी दुकान के बराबर में जो बैठा है वो भी वो चीज बेच रहा है, बस थोड़ा सा फर्क होगा कुछ ना कुछ। तो उसमें आपको कैसे कस्टमर को कन्विंस करना है कि हाँ भाई आपका प्रोडक्ट उससे कैसे अलग है, और आप उससे ना लेके मेरे से लोगे तो उसमें क्या फायदा होगा। तो ये चीजें, ये इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग प्राइस, कि आपका जो वो है ये मतलब क्यों उस चीज उससे अलग है। यूएसपी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी प्रोडक्ट के लिए, आपको लोगों को बताना आना चाहिए कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट जो आप मेरे से अगर लोगे तो ये दूसरे प्रोडक्ट से इसलिए अलग है, इसमें ये, और आप अपनी तरफ से क्या बेनिफिट दे सकते हो उसको, कि बाई चांस अगर इसमें कुछ खराबी आ गई तो आप मेरे पास ला सकते हो, सर्विस भी साथ साथ देनी दे दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कि हाँ भाई अगर आपके आप इसको ले जाते हो अगर 3 महीने 6 महीने में अगर कुछ प्रॉब्लम आ गई प्रोडक्ट में, तो आप प्लीज उसको मेरे पास लाइए, मैं उसको ठीक सही करके दूंगा। और अगर 6 महीने के बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उनको बोल सकते हैं एक मिनिमम कॉस्ट आएगी इतना ही लगेगा और मैं उसको ठीक करके दे दूंगा, कोई रिटर्न पॉलिसी भी रख सकते हो। तो ये सब चीजें अगर आप ऐड करोगे तो आपका एक कस्टमर अच्छा बेस बन जाएगा। इसको कस्टमर रिलेशनशिप में भी अकाउंट करते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं होता कि आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो तो बेचने के बाद जो आफ्टर सेल सर्विस होती है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है किसी भी कस्टमर के लिए, क्योंकि कभी ना कभी प्रोडक्ट या फिर कोई चीज में प्रॉब्लम तो आएगी आएगी, लेकिन उस प्रोडक्ट की सेल के बाद आप कस्टमर को किस तरह से हैंडल कर रहे हो वो एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में, जो भी जर्नी होती है इसकी आपकी एंटरप्रेन्योरशिप की। अब आपको कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज पूछ सकते हैं, बाकी फिर मैं थोड़ा से क्वेश्चंस पूछना शुरू करता हूँ। कोई सा
2: जी
0: भी
2: सर,
0: पॉइंट
2: जी
0: आप ले लो, कोई सा भी पॉइंट के बारे में बता
2: सर,
0: दो।
2: जैसे कि हम कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि हमारा ये प्रोडक्ट है जो मार्केट में सेल होगा कि नहीं होगा। तो उसी हिसाब से हम अपने प्रोडक्ट की प्लानिंग करते हैं, प्रोजेक्ट की मतलब प्रोडक्ट की, कि ये प्रोडक्ट हमारा यहाँ पे सेल होगा कि नहीं होगा, और इसमें जितना जितना हम खर्चा कर रहे हैं उसमें प्लस करके इसमें कुछ मुनाफा होगा या नहीं होगा, ये सारा कुछ आता है इसमें।
0: ठीक है ठीक है।
3: तो
0: और ऐसा कोई काम कुशलता अभी तक किए हैं आपने? क्योंकि आपने तो बहुत सारी ट्रेनिंग करी है, बहुत सारी चीजें बनाए हैं, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचा हो जो इसमें जो सारी चीजें भी बताया गया वो इन्वॉल्व हो उसमें, जैसे लीडरशिप भी हो, फाइनेंशियल भी हो, डिसीजन मेकिंग भी हो, प्रोडक्ट जो सर्वे वाली बात है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाया अभी तक इन
2: जी
0: सब
2: सर, हमें
0: चीजों को
2: टेक्निक
0: अप्लाई
2: बनानी
0: करते क्या बनाया?
3: प्लानिंग
0: पुष्पेंद्र तुम्हारा आवाज क्लियर नहीं
3: भी
0: है, पुष्पेंद्र तुम्हारा
3: है।
0: आवाज क्लियर
3: आवाज
0: नहीं, आवाज कट रहा है पुष्पेंद्र आपको।
3: हाँ
0: कुछ लता बताओ कोई भी
2: जी
0: या
2: सर, हाँ इसमें हमने दरियां भी आती हैं सर इसमें, और हमारे पिकल्स भी आते हैं सर, क्योंकि जो हमने जो नींबू का अचार बनाया था उसमें हमने वो क्वालिटी भी अच्छी आई थी, और वो हमारा इतना जितना बनाया था वो यहीं से सेल हो गया, और उसमें हमने कुछ मुनाफा भी अपने सेंटर के लिए किया है।
0: वेरी गुड। और बाकी और लोग कहाँ हैं? ये तो 5 पॉइंट हैं, एक को सुमलता ने एक्सप्लेन कर दिया प्लानिंग का, बाकी और कौन, नेटवर्किंग कौन बताएगा बिल्कुल लेटेस्ट जो अभी खत्म हुआ है?
3: स्वाति
2: जी सर, गुड आफ्टरनून सर।
0: गुड आफ्टरनून। आप ये जो 5 पॉइंट बताए हैं ना, तो आप कोई अगर प्रोडक्शन किए हो, कुछ चीजें सेल की हो, तो ये कौन सा
2: जी
0: पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहोगे, आपने कैसे किया था उस चीज का मैनेजमेंट?
2: सर, इसमें मैं डिसीजन मेकिंग का एक्सप्लेन करना चाहूंगी।
0: बिल्कुल
2: बाकी
0: बिल्कुल
2: सभी
0: बताइए।
2: पॉइंट्स भी जरूरी है, लेकिन डिसीजन मेकिंग भी है कि टाइम पे, अगर कई बार ऐसा होता है कि हम प्रॉफिट के मामले में जब भी हम सोचते हैं तो हम ज्यादा प्रॉफिट कमाने की भी बात करते हैं, या फिर हमारा ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कैसे हो ये सोचते हैं, लेकिन जब भी मार्केट में कंपटीशन बढ़ता है या फिर टाइम पे उसके सेम ही प्रोडक्ट अगर अवेलेबल हो जाते हैं, तो उस टाइम पे हमें ये डिसीजन लेना बहुत जरूरी हो जाता है कि हमारे मार्जिन कितने रहेगा, हमने जो बैकग्राउंड में जो भी पैसा लगा है वो भी निकलना चाहिए, हमारा लॉस भी नहीं होना चाहिए, या फिर एंड टाइम पे अगर हमें मार्केट चेंज करना पड़े, हमें मार्केट स्ट्रैटेजी हमें चेंज करनी पड़े, तो इस तरीके के छोटे छोटे डिसीजन हमें लेना आना चाहिए, और उस बात का हमें ख्याल भी रखना चाहिए कि प्लान प्लान बी भी हमारे पास होना चाहिए हर बार, कि
4: कि अगर ये नहीं हुआ तो उस टाइम पे मैं ये डिसीजन लेके इसको सुधारूंगी। थैंक यू सर। जी
0: ठीक है,
4: सर।
0: तो बस एक छोटा सा नीचे लिस्टिंग, जैसे अभी कम्युनिकेशन के बारे में बात करी हमने, तो पार्ट टू हम खत्म कर देंगे आज, आज पार्ट टू तक ही रखेंगे। तो बस ये लास्ट है, इसका ये जो है लिखा हुआ, इसमें लिखा है, डू यू थिंक लिसनिंग इज वाइटल फॉर कम्युनिकेशन? मतलब आप कोई चीज अगर कर रहे हो तो ऐसा तो है नहीं कि अगर आप अपना प्रोडक्ट है तो आप ही हमेशा उनको बताओगे इस चीज के बारे में कि मेरा ऐसा प्रोडक्ट है, इसलिए अलग है, मैं ये चीज देता हूँ, मैं उनसे इतनी अच्छी सर्विस देता हूँ बाकी लोगों से। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर आता है, वो आता है लिसनिंग टू द कस्टमर। क्योंकि आप भी अगर कोई काम कर रहे हो तो आप भी एक वैरायटी बेच रहे होगे ना, हमेशा जो कस्टमर जाएगा वो वैरायटी पे ही जाएगा, जिसमें आप एक अगर कोई चीज आपसे लेना है तो आप उसमें वैरायटी रखोगे कि ये वैरायटी है, अगर आप इस क्वालिटी भी होती है, ये लो क्वालिटी है, ये मीडियम क्वालिटी है, हाई क्वालिटी है, इसी हिसाब से उसके रेट्स भी डिसाइडेड होते हैं। अगर अच्छी क्वालिटी है तो रेट भी ऊपर होगा, मीडियम क्वालिटी तो रेट ठीक ठाक होगा, लो क्वालिटी है तो प्राइस भी कम होगा, फिर उसकी ड्यूरेबिलिटी और लाइफ भी कम होती है। इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि लिसनिंग, अब मैं पढ़ता हूँ फिर एक्सप्लेन करूंगा, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन कम्युनिकेशन। वी हैव टू लिसन टू आर कस्टमर्स नीड एंड वॉन्ट एंड अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट इज टू बी अलाइंड विद द कस्टमर। तो हमेशा आप अपना कोई प्रोडक्ट है वो सीधे कस्टमर पे नहीं थोप सकते। आपके पास जब कस्टमर आएगा तो जाहिर सी बात है वो अपनी नीड लेकर आएगा आपके पास कि हाँ मुझे ये चीज चाहिए, तो आप उसी हिसाब से आप उसको प्रोडक्ट दिखाओगे। लेकिन काफी बार ऐसा होता है कि आप चीजें दिखा रहे होते हो लेकिन प्रोडक्ट कस्टमर को वो चीज समझ नहीं आती, तो वहां पे इसका रोल आता है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर आप उससे पूछोगे कि आप अपनी खुद रिक्वायरमेंट बता दो, मैं उसी हिसाब से चीज आपको दे दूंगा। होता है ना सबके साथ कि वो पहले वो अपने हिसाब से दिखा रहा होता है, चीजें बता रहा होता है, लेकिन आप फिर उसे बताते हो कि नहीं नहीं ये नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए, तो आपसे वो डायरेक्टली पूछता है फिर कि सर या मैम आप अपनी रिक्वायरमेंट बता दो, क्वालिटी कैसी चाहिए, बजट क्या है, किस तरह से। तो आप जब उस चीज को ध्यान में रख के फिर आप अगर चीजें देखो निकालोगे तो शायद आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा और कस्टमर इजीली उस प्रोडक्ट को आपसे खरीद भी लेगा। सबको समझ आ गया यहाँ पर, या अभी कोई डाउट है किसी को?
4: जी सर आ गया। यस
0: तो इसको हम अभी कंक्लूड इसी यहीं तक करेंगे कि लिसनिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप जब अपने कस्टमर, कोई आपके पास क्लाइंट आता है दुकान पे, कोई कस्टमर आता है, कोई ग्राहक आता है आपके पास, तो आप उसको सुनो कि वो क्या चीज़ आप लोग आपसे चाह रहा है, किस क्वालिटी का चाह रहा है, किस बजट में चाह रहा है, कितनी लाइफ की चीज़ चाह रहा है, या जो भी चीज़ है वो आप सुन के उसको फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट दिखाओ और उसमें वैरायटी दिखाओ। तो ये इसलिए लिसनिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो अभी हमने आज पार्ट वन एंड पार्ट टू खत्म करा है, जिसमें हमने बिजनेस की डेफिनेशन वगैरह, उसके टाइप्स, उसमें क्या क्या स्किल जरूरी होती है एक बिजनेस के लिए, मिशन विजन एंड आपको कम्युनिकेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, ये चीज़ हमने, पांच सात चीज़ें हमने आज कवर करी हैं। तो आज वाला सेशन हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी अब जो नेक्स्ट सेशन है वो नेक्स्ट मंडे को सेम टाइम पर होगा, ठीक है? तो बाकी अब जब नेक्स्ट सेशन हम शुरू करेंगे तो पहले प्रीवियस सेशन का थोड़ा सा रिकैप करेंगे एंड फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आज हमने पार्ट वन एंड पार्ट टू कवर करा है इसमें,
4: ओके सर।
0: ठीक है?
4: ओके
0: थैंक यू
4: सर।
0: फॉर ज्वाइनिंग।
4: थैंक यू सर।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।
1: हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन के अंदर। और आज का जो सेशन हमारा है वो बेसिकली मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए है। प्राइमली जो हम फोकस करेंगे कि जो बच्चे 10th के बाद में मेडिकल साइंस एज एन ऑप्शन लेते हैं तो उनके पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं 12th के बाद में, क्या क्या वो कर सकते हैं। तो आज उन सब इश्यूज के बारे में बात करेंगे। तो प्राइमली जो मेडिकल प्रोफेशन है आज वो हमारा मेन फोकस रहेगा, ठीक है। इससे पहले जो लोगों ने पहले भी सेशंस अटेंड किए हैं तो हम काफी चीजें अंडरस्टैंड कर चुके हैं। हमने कॉमर्स से रिलेटेड एक सेशन किया था और भी डिफेंस एग्जाम्स का है, गवर्नमेंट जॉब्स का, तो हम काफी चीजें पहले कर चुके हैं। तो आज का जो हमारा फोकस है वो मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम्स के ऊपर रहेगा। एंड आई होप जो बच्चे अभी 10th क्लास से नीचे हैं, 9th में है, 8th में है, 7th में है, तो उनके लिए एक काफी अच्छा ऑप्शन होता है। और आप देखेंगे कि कोविड के टाइम पे, देखिए आज के टाइम में कोरोना के टाइम पे, तो मेरे हिसाब से सबसे जो सेफ लोग हैं, जो जिनके इनकम पे कोई भी फर्क नहीं पड़ा, ठीक है, वो या तो कौन है बेटे, जो डॉक्टर्स हैं एक टाइप से, जो मेडिकल प्रोफेशंस के लोग हैं, या फिर आपके जो बनिए हैं, बनिए मतलब कि जिसको हम कह सकते हैं कि जिनकी शॉप्स हैं एक टाइप से, तो उनका काम चल रहा है। बाकी तो देखो सभी के लिए किसी ना किसी टाइप से चैलेंज है। तो जो मेडिकल प्रोफेशन है एक बहुत नोबल प्रोफेशन है, क्योंकि यही एक ऐसा प्रोफेशन है जो एक तरह से नेक्स्ट टू गॉड है, कि भगवान के बाद अगर और कोई है तो हमारे लिए कौन होता है, डॉक्टर होता है, क्योंकि उसी का वही एक ऐसा है जो हमारी जान को बचा सकता है। तो ये एक चैलेंजिंग प्रोफेशन होता है और बच्चे अगर मेहनत करें और उनका ठीक ठाक कोर्स में एडमिशन हो जाए तो बहुत अच्छा करियर बना सकते हैं, राइट। अब देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपसे शेयर करूंगा कि ये मैंने लास्ट टाइम भी ये पीपीटी शेयर किया था, इस टाइप का एक इंट्रोडक्शन रिमार्क मैंने दिया था कि जनरली हमारे मन में ये होता है कि जो बच्चे मेडिकल या नॉन मेडिकल स्ट्रीम को ऑप्ट करते हैं तो वो किताबों में खोए रहते हैं, ठीक है। वो किताबों में खोना इसलिए पड़ता है कि अगर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है जिसमें पीएमटी है, आपका नीट का एग्जाम है, या इसके अलावा और भी कोई एंट्रेंस एग्जाम अगर आपको क्वालिफाई करना है तो उसके लिए आपको काफी मेहनत करनी रहती है, ठीक है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है। तो इसलिए जनरली माइंड में भी हमारे एक अप्रोच होती है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए कि जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए 12th में पहली चीज तो क्या है कि जब आप मेडिकल साइड लेते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, मतलब तीन सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। प्राइमरी मेडिकल और नॉन मेडिकल में फर्क इतना ही है कि नॉन मेडिकल में आप मैथमेटिक्स एज ए मेन सब्जेक्ट आपका होता है, और वही अगर आप मेडिकल की बात करेंगे तो आपको बायोलॉजी पढ़ना रहता है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी आपको लेना है, प्लस वन प्लस टू में आप पढ़ते हैं। मेडिकल साइड लेने का एक सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि 12th के बाद जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जो मेडिकल स्ट्रीम पर बेस्ड है, ठीक है, उन सब में जो एंट्रेंस एग्जाम है वो ऑलमोस्ट वही का वही है जो आप प्लस वन प्लस टू में पढ़ते हैं। मतलब आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप MBA होटल मैनेजमेंट लॉ का एग्जाम देंगे तो आपको कोर्स के अलग चीजें पढ़नी पड़ेंगी, बट आप अगर नीट का एग्जाम देते हैं तो जो आपने प्लस वन प्लस टू में एज ए सब्जेक्ट आपने स्टडी किया है वही चीज आपको पढ़नी रहती है, ठीक है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी हमारा टारगेट है। आप देखेंगे ये बीच में एक इमेज के अंदर दिखा हुआ है ऑप्शंस आफ्टर क्लास 12th, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। पहले आपको मैं एक जो ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर हम इन डिटेल बात करेंगे एक एक बात के ऊपर। सबसे पहला जो मेडिकल साइड का, जो एक तरह से जो बच्चा मेडिकल साइड लेता है तो एक सबसे ऊपर उसके मन में क्या होती है कि उसे एमबीबीएस करनी है, उसे मतलब डॉक्टर बनना है। सबसे पहली चीज जो है, कोई बच्चा जो मेडिकल साइड लेता है तो पहला एम, पहला लक्ष्य, पहला उद्देश्य उसका यही होता है कि उसे डॉक्टर बनना है, ठीक है। और डॉक्टर्स में भी सबसे टॉप पे एमबीबीएस आता है, जिसे आप देखते हैं किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो उसके नाम के पीछे डिग्रीज लिखी होती हैं, एमबीबीएस है, एमएस है, एमडी है। तो एमबीबीएस एक तरह की बैचलर डिग्री होती है, ठीक है, आपकी सर्जरी एंड मेडिसिन के अंदर, राइट। और एमबीबीएस एक आपकी जनरल डिग्री है, उसके बाद फिर आप स्पेशलाइजेशन करते हैं और स्पेशलाइजेशन में आप एमडी करते हैं आगे, फिर ये डिवाइड होता है कि आप किस चीज के डॉक्टर हैं, ठीक है। ऐसे ही जिन बच्चों का एमबीबीएस में एडमिशन नहीं हो पाता तो वो बीएमएस करते हैं, ये आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी होती है, बीएमएस जिसका नाम होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन सर्जरी। तो बीएमएस जो डॉक्टर होते हैं वो बेसिकली आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं, राइट। और उनका भी काम ऑलमोस्ट एमबीबीएस के इक्विवेलेंट होता है, बट कुछ एंगल्स पे हम कह सकते हैं कि एमबीबीएस ज्यादा स्पेशलाइज्ड है, क्योंकि एमबीबीएस में पर्सन को सर्जरी करने का एक तरह से उसके पास में पे वो स्पेशलाइजेशन करता है। सिमिलरली होम्योपैथी के डॉक्टर भी होते हैं जिसको हम बीएचएमएस कहते हैं, दैट इज होम्योपैथिक एंड द मेडिसिन। यू हैव द बीडीएस भी होते हैं, आपके जो डेंटल साइंस से डॉक्टर होते हैं, जो आपके दांतों के डॉक्टर होते हैं, या बीएनवाईएस भी होते हैं, नेचुरोपैथी और योगिक साइंस। आप देखेंगे आज के टाइम में का ये एक्यूप्रेशर काफी ज्यादा स्कोप है, तो ये एक आपके पास में ऑप्शन होता है मेडिकल साइंस के अंदर, अगर आप मेडिकल साइंस में रहना चाहते हैं। और इन सब के लिए एक कॉमन एग्जाम है, आपको नीट का एग्जाम देना होगी। देखिए यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है कि ट्वेल्थ के बाद जो बच्चे अपने इन एक तरह से इन चीजों में करियर मेक करना चाह रहे हैं तो उनको नीट का एग्जाम देना। अभी मैं नीट के एग्जाम पे भी आता हूँ। सेकेंड होता है बेटे अलाइड मेडिकल सर्विसेज। अलाइड मेडिकल मतलब जिसको हम पैरामेडिकल भी कह देते हैं, इसमें बीएससी नर्सिंग टॉप पे रहता है। आप मानेंगे कि बीएससी नर्सिंग का इतना ज्यादा स्कोप है कि अगर किसी भी, वैसे तो आजकल पहले क्या होता था कि बीएससी नर्सिंग जो होती थी वो गर्ल्स के लिए होती थी, ठीक है, बट आज के समय में बीएससी नर्सिंग जो है उसमें बॉयज भी आ सकते हैं, मतलब बॉयज के लिए भी ओपन होती है। तो जिस बच्चे ने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है तो आप ये मान के चलिएगा 100% उसकी गवर्नमेंट जॉब लगेगी। उसके पीछे रीजन क्या है, आप देखिए एक एमबीबीएस डॉक्टर के पास अगर कोई डिपार्टमेंट में है तो कम से कम 10-12 नर्सेज उस डिपार्टमेंट में होती हैं, ठीक है। तो बीएससी नर्सिंग अगर आपने किया हुआ है तो आपके पास में बहुत अच्छा स्कोप है गवर्नमेंट जॉब लेने का। इसके साथ साथ आप बीएससी रेडियोलॉजी और मतलब काफी स्ट्रीम्स हैं जो आप एक तरह से पैरामेडिकल सर्विसेज में, उसे हम कहते हैं, या फिर आप फार्मेसी कर सकते हैं, बी फार्मेसी, फार्मेसी डी फार्मेसी होती है। तो मतलब एक काफी ज्यादा स्कोप है अगर बच्चा मेडिकल साइंस में अपना करियर बनाना चाहे तो। देखिए एक चार्ट है, इसमें आप देखेंगे सबसे टॉप पे एमबीबीएस है, फिर आपका बीडीएस है, उसके बाद आपका बीपीटी है, फिजियोथेरेपी, बीएचएमएस है, होम्योपैथी। पहले तो आपको नाम भी, उसके मतलब भी पता होने चाहिए। आप किसी डॉक्टर के पास जाएं, उसके बाहर नेम प्लेट लगा हुआ है रवि कुमार बीएचएमएस, तो आपको जैसे ही बीएचएमएस आपने पढ़ा तो आपको पता है भी होम्योपैथी का डॉक्टर है, ठीक है। उसके नाम के नीचे अगर आपका लिखा हुआ है बीएमएस लिखा हुआ है तो आपको पता है कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और हर बच्चे को नॉलेज होनी भी चाहिए। जितना आपको नॉलेज होता है उतने ही आप अपना एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो ये एक सारे तरह से अलग अलग कोर्सेज हैं जो बच्चे के पास में ट्वेल्थ के बाद ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, राइट। तो ये मैंने आपको एक स्टार्टिंग में एक टाइप का ब्रीफ इंट्रोडक्शन बताया है कि जो मेडिकल साइंस में क्या क्या चीजें अवेलेबल है। हम एक एक करके इन डिटेल बात करते हैं इन सबके ऊपर, और भी क्या क्या करियर्स हैं, क्या क्या स्कोप है ट्वेल्थ के बाद में, वो हम सारा डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। देखिए बेटे ये चीज आप अपने दिमाग में बिठा लो, अगर आपको मेडिकल साइंस में करियर बनाना है तो आज के समय में आपको नीट का एग्जाम देना है। मतलब नीट का एग्जाम होता है एट प्रेजेंट जो एग्जाम का नाम है, हो सकता है जब आप एंट्रेंस एग्जाम दो तो उस टाइम पर नया पैटर्न हो, पर आज के टाइम पे जो है वो नीट का एग्जाम होता है। 3 आवर का आपका एग्जाम होता है, 3 घंटे का आपका पेपर होता है और 180 मार्क्स का पेपर है, ठीक है। और नीट के एग्जाम में 3 सब्जेक्ट आपके आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी आता है, जो भी आपने +1 +2 में पढ़ा है, सारी चीजें उससे रिलेटेड है, ठीक है। 720 मार्क्स का पेपर होता है, 180 क्वेश्चन आते हैं आपको। अगर आपको प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेना है तो भी नीट का एग्जाम आपको देना कंपलसरी है। तो एक चीज आप मान सकते हैं कि अगर आपको मेडिकल प्रोफेशन में अपना करियर बनाना है तो नीट का एग्जाम देना आपके लिए मस्ट है, ठीक है। अब 180 मार्क्स का जो पेपर आता है वो कैसे डिवाइडेड है, उसके बेटे 3 पार्ट्स है। पहला पार्ट फिजिक्स का है 45 मार्क्स का, सेकेंड पार्ट केमिस्ट्री का है 45 आपके क्वेश्चंस आते हैं, और थर्ड होता है बायोलॉजी 90 क्वेश्चंस। मतलब बायोलॉजी का जो फोकस है वो नीट के एग्जाम में ज्यादा रहता है, ठीक है। एक चीज और मैं बीच में ऐड कर दूं कि बहुत बच्चे बेटे आप में से ऐसे होते हैं कि जो मान लीजिए मेडिकल साइंस से नहीं है, मेडिकल साइड से नहीं है, फिर भी उन्हें अलग अलग करियर्स के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। रीजन क्या है उसके पीछे, कि अगर आप अपने टाइम में इन चीजों की प्रिपरेशन नहीं कर पाए तो कम से कम आपके छोटे भाई बहन हैं, आपके आस पड़ोस में आपके रिलेटिव्स हैं, तो आपको आप किसी को एडवाइस कर पाएंगे। तो तभी मैं बार बार हमेशा कहता हूं हर सेशन के अंदर कि आपको हर चीजों के बारे में पता होना चाहिए। हो सकता है कि हम नहीं कर पाए, बट हमारे आने वाली जनरेशन जो है, आपके नोन के बच्चे हैं, उनको आप एक्सप्लेन कर पाते हैं अभी नहीं बेटे ऐसे तैयारी करनी है, स्कोप काफी है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सभी अपना इंटरेस्ट लेके समझे। तो 180 मार्क्स का पेपर रहेगा, और सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है कि जो +1 +2 में आपने पढ़ा है वहीं से आपका आना है सारा का सारा। थोड़ा एडिशनल प्रिपरेशन आप कर सकते हैं, मार्केट में कई सारी बुक्स अवेलेबल है, कोचिंग इंस्टीट्यूट भी होते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी है। तो मतलब आप नीट की अगर आप एक टारगेट करें तो, और ये हार्ड वर्किंग काम है, 12th के मार्क्स की कोई वेटेज नहीं है। 12th में आपके कितने भी परसेंट मार्क्स हो, चाहे कम भी है, तो अगर आपका नीट का एग्जाम क्वालिफाई है तो इसका मतलब आपका सिलेक्शन कंफर्म है, ठीक है। तो ये एक टारगेटेड एग्जाम है। और जितने भी मेडिकल साइंस के कोर्स हैं, चाहे आपको मैंने BHMS बताया, चाहे आपको मैंने MBBS बताया, चाहे आपको मैंने BMS बताया, तो सभी नीट से ही आपका एडमिशन लेंगे, सभी के सभी नीट से ही एडमिशन लेंगे। और जैसे BSc नर्सिंग है, ये सभी नीट के थ्रू एडमिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये बेटे आपने टारगेट करना है अगर आप आगे फ्यूचर में मेडिकल साइंस के प्रोफेशन में जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, और +1 +2 में आपके पास में मेडिकल साइड अगर है तो। अब जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मैंने जो मेडिकल प्रोफेशन के बारे में बताया, जिसमें आपको मैंने BMS BHMS बताया, ऐसे ही काफी लोग ऐसे हैं जो फार्मेसी में जाना चाहते हैं, फार्मेसिस्ट बनते हैं। आपके पास बी फार्मेसी का कोर्स होता है, जिसको हम बी फार्मा कहते हैं, 4 ईयर का कोर्स रहता है आपका, ठीक है। और बी फार्मा करने के बाद भी आपके पास में काफी स्कोप है, मैं आपको थोड़ा स्कोप। सबसे पहला क्या है कि बेटे फार्मेसी करने के बाद आप अपनी फार्मेसी की शॉप ओपन कर सकते हैं, लो इन्वेस्टमेंट में काम स्टार्ट हो जाता है। और आप देखेंगे आज के टाइम में फार्मेसी का स्कोप बहुत ज्यादा है। आप किसी भी केमिस्ट की शॉप पे चले जाइए तो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे दवाइयां फ्री में मिल रही हैं, इतनी भीड़ रहती है। क्यों? क्योंकि आज के टाइम में बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट, बिकॉज ऑफ द हैबिट्स, फूड हैबिट्स कह लीजिए या हमारा वर्क कल्चर कह लीजिए, कि उसमें हम अपनी हेल्थ पे ज्यादा ध्यान नहीं देते, और हेल्थ पे ज्यादा ध्यान
2: नहीं। पता सिखाने का मन कर रहा है पर
1: क्या
2: अरे ब्रदर तो आज मेरे
1: हाँ जी, तो अगर हम हेल्थ पे ध्यान नहीं देंगे तो फिर उसमें आपको मतलब आपको पैसा स्पेंड करना पड़ेगा हेल्थ के ऊपर। तो फार्मेसी जो है वो एक बहुत आसान जरिया होता है भी, आप उसके बाद अपनी शॉप ओपन कर सकते हैं, आप एज ए MR का काम कर सकते हैं, जिसको हम मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं। अगर आप आगे फ्यूचर में और अपने अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहें, एम फार्मा करना चाहें, तो आप एम फार्मा भी कर सकते हैं। और एम फार्मा करने के बाद टीचिंग में, रिसर्च में, मतलब एक बहुत अच्छा स्कोप है फार्मेसी का। ऑल्दो MBBS के मुकाबले फार्मेसी की जो डिग्री को अगर हम MBBS से कंपेयर करें तो लो माना जाता है, बट अपने आप में फार्मेसी का स्कोप है। देखिए जितनी भी दवाइयां बनती हैं वो सब फार्मेसी वाले ही बनाते हैं, मतलब MBBS जो है ना, जो डॉक्टर है वो तो उसे प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। जो एक्चुअल में जो मेडिसिन बनाई जाती है वो फार्मेसिस्ट ही बनाता है, ठीक है, तो ये काफी ज्यादा स्कोप है और आप इसको फ्यूचर में अगर जो बच्चे मतलब एक तरह से फार्मेसी में जाना चाहे तो बी फार्मा उन्हें करना रहता है। और दुनिया भर के कॉलेजेस हैं, आप मानेंगे फार्मेसी के इंडिया में काफी कॉलेजेस हैं, हर स्टेट में कॉलेजेस हैं, ठीक है, उसमें कुछ कॉलेजेस प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं या गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में फीस काफी कम रहती है, तो बहुत ही कम पैसा स्पेंड किया आप अपना एक बार। मेन थिंग इज दैट कि आप अपनी नीट की प्रिपरेशन करेंगे, और नीट की प्रिपरेशन में जो लो स्कोरर्स होते हैं जिनका एक तरह से एमबीबीएस या बीडीएस में नहीं हो पाता है, तो फिर वो फार्मेसी की तरफ जाते हैं। ऐसे ही फिजियोथेरेपी एक एक आप ये कह सकते हैं कि आने वाले टाइम का प्रोफेशन है। आज भी जो फिजियो है, आज भी फिजियोथेरेपिस्ट की इनकम काफी ज्यादा होने स्टार्ट हो गई है। तो जैसे फिजियोथेरेपी है, तो फिजियोथेरेपी में भी करियर अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है, आप अपना काम कर सकते हैं। हम ऐसे ऐसे फिजियोथेरेपिस्ट को आप देखिए, अगर आप इफ यू स्टे इन दिल्ली और इन एनी प्लेस, तो वहां पर फिजियोथेरेपिस्ट मतलब एक सिटिंग के ही 1000 रुपीज चार्ज कर लेता है, मतलब एक आधे घंटे के 500 से 1000 रुपए चार्ज कर लेता है। और फिजियोथेरेपिस्ट में अपना काम करना बहुत आसान है, वैकेंसीज काफी निकलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स भी हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट में क्या करना रहता है, आपको बीपीटी करना होता है, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ठीक है, ये आपका 4.5 साल का कोर्स होता है, 4 ईयर आपका डिग्री है, और उसके बाद में 6 मंथ का आपका इंटर्नशिप होता है, ठीक है। फिर आप अलग अलग स्ट्रीम के फिजियोथेरेपी में स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं आगे, उसके अंदर अगर आप मास्टर डिग्री करें तो स्पेशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं, मतलब हाँ एक्चुअली क्या है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट में फी स्ट्रक्चर जो तो गवर्नमेंट कॉलेजेस है ना, उनमें तो फीस बहुत ही नॉमिनल है, उनमें तो स्टाइफंड तक मिलते हैं, मतलब जो आपके जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनमें फीस काफी कम है। बाकी प्राइवेट कॉलेजेस में पर एनम फीस होती है 50,000-60,000 के आसपास एनुअल फीस रहती है। बट देखिए क्या रहता है कि प्राइवेट कॉलेजेस भी काफी हैं, बाकी इसके अंदर आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, तो एडवाइस यही किया जाता है कि अगर आप ऐसा कोई कोर्स करें तो गवर्नमेंट कॉलेज से करें, ताकि आपको ज्यादा पैसा स्पेंड ना करना पड़े, राइट। तो ये भी एक बहुत अच्छा स्कोप है फिजियोथेरेपी का, जिसको आप एज ए करियर बना सकते हैं। बीएससी फाइनल के बाद आपके डिप्लोमाज होते हैं। देखिए सर क्या रहता है कि आपके दो तरह के कोर्सेज होते हैं, जैसे जो बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है वो तो एक तरह से 4 साल का आपका फिजियोथेरेपी का ही कोर्स है। इसमें क्या रहता है कि जो लोग 12th के बाद नहीं कर पाते वो बीएससी कर लेते हैं, तो बीएससी कर डिप्लोमेज होते हैं आपके, 2 ईयर का है डिप्लोमा, आपने 2 साल का फिजियोथेरेपी में डिप्लोमा किया और उसके बाद फिर आपने अपना काम करना स्टार्ट कर दिया, तो वो भी ऐसे ऑप्शंस हैं, अवेलेबल हैं, दैट इज ऑल्सो इन द मार्केट। तो मैं अभी आगे स्लाइड्स के अंदर हम पैरामेडिकल कोर्सेज की बात करेंगे, तो उसमें कई सारे मैं बताऊंगा आपको ये डिप्लोमाज होते हैं जो आप 12th के बाद में या बीएससी के बाद में कर सकते हैं, और उसके अंदर भी बहुत इजीली अपना करियर बनाया जा सकता है। इसके बाद जो बच्चे एक तरह से साइंस लेते हैं, मेडिकल साइंस लेते हैं, तो उनके पास में हाँ ये भी है, बीएससी के बाद में लेटरल एंट्री मिलता है बिल्कुल, अगर आप उसके अंदर बीपीटी करना चाहें तो आपको मतलब 1 साल का एडवांटेज हो जाता है। बिल्कुल अकबर जी बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। तो ऐसी आपके पास एक बहुत अच्छा स्कोप होता है वेटरनरी साइंस का, जिसको हम बीवीएससी कहते हैं, बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस, ठीक है। लास्ट ईयर तक तो इसका एग्जाम होता था, ऑल इंडिया प्री वेटरनरी टेस्ट होता है, AIPVT। ये बेसिकली जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, आप देखें इंडिया में जानवरों के डॉक्टरों का भी काफी स्कोप है। रूरल एरियाज की बात करें जिसमें गाय भैंस के डॉक्टर होते हैं, ठीक है, या अगर आप बहुत बड़े बड़े शहरों की बात कर रहे हैं तो डॉग्स हैं, कैट्स हैं, तो उनके डॉक्टर्स होते हैं। तो उसके लिए AIPVT का एग्जाम था लास्ट ईयर तक, इस बार तो नीट का ही एग्जाम लिया है क्योंकि बिकॉज ऑफ कोरोना, तो एक ही एग्जाम कर लिया। तो ये वेटरनरी साइंस होती है आपकी, ठीक है। तो इसमें क्या रहता है कि एक काउंसिल है, वेटरनरी काउंसिल है, उसमें आपका BBSC होता है एनिमल हस्बेंड्री के अंदर, जिसमें जानवरों से रिलेटेड आपको, जैसे आप MBBS करते हैं तो वो ह्यूमन से आपका डील करता है, तो वही आपका जो BBSC है वो डील करता है एनिमल से। और काफी कॉलेजेस हैं इसके भी इंडिया में, असम में है, जोरहाट में है, बॉम्बे में है, ऐसे हिसार में भी आपके आसपास में, तो नंबर ऑफ कॉलेजेस आर देयर। जब आप कोई बच्चा एक स्पेसिफिकली इंटरेस्टेड हो BBSC के अंदर तो वो थोड़ा एक्सप्लोर करेगा, तो उसे इंडिया लेवल पे काफी इंस्टीट्यूट मिलेंगे जो वेटरनरी के अंदर टीच करते हैं। और इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब का काफी ज्यादा स्कोप है। रीजन क्या है कि रूरल एरियाज में एनिमल हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, आप देखेंगे हर गांव में एनिमल का हॉस्पिटल होता है। तो एनिमल का हॉस्पिटल है तो वहां पे डॉक्टर भी चाहिए, राइट। तो जो इसमें डॉक्टर होते हैं वो आपके बीवीएससी होते हैं। तो इस फील्ड में गवर्नमेंट जॉब का भी काफी स्कोप है, अगर आपने बीवीएससी किया हुआ है तो बहुत इजीली आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाता है, तो आपके इंटरेस्ट की बात है। तो ये भी एक स्कोप रहता है, अगर आप साइंस साइड आप ले रहे हैं तो आप वेटरनरी के अंदर भी अपना करियर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके ये एक कोर्स स्ट्रक्चर है बीवीएससी का, जिसमें बैचलर ऑफ वेटरनरी साइंस कहते हैं। इसकी जो कोर्स फीस है, देखिए जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वहां तो 5-10 हजार रुपए एनुअल फीस है, अगर हम प्राइवेट कॉलेजेस की बात करें तो 1 लाख तक फीस है उसके अंदर एक साल का, और 5.5 साल का कोर्स है, और उसमें फिर आपकी जो सैलरी है अच्छी सैलरी मिल जाती है। मतलब ये मतलब एक टाइप से यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब ज्यादा रहती है, तो गवर्नमेंट जॉब में आप एज ए डॉक्टर ज्वाइन करते हैं तो जो एक तरह से डॉक्टर का स्केल रहता है तो वो स्केल रहता है। तो स्टार्टिंग में 5-1 लाख के आसपास आपका एनुअल सैलरी रहता है, पर धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम इंक्रीज होता जाता है। तो ये भी आप देख सकते हैं एज ए करियर, वेटरनरी साइंस को भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। फिर बीएससी एग्रीकल्चर, ये भी एक ऑप्शन रहता है कि जिन बच्चों ने 12th में मेडिकल साइड लिया है, ठीक है, उनका अगर इंटरेस्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू द एमबीबीएस और वेटरनरी साइंस तो वो बीएससी एग्रीकल्चर कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इंडिया में कई सारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं जो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती हैं। जैसे आप हरियाणा में देखें तो हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार है, आप दिल्ली में देखें तो IARI है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, वहां पे आपकी पंत नगर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। लुधियाना पंजाब से बिलोंग करते हैं तो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। तो मतलब ऑलमोस्ट हर स्टेट में एक या एक से ज्यादा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स ऑफर करती है, ठीक है। और बीएससी एग्रीकल्चर के कोर्स में भी अगर आप बीएससी एग्रीकल्चर कर लेते हैं तो उसके बाद भी आप अपने कई सारे मतलब एक तरह से अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है, आप एक्सपोर्ट बिजनेस में जा सकते हैं, नर्सरी के बिजनेस में काम कर सकते हैं, एग्री क्लिनिक्स होती हैं, अपनी कंसल्टेंसी स्टार्ट कर सकते हैं, अगर आपके पास में लैंड अवेलेबल है तो आप उसमें एग्रीकल्चर कर सकते हैं। तो आप देखेंगे आज के टाइम में तो वैसे भी अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर, क्योंकि देखो जो फार्मर की जहां तक बात है ना, हमारे फार्मर जो हैं वो मतलब एक तरह से एजुकेशन कम है उनके अंदर, तो वो न्यू टेक्नोलॉजीज को न्यू चीजों के बारे में इतना अवेयर नहीं हो पाते, तो वो एक तरह से जो स्टैंडर्ड चीजें चल रही हैं उन्हीं पे ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो बीएससी एग्रीकल्चर अगर आप कर लेते हैं तो आपके पेरेंट्स अगर एग्रीकल्चर में है, खेती करते हैं, तो आप बहुत हद तक उन्हें एक तरह से एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें रहती है बीएससी एग्रीकल्चर के बाद में। इसके साथ साथ काफी गवर्नमेंट जॉब्स भी निकलती है, आप देखेंगे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर की जॉब होती है, क्लास 1 ऑफिसर होता है, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर्स होते हैं, आपके असिस्टेंट कंजर्वेटर, एग्रीकल्चर ऑफिसर, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर, मतलब नंबर ऑफ वैकेंसीज आर देयर, जहां पर जो मिनिमम क्वालिफिकेशन आपसे मांगी जाती है वो बीएससी एग्रीकल्चर मांगी जाती है, ठीक है। तो मतलब अगर आपने बीएससी एग्रीकल्चर किया हुआ है तो इन सब गवर्नमेंट जॉब्स में भी आप जा सकते हैं, और आपको एक सिंपल एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई करना है और उसके बाद में आपका सिलेक्शन हो जाता है। और ऐसे ही आप इसमें रिसर्च में जाना चाहें तो मास्टर डिग्री भी कर सकते हैं, जिसमें आप एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सोयल साइंसेज, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, पैथोलॉजी, मतलब काफी बड़ा स्ट्रीम है ये। आप किसी एग्रीकल्चर, अगर आपने कभी किसी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जाके देखा हो तो आप देखेंगे इतने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। तो आप उसमें यू कैन गो फॉर द मास्टर डिग्री ऑल्सो, आप एमबीए भी कर सकते हैं एग्री बिजनेस के अंदर, ठीक है। आप देखेंगे एग्री बिजनेस का भी स्कोप काफी ज्यादा है, तो मैक्सिमम जितनी एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज है वो एमबीए इन एग्रीकल्चर भी ऑफर करती है। तो बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद में आप एमबीए भी कर सकते हैं। तो इस तरह से स्कोप इज वेरी वाइड, डिपेंड करता है कि आपका कितना इंटरेस्ट है। बाकी एक चीज मैं फिर आपको यहां पर ऐड करूंगा कि प्लस 1 प्लस 2 में मेडिकल साइंस लेने का मतलब एमबीबीएस नहीं है, एमबीबीएस कतई नहीं है। एमबीबीएस तो उन बच्चों के लिए है जिनका वो टारगेट है, ठीक है। आप अपार्ट फ्रॉम एमबीबीएस आप और भी कई जगहों पर कई चीजों में ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, और इन चीजों का भी अपना पूरा स्कोप है, ठीक है। वो इंटरेस्ट की बात हो जाती है, तो इन तो दैट इज अ वेरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा आपका स्कोप है एग्रीकल्चर का भी, बीएससी एग्रीकल्चर का। फिर कुछ पैरामेडिकल कोर्सेज हैं। अब पैरामेडिकल कोर्सेज, पहले तो हम ये समझें कि पैरामेडिकल कोर्सेज बेसिकली क्या होते हैं। देखिए, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाएं तो हॉस्पिटल में एक तो डॉक्टर है जो आपको ट्रीट करता है, फिर उसके साथ में उसकी असिस्टेंस के लिए नर्सिंग स्टाफ होता है, ठीक है। अब उसके बाद में आप देखेंगे और भी हॉस्पिटल में काफी लोग हैं। काफी लोग में क्या क्या है, आप देखेंगे एक फार्मासिस्ट होता है जो आपको मेडिसिन आपको देता है। अगर आप लैब में जाएंगे, आपको टेस्टिंग करवानी है तो लैब टेक्नीशियन आपको मिलेगा। अगर आपका एक्सरे होना है तो एक्सरे असिस्टेंट अलग से होगा। ऑपरेशन अगर आपका होना है तो एनेस्थीसिया, जो एक तरह से आदमी को बेहोश करता है, वो अलग से होगा। तो इस तरह से मतलब काफी बड़ा पैरामेडिकल स्टाफ होता है किसी भी गवर्नमेंट, एक तरह से किसी भी प्राइवेट या गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। तो बहुत लोग ऐसे हैं जो ज्यादा आगे टाइम वेट नहीं कर सकते, या जो एक तरह से हम ये कहें कि दे आर नॉट गुड इन स्टडीज, तो उन्हें ये लगता है ठीक है एमबीबीएस करना तो हमारे बस की बात नहीं है, तो चलो हम मेडिकल प्रोफेशन में रहना चाहते हैं, तो आप उनकी बजाय आपने और कोई कोर्स कर लिया। तो उसमें सबसे पहला कोर्स आपका होता है जीएनएम का, जिसको हम जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी कहते हैं। जीएनएम का कोर्स होता है। आप देखते हैं आपके आसपास में एएनएम और जीएनएम के कोर्स किए जाते हैं, तो ये 3.5 साल का कोर्स होता है ट्वेल्थ के बाद में, ठीक है। तो इसमें आप एडमिशन सकते हैं ले। इसमें काफी प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं एएनएम और जीएनएम के लिए, और काफी गवर्नमेंट कॉलेजेस भी हैं। तो उसमें क्या रहता है कि आपने अगर जीएनएम का कोर्स कर लिया तो गवर्नमेंट वैकेंसीज भी आती हैं। ये ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू स्टाफ नर्स होता है, जैसे आपने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है, ऑलमोस्ट उसके इक्वलेंट ही है, क्योंकि इसके बाद भी आपको नर्सिंग जॉब मिलती है। अगर आपने जीएनएम का कोर्स किया हुआ है तो इसके बाद आपको जो जॉब टाइप मिलेगी वो आपको नर्सिंग टाइप जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आप देखिए इतने प्राइवेट हॉस्पिटल्स ओपन होते जा रहे हैं, और आजकल के जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो किसी होटल से कम नहीं है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे आज ऐसे ऐसे हॉस्पिटल्स ओपन हो चुके हैं कि जैसे आपका मैक्स हॉस्पिटल है, वेदांता है, और ऐसे दुनिया भर के हॉस्पिटल्स हैं जहां पर मतलब एक तरह से इट्स लाइक ए 5-स्टार होटल्स। तो वहां पर काम करने का मजा अपना ही है, चाहे आप मतलब इफ यू आर नॉट एमबीबीएस कोई बात नहीं, उससे नीचे भी अगर आप काम कर रहे हैं तो एक वे ऑफ लिविंग है, और आजकल हॉस्पिटल्स काफी ठीक ठाक सैलरी भी पे करते हैं, तो ये एक आपके पास में स्कोप रहता है। ऐसे ही आप एनेस्थीशियन असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, 2 मंथ का कोर्स रहता है, बट इसमें स्कोप थोड़ा कम है। मैं यहाँ एक बहुत ज्यादा टाइम लगाऊंगा, ये एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स होता है। ये बेटे ये आप मान के चलिएगा, ये एक ऐसा कोर्स है एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स जो है, एक तो वो 10th बेस पे होता है, एक तो उसका जो एडमिशन होता है 10th बेस पे होता है। हर स्टेट के अंदर, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, एक स्टेट हेल्थ इंस्टीट्यूट होता है, जैसे हरियाणा का जो है वो रोहतक में है, ठीक है। यहां पर मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर की ट्रेनिंग होती है, जिसको हम एमपीएसडब्ल्यू कहते हैं। आप जैसे बेटे गांव से बिलोंग करते होंगे, आप में से काफी बच्चे, तो आप देखते हैं कि गांवों में मलेरिया एक टाइप से जो वर्कर होते हैं, ठीक है, पहले उन्हें मलेरिया वर्कर कहा जाता था, तो वो एमपीएसडब्ल्यू होते हैं। अगर आपने एमपीएसडब्ल्यू का कोर्स किया हुआ है तो आपकी 100% गवर्नमेंट जॉब लगेगी, क्योंकि इतनी ज्यादा वैकेंसी निकलती है, तो एक साथ वैकेंसी निकलती हैं, ठीक है। जब भी वैकेंसी आती है तो पुराने जिन्होंने कोर्स किया होता है सबकी जॉब लग जाती है। तो एमपीएसडब्ल्यू का वर्कर का कोर्स होता है, हेल्थ वर्कर का कोर्स होता है, 18 महीने से 2 साल का कोर्स होता है 10th के बाद में, बट इसमें गवर्नमेंट जॉब लगने का स्कोप ज्यादा रहता है। ऐसे ही आपका FMHW होता है, फीमेल मल्टीपर्पज हेल्थ वर्कर का कोर्स रहता है, बिल्कुल सेम पैटर्न पे, और 10th बेस पे एडमिशन, और मार्क्स बेस्ड एडमिशन है, कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं होता, आपको सिंपल मार्क्स आपके जो 10th में आए हैं उसके बेस पे आपका एडमिशन होगा। बट थोड़ा एक्सप्लोर करने वाली बात है, बहुत बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जिनको इन चीजों का पता ही नहीं है, उन्होंने कभी ट्राई नहीं करके देखा, ठीक है। बट अगर ये है कि आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट भी हो और आप थोड़ा एक्सप्लोर भी करो, जैसे आपकी 10th हो गई तो आप थोड़ा पता करिए कि ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। हरियाणा का तो मैं आपको सकता हूँ बता, हरियाणा का रोहतक में इंस्टीट्यूट है और ये आपका पीजीआई के अंदर ही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कोर्स रहता है एमपीएसडब्ल्यू का। ऐसे ही आपका लेबोरेटरी असिस्टेंट का कोर्स होता है। आप देखो बेटे, आप जैसे ही हॉस्पिटल में जाते हैं ना, तो डॉक्टर आपके टेस्ट लिख देता है, आपका ब्लड टेस्ट लिख दिया, ये कराओ वो कराओ। तो वो टेस्ट करने वाले कौन लोग हैं? वो टेस्ट करने वाले लेबोरेटरी टेक्नीशियन होते हैं, जिसे हम LT कहते हैं, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। लेबोरेटरी टेक्नीशियन का भी 2 साल का कोर्स रहता है 12th के बेसिस पर, और LT के भी प्राइवेट और गवर्नमेंट काफी आप देखेंगे इंस्टीट्यूट है। और अगर आपने LT का कोर्स किया हुआ है तो आप अपनी लैब ओपन कर सकते हैं सबसे पहली चीज, या आप किसी लैब में काम कर सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग में आपने किसी लैब में काम किया, किसी भी एक तरह से लेबोरेटरी में आपने वर्क किया, और उसके बाद फिर आप अपना भी एक तरह से ये जो लैब का अपनी लैब ओपन कर सकते हैं, जिसको हम LT कहते हैं, लैब टेक्नीशियन जिसे हम कहते हैं, ठीक है। और लैब टेक्नीशियन का भी देखिए, जितने ज्यादा हॉस्पिटल्स होंगे, जितने ज्यादा डॉक्टर्स होंगे, उतने ही ज्यादा पेशेंट्स आएंगे, ठीक है। उतने ज्यादा पेशेंट्स आएंगे तो उनके उतने ही ज्यादा टेस्ट होंगे। अब जब टेस्ट होंगे तो टेस्ट तो लैब टेक्नीशियन ही करेगा, LT करेगा तो LT का भी स्कोप काफी ज्यादा है। आप देखेंगे गांवों में जो LT होते हैं, मतलब बहुत लोगों को मैं ऐसा जानता हूं जिन्होंने एक सिंपल LT का कोर्स किया, लैब टेक्नीशियन का कोर्स किया, और उसके बाद उनको थोड़ा बहुत नॉलेज था, जैसे कि उनका इंटरेस्ट था, तो उन्होंने थोड़ी बहुत मेडिसिन के नाम याद कर लिए, थोड़ा देख लिया अभी बुखार है तो ये दवाई देनी है, ये हो गया तो ऐसे करना है, और कुछ उन्होंने साथ साथ कुछ एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी से रिलेटेड चीजें सीख ली, और उन्होंने गांव में अपनी क्लिनिक ओपन कर रखी है। बढ़िया काम चलता है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं, मतलब हर चीज का स्कोप है, वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कितना एक्सप्लोर करेंगे। सिमिलरली एक्स-रे असिस्टेंट की वैकेंसीज होती है, तो उसमें भी कोर्स रहता है आपका, ऑपरेशन थिएटर का भी कोर्स रहता है, ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का। जैसे आप देखते हैं अभी जो डॉक्टर ऑपरेशन करता है, तो ऑपरेशन करते समय उसके चारों तरफ काफी लोग होते हैं जो डॉक्टर को इक्विपमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, या उसके साथ साथ काफी चीजें ऐसी हैं ऑपरेशन थिएटर के अंदर जो ऑपरेशन करने से पहले जो करनी पड़ती हैं, तो उसके लिए ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट होता है, जिसको हम OTA स्टाफ कहते हैं। तो ये काफी कोर्सेज है, मतलब जो आप डिप्लोमा या एज ए सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं, और जिनको करने के बाद में मेडिकल प्रोफेशन में कहीं ना कहीं आप अपना एक प्लेस बना सकते हैं, ठीक है। चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में आपको जॉब मिले, चाहे आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिले, बट आप कहीं ना कहीं अपना एक अपनी जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं बार बार यही कहूंगा आपको कि मेडिकल लेना, क्योंकि बहुत बच्चे मैं देखता हूं +1 +2 में वो दे टेक द मेडिकल साइड, पढ़ने में ज्यादा अच्छे नहीं होते, तो इसका मतलब पढ़ने में अगर ज्यादा अच्छे नहीं है तो MBBS में तो नहीं हो पाएगा, बहुत क्लियर सी बात है। फिर ऐसा नहीं, फिर वो क्या करते हैं कि उन्होंने जो मेडिकल साइड लिया बिल्कुल छोड़कर फिर वो BA में एडमिशन ले लेंगे, तो ऐसा नहीं। मतलब आप BA में एडमिशन लेने की बजाय आप कुछ एक्सप्लोर करके देखो, कुछ और कोर्सेज के बारे में जान के देखो, कि MBBS नहीं कर पाए कोई बात नहीं, आप और ऐसा कोर्स कर लीजिए जिसके बाद कुछ ऐसा प्रोफेशनल कोर्स, जो मैंने आपको इतनी सारी कोर्सेज के बारे में बताया, तो इसमें से आप कोई भी कोर्स करते हैं तो जिन कोर्सेज में जॉब्स निकलती हैं, तो आप कोई ऐसा कोर्स कर लेंगे तो आपकी गवर्नमेंट जॉब भी लग जाएगी, और दूसरा अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करना चाहें तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। जो BMS मैंने आपको बताया कि आयुर्वेदिक होता है, मैं पहले आपको पूरा एक्सप्लेन कर चुका हूं। इसमें MD भी होती है, मतलब देखिए क्या है कि जितने भी आपके जो कोर्सेज है, आपने MBBS किया, चाहे आपने BHMS किया, चाहे आपने BDS किया, सभी में मास्टर डिग्री भी होती है। तो मास्टर डिग्री में थोड़ा और स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो जो ज्यादा स्पेशलाइजेशन है उसमें आप आगे जा सकते हैं, तो वहां से आपको काफी एडवांटेज होता है। फिर इसके बाद मान लीजिए आपने कुछ भी नहीं करा, जितने कोर्सेज की हमने बात करी आपने इसमें से कुछ भी नहीं करा, तो फिर आप 12th मेडिकल साइड के बाद में आप BSc कर सकते हैं, सिंपल BSc जिसको हम जनरल BSc कहते हैं, या BSc ऑनर्स कर सकते हैं। BSc ऑनर्स स्पेशलाइज हो जाती है, केमिस्ट्री ऑनर्स आपने किया, आपने फिजिक्स ऑनर्स किया, और BSc जनरल में आपको सारे सब्जेक्ट पढ़ने रहते हैं। और BSc करने के बाद अगर आपने BSc किया हुआ है तो आप टीचिंग प्रोफेशन में जा सकते हैं। मैंने आपको पीछे भी बताया था, हमने एक पूरा अलग से सेशन लिया था कि टीचिंग प्रोफेशन का क्या स्कोप है, कैसे कैसे उसमें आप अपना प्रोफेशन बना सकते हैं। तो उसमें क्या है कि BSc करने के बाद में एटलीस्ट TGT के लिए अप्लाई हो जाते हैं, मतलब आपने BSc किया उसके बाद BEd कर लिया, तो BEd करने के बाद 8th क्लास तक के स्कूल में आप बहुत इजीली पढ़ा सकते हैं, ठीक है। और साइंस पढ़ाया जाता है आपके, आप साइंस पढ़ा सकते हैं, और आप देखिए BSc करने के बाद तो आप +1 +2 लेवल तक की साइंस भी इजीली पढ़ा सकते हैं अगर आपका इंटरेस्ट है तो। क्योंकि आप अपनी जो मास्टर डिग्री है वो साथ साथ करते रहिए, बीएससी किया है आपने, एमएससी किया, बीएड किया, वो ठीक है, बट क्या होता है कि जब आपने बीएससी कर ही लिया है तो एटलीस्ट प्राइवेट में इधर उधर आप कोचिंग में पढ़ा सकते हैं, उसके बाद एक टाइप से गवर्नमेंट जॉब का भी स्कोप तो है ही, हमेशा ही रहा है कि मैंने आपको बताया था कि आपने बीएससी किया हो, चाहे आपने बीकॉम किया है, चाहे बीए किया है, अगर आप एसएससी बैंकिंग में इंटरेस्टेड हैं, एसएससी बैंकिंग में अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये एक तरह की आपकी मास्टर डिग्री है, तो मतलब एक तरह से ये आपकी बैचलर जो डिग्री है वो इक्विवेलेंट है। तो आप ऐसा नहीं, बहुत बच्चे ऐसे भी हैं जो बीएससी कर लेते हैं और बीएससी करने के बाद में वो एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं और वो एग्जाम्स देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें आपके पास में है। एक चीज हो रहा है यहाँ पर कि बीएससी करना मतलब हार्ड वर्किंग काम है, ऐसा नहीं जैसे आप, जैसे आप लोग बीए करते हैं, बीए में आपने बहुत ही लाइट सब्जेक्ट आपने ले लिए, आपने हिस्ट्री ले लिया, सोशियोलॉजी ले लिया, तो वो बहुत लाइट सब्जेक्ट है, बट अगर आप बीएससी करते हैं तो बीएससी इजी नहीं है, आपको उसमें पढ़ना पड़ता है केमिस्ट्री फिजिक्स, एक बहुत काफी मेहनत वाला काम है। पर यह है कि एक बार साइंस में आपकी कमांड हो जाए तो कम से कम 12th लेवल तक के बच्चे को भी अगर आप एज ए कोचिंग भी पढ़ाना स्टार्ट करें तो भी आपकी काफी इनकम है, मतलब स्कोप हर चीज का है, थोड़ा सा इंटरेस्ट और पढ़ने की बात होती है। मैं आपको बताता हूँ, आप किसी भी शहर में हो, हर शहर में आप देखेंगे

0: एक तरह से कॉलेज कैडर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज आती हैं, वो मैंने आपको एक अलग से सेशन में पूरा एक्सप्लेन किया है कि आपको उसके बाद नेट का पेपर क्वालिफाई करना रहता है, CSIR कंडक्ट कराती है, तो दैट आई ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। तो ये सारे स्कोप आपके पास में है, ठीक है। और अगर आप इसके बाद भी आपको लगे भी कुछ नहीं करना, तो बेटे प्राइवेट स्कूल तो है ही अपना, प्राइवेट स्कूल में तो पढ़ा ही सकते हैं, BSc MSc करने के बाद में आपको जॉब लग जाता है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी BSc MSc के बेसिस पर वैकेंसी आती हैं, लेबोरेटरीज में आप काम कर सकते हैं। तो ये एक मेडिकल साइंस का एक मोटा मोटा, ये मैंने आपको अलग अलग चीजों के बारे में बताया। तो आप लास्ट में ये जरूर समझ सकते हैं कि BSc अगर आप गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं SSC बैंकिंग के थ्रू, तो आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, चाहे BA आपने किया, चाहे आपने BSc किया, चाहे आपने BCom किया, वो सब इक्विवेलेंट है। बट कुछ प्लेसेस पर टीचिंग में साइंस के टीचर की डिमांड हमेशा ज्यादा होती है। रीजन क्या है? क्योंकि साइंस टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपकी साइंस में कमांड है तो आप ये मान के चलिए कि आपकी जॉब लग ही जाएगी। मतलब अगर आपको गवर्नमेंट में नहीं मिल पाई तो प्राइवेट सेक्टर में तो आप काम कर ही सकते हो, ठीक है। तो ये एक मतलब ये सारा स्कोप जो है ये साइंस स्टूडेंट्स के लिए ये स्कोप आपके पास में अवेलेबल है, ठीक है। अब आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बीच में एक दो बच्चों ने क्वेश्चन पूछा, तो मैंने एक तरह से इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे एक्सप्लेन कर दिए आपको। अब हम आपके एक एक करके क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्योंकि इसमें साइंस फील्ड से रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन आपके मिले काफी। तो आई एक्सपेक्ट कि आपके जो दो क्वेश्चन है आप अपने चैट बॉक्स के अंदर या वैसे आप पूछ सकते हैं।
1: सर, फार्मास्यूटिकल्स के गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में कितने बेनिफिट्स?
0: देखिए क्या होता है कि हर मेडिकल हॉस्पिटल के अंदर, हर हॉस्पिटल के अंदर फार्मेसिस्ट की वैकेंसी आती है। पहली चीज, कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है ना, आप कभी चले जाइए, हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फार्मेसिस्ट होते हैं, हर PGI में फार्मेसिस्ट होते हैं, तो उन सब की वैकेंसीज निकलती हैं, ठीक है। हाँ, ये है कि क्वांटिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि देखिए एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में 2 से 3 फार्मेसिस्ट होंगे, क्योंकि फार्मेसिस्ट का काम क्या है कि अगर हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें तो उनका काम होता है कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करना, जैसे आगे जो डॉक्टर ने दवाई लिखी है वो जाके फार्मेसी से लेते हैं, तो ये एक जो मेन काम होता है फार्मासिस्ट का। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में या PGI में, इन सब में काफी वैकेंसीज निकलती हैं, इनकी पहली चीज। सेकेंडली क्या होता है कि बीए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है तो इंडिया में जो ड्रग इंस्टीट्यूट है, मतलब कई इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो फार्मेसी के इंस्टीट्यूट है, जो ड्रग इंस्टीट्यूट है जहां पर रिसर्च की जाती है या क्लिनिकल रिसर्च की जाती है, तो वहां पर भी फार्मेसी की वैकेंसीज आती है। तो वहां भी आप एज ए फार्मासिस्ट काम कर सकते हैं, या अगर आपको गवर्नमेंट जॉब नहीं मिला तो फिर प्राइवेट सेक्टर में आप अपना एक तरह से यू कैन ओपन योर ओन केमिस्ट शॉप ओपन कर सकते हैं, या MR का वर्क कर सकते हैं। तो इस तरह से ये सारा स्कोप रहता है फार्मासिस्ट का। हम मनोज जी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि इफ यू वांट टू ओपन ए क्लिनिक इन रूरल एरिया, तो देखिए क्या होता है कि MBBS के अलावा आप BMS, BHMS कोई भी आपने डिग्री किया हुआ है तो आपने क्लिनिक ओपन कर सकते हैं उस चीज से रिलेटेड, ठीक है। जैसे अगर आपने BMS किया हुआ है, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक में किया हुआ है, तो भी आप अपना क्लिनिक ओपन कर सकते हैं। या उसका एक तरीका क्या रहता है कि मान लीजिए अगर आपने ये चीजें नहीं की हुई है तो फिर आप कोई भी डिप्लोमा कर लीजिए पैरामेडिकल कोर्स करके। देखिए ऑल्दो पैरामेडिकल कोर्स करने के बाद में क्लिनिक, मतलब एक तरह से आप एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, ठीक है, एज ए डॉक्टर प्रैक्टिस नहीं कर सकते, पर क्या रहता है कि आपने पैरामेडिकल कोर्स कर लिया और आपको फील्ड की अच्छी नॉलेज है, राइट। तो आपने जैसे मान लीजिए एक्यूप्रेशर और एक टाइप से जो फिजियोथेरेपी में आपने किया हुआ है, तो आपने उसके नाम से क्लिनिक ओपन किया, पर पेशेंट्स तो हर तरह के आएंगे आपके पास में। देखिए क्या होता है ना, जो MBBS डॉक्टर है वो एंटाइटल्ड है, अपने नाम के नीचे स्पेसिफाई कर सकता है ये फील्ड के पेशेंट मेरे पास आएंगे। आपने कोई और कोर्स किया, फिजियोथेरेपी का कोर्स किया, फिजियोथेरेपी की क्लिनिक ओपन करी, और इनडायरेक्टली आप उस वहां पर एज ए क्लिनिक भी ओपन कर सकते हैं, उसी के अंदर ही इनडायरेक्टली आप काम कर सकते हैं। आप देखेंगे बहुत केमिस्ट ऐसे हैं जो आपके डॉक्टर का काम है ना वो केमिस्ट्री कर देता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सपोज बेटे आपको पेट में दर्द है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एक तरीका तो क्या है कि आप पहले एक चाहिए एक, अगर आप किसी MBBS डॉक्टर के पास जाएंगे तो पहले तो आपको 500 रुपए की आपकी पर्ची काटेगा, फिर आपकी बात पूछेगा आपसे, फिर आपको मेडिसिन देगा, ठीक है। और मैं आपको

0: इंश्योर कर रहा हूँ, अगर कोई आपको बहुत ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है ना, अगर आप किसी केमिस्ट के पास भी चले जाइए और केमिस्ट को बता दीजिए भी मुझे ये प्रॉब्लम है, तो केमिस्ट अपने आप आपको वो मेडिसिन दे देगा। 99% चांसेस में जो मेडिसिन डॉक्टर ने लिखी है 500 रुपए लेने के बाद में, वही मेडिसिन केमिस्ट आपको देगा 99% केसेस के अंदर। ठीक है, तो मतलब वो केमिस्ट क्या कर रहा है, इनडायरेक्टली डॉक्टर का काम कर रहा है।
1: जैसे A&M करना हो तो प्लस वन या प्लस टू में साइंस जरूरी है या आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं? फिर
0: देखिए क्या रहता है कि A&M और GNM के लिए तो साइंस जरूरी है, मतलब तो साइंस रहेगी आपकी A&M के कोर्स के लिए, तो 12th में साइंस होना चाहिए आपके बहुत इसमें, मतलब 12th साइंस होना चाहिए इसमें। ओनली MPSW के अंदर साइंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ये आपने अगर 10th किया हुआ है, क्योंकि उसमें तो कोई स्ट्रीम नहीं होता है, तो उसमें आप बिना किसी स्ट्रीम के आप कर सकते हैं MPSW। बाकी में काफी कोर्सेज में साइंस की रिक्वायरमेंट होती है आपकी।
1: जैसे सर प्राइवेट कॉलेज में करवाते हैं ना, जैसे जो होते हैं ना आर्ट्स वाले उनको भी करवाते हैं A&M,
0: जो GNM का कोर्स है ना उसमें तो साइंस चाहिए, A&M में नहीं। देखो इसमें भी दो कोर्सेज आपके, एक आपका GNM और एक आपका A&M है। A&M में बिना साइंस के भी हो जाता है, बट जो GNM है वहां साइंस चाहिए आपको।
1: जी सर, मैं A&M की बात कर रहा था।
0: हाँ, जो A&M में हो जाएगा वो हो जाएगा, बट तो ये मतलब क्या है ना कि जैसे जैसे आप इनडेप्थ जाएंगे ना, तो अलग अलग आगे इनडेप्थ उसमें अलग अलग डिवीजन होता जाता है। ऐसी जो CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, ये देखिए ये जो सारी चीजें है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, ये प्राइमरी आपकी IT वर्क है। IT मतलब हम ये करें कि जो बैक एंड आपकी वो रहती है, सपोर्ट रहती है। ठीक है, उसमें तो आपके कोर्सेज होते हैं, तो उसमें आप काम कर सकते हैं। उसमें जनरल आपने BA BCOM किया हुआ है, BSc किया हुआ है, आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, या आपको एक तरह से IT से रिलेटेड आपकी बैकग्राउंड है, तो ये काफी वैकेंसीज होती हैं। कहना देखिए हमारे इंडिया में क्या है कि दो तरह की जॉब्स है प्राइवेट सेक्टर में, एक वो जॉब्स है जो स्पेशलाइज्ड है, ठीक है, और सेकंड जॉब्स है जो स्पेशलाइज्ड नहीं है। हाँ, जो कम्युनिटी मेडिकल सर्विसेज एंड एसेंशियल ड्रग स्टैंड फॉर CMS एंड ED कोर्सेज, देखिए क्या रहता है ना, ये सब आपके एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि गवर्नमेंट सेक्टर में नंबर ऑफ एरियाज आर देयर जो मेडिकल साइंस से रिलेटेड है। हम तो एक जनरली MBBS या नर्सिंग की बात करते हैं, बट उसके अलावा भी कई तरह की वैकेंसीज होती हैं, तो ये भी कोर्सेज होते हैं अलग अलग आपका। जैसे एक टाइप से जो असेंशियल ड्रग का कोर्स है, तो उसमें उन्हीं फील्ड्स में जॉब मिल जाता है आपको, बट क्या है कि ना इनके स्कोप ज्यादा नहीं है। स्कोप मतलब कि वैकेंसीज कंपैरेटिवली कम होती हैं, ठीक है, वैकेंसीज कम होती हैं, तो इसलिए फिर जॉब्स अपॉर्चुनिटी उतनी ज्यादा नहीं हो पाती और उतने फेमस कोर्सेज नहीं होते। ये थोड़ा देखा जाता है। बाकी जॉब्स तो देखिए है ही, आप देखिए हर सेक्टर में अगर कोर्स है तो उसका कुछ ना कुछ स्कोप भी है। एट द एंड हम एक बात कह सकते हैं, अगर कोर्स किया है ना, चाहे आपने कितना भी, चाहे आपने 6 महीने का या साल का भी किया है, तो उसका कहीं ना कहीं स्कोप है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं जॉब आपको मिल जाती है। डाइटिशियन का कोर्स आप कर सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड आपका है तो उसके बाद आप कर सकते हैं। तो वहां भी आप देखते हैं जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सभी हॉस्पिटल्स के अंदर डाइटिशियन की वैकेंसीज होती हैं, आप अपना काम भी कर सकते हैं उसके अंदर। तो मतलब हेल्थ का जो फील्ड है दैट इज ऑलवेज द ग्रे एरिया, हमेशा ही जॉब्स हैं इसके अंदर इन द फील्ड ऑफ द हेल्थ। तो थोड़ा सा एक तरह से आगे बढ़ के काम करने वाली बात है, बाकी स्कोप है हेल्थ का हमेशा से। देखिए क्या है कि फार्मेसी करने के बाद में ना इंडस्ट्री में क्या रहता है कि थोड़ा सा जैसे आप MR की जॉब करते हैं या कोई भी टाइप की जॉब करते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको 15,000 से 20,000 रुपए मिल जाते हैं, बट इसमें धीरे धीरे आपकी इंप्रूवमेंट हो जाती है। मतलब देखो थोड़ा टाइम लगता है, ये फील्ड वो नहीं है कि आपने आज ही आपने अपना फार्मेसी किया और पहले दिन ही आपको 1,00,000 रुपए की जॉब मिल गई, बट ये है कि आप देखेंगे 2-3 सालों के अंदर अंदर आप काफी ज्यादा ग्रो कर जाते हैं। हाँ, फार्मेसिस्ट आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री भी ओपन कर सकते हैं। उसमें क्या है, देखिए आपने अगर बी फार्मेसी किया हुआ है उसके बाद एम फार्मा आपने किया हुआ है, देखिए क्या होता है ना कि जो बिजनेस मतलब आपने इंडस्ट्री ओपन करने में, तो आपने अगर बी फार्मेसी भी किया हुआ है तो बी फार्मेसी भी अपना एक तरह से फार्मेसी ओपन कर सकता है, जिसमें वो स्टार्टिंग में जो ड्रग्स मतलब हम ये कहें कि जो मेडिसिन होती है, स्मॉल जो आप आपकी मेडिसिन है चाहे इन्वेस्टमेंट कम है वो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत लोगों ने ऐसा किया हुआ है। बट उसमें भी कॉम्पिटिशन है, आपको स्टार्टिंग में यू नीड सम इन्वेस्टमेंट इन दैट, आपको उससे जो एसोसिएटेड जो सॉल्ट परचेज करने रहते हैं, फिर आप अपना काम कर सकते हैं। तो मतलब जो फार्मेसी में कुछ भी करने के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो आपकी बी फार्मेसी है, आपने एक बार बी फार्मेसी कर लिया तो आप ऑलमोस्ट फार्मेसी से रिलेटेड हर काम करने के लिए एंटाइटल है। तो टीचिंग का तो स्कोप ऑलमोस्ट हर फील्ड में, जैसे आपने अगर बी फार्मेसी किया है एम फार्मा कर लो तो एम फार्मा करने के बाद में यू कैन बिकम द टीचर, आपने एमबीबीएस किया आपने एमडी कर लिया तो असिस्टेंट प्रोफेसर आप बन सकते हैं। तो हर फील्ड में, क्योंकि कोई भी फील्ड है जहां कोर्सेज है तो उन कोर्सेज में पढ़ाने वाले टीचर भी चाहिए होंगे, तो उससे रिलेटेड जिन्होंने हायर क्वालिफिकेशन ली हुई है तो अपना उसमें एज ए करियर दे कैन मेक देयर करियर। देखिए ट्वेल्थ में अगर आर्ट्स आपके पास है और आप मेडिकल साइंस में जाना चाहते हैं ना, तो आप जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनके बारे में आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, मतलब आप फिजियोथेरेपी हो गया ठीक है, या इस तरह के जो है उनमें आपको, क्योंकि देखिए जो जनरली जैसे एमबीबीएस बीएमएस बीएचएमएस वो तो सब ट्वेल्थ में आपके मेडिकल साइंस पर उसके बेसिस पर है ठीक है। आप डाइटिशियन का कोर्स कर सकते हैं, उसमें कोई स्ट्रीम की फाउंडेशन नहीं है ठीक है, तो मतलब इन कोर्सेज में आप जा सकते हैं। बाकी जो कोर मेडिकल कोर्सेज हैं उसमें तो आपको ट्वेल्थ में मेडिकल साइड होना चाहिए, बट उसके अलावा जैसे लैब टेक्नीशियन का कोर्स है वो आप कर सकते हैं, वहां पर आपको ट्वेल्थ में नहीं है। आप जो मैंने आपको एमपीएसडब्ल्यू के बारे में बताया था जो हेल्थ वर्कर होते हैं वो कोर्स आप कर सकते हैं, वहां पर आपको प्लस वन प्लस टू में स्ट्रीम का कोई वो नहीं है। तो ये थोड़ा और भी इन डिटेल आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा अभी। एक तो पहली देखो दो चीजें हैं, एक तो ये कि आपको ये स्पेसिफाई होना पड़ेगा कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, क्योंकि जो मेडिकल साइंस जो है वो बहुत वाइड है ठीक है। तो उसके बाद फिर आप थोड़ा ये देखिए जिस पर्टिकुलर फील्ड में आप जाना चाह रहे हैं स्पेसिफिकली, फिर उसमें आप थोड़ा एक्सप्लोर करके देखिए, क्योंकि काफी डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं जो उसके उनको करने के बाद में आप अपना उस फील्ड से रिलेटेड काम कर सकते हैं।
2: ठीक है सर, मेरे ख्याल में और कोई क्वेरी नहीं है किसी का।
0: थैंक यू।

0: अब हमारे बीच में है मैम जो एटीटीसी से आए गुड़गांव से और ये अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन देंगे। जब मैं पहली बार इनसे मिली थी सांवन से, बबीता सांवन है इनका नाम, और ये मैम आप जैसी लड़कियों को जो पे कर सकते हैं 50,000 वो कोर्स सिखाती है, 50,000 फीस भी देंगे ये मैम अपने इंस्टीट्यूशन में कोर्स सिखाते हैं और हम इनके मुकाबले में तो नहीं सिखा सकते, बट यस आज हमने इनको रिक्वेस्ट करके यहाँ पे बुलाया है कि आपके साथ एक विजन बिल्ड करें कि आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं और हम फैक्ट्री प्रेमिसेस में कैसे काम कर सकते हैं और किन किन चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। मोस्ट वेलकम वी गॉट अ
1: अपॉर्चुनिटी अपैरल ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर। हमारे पास डिग्री कोर्सेज भी हैं, डिप्लोमा कोर्सेज भी हैं एंड सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स भी हैं। जैसे कि मैम ने बताया कि हमारे पास जितने भी कोर्सेज हैं ट्रेड कोर्सेज हैं, यस। और यदि आप बात करेंगे प्लेसमेंट की तो मोस्टली एटीसी 100% जिसने स्टूडेंट को प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करा। तो सबसे फर्स्ट बात वहां पर हो रही है स्विंग मशीन ऑपरेटर की। स्विंग मशीन ऑपरेटर से आप लोग क्या समझते हैं कि स्विंग मशीन ऑपरेटर क्या होता है? एनीवन कोई बताना चाहेगा? स्विंग मशीन ऑपरेटर आई थिंक जब से भी स्टार्ट हुए आज बहुत बार हम सिर्फ स्विंग मशीन ऑपरेटर की बात कर रहे हैं। स्विंग मशीन ऑपरेटर, स्विंग मशीन ऑपरेटर आखिर कौन होता है ये चीज बताइए प्लीज। हिम्मत तो दिखानी पड़ेगी आपको, आज नहीं तो कल। स्विंग मशीन ऑपरेटर ये यस स्विंग मशीन, यस स्विंग मशीन ऑपरेटर मीन्स जो आपकी सिलाई की मशीन है उसको ऑपरेट करना, उसको चलाना सीखना और उससे रिलेटेड ऐसे गार्मेंट बनाना, ऐसी टेक्निक सीखना, वो स्विंग मशीन ऑपरेटर का रोल है। स्वामी विवेकानंद जी बोलते हैं कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो। हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिसमें चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े और बुद्धि का विकास हो और हम अपने पैरों पर खड़े हों। तो स्वामी विवेकानंद जी ऐसी एक शिक्षा की बात कर रहे हैं कि जिसमें अपने पैरों पर हम खड़े हो पाए। आप अभी यहाँ पर बोर्ड पे भी आपने देखा है स्किल डेवलपमेंट, प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी ने इसके ऊपर बहुत काम किया है। स्किल डेवलपमेंट, स्किल स्किल आप भी शायद बहुत बार सुनते होंगे स्किल। तो एक्चुअल में स्किल क्या है कोई वैसे नजीएस बताइए। स्किल हाँ जी, स्किल का मतलब है हुनर। अब वो हुनर आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपका खाना बनाना भी हुनर हो सकता है, वो आपका कपड़े काटना सिलाई करना भी हो सकता है, वो हुनर आपको कुछ भी हो सकता है, गार्डनिंग करना भी हो सकता है। तो उस हुनर को सबसे पहले आपको अपना पहचानना है कि आपका एक्चुअल में वो स्किल क्या है। और आज भी मुझे लगता है 99% में श्योर हूं कि आप जितने भी यहाँ बैठे हैं अपने स्किल को पहचान चुके हैं। जो आपका स्किल है दैट इज स्विंग मशीन ऑपरेटर, सिलाई मशीन या सिलाई कपड़े बनाना, कैसे कपड़े बनाना है, कैसे कपड़े बना के आपको मार्केट में उसको सेल करना है। तो जब आपने उस स्किल को पहचान लिया तो नेक्स्ट जो बारी आई है आपकी उससे रिलेटेड ट्रेनिंग करने का, जो कि रीड एनजीओ ने आपको प्रोवाइड कराया है। आई थिंक मैम ने अभी शेयर किया मुझे, इट्स 90 डेज का आपका ट्रेनिंग है जिसमें आपने बहुत सारा कुछ सीखा। स्टार्टिंग जब आपकी हुई होगी आई थिंक सबसे पहले आपने मशीन पर बैठे होंगे, मशीन पर बैठने के बाद आपने उसको चलाना सीखा होगा, उसकी मशीन के पार्ट्स के नेम सीखे होंगे कि कौन सी मशीन के पार्ट्स को वो क्या बोलते हैं, उसके बाद उस मशीन को कैसे चलाना है, फिर कैसे कपड़े से उसको चलाना है, कपड़ा लड़के कैसे चलाते हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हो सकते हैं जिनको पहले से थोड़ा बहुत सिलाई आता हूँ, और यहाँ आके जैसे उनको पता लगा कि उनका स्किल स्ट्रांग है तो आप उन्होंने ये ट्रेनिंग के थ्रू अपने उस स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग कर दिया। तो जब आपने 90 डेज के कोर्स में ये सब कोर्स किया, अब आई थिंक आप लोगों के एग्जाम्स भी मे बी कंडक्ट होते होंगे, आई डोंट नो मैम, तो आपको कहीं ना कहीं स्विंग मशीन ऑपरेटर का सर्टिफिकेट या उसकी उपाधि मिलने वाली थी। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर एक्चुअल में दो तरह से हम बात कर सकते हैं। एक तो गारमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की हम बात कर सकते हैं और एक हम बात कर सकते हैं टेलर जो आप बुटीक में भी देखते हैं या फिर मशीन को जो चलाते हैं, दैट इज टेलर। तो आपको इसकी अपॉर्चुनिटी की यदि हम बात करें तो अपैरल सेक्टर में भी बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है स्विंग मशीन ऑपरेटर की, और यदि आप अपना बुटीक ओपन करते हैं और वहां पर दो तीन टेलर रख के यदि आप अपना बुटीक ओपन करें, बिजनेस करना चाहें, तो उसमें भी बहुत ज्यादा आपके सामने अपॉर्चुनिटी है। तो स्विंग मशीन ऑपरेटर यदि गवर्नमेंट इंडस्ट्री की हम बात करें तो 99% स्विंग मशीन ऑपरेटर से ही पूरा इंडस्ट्री चलता है। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि जब तक गवर्नमेंट इंडस्ट्री में स्विंग मशीन ऑपरेटर की मशीन का नीडल चलता है तब तक बिजनेस है, जैसे वो स्टॉप हो जाता है तो आपका इनकम कम। तो दैट मीन्स जो मशीन की नीडल वहां इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, वहां स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू है। तो सबसे पहले आपको स्विंग मशीन ऑपरेटर की वैल्यू को समझना पड़ेगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री में यदि स्विंग मशीन ऑपरेटर नहीं है तो गवर्नमेंट इंडस्ट्री नहीं चल सकती है। तो दैट मीन्स गवर्नमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेटर की यदि जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें तो बहुत अपॉर्चुनिटीज है, बट ऑपरेटर के लिए भी कुछ स्किल होनी बहुत जरूरी है। स्किल मतलब कि आपको सिर्फ स्टिचिंग आना ही जरूरी नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों का आपको पता होना चाहिए, जिसमें से कुछ पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इन केस आप इंडस्ट्री में जॉब करते हैं या फिर इवन अपना कोई बुटीक या कोई छोटा सा ओपन करते हैं तो उसमें भी वो आपको हेल्प करेगा। तो आपको क्या लगता है कि एज ए ऑपरेटर आपको सबसे पहले क्या आना चाहिए? सबसे पहले आपको मशीन चलाना आना चाहिए। दूसरा कपड़ा सीना आना चाहिए, मतलब आपको सारी सीम्स आनी चाहिए। सीम्स का मतलब है कि गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारी सीम्स को यूज करते हैं, जैसे सुपर इको सीम होगी, फैन सीम होगी, माउ सीम होगी, ये बहुत सारी टेक्निकल सीम्स के नाम है। सीधे तौर से यदि मैं बात करूं, यदि हम दो कपड़ों को यदि हम सिलाई करते हैं तो उसको हम सुपर इम्पोज सीम कहते हैं। हर सीम्स का एक अपना अलग वैल्यू है। फ्रेंड सीम जिसे लोकल भाषा में लोग फोर सीम भी बोलते हैं, जो कि आपको पूरे गार्मेंट को कंप्लीट करने में हेल्प करती है। अभी तक आपने सीखा होगा कि आप साइड सीम को सिर्फ सीम कर दो है ना, उसको बट उसको फिनिश कैसे कर दें, उसमें क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है, तो वो आपको बेसिक सीम क्लासेस आपको हेल्प करती है। कहां पर किस एरिया में कौन सा सीम यूज आपका होना है, कहां सुपर इंपो सीम यूज होना है, कहां फ्रेंड सीम यूज होना है आपका, कहां लेट सीम यूज होना है आपका, कहां फेल एंड फेल सीम यूज होना है। तो आपको मशीन आने के साथ साथ आपको सीम के बारे में भी पता होना चाहिए कि कौन सा सीम, सीम मतलब सिलाई की टेक्निक आप कहां यूज करेंगे। आपने सुना होगा गुम सिलाई, सुना है आपने गुम सिलाई? गुम सिलाई का क्या काम है? गुम सिलाई का काम है कि जो जब आप कपड़े को कटिंग करते हैं तो उसके धागे निकल जाते हैं तो उनको छिपाने का काम करते हैं, या तो हम उनको छिपाने के लिए ओवरलॉक मशीन यूज करते हैं या फिर हम लोग गुम सिलाई यूज करते हैं। सेम इंडस्ट्री वाली लैंग्वेज में भी हम इसको फेंसिंग बोलते हैं। तो मींस ये है कि सबसे फर्स्ट थिंग आपको मशीन ऑपरेट करनी आनी चाहिए। अब मशीन भी आपके दो तरह के मार्केट में मशीन अवेलेबल है, सो सिंपल डोमेस्टिक मशीन जिसे आप अम्ब्रेला मशीन बोलते हैं, सेकेंड आपका जो इंडस्ट्री में मशीन यूज होता है दैट इज SLLS सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन, वो ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक से चलती है और बहुत अच्छा और प्रोडक्शन क्वालिटी मटेरियल है। तो ये दो मशीनों का आपको आना चाहिए। यदि आप इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको SRLS machine तो आने भी चाहिए, ठीक है, सिंगल नीडल लॉक स्टिच मशीन और प्लस में ओवरलॉक मशीन, ये दो मशीनें आपको आनी चाहिए। उसके बाद आपको सीम क्लासेस आनी चाहिए, सीम क्लासेस कौन सी सिलाई कहाँ यूज होनी है, उसके लिए कौन सी हम लोग टेक्निक यूज करेंगे। थर्ड थिंग क्या आनी चाहिए एक स्विंग मशीन ऑपरेटर को, आपको सिलाई भी आ गई, सीम क्लासेस की टेक्निक भी आ गई, थर्ड थिंग क्वालिटी में क्वालिटी कैसे आपको मेंटेन करनी है। जब आप कोई भी गारमेंट को स्टिच करते हैं तो जब आप स्टार्ट करते हैं तो उसका थ्रेड कट करना, जब एंडिंग करते हैं तो बैक स्टिच आप समझते हैं उसको पक्का करना बोलते हैं। पक्का करना मतलब दो स्टिच आगे पीछे हम करते हैं जब, उसको हम बैक कट बोलते हैं, तो वो करना, उसको पक्का करना, लास्ट के जितने भी एक्स्ट्रा धागे हैं उनको कट करना। ओवरलॉक यदि आप कर रहे हैं तो ओवरलॉक भी प्रॉपर होना चाहिए, उसके भी थ्रेड आपके प्रॉपर कट होने चाहिए। तो देट मीन्स कोई भी जब आप स्टिच करते हो आपको टेक्निक के साथ साथ क्वालिटी का पता होना चाहिए, ठीक है। क्वालिटी के बाद जो सबसे लास्ट है इम्पोर्टेंट स्पीड है ना, यदि आपकी स्पीड है तो आप गारमेंट इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और बहुत अच्छा वहां से काम कर सकते हैं, क्योंकि गारमेंट इंडस्ट्री में आपका पीस रेट पे काम होता है, समटाइम पीस रेट पर समटाइम मंथली बेसिस पर भी होता है, लेकिन प्रोडक्शन निकालने के लिए आपको ये बेसिक चीजें आनी ही आनी चाहिए। इवन आप अपने बुटीक भी ओपन करते हैं या कुछ भी आप करते हैं तो उसमें क्वालिटी स्पीड टेक्निक ये तीनों चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप कोई भी प्रोडक्ट को मार्केट में आप लेकर आ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं कि जैसे हम लोगों ने स्किल की बात की गारमेंट इंडस्ट्री में या क्या इसका वैल्यू है, तो हम लोगों की बेसिक नीड, यदि हम एक सिंपल इंसान की बेसिक नीड क्या हो सकती है, रोटी कपड़ा और मकान है ना, आई थिंक सब इससे सहमत है, रोटी कपड़ा और मकान ही चाहिए, ये हमारी बेसिक नीड है। तो यदि हम बात करें कपड़ा जो कि सेकंड नंबर पे आता है, तो यदि हम कपड़े टेक्सटाइल लाइन की बात करते हैं, रेडीमेड गारमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं या अपैरल सेक्टर की हम लोग बात करते हैं, तो ये सेकंड नंबर पे भी है डिमांड वाइज। तो यदि आप इसमें फ्यूचर बनाते हैं और उसमें आप अपना हार्डवर्क करते हैं तो 100% गारंटी है कि आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, अपनी फैमिली को बहुत आगे लेकर जा सकते हैं, और अपनी फैमिली को ही नहीं आप अपने पूरी टीम को साथ में लेकर जा सकते हैं। शायद शाही एक्सपोर्ट हाउस आप लोगों ने सुना होगा, सुना है किसी बच्चे ने शाही एक्सपोर्ट हाउस, गारमेंट इंडस्ट्री है, भी शेयर किया होगा। तो मैं उनकी थोड़ी सी आपको स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ कि कैसे वो स्टार्ट हुआ। जैसे कि वहां की जो अभी मेन ऑनर है तो वो रिटायर हो चुकी है अभी, सरला आहूजा जी बिजनेस स्टार्ट किया था, और जब उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस एक ऑपरेटर से किया, सिर्फ एक ऑपरेटर से, लेकिन यदि आप आज देखेंगे तो उनकी 50 यूनिट्स है, उनके वहां पर 11 लाख के आसपास जो है वर्कर्स काम कर रहे हैं, 75,000 के आसपास यहाँ पर फीमेल जो है काम कर रही है। तो जब एक ऑपरेटर, एक सिंपल हम बोलते हैं कि ऑपरेटर, लेकिन यदि वो ऑपरेटर भी यदि हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ काम कर सकता है तो आप शाही क्या किसी का भी मुकाबला कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको अंदर जरूर होना चाहिए। सरला आहूजा जी का नाम सुना है, सोनम कपूर का नाम सुना है, कौन है, अनिल कपूर का नाम सुना है, अनिल कपूर की जो डॉटर है सोनम कपूर, और सोनम कपूर सरला आहूजा जी की बहू है, तो आप इसको गूगल पे भी सर्च करेंगे आपको उनकी बहुत स्टोरी मिलेंगी। बट मेरे कहने का मतलब ये है कि ऑपरेटर को आप सिंपल मत समझिए, इसमें बहुत पावर है, बहुत पावर है, लेकिन उसको किस डेडिकेशन के साथ, किस हार्डवर्क के साथ, किस क्वालिटी के साथ आपको आगे लेकर जाना है वो सिर्फ सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड है। हम लोग सिर्फ तो आपको आधे घंटे का लेक्चर दे देंगे, मैम आपको शेयर करेंगे, अभी मैम ने शेयर किया आपको क्वालिटी टाइम मैनेजमेंट, यदि आप यहाँ से सुनते हो यहाँ से निकालते हो तो तो ऐसे मुझे लगता है ना तो हमारा कोई वैल्यू है, ना ट्रेनिंग का कोई वैल्यू है, कुछ भी वैल्यू है. लेकिन यदि आप ये बस सुन के और सीधा आपके दिमाग में डाउट है तो 100% गारंटी के साथ मैं ये बोल रही हूँ कि आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं. लेकिन आपने कोर्स किया, आप घर बैठ गए, एक दो सिंपल सिंपल चीजें स्टिच कर दी, तो ना तो हम लोग सक्सेसफुल रहेंगे ना मैं सक्सेसफुल रहेंगे. तो आपको इसका वैल्यू समझना है कि मैंने जो ट्रेनिंग दिलवाई है आपको उसको कहां तक आपको लेकर जाना है. अभी 17 इयर्स मुझे सेम इसी फील्ड में हो गया है, डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट में मैंने क्लासेस ली है, पैटर्न मेकिंग, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन, कैट की मैं क्लासेस लेती हूँ. तो मेरा मेन जो है वो टेस्ट स्विंग मशीन से रिलेटेड ही है. स्विंग मशीन मेरी एक्चुअल में फ्रेंड है, मैं उसके साथ बातें करती हूँ. मेरे माइंड में जो इमेजिनेशन होती है, माइंड में इमेजिनेशन मतलब कि मुझे ये ड्रेस चाहिए, ये ड्रेस चाहिए, मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठ के बनाती हूँ. आपको नींद आ रही है, मैं उसके साथ बैठ के बनाती हूँ, अपने सपनों को पूरा करती हूँ. और ऐसे मैंने कितने जानों हजारों बच्चों को मैंने ट्रेन किया है. तो आज के टाइम में अच्छे गार्मेंट इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छे मैनेजर लेवल पे वो जॉब कर रहे हैं. और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं, फैशन के ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा अपना बुटीक फैशन स्टूडियो ओपन किया है, बहुत अच्छा वो रन कर रहे हैं. तो व्हाई नॉट, आप क्यों? तो सबसे फर्स्ट थिंग जो आपको मेन अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है, स्विंग मशीन मैं आपने सब सिखा दिया. टेक्निक आपको पता होनी चाहिए, वो आपको अपने गार्मेंट में इंप्लीमेंट करनी है. क्वालिटी आपको मेंटेन करनी है. यदि आप क्वालिटी मेंटेन नहीं करेंगे, सी आप लोगों ने मार्केट्स में यदि आप देखा होगा, मेंस शर्ट यदि आपने खरीदा होगा, वही शर्ट आपकी 400 रुपए में भी मिल रही है, वही शर्ट आपकी 1000 रुपीज में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 4000 में भी मिल रही है, और वैसे ही शर्ट आपकी 10000 में भी मिल रही है. तो क्या रीजन है इनके बीच में? क्वालिटी, ओनली क्वालिटी. क्वालिटी में बहुत सारे एस्पेक्ट आते हैं, अभी हम लोग वो शेयर नहीं करेंगे. बट जब भी आप कोई गार्मेंट स्टिच करते हैं तो आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से कीजिए कि आपकी वो गार्मेंट की वैल्यू कौन सी आप रखना चाहते हैं. 100 रुपीज रखना चाहते हैं या 1000? 100 रुपीज के लिए हो सकता है आप चलता फिरता काम करें, हो गया कस्टमर एक बार ले लेगा, बट अच्छा कस्टमर को आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, कभी भी नहीं पकड़ पाएंगे. जब तक आप उसे क्वालिटी नहीं देंगे, गार्मेंट को टच करते ही क्वालिटी का पता चल जाता है. तो आपको उसमें इतना कोई भी आप जो प्रोडक्ट बनाते हैं तो टाइम पास करने के लिए नहीं बनाना, आपको उसमें अपनी जान डालनी है. और आपको जान डालनी है कि आप इंस्पिरेशन के लिए सलाह ऊर्जा मैं आपको ले सकते हैं कि जब वो एक ऑपरेटर से इस स्टेज पर आ सकती है, 51 यूनिट उन्होंने ओपन कर दिए, तो आप ही कर सकते हैं. हालांकि उनको बहुत टाइम लगा, एक दिन में नहीं होती ये चीजें, बहुत टाइम लगा, बट उन्होंने अपना मोटिवेशन को कभी भी डाउन नहीं किया. उनके सामने भी बहुत सारी हर्डल्स आई. और एक गार्मेंट इंडस्ट्री में फीमेल के लिए आप समझिए उस टाइम कितना मुश्किल काम रहा होगा उनको सर्वाइव करना. आजकल तो गार्मेंट इंडस्ट्री में इतनी फैसिलिटी वुमेन्स को मिला है, परसेंटेज आपको मिला है, बहुत फैसिलिटी है, बट उस टाइम में वो नहीं थी. उन्होंने फिर भी इतना स्ट्रगल किया और वो इस मुकाम पर पहुंचे हैं. तो आपको बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा. आप ये मत सोचिए कि आपकी टीचर ने सिखा दिया काम खत्म, हमारा काम खत्म हुआ है, आपका काम अभी शुरू हुआ है ना. तो क्वालिटी मेंटेन करने की कुछ एक मैं छोटा सा आपसे शेयर करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, आप कोई कुशन कवर बनाते हैं, अभी जैसे मैम ने आपको दिखाया था इस पर, तो जब आप उसको कुशन कवर को बनाते हैं, सबसे पहले आप अपने माइंड में मैपिंग कीजिए, माइंड में सोचिए किसको कैसे बनाना है, इसमें कौन सी मशीन यूज होगी आपकी, SNLS मशीन यूज होनी है या अम्ब्रेला मशीन यूज करनी है, ओवरलॉक मशीन यूज करनी है ना. यदि गार्मेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, बट अभी हम एक वूवन फैब्रिक की बात कर रहे हैं, नॉट नेट की. वूवन फैब्रिक आपका वो फैब्रिक होता है जो कि अभी सबने डाला हुआ है, जो टी शर्ट वाला कपड़ा होता है वो बिट फैब्रिक होता है, ठीक है. तो वूवन फैब्रिक की हम बात कर रहे हैं. तो वो कुशन कवर में आप कौन कौन सी मशीनें यूज करोगे, कौन कौन सी उसमें सीम यूज करेंगे, कहां पर कौन सी सीम लगने वाली है ना, आप ये डिसाइड करेंगे और वो किस टाइप का डिजाइन है। तो जब आप ये माइंड मैपिंग कर लेते हैं, माइंड मैपिंग के बाद आप अपना काम करना शुरू कीजिए, और जब आप काम करना शुरू करते हैं तो सिर्फ आपके माइंड में दो चीजें रहनी चाहिए, क्वालिटी और स्पीड। क्वालिटी और स्पीड, क्वालिटी और स्पीड होंगी, यू नो आपने क्वालिटी मेंटेन कर ली। एक क्वेश्चन का अगर आप यू नो दो दिन में बना रहे हो, एक दिन में बना रहे हो, कोई फायदा नहीं है ना। आपको अपने टाइम को भी वैल्यू देना है। आप यदि अपने टाइम को वैल्यू नहीं देंगे तो आप आगे सेल करने में आपके यू नो टाइम लॉसेस और काफी कुछ हो जाते हैं। तो आपको स्पीड पे, क्वालिटी पे आपको मेन फोकस करना है। और स्विंग मशीन ऑपरेटर की बहुत अपॉर्चुनिटी है गवर्नमेंट इंडस्ट्री में भी, बहुत ज्यादा। आप गुड़गांव सेंट्रल गुड़गांव में आप देखते हैं इंडस्ट्री एरिया, उद्योग विहार मानेसर आप जाते हैं तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जहां वो स्किल्ड ऑपरेटर्स को ढूंढती है। स्किल्ड मतलब क्योंकि मैं, मुझे एक्सपीरियंस है, मैं असेसमेंट के लिए भी जाती हूँ गार्मेंट इंडस्ट्री में, मैट्रिक्स क्लोदिंग में, मुडलामा में, तो वहां असेसमेंट लेने के लिए हम लोग जाते हैं। बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं जो काम करते होते हैं, तो जब हम उनकी स्पीड देखते हैं, उनका काम देखते हैं, सी बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस है। मतलब आप ये समझिए कि स्किल ऑपरेटर्स को हम असिस्ट करने जाते हैं और वो इतनी स्पीड में काम कर रहे होते हैं, इतना नीट एंड क्लीन काम कर रहे होते हैं, उनको कोई भी कोश नहीं होता, सिर्फ काम से मतलब होता है ना। और जैसे अभी मैंने स्पीड की बात की, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गार्मेंट को बनाने में आपको इतना टाइम लगेगा। जैसे एक बेसिक इंडस्ट्री के पॉइंट में यदि बात करो, एक मेन शर्ट, आप लोगों ने कभी मेन शर्ट स्टिच किया है? मेन शर्ट, मेन शर्ट आपने किया है? जिसने मेन शर्ट करी है ना, आप समझो कुछ भी स्टिच कर सकता है। मेन शर्ट में सारी सीम क्लासेस यूज होती है, कैसे कॉलर अटैच करना है, कैसे पॉकेट अटैच करनी है, लेफ्ट सीम क्या होती है, आपके कप कैसे बनाना है, पैकेट कैसे बनाना है, आप ये समझिए कोई भी गार्मेंट स्टिच कर सकता है। तो एक मेन शर्ट को बनाने में कितना टाइम लगता है? यदि आपने स्टिच किया है तो बताइए मुझे कितना टाइम लगता है। तीन घंटे? और किसी को कोई शेयर करेगा कितना? दो घंटे
2: काम तो टाइम तो लगता है, थोड़ा सा मतलब तीन से चार घंटे भी लग सकते हैं, बट मैं मेरे काम में मतलब कोई लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि सर मुझे इस हिसाब से।
1: आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी आपको बीट करना है इंडस्ट्री को, गवर्नमेंट इंडस्ट्री को बीट करना है।
2: जी मैम, मैं कोशिश करूंगी मैम टाइम मैनेजमेंट करने की।
1: और टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस गवर्नमेंट को स्टिच करने में कितना टाइम लगेगा। यदि वो आपको नहीं पता होगा, आप टारगेट अचीव नहीं कर पाएंगे। प्लीज बैठिए। एक मेन शर्ट को स्टिच करने के लिए 26 मिनट चाहिए। अब आप सोचिए किस लेवल पे हैं आप और आपको कितना इम्प्रूव करना है। मैं सिर्फ आपको मोटिवेट कर रही हूँ कि इंडस्ट्री में स्पीड से, बहुत स्पीड से काम होता है। आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, तभी आप प्रोडक्शन निकाल पाएंगे, है ना। यदि आप मार्केट में कुछ सेल भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको नंबर ऑफ पीसेस देने पड़ेंगे, तो उसके लिए भी आपको स्पीड चाहिए, स्पीड और क्वालिटी। तो आप देखिए मेन शर्ट में इतना टाइम लगता है, 26 मिनट के आसपास। तो आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर सकते हैं कि यदि आपको 50 शर्ट बनानी है तो कितना टाइम लगेगा, है ना। ये नहीं बताओ मुझे टाइमिंग का क्वेश्चन कवर है, सिंपल क्वेश्चन कवर है, तो कितना टाइम लगेगा? 10 मिनट या 15 मिनट। यदि आप 10 मिनट में ये क्वेश्चन कवर स्टिच करते हैं तो 50 क्वेश्चन कवर को आप कैसे कितने टाइम में स्टिच करेंगे, तो बहुत आराम से आप ये कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। यदि आप अपना छोटा सा यूनिट भी ओपन करते हैं, दो तीन टेलर नहीं तो हो सकता है आप भी 5-6 लोग मिलकर अपना एक छोटा सा यूनिट, 5-6 मशीनों का यदि आप ओपन करते हैं, तो हमें कुछ तो प्लानिंग करनी होगी ना। ये नहीं, बिना प्लानिंग के हम नहीं कर पाएंगे। तो आपको उसमें बहुत सारी इम्पोर्टेंट आपको उसमें आस्पेक्ट रखने हैं कि आप क्या स्टिच करने जा रहे हैं, कैसा गार्मेंट है, उसको कितना टाइम देना है, कितने टाइम में कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है, आप इस लेवल पे कर रहे हो, जब आप बाहर शॉप भी लेंगे, हो सकता है रेंट पर हो, हो सकता है टेलर हो, आपको उनकी भी पेमेंट करनी होगी. बहुत सारी चीजें यदि आप प्लान करके करेंगे तो आप बहुत अच्छे से सक्सेसफुली आप कर पाएंगे. कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो प्लीज आप कर सकते हैं. हो सकता है मे बी आप लोगों के माइंड में कुछ चल रहा हो, मैं आपको हेल्प कर पाऊँ इसमें, स्पेशली रेडीमेड गार्मेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड, या फिर कुछ भी डोमेस्टिक का आपको कुछ पूछना है तो प्लीज आप पूछिए. आज मौका मिला है. बोलते हैं कि कोई भी अपॉर्चुनिटी जब आती है ना, बोल के नहीं आती, एकदम से आ जाती है, तो उसको पकड़ लेना चाहिए.
3: मैम, हाँ जी, मेरी आगे बुटीक के नाम की छोटी सी दुकान है, मैंने अभी डाली है पिछले साल से.
1: हाँ जी,
3: तो उसमें सिलाई में खुद ही करती है, तो मेरे को ग्राफ बढ़ाने के लिए या मतलब अच्छा काम देने के लिए क्या करना चाहिए?
1: देखिए, सबसे पहले बुटीक किस लेवल पे आपने ओपन किया है और किस लेवल के आपके कस्टमर आ रहे हैं? तो देखिए, यदि आपने अपना बुटीक ओपन किया है तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सबसे पहले अपने बुटीक का आसपास का एरिया चेंज करना होगा, ताकि कोई आपके कस्टमर में आए, कस्टमर आए आपके शॉप पर, तो सबसे फर्स्ट लुक आपके बुटीक में रहे कि क्या स्टिच किया है. सेकेंड थिंग, डिजाइनिंग, क्योंकि फैशन एक ऐसी लाइन है, मैं बोलती हूँ कि हर दो घंटे में फैशन चेंज होता है.
3: मुझे ज्यादातर सिलाई का ही काम करना है, वो तो मैंने कॉस्मेटिक में चीज साथ में रखा हुआ है, पर जितना मेरा ज्यादा ध्यान है तो सिलाई का ही ध्यान है, ज्यादातर मुझे सिलाई का ही करना है, इसलिए आगे बुटीक नाम बता.
1: तो सबसे फर्स्ट आपको अपने डिस्प्ले पे फोकस करना पड़ेगा कि आप बुटीक पर कैसा डिस्प्ले करते हैं, ताकि कोई भी कस्टमर आए तो उसको कुछ डिजाइन चाहिए. वो आपके पास आया ही इसलिए है कुछ नया डिजाइन देखने के लिए. बहुत सारे कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास ऑलरेडी डिजाइन होते हैं माइंड में, होता है कि ऐसा गला चाहिए, ऐसे बाजू चाहिए मुझे, ये स्टाइल चाहिए, बट समटाइम उनकी सोच से भी ऊपर आप उनको बता दें, आपको उनको बताना है, अपने आप को अपडेट कर रहे हैं कि आजकल ये फैशन चल रहा है, मैम आप ऐसा बनवाइए, ऐसा अच्छा रहेगा, ये अच्छा रहेगा. तो सबसे फर्स्ट टाइम आपको कस्टमर को रीड करना है. रीड मतलब कि रीडिंग की उसको क्या चाहिए,
3: मतलब डिजाइन पे मुझे भी थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, मैं जल्दी दूसरों को बताऊंगा.
1: हाँ बिल्कुल, सबसे मेन तो है कि आपको अपने आप को ही डिजाइन में करना पड़ेगा, बट अपने बुटीक का डिस्प्ले आपको अच्छा करना पड़ेगा. फिर सेकेंड थिंग, कस्टमर किस टाइप के कस्टमर आ रहे हैं, आप लोगों को रीड करना पड़ेगा. कस्टमर की माइंड मैपिंग करने के बाद आप उनके लिए प्रोडक्ट बनाएंगे तो देखिए आपके कस्टमर के आप भीड़ बढ़ गए. तो माइंड मैपिंग आप लोग कैसे करते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल में दो एग्जाम्पल एक छोटा सा प्रैक्टिस करते हैं हम लोग. कोई भी दो स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और हम देखते हैं कि वो किस टाइप से हम उनकी माइंड मैपिंग कर सकते हैं. जैसे तो अभी मेरे पास यहाँ पर तीन कस्टमर हैं. आपका नाम सुनीता है, आपका नाम सितारा है और आपका नाम खुशी है. तो ये तीन कस्टमर हैं आपके सामने और इनको आप समझिए कुछ स्टिच करा रहे हैं. आप अपने माइंड में सेट कीजिए कि आपको क्या अपने लिए स्टिच करा रहे हैं. आप इधर आ जाइए, क्या स्टिच करा रहे हैं वो अपने माइंड में रखना है. सबसे पहले कस्टमर आता है हमारे पास, वो हमारे पास आए हैं तो हमें पहले उसके लुक को समझना है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं बोलने से नहीं, आपको आंखों से और माइंड से समझना है, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में समझना है, किस बैकग्राउंड से, वो आपको लुक से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है. फिर दूसरा, जब आप ये पता कर लेते हैं फिर आप ऐसे क्वेश्चन रखिए जो कि आपके गार्मेंट के लिए इम्पोर्टेंट है. किस टाइप की फैशन, वो किस लिमिट तक वो जा सकती है. आपको डायरेक्ट नहीं पूछना बहुत सारे क्वेश्चन, आपको इनडायरेक्ट वे से भी पूछने पड़ सकते हैं. तो जैसे फॉर एग्जांपल के लिए आपको क्या स्टिच कराना है, एक इनको सूट स्टिच कराना है, तो आप एज ए बुटीक आप उनको क्या हेल्प करेंगे? आपको रिप्रेजेंट करना है कि मैं आपके लिए बहुत अच्छा कर सकती हूँ. यदि आप अच्छा नहीं करेंगे भाग जाएगा, है ना, तो आप एक बार डील करके मुझे दिखाएं. ये सबके लिए एग्जाम्पल है, प्लीज आप लेके पॉइंट्स को. मैं आपको ये चाहती हूँ कि आप यहां से ना सुने, यहां से सुने और यहां से ना निकालें, यहां से सुने और माइंड में सीधा डालें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी. तो
3: आपको कैसा सूट सिलवाना है, जैसे डिजाइन सिलवाना है तो आप डिजाइन बता सकते हैं, डिजाइन जो जो मेरे को मतलब पसंद है वही बताएंगे. हाँ तो जैसा आप बताओगे वैसा हम सिल देंगे.
1: पीछे में कब आ जा रहा है, आ रहा पीछे में. देखिए मुझे ये लगता है यदि आप लोगों की टेंशन होगी ना तो सुई गिरने तक की आवाज भी पीछे आ जाएगी ना, तो आपको टेंशन देनी है, इतना स्लोगी वो नहीं हो रहे तो प्लीज.
3: तो जैसा आप मेरे को डिजाइन बताएंगे वैसा हम कोशिश करेंगे आपके लिए बनाने की.
1: तो आपने कस्टमर समझ के क्या आपने ऑब्जर्व किया कि क्या उसके लिए किस टाइप का आउटफिट होना चाहिए?
3: ज्यादातर तो लोग जैसे बोलते हैं कि जैसे हमने डिजाइन
1: लोग की बात नहीं कर रहे हम सिर्फ इसकी.
3: हाँ मतलब जो भी आते हैं मेरी दुकान पे वो ये कहते हैं कि जैसा हमने पहना हुआ है वैसा हमें बनाना है, और कुछ चेंज करना होगा तो वो हम बता देंगे आपको.
1: देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जब कस्टमर आपके सामने आता है आपको उसकी ड्रेसिंग सेंस देख के ये समझ आना चाहिए कि उसको कैसा फिटिंग चाहिए. यदि उसमें लूज डाला है
3: तो दैट मींस ऐसा ही बनाना.
1: तो दैट मीन्स उसको लूज फिटिंग में चाहिए. यदि उसको कंफर्टेबल पसंद है और आप उसके लिए टाइट स्टिच कर देंगे तो वो फिर कैसे आएगा, स्माइल करता हुआ या
3: गुस्से से?
1: और कई बार तो ऐसा भी होता है कि आप सर थोड़ा सा टाइट करते हैं तो सर पर वो आपके मुंह पे मारती जाएगा कपड़े क्या स्टिच कर दिया मेरे कपड़े वापस. ऐसे कस्टमर भी आते हैं या नहीं? हो सकता है आप लोगों में से भी किसी ने ऐसे
3: किया. नहीं मैम मेरे साथ हुआ था ना ऐसे, एक बार गलती से टाइट हो गया था किसी का तो गुस्सा कर रहे थे इतना टाइट कर दिया आपने मेरा कपड़ा खराब कर दिया ऐसे बोला उन्होंने.
1: तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, ये माइंड मैपिंग कर रही है, माइंड में देखना है कस्टमर को, देखकर आपको बहुत सारी चीजें पॉइंट आउट करनी है कि उसको कैसा लूज पसंद है टाइट पसंद है वो देख के पता चल जाता है फिटिंग है ना. यदि हम इन कस्टमर की बात करें है ना, तो इनके लिए आपके डिफरेंट माइंड मैपिंग होगी किस टाइप का आपको पसंद है ना. एज ग्रुप उसमें मैटर करता है, एज ग्रुप के अकॉर्डिंग भी आपके ड्रेस डिजाइन हो सकती है. अब जो ये इस एज ग्रुप के लिए आप डालेंगे इसके लिए तो नहीं बना पाएंगे है ना, तो एज ग्रुप भी बहुत मैटर करता है. उसके अकॉर्डिंग आप उनको सजेस्ट करेंगे, अच्छे आइडियाज देंगे कि आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा आपके ऊपर ये अच्छा लगेगा. यदि ये कस्टमर है जो कि आपकी क्या एज 15 ईयर की है, यदि मैं इनको ये बोलूं कि आपके लिए मैं सूट बना देती हूँ इतनी लंबी बाजू का बना देती हूँ यहाँ तक का गला बना देती हूँ और ये आपके ऊपर अच्छा लगेगा और एक दुपट्टा बना देती हूँ सर पे डालने के लिए उसमें बहुत आप मस्त लगोगे और दो अच्छे से झुमके आप तो क्या वो कस्टमर खुश होगा. हमें अपनी एज ए बुटीक या एज ए डिजाइनर या फिर हम अपनी चॉइसेस के ऊपर नहीं डाल सकते, हम उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उसका ड्रेस डिजाइन करेंगे तो कस्टमर उसमें हमेशा खुश रहता है. बट कस्टमर को हमें कुछ ना कुछ क्रिएटिव चीजें भी बतानी है कि देखो मैम ये फैशन में न्यू है हम ये करेंगे तो ये भी आपके कर चाहिए. हम ऐसे उनको सजेशन हमें देना चाहिए क्योंकि कहीं ना कहीं
3: थोड़ा पॉइंट ये नहीं दे पाती
1: हूँ. कहीं ना कहीं एक पॉइंट ये भी होता है कि कस्टमर ये सोचता है ट्रस्ट हो जाता है उसके ऊपर कि क्योंकि वो एक जैसा नहीं डालना चाहता, कुछ डिफरेंट डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट नेकलाइन डालना चाहता है, कुछ डिफरेंट बाजू के डिजाइन बनाना चाहता है. तो वो जो डिजाइनिंग आपको जो बतानी है वो सोच समझ कर और कस्टमर ट्रस्ट करके ऊपर आ रहा है आपके ऊपर कि ये मुझे बेस्ट डिजाइन मिलेगी और मेरे बजट के अंदर. समटाइम ये सिचुएशन भी हो जाती है कि कोई ऐसा डिजाइन है जिसमें बहुत टाइम लगने वाला है. ठीक है मैं उस टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, जैसे अभी आपने बताया शर्ट को आपको 3 घंटे लगे या एक पूरा दिन लग गया, मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, उसका अगर टाइम की बात है. समटाइम कुछ डिजाइन में हमें ज्यादा टाइम लगता है तो जहां ज्यादा टाइम लगेगा वहां आपका ड्रेस का कॉस्ट भी बढ़ेगा, स्टिचिंग कॉस्ट बढ़ेगी. नहीं ओके एक सिंपल सूट है और यदि आप उसके गले में छोटा सा पाइप में लगाते हो तो दोनों में सेम टाइमिंग लगेगा. अलग अलग लगेगा क्योंकि उसमें पार्टनर भी है तो टाइम ज्यादा लगे, अब टाइम ज्यादा लगेगा तो पैसा भी तो ज्यादा लगेगा, है ना। तो वो यदि आपके किसी डिजाइन में यदि एक्स्ट्रा टाइम आपको लग रहा है उसको वर्कआउट करने में, तो आपको बहुत पोलाइटली अपने कस्टमर से शेयर करना है कि इस डिजाइन में मैम बिल्कुल लेबर कॉस्ट बढ़ सकता है आपका, लेकिन आपके पास अच्छा बहुत लगेगा और ऐसा डिजाइन मैं आपको बना के दूंगी, लोग आप लोगों से पूछेंगे। तो ये कुछ कुछ टेक्निक्स हैं आपको अपने कस्टमर से बात करने की, या फिर जिससे भी आप डील कर रहे हैं, या बड़े लेवल पे बात कर रहे हैं, या फिर जिससे भी है, जो भी एक्स वाई जेड है आप उससे बात करते हैं, तो उन टेक्निक्स को आपको माइंड में जरूर रखना है। ये मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था कि डोमेस्टिक मार्केट में कैसे काम होता है। डोमेस्टिक मार्केट मतलब जैसे जितने भी छोटे बुटीक्स हैं, छोटे टेलर्स हैं आपके, वहां पर इस टाइप को आप डील कर सकते हैं। प्लीज हम थैंक यू, थैंक यू। सबसे पहले तो क्लैपिंग एंड टीम बच्चों के लिए आप खड़े हुए, अरे मुझे लगता है आप खड़े होना भी इसके लिए भी चाहिए कुछ ना कुछ, ये नहीं जब तक आप यहाँ नहीं आएंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं, मतलब यहाँ आने का मतलब है कोई भी कुछ अपॉर्चुनिटी आती है आपसे पूछा जाता है तो सबसे पहले आपका हाथ होना चाहिए, मैम मैं करूंगी, मैम मैं करूंगी। जब आपने ये सीख लिया तो आप आगे बढ़ने से आप कोई और कुछ शेयर करना चाहेगा।
4: अभी जैसे मैंने प्रोडक्शन का स्टार्ट किया है कि मैं अपना जुनून समझ लो इस चीज के लिए कि सेंटर को आगे लेके जाना है, कम्युनिटी को जो लोग बाहर नहीं जा पा रहे उनके लिए मैं काम खुद लेके आना है और कुछ लोगों से हटके मुझे करना है इस चीज के लिए। तो अभी जैसे मैंने स्कूल का ऑर्डर लिया था उन्होंने इसे कम्प्लीट करके दिया, पर मुझे वहां पर सबसे ज्यादा चैलेंज क्या आया, एक तो क्वालिटी में कोई वो नहीं है, चैलेंज क्या आया, एक तो कपड़े का जीएसएम का बहुत दिक्कत है मुझे उस चीज के लिए, जो उनका रेट है अगर मान लो शर्ट का रेट मुझे 143 रुपए देते हैं तो कट टू पैक में 145 में उनको कई बार दे पा रही हूँ कई बार नहीं दे पा रही हूँ, कि क्वालिटी में वो चीज क्या होती है, वो कपड़ा जो दिखा रहे हैं उस चीज के लिए ये हमें कपड़ा चाहिए, तो उस चीज के लिए मैं मार्केट में ट्राई कर रही हूँ, मार्केटिंग में देख रही हूँ सब चीज के लिए, उसमें मुझे काफी दिक्कत आ रही है उस चीज के लिए।
1: मुझे लगता है इस टाइप के चैलेंज यदि हम अच्छी क्वालिटी देना चाहें, अच्छी क्वालिटी मीन्स फैब्रिक अच्छा देना चाहें, अच्छे स्टिचेस देना चाहें, तो बट जो बाय करने वाला है उसको उसके कॉस्ट में फिट नहीं होता है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वो सिचुएशन आपको देखना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट कस्टमर है या कैसा कस्टमर है। फर्स्ट कस्टमर यदि है और यदि आप अपना काम उसमें प्रूव करना चाहते हैं तो आई थिंक मुझे लगता है स्टार्टिंग में नो प्रॉफिट नो लॉस में काम करना चाहिए।
4: पहला ऑर्डर में नो प्रॉफिट नो लॉस में,
1: सेकंड आपको उस कस्टमर को ये भी शेयर करना है कि सी मैं अभी आपको इतनी क्वालिटी में इतनी कम कॉस्ट में दे रही हूँ लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नहीं दे पाऊँ, मेरा ये कॉस्ट है, क्योंकि आपको अपना वैल्यू को भी शो करना है। जब तक आप अपना वैल्यू नहीं शो करेंगे, और शो करना नहीं है वो आपके गार्मेंट में अपने दिखेगा, वो वैल्यू क्वालिटी आपके गार्मेंट में दिखेगा 100% वो कस्टमर नेक्स्ट टाइम आपके पास। और मैं बहुत सारी ऐसी चीजें जीएसएम के अकॉर्डिंग आपको देखा, तो इसमें सबसे मेन चीज है मार्केट में आप रिसर्च कीजिए, मार्केट में आप सर्वे कीजिए, इतने टाइप के आपको मार्केट्स का यदि आपको नॉलेज होगा अच्छे से
4: पूरा एक महीना पूरा सर्च किया मार्केट को गांधीनगर, यहाँ तक कि कपड़े की क्वालिटी को बड़े दुकान पे मैंने जाके जो आपका मैटी है स्पन है उसकी क्वालिटी को पहले वो क्या था कि मुझे स्पन और मैटी में फर्क नहीं पता लगा, इवन दुकानदार को भी फर्क नहीं पता लगा, एक शॉपर ने भी मुझे बताया कि मैम आप इसको ऐसे चेक कर सकते हैं, उसने मुझे दोनों कपड़े को जला के दिखाया, मैटी जला तो एक राख बन गया, जब स्पन जला तो चिपक गया आपस में, तब मुझे उस कपड़े का जीन्स भी समझ में आया उस टाइम पे।
1: बहुत सारे पॉइंट्स हैं जैसे अभी जैसे मैं आपने शेयर किया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे अभी आपने 90 डेज का कोर्स किया है, तो 90 डेज के कोर्स में बहुत सारी चीजें हम लोगों के लिए सिखा पाना मुश्किल होता है, तो दैट्स व्हाई इन चीजों के लिए जो है 6 मंथ के कोर्सेज, 1 ईयर डिप्लोमा कोर्सेज, डिग्री कोर्सेज बने हैं, उसमें आपको नॉट स्विंग टेक्सटाइल कपड़ा कैसे बनता है, फैब्रिक साइंस क्या होता है, आपका पैटर्न मेकिंग क्या होता है, गार्मेंट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्वालिटी क्या होता है, प्रोडक्शन क्या होता है, मर्चेंडाइजिंग क्या होता है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग क्या होता है, तो इससे रिलेटेड बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनको ये बेसिक एजुकेशन में आप लर्न कर सकते हैं। और इन केस आपको कुछ स्टेप के हर्डल्स आते हैं तो बिल्कुल बहुत पास में ही मेरा इंस्टीट्यूट है 44 सेक्टर में अपना ट्रेनिंग डिजाइन सेंटर, एज ए गाइडेंस के लिए आप वहां भी आ सकते हैं। और किसी बच्चे का हो कोई सोल्यूशन कुछ पूछना चाहता हूँ, कोई क्वेरी हो? कुछ क्वेरी नहीं है तो मुझे लगता है कि क्वेरी नहीं है तो आप लोगों ने आज तक अपना फ्यूचर डिसाइड नहीं किया कि आप करना क्या चाहते हैं। जब मेरे पास बच्चे आते हैं डे वन मैं उनकी ओरिएंटेशन लेती हूँ, डे वन ही मैं अपने टर्म्स एंड कंडीशन बच्चों के सामने रख देती हूँ और वेरी फर्स्ट डे मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको करना क्या है, नेक्स्ट डे मुझे क्लास में बताना, क्योंकि आपने किस चीज में क्या ज्वाइन जो भी किया है किस पर्पज से किया है। जैसे अभी मैम ने भी कहा कि यदि आप यहाँ पर सिर्फ अपनी हॉबी पूरा करने के लिए आप कोर्स कर रहे हैं तो सॉरी इस टाइप की सीट्स आपने नहीं मिलेगी। तो सबसे फर्स्ट आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपको अपने कैरियर में करना क्या है। आपका कैरियर सिर्फ ये नहीं है कि आपको एक सिर्फ सूट सलवार स्टिच करना है, नो, आप उससे आगे सोचिए आप अपने पैरों पर कैसे खड़े हो सकते हैं, अपने आप को कैसे आप अर्न मनी अर्न कर सकते हैं, अपनी फैमिली को कैसे वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं, तो वो आपको इस बारे में सोचना पड़ेगा। यदि आप यहाँ पर क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं तो देट मीन्स आपने अभी तक नहीं सोचा।
5: वेरी
1: गुड, शाबाश, बताइए।
5: दो बच्चे मैं इसी वजह से घर से ज्यादा निकल नहीं पाती तो इंस्टीट्यूट जब मेरे बिल्कुल करीब है तो मैं दो घंटे लगा रहती हूँ, बच्चे स्कूल चले जाते तो मैं दो घंटे लगा रहती हूँ, लेकिन अभी जैसे एग्जाम हो गए तो मैं घर पे मैं चाहती हूँ कि जो भी काम हो मेरे घर पे आके मैं घर पे बैठ कर सकती हूँ, क्योंकि घर पे संभालना और मेरे एक्चुअली में छोटा मोटा बुटीक भी खोल रखा नहीं करते तो थोड़ा बहुत आता है वो मैं करती हूँ, लेकिन इसके अलावा मैं साथ तीन कई बार दो तीन घंटे फ्री रहती हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि घर पे कोई ऐसा काम आए कि मैं घर पे बैठ के आराम से कर
1: सकती हूँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं, जहाँ तक पीजा बैठी फीलिंग का बात है या वुमेन की बात है इंक्लूडिंग मी इंक्लूडिंग मैम, हम लोग सब उस चीज को फेस करते हैं, बट मुझे लगता है एज ए वुमेन हमें ये मेंटेलिटी को निकालना पड़ेगा कि कोई काम हमारे घर चल गया है, हमें इस चीज से बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है तो। ठीक है ना, आपके टाइम आपके घर पे कुछ टाइम के लिए आ जाएगा आपको, आप उससे मनी भी अर्न करना शुरू कर देंगे, लेकिन कब तक और कितना? आपको आगे बढ़ने के लिए आगे निकलना ही पड़ेगा, घर बैठे चीजें नहीं मिलेंगी। अब वो आपको देख रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चों को सेट करें, है ना, कैसे आप सेटिंग करें, वो ऐसे यही हम लोगों का मेन वुमेन का मैनेजमेंट होता है, हमें घर भी देखना है। अभी जैसे आप बात कर रहे हैं, अभी यदि आप मेरी बात करते हैं तो मेरा भी जो है थर्ड क्लास में बच्चा पढ़ता है, मैं भी अपना बच्चा भी संभालती हूँ अपनी फैमिली भी संभालती हूँ और इधर आकर कम से कम मेरे पास 300 के आसपास स्टूडेंट है, उनको मैनेज करना, क्लासेस मैनेज करना, बाहर जाना, इंडस्ट्री में जाना, एज ए अब मैं आप लोगों के पास भी हूँ शेयरिंग, हमें ऐसे भी जाना पड़ता है, तो एज ए अपने आपको आपको आगे बढ़ने के लिए अपनी बाउंड्रीज से निकलना पड़ेगा। जरूरी नहीं है हर टाइम आपके घर में ही सब चीजें आए, थोड़ा सा बाहर निकलना पड़ेगा यदि आपको आगे बढ़ना है। मीन वाइल आप अपने स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं घर बैठे, जितना अपने स्किल को आप स्ट्रॉन्ग करेंगे, स्किल को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जा सकता है? दृढ़ निश्चय, इसके अलावा दृढ़ निश्चय तो बहुत छोटी चीज है ना,
5: प्रैक्टिस करके।
1: यस, आप अपना कोई भी स्किल है जब तक उसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस आपको कैसे पता चलेगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं? जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने एक ब्लाउज स्टिच किया, एक दिन में आपने 3 घंटे में स्टिच किया, उसको दोबारा प्रैक्टिस करते हैं, फिर आपका टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, टाइम कम हो जाता है, तो वो आप जब बार बार प्रैक्टिस करके अपना क्वालिटी और टाइम को, यदि आप क्वालिटी बढ़ाना है आपको और टाइम कम करना है तो आपको वो स्किल इम्प्रूव हो जाता है ना। तो स्किल को आपका स्किल ही ऐसा है जो उस स्किल को लेकर आप अपने पैर पर खड़े हो सकते हैं। इस बेटे लास्ट में आपको कही है इतनी अच्छी स्माइल दे रहे हैं, आप कुछ पूछ रहे हैं आपको? नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं पूछना है, इधर से पीछे। मैं तो अपने बच्चों को यू नो हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी देती हूँ, यदि वो नहीं भी आते मैं बुलवाती हूँ उनसे। बोलना बहुत जरूरी है, अपनी चीजों को बताना जरूरी है, हो सकता है कुछ आपको बेनिफिट हम लोग दे पाए, कुछ आपको हो सकता है गाइड कर पाए। हाँ जी, यस,
5: फैशन डिजाइनर बनना है।
3: मैम उसको ये नॉलेज नहीं है कि मतलब आगे क्या करूँ, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर किसी इंस्टीट्यूट में, और उसका कॉस्ट क्या रहेगा, उसके चार्जेस क्या होंगे, मतलब इन चीजों के बारे में अभी तक मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं है। तो
1: वैसे आपके मन में कुछ आया कि मुझे फ्यूचर में ये करना है, तो आप क्या करते हैं? घर में बैठे बैठे अपने दिमाग में उसी चीज को रखते हैं या उससे रिलेटेड आगे पूछना शुरू करते हैं? और आई थिंक आप अभी ये क्वेश्चन कर रहे हो, अभी तक आपको कम से कम 10-12 इंस्टीट्यूट छान मार लेते हैं। गाँव में काफी सारे इंस्टीट्यूट है, काफी सारी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पर आप अपने इस टाइप के कोर्सेज कर सकते हैं। डिग्री प्रोग्राम भी है, डिप्लोमा प्रोग्राम भी है। डिग्री प्रोग्राम में आपका जैसे हम लोगों के इंस्टीट्यूट में है बैचलर वोकेशनल इन फैशन डिजाइनिंग रिटेल, तो ये 3 ईयर का प्रोग्राम है। 3 ईयर प्रोग्राम्स में आप फैशन डिजाइनिंग से रिलेटेड बहुत सारी मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। फैशन डिजाइनिंग को लोग सिर्फ अच्छा दिखने में आई थिंक सोचते हैं, बट फैशन डिजाइनिंग में बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें। कपड़ा कैसा बनता है, कैसे उसकी वीविंग होती है, कैसे उसको कलरिंग होती है, कैसे उसकी डाइंग होती है, ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज हो गई, आपकी बहुत सारी चीजें उसमें। तो इसमें फैशन डिजाइनिंग के साथ साथ आपका एक मैन्युफैक्चरिंग डिप्लोमा कोर्सेज में है, वो भी बहुत ज्यादा आजकल सबसे ज्यादा। यदि मैं स्ट्रेंथ बोलूँ मेरे इंस्टीट्यूट में, तो सबसे ज्यादा जो मेरे पास स्ट्रेंथ आती है दैट इज EMT कोर्स के लिए आती है। EMT मीन्स अपैरल मैन्युफैक्चर टेक्नोलॉजी, मीन्स

बहुत बहुत लार्ज स्केल पे जो है इसमें काम हो रहा है, उसमें भी आप ला सकते हैं। तो यदि आप लोग सेंटर में करेंगे तो इधर IIMD है, विंकर यूनिवर्सिटी है, आंसर यूनिवर्सिटी है, इधर पैराग्राइन डिजाइन सेंटर है, वो भी मतलब आप सर्च करेंगे मिल जाएगा। इवन काफी सारे इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जहां पर फ्री कोर्सेज भी, नॉट फ्री, स्पॉन्सर कोर्सेज सीएसएफ के अंदर जो कोर्सेज आते हैं वो भी आप अडॉप्ट कर सकते हैं, मतलब पेड अनपेड दोनों।

आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो। रीड इंडिया समुदाय के सहयोग के द्वारा समुदाय के विकास के लिए कार्य करता है। रीड इंडिया ग्रामीण समुदायों में स्थायी सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा, उद्यम और सामाजिक विकास के क्षेत्र में कार्य करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो रीड इंडिया, 24 घंटे चलने वाला इंटरनेट पर आधारित मोबाइल रेडियो।

0: अभिता और फरा, आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम पे जिसका नाम है नीडल एंड थ्रेड, और जिससे आप रोजाना काम करती हैं। और आपको ये भी पता है और हम सबको पता है कि नीडल और थ्रेड के बिना हमारा गुजारा भी नहीं है, बिकॉज सबको कपड़े सिलवाने हैं, पहनने हैं। और बहुत सारी औरतें जो हैं, जो रीड के साथ जुड़ी हैं या वैसे भी काम करती हैं, उनको स्टिचिंग करके जो सेटिस्फेक्शन मिलती है, वो यू कैन नॉट इमेजिन दैट। और अभी प्रोफेशनल कोर्सेज भी बहुत सारे हैं, यूनिवर्सिटी में भी हैं, इंस्टीट्यूशंस में भी हैं अपैरल डिज़ाइनिंग के। और जैसे अबीदा ने भी छोटा कोर्स किया है अपैरल डिज़ाइनिंग पे, और आज की जो चर्चा है हम इसी पे बेस करेंगे। और अबिदा और फरा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। अबिदा, शशांक ने आपके बारे में इंट्रोडक्शन दी है, और आपने अपने आप को अपने पैरों पे खड़ा होने के लिए बहुत सारी मेहनत करी है, बचपन से मेहनत करी है। आप अपना गांव छोड़ के दिल्ली में भी आई रहने के लिए, पढ़ने के लिए, और फिर वापस जाके जब आपके मन में जुनून था कुछ करने का तो आपने उसको पूरा कर दिखाया। और मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि जुनून अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी तो शुरुआत हुई है, और ज़िंदगी बहुत लंबी है, और अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ करने की आप इच्छा भी रखती हैं, और उसके उसको पूरा करने के लिए आप में दृढ़ विश्वास भी है। तो चलो हम बातचीत शुरू करते हैं। अबिदा, आप अपने बारे में हमारे श्रोताओं को बताएं, थोड़ी जानकारी दें, और फिर हम आगे इस चर्चा को लेकर जाएंगे। अबिदा प्लीज।
1: गुड इवनिंग मैम, मेरा नाम आबिदा है और मैं रामपुर शहर के छोटे से मोहल्ले कलगत के रहने वाली हूँ। मैम, यहाँ का माहौल हमारे यहाँ मतलब ऐसा है कि लड़कियों को ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। शुरू से ही हम अपने आसपास का माहौल यही देखते आए, अपने घर का भी, कि हमारे भाइयों को एजुकेशन दी जाती थी और अच्छे से वो लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम लड़कियों को इतनी इम्पोर्टेंट नहीं दी जाती थी। जैसे मैं अपनी बड़ी बहनों को देखती थी, वो घर का काम काज कर रही हैं और सिर्फ घर तक ही सीमित रहती थी, किचन तक, घर तक उनकी लाइफ रहती थी। लेकिन मेरे अंदर बचपन से ही एक जुनून था कि मुझे अपनी लाइफ कुछ चेंज करनी है। मुझे लड़कों से लड़कियों को क्यों अलग समझा जाता है, मुझे वो सोच हटानी है लोगों की, और मुझे भी पढ़ना है, आगे कुछ बढ़ना है, अपने पैरों पर खड़ा होना है, लड़कियों का नाम रोशन करना है। ये सारी इच्छाएं मेरे अंदर बचपन से ही रहती थी। मैंने अपने घर वालों को बहुत फोर्स किया कि मुझे आप पढ़ने दें, तो घर वाले ने यही कहा कि नहीं, आप लोग, आप जैसे लड़कियां यहाँ घर में रहती हैं, आप भी ऐसे रहिए और घर का काम काज सीखिए। हालांकि मैं उस टाइम बहुत छोटी थी, लेकिन फिर भी मुझे बहुत चाहत थी कुछ बनने की, तो मैंने अपने घर वालों को कन्विंस किया। उन्होंने मेरा एडमिशन एक

0: स्कूल में कराया, कवरलगा स्कूल, वहां पे मैंने 8th क्लास पास की। फिर उसके बाद यहाँ रामपुर में कारोबार नहीं है, बहुत प्रॉब्लम थी घर के खर्च की। पापा एक जॉब करते थे छोटी सी, और उसी से हमारा गुजर बसर काफी मुश्किल से होता था। तो इसी वजह से काम के लिए हम लोग दिल्ली चले गए, हमारे भाई ने वहाँ काम शुरू किया। मैंने अपने घर वालों को कोर्स किया बहुत ज्यादा कि मुझे आगे पढ़ने दें, कुछ बनने दें, ताकि मैं भी अपने भाइयों के साथ सपोर्ट करूँ घर का। तो मेरे घर वालों ने मेरी हेल्प की और मुझे आगे पढ़ने दिया। मैंने मदरसा जामिया से अपनी एजुकेशन आगे की, और जिसमें मैंने बीए फाइनल किया, और अरबिक साइड से अरबी लैंग्वेज सीखी, उस साइड से मैंने किया। लेकिन फिर भी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मेरे अंदर एक सोच रहती थी कि मैं किस तरह आगे बढ़ूं, किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ, किस तरह लड़कियों का नाम रोशन करूँ। ये सारी सोच मेरे अंदर हर टाइम रहती थी, लेकिन किस तरह, ये सवाल मेरे अंदर रहता था बार बार। ये सवाल मेरे अंदर उठता था कि मैं किस तरह अपने पैर पर खड़ी हूँ। उसके बाद फिर इसके दौरान मेरी एक फ्रेंड के थ्रू मैंने एक सिलाई सेंटर ज्वाइन किया, और मैंने वहां से स्टिचिंग कोर्स किया। काफी अच्छे से कोर्स किया, काफी मेहनत से, मन से, क्योंकि वो कोर्स सीखने के लिए मैंने, ये नहीं कि मैं शौक में कर रही हूँ, मुझे कुछ बनना है आगे, कुछ बनना है कि सिलाई के करियर ही बनना है, लेकिन मुझे कुछ बनना है, ये सोचकर मैंने सेंटर ज्वाइन किया। और काफी मेहनत से, लगन से, जो लड़कियां मुझसे पहले की थी वहां पर, उनको भी पीछे छोड़ा मैंने, और इतनी मेहनत से मैंने वहां से कोर्स किया। और मुझे कहते बहुत खुशी है कि मैं वहाँ कोर्स आई, बहुत अच्छे से मुझे उन लोगों ने प्रेजेंट भी दिया, काफी लोग आए थे, उन्होंने मुझे सराहा, उन्होंने मुझे जॉब ऑफर की, लेकिन घर से सपोर्ट नहीं मिला जॉब का। उसी दौरान मेरी दोनों सिस्टर की शादी हो गई, और शादी के बाद फिर घर की सारी जिम्मेदारियां मेरे पर आ गई। घर वालों ने जॉब के लिए नहीं मुझे सहारा दिया। उसके बाद फिर हम लोग रामपुर यहाँ आ गए, अब लोग हम शिफ्ट हो गए रामपुर। वहाँ उसी दौरान मेरे पापा काफी बीमार रहने लगे, तो हार्ट की प्रॉब्लम रहने लगी, उससे पापा का काम छूट गया। और उसी सिलसिले में फिर मैं काफी टेंशन में रहने लगी कि मैं क्या करूँगी। बस अभी मुझे री नौकर अकबर सर आए जहाँ, और हमारा हॉल पसंद किया, और री इंडिया ने मुझे ऑफर जॉब की। तो मेरे घर वालों ने मुझे सपोर्ट किया, और सबसे बड़ी सपोर्ट मेरी भाइयों ने की, क्योंकि यहाँ इस हॉल में वो लोग हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, और मुझे चाहिए था हॉल, तो मेरे भाइयों ने अपना काम रोककर हॉल दिया मुझे। तो मैंने डिल इंडिया सेंटर चलाया, और मैंने ये सेंटर काफी अच्छे से चलाया। इस सेंटर में आने से पहले मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, और काफी दिक्कत मुझे थी, और लड़की से अच्छे से बोल नहीं पाती थी, और मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। वो कॉन्फिडेंस मुझे सिखाने के साथ आया। मैंने जितना लड़कियों को सिखाया उतनी मेरी खुद की स्किल्स डेवलपमेंट होने लगी, और मुझे लड़कियों से बात करने का तरीका आने लगा, और सिखाने के साथ साथ लड़कियां मेरी काफी मेरी इज्जत करने लगी, मेरी वैल्यूज बढ़ी। मोहल्ले में मुझे कोई नहीं जानता था, मोहल्ले में मुझे काफी जान मेरी जान पहचान बढ़ गई, और लोग मुझे जानने लगे। और मैंने 3 साल से सेंटर चला रही हूँ, जिसमें मैंने 400 तक लड़कियों को सिखा दिया है, और 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ गई, और इन 400 घरों तक मेरी पहचान बढ़ी है। और वो 400 लड़कियां और 400 लड़कियों को लेकर आई थी। हमारे यहाँ का अभी माहौल वही है कि लड़कियों को निकलने नहीं देते, लड़कियों को आगे कुछ बढ़ने नहीं देते। लेकिन मैंने लड़कियों के घरों पे गई, उनके पेरेंट्स से बात की कि आप लोग अपनी लड़कियों को यहाँ भेजें और हमारे सेंटर भेजें, उनको कुछ सिखाएं। तो उन लोगों ने मेरी बात एग्री किया, और मेरे पास में लड़कियों को भेजा, और यहाँ पर लड़कियों ने आकर सीखना शुरू किया, जिससे काफी इंप्रूवमेंट आया। हमारे मोहल्ले में भी काफी लड़कियां ऐसी थी जो घरों से निकलना नहीं जानती थी, जिनके अंदर कोई कॉन्फिडेंस नहीं था, बात करने का तरीका नहीं आता था, वो सब उन्होंने सेंटर से ही सीखा। और यहाँ से उन्होंने देने के बाद कमाना शुरू किया, और अपने पैर पर खड़ी हुई है, उन लोगों ने अपनी फैमिली को सपोर्ट भी किया। काफी लड़कियां ऐसी हैं जो अच्छे से कमा रही, कमा भी रही।
1: बहुत बढ़िया, बहुत
0: जी मैम,
1: बढ़िया। फरा आपके साथ बैठी है फरा,
0: जी मैम,
1: और आप तो रीट से बहुत सालों से जुड़ी हुई हैं। जब आप बहुत छोटी थी तब से ही रीट से जुड़ी हैं, और ये स्टोरी जो अबिदा अपनी बता रही है, आपके क्या विचार हैं इस स्टोरी पे? और आपने अबिदा को अपने सेंटर में जोड़ा, कलघट में इन्हीं के घर में आपने सेंटर बनाया सी। जब आपके दिल में जुनून होता है तो नेचर भी आपको सपोर्ट करती है उसी काम को करने के लिए। अब जब
0: जी मैम,
1: पेरेंट्स नहीं अलाउ कर रहे थे किसी भी रीजन से, मैं बहुत रिस्पेक्टफुली ये बात बोल रही हूँ और मैं उनकी बहुत इज्जत भी करती हूँ, कि ये होता है कि लड़कियों को बाहर भेजने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए होता है पेरेंट्स को, तो वो कॉन्फिडेंस पेरेंट्स में भी टाइम से आता है, एकदम शुरू से नहीं आता है। और जब मैं अमिता की स्टोरी सुन रही हूँ तो मुझे फरा की स्टोरी भी याद आ रही है सामने, तो फरा आप कुछ ऐड करना चाहेंगी अमिता की स्टोरी में, क्योंकि आप इसको 2019 से देख रही हैं।
0: जी मैम, मैं ऐड करना चाहूंगी। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं रीड इंडिया रामपुर सेंटर से फरहा। आबिदा की स्टोरी में मैं ये ऐड करना चाहूंगी कि आबिदा बहुत ही अच्छी और मेहनती लड़की है, जिनको मैं पहले दिन मिली थी और आज मिल रही हूँ। बहुत बड़ा फर्क है उनके अंदर। जैसे मेरी जर्नी थी रीट में, मैं यहाँ थी और अब यहाँ आ गई हूँ रीट से जुड़ने के बाद, ऐसे ही आबिदा ऐसी थी और आज यहाँ आ गई है। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज वो लाइव आप सबके सामने अपनी स्टोरी शेयर कर रही है। जो कुछ मतलब जब हम फर्स्ट डे आए थे तो कुछ बता भी नहीं पा रही थी, तो जब मेरी इनसे फर्स्ट डे मुलाकात हुई थी तो ये नकाब में और बुरके वगैरह में थी घर में ही, और ऐसे ही मतलब रहती थी। तो मैंने इनसे पूछा कि, इन्होंने हमसे बोला कि हम यहाँ पर, हमारा ये थोड़ा सा घर का हिस्सा है और यहाँ पर हम ऐसे से कोई कुछ चलाना चाहते हैं। तो हमने बोला यहाँ पर लड़कियां वगैरह कैसी हैं और लड़कियां आ जाएंगी यहाँ तक, क्या घर में से पेरेंट्स निकलने देंगे, क्या आपके अंदर वो जज्बा है कि आप सिखा पाएंगी, लड़कियों से जुड़ पाएंगी और या लड़कियों से बातचीत कर पाएंगी। तो उन्होंने अपना पूरा कॉन्फिडेंस दिया हमें कि हाँ हम करेंगे। मतलब इन्होंने मना नहीं करा, इनके पेरेंट्स मना कर रहे थे कि कोई जॉब नहीं करेंगी, लेकिन उन्होंने कहा कि हम करेंगे। तो मुझे लगा कि हाँ भाई, फरा के जैसी भी कोई और है करने के लिए जज्बा रखती है। तो वहीं से इन्होंने स्टार्ट करा और हमसे हामी भरी करने के लिए, तो हमें लगा कि हमारा यहाँ पर सेंटर चल सकता है रीड इंडिया का, और यहाँ पर बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो आबिदा के जैसी बाहर निकल के कुछ कर सकती हैं। तो जब हमने इनसे बात करी और इन्होंने मोबिलाइजेशन करा, तो जब भी हमारे पास 100-150 लड़कियां आई बाहर निकल के, और इन्होंने घर घर में जाके मोबिलाइजेशन करा, पेरेंट्स को समझाया, क्योंकि यहाँ पर ऐसे पेरेंट्स हैं, मुस्लिम इलाका है जो घर से बिल्कुल लड़कियां नहीं निकल पाती है। तो इन्होंने घर घर जाके, हमने इन्हें 1 हफ्ते का टाइम भी दिया कि आप जाइए और हमें बताइए कि आप कर सकती हैं। तो इन्होंने हमें 150 लड़कियां लाके दी, और जब हमने उन लड़कियों से मुलाकात की तो वो फर्स्ट टाइम अपने घर से निकल के किसी सेंटर पे आई थी। उन्होंने हमें बताया कि मैम, हम फर्स्ट टाइम अपने घर से निकले हैं, हमें फर्स्ट टाइम इजाजत मिली है, क्योंकि सिर्फ हम पढ़ाई के लिए जाते हैं और या फिर हम अपने घर पे रहते हैं, पढ़ाई के लिए भी हम अपने भाई या फादर के साथ जाते हैं, एग्जाम वगैरह देते हैं तो वो बाहर खड़े होते हैं और फिर हम देकर उन्हीं के साथ आ जाते हैं वापस। लेकिन ये एक पहला सेंटर है जो हमारे घर के करीब समझिए, या फिर एक टीचर के अंदर, टीचर ने उनको किस तरीके से उनके पेरेंट्स को समझाया, वो एक विश्वास समझिए जो हमारे पेरेंट्स ने हमें यहाँ तक भेज दिया। तो हमें बहुत खुशी हुई, और मुझे ये भी खुशी हुई कि आबिदा उन लड़कियों को घर से निकाल के लाई, इनके अंदर वो कॉन्फिडेंस आया, आगे बढ़ने का जुनून आया कि मैं आगे बढ़ सकती हूँ, और इतनी लड़कियों के पास ये पहुंची और उनको समझाने में कामयाब रही। लड़कियां यहाँ धीरे धीरे आई और लड़कियां आज इतनी हैं कि 400 से लेके 500 लड़कियां तक आबिदा को जानती हैं, और उनके घर वाले कभी भी किसी टाइम भी यहाँ भेज देते हैं, उनको कोई भी चिंता नहीं है। उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर आते हैं, और हम लोगों ने पेरेंट्स से भी बात की है कि आप अपनी लड़कियों को बाहर तो कहीं जाने देते हो लेकिन हमारे सेंटर तक आप भेज रहे हो, क्या आपको हमारे सेंटर में ऐसी कौन सी अच्छी चीज लग रही है? तो उन्होंने यही हमसे बोला है कि आपके सेंटर के अंदर एक तो लड़की कुछ सीखने आती है, कुछ सीख के जाती है, और दूसरा ये एक विश्वास और एक लड़की के लिए सेफ्टी वाला सेंटर है, जो हमें लगता है कि हमारी लड़की वहां जाके बिल्कुल सेफ है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो वो हमें बहुत खुशी हुई। कभी कभी लड़कियां ये भी होती है कि घर से पूरे दिन के लिए भी कही जाती है कि मम्मी हम वहाँ पूरे दिन रहेंगे, हमें मतलब कोई काम करना है, या स्विमिंग का कोई काम है, या फिर प्रोडक्शन में कुछ करना है, या फिर कोई डिजाइनिंग सूट सिलना है, तो उनके पेरेंट्स वो भी अलाउ कर देते हैं। जब उनके पेरेंट्स का फोन आता है तब वो दिन भर में जाती है। तो यहाँ तक लड़कियों के अंदर फर्क आया, और वो फर्क लाने के लिए आबिता ने बहुत कोशिश की है, और बहुत अच्छा कनेक्ट करती है लड़कियों से। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरी जैसी और लड़कियां बन रही है, फरा से आबिदा, आबिदा से और 150, 150 से 400 लड़कियां बन जाए, और ऐसे ही हमारा सोशल वर्क कामयाब रहे हमेशा, और हम ज्यादा से ज्यादा लड़कियों, औरतों, लड़कों तक पहुंचे, और रीड का नाम बहुत रोशन। तो मैम, ये आबिदा की जो अंदर की कॉन्फिडेंस था वो निकल के आया।
1: वेरी गुड फरा, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। मैं थोड़ा सा यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी कि रीट का मॉडल ही ऐसे है। रीट का मॉडल ये है कि हम गांव में जाके कैसे गांव की लड़कियों के साथ मिलके काम करें जो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकती हैं, और उन्हीं के एरिया में हम ऐसे सेंटर खोलें जहाँ पे लड़कियाँ बड़े कॉन्फिडेंस से आ सकें और अपने हम उम्र की लड़कियों से बहुत कुछ सीख सकें और अपने परिवार को भी सपोर्ट करें, अपनी लाइफ में भी चेंज लेके आएं और अपने आने वाले जिंदगी की सोच भी उनकी क्लियर बन जानी चाहिए। तो ये बहुत अच्छी बात है फरा। और मैं यहाँ पे एक और चीज भी कहना चाहूंगी, जब हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं तो मैं अपने बारे में बताऊंगी कि मेरी ये सोच नहीं है कि हम घर से लड़के घर की रजामंदी ना होने की वजह से या हम अपनी जिद से कुछ करें। जैसे फरा की स्टोरी थी कि फरा ने अपने पेरेंट्स को कन्विंस किया, अपने गांव में ही सेंटर था और उस गांव के सेंटर में काम करके अपनी जिंदगी में बदलाव लाई, अपनी सोच में बदलाव लाई, अपने पेरेंट्स की सोच में बदलाव लाई, अपने पैरों पे खड़ी हुई। ऐसे अबिदा ने भी किया। अबिदा बिल्कुल अपने पेरेंट्स की बात मानती थी, कोई जिद नहीं थी कि मुझे घर से बाहर जाना है, पर ऐसे सरकमस्टांसेस में रीट का मॉडल उनके लाइफ के साथ इतना अच्छा तालमेल बिठाया उसने कि उसने अपने घर में ही जगह दी और अपने घर में ही उसने सिलाई मशीन रखने के लिए इजाजत मांगी अपने पेरेंट्स से। और देखिए उसके ब्रदर ने कितना सपोर्ट किया कि अपना काम बंद करके उसने अपनी बहन को जगह दी, क्योंकि उसकी भी यही सोच थी कि आज अगर मैं अपनी बहन को सपोर्ट करूंगा तो मेरी बहन बहुत आगे बढ़ जाएगी और उसके दिल की जो ख्वाहिश है उसको मैं प्रोत्साहित करूंगा कुछ करने के लिए। तो ये खाली अबिदा का रोल नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अबिदा के पेरेंट्स का, अबिदा के भाई का, फरा एज एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ हर एंड ऑल्सो फरार्स पेरेंट्स और आसपास का माहौल जो पॉजिटिव बना, ये सब चीजें बहुत रोल प्ले करती हैं। तो मैं सबको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगी इस सोच को समझने के लिए, इस सोच को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि जब हम अपनी सेल्फ ग्रोथ की बात करते हैं, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, तो महिला को अपने दायरे में ही रह के अपने परिवार की सहमति से कैसे अपने में सेल्फ कॉन्फिडेंस लाना, ये बहुत बड़ी बात है। और इस सेल्फ कॉन्फिडेंस को हम सबका सलाम है, बिकॉज ये सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत टफनेस अपनी लाइफ में, बहुत हार्ड वर्क अपनी लाइफ में करके, बहुत चैलेंजेस को फेस करके आता है। और हम जब आगे बढ़ते हैं और जो इसकी सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है वो हम किसी और चीज से कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फरा और अबिदा, आपका जो जर्नी रही, जो दोनों ने जर्नी पार करी है, इस जर्नी को सलाम। और आपने जो लोगों को कन्विंस करा और जो लोगों को प्रोत्साहित करा आज के दिन में 400 लड़कियों को सिलाई सिखाना और उनके घर में इनकम ऐड करना, ये बहुत बड़ा स्टेपिंग स्टोन है। इसको आप छोटा मत समझिए। आपने जो अपनी लाइफ में किया है इसका बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारी लड़कियां जो आपसे डायरेक्ट जुड़ी हैं, उनका पेरेंट का फैमिली जो उनके माँ बाप हैं, उनके बहन भाई हैं, और जब उनकी शादी के बाद ससुराल गए हैं और उनके माँ बाप, उनके हस्बैंड, उनकी पूरी फैमिली पे इसका क्या असर पड़ता है आप उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते। तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से रियलाइज करती हूँ। तभी रीट गांव गांव में जाके, गांव गांव में लोगों से बात करके, गांव में ऐसी लड़कियों को तराशते हैं जिनमें हुनर है पर वो कुछ कर नहीं सकती हैं। और आज हमारे सामने इस प्रोग्राम में दो लड़कियां बैठी हैं, फरा और अबिदा, जिनके अंदर एक टैलेंट छुपा हुआ था, उसके ऊपर धूल थी, हमने खाली उस धूल को हटाया है और आज ये ब्राइट स्टार बन के हमारे सामने बैठी हैं। थैंक यू अबिदा सो मच फॉर शेयरिंग योर, इस ये स्क्रीन पे शेयर करने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए और मैं आपकी हिम्मत की दाद देती हूँ। अभी मुझे ये बताइए कि जो लड़कियां आपके पास सिलाई सीखने आती हैं, उनकी जिंदगी में कैसे बदलाव आया?
0: मैं ऐसा है, जैसे यहाँ हमारी लड़कियां कुछ ज्यादातर ऐसी हैं जिनके फैमिली को सपोर्ट ज्यादा नहीं था उनका, लेकिन हमने उनके घर बात की, उनके पेरेंट्स से बात की, तो उन्होंने यहाँ भेजा। उनकी माली हालत भी इतनी अच्छी नहीं थी, मजदूरी करती है, काफी लड़कियों के वालिद वालिद उनके पापा, तो लड़कियों को हमने वो हुनर दिया और स्किल्स दी उनको इतनी कि उन्होंने यहाँ सीखने के दौरान ही सिलाई करना शुरू कर दी। उन्होंने अपने खुद के कपड़े सीकर और अपने पैसे बचाए, और फिर उसके साथ साथ उनके अंदर कॉन्फिडेंस आता चला गया और उन्होंने बाहर की सिलाइयां भी लेना शुरू कर दी, और जिससे उन्होंने घर में अच्छा सपोर्ट किया उन लड़कियों ने। और अपने पेरेंट जो उनको इजाजत नहीं देते थे, वो खुद उनकी अम्मियों ने आकर मुझसे बात की और शुक्रिया अदा किया कि आपने हमारी बेटियों को इस लायक बनाया है कि आज हमारी बेटियां इस लायक हैं कि अर्निंग कर रही हैं, अपना फर्ज भी उठा रही हैं और अपने घर का फर्ज भी उठा रही हैं। कुछ लड़कियां ऐसी थी और जिनकी पढ़ाई भी रुक गई थी, घर की माली हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि उनकी पढ़ाई रुक गई थी, और उन्होंने इतना कमाने लगी हैं वो लड़कियां कि उन्होंने अपनी पढ़ाई भी दोबारा स्टार्ट कर दी है, और कुछ लड़कियों ने ट्यूशन वगैरह भी लगा ली है अपनी। और कितनी लड़कियां ऐसी हैं कि मेरे पास एक दो लड़के ऐसे हैं जिनकी डिवोर्स हो चुकी है और वो अपने घर में थी, अपने पेरेंट्स पर डिपेंड करती थी, लेकिन यहाँ सिलाई सीखने के बाद वो खुशी से ये बात कहती है कि अब हम किसी पर डिपेंड नहीं है और हम अपना फर्ज अपने बच्चों का फर्ज खुद खुद उठा रहे हैं।
1: बहुत बढ़िया, आपने तीन पहलू यहाँ पे हमारे सामने शेयर कर रहे हैं। एक तो लड़कियों ने सिलाई सीख के अपने पेरेंट्स की जो फैमिली की इनकम थी उसमें योगदान दिया। दूसरा,
0: जी
1: उन्होंने अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करी। ये बहुत बड़ा स्टेप है अपनी लाइफ में। फरा ने तो करा ही है, पर और भी ऐसी लड़कियों ने करा जिन्होंने अपनी पढ़ाई आगे करी, अपनी पढ़ाई को सपोर्ट किया, सेल्फ सपोर्ट किया। और तीसरा, जिनका डिवोर्स हो गया वो भी अपने पैरों पे खड़ी हो गई। तो ये तीन मेजर लाइफ चेंजर्स जो हैं, जो आए उनके लाइफ में, इसका श्रेय आपको जाता है, जो आपने बहुत सहनशीलता से, बहुत समझदारी से और बिना इसकी शोर मचाए, शोर मचाए मतलब कि किसी को कानो कान खबर नहीं हो रही है इस चीज की, तभी हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि गांवों में कैसे बदलाव आ रहा है। ये लोगों तक पहुंचनी चाहिए बात, क्योंकि हम कोई मीडिया में स्टोरी नहीं देते हैं, हम कोई इसको शो ऑफ नहीं करते हैं, बट जो रियलिस्टिक चेंज आ रहा है, जो ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी बातों से सब लोगों तक पहुंचनी चाहिए, बिकॉज यू आर द चेंज मेकर। हम कहते हैं ना कि हमने सोशल कैपिटल बिल्ड करा, हमने सोशल गेन्स की बात की, हमने देखा कि कैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है। ये तीनों का श्रेय आपने इतनी सरलता से किया और अपनी इतनी समझबूझ और मेहनत से किया, मैं इसका भी आपको सल्यूट करती हूँ कि आपने बहुत अच्छे से काम किया। फरा, ये हम इनके एरिया की बात कर रहे हैं, आपका सिमिलर स्टोरी पटवाई में भी है, राइट? तो उसके बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे। पटवाई में ये तीनों चीजें जो मैंने बात की है, सोशल गेन्स मतलब कि समाज में उनको कैसे इज्जत मिली, कैसे उनकी इज्जत बढ़ी परिवार में, समाज में, और कैसे उनको धन का भी लाभ हुआ फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। और जो लड़कियां बहुत ही डिफिकल्ट सरकमस्टांसेस में थी, वो उन्होंने उन सरकमस्टांसेस को रिजॉल्व करा, उस कठिन समय से बाहर आई। तो फरा, आपके यहाँ पे भी ऐसी बहुत सारी स्टोरीज होंगी, क्या हमें सुना सकती हैं ऐसी स्टोरी आप?
0: जी मैम, बिल्कुल सुना सकती हूँ। पटवाई तो हमारा सेंटर अभी 6-5 ईयर्स हो गए चलते हुए, और उसमें लगभग 1,000-1,200 लड़कियों ने वहां पर सीखा है, स्विमिंग, ब्यूटी और कंप्यूटर है और लाइब्रेरी भी है। तो कुछ लड़कियों की मैं स्टोरी बताऊंगी कि जैसे अभी हमारे पास लॉकडाउन में क्या हुआ कि कुछ बच्चे जूम ऐप के जरिए पढ़ नहीं पा रहे थे और मतलब पैसों से भी परेशान थे। तो अभी हमें दीदी दिया ने ऑनलाइन सेलिंग की एक ट्रेनिंग दी थी, सोशल मीडिया मार्केटिंग की और साइबर सेफ्टी की। तो वही ट्रेनिंग हमने ऑनलाइन के जरिए लड़कियों को दी, तो कंप्यूटर की लड़कियां हैं, सो इनकी लड़कियां हैं, ब्यूटी की लड़कियां हैं, क्योंकि साइबर सेफ्टी से भी बचना जरूरी है। और ऑनलाइन सेलिंग तो ऐसा प्लेटफॉर्म है कि घर पे रह के कोई भी लड़की कुछ भी अर्निंग कर सकती है। तो जब ये हमें ट्रेनिंग मिली तो हमें बहुत खुशी हुई और हमें लगा कि ऑनलाइन के जरिए भी हम लड़कियां आगे बढ़ सकती हैं। अभी लॉकडाउन में कोई घर से बाहर नहीं निकल रहा है, कोई नहीं जा पा रहा है, तो फर्स्ट लॉकडाउन जो लगा उसके बाद हमारे सेंटर खुले, उसमें हमने वो ट्रेनिंग दी। सेकेंड लॉकडाउन बाद में लगा था, तो कुछ लड़कियों को हमने जूम ऐप की ट्रेनिंग दी। जिस तरीके से हमारी रीड में ट्रेनिंग होती थी कि मीटिंग्स होती थी, वो लड़कियां वहां पर आके कंप्यूटर भी सीखती थी और वो देखती थी कि मैम आप ये ट्रेनिंग लेते हैं, ये ऑनलाइन आप फेस टू फेस कैसे बात करते हैं, कैसे ट्रेनिंग लेते हैं। तो हमने ऑनलाइन सेलिंग में ही उनको एक ये ट्रेनिंग दी कि किस तरीके से हम अपनी जीमेल आईडी बनाएं। उसके बाद हमारे पास अगर टच फोन है एंड्रॉइड का, तो हम किस तरीके से जूम ऐप के जरिए बच्चों को भी क्लासेस दे सकते हैं जो हमारे स्क्रीन गुड स्कूल में चल रहा है, और किस तरीके से हम खुद भी पढ़ाई अपनी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो लड़कियां बहुत खुश हुई क्योंकि कुछ लड़कियों की पढ़ाई बीच में ही रुक गई थी, वो नहीं पढ़ पा रही थी, वो अपने बुक से या फिर जो भी कॉपियां पहले की थी उससे पढ़ाई कर रही थी। जूम ऐप के बारे में उन लोगों को नहीं पता था। जब उनको इस जूम ऐप के बारे में पता चला तो धीरे धीरे हमने उनके घरों से उनके फोन मंगाए, मतलब पापा के या भाई के जो भी घर में फोन रहते थे, उनके पास तो नहीं थे, लेकिन हमने कहा कि आप 2 या 3 दिन के लिए हमारे सेंटर पे फोन लेकर आओ, हम वो जूम ऐप आपको डाउनलोड करके देंगे, आपको पूरी मीटिंग बताएंगे किस तरीके से लेंगी आप, और इससे आप अर्न भी कर सकते हो घर पर बैठ के। जो भी बच्चों की क्लासेस छूट रही है वो भी आप कंटिन्यू कर सकते हो, जो आपकी क्लास छूट रही है आप वो भी कंटिन्यू कर सकते हो। तो सारी ही लड़कियां अपने फादर, अपने भाई, अपनी मदर का फोन लेकर हमारे सेंटर पे आ गई। जब दूसरे दिन आई तो हमें लगा कि काफी इच्छुक हैं लड़कियां ये करने में, तो हमने उनकी सभी की जीमेल आईडी बनवाई और जूम ऐप के द्वारा ट्रेनिंग उनको बताया कि किस तरीके से हम लेते हैं। तो लड़कियां काफी खुश हुई। 10 दिन के अंदर अंदर उन्होंने एक बच्चों का ग्रुप बना लिया, पांच पांच बच्चों का, और उनको फीस रख दी 100 रुपए कि हम आपको ये ऑनलाइन क्लासेस देंगे। गांव की लड़कियां जो मतलब बच्चे जो थे सिर्फ फेस टू फेस पढ़ते थे, उनको ऑनलाइन का पता भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने हमारे वहां से जूम ऐप की ट्रेनिंग ली तो उन्होंने देखा कि स्क्रीन गुड स्कूल की भी क्लासेस ली जाती है, क्योंकि मैं उन्हीं के सामने देती थी वो क्लासेस। तो उन्होंने 100-100 रुपए बच्चों से कहा कि आप फीस दो और हम आपके ऑनलाइन के जरिए आपकी पढ़ाई करेंगे। कोरोना के टाइम आप कहीं जा नहीं पा रहे हो, आपकी पढ़ाई बीच में रुकी हुई है, तो जब उन्होंने अपने गांव में एक एक देश बनाया, हर लड़की ने पांच पांच चार चार लड़कियों बच्चों का या दो दो बच्चों का, वो 200 भी कमा रही हूँ तो उनके लिए बहुत है, वो फर्स्ट टाइम था उनका, वो बेज बनाया और उन्होंने उससे स्टार्टिंग कर दी। जब जूम ऐप से स्टार्टिंग कर दी तो जब वो अगले मंथ हमारे वहां आई ये सारी चीजें सीखकर और क्लासे लेके, तो बहुत खुश होकर आई और बोली मैम हमने तो अपनी क्लासेस इस पे स्टार्ट कर दी जूम ऐप के जरिए और हम बच्चों की क्लास ले रहे हैं, इस पे अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रहे हैं, जैसे लॉकडाउन में हमारी पढ़ाई छूट गई थी वो भी हमारी कंटिन्यू रहती है, लिंक भेज देती है मैम, और हम बच्चों की भी इसमें ट्यूशन जारी रखे हुए हैं, जिससे हमें 200, 300 या 500 के लगभग हम बच्चों को क्लास दे देते हैं। अब हमने उनको इसके साथ साथ ऑनलाइन सेलिंग के बारे में भी बताया कि आपके अंदर कोई भी हुनर है आप वो भी कर सकते हो, जैसे आप फेसबुक पे अगर आपके अंदर स्विंग का बहुत अच्छा आपको प्रोडक्ट बनाना आता है, वो सूट बना के आप सिर्फ अपने घर में टांगोगे तो आपके मोहल्ले वाले देखेंगे या आपके घर वाले देखेंगे या एक दो गांव के लोग और आ जाएंगे वो चीज देखने के लिए, लेकिन आप इसी चीज को फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी डालोगे तो पूरी दुनिया के लोग देखेंगे। अब आप इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे आप चैटिंग करते हो अपने रिश्तेदारों को, तो चैटिंग करते हो, हमने उन्हें बताया, बात करते हो, फेसबुक से अपने दोस्तों को बात करते हो, तो आप बात करते करते आप उसको अपना प्रोडक्ट भी भेजो कि हम तो ये बहुत अच्छी कुर्ती बनानी आती है या हमें सूट आता है, आप हमारे सूट भी देखो, वो अपने आगे और दोस्तों को भेजेगा, वो दोस्त उसके आगे को भेजेगा, तो इससे आपकी अर्निंग भी शुरू होगी और अपना काम आप स्टार्ट कर सकोगे। तो कुछ लड़कियों ने ये करना भी स्टार्ट किया था, लेकिन उनको पैसे लेन देन में भी थोड़ी ज्यादा वो आई थी कि दिक्कत की कैसे ले, क्योंकि उन्हें गूगल पे का पता नहीं था, तो हमने धीरे धीरे उन्हें गूगल पे के बारे में बताया। अधिकतर लड़कियां जो पटवाई में हैं वो इतनी मतलब मेहनती हैं, एक जो हमारे यहाँ ये जो चुन्नी होती है माता की, वो चुन्नी बनने के लिए आती है, तो वो जो 1 रुपया 1.5 रुपया, तो दिन भर में लड़कियां 10 या 15 या 20 वो चुन्नियां निकाल लेती है उससे। तो एक लड़कियों ने ग्रुप बनाया और वो उन चुन्नी वाले अंकल से रामपुर में आई, बात करके गई और हम मेरे साथ ही गई, मतलब हमें किसी ने बताया था कि वो चुन्नी वहां वहां से लेनी है, तो हमने लड़कियों का ग्रुप बनाया कि ये काम स्टार्ट करके देखते हैं, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, आप घर भी ले जाना और सेंटर पे भी करेंगे। तो लड़कियों ने जब ग्रुप बनाया और हम लोग तब बस से रामपुर आए, रामपुर से हमने उन भैया से बात करी उस चुन्नी के लिए, तो उन्होंने बोला आप जितनी सिलवा सकते हो सिलवाओ और हमारे यहाँ से ये चुन्नी ले जाओ, तो उन्होंने हमें 500 चुन्नियां दी। वो 500 चुन्नियां लड़के हमारे पास पहुंचती और हमने आपस में 20 20 30 30 चुन्नी बांटी। लड़कियों ने एक हफ्ते के अंदर अंदर वो चुन्नियां तैयार भी कर दी मैम। और आज की कंडीशन है, लड़कियां खुद जाके वो चुन्नियां ला रही हैं माता रानी की, खुद सिलती हैं, खुद उनको देती हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उनकी 1000 1500 ज्यादा तो नहीं हो पाती है, उससे वो अपनी कमाई कर रही है। तो पटवाई सेंटर में लड़कियों के आने के बाद उनका जो कॉन्फिडेंस लेवल है और जो बात करने का तरीका है, जब वो आती है तो उनके अंदर कुछ भी नहीं, उन्हें ये भी नहीं होता हमें बस सिलाई सीखनी है। हम पूछते हैं आप आगे क्या करना चाहती हो, मैम सिलाई सीखना है, उसके बाद हम अपने घर में करेंगे। उसके बाद मतलब मैंने उनसे पूछते पूछते हम लोग थक जाते हैं, आगे क्या सोचा है लाइफ में, तो वो कुछ नहीं बता पाती है। फिर हमें उन्हें बीच बीच में ट्रेनिंग देनी पड़ती है, जैसे लाइफ स्किल है, लीडरशिप की है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की है, आर्ट थेरेपी की है। तो हम उनको वो उनकी जो अंदर का जज्बा है ना वो बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, और वो निकल के भी आता है। आज भी 1000 है हमारे वहां जो सीखी हुई है, 1000 में से हम सीना चौड़ा करके और मतलब पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि 300 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 500 लड़कियां आगे बढ़ गई हैं, 300 ऐसी हैं जो मार्केट से भी काम लाके चाहे छोटा सा ही कर रही है वो कर रही है, और 500 ऐसी हैं जो अपने घर बैठ के ही सिलाई कर रही है, बट कुछ ना कुछ कर रही है, उनके अंदर जज्बा निकल के आया है कुछ करने का।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया फरा, आपकी आपकी स्टोरी सुन के और आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के मुझे ऐसे लगता है कि आप इतनी खुश होती हैं उसका आउटकम बयान करके कि आपकी मेहनत कैसे रंग ला रही है। और अभिदा, आपने जो 400 लड़कियों को और उससे भी ज़्यादा लड़कियों को सिलाई सिखाई है, तो वो भी ऑनलाइन बिजनेस कर रही हैं क्योंकि उनके जो फैमिली है उनको घर से बाहर तो जाने नहीं देती है। तो सीखने के बाद जो फरह ने बताया है वो आपके एरिया में भी अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, लड़कियां बहुत आगे बढ़ सकती हैं, अपने डिजाइन्स को प्रमोट कर सकती हैं। तो क्या अभी ऐसी कुछ शुरुआत हुई है या नहीं हुई?
0: जी मैम, मैं हमारे सेंटर में 10-12 लड़कियों ने ग्रुप कराया था जिसमें हमने प्रोडक्शन तैयार किए थे। लड़कियों ने आपस में ये ग्रुप बनाकर उसमें पैसे जमा किए और फैब्रिक लेकर आए, लेस वगैरह लेकर आए, और मैंने उनकी हेल्प की डिजाइन करने में। लड़कियों ने कुर्तियां डिजाइन की, प्लाजो दुपट्टे वगैरह डिजाइन किए, तो उन्होंने ऑनलाइन के जरिए अपने प्रोडक्ट सेल भी किए हैं काफी लड़कियों ने, और अभी कर भी रही हैं। उनको काफी अर्निंग भी हुई अच्छे से और लड़कियों को कॉन्फिडेंस काफी बढ़ा। एक दो लड़कियां ऐसी थी जिनकी शादी फिक्स हो गई थी और वो करना नहीं चाहती थी, उन्होंने मुझसे बात की कि मैम हम आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, लेकिन घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने उनके पेरेंट्स से बात की, जब आपके बच्चों ने इतनी अच्छी ट्रेनिंग ली है, सिलाई के साथ साथ ऑनलाइन ट्रेनिंग ली है, तो आप घर में घर से नहीं निकलने दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप घर के अंदर ही अपनी लड़कियों को सपोर्ट कीजिए। तो घर वालों ने उनको सपोर्ट किया, लड़कियों ने बस हफ्ते में एक दो बार मेरे पास आ जाया करती थी ताकि मैं उनके हेल्प कर दूँ। उन्होंने घर से ही काफी प्रोडक्ट बनाए और सेल करे, और अभी भी लड़कियां कर रही हैं, काफी लड़कियां कर रही
1: वेरी गुड, बहुत
0: हैं।
1: अच्छी बात है। और मैं फरह को बोलूंगी कि अबिदा के साथ मिलके यहाँ भी ग्रुप्स बनाए और लड़कियों को ऑनलाइन सेलिंग की ट्रेनिंग दे, बिकॉज ये हमारा कोर है। कोर इसलिए मैं बोलूंगी कि रीड इंडिया का मॉडल ऐसे ही है कि हर लड़की को सक्षम बनाना, हर लड़की को बताना कि वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो सकती है, और होलिस्टिक डेवलपमेंट। जब हम होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात करते हैं तो उसकी एजुकेशन में कैसे वो आगे बढ़ सकती है, अपने हुनर को कैसे आगे लेके जा सकती है, अपनी इज्जत कैसे कमा सकती है समाज में, फैमिली में, और सोशल मीडिया अब हमारे लिए एक कंपल्शन बन गई है, बिकॉज कोविड ने हमें सोशल मीडिया के बारे में भी कंपेल कर दिया है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू कैसे लोगों तक पहुंच सकते हैं और लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और इसके बारे में भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो मैं बोलूँगी कि हम बहुत सारे ऐसे ग्रुप बनाएं और उनको हम सपोर्ट करें काम करने के लिए, और हम एक इतना बड़ा कलेक्टिव एंटरप्राइज खड़ा कर दें रामपुर एरिया में कि सब लड़कियां मिलके इसको आगे लेके जाएं। और रीड इंडिया की गुड विशेस भी हैं, और रीड इंडिया अभी कंटिन्यू कर रहा है प्रोग्राम, और इस थोड़ी सी ड्यूरेशन के अंतर्गत मिलके हम कैसे एक बड़ा उद्योग शुरू कर सकते हैं, ये आप अपनी सोच बनाइए और बहुत सारी लड़कियों को उसके साथ जोड़िए, तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा, और आपके अंदर जो जज्बा है वो जज्बा भी आगे बढ़ने के लिए आपको प्रोत्साहित करेगा। मैं अभी थोड़ा सा टॉपिक ट्विस्ट कर रही हूँ क्योंकि हम जब बात कर रहे हैं सिलाई की और कैसे हम अच्छे अच्छे डिजाइन बना सकते हैं या कुछ, क्या कभी आपको ऐसे लगा है कि अच्छे डिजाइन्स की कमी है और आप हमें बताएं? और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहूंगी कि किस तरह के वहाँ पे डिमांड आती है ड्रेसेस की या कुर्तीज की, या किस तरह के कपड़े वहाँ पे लोग पसंद करते हैं, क्योंकि उस तरीके की सिलाई आना भी बहुत ज़रूरी है। और क्या वो जो डिमांड है आबिदा और फर्रा उसको पूरा कर पा रहे हैं या उनको कोई चैलेंजेस फेस होते हैं?
0: यहाँ पर जो डिमांड है मैम, ज्यादातर प्लाजो कुर्ती की ज्यादातर डिमांड आती है लड़कियों के लिए और गरारों की। कि पार्टी वियर में अगर वो जाती हैं तो वो गरारे बहुत ज्यादा चल रहे हैं यहाँ पर, और अगर वो सिंपल घर में भी पहन रही हैं तो प्लाजो। प्लाजो और गरारे बहुत यहाँ पर चल रहे हैं, बट हमारे वहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ टीचर बहुत ही मतलब अच्छी हैं और इनको सारी ही चीजें आती हैं। हमें कभी ऐसा नहीं हुआ है कि मार्केट से कुछ स्विंग करवाना हो या फिर कोई स्विंग के लिए यहाँ पर लेकर भी आता है तो हमें वापस भेजना हो, क्योंकि हमारी जो टेलर हैं और जो भी हमारी आबिदा स्विंग टीचर हैं बहुत अच्छे से उनको मैनेज करती हैं, और पटवाई में भी फातिमा है। और जो चीज उन्हें नहीं आती है वो उसकी ट्रेनिंग लेने की भी कोशिश करती हैं। जैसे यूट्यूब पे हमारा बहुत अच्छा है कि हम कभी भी यूट्यूब पे कुछ भी डाल के देख सकते हैं। हमने इन्हें यही बताया है कि कभी भी उस चीज के लिए ना नहीं करो। अगर हमारे यहाँ कोई गेस्ट आया है या फिर कोई भी चीज स्विंग के लिए आया है या फिर कोई सिलवाने के लिए आया है तो उसको ना नहीं करना है। चाहे भले ही आपको नहीं आता हो तो उसकी ट्रेनिंग लो, उससे मतलब सोचो कि हमें कैसे करना है। आज आप एक को मना करोगे, कल फिर दो नहीं आएंगे, तीन नहीं आएंगे, इससे हमें बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो चाहे आप उसकी ट्रेनिंग लो या आगे बढ़ो या फिर आपके अंदर जो भी कमी है उसको पूरा करो, हमारे वहां जो भी आए गेस्ट उसको मना नहीं करो, जाना नहीं चाहिए यहाँ से।
1: बहुत
0: जी मैम,
1: बढ़िया फरा, आपने बताया कि ये भी एक नेटवर्क बनाने का टेक्निक है कि किसी को मना नहीं करना है, और हमारा इसी तरीके से नेटवर्क भी बढ़ता है। अभी तक आपने लड़कियों को क्या-क्या सिखाया है, थोड़ा उसके बारे में भी बताएंगे?
0: पहले मैं शुरुआत बेबी फ्रॉक से करवाती हूँ। बेबी फ्रॉक वगैरह अच्छे से कंप्लीट हो जाते हैं, फिर उसके बाद कुर्ती सलवार और डिजाइनिंग, फिर उसके बाद डिजाइनिंग नेक वगैरह। ये काफी पसंद है यहाँ पर, काफी डिमांड आती है इस चीज की। लड़कियाँ बस यही कहती है मैम हमें सिलाई के बाद अच्छे से हमें नेक डिजाइन सिखाइए। नेक डिजाइन लड़कियों को काफी पसंद आते हैं, और ब्लाउज पेटीकोट परारे और पटियाला सलवार, ट्यूलिप सलवार, धोती सलवार, और यही सारा कुछ। साड़ी में फॉल लगाना, ब्लाउज वगैरह करना और लहंगा और शादियों के गरारे और चुनिया तैयार करना, ये सब हम सिखाते हैं।
1: वेरी नाइस। तो आपने पूरा ही एक कोई ऐसी चीज छोड़ी नहीं जो नहीं सिखाई, मेरा ये कहने का मतलब है,
0: जी
1: और बहुत अच्छे से सिखाई है। और क्या
0: जी
1: हम जरी जरदोजी को और सिलाई को मिक्स करके बना सकते हैं कुछ ऐसे ड्रेसेस, या आप ऑलरेडी बना रही हैं?
0: जैसे अभी जरी वर्क के हमने कुशन्स कवर बनाए थे तो स्विंग इन लोगों ने ही की थी, और अभी जैसे कुर्तियां मैंने भेजी थी ऑफिस में तो जो मैंने जरी वर्क का करवाया तो स्विंग इन्होंने की। बट ये हो जाता है कि हम लोग यहाँ से जरी वर्क करवा रहे हैं और ये लोग हमें स्विंग करके देते हैं।
1: वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो एक तालमेल बैठता है। जरी वर्क जो है, आप तो शादी के लहंगे से लेके बहुत भारी दुपट्टे से लेके एक नेक लाइन पे भी जरी करते हैं, ये जो आर्ट है ये बहुत कमाल का है, और इसको भी हम सोशल मीडिया के थ्रू प्रमोट कर सकते हैं। क्योंकि जो लहंगे, जहाँ तक मुझे पता है, जो भी करोल बाग में या चांदनी चौक में लहंगे मिलते हैं वो सारे ज्यादातर रामपुर से भी बनकर आते हैं, और लड़कियां बहुत इसमें अपना कौशल दिखाती हैं कि कैसे अच्छे बना सकते हैं। और जो दुपट्टे बनाती हैं आप, जाल वाले दुपट्टे या बॉर्डर वाले दुपट्टे, या अलग से बॉर्डर भी डिजाइन कर देती हैं, और ऐसे गले में भी काट देती हैं डिजाइन थोड़ा सा करके, तो ये जो हुनर है इसको बहुत आगे जाने की जरूरत है। और कैसे हम इसको आगे लेके जाएं, ये एक टीम वर्क होता है। जैसे अबिदा है, फरा है, अकबर है, और भी बहुत सारा एक टीम है आपके पास, इसको आप आगे ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, सोचें कैसे करेंगे। तो तो फिर पीछे मुड़ के देखने की कभी भी आपको अपनी जिंदगी में जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये काम तो कभी भी बंद होने वाला नहीं है। अभी ये हमारा पुश्तों से चलता आ रहा है, आज आप कर रही हैं और आगे भी इसको ले जाने वाले बहुत आपको मिल जाएंगे। तो इसको आप बनाए रखिए, आगे लेके जाइए। और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट रीड मॉडल का एक कंपोनेंट है वो एजुकेशन। अभी अबिदा ने भी बोला, फरा ने भी बोला, अबिदा ने भी अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करी, फरा ने भी कंटिन्यू करी, ये हमें पता। और आपने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स भी दिए कि लड़कियां अपनी फीस खुद भर के अपनी एजुकेशन को आगे लेके जा रही हैं। पर एक बात का ध्यान आप रख भी रही हैं और आगे भी रखेंगी कि जितनी भी लड़कियां यहाँ पे आके स्किल्स की ट्रेनिंग लेती हैं वो अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी और अपने बच्चों की पढ़ाई भी कंटिन्यू करेंगी, क्योंकि आने वाले समय में एजुकेशन की डिग्री तो चाहिए चाहिए, पर डिजिटल वर्ल्ड में डिजिटल लिटरेसी भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और जिसको कंप्यूटर या लैपटॉप या फोन, एंड्रॉयड फोन चलाना नहीं आता है वो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम पे पिछड़ जाएगा। और उसकी भी हम बहुत सारी ट्रेनिंग्स आपके यहाँ पे कर रहे हैं, उसके बारे में थोड़ा बताएं कि उस ट्रेनिंग में कितने लोगों का इंटरेस्ट है, रुझान है, और कैसे हम इसको स्केल कर सकते हैं इस ट्रेनिंग।
0: ऑनलाइन वाली ट्रेनिंग को ना मैम,
1: ऑनलाइन ट्रेनिंग को टेक्नोलॉजी की, कंप्यूटर सीखना, लैपटॉप में सीखना, काम करना, इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना और आगे बिजनेस को भी लेके जाना, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो एक टूल है और उस टूल को हम कैसे यूज करें जिससे हम अपनी बात भी रख सकें, जैसे ऑडियो विजुअल की ट्रेनिंग है, लैपटॉप को यूज कर सकें आगे एजुकेशन और ट्रेनिंग करने के लिए, कैसे सोशल मीडिया को यूज कर सकें फोन के द्वारा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है इन सब चीजों का और आपके हुनर का तालमेल बैठना आने वाले समय में बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें नहीं पता था कोविड आ जाएगा और हम पीछे रह जाएंगे। और जो 2 साल हम पीछे रह गए हैं उस 2 साल की जो टाइम है उसको भी पूरा करने की बहुत जरूरत है, तो डबल मेहनत करने की जरूरत है। तो वो मैं जानना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी में कितना रुझान है लोगों का।
0: टेक्नोलॉजी में मैम ज्यादातर रुझाव नहीं दिखा पाती हैं लड़कियां, उनको बहुत समझाना पड़ता है। ज्यादातर वो सोचती हैं कि हमें स्विंग आ जाए तो हम अपने घर पे बैठ के सिलाई करते रहें, जो भी हमें 100-200 रुपए घर के आस पड़ोस के कपड़े आ जाएं या फिर थोड़े से गांव के दूर के आ जाएं, हम यहीं पर करते रहें। बट जब उनसे बात करते हैं कि हम इस चीज से बहुत आगे तक जा सकते हैं, आप ये सूट सिल के आपके घर में ही मतलब 2-3 लोगों को अर्न कर सकती हो, यही आप अगर टेक्नोलॉजी के जरिए बेचेंगी तो दिन में 10 सूट, 15 सूट, 20 सूट, 50 सूट, जब आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगी तो 100 सूट भी बेच सकती हैं। तो हमें उन्हें बहुत ज्यादा समझाना पड़ता है और उनसे कहना पड़ता है कि इसमें ज्यादा रुचि मतलब अपनी लगाइए। और जैसे ही अभी लॉकडाउन में सारी चीजें आप लोग फ्लिपकार्ट से मंगा रहे थे, हमें उनसे ये भी बताना पड़ता है, हम किसी दुकान पे भी नहीं जा पा रहे थे कोई भी चीज लेने के लिए, तो हमें क्या याद आ रहा था, सिर्फ ऑनलाइन की हर चीज याद आ रही थी कि हमारे पास क्रीम नहीं है तो हम ऑनलाइन पे कर दें, या फिर हमारे फोन में बैलेंस खत्म हो गया तो हम ऑनलाइन पे करेंगे, या फिर हमें घर में कोई भी खान पीने की चीज चाहिए तो हम ऑनलाइन मंगाएंगे। तो हर चीज का जरिया कहाँ था, ऑनलाइन। अगर ऑनलाइन वाले ये सोचते कि हम नहीं आगे बढ़ पाएंगे तो हमारे पास कोई जरिया नहीं रहता और वो ऑनलाइन जो हम मंगा रहे थे वो भी नहीं मंगा पाते। तो हम हर लड़की को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आपके अंदर इतना अच्छा हुनर है, इतना अच्छा काम है, तो आप बस सिर्फ इसको आगे बढ़ाइए, अपने चाहे फोन से बढ़ाइए। कंप्यूटर है यहाँ पर, रीड इंडिया ने इतने सारे कंप्यूटर लैपटॉप दे रखे हैं, आपको सिखाया भी है कि किस तरीके से हम टेलिंग कर रहे हैं, हम सब आपके साथ भी हैं। तो बस हमें बहुत ज्यादा उन्हें यही समझाना पड़ता है कि इसमें आइए। वो ऑनलाइन पे आने में बहुत ज्यादा घबराते हैं, आते हैं बहुत कम रुचि दिखाते हैं।
1: पर फरा, अगर हम अगले 6 महीने इसके ऊपर फोकस करें और मेहनत करें, और मुझे लगता है कि जब आपने इतने पड़ाव पार कर लिए और ये पड़ाव कोई आपके लिए मुश्किल नहीं है, आप जरूर कर पाएंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अभिदा, थोड़ा सा मैं ये भी जानना चाहूंगी कि आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचती हैं, कि आपको अपनी लाइफ में क्या करना है। फरा का फ्यूचर तो हमें पता है कि फरा अब पीछे मुड़ के नहीं देखेगी। फरा के प्लान्स, फरा के थॉट्स बहुत क्लियर हैं। और आज मेरे को ये कहते हुए भी खुशी होती है कि फरा हमसे भी आगे निकल गई है। और फरा इसके लिए मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस देती हूँ। और अमिता, आपके क्या प्लान्स हैं?
0: मेरे प्लान यही है कि मैं आगे और आगे बढ़ूं। अभी मैं कुछ भी नहीं हूँ, जो हूँ रीट के जरिए हूँ और मैं रीट के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि रीट इंडिया जैसे मेरा परिवार है, मुझे सपोर्ट किया हर तरीके से, ऐसे ही मुझे रीट इंडिया हमेशा सपोर्ट करे और मैं रीट इंडिया के साथ ही जुड़ा रहना चाहती हूँ। मैं पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहती। मेरी शादी फिक्स हो गई थी लेकिन मैंने खुद से फैसला किया घर वालों से कि मुझे अभी शादी नहीं करना है, मुझे अभी आगे और बहुत कुछ करना है और अपना नाम अच्छी तरीके से रोशन करना है। जैसे मुझे मेरा यहाँ मोहल्ला और पड़ोस जानता है, मैं चाहती हूँ कि पूरा शहर मुझे अच्छे से जाने। और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे बुलंदियों तक पहुंचूँ और रील इंडिया का नाम रोशन करूँ और अपने ख्वाब पूरे करूँ, अपने और अपने घर वालों।
1: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया अबिदा। मैं थोड़ा सा इधर अगर बात करूं तो यूएन ने कुछ गोल्स डिफाइन करे हुए हैं जिसको हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का मतलब ये है कि हम इस तरीके से आगे बढ़ें कि हमारे प्रोग्राम्स सस्टेन हो जाएं। जैसे एजुकेशन है, आप एजुकेशन पे बहुत मेहनत कर रहे हैं। वुमेन एम्पावरमेंट है, आप तो रोल मॉडल हैं वुमेन एम्पावरमेंट की। जब लाइवलीहुड की बात करते हैं तो लाइवलीहुड आप बहुत आगे लेके जा चुकी हैं। देखिए, अगर हम गांव की स्थिति को गांव से ही कंपेयर करें तो आप एक बहुत अच्छे मकाम पे पहुंच चुकी हैं। कभी भी आंकड़ों को अर्बन और रूरल से जब हम कंपेयर करते हैं, वो रिसर्च के लिए होता है कि कैसे हम और डेवलप कर सकते हैं। बट अगर हम गांव के आंकड़े गांव के लेवल तक ही एनालाइज करें तो अगर आप 3,000 या 5,000 या 10,000 कमा रहे हैं तो बहुत बढ़िया कमाई है। इसको आप कभी भी शहर की कमाई के साथ कंपेयर नहीं करिएगा, नहीं तो आपके माइंड में हमेशा यही रहेगा कि हम कुछ भी नहीं हैं। आप बहुत कुछ हैं, बहुत कुछ कर रही हैं और आगे बहुत कुछ करने का जज्बा भी रखती हैं। और जो मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, आप नोइंगली अननोइंगली उनको ग्रास रूट्स पे इस तरीके से एड्रेस कर रही हैं कि डेवलपमेंट है जो वो रूट से हो रही है। और जब रूट मजबूत होती है तो उसको कोई भी उखाड़ के फेंक नहीं सकता उस पेड़ को, और उस पेड़ पे फल लगने ही लगने हैं। और उस फलों का जो जो उसका फायदा है वो बहुत सारे लोग जो जिसको हम समाज कहते हैं, जिसको हम सोसाइटी कहते हैं, वो उनसे कलेक्टिव फायदा उठाते हैं। तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और आपको सैल्यूट भी करूंगी कि आपने अपनी लाइफ में जिस तरीके से मेहनत की, जैसे मेहनत करके अपने सरकमस्टांसेस से आप बाहर आई, ऐसे आगे चल के बहुत सारी औरतों को सिखाएं और बहुत सारी औरतों को अपने साथ जोड़ें, उनके बच्चों को पढ़ाएं, उनको बताएं कि आने वाले टाइम पे एजुकेशन भी बहुत बहुत ज़रूरी है। जो चैलेंजेस आपने अपनी लाइफ में फेस करे हैं, आने वाली जनरेशन उन चैलेंजेस को फेस नहीं करे। तो इसी मैसेज से मैं इस कार्यक्रम को कंक्लूड करना चाहूँगी। थैंक यू सो मच।
0: थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।

ये सेशन हमें जागरूक करता है कि हमें अपने लाइफ को कैसे एक डायरेक्शन देनी है, और वो डायरेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। और एक बार हमें आदत पड़ जाएगी छोटे छोटे स्टेप्स लेके, अगर हम उस डायरेक्शन पे चलना शुरू कर देंगे, तो मुझे लगता है हमारी हमारी जिंदगी तो सुधरेगी सुधरेगी, उसके साथ जो आसपास लोग हैं हमारे, उनकी जिंदगी भी बहुत अच्छी हो जाएगी, सुधर जाएगी। और मैं बहुत ज्यादा कोई टॉपिक्स जो चुनती हूँ, मैं किसी बुक से या बहुत हाई लेवल की बात नहीं करती हूँ। ये जो सेशन है मेयरली है कि हम एक कन्वर्सेशन मोड पे आए और हम अपनी जिंदगी को पहचाने और अपनी जिंदगी में सुधार लाएं, और उसी से जो आउटकम है, जो इसका निचोड़ है, वो लीडर है, कि हम अपनी जिंदगी में लीडर बने। लीडर का रोल मैंने बहुत पहले भी बताया था, लीडर और मैनेजर में बहुत फर्क होता है। मैनेजर क्या करता है कि एक टर्म डिक्टेट कर देता कि आपको 10 बच्चों को पढ़ाना है, बस पढ़ा के मेरे को बता दो आपने 10 बच्चों को पढ़ा दिया। पर क्या आपको पढ़ाना आता है? आप किस तरीके से पढ़ाएंगे? आप क्या क्या टॉपिक्स कवर करेंगे? आपको कोई इनहिबिशंस हैं? आपको क्या सामान चाहिए पढ़ाने के लिए? आप किन लोगों को पढ़ाना चाहते हैं? वो लोग क्या अपनी जिंदगी में करेंगे? ये सारी बातें अगर हम समझते हैं और अगर हम पूछते हैं, तो जो मेंटरशिप होती है, जो लीडरशिप होती है, उसका रिजल्ट कुछ और आता है। तो जितने भी लोग इस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, कुछ लोग तो जानते हैं कि रीट इंडिया का वर्किंग पैटर्न क्या है और हम कैसे काम करते हैं। हमने कभी भी वर्किंग पैटर्न में डिक्टेटरशिप नहीं लाया है कि हम डिक्टेट नहीं करते हैं। हम आपको बताते हैं कि ये काम हमें करना है और ये काम हमें आपके सपोर्ट से करना है, और वो सपोर्ट हमें प्रोवाइड करेंगे। बिकॉज आप इस चीज को समझिए, हम लोग हेड ऑफिस में बैठे हैं और आप लोग सेंटर्स में हैं। हम कनेक्शन करते हैं जो हमें फंडिंग देते हैं, हम उनको बताते हैं कि हम ये काम करवाएंगे, वो फिर हम आप लोगों को कहते हैं करने के लिए। और अगर हम खाली कह के छोड़ देंगे, उस काम का रिजल्ट नहीं आएगा। जब हम आपको छोटी से छोटी चीज, बड़ी से बड़ी चीज का ज्ञान देते हैं, समझाते हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपकी अंदर से जिज्ञासा बढ़ती है कि हाँ मैं कर सकता हूँ। तो कॉन्फिडेंस के साथ आपका क्या जुड़ता है? एक्शन, है ना? जैसे आपके दिल में एक बात आई कि हाँ रीट इंडिया ने बोला है कि 25 लोगों को कंप्यूटर सिखाना है, राइट? अब कंप्यूटर में क्या सिखाना है वो भी रीट इंडिया ने बता दिया, कंप्यूटर्स भी रीट इंडिया ने दे दिए, और लेसन प्लान्स भी दे दिए, प्री असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए, पोस्ट असेसमेंट फॉर्म्स भी दे दिए। पर उस जो सोच है, जो आपके दिल में है, जो आपके हार्ट में है, उसको एक्शन में कौन उतार रहे? आप लोग उतार रहे हैं ना? जब आप उसको एक्शन में उतार रहे हैं, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जो आपके दिल में है, उसको जब आप एक्शन में उतार रहे हैं, तो उनका 100% सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हाँ कह दिया हेड ऑफिस ने, वो लोग तो वहां बैठे हैं, यहाँ पे हमें ऑर्डर दे देते हैं ऐसे करने के लिए। नहीं, आपको ये प्रिविलेज समझना चाहिए कि हेड ऑफिस की मजबूरी है, वो हर समय आके यहाँ पे नहीं हमारे साथ बैठ सकते, तो वो हमें इतनी इम्पोर्टेंस दे रहे हैं कि आप हमारे बिहाफ पे ट्रेनिंग्स करिए, आप हमारे बिहाफ पे लोगों को सक्षम करिए। तो हमने क्या किया, रीट इंडिया ने आप लोगों को एक हायर पेडेस्टल पे रखा। एम आई राइट? आप समझ रहे हैं? ये हमारी सोच है,
जो आपको समझना, आपको इम्बाइब करना, आपको हमारे साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है, और आप में लीडरशिप क्वालिटीज लाने के लिए भी बहुत जरूरी है ये। तो आपको हमने कैसे पेडेस्टल पे खड़ा कर दिया, जहां पे आप एक हायर लेवल पे आ गए हैं, कि आपको एक अपॉर्चुनिटी दी गई है दूसरों को सक्षम करने की। अब हम खाली अगर यही सोचे, छोटी सोच रखे कि हाँ भाई 2 घंटे सिखाना सिखा देंगे, सीखा नहीं सीखा बात तो एक ही है, नाम तो चला ही गया, रजिस्ट्रेशन तो हो गई, ये एक सोच है। दूसरी सोच क्या है, नहीं मुझे हेड ऑफिस से ये मैसेज आया है कि मुझे इन लोगों को सिखाना है, और मैं अपनी पूरी डेडिकेशन से, अपने हार्ट और अपने एक्शन को इतना जबरदस्त सिंक्रोनाइज कर लूं कि क्योंकि मुझे रिजल्ट दिखाना है। रिजल्ट खाली हेड ऑफिस को नहीं दिखाना है, ये आप मिथ से निकल जाएं। हेड ऑफिस तो कर लेगा अपने आप, क्योंकि हेड ऑफिस ने फंड रेज करा है तो वो करेगा ही करेगा, उसकी अपनी लेवल की कमिटमेंट है। आपकी कमिटमेंट क्या है, आपकी पहचान क्या है, समुदाय की, लोग आपके बारे में आपको पहचानेंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपके दिल के साथ जुड़ेंगे, आपकी क्षमता को पहचानेंगे, और 10 लोगों के बीच में खड़े होके आपको सलाम करेंगे, तो आपकी इज्जत बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। आप इस तरीके से इन सब चीजों को सोचिए। जिस जो लोग मेरे इस थॉट प्रोसेस से सहमत है, प्लीज आप चैट में यस लिख दीजिए फटाफट, नहीं तो मुझे लगेगा कि मैं खाली भाषण दे रही हूँ, मैं लीडरशिप का सेशन नहीं ले रही हूँ। आप सहमत हैं जो मैंने कहा है, डिफरेंस आप समझते हैं जो मैं कह रही हूँ, क्योंकि आप रीड इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। रीड इंडिया में अगर आप, मैं लीडर हूँ, मेरा नाम गीता है, तो गीता की पर्सनालिटी के साथ आपको सिंक्रोनाइज होना है। गीता के दिल में क्या है, स्मिता के दिल में क्या है, रीड की टीम के दिल में क्या है, उसके साथ सिंक्रोनाइज होके जब आप बात करेंगे कम्युनिटी में, तो ये तो हम आपको अपने लेवल से ऊपर उठा के बोल रहे हैं ना, हमारी तो मजबूरी है। अब मैं देख रही हूँ, अगर आप इतनी इतनी दूर से दयाराम लिख रहे हैं यस मैम, तो दयाराम तो बारन में है, अब मैं तो ट्रेनिंग देने बारन में नहीं जा सकती, या मेरी टीम तो नहीं जा सकती है ना। तो हमने आपको एक हायर पेडेस्टल दे दिया, कि हमने इतना विश्वास आपके ऊपर जमा लिया कि यस हमारी टीम कर सकती है, और हम आपके गुण गाते हैं डोनर के सामने, बोलते हैं कि नहीं हमारी टीम इतनी स्ट्रांग है कि हम जो भी उनको बोल रहे हैं वो करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप में लीडरशिप क्वालिटीज इनकलकेट कर दी। और आप लोग, जब मैं आपको प्लेटफॉर्म देती हूँ, मैं सबको तो नहीं देती हूँ, जो यहाँ पे आते हैं, या जब भी मैं सेंटर में जाती हूँ, और जब मैं आपकी आवाज सुनती हूँ, आपका जोश देखती हूँ, आपकी कमिटमेंट देखती हूँ, एंड दैट इज सच ए फुलफिलिंग मोमेंट फॉर मी टू नो दैट देयर आर लीडर्स इन द विलेजेस हु आर ट्रांसफॉर्मिंग। हम एक दूसरी स्टेटमेंट अभी लिखते हैं हर एक जगह पे, बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज, मतलब कि हम एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथन समाज बना रहे हैं अपने इंटरवेंशंस के द्वारा। पर जब ये स्टेटमेंट लिखने के लिए अगर हमारा पीछे काम ही नहीं है, तो हम कैसे लिखेंगे, आप बताओ। और काम कौन कर रहा है, आप लोग कर रहे हो। आपके बिहाफ पे मैं लिखती हूँ कि रीड इंडिया इज कमिटेड फॉर बिल्डिंग रेजिलियंट कम्युनिटीज। ये सेंटेंस इतना पावरफुल है, हमारे हर एक पेज पे टैगलाइन जाती है इस चीज की, मैं किसके बिहाफ पे लिख रहे हूँ, क्योंकि मेरा इतना स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट है आप लोगों के ऊपर कि हम हमारे बिहाफ पे आप सेंटर्स में काम कर। एम आई राइट? यहां तक किसी का कोई कोई डाउट, कोई प्रश्न हो तो प्लीज पूछ सकते हैं, मैं फिर आगे चलती हूँ। ठीक है, मैं आगे चलूँ, कोई एक अपना
ऑन करके बोल सकते हैं कि यस मैम यू कैन।

0: प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। मैं ठीक बोल रही हूँ ना? जब हम एक सुप्रीम नोबिलिटी पे आ जाते हैं तो हमारे में हम्बलनेस आ जाती है, और जब हमारे में हम्बलनेस आती है तो हम समाज में काम करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। हम बोलते हैं ना, कई बार आप सुनते होंगे ये स्टेटमेंट्स कि ये बंदा बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, ये तो बस अपने बारे में ही सोचता है, दूसरों के बारे में नहीं सोचता। किसी और को हम कहते हैं कि ही इज सो मच आउट गोइंग, वो तो दूसरों के बारे में ही हमेशा सोचता रहता है और दूसरों के बारे में ही करता है हर कुछ, जो भी करता है दूसरों के लिए करता है, दूसरों के लिए सोचता है। तो मैं आप लोगों को सबको सेकेंड लेवल पे देखती हूँ, मतलब क्या विजुअलाइज दैट यू पीपल आर एट द सेकेंड लेवल, क्योंकि आप में सुप्रीम नोबिलिटी है, आप नोबल हैं, आप दूसरों के बारे में सोचते हैं। ये लीडरशिप का बहुत ही इम्पोर्टेंट करेक्टर है, ठीक है? तो आप नोबल हैं, आप बहुत ही ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं क्योंकि आपको हैबिट पड़ गई है। ये प्रोग्राम्स मैं आज आपकी पर्सनालिटी आपके सामने रख रही हूँ, आपको आदत पड़ गई है सोचने की हमेशा दूसरों के बारे में। आप दूसरों के बारे में क्या कर सकते हैं, उनको किस लेवल तक ला सकते हैं, तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। तीसरा, आपका ये सब करने के बाद आप में एक स्ट्रेंथ बिल्ड होती है। क्या आती है? एक आत्मविश्वास आता है कि यस आई कैन डू। ये जब आत्मविश्वास आता है आप में तो नोबलनेस और स्ट्रेंथन हो जाती है और स्ट्रांग हो जाती है, क्योंकि आप तो आपके दिल में ये भी ख्याल आता होगा कि मैं तो दूसरों के लिए ही हूँ, मैं तो दूसरों के लिए ही भगवान ने मुझे इस धरती पर उतारा है और मैं दूसरों के लिए काम करता हूँ। मैं इस साथ में ये नहीं कह रही कि अपनी लाइफ को नहीं देखना, हम हेल्दी होंगे, हम स्मार्ट होंगे, हमारी एजुकेशन होगी, हमारे में विजडम होगी, हमारा थॉट प्रोसेस स्ट्रांग होगा, तभी हम दूसरों के लिए कर पाएंगे। बट यस, हम सेल्फ सेंटर्ड नहीं है, हम हमेशा दूसरों के लिए सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। जब तीसरी बात, इसका जो आउटकम आता है नोबिलिटी का, स्ट्रेंथ का, तो हम क्या, मतलब कि लोग हमें क्या कहते हैं, कहते होंगे आप सब लोगों को, वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू, हम आपके आभारी हैं, कहते हैं, जरूर कहते होंगे। अगर कोई ये समझ रहा है कि कोई नहीं कहता आभारी, तो आप प्लीज बताएं, या कहते हैं तो वो भी बताएं, कोई भी ऑन करके बताएं कि हाँ हमें कहते हैं कि हम आपके आभारी हैं।
1: जी नमस्ते मैम।
0: हाँ जी, हाँ जी, मीना जी बोलिए।
1: जी मैम, मेरे से तो पता है ना कितने सारे लड़कियों ने महिलाओं ने कई बार बोल दिया कि आपने अगर हम लोगों की ये चीज नहीं करवाते तो शायद हम सक्सेस नहीं होते, तो आपका
0: हाँ
1: जितना भी धन्यवाद करे वो कम है।
0: हाँ तो आ गया ना, ग्रेटफुलनेस आ गई है ना। और जब ग्रेटफुलनेस आती है लोगों के मन में तो हम और भी नोबल बन जाते हैं, हम और भी हम्बल बन जाते हैं, फिर हमारा दिल करता है हम और करें, हम और लोगों के रीच करें और हम ये अपनी लाइफ का एक मिशन बना लें, है ना। तो
1: जी मैम,
0: ये आपकी पर्सनालिटी के बारे में ही आज मेरा सेशन है, क्योंकि आपको समझना है कि आप किस लेवल पे एग्जिस्ट कर, है ना। तो जब हम सच्चाई से काम करते हैं, मैं थर्ड स्टेप आपको बोल रही हूँ, जब हम पूरी सच्चाई से काम करते हैं और हमारे मन में डेडिकेशन है और हम पूरी अपनी सोच समझ से और विजडम से काम करते हैं, तो हमारे से हम क्या बोलते हैं, बहुत कंपैशनेट बन जाते हैं। तो कंपैशनेट का मतलब होता है कि हम आसपास के कंपैरिजन्स को नहीं देखते, है ना, कंपटीशन को नहीं देखते, हम इतने कंपैशन हो जाते हैं कि हमारे में डे एंड नाइट एक इग्निशन होती है कि हमें और करना है, और करना है, और करना है, हम और लोगों को रीच करें।

0: और लोगों के साथ काम करेंगे। और इसका रिजल्ट क्या होता है कि हमारा जो माइंड है, हमारा जो जो अंदर सोल है वो एकदम प्योर हो जाती है, वहां से डस्ट हटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हम कहते हैं कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, है ना? ऐसे ही बोलते हैं ना कि हम डेडिकेटेड हैं अपने काम के लिए, तो हमारी जो प्योरिटी है विद इन आवर हार्ट, मैं फिर हार्ट पे वापस आ रही हूँ, हार्ट से मैंने शुरू करा था। हार्ट हमें एक्शन करने के लिए प्रेरणा देता है, हार्ट और एक्शन हमारे सिंक्रोनाइज हो जाते हैं, मिल जाते हैं, एक हो जाते हैं, हम नोबिलिटी की तरफ चलना शुरू कर देते हैं, हमारे में स्ट्रेंथ आती है और हम ग्रेटफुल बन जाते हैं दूसरों के लिए जिन्होंने हमें अपॉर्चुनिटी दी उनको सर्व करने के लिए। और जब हम पूरी सच्चाई से चलते हैं तो हमारे में कोई लिमिट नहीं होती, जो हमारे में उत्साह आता है, इतना सारा उत्साह आ जाता है करने के लिए, हमारी विजडम डेवलप हो जाती है, हम कंपैशनेट बन जाते हैं, और इन सब स्टेप्स का निचोड़ होता है कि हमारी जो आत्मा है, जो सोल है, वो बिल्कुल प्योर बन जाती है, वहां से डस्ट हटना शुरू हो जाता है। क्योंकि मैं भी नेगेटिव बोलती हूँ किसी के बारे में, कोई बात अच्छी नहीं लगती है या नहीं मुझे पसंद आती, पर वो मैं किस किससे बोल रही हूँ, अपने विजडम से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरी सोच में वो गलत है ना? तो हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि क्या ठीक है क्या गलत है। दूसरा इसका एक बहुत अच्छा रिजल्ट आता है कि हमारी नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में बदल जाती है ना? नेगेटिव चीजें हमें किस तरफ लेके जाती हैं? मतलब कि हमारी सोच जब नेगेटिव जाती है तो हमें ये लगता है कि ये सब कुछ ना एक खटास में बदल रहा है ना? पर जब हम पॉजिटिव सोचते हैं तो हमें एक मिठास में कन्वर्ट कर दे, है ना? तो हम खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आ जाते हैं। तो ये खटास से मिठास के रिलेशनशिप में आने के लिए ये सारे स्टेप्स अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है, और ये लीडरशिप का एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है हमारी पर्सनालिटी। हम अपने आप को जब कहते हैं कि हम लीडर्स हैं तो हमें ये सब चीजों को समझना है, और हम ऑलरेडी कर रहे हैं। मैं आपको बोल रही हूँ यू आर द लीडर्स, व्हाई यू आर द लीडर्स, बिकॉज यू आर डूइंग ऑलरेडी। मैं तो आपके सामने आपके चिट्ठे खोल रही हूँ, जो आपकी पर्सनालिटी है उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, है ना? तो फिर हम कहते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, हम कहते हैं ना लोगों के सामने, ये वर्ड हम बहुत बार यूज करते हैं कि हम एम्पावर्ड हैं, बहुत लोग हमें भी कहते हैं कि यू आर एम्पावर्ड, और फिर हमारा मिशन क्या बन जाता है, हमें दूसरों को भी एम्पावर करना है, दूसरों को भी उस लेवल तक लेकर आना है कि हम उनकी खुशी की तरफ चलें, अगर वो खुश हैं तो हम भी खुश हैं, और हमारी जो डेडिकेशन है, हमारी जिंदगी की डेडिकेशन जो है वो इसी पे डिपेंड करती है कि हम अपनी जीवन की पर्सनालिटी को इस तरीके से ढाल लें कि हम दूसरों के लिए सोचें, दूसरों के लिए करें, और उसमें हमारी भी ग्रोथ होती है। देखिए कितना बड़ी बात है ये कि जब हम अपनी सोच, अपने एक्शन, अपनी विजडम, अपना करेज, अपना अपना थॉट प्रोसेस को हम अपनी सोल को क्लींस करने के रास्ते पे चल जाते हैं, तो हम हमेशा दूसरों की खुशी के लिए सोचते हैं, और फिर जो सुप्रीम पावर है वो हमारी खुशी के लिए सोचता है, और इस सारे प्रोसेस में हम अपने जो कर्म हैं उनको भी अच्छाई की तरफ लेकर जाते हैं, है ना? जब हम कर्म की बात करते हैं, हम उनको अच्छाई की तरफ लेके जाते हैं, तो हम इंग्लिश में ये बोलते हैं कि हम कॉजेस क्रिएट करते हैं। कॉजेस मतलब कि मैंने मैंने आपको कुछ पढ़ाया, ये मैंने कॉज क्रिएट करा है ना, और उसका इफेक्ट क्या आएगा कि मेरी लाइफ में कुछ एक अच्छा होगा जो मुझे नहीं पता ये क्यों आ रहा है अच्छा मेरे पास, बट क्योंकि मैंने किसी के लिए अच्छा किया तो मेरे लिए अच्छा आया। तो ये जो कॉज एंड इफेक्ट है वो बहुत हर मोमेंट पे होता है, हर सोच के एक्शन पे होता है। ये ऐसा नहीं है कि मैंने 20 दिन में अच्छा कुछ दान कर दिया तो मेरे पास धन आ जाएगा, नहीं। हम जो सोचते हैं, जो हम करते हैं, जो हम एक्शन लेते हैं हमारी डे टू डे जिंदगी में, हम कॉजेस क्रिएट करते हैं, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में आता है, तो हमारे जीवन की जो बहुत बड़ी कठिनाइयां होती हैं वो जल्दी रिजॉल्व हो जाती हैं, या वो छोटी हो जाती हैं, या बिल्कुल हमारी जिंदगी से हट जाती हैं। तो लीडरशिप का जो मैंने पर्सनालिटी बताई है आपको, अगर हम ऐसे लीडर्स बन जाएं तो हमारी अपनी जिंदगी भी बहुत सुधर जाती है, हमारी अपनी जिंदगी में भी बदलाव आ जाता है, और हमें अपनी जिंदगी को चयन करने का रास्ता मिल जाता है। ठीक है, समझ में आया सबको यहां तक? किसी का कोई क्वेश्चन, किसी का कोई प्रश्न? तो हम जब अपने कर्मास को बदलते हैं तो हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं, है ना। जब हम अपने जीवन के अंधेरे को भगाते हैं दूर, तो हमें रोशनी का एहसास होता है। रोशनी ये नहीं जो हमें लाइट से मिल रही है, रोशनी जो हमें सूरज से मिलती है मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग में। यू गेट अप विद योर फ्रेश माइंड, यू गेट अप विद योर फुल एनर्जी कि हाँ मुझे आज अपने आज इस दिन को मैंने इस तरीके से जीना है। एक बहुत अच्छा मैसेज अभी मैंने किसी को फॉरवर्ड करा था, मैंने पढ़ा था, वी रन आर डे और डे रन अस, मतलब कि क्या हम अपना दिन खुद डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे चलाना है, या दिन डिसाइड करता है कि हमें अपना टाइम कैसे पास करना है। तो ये जो इस दोनों चीज का ये डिफरेंस है वो आज मैंने निचोड़ आपके सामने रखा कि मुझे अपना दिन कैसे पास करना है वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे आज क्या क्या करना है अपनी जिंदगी में, या फिर जो दिन है वो मेरे पे इतना हावी हो रहा है वो डिसाइड कर रहा है, और रात को हम शुक्र करते हैं भगवान का, भगवान का मतलब कि हम कहते हैं थैंक गॉड रात हो गई अब तो सोने का टाइम। नहीं, हमें डिसाइड करना है कि हमें अपना दिन कैसे चलाना है, और जो पर्सनालिटी ट्रेट्स, जो लीडरशिप की ट्रेट्स मैंने आपके सामने रखी हैं, अगर हम उनको अपने जीवन में उतार लेते हैं तो हमारा दिन हमारी मुट्ठी में है, हम डिसाइड करते हैं हमें अपने दिन को कैसे चलाना है। डिफिकल्टीज हर एक की लाइफ में आती हैं, चैलेंजेस हर एक की लाइफ में आती हैं, पर विद प्योरिटी विद पॉजिटिविटी हमारे में इतनी विजडम डेवलप हो जाती है कि वो चैलेंजेस हमें छोटे लगते हैं, हम उनको रिजॉल्व करने की क्षमता रखते हैं अपने में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसका एक पॉइंट बहुत स्ट्रॉन्ग है जो मैंने अभी किसी बुक में पढ़ा था, वो ये था, रिस्पॉन्डिंग टू एनी सिचुएशन विच इज सिंसियर। जो बच्चे आपके पास सीखने आते हैं, जो औरतें आपके पास सीखने आती हैं, मैं वही एग्जाम्पल लूंगी, वो एक सिंसियरिटी से आती हैं, आपको पता चल जाता है कि कौन सिंसियर है और कौन जस्ट टाइम पास करने आ रहा है। आपकी अपनी इंटेंशंस और आपकी अपनी अटेंशन, दोनों इंटेंशन भी और अटेंशन भी उन पे ज्यादा फोकस करती है जो सिंसियर है ना। और फिर जब आप उनको रिस्पॉन्स करते हो वो विद अटमोस्ट सिंसेरिटी से करते हो, एम आई राइट? ये बहुत प्रैक्टिकल चीज है, मैं आपके साथ नहीं हूं, मैं यहां बैठी हूं पर मुझे पूरा पता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे। मैं आज आपकी पर्सनालिटीज का चैप्टर आपके सामने खोल के रख रही हूं, एम आई राइट? कोई भी बोलेगा कि जो मैंने ये पॉइंट बोला है रिस्पॉन्डिंग टू सिंसेरिटी विथ सिंसेरिटी यू आर प्रैक्टिसिंग एवरी डे, एम आई
1: जी
0: राइट?
1: मैम, जी मैम,
0: कौन बोल रहा है ये?
1: जुड़ा लगा बड़ा गांव से। जी
0: एम आई राइट?
1: मैम, यस मैम।
0: हाँ चलो ठीक है। अब क्या है कि जब जब हम सिंसेरिटी से काम करते हैं, और सिंसेरिटी को हम इवैल्यूएट, तो जजमेंट हो जाती है, वो हमारी फीलिंग्स, हमारी विजडम हमें गाइड करती है कि कौन सिंसियर है और कौन नहीं है। और जब हम इस चीज को प्रैक्टिस कर लेते हैं और हमारी पर्सनालिटी इस दायरे में आ जाती है, तो हम हर एक कंप्लेंट को, जो भी कंप्लेंट आपके सामने आती है, आप उसको बहुत कंपैशन से टैकल करते हो। तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, और वो हमारी एक बहुत बड़ा पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती है कि बहुत लोग हमें कंप्लेंट करते हैं।
1: करना
0: हाँ, हम कंप्लेन मोड से कि उसने ऐसे किया, वो सुनती नहीं है, वो खराब है, वो ये है, उससे हम एक करुणा हमारे मन में आ जाती है। हम कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, भगवान उसको भी अच्छी बुद्धि देगा, सक्षम बुद्धि देगा, अच्छी सोच देगा। हम ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, तो हम कंप्लेन मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, करुणा की करुणा आ जाती है हमारे दिल में, हमारे हमारे दिल में उसके लिए दया आ जाती है। कि हम फिर हम क्या करते हैं, हम प्रार्थना मोड में आ जाते हैं। हम कहते हैं कि हे भगवान, इस इंसान को सक्षम बुद्धि दे दो, उसके अलावा हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि हमें पता है कि हम इंस्टेंटली कॉज एंड इफेक्ट क्रिएट करते हैं। अगर हमने उसको कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज में कुछ बोला तो उसका हम अपना कर्म खराब कर रहे हैं। तो जो कर्मा थ्योरी है कॉज एंड इफेक्ट की, वो हमें हर स्टेप पे गाइड करती है, वो ही हमें लीड करती है कंप्लेनिंग टू कंपैशन मोड में आने के लिए। तो हम इस तरीके से जब कंप्लेनिंग मोड से कंपैशन मोड में आ जाते हैं, तो हम हर एक चैलेंज को ओवरकम करने की पावर रखते हैं अपने। हम कहते हैं देखो, पावर सब में होती है, चैलेंजेस सबकी लाइफ में आते हैं। किसी की लाइफ में जो चैलेंज आता है ना, वो फाइटिंग मोड से उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। बहुत बहुत ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं आई एम द फाइटर, आई कैन फाइट, बट फाइट कैसे करना है? फाइट गाली गलौज से करना है, या आर्ग्यूमेंट से करना है, या हमने उसको करुणा से रिजॉल्व करना है? देर इज अ डिफरेंस। ये पर्सनालिटी का बहुत बड़ा ट्रेट है। जिसको ये पर्सनालिटी का ट्रेट समझ में आ जाता है ना, उसकी जिंदगी की बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी परेशानियां रिजॉल्व हो जाती हैं अपने आप। और ये जो पर्सनालिटी के ट्रेट्स हैं, सबकी लाइफ में ऐसे सरकमस्टांसेस आते हैं, पर उन सरकमस्टांसेस को क्या हमने पहाड़ बना के अपने सिर पे रखना है, या उसको कंपैशन से, विजडम से रिजॉल्व करके अपने चैलेंजेस को ओवरकम करना। तो ये जिंदगी की गाड़ी जो है, नाव जो है, मैं उसके बारे में आपको बता रही हूँ। फिर क्या होता है कि जब हम इन सब चीजों को अपनी पर्सनालिटी बना लेते हैं, तो हमारे में एक एक कन्विक्शन आ जाती है। कन्विक्शन क्या होता है कि एक दृढ़ता आ जाती है कि हमें दूसरों की खुशी के लिए काम करना है, जिससे हमें भी खुशी मिले। अगर हम दूसरों की खुशी के लिए काम नहीं करेंगे, तो हमें भी खुशी नहीं मिलेगी। ठीक है? तो ये भी एक कॉज एंड इफेक्ट का हिस्सा है। इफ वी थिंक ऑफ हैप्पीनेस फॉर अदर्स, वी गेट हैप्पीनेस, वी गेट सेटिस्फेक्शन। तो वो एक हैप्पीनेस कोई हम मार्केट में तो खरीदने नहीं जा सकते, जितना भी पैसा हो, खुशी हम नहीं खरीद सकते। खुशी पाने के लिए ये जो आज मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं, इसी से आप खुशी पा सकते हैं। एट द सेम टाइम यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग, यू हैव टू बी वेरी ट्रूथफुल, यू हैव टू बी वेरी कंपैशनेट, एंड यू हैव टू बी वेरी विजनरी ऑल्सो, क्लियर विजन. कहीं पे भी झूठ का साथ नहीं, कहीं पे भी किसी को डाउन करने का हमारी सोच नहीं है. हम सबको अपलिफ्ट कर रहे हैं, बट कोई हमें ये ना समझे कि हम वीक हैं, राइट. हमारी जो अच्छाई है वो वीकनेस के जरिए दूसरों तक नहीं पहुंचनी चाहिए. हम अच्छे भी हैं, हम स्ट्रांग भी हैं, हम जानते हैं कि हमें अपनी जिंदगी को कैसे जीना है. हम दूसरों की बातों में आने वाले नहीं हैं, और इस तरीके की पर्सनालिटी में हमें एक विजडम डेवलप होती है कि हम दूसरों को अच्छे से पहचान पाए. अगर दूसरे गलत भी हैं तो हम सोचते हैं कि हम अपनी पर्सनालिटी को क्यों खराब करें, हम अपने कर्मास में क्यों रेड स्पॉट्स लगाएं. अगर वो ऐसा है तो उसके कर्मास उसके साथ है, मेरे कर्मास मेरे साथ है, मैं टिट फॉर टैट के सर्कल से बाहर आना चाहती हूँ या चाहता हूँ. तो ये हमारी सोच होनी चाहिए. अब मैं एक 10 मिनट में एक कॉन्सेप्ट और समझाना चाहूंगी जो मैंने बुक में ही पढ़ा था, किसी होली बुक में ही पढ़ा था. सब लोग साई, मैंने साई बाबा की बुक में पढ़ा था, साई सच्चरित्र में. ये बहुत बड़ा टॉपिक आता है, एक चैप्टर 39 है जो साई बाबा को मानते हैं और साई सच्चरित्र पढ़ते हैं. उसके 39 चैप्टर के लास्ट पेज में लिखा हुआ है वो, मतलब कि अपने शिष्य को ये ज्ञान दे रहे हैं, और उसमें वो ये कह रहे हैं कि हम ना एक मिथ में रहते हैं. वो मिथ क्या है कि हम ये सोचते हैं कि हम एक ह्यूमन बीइंग है, एक इंसान है. हम जब ये सोचते हैं ना कि हम इंसान हैं, इंसान क्या है, बॉडी स्ट्रक्चर ना हमारी बॉडी है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ह्यूमन बीइंग है. पर हम बॉडी के बियॉन्ड तो सोचते ही नहीं है. बॉडी तो जानवरों की भी होती है, बॉडी तो कीड़ों मकोड़ों की भी होती है. पर भगवान ने हमें क्यों एक हायर पेडेस्टल पे रखा है? क्योंकि हमारे में एक आत्मा भी है, एक आत्मा भी है, और वो आत्मा जो मैं सोल की बात कर रही हूँ, वो सोल जो है वो हमारी पहचान है. हमारी पहचान हम ना अपने नाम और अपनी बॉडी से करते हैं, पर हमारी असली पहचान क्या है? हमारी आत्मा, हमारी सोल. वो कितनी प्योर है, उस पर कितना डस्ट लगा हुआ है, कितना हम झूठ बोलते हैं, कितना हम सच बोलते हैं, कितना हम दूसरों के लिए सोचते हैं, कितना हम अपने लिए सोचते हैं, कितना हम लोगों को माफ कर देते हैं, कितना हम लोगों की गलतियां पकड़ के बैठ जाते हैं. तो ये डिफरेंस को भी समझना बहुत जरूरी है. भगवान क्या है? किसी ने भगवान को देखे? जिसने देखे प्लीज अपना अनम्यूट करके यस बोल दीजिए, और जिसने नहीं देखा वो नो भी बोल दीजिए. किसी ने भगवान को देखा? किसी ने देखा भगवान को?
2: मैम डेली देखते हैं,
0: हैं
2: डेली देखते हैं. देखो वो बॉडी से नहीं दिखता, पर मन की आंखों से दिखता.
0: Yes. तो सोल की, सोल से दिखता है, हम फील करते हैं उसको. हम गुरु जी को देखते हैं जो बॉडी फॉर्म में हमारे सामने आए, पर उन्होंने भी यही बोला कि मेरे को कितने लोग समझ पाए, वो मैं अभी भी ढूंढ रहा हूँ कि कितने लोगों ने मुझे समझा. कितने, कोई लोग मुझे भगवान कहते हैं, कोई लोग मुझे गुरु कहते हैं, कोई लोग मुझे कुछ कहते हैं, पर एक्चुअली इम्पोर्टेंट चीज क्या है? हमारा, हमारी सोल, हमारा मतलब कि वो ये, इसका निचोड़ ये है कि भगवान, दुनिया और इंसान एक ही है. कोई भगवान हमें नजर नहीं आ रहा. भगवान ने तो ये बोला है, शास्त्र हमारे ये कहते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक सोल है. सोल को नर्चर करने की जरूरत है, उस सोल को पहचानने की जरूरत है, उसके ऊपर अपने एक्शंस निर्भर करने की जरूरत है. उन एक्शंस को हम किस तरीके से करें कि उस सोल पे चोट